0: कृषि परिवर्तन देश दुनिया में हलचल मचा सकता है? क्या मंगल के राशि परिवर्तन से दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ सकती हैं? क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: देश भर में राधा अष्टमी की धूम, बरसाना की राधा रानी मंदिर में मनाया जा रहा है भव्य जन्मोत्सव। पंचामृत और अलग अलग औषधीय जल से हुआ राधा रानी का महाअभिषेक। गणेशोत्सव का छठा दिन, बापा के अनोखे पंडाल में बढ़ा रहे उत्सव के रौनक, तो वहीं विघ्नहर्ता के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। दिल्ली में सजा कला का अनोखा संसार, कला कनेक्ट में देश भर से पहुंचे 150 से ज्यादा कलाकार। मेरठ में पहली बार आज से भव्य एयर शो का आयोजन, तो वहीं उदयपुर में सूर्य किरण एरोबैटिक टीम करेगी प्रदर्शन। 9 हॉक MK-132 विमान दिखाएंगे रोमांचक करता। पीएम मोदी आज 51,000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। देश भर में 45 जगहों पर 20वें रोजगार मेले का होगा आयोजन। हांगकांग में मिड ऑटम लालटेन कार्निवल का शुभारंभ हुआ, 20 देशों के 3,000 से ज्यादा लालटेन बने आकर्षण। जापान के आईची नागोया में आज 20वें एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी, भारतीय शूटर मनु भाकर और शॉटपुट एथलीट तेजिंदर पाल तूर थामेंगे तिरंगा। 4 अक्टूबर तक चलेगा टूर्नामेंट। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ।
4: मेरे पागलों, हम तो ये भी चाहते हैं दुख आए तो तुम्हारी जिंदगी इतनी प्यारी हो कि दुख भी घबरा जाए कि मैं किसके पास आया हूं। और वो भक्त के जीवन में ही हो सकता, जो आध्यात्मिक होगा उसके जीवन में ही होगा, जो परमात्मा का होगा उसके जीवन में ही होगा। और सुनो मेरे प्रियजनों, यदि तुम ठाकुर जी के हो गए, यदि तुम राम जी के हो गए ना, तो डूबते डूबते भी पार हो जाओगे। वो पार होते होते भी डूब जाते जिन्हें खुद पर गुमान होता है, अब वो डूबते डूबते भी पार हो जाते जिन पर तू मेहरबान होता है। भगवान जिन पर मेहरबान हो वो पार हो जाते, वो बड़े दयालु हैं। राम जी जैसा कौन दयालु ना होगा, ठाकुर जैसा कौन दयालु ना होगा। देखो तो तुम्हें उन्होंने क्या क्या नहीं दिया, बढ़िया तन दिया, बढ़िया मन दिया, जीने को जीवन दिया, भारत जैसा वतन दिया, सनातन जैसा धर्म दिया। देखो तो तुम परमात्मा की कृपा जो तुम्हें मिला है उस पर धन्यवाद तो दो परमात्मा को, तुम्हें कम थोड़ी मिला। जो तुम्हें मिल गया यही पाने के लिए कितने लोग पागल नहीं, जहां तुम बैठे हो यही आने के लिए कितने लोग पागल नहीं है, और तुम यहां आ गए। अब इससे भला क्या कृपा नहीं हो सकती परमात्मा की। तुम लंदन की पीआर पा गए और लाखों लोग लंदन आने को तरस रहे। देखो तो तुम हॉल में बैठकर लेस्टर में लंदन में विदेशी धरती पर भी कथा का आनंद ले रहे। भारत में 5-5 किलोमीटर की लाइन लगती, अभी हम पश्चिम बंगाल में थे कोलकाता में, 3 किलोमीटर दूर एलईडी पर बैठ करके आदमी कथा सुन रहा था, 3 किलोमीटर दूर अब वो एलईडी में ही प्रणाम करता था, वहीं फूल चढ़ा के बेचारा चला जाता था। भीड़ इतनी थी आ ही नहीं सकता था, लेकिन उसकी श्रद्धा देख, अब तुम्हें इतना मिला, देखो तो तुम एकदम मीट टू ग्रीट विद बागेश्वर धाम बाबा। अब ये भी क्या कम है, इसके लिए भी दुनिया तरसती, ये भी क्या कम है, इसके बाद भी तुम्हारे अंदर धन्यवाद का भाव ना जगे तो तुमसे बड़ा उल्लू कौन होगा। इसके बाद भी तुम परमात्मा को साधुवाद ना दो तो तुमसे बड़ा उल्लू कौन होगा। तुम्हें जो मिला उसी पर मुस्कुराना सीखो, तुमने जो पाया उसी पर परमात्मा को धन्यवाद देना सीखो, अंदर की खुशियों को जगाओ। धार्मिक व्यक्ति का मतलब ही यही है, हर बात पर परमात्मा को थैंक्स कहना। धार्मिक व्यक्ति का मतलब ही यही है, भक्त कौन जिसके जीवन में तीन चीजें हों, पूछो क्या, अरे पूछो तो जरा जोर से पूछो। भक्त के तीन लक्षण, पहला भरोसा, दूसरा भाव और तीसरा भोलापन। ये तीन लक्षण हैं भक्त के। भरोसा हो कि मेरा ठाकुर है, जो होगा देखा जाएगा, है मेरा गोविंद, मेरा गुरु है, रखेगा लाज। आप तो यहां बैठे, ये बात हमें कहनी कहते हुए बहुत गौरव हो रहा, बहुत गर्व हो रहा, यहां कहीं हमारा वो बालक होगा लक्ष्मण, शायद यहां कहीं होगा, यहां विदेशी धरती पर रहकर के लक्ष्मण जैसा व्यक्ति 500 लोगों को हर महीने हनुमान चालीसा के पाठ करवा रहा है, 500 लोगों को, कभी चेसम बुलाता, कभी कहीं कभी कहीं, कि आप वेजिटेरियन बने रहे, सात्विक बने रहे, सनातन को पकड़े रहे, भारतीय संस्कृति को पकड़े रहे, घर घर घर घर जाकर बिना कोई पैसा लिए, बिना दक्षिणा लिए बागेश्वर बालाजी का चित्र लगा करके वो 500 लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ करवाता। देखो तो तुम कृपा, देखो तुम उस परमात्मा का चमत्कार। और लाखों लोग भारत में ऐसे हैं कि वो भारत में रह के भी नहीं पढ़ पाते। हमने भारत के लिए कहावत निकाली, पूछो क्या, जोर से पूछो, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते हैं। अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के पास होते हैं। अक्सर ऐसा होता है और सच भी यही है, होता ही है। तुम तो धन्यवाद दो ठाकुर को, भक्त तो धन्यवाद देता है कि प्रभु बड़ी करुणा की तुमने, बड़ी दया की, जो मिला वो कम नहीं मिला, जो हम पा रहे वो कम नहीं पाए। उनके नाम की बड़ी सामर्थ्यता है, हम यहां बैठे उनके नाम के ही कारण तो बैठे। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। उनकी ही तो कृपा हुई उनके नाम के कारण। अरे हमारी छोड़ो भैया, हम तो छोटे मोटे से दास हैं उनके, रावण भी राम जी के नाम से काम चलाता है, हाँ अभक्त भी उनके नाम से काम चलाते। बताओ तुम, एक कथा बड़ी प्यारी है, अक्सर हमने बोली, शायद तुम्हारे काम की है तुम्हें महिमा समझ आए कि नाम में कितनी ताकत होती है, जरा सुनना। रावण को जब खबर लगी कि राम जी लंका आ रहे हैं, और खबर में यह सुनाया गया कि राम जी ने पानी के ऊपर पत्थर तैराए, ये बात रावण को पता लगी। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, लोग बैठ जाएंगे, थोड़ा भीड़ ज्यादा हो गई पीछे की तरफ, थोड़ा थोड़ा बार आप आगे आ जाइए ताकि सबको कथा सुनने का अवसर मिल जाए। धन्यवाद धन्यवाद। सुने, रावण को खबर लगी कि राम जी आ रहे हैं, और आ कैसे रहे, पानी के ऊपर उन्होंने पत्थर तैराए, क्या तैराए, बोलो बोलो बोलो बोलो, ये ब्रेकिंग न्यूज चली लंका में रावण के यहां। तो जितनी रावण की प्रजा थी, सेना थी, सबने कहा कि जब राम जी वनवासी होकर इतने बड़ा चमत्कार कर सकते कि पानी पर पत्थर तैरा सकते, तो जरूर ये राम और जो लक्ष्मण हैं दोनों बहुत चमत्कारी हैं, इनसे लड़ना संभव नहीं है। जब ये पानी पे पत्थर तैरा सकते तो पत्थर बरसवा भी सकते और हम लोग तो मर जाएं। तो पूरी प्रजा रावण के पास गई कि हम लोग पार्टी बदल लें। 2013-14 में जैसे भारत में हाल था कि हम पार्टी चेंज करेंगे, तो रावण की पूरी सेना रावण के पास गई कि हम पार्टी बदल लें। रावण बोले कहां जा रहे? सेना बोली राम जी की तरफ। रावण बोले क्यों? बोले बाप मरना थोड़ी है, जान जान के थोड़ी मरना, जब वो लोग इतने चमत्कारी हैं कि पानी में पत्थर तैरा सकते, यहां आएंगे पत्थर बरसवा देंगे, हम निपट जाएंगे, मर जाएंगे, हम लोग तो जा रहे हैं। रावण बोले ये छोटी बात, कोई बड़ी बात थोड़ी है, पानी में पत्थर तैराना, वो तो हम भी तैरा लेते। सेना बोली हम बातें नहीं मानेंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। तुम तो कह रहे थे कि सब हमारे हाथ में, उनका एक बंदर आया पूरा लंका जला गया, तुमने तो कुछ नहीं कर लिया। अब बताओ वो पूरी लंका उल्टा पलटा करके जला गया, तब तुमने क्यों नहीं बचाया? तब तुम्हारा पेट खराब था क्या? रावण बोला नहीं पेट खराब नहीं था, लेकिन ठीक है वो हो गया, बाकी हम तुम टेंशन ना लो, हम पानी में पत्थर तैरा देते हैं। बोले यदि तैरा के दिखाओ, प्रजा बोली तो मानेंगे। रावण बोला ठीक है कल आ जाना, कल तैरा के दिखा देंगे। अब पूरी सेना तैयार, तो छोटे छोटे बच्चे, राक्षस, उनकी पत्नियां, बड़े बड़े दांत, काला शरीर, छोटे छोटे बच्चे भी बिना कपड़ों के दांत निकाले, सुबह से ही तैयार हो गए कि आज पानी में पत्थर तैरते हुए रावण दिखाए। अब ध्यान से सुनना, बड़ी अद्भुत कथा है। रावण समुद्र के किनारे गया, समुद्र के किनारे जाकर के रावण ने कहा राक्षसों से लाओ पत्थर। अच्छा ऐसा कोई ये मंत्र जानता नहीं था, इसने सोचा हमारे 20 हाथ हैं, एक हाथ नीचे से पानी में डाल लेंगे, उंगली लगा देंगे, लो तैर रहा है। अब वैसे भी हमारा भारी शरीर है, लो लो लो तैर रहा है, बस ऐसा करके और कहानी बना देंगे, ढपोल संकी करेंगे, पाखंडी का काम करेंगे, तो काम बन जाएगा, लोग ताली बजा देंगे, बस सीताराम सीताराम, बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। अब रावण गया समुद्र के किनारे, पहुंचा कि जाओ पत्थर लेकर के आओ, पर राक्षस तो राक्षस, उन्होंने सोचा कि यदि राम जी ने 50 किलो का पत्थर तैराया तो हमारे राजा को कम से कम 500 किलो का तैराना चाहिए, 50 का क्यों, 10 गुना एक्स्ट्रा हो, राक्षस तो राक्षस। तो दो दो लोग बड़े बड़े पत्थर उठा के लेके आए और रावण को पसीना आ गया। उसने सोचा छोटा मोटा तो ऊपर उंगली लगा के कुछ कर ही सकते थे, अब बड़े का क्या करें। और बड़े बड़े पत्थर लेकर के राक्षस आए, राक्षस बोले हालो तैराओ। रावण को जितने मंत्र आते थे, जटा टवी गलत जलप रावण शिवतांडव स्त्रोतम आदि आदि श्लोक, भगवती का श्लोक गाया, बड़े बड़े भाव से गाया होगा भगवती का, हे भगवती सुनु देवी प्रवक्षामि कुंज का स्त्रोतम उत्तमम एन मंत्र प्रभावन चंडी जापा सुभवेतना कपचम नारगला स्त्रोतम किलकम ना रहस्यकम ना सूक्तम नापि ध्यानम चाना सुना चाचा वार्चनम। हे भगवती, हे महादेव, हे कुल देवी, हे देवी देवता, हमारी रक्षा करो, आज हमारी लाज बचाओ, पानी में पत्थर तैराओ। लेकिन जैसे ही रावण ने पत्थर पानी में डाला वो डूब गया, डूब पड़ गया। प्रजा बोली लो वो निकल आया चमत्कार, पूरी प्रजा भागने लगी, जाने लगी। रावण बोले रुको रुको मत जाओ। रावण ने सिर पानी के पास डाला और पता नहीं क्या बुदबुदाया, रावण बाहर निकल आया। और सच में ऐसा आश्चर्यमय घटना हुई कि वो पत्थर पानी में ऊपर तैर गया। सब बोले वाह, पूरी सेना ताली बजाने लगी, लंकाधीश रावण की जय होने लगी, दशक ग्रीव दशानन की जय होने लगी। रावण भी आनंद में भर गया, घर आया, पूरे गांव में अब तो पूरी लंका में शोर मच गया कि हमारा राजा भी कम नहीं है, यदि वो 50 किलो का पत्थर तैराते हैं तो हमारा राजा 500 किलो का पत्थर तैरा देता। पत्थर तैरता रहा शाम तक। रावण वापस आया अपने घर पे, जैसे ही आया रात हुई, पत्नी मंदोदरी चरण दबाने लगी। चरण दबाते दबाते दबाते मंदोदरी बोली, नाथ बुरा ना मानना, मैं एक बात पूछूं। रावण ने कहा, पूछो। नाथ मुझे पता है आपके पास कौन कौन सी विद्या है, ऐसी कोई भी विद्या नहीं है कि आप पानी में पत्थर तैरा सको, आप बताओ सच में ये किया कैसे। अच्छा घरवाली को तो सब पता होते ही, बाहर आदमी चाहे जितना महान बन जाए घरवाली को पता होता है कितने गहरे पानी में। एक पहलू को ही पकड़ के मत बैठो, इसलिए तुम्हारे जीवन में सुख आए तो इतराओ मत और दुख आए तो घबराओ मत। तुम्हारे साथ तुम्हारा परमात्मा जो भी करेगा वो बेहतर नहीं करेगा, बेहतरीन करेगा यदि तुम धार्मिक हो तो। यदि तुम आध्यात्मिक हो, परमात्मा के सहारे हो, तो भगवान तुम्हारे साथ जो भी करेगा वो करेगा जिसकी तुम्हारे पास अपेक्षा है, जिसकी चाह है। जरूरी नहीं वो तुम्हारी हां में हां मिलाए, जरूरी नहीं वो तुम्हारे मन का करे, पर हो सकता वो जो करे वो तुम सोच ना पाओ। और सच भी यही है, हम जो सोचते हैं कई बार परमात्मा वो होने नहीं देता, पर जब जो हो जाता वो कभी सोच भी नहीं पाते। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा की अपनी खुद की लीला है। धार्मिक व्यक्ति को एक बात समझनी पड़ेगी कि आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा वो सब परमात्मा की देन है। धार्मिक होने का मतलब ही यही है, और धार्मिक व्यक्ति के पास इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं मानने के अलावा। और धार्मिक व्यक्ति कहलाता भी वही है जो केवल अपनी चाह को ना चाहे, परमात्मा की चाह को भी अपनी चाह माने। ये धार्मिक व्यक्ति का मतलब भी है। मेरे पागलो, जो सह गया वो बन गया। भगवान के भरोसे यदि तुम रहोगे तो भगवान तुम्हारे साथ अहित ना करेगा। भला संसार का एक साधारण पिता अपने पुत्र के साथ बुरा करना चाहेगा क्या? नहीं, फिर ये तो परम पिता, ये कब तुम्हारा बुरा चाहेगा? ये तो ब्रह्म है, ये तुम्हारा कब बुरा चाहेगा और क्यों बुरा चाहेगा? काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म सुपाय विधाता। कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं है, सब अपने सुख दुख के कारण ही जीते हैं। इसलिए मेरे पागलो, आज की कथा का सूत्र बड़ा प्यारा है, दुख में घबराओ मत, सुख में इतराओ मत। जो भी तुम्हारे जीवन में है उसको भला मानना प्रारंभ करो। अपनी चाह भले ही पूरी ना हो, परमात्मा की चाह हो रही तो उसको भी अपनी चाह बना लिया जाए। किसी जगह एक घटना हुई, शायद लेस्टर में ही घटी होगी। लेस्टर का एक राजा था चंगीलाल, उसका मंत्री था मंगीलाल। बड़ा अद्भुत आदमी था चंगीलाल, तो बड़ा अद्भुत आदमी। एक बार चंगीलाल यानी राजा को शौक चढ़ा सब्जी काटने का। कभी कभी राजाओं को भी ये शौक चढ़ते, आजकल तो ये नॉर्मल बात होगी सब्जी काटने की पतियों की। उस दिन राजा को बड़ा शौक चढ़ा सब्जी काटने का। चाकू धारदार थी क्योंकि इंग्लैंड की थी। सब्जी काटते काटते कब अंगूठा कट गया पता ही नहीं लगा, और कटानी अलग ही हो गया। जैसे टमाटर काटने पर टमाटर दो भाग हो जाते, अंगूठा कट गया बेचारे का। पीछे मंत्री खड़ा था, मंत्री ने अंगूठा कटा देखा, धीरे से बोला, भला हुआ। अब विचार करो, तुम्हारा अंगूठा कट जाए कोई कहे भला हुआ, तुम पे क्या बीतेगी? फिर वो तो राजा है, बड़ा नाराज हुआ, हमारे अंगूठा कट जाने पे ये भला कह रहा है, डाल दो इसको जेल में। मंत्री जेल जाने लगा तो राजा ने पूछा, कहो कैसा लग रहा है? भला हुआ। राजा बोले, ले जाओ फिर, ले जाओ, जब इसे जेल में जाना भी भला है, ले जाओ। था बड़ा प्रिय, बड़ा पसंदीदा मंत्री, लेकिन उसके शब्द बड़े खराब थे, भला हुआ राजा को खराब लग रहे थे। बेचारा चला गया जेल में, अंगूठा कटा, चिकित्सक आए, पट्टी लगाई गई, ठीक किया गया, और उपचार चला। दूसरे दिन राजा को थोड़ा लगा, रात भर बेचारा जेल में रहा होगा, है तो प्रिय विश्वसनीय भी है, बेचारे को रात भर में तो बुद्धि आई गई होगी, जरा चेक कर लेते हैं। राजा गया मंत्री से पूछने, कहो कैसी गुजरी रात? भला हुआ, अब तो राजा का दिमाग खरा, रात भर में भी ये ठिकाने नहीं लगा, अब भी भला हुआ कह रहा, पढ़ा रहने दो। जैसे ही जाने लगा ये राजा कह के, तो मंत्री भी बोला भला हुआ। राजा बोले इसको जीवन भर पढ़ा रहने दो। राजा गया उस दिन शिकार खेलने, एक घटना हुई, चोरों के सरदार ने अपनी सेना को छोड़ा कि हमारे पुत्र नहीं हो रहा था, पुत्र हो गया, हमें किसी मनुष्य बलि की आवश्यकता है, जरा कोई पकड़ के लाओ। राजा जिन सिपाहियों के साथ गया था वो सिपाही रास्ता चूक गए, राजा भी रास्ता चूक गया, अकेला बचा और पकड़ा गया। राजा को चोरों के सरदार ले गए बलि देने के लिए, भोजन भोजन कराया, स्नान ध्यान कराए, माथे पर तिलक लगाया, बलि देने ही वाले थे काली मां को कि पुजारी ने कहा जरा चेक करो बलि पूरी पूरी है, खंडित तो नहीं है। चेक हुआ तो राजा बाकी तो ठीक ठाक था, अंगूठा कटा था। पंडित ने कहा यह स्वीकार ना होगी, मां स्वीकार ना करेगी, हटाओ इसको, अंगूठा कटा है, खंडित है, ऐसा पंडित ने कहा, यह तो बलि खंडित है, भगाओ इसको। राजा को धक्के देके भगा दिया गया। पूरी रास्ते भर राजा सोचता आया मंत्री ठीक कह रहा था, भला हुआ आज अंगूठा ना कटा होता तो खपड़िया कट गई थी, गर्दन कट गई थी, ना अंगूठा कटा होता तो पूरे कट गए थे आज, भला हुआ। भागा भागा राजा मंत्री के पास गया कि जरा उसको धन्यवाद तो दे दे कि तू ठीक कह रहा था, भला हुआ। तो भागा भागा मंत्री के पास गया, मंत्री को पूरी घटना सुनाई, मंत्री हंसा और राजा बोला सच कह रहा था, भला हुआ, अब समझ आया भला हुआ। पर एक बात ना हमें समझ आई, मंत्री बोला क्या? बोले मेरे साथ तो भला हुआ अंगूठा कटा कि मैं पूरा कटने से बच गया, पर तुम तो बेफिजूली में 2-3 दिन जेल में पड़े रहे, तुम्हें बड़ा कष्ट पाना पड़ा, तुम्हारे साथ तो भला नहीं हुआ। मंत्री बोला हमारे साथ तो डबल भला। राजा बोला क्यों? बोला साहब आप जाते तो हम भी जाते, आप पकड़े जाते तो हम भी पकड़े जाते, आप तो पंडित जी ने कहा कि खंडित हो, बच गए, हम तो पूरे पूरे थे, सेफ सुरक्षित, हम तो एकदम कतरा कतरा हो जाते, तो तुम्हारा तो महाराज कम भला हुआ, हमारा तो डबल भला हुआ। जिंदगी भी ऐसी ही है। इस कथा का मतलब है कि जिंदगी में तुम्हारे साथ भी जो हो रहा वो भला हो रहा है, बस अनुभव करना है। थोड़ा देर से ये रियलाइजेशन आपको आएगा, पर आएगा, और आपको एक बार ये बोध लग जाए, ये पता लग जाए कि सच में परमात्मा जो भी करता वो भला ही करता, आप कभी भी शिकायत करना परमात्मा से चुनोगे नहीं, हमेशा भगवान को धन्यवाद ही दोगे। इसलिए हमें लगता तुम दुख में घबराओगे ना, दुख में वो व्यक्ति घबराता जिसे कल का पता नहीं होता। कभी तुम देखना जादूगर के साथ रहने वाला जो जमूरा होता, जादूगर का जो सामान उठाता, खेल दिखाने वाले का, उसको जमूरा कहा जाता। आप देखना खेल देखने वाले लोग कितने चौंकते जब वो पंछी बना देता, सांप निकाल देता, सब चौंकते, जमूरा कभी नहीं चौंकता, क्योंकि उसे पता होता है कि कहां से सांप निकाला और कहां से कबूतर निकाला, क्योंकि सेट तो वही करता है, वो कभी नहीं चौंकता, उसे खबर रहती। ऐसी तुम्हें ये बात खबर लग जाए जिंदगी की, जिंदगी के रहस्य की, जिंदगी के खेल की, मेरे पागलो तुम भी उस जमूरे की तरह जीने लगोगे, तुम्हें आश्चर्यचकित कुछ भी नहीं लगेगा, कोई गालियां देगा तब भी मुस्कुराओगे, कोई तालियां देगा तब भी तुम मुस्कुराओगे।
0: क्या मंगल का राशि परिवर्तन देश दुनिया में हलचल मचा सकता है? क्या मंगल के राशि परिवर्तन से दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ सकती हैं? क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: ने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाइए और हमारे साथ शेयर कीजिए। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियो या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटो भेजें तो साथ में अपना नाम और अपने शहर, गांव और कस्बे का नाम जरूर लिखें।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: देश भर में राधा अष्टमी की धूम, बरसाना के राधा रानी मंदिर में मनाया जा रहा है भव्य जन्मोत्सव। पंचामृत और अलग अलग औषधीय जल से हुआ राधा रानी का महाअभिषेक। गणेश उत्सव का छठा दिन, बापा के अनोखे पंडाल बढ़ा रहे हैं उत्सव की रौनक, विघ्नहर्ता के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। दिल्ली में सजा कला का अनोखा संसार, कला कनेक्ट में देश भर के पहुंचे 150 से ज्यादा कलाकार। मेरठ में पहली बार आज से भव्य एयर शो का आयोजन, में उदयपुर में सूर्य किरण एरोबैटिक टीम करेगी प्रदर्शन, 9 हॉक MK-132 विमान दिखाएंगे रोमांचक करतब। पीएम मोदी आज 51,000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। देश भर में 45 जगहों पर 20वें रोजगार मेले का होगा आयोजन। हांगकांग में मिड ऑटम लालटेन कार्निवल का शुभारंभ, 20 देशों के 3,000 से ज्यादा लालटेन बने आकर्षण। जापान के आईची नागोया में आज 20वें एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी, भारतीय शूटर मनु भाकर और शॉटपुट एथलीट तेजिंदर पाल तूर थामेंगे तिरंगा, 4 अक्टूबर तक चलेगा टूर्नामेंट।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: कृष्ण नगरी मथुरा के बरसाना में भव्य और दिव्य राधा अष्टमी का उल्लास देखने को मिल रहा है। राधा अष्टमी पर्व पर राधा रानी मंदिर की रंग बिरंगी लाइटों और फूलों

0: भव्य सजावट की गई है। मां राधा रानी के जन्मोत्सव के रंग में डूबी मथुरा। आधी रात में जन्मोत्सव शुरू हुआ। ब्रह्म मुहूर्त में राधा रानी का पंचामृत और अलग अलग औषधीय जल से महाअभिषेक किया गया। बरसाना में राधा रानी का भव्य जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। राधा रानी मंदिर में दर्शन के लिए भक्त उमड़े। देश भर से 25 लाख श्रद्धालुओं के बरसाना पहुंचने का अनुमान है। जन्मोत्सव पर भक्तिमय माहौल में डूबा बरसाना। मंदिर परिसर में चारों ओर राधे राधे की गूंज। आस्था और भक्ति में सराबोर दिखे श्रद्धालु। जन्मोत्सव पर मंदिर में बधाई गीत और गायन। विशेष पोशाक और आभूषणों से सजा राधा रानी का दरबार। राधा रानी को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग। सूरत में अनोखा गणेश पंडाल तैयार किया गया। बाबा के दर्शन से पहले भूत प्रेतों का सामना। हॉरर थीम ने खींचा लोगों का ध्यान। गणेश पंडाल में दिखा डरावना अंदाज। गणपति दर्शन से पहले डर का रास्ता। महिधरपुरा में बना अनोखा पंडाल। भूत प्रेतों के बीच से गुजर रहे हैं श्रद्धालु। पंडाल में कदम रखते ही डरावना माहौल हो रहा है। फिर हो रहे हैं गणपति के दर्शन। पंडाल में भूत पिशाचों ने बढ़ाया रोमांच। हॉरर थीम बना आकर्षण का केंद्र। बच्चों और युवाओं में दिखा उत्साह। 3 से 4 लेयर में तैयार हॉरर थीम। एक कदम पर नया डरावना सीन। हॉरर से शुरू और गणपति दर्शन पर खत्म। वाराणसी की सड़कों पर दिखी मिनी महाराष्ट्र का नजारा। मुंबई की लालबाग के राजा के तर्ज पर वाराणसी में विराजे गणपति बप्पा को धूमधाम से विदा किया गया। वाराणसी में 5 दिन के बप्पा की विदाई में मुंबई की तर्ज पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। जुलूस में ढोल ताशे की जबरदस्त परफॉर्मेंस ने बांधा समा। बप्पा के विसर्जन जुलूस में भुसावल से आए 80 कलाकार शामिल हुए। तो वहीं बुलानाला से निकली शोभा यात्रा को लक्सा लक्ष्मी कुंड में प्रतिमा विसर्जन के साथ समापन हुआ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी नजर आई गणपति उत्सव की उमंग। धूमधाम से की गई 5 दिन के बप्पा की विदाई। गणपति विसर्जन के साथ संपन्न हुआ त्योहार। बप्पा की विदाई से पहले सैकड़ों कश्मीरी पंडितों ने वेसू केपी कॉलोनी में संगम तक 11 किलोमीटर का जुलूस निकाला। जश्न में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए। महाराष्ट्र के जालना में विराजे 108 किलो चांदी से बने बप्पा। श्री अनोखा गणेश मंडल में विराजे बप्पा के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। गणपति बप्पा की इस अनोखी मूर्ति के निर्माण में करीब 0.5 किलो गोल्ड की परत चढ़ाई गई है। 5.5 फीट ऊंची है बप्पा की ये प्रतिमा। बप्पा की मूर्ति निर्माण में करीब 4 करोड़ की चांदी का इस्तेमाल हुआ है। सुरक्षा के लिए पंडाल में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमराज भी लगाए गए। राजस्थान के फतेहपुर में भी गणपति उत्सव की उमंग देखने को मिली। बप्पा को चढ़ाए गए 56 भोग। गणपति पंडाल में बप्पा के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। शाम को गजानन की आरती में उमड़ रही है भक्तों की भीड़। आरती कर बप्पा का आशीर्वाद ले रहे हैं श्रद्धालु। बप्पा को देखने बच्चे भी पहुंच रहे हैं पंडाल। देश भर में गणपति बप्पा के दर्शन के लिए उमड़ रहा है जनसैलाब। 5वें दिन लालबाग चौराहा के दर्शन की अनोखी छटा बिखरी। दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी। लालबाग चौराहा के दरबार में पहुंचे मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी और राधिका मोचन भी साथ नजर आए। बप्पा का आशीर्वाद लिया। लालबाग चौराहा के गणेश गली के मुंबई के राजा के दरबार में भी दर्शन अभिलाषियों की भीड़ देखने को मिली। पंडाल में विराजमान है 22 फीट ऊंचे अष्टभुजाधारी बाल गणेश। संतों के योगदान की कथाओं से संबंधित झांकियों की गई है सजावट। इस बार अपना 99वां साल मना रहा है गणेश गली गणेश उत्सव मंडल। प्रवेश द्वार पर स्थापित किया गया है विशाल गरुड़। उसके ऊपर विराजमान है संत तुकाराम की प्रतिमा। वैष्णव संप्रदाय को समर्पित है इस बार का पंडाल। हैदराबाद में आकर्षण का केंद्र बना गजानन का भव्य पंडाल। गणेश मंडप में नव वानर थीम से रामायण की झलक दिखाई गई। भगवान गणेश की भव्यता के साथ साथ रामायण के कई पहलुओं की भी सुंदर प्रदर्शन किया गया। इसमें भगवान राम, भगवान हनुमान और वानर सेना को भी शामिल किया गया है। इस मंडप को TRT यूथ एसोसिएशन के सदस्यों ने डिजाइन किया है। भगवान गणेश को राम अवतार में दिखाना उद्देश्य है। शानदार सजावट में राम सेतु, लंका और वानर सेना के साथ भगवान राम की सेवा का सुंदर चित्रण किया गया। पंडाल की भव्यता को देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हुए। पंडाल की सजावट को तैयार करने में लगभग 50 से 70 कलाकार शामिल हुए। दिन रात मिलकर करीब 15 दिनों तक काम चला। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गणपति बप्पा के साथ साथ मां महालक्ष्मी का आगमन हुआ। पूरे विधि विधान से विराजमान की गई मां महालक्ष्मी की प्रतिमा। बल्लारपुर के विघ्नेश्वर परिवार में पूरी आस्था और भक्ति के साथ विराजमान की गई मां लक्ष्मी। 150 सालों से चली आ रही है आस्था की परंपरा। महाराष्ट्र के परिवारों में ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठा और कनिष्ठा गौरी इन दिनों मायके आती हैं। बेटियों के मायके आने की तरह ही किया जाता है गौरी का स्वागत। मां के आगमन पर घर में सुख समृद्धि और मंगल की कामना की जाती है। पूरे परिवार के साथ विधि विधान से पूजा की जाती है। बनाए जाते हैं पकवान और भोग भी लगाया जाता है। कई परिवारों में हल्दी कुमकुम कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। महिलाएं एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर मंगल कामनाएं देती हैं। भाव पूर्वक विदा की जाती है देवी माँ। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी में शुरू होने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री मेला। करीब 40 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है। शक्तिपीठ अंबाजी में 7 दिन तक चलेगा भादरवी महामेला। अंबाजी में हर साल 7 दिन तक लगता है भादरवी मेला। पैदल चलकर शक्तिपीठ पहुंचते हैं श्रद्धालु। भादरवी महामेला शुरू होने से पहले बम निरोधक दस्ते की टीम ने मंदिर में जांच की। टीम के ने मंदिर के मुख्य गेट से मंदिर के हर इलाके की जांच की। इस साल 20 सितंबर से 26 सितंबर तक चलेगा भादरवी पूनम का महामेला। गुजरात राजस्थान सीमा पर अरावली पहाड़ियों पर स्थित है अंबाजी धाम। अंबाजी मंदिर के शिखर पर लगे हैं सोने के 358 कलश। सोने का बना है आधा मंदिर। अंबाजी धाम में श्रद्धालुओं की विशेष आस्था। दूर दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु। दिल्ली के NSIC ग्राउंड में सजा कलाकारों का संसार। कला कनेक्ट में देश भर से पहुंचे 150 से ज्यादा कलाकार। 20 सितंबर तक चलेगा कला कनेक्ट। 2000 से ज्यादा आर्ट वर्क प्रदर्शित किए गए। एक ही छत के नीचे कला के कई रंग देखने को मिले। 23 साल के ऋतिक कोहली पैरों से बनाते हैं पेंटिंग। हाथ नहीं, पैरों का बनाया ब्रश। तानिया सेन की कला ने खींचा सभी का ध्यान। कला कनेक्ट में शिव शक्ति के कई रूप देखने को मिले। कैनवस पर देखे शिव और शक्ति, शिव पार्वती विवाह का अनोखा दृश्य। रील एंड रिचुअल्स में आध्यात्मिक रंग देखने को मिले। शिव पार्वती विवाह का अनोखा दृश्य। पान के पत्ते की आड़ से पार्वती की नजर तो वहीं लोग पेंटिंग की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। कैनवस पर दिखा दुर्गा का शांत स्वरूप। देवी के अलग रूपों की अनोखी प्रस्तुति। चेहरों की दुनिया रचती है कलाकार रचना। एक पेंटिंग में नजर आते हैं कई चेहरे। मेरठ में पहली बार आज से भव्य एयर शो। तो वहीं उदयपुर में सूर्य किरण एरोबैटिक टीम करेगी प्रदर्शन। 9 हॉक MK-132 विमान दिखाएंगे रोमांचक करतब। तिरंगे के रंगों से रंगा मेरठ का आसमान दिखेगा वायुवीरों का शौर्य। हॉक विमानों से निकलेंगी केसरिया, सफेद और हरे रंग के धुएं की लकीरें। हवा में दिखेगा DNA मैन्यूवर। सूरज की किरणें टीम दिखाएगी लूप और बैरल रोल। उल्टी उड़ान समेत कई रोमांचक करतब आकर्षण होंगे। आज और कल 2 दिन एरोबैटिक प्रदर्शन किया जाएगा। सूर्य किरण के पायलट दिखाएंगे सटीक तालमेल। आसमान में बनेंगे शानदार एरोबैटिक फॉर्मेशन। बेहद कम अंतर पर उड़ेंगे 9 हॉक। स्वदेशी स्मोक पॉड से बनेगा तिरंगा। दर्शकों को दिखेगी तिरंगे की छटा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: क्या मंगल का राशि परिवर्तन देश दुनिया में हलचल मचा सकता है? क्या मंगल के राशि परिवर्तन से दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ सकती हैं? क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से ये अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना ये है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज भी रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई के बोरीवली के रहने वाले बोरेचा परिवार ने गणपति बप्पा की सुंदर तस्वीरें जीएनटी के साथ शेयर की है। वीडियो में बप्पा स्वरूप भव्य और दिव्य लग रहा है। बप्पा को रंग बिरंगी पोशाक और आभूषण से सजाया गया। बापा का ये स्वरूप हर किसी का मन मोह रहा है। बापा को फलों और उनके प्रिय मोदक का भोग भी लगाया गया है, जिसे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर हमें हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बापा के भक्त सुरेंद्र सैनी ने भेजी है। ये भी बेहद खूबसूरत तस्वीर है, जिसमें गजानन के अद्भुत और अलौकिक स्वरूप नजर आ रहे हैं। बापा की ये तस्वीरें भक्तों को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। भक्त ने अपने घर पर बप्पा के मंदिर को भव्य तरीके से सजाया है। सुरेंद्र सैनी ने बप्पा को फलों का भोग भी लगाया है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है।
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन की और इसके प्रभाव की। हम आज बात कर रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल के राशि परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या है? देखिए, मंगल अभी तक मिथुन राशि में विद्यमान थे। अब मंगल 18 सितंबर को दोपहर बाद कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कर्क राशि मंगल की सबसे कमजोर राशि मानी जाती है, इसीलिए मंगल की ये स्थिति सबसे ज्यादा कमजोर हो गई है। और मंगल की ये कमजोर स्थिति 12 नवंबर तक बनी रहेगी। इस स्थिति में मंगल बहुत सारी समस्याओं को जन्म देंगे। मंगल का ये राशि परिवर्तन ज्यादातर नकारात्मक, ज्यादातर निगेटिव दिखाई दे रहा है। देखिए, मंगल का ये राशि परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है और मंगल के इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर बड़ा असर पड़ेगा। क्या हो सकता है? देखिए, मंगल जिस समय राशि परिवर्तन किए उसके बाद मंगल गुरु के साथ हो गए हैं। मंगल और बृहस्पति दोनों कर्क राशि में आ गए हैं। जल की तीनों राशियां प्रभावित हो गई हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन जल की तीनों राशियों में ग्रह आ गए हैं। अष्टम भाव में केतु विद्यमान हैं और संघट राशि चक्र में केतु का संबंध मंगल से और चंद्रमा का संबंध शनि से बन रहा है। राशि परिवर्तन के समय जल की तमाम राशियां प्रभावित हो गई हैं, इसीलिए ये समय प्राकृतिक आपदाओं का हो सकता है। प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। दुनिया के अलग अलग जगह पर तनाव बढ़ सकता है, जैसे रशिया यूक्रेन का तनाव है, अमेरिका ईरान का तनाव है। उसके अलावा कुछ और जगहों पर, अन्य जगहों पर भी तनाव बढ़ सकता है। उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट के इलाके और बंगाल के इलाके अशांत हो सकते हैं। यहां पर बेवजह के उपद्रव और अशांति फैल सकती है। भारत में आंतरिक अशांति फैल सकती है। बेवजह के विवाद भारत में दिख सकते हैं। इस समय जो बड़े पदों पर महिलाएं हैं, जो बड़े स्थान पर महिलाएं हैं, उनको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य और अपनी सुरक्षा का ध्यान देना होगा। 12 नवंबर के पहले तक का समय महिलाओं के लिए ज्यादा नकारात्मक हो सकता है। देखिए, मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव देश दुनिया के लिए बहुत अच्छी सूचना नहीं दे रहा है देश दुनिया के लिए समस्याओं की संभावना दिखा रहा है। अब ये जानते हैं कि मंगल के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए मंगल का राशि परिवर्तन बहुत तेजी से अपना प्रभाव दिखाएगा। वृषभ, कन्या, तुला और कुंभ राशि के लिए ये परिवर्तन अच्छा दिख रहा है। वृष, कन्या, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा है। इनके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे और इनको जीवन में सफलता मिलेगी। लेकिन इन राशि वालों को भी जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए, क्योंकि जल्दी का निर्णय इनको मुश्किल में डाल सकता है। मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के लिए ये परिवर्तन अच्छा नहीं है। इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और करियर में किसी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। इस समय दुर्घटनाओं से और चोट चपेट से आपको बचना चाहिए। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन सबसे ज्यादा निगेटिव है। तो मेष, सिंह और धनु राशि वाले अपने पारिवारिक जीवन और अपने कारोबार का ध्यान रखेंगे। दुर्घटना हो सकती है, कोई सर्जरी हो सकती है, बेवजह की मुकदमेबाजी की नौबत आ सकती है। तो वैसे कुल मिलाकर मंगल का राशि परिवर्तन अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव दिखा रहा है, लेकिन मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए ये परिवर्तन ज्यादा निगेटिव है। अब देखिए मंगल का राशि परिवर्तन केवल चार राशियों के लिए अच्छा है, बाकी राशियों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है। तो जिनके लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? ये जो राशि परिवर्तन है ये आठ राशियों के लिए अच्छा नहीं है, और उसमें भी मेष, सिंह और धनु राशि के लिए ये परिवर्तन ज्यादा प्रतिकूल है, ज्यादा निगेटिव है। तो जिनके लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है ऐसे लोग इस समय रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करें, सुबह और शाम एक एक बार कार्तिकेय स्तोत्र का पाठ करें या भगवान कार्तिकेय के द्वादश नामों का उच्चारण करें। संभव हो इस समय तो नियमित रूप से गुड़ का दान करें या गाय को गुड़ खिलाएं। लाल रंग के कपड़े, जूते, पर्स, लाल रंग की वस्तुओं से इस समय परहेज करेंगे। अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं, कर्ज लगातार आपके ऊपर बना रहता है, तो गुड़ मिला हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ाइए रोज सुबह और शिव जी से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करिए। साथ में कर्ज मुक्ति के लिए अपना प्रयास भी करिए। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो कर्ज चुका पाना आपके लिए आसान होगा। कि अगर पूजा उपासना करते समय मन में अशुद्ध या बुरे विचार आते हों तो क्या करेंगे? स्नान करके या अच्छी तरह हाथ पैर धोकर पूजा करिएगा। पूजा करने के पहले भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपको शुद्ध मन दें। इसके बाद पूजा आरंभ करें। पूजा आपकी पवित्रता से और अच्छे मन से पूरी हो जाएगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
2: चीनी हथियार के खरीदार बेबस और लाचार। चीन के चमत्कारी हथियार जंग में क्यों हो रहे बेकार? चीन के तिलिस्मी हथियारों की पोल खोल देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
3: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
4: देश भर में राधा अष्टमी की धूम, बरसाना के राधा रानी मंदिर में मनाया जा रहा है भव्य जन्मोत्सव। पंचामृत और विभिन्न औषधीय जल से हुआ राधा रानी का महाअभिषेक। गणेशोत्सव का छठा दिन, बप्पा के अनोखे पंडाल बढ़ा रहे उत्सव की रौनक। विघ्नहर्ता के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। दिल्ली में सजा कला का अनोखा संसार, कला कनेक्ट में देश भर से पहुंचे 150 से ज्यादा कलाकार। मेरठ में पहली बार आज भव्य एयर शो का आयोजन, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम करेगी प्रदर्शन। 9 हॉक MK-132 विमान दिखाएंगे रोमांचक करतब। पीएम मोदी आज 51,000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। देश भर में 45 जगहों पर 20वें रोजगार मेले का आयोजन होगा। हांगकांग में मिड ऑटम लालटेन कार्निवल का शुभारंभ हुआ। 20 देशों के 3,000 से ज्यादा लालटेन बने आकर्षण। जापान की आईची नागोया में आज 20वें एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी। भारतीय शूटर मनु भाकर और शॉटपुट एथलीट तेजिंदर पाल तूर थामेंगे तिरंगा। 4 अक्टूबर तक चलेगा टूर्नामेंट।
3: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
5: सोना खरीदना हो या बेचना हो, हमारा जॉय आलोकास द बेस्ट है।
4: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका
0: जी। नमस्कार।
4: तो आज के इस खास शो में हम बात करने जा रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन की। मंगल ने राशि परिवर्तन कर लिया है और इसका देश और दुनिया पर और तमाम राशियों पर क्या कुछ असर पड़ने जा रहा है, इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे। क्या कुछ समाधान हो सकते हैं ये भी पंडित जी बताएंगे इस शो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अभी जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
0: अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं, कर्ज लगातार आपके ऊपर बना रहता है, तो गुड़ मिला हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ाइए रोज सुबह और शिव जी से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करिए। साथ में कर्ज मुक्ति के लिए अपना प्रयास भी करिए। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो कर्ज चुका पाना आपके लिए आसान होगा।
4: तो चलिए शुरुआत करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं 19 सितंबर 2026 यानी कि शनिवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 19 सितंबर 2026 दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर 3:26 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
4: और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है, इससे पहले कि जाने कि इसका क्या कुछ प्रभाव होगा, सबसे पहले पंडित जी से ये जान लेंगे कि मंगल के राशि परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या होती है।
0: जी, हम आज बात कर रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल के राशि परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या है? देखिए, मंगल अभी तक मिथुन राशि में विद्यमान थे, अब मंगल 18 सितंबर को दोपहर बाद कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कर्क राशि मंगल की सबसे कमजोर राशि मानी जाती है, इसीलिए मंगल की ये स्थिति सबसे ज्यादा कमजोर हो गई है। और मंगल की ये कमजोर स्थिति 12 नवंबर तक बनी रहेगी। इस स्थिति में मंगल बहुत सारी समस्याओं को जन्म देंगे। मंगल का ये राशि परिवर्तन ज्यादातर नकारात्मक, ज्यादातर निगेटिव दिखाई दे रहा है।
4: तो चलिए सबसे पहले पंडित जी से जान लेंगे मेष वृषभ और मिथुन राशि वाले दैनिक राशि फल के बारे में।
0: मेष राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में विवादों से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, हालांकि परिवार का सहयोग मिलेगा। शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, करियर की समस्या हल होगी, अतिथि का आगमन होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: तो चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से कि मंगल के राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर क्या कुछ असर पड़ने जा रहा है।
0: देखिए, मंगल का ये राशि परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है और मंगल के इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर बड़ा असर पड़ेगा। क्या हो सकता है? देखिए, मंगल जिस समय राशि परिवर्तन किए उसके बाद मंगल गुरु के साथ हो गए हैं। मंगल और बृहस्पति दोनों कर्क राशि में आ गए हैं। जल की तीनों राशियां प्रभावित हो गई हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। जल की तीनों राशियों में ग्रह आ गए हैं। अष्टम भाव में केतु विद्यमान है और संघट राशि चक्र में केतु का संबंध मंगल से और चंद्रमा का संबंध शनि से बन रहा है। राशि परिवर्तन के समय जल की तमाम राशियां प्रभावित हो गई हैं, इसीलिए ये समय प्राकृतिक आपदाओं का हो सकता है, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। दुनिया के अलग अलग जगह पर तनाव बढ़ सकता है, जैसे रशिया यूक्रेन का तनाव है, अमेरिका ईरान का तनाव है, उसके अलावा कुछ और जगहों पर, अन्य जगहों पर भी तनाव बढ़ सकता है। उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट के इलाके और बंगाल के इलाके अशांत हो सकते हैं, यहां पर बेवजह के उपद्रव और अशांति फैल सकती है। भारत में आंतरिक अशांति फैल सकती है, बेवजह के विवाद भारत में दिख सकते हैं। इस समय जो बड़े पदों पर महिलाएं हैं, जो बड़े स्थान पर महिलाएं हैं, उनको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य और अपनी सुरक्षा का ध्यान देना होगा। 12 नवंबर के पहले तक का समय महिलाओं के लिए ज्यादा नकारात्मक हो सकता है।
4: और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले लोगों के दैनिक राशिफल के बारे में।
0: कर्क राशि, पारिवारिक उलझनें आपकी इस समय सुलझ जाएंगी, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, समस्याएं बढ़ सकती हैं, धन का नुकसान हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएं, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
4: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का। पंडित जी, पहला सवाल आप किसका लेने वाले हैं?
0: जी, आज का पहला प्रश्न समीक्षा ने लिखा है, हमें नागपुर से लिखती हैं। 24 जुलाई 2005 का जन्म है, 3:30 AM नागपुर, महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है और दवाई से भी किसी तरह का लाभ नहीं हो पा रहा है, मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा? समीक्षा, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और कुंभ राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतर दशा सूर्य की चल रही है। सबसे पहले बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपको पेट की और मानसिक समस्या है, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें हो रही हैं। आपका स्वास्थ्य अभी जून 2027 तक बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, इसके बाद से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
4: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से ये जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल किसका रहेगा।
0: जी, अगला प्रश्न दीपांशी ने हमें लिखा है, मेरठ से लिखती हैं। 8 नवंबर 2009 का जन्म है, 5 बजे शाम को, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मुझे किस क्षेत्र में पढ़ाई करके अपना करियर बनाना चाहिए और मेरा विवाह कब होगा, कैसा रहेगा। दीपांशी, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और कर्क राशि की, महादशा बुध की और अंतरदशा केतु की चल रही है। देखिए, मेरे हिसाब से या तो बीएड करके टीचिंग जॉब में जाइए या मैनेजमेंट की पढ़ाई करके अगर आप बैंकिंग के क्षेत्र में जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अभी आपकी उम्र कुल मिला के 17 साल हुई है

0: अपने बालक के साथ। लेकिन जब भी विवाह का निर्णय लीजिएगा, सोच समझकर विवाह का निर्णय लेना बेहतर होगा। एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें, सुबह के समय सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब जान लेंगे कि मंगल की राशि परिवर्तन का आपकी तमाम राशियों पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है।
0: देखिए, मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव देश दुनिया के लिए बहुत अच्छी सूचना नहीं दे रहा है। देश दुनिया के लिए समस्याओं की संभावना दिखा रहा है। अब ये जानते हैं कि मंगल के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मंगल का राशि परिवर्तन बहुत तेजी से अपना प्रभाव दिखाएगा। वृषभ, कन्या, तुला और कुंभ राशि के लिए ये परिवर्तन अच्छा दिख रहा है। वृष, कन्या, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा है। इनके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे और इनको जीवन में सफलता मिलेगी। लेकिन इन राशि वालों को भी जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए, क्योंकि जल्दी का निर्णय इनको मुश्किल में डाल सकता है। मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के लिए ये परिवर्तन अच्छा नहीं है। इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और करियर में किसी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। इस समय दुर्घटनाओं से और चोट चपेट से आपको बचना चाहिए। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन सबसे ज्यादा निगेटिव है। तो मेष, सिंह और धनु राशि वाले अपने पारिवारिक जीवन और अपने कारोबार का ध्यान रखेंगे। दुर्घटना हो सकती है, कोई सर्जरी हो सकती है, बेवजह की मुकदमेबाजी की नौबत आ सकती है। तो वैसे कुल मिलाकर मंगल का राशि परिवर्तन अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव दिखा रहा है, लेकिन मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए ये परिवर्तन ज्यादा निगेटिव है।
1: और आगे बढ़ने से पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जानने का वक्त है।
0: तुला राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, खान पान में सावधानी रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना

0: में सुधार होगा, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो मंगल की राशि परिवर्तन का क्या कुछ असर पड़ने वाला है देश दुनिया पर, क्या कुछ असर पड़ने वाला है आपकी राशियों पर, ये तो हमने जान लिया। अब वक्त हो चला है ये जानने का कि राशि परिवर्तन अनुकूल अगर नहीं है तो क्या कुछ उपाय करने चाहिए।
0: अब देखिए, मंगल का राशि परिवर्तन केवल 4 राशियों के लिए अच्छा है, बाकी राशियों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है।

0: कूल है, ज्यादा निगेटिव है। तो जिनके लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है, ऐसे लोग इस समय रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करें, सुबह और शाम एक एक बार कार्तिकेय स्तोत्र का पाठ करें या भगवान कार्तिकेय के द्वादश नामों का उच्चारण करें। संभव हो इस समय तो नियमित रूप से गुड़ का दान करें या गाय को गुड़ खिलाएं। लाल रंग के कपड़े, जूते, पर्स, लाल रंग की वस्तुओं से इस समय परहेज करेंगे।
1: और अब जान लेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, परिवार में अशांति से बचें, धन की हानि हो सकती है, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आपका तीसरा सवाल ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप भी अगर पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर हमारी मेल आईडी दी गई है, उस पर मेल कीजिए, पंडित जी तक अपना प्रश्न पहुंचा सकते हैं। अब आगे बढ़ें, पंडित जी से जान लेते हैं, पंडित जी आज का तीसरा सवाल आप किसका लेंगे?
0: जी अगला प्रश्न डॉक्टर अर्चना शर्मा ने हमें लिखा है, नागपुर से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 30 जून 2000, 12:25 दोपहर में, नागपुर, महाराष्ट्र। ये पूछ रही हैं मेरे पुत्र का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अर्चना जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है कन्या लग्न की और वृषभ राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। अभी आपके पुत्र की कुल उम्र 26 वर्ष हुई है, लगभग 28 साल पूरा करने के बाद 2028 के अंत में या 29 के आरंभ

0: इनके विवाह होने का योग बन रहा है। जब भी विवाह किया जाए कुंडली मिला करके विवाह का निर्णय सोच समझकर लिया जाए तो बेहतर होगा। किसी नौकरी करने वाली लड़की से विवाह होगा और अगर कुंडली मिलाकर सोच समझकर निर्णय लिया जाए तो वैवाहिक जीवन बेहतर रहेगा। एक इनको ओपल बनवा के पहना दीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाएं, सुबह और शाम दोनों समय इनको नमः शिवाय का 108 बार जप करने को कहें, अच्छा होगा।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पंडित जी से ये जान लेते हैं कि चौथा सवाल पंडित जी किसका लेने वाले हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न शिवराम जी ने हमें लिखा है, रांची से लिखते हैं। 25 मार्च 1973 का जन्म है, 11:10 प्रातः, धनबाद झारखंड। ये कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है और बेवजह की चिंताएं मुझे होती रहती हैं। मैं क्या करूं कि मेरा स्वास्थ्य और मेरा मन बेहतर हो। शिवराम जी, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और वृश्चिक राशि की, महादशा मंगल की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। फरवरी 2027 तक अभी आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। फरवरी 2027 तक आपकी कुंडली में स्वास्थ्य की दिक्कतें दिख रही हैं, इसके बाद स्थितियां बेहतर होंगी। हड्डियों की समस्या, पेट की दिक्कत और मस्कुलर प्रॉब्लम, मसल्स से संबंधित समस्या की संभावना बन रही है। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, सुबह के समय मंगल मंत्र का जप करें, ओम अंग अंगारकाय नमः, और हर मंगलवार को गुड़ का दान करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: और चलिए बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन 19 सितंबर को है। आप सभी को सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। पंडित जी से आपके लिए जान लेते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 19 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की स्थिति में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी, दूर स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सूर्य देव के मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो चला है आज की जिज्ञासा क्या है इस बारे में जान लेने का।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या शिवलिंग के खंडित हो जाने के बावजूद भी उसकी पूजा की जा सकती है। देखिए, शिवलिंग शिव जी का निराकार स्वरूप है, इसके खंडित होने पर भी इसकी ऊर्जा पर असर नहीं पड़ता। इसीलिए शिवलिंग के खंडित होने के बावजूद भी इसकी पूजा की जा सकती है।
1: और चलिए आप पंडित जी से जान लेंगे कि 19 सितंबर 2026 यानी कि शनिवार का शुभ पहर क्या होगा।
0: दिनांक 19 सितंबर 2026 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में जितना संभव हो मंत्र का जप करिएगा। शिव जी का मंत्र जपें तो और भी बेहतर होगा। आपके स्वास्थ्य और रोजगार की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 19 सितंबर शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और चलिए आगे बढ़ें और अब वक्त हो चला है पंडित जी से ये जान लेने का कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को पूजा में किस चीज का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आज की गुडलक राशि है वृषभ राशि। आपको पूजा में नियमित रूप से जल का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य और मन अच्छा रहेगा।
1: चलिए अब पंडित जी से ये जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है जिसे करके आप अपने जीवन की तमाम बाधाओं को दूर कर सकते हैं।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर पूजा उपासना करते समय मन में अशुद्ध या बुरे विचार आते हों तो क्या करेंगे। स्नान करके या अच्छी तरह हाथ पैर धोकर पूजा करिएगा। पूजा करने के पहले भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपको शुद्ध मन दें। इसके बाद पूजा आरंभ करें। पूजा आपकी पवित्रता से और अच्छे मन से पूरी हो जाएगी।
1: तो पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी गणपति पधारे और हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों के घर पर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे और हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बनिए और आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाइए और हमारे साथ शेयर कीजिए। हम उन वीडियोज को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियो या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटो भेजें तो साथ में अपना नाम और अपने शहर, गांव और कस्बे का नाम जरूर लिखें।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: मंगल के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? मंगल का राशि परिवर्तन किस राशि के लिए अनुकूल होगा? क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: श्री कृष्ण प्रिय राधा रानी जी की जन्मस्थली बरसाना में आज राधा अष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। राधा रानी जी के प्राकट्य उत्सव के अवसर पर आज तड़के 5 बजे ही उनका विशेष महाभिषेक किया गया। जन्मोत्सव में राधा रानी की पीली पोशाक धारण कराई गई और इस बार राधा रानी का 5254वां जन्मदिन है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के 15 दिन के बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी बरसाना के ब्रह्मांचल पर्वत पर स्थित मंदिर में प्रमुख आयोजन होता है और वृंदावन में भी राधा रानी के जन्म उत्सव की धूम रहती है। वहीं राधा रानी के गांव बरसाना में इस अवसर पर खास सजावट की गई है। हजारों श्रद्धालु इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बरसाना पहुंचे हैं। बरसाना में स्थित राधा रानी मंदिर में सभी श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो सके इसके लिए व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। गणेश उत्सव का छठा दिन है। मुंबई समेत तमाम शहरों में बने भव्य गणपति पंडालों में गणपति जी की आराधना जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गजानन के दर्शन के लिए पहुंच भी रहे हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के मशहूर लाल बाग चौराजा के पंडाल की तस्वीरें, जहां तड़के से ही श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई हैं लाल बाग चौराजा के दर्शन के लिए। गणेश उत्सव के दौरान मुंबई और देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहां स्थापित भगवान श्री गणेश की मूर्ति को मन्नतों का राजा कहा जाता है, जिनके दर्शन के लिए गणेश उत्सव के दौरान लाखों करोड़ों भक्त आते हैं। आम लोगों के साथ साथ तमाम सेलिब्रिटीज और हस्तियां भी लाल बाग चौराजा के दर्शन के लिए पहुंच रही हैं। मुंबई में चल रहे गणेश उत्सव के बीच बप्पा की विदाई की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। गणपति उत्सव के पांचवें दिन यानी कल मुंबई के जेएसबी गणेश मंडल की गणपति को भावभीनी विदाई दी गई। कल शाम को पंडाल से जेएसबी के गणपति की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जेएसबी मंडल का गणपति उत्सव मुंबई में माटुंगा के किंग्स सर्कल में आयोजित किया जाता है। जेएसबी सेवा मंडल के गणेश जी को देश का सबसे अमीर गणपति कहा जाता है। इस साल प्रतिमा को 66 किलोग्राम से ज्यादा सोने और सैकड़ों किलोग्राम चांदी के आभूषणों से सजाया गया था। इस साल बप्पा की सुरक्षा और भव्यता को देखते हुए 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का बीमा भी कराया गया था। गणेशोत्सव के पांचवें दिन बप्पा को धूमधाम से विदाई दी गई। किंग सर्कल से शुरू होकर यह ऐतिहासिक विसर्जन यात्रा दक्षिण मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर जाकर समाप्त हुई, जहां बप्पा को अब अक्षपूर्ण और भावुक विदाई दी गई है। मुंबई के मशहूर लाल बाग के राजा की झलक अब काशी में भी देखने को मिल रही है। शिव की नगरी में बप्पा का भव्य दरबार सजा है। फूलों से सजे इस पंडाल में आस्था और भव्यता का अद्भुत संगम दिख रहा है। काशी में लाल बाग के दर्शन और आशीर्वाद के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पिछले 18 सालों से लगातार काशी में लाल बाग के राजा की मूर्ति स्थापित की जा रही है उनके जैसी, और इस आयोजन में महाराष्ट्र की गणेशोत्सव परंपरा की झलक भी दिखाई देती है।
9: शिव की नगरी काशी इन दिनों बापा की भक्ति के रंग में रंगी हुई है। यहाँ गणपति के भव्य दिव्य रंग बिरंगे पंडाल सजे हैं। फूलों की खुशबू से पूरा माहौल महक रहा है। शिव की काशी में लाल बाग के राजा का दरबार भी सजा है, जहाँ बापा की एक झलक पाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है।
10: पिता शिव की नगरी में पुत्र गणेश के दर्शन पूजन की महत्ता कई गुना बढ़ जाती है गणेश उत्सव पर्व के दौरान, और अगर आशीर्वाद मिले लाल बाग के राजा का तो गणेश भक्त खुद को कैसे पीछे रख सकते हैं।
9: मुंबई के लाल बाग के राजा की तर्ज पर सजे इस भव्य दरबार में आस्था भी है, भव्यता भी है और बापा के स्वागत का खास अंदाज भी।
10: देख सकते हैं हूबहू ये पूरी जो रिप्लिका है ये लाल बाग के राजा की होती है, और माना जाता है आस्थावानों में ऐसी मान्यता है कि जो पुण्य लाल बाग के राजा के दर्शन से मिलता है तो वो पुण्य इनके यहाँ काशी में लाल बाग के राजा के दर्शन से भी मिलता है। यही कारण है तमाम जो गणेश भक्त हैं वे यहाँ आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं।
9: इस उत्सव की खास बात यह है कि यहाँ लाल बाग के राजा की हूबहू प्रतिमा स्थापित की गई है, जिनके सिर पर सुंदर मुकुट सजा है, चमकदार आभूषणों से भव्य श्रृंगार हुआ है।
11: हम लोग यहाँ शिवपुर से आए हैं यहाँ दर्शन करने, लाल बाग के राजा का नाम सुनकर बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके।
9: काशी में लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए वाराणसी के अलावा आसपास के शहरों से भी लोग पहुंच रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी शामिल हैं।
12: यहाँ दर्शन के निमित्त जो है हम आते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं कि बाबा लाल बाग के रास्ते हैं, और काशी में ये चीज़ शुरू हो गई तो ये बहुत सुंदर है क्योंकि पिता का स्थान है, वहाँ पुत्र यहाँ विराज रहे हैं।
9: पिछले 18 सालों से लगातार काशी में लाल बाग के राजा की प्रतिमूर्ति स्थापित की जा रही है। श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति की ओर से होने वाले इस आयोजन में महाराष्ट्र की गणेशोत्सव परंपरा की झलक देखने को मिलती है।
13: ये लाल बाग के राजा की प्रतिमूर्ति है, ये भी बॉम्बे से ही आई है और उधर से ही बन के आई है। 5 दिवसीय कार्यक्रम होता है, हर रोज अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, कभी मेहंदी प्रतियोगिता, कभी बच्चों का ड्राइंग का, फिर बाद में डांस कॉम्पिटिशन, उसके बाद जागरण, भंडारा।
9: लालबाग के राजा के इस दरबार में आस्था के साथ काशी की भक्ति का भी अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के भिलाई, जहां पर न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति ने इस बार भी श्रद्धालुओं के लिए शानदार गणपति पंडाल बनाया है। इस बार समिति ने गणेश पंडाल मन्नत मंदिर तारापीठ बंगाल की थीम पर तैयार किया है। पंडाल में भगवान गणेश की 21 फीट बड़ी मूर्ति के दर्शन से पहले श्रद्धालुओं को माता तारा के चरणों में दर्शन करने के लिए अवसर मिलता है। और खास बात यह है कि आस्था के साथ साथ इस बार पंडाल में प्रकृति और पक्षियों की झलक भी देखने को मिल रही है, और वो भी इको फ्रेंडली अंदाज में।

0: भिलाई के सेक्टर 2 में रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा ये भव्य गणपति पंडाल इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि इसकी भव्यता और खूबसूरती ही नहीं बल्कि इसकी अनोखी थीम भी लोगों को खासा पसंद आ रही है। इस पंडाल को न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति ने तैयार किया है, जो हर साल कुछ नया करने के लिए जानी जाती है। इस बार समिति ने गणेश पंडाल को मन्नत मंदिर तारापीठ बंगाल की थीम पर तैयार किया है। करीब 140 फीट लंबे और 60 फीट चौड़े इस विशाल पंडाल में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को सबसे पहले माता तारा के चरणों के दर्शन करने का लाभ मिलता है। फिर भक्त आगे बढ़कर भगवान गणेश की 21 फीट बड़ी मूर्ति के दर्शन करते हैं।
1: टू जो गणेश पंडाल है वो एक आधुनिक है, वो पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ न कुछ थीम हर वर्ष करते हैं, और इन्होंने इस वक्त साल रखा है पश्चिम बंगाल का तारापीठ माँ का रखा है, और द्वार में जैसे घुसते ही उनका चरण और पूजा पाठ का रखा है, और यहाँ तक चुनरी और नारियल का रखा है।
0: पंडाल की सबसे बड़ी खूबी तो इसकी सजावट ही है। समिति ने इस बार पंडाल को प्रकृति और पक्षियों की थीम से भी जोड़ा है, लिहाजा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से बचते हुए प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल इसे सजाने के लिए किया गया है। पंडाल में पेड़ के सूखे पत्ते, पेड़ों की छाल, विशेष प्रकार के बांस, मिट्टी की मटकियां, सूखे तालपत्र, बेल, फल के खोल और सूखे कमल जैसी चीजों से ये शानदार सजावट की गई है। पंडाल के अंदर पहुंचने पर लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे वो किसी खूबसूरत प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा बन गए हों।
2: देख सकते हैं कि इस वर्ष समिति द्वारा 500 घोंसलों का निर्माण भी किया गया है। जैसे आप देख सकते हो कि ताड़ पत्तों से इसको बनाया गया है, अंदर मटकों का उपयोग किया गया है। इससे सोसाइटी को एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है, और भिलाई विगत वर्षों से ही इस चीज़ में बहुत आतुर अपना सेवा दे रहा है कि इतने अच्छे पंडालों का आयोजन हो रहा है, मतलब हमको भी मजा आता है।
0: पंडाल को तैयार करने के लिए कोलकाता से आई करीब 50 कारीगरों की टीम ने दिन रात काम किया है, तब जाकर ये भव्य और खूबसूरत पंडाल बना है, जिसे लोग खासा पसंद भी कर रहे हैं। समिति से जुड़े लोग कहते हैं कि इस बार गणेशोत्सव पर श्रद्धालुओं को सिर्फ भगवान गणेश के दर्शन ही नहीं बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक और प्राकृतिक अनुभव मिले जिसे वो लंबे समय तक याद रखें, इसलिए ये थीम चुनी गई।
3: इनका 42वां वर्ष है और समिति हर वर्ष कुछ नया करने का सोचता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर सारे हिंदुस्तान के सारे तीर्थ स्थल बन चुके हैं। अब समिति विगत 4 वर्षों से थीम पे मतलब काम करना शुरू किया, ताकि पूजा के साथ साथ लोगों में एक हमको देश बचाना है तो हमको पर्यावरण बचाने के थीम पे काम कर रहा है। कारीगर पूरे वेस्ट बंगाल के कारीगर आए थे, इसमें 50 कारीगर आए थे बंगाल के और कुछ आए जबलपुर के आए थे, और विगत 3 माह से ये काम चल रहा है, क्योंकि अंदर का वर्क पूरा कलकत्ता से सामान आया है पूरा, जो पत्ता जो वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है आप देखेंगे लोग जो फेंक देते हैं उसी को ठीक करके मतलब पूरा पंडाल उससे बना हुआ है।
0: धार्मिक आस्था, प्राकृतिक सौंदर्य और पारंपरिक कला को एक साथ जोड़ने की ये कोशिश इस बार के गणेशोत्सव को न सिर्फ खास बना दे रही है बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी बयां कर रही है। भिलाई से रघुनंदन पंडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: मुंबई में गणपति उत्सव का रंग हर जगह अलग अलग अंदाज में नजर आ रहा है। कहीं भव्य पंडाल आकर्षण का केंद्र बने हैं तो कहीं बापा के स्वागत का अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है, और ऐसा ही एक अनोखा दरबार मुंबई में सजा है। यहां गणपति बप्पा ऑटो रिक्शा में विराजमान हैं। असल में इस ऑटो की कहानी सिर्फ बप्पा की भक्ति से नहीं जुड़ी, एक बेटे के अपने पिता के प्रति सम्मान और प्यार से भी जुड़ी है। ऑटो चलाकर परिवार की जिम्मेदारियां उठाने वाले पिता को उनके बेटे ने सम्मान दिया है।

0: मुंबई की सड़कों पर दौड़ने वाला ऑटो रिक्शा बप्पा का दरबार बन गया है। गणपति उत्सव में एक परिवार ने ऑटो की तरह दिखने वाला गणपति पंडाल बनाया है और इसमें बप्पा की प्रतिमा को विराजमान किया है। बप्पा का यह अनोखा दरबार सिर्फ आकर्षण का केंद्र नहीं है, इसके पीछे एक पिता की मेहनत, संघर्ष और उनकी यादों को समर्पित भावुक कहानी भी है। मुंबई में रहने वाले राहुल ने अपने पिता के पेशे और जीवन में उनके संघर्ष से प्रभावित होकर ऑटो रिक्शा मॉडल बनाया। इसमें भगवान गणपति की स्थापना की, साथ में अपने पिता का कटआउट भी लगाया।
1: 2021 में जैसे हम लोग ने मुंबई लोकल ट्रेन बनाया था मिनिएचर कॉन्सेप्ट में, फिर उसके बाद हर साल के जैसे मुंबई लोकल हुआ, बस ट्राम हुआ, फिर BST हो गया, अलग अलग कॉन्सेप्ट जो मुंबई के ट्रांसपोर्ट होते हैं वो यूटिलाइज करके हम लोग गणपति को फेस्टिवल को कनेक्ट करते हैं। तो ये साल मुझे कॉन्सेप्ट था कि ये साल मुझे डेकोरेशन मेरे डैडी को डेडिकेट करना है, तो मुंबई का जो रिक्शा है तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि ये साल बापा को मैं मुंबई रिक्शा में बैठाता हूँ, तो एक यूनिक कॉन्सेप्ट उसमें बन सकता है।
0: बेटे ने अपने ऑटो ड्राइवर पिता के पेशे को सम्मान दिया, ऑटो में बप्पा की मूर्ति की स्थापना की। अब इस बेटे की कोशिश खूब सराही जा रही है।
2: यही खुशी है मेरे को आज, क्या यह हमारा बेटा इतना आगे आ गया, बस इससे बड़ा और कुछ नहीं, ये सब बप्पा की मेहरबानी।
0: बप्पा का ये पंडाल न केवल गणपति स्थापना की अनोखी मिसाल पेश कर रहा है, बल्कि पिता पुत्र के बीच मजबूत रिश्ते की इमोशनल कहानी भी बयां कर रहा है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और सुर्खियां बटोर रहे हैं। इनमें कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ भावुक भी कर जाएंगे।
4: कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। बापा की विदाई के लिए जाते नन्हे बच्चों को देखिए, जिनके चेहरे पर उदासी के बजाय प्यार और अपनापन नजर आ रहा है। बच्चे बापा को प्यार से चूमते और निहारते हुए विदाई दे रहे हैं। उनके मासूम चेहरे और सच्ची भावनाएं हर किसी का दिल छू रही हैं। शायद यही भक्ति की सबसे खूबसूरत तस्वीर है, जहां उम्र छोटी है लेकिन आस्था और प्रेम बेहद गहरा है। पिता का प्यार और जिम्मेदारी कितनी खूबसूरत हो सकती है, ये वीडियो देखकर समझा जा सकता है। पिता ने अपने बच्चे को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा, पीठ पर टोकरी बांध कर उसमें बच्चे को सुरक्षित खड़ा किया और साथ साथ घर के काम भी करते रहे। उनके लिए बच्चे की देखभाल सबसे जरूरी है। पिता का ये अंदाज भले ही साधारण नजर आए, लेकिन इसमें अपने बच्चे के प्रति अपार प्यार, जिम्मेदारी और सुरक्षा की भावना साफ दिखाई देती है। बच्चों की मासूमियत ही उनके हर छोटे से काम को खास बना देती है। इस वीडियो में बच्चा प्लेट में रखी चीज को मोबाइल फोन समझ बैठता है, जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ती है वो तुरंत उसे उठाकर कान से लगा लेता है। बच्चे की ये मासूम हरकत देखकर आसपास मौजूद लोग भी मुस्कुराने लगते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस प्यारे से पल को देखकर लोग खूब खुश हो रहे हैं। बचपन की ऐसी छोटी छोटी शरारतें हमेशा यादों में बस जाती हैं। आखिरी T20I मैच के बाद स्टैंड्स में एक अफगानिस्तान फैन का अलग ही अंदाज देखने को मिला। मैच खत्म होने के बाद जहां ज्यादातर लोग अपने अपने घर लौट गए, वहीं ये फैन दर्शकों द्वारा छोड़े गए कचरे को साफ करता नजर आया। खास बात ये रही कि वहां कोई कैमरा या दिखावे की कोशिश नहीं थी, उसने बस अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सफाई की। इस छोटे से काम ने लोगों का दिल जीत लिया और सोशल मीडिया पर उसकी खूब तारीफ हो रही है। चीन के इस टीचर का बच्चों को डांस सिखाने का अंदाज वाकई देखने लायक है। वो बच्चों को सिर्फ डांस स्टेप्स नहीं सिखा रही, बल्कि हर मूवमेंट के साथ भावनाओं को भी समझा रही है। उनके एक्सप्रेशन, धैर्य और बच्चों के साथ तालमेल ने इस पूरे वीडियो को खास बना दिया है। बच्चों को इतने प्यार और खूबसूरती से डांस सिखाते देख कर लोग भी हैरान हैं। सच कहा जाए तो डांस सिखाना सिर्फ एक हुनर नहीं, बल्कि बच्चों की भावनाओं को समझने की भी कला है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, मंगल का राशि परिवर्तन किस राशि के लिए अनुकूल होगा, क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
4: राधा अष्टमी के मौके पर बरसाने में आस्था और उल्लास का संगम देखने को मिला। गलियों में सुनाई दे रही है बधाई और मंगल गीतों की गूंज। भव्य रूप से मनाया जा रहा है श्री राधा रानी का जन्मोत्सव। गणेशोत्सव का छठा दिन, बप्पा के अनोखे पंडाल बढ़ा रहे हैं उत्सव की रौनक। विघ्नहर्ता के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। पुणे के दगदूशेठ गणपति पंडाल में उमड़ा आस्था का सैलाब। बप्पा को अर्पित किया गया 251 किलो के मोदक केक। गजानन की उतारी गई आरती। मुंबई की सबसे अमीर जीएसबी गणपति को दी गई भव्य विदाई। किंग सर्कल से गिरगांव चौपाटी तक निकाली गई शोभा यात्रा। श्रद्धालुओं ने की अगले साल जल्द आने की प्रार्थना। तुतुकुड़ी में पुरातासी शनिवार पर श्री वैकुंठपति पेरुमल मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान। भगवान विष्णु और देवियों की उतारी गई विशेष आरती। श्रद्धालुओं ने भी किए दर्शन पूजन। दिल्ली में सजा कला का अनोखा संसार। कला कनेक्ट में देश भर के पहुंचे 150 से ज्यादा कलाकार। जापान के आईची नागोया में आज 20वीं एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी। भारतीय शूटर मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत थामेंगे तिरंगा। 4 अक्टूबर तक चलेगा टूर्नामेंट।
1: पावर्ड बाय गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
4: कृष्ण नगरी मथुरा की बरसाना में भव्य दिव्य राधा अष्टमी की धूम। राधा अष्टमी पर्व पर राधा रानी मंदिर की रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से भव्य सजावट। मां राधा रानी के जन्मोत्सव के रंग में डूबी मथुरा। आधी रात में जन्मोत्सव शुरू हुआ। ब्रह्म मुहूर्त में राधा रानी का पंचामृत और अलग अलग औषधीय जल से महाअभिषेक किया गया। बरसाना में राधा रानी का भव्य जन्मोत्सव मनाया गया। राधा रानी मंदिर में दर्शन के लिए उमड़े भक्त। देश भर से 25 लाख श्रद्धालुओं के बरसाना पहुंचने का अनुमान। राधा रानी के जन्मोत्सव पर भक्तिमय माहौल में डूबा बरसाना। मंदिर परिसर में चारों ओर राधे राधे की गूंज। जन्मोत्सव पर मंदिर में बधाई गीत और गायन। विशेष पोशाक और आभूषणों से सजा राधा रानी का दरबार। बीसवीं एशियाई खेलों का रंगारंग उद्घाटन। आज जापान के आईची नागोया में होगा भव्य समारोह। मिजुहो स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 से शुरू होगा आयोजन। 4 अक्टूबर तक चलेगा प्रतियोगिता का आयोजन। भारतीय शूटर मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत थामेंगे तिरंगा। गेम्स में 45 देश और रीजन 43 खेलों में करेंगे मुकाबला। एशियन गेम्स एशिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता। हर साल 4 साल में एक बार होता है इसका आयोजन। एशियन गेम्स में 75 से ज्यादा भारतीय एथलीट शामिल। तेजिंदर पाल सिंह तूर शॉटपुट में 2 बार की डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर पेश करेंगे दावेदारी। विघ्नहर्ता गजानन के महाउत्सव का छठा दिन। देश भर में विधि विधान से बप्पा की पूजा अर्चना जारी। अलग अलग स्वरूपों में गजानन दे रहे हैं भक्तों को दर्शन, अलग अलग थीमों पर बनाए गए पंडाल। सूरत के महेदरपुरा इलाके में गणेशोत्सव का अनोखा रंग देखने को मिला, हॉरर की थीम पर तैयार किया गया है पंडाल। डरावनी फिल्म की तर्ज पर बनाया गया है पंडाल का माहौल, गजानन के दर्शन से पहले भक्तों को मिलता है अलग ही रोमांच। सूरत के महेदरपुरा में हर साल अलग अलग थीम पर पंडाल बनाने की परंपरा है, उत्सव को अलग स्वरूप देने की कोशिश होती है। महाराष्ट्र के जालना में विराजे 108 किलो चांदी से बने बप्पा, श्री अनोखा गणेश मंडल में विराजे बप्पा के दर्शन के लिए दर दर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। गणपति बप्पा की इस अनोखी मूर्ति के निर्माण में करीब आधे किलो गोल्ड की चढ़ाई गई है परत, करीब 5.5 फीट ऊंची है बप्पा की ये प्रतिमा। बप्पा की मूर्ति निर्माण में करीब 4 करोड़ की चांदी का इस्तेमाल हुआ, सुरक्षा के लिए पंडाल में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। राजस्थान के फतेहपुर में भी गणेश उत्सव की धूम देखने को मिली, बप्पा को चढ़ाए गए 56 भोग। शाम को गजानन की आरती में उमड़ रही है भक्तों की भीड़, आरती कर बप्पा का आशीर्वाद ले रहे हैं श्रद्धालु। वाराणसी की सड़कों पर दिखा मिनी महाराष्ट्र का नजारा, मुंबई की लालबाग के राजा की तर्ज पर वाराणसी में विराजे गणपति बप्पा को धूमधाम से विदा किया गया। वाराणसी में 5 दिन के बप्पा की विदाई में मुंबई की तर्ज पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, जुलूस में ढोल ताशे की जबरदस्त परफॉर्मेंस ने बांधा समा। बप्पा के विसर्जन जुलूस में भूसावल से आए 80 कलाकार शामिल हुए, बुला नाला से निकली शोभा यात्रा का लक्सा लक्ष्मी कुंड में प्रतिमा विसर्जन के साथ समापन हुआ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी दिखी गणपति उत्सव की उमंग, धूमधाम से की गई 5 दिन की बप्पा की विदाई। बप्पा की विदाई से पहले सैकड़ों कश्मीरी पंडितों ने वेसू केपी कॉलोनी में संगम तक 11 किलोमीटर का जुलूस निकाला, जश्न में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए। हैदराबाद में आकर्षण का केंद्र बना गजानन का भव्य पंडाल, गणेश मंडप में नव वानर थीम से रामायण की झलक दिखाई गई। भगवान गणेश की भव्यता के साथ साथ रामायण के कई पहलुओं की भी सुंदर प्रदर्शन किया गया, इसमें भगवान राम, भगवान हनुमान और वानर सेना को भी शामिल किया गया है। इस मंडप को TRT यूथ एसोसिएशन के सदस्यों ने डिजाइन किया है, भगवान गणेश को राम अवतार में दिखाना उद्देश्य है। शानदार सजावट में राम सेतु, लंका और वानर सेना के साथ भगवान राम की सेवा का सुंदर चित्रण किया गया, पंडाल की भव्यता को देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हुए। पंडाल की सजावट को तैयार करने में लगभग 50 से 70 कलाकार शामिल हुए, दिन रात मिलकर करीब 15 दिनों तक काम चला। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गणपति बप्पा के साथ साथ मां महालक्ष्मी का आगमन हुआ, पूरे विधि विधान से विराजमान की गई मां महालक्ष्मी की प्रतिमा। बल्लारपुर के विघ्नेश्वर परिवार में पूरी आस्था और भक्ति के साथ विराजमान की गई मां लक्ष्मी, 150 सालों से चली आ रही है आस्था की परंपरा। महाराष्ट्र के परिवारों में ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठा और कनिष्ठा गौरी इन दिनों मायके आती हैं, बेटियों के मायके आने की तरह ही किया जाता है गौरी का स्वागत। मां के आगमन पर घर में सुख समृद्धि और मंगल की कामना की जाती है, पूरे परिवार के साथ विधि विधान से पूजा की जाती है, बनाए जाते हैं पकवान और भोग भी लगाया जाता है। कई परिवारों में हल्दी कुमकुम कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है, महिलाएं एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर मंगल कामनाएं देती हैं, भाव पूर्वक विदा की जाती हैं देवी माँ। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी में शुरू होने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री मेला, करीब 40 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है। शक्तिपीठ अंबाजी में 7 दिन तक चलेगा भादरवी महामेला, अंबाजी में हर साल 7 दिन तक लगता है भादरवी मेला, पैदल चलकर शक्तिपीठ पहुंचते हैं श्रद्धालु। भादरवी महामेला शुरू होने से पहले बम निरोधक दस्ते की टीम ने मंदिर में जांच की, टीम के ने मंदिर के मुख्य गेट से मंदिर के हर इलाके की जांच की। इस साल 20 सितंबर से 26 सितंबर तक चलेगा भादरवी पूनम का महामेला, गुजरात राजस्थान सीमा पर अरावली पहाड़ियों पर स्थित है अंबाजी धाम। अंबाजी मंदिर के शिखर पर लगे हैं सोने के 358 कलश। सोने का बना है आधा मंदिर अंबाजी धाम में श्रद्धालुओं की विशेष आस्था, दूर दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु। दिल्ली के एनएसआईसी ग्राउंड में सजा कला का अनोखा संसार, कला कनेक्ट में देश भर से पहुंचे 150 से ज्यादा कलाकार, 20 सितंबर तक चलेगा कला कनेक्ट। 2000 से ज्यादा आर्ट वर्क प्रदर्शित किए गए, एक ही छत के नीचे कला के कई रंग देखने को मिले। 23 साल के ऋतिक कोहली पैरों से बनाते हैं पेंटिंग, हाथ नहीं पैरों का बनाया ब्रश। तानिया सेन की कला ने खींचा सभी का ध्यान, कला कनेक्ट में शिव शक्ति के कई रूप देखने को मिले, कैनवस पर दिखे शिव और शक्ति, शिव पार्वती विवाह का अनोखा दृश्य। रील एंड रिचुअल्स में आध्यात्मिक रंग देखने को मिले, शिव पार्वती विवाह का अनोखा दृश्य। पान के पत्ते की आड़ से पार्वती की नजर तो वहीं लोग पेंटिंग की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। कैनवस पर दिखा दुर्गा का शांत स्वरूप, देवी के अलग रूपों की अनोखी प्रस्तुति, चेहरों की दुनिया रचती है कलाकार रचना, एक पेंटिंग में नजर आते हैं कई चेहरे। मेरठ में पहली बार आज से भव्य एयर शो, तो वहीं मही उद्दीनपुर में सूर्य किरण एरोबैटिक टीम करेगी प्रदर्शन, 9 हॉक MK-132 विमान दिखाएंगे रोमांचक करतब। तिरंगे के रंगों से रंगा मेरठ का आसमान, दिखेगा वायु वीरों का शौर्य, हॉक विमानों से निकलेंगी केसरिया, सफेद और हरे रंग के धुएं की लकीरें। हवा में दिखेगा डीएनए मैन्यूवर, सूरज की किरणें, टीम दिखाएगी लूप और बैरल रोल, उल्टी उड़ान समेत कई रोमांचक करतब आकर्षण होंगे। आज और कल 2 दिन एरोबैटिक प्रदर्शन किया जाएगा, सूर्य किरण के पायलट दिखाएंगे सटीक तालमेल, आसमान में बनेंगे शानदार एरोबैटिक फॉर्मेशन। बेहद कम अंतर पर उड़ेंगे 9 हॉक, स्वदेशी स्मोक पॉड से बनेगा तिरंगा, दर्शकों को दिखेगी तिरंगे की छटा। नमो भारत ट्रेन ने घटाई सफर की दूरी, दिल्ली से मेरठ 82 किलोमीटर की दूरी एक घंटे में पूरी, 160 की रफ्तार से दौड़ रही नमो भारत। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड है नमो भारत से, दिल्ली NCR की बदली कनेक्टिविटी, रफ्तार के साथ बढ़ी रीजनल कनेक्टिविटी। नमो भारत में बढ़ा यात्रियों का भरोसा, लगातार बन रहे नए रिकॉर्ड, स्टूडेंट से लेकर बिजनेसमैन तक रोजाना सफर कर रहे हैं। नमो भारत से रोजगार और कारोबार को भी रफ्तार मिली, महिला यात्रियों को बड़ी राहत, अब अकेले सफर करना आसान हुआ। एक कॉरिडोर कई शहरों की कनेक्टिविटी, नमो भारत की कमान महिलाओं के हाथ में है, कई पायलट महिलाएं हैं। देश की सैन्य शक्ति बढ़ाने वाली गुड न्यूज आई सामने, देश को मिले नए लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर, बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के दफ्तर में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। सेनाओं को विमान सौंपने के इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भी शामिल हुए। वायुसेना को मिले LCA तेजस ट्विन सीटर ट्रेनर और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान, सैन्य पायलट्स के प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता को मिलेगी मंजूरी। कार्यक्रम में पवन हंस लिमिटेड को सौंपे गए ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर। विमानों और हेलीकॉप्टर्स को सेना को सौंपने से पहले रक्षा मंत्री ने पूजा की, फिर दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने हेलीकॉप्टर में बैठकर भी देखा। रोजगार पर मोदी सरकार का बड़ा फोकस, युवाओं के लिए नौकरियों की सौगात, पीएम मोदी आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। देशभर के 45 केंद्रों पर 20वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया, नए युवाओं को सरकारी नौकरी, पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से युवाओं को संबोधित करेंगे। रेल से लेकर रक्षा तक कई केंद्रीय विभागों में नियुक्तियां, राजस्व, गृह, स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं सहित कई विभागों में भर्ती। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1,00,000 सरकारी नौकरियों का ऐलान किया, अगले 6 महीनों में प्रदेश के 1,00,000 युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। आज से उत्तर प्रदेश में शुरू होगा सरकारी नौकरी देने का महाअभियान। 1,00,000 सरकारी नौकरियों में 77,000 अकेले यूपी पुलिस और होमगार्ड की भर्तियां। एनडीआरएफ ने गाजियाबाद की हाई राइज सोसाइटी में रेस्क्यू का मॉक ड्रिल किया। बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर आग लगने पर रेस्क्यू का अभ्यास किया। एटीए सोसाइटी की 8वीं मंजिल पर आर्टिफिशियल आग से लोगों को बचाने का मॉक ड्रिल कर चुकी है। एसडीआरएफ, दमकल, पुलिस, सिविल डिफेंस, स्वास्थ्य समेत कई विभागों की टीमें भी शामिल हुई। पीएम मोदी के राष्ट्र सेवा के 25 साल पूरे होने पर सेवा संकल्प यात्रा, वडनगर से वाराणसी तक निकली ये यात्रा। 500 से ज्यादा युवा वर्कर्स, बाइकर्स इसमें शामिल हुए। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने नडियाड में संत राम मंदिर में पूजा अर्चना की। सरदार पटेल की जन्मभूमि पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। विश्वकर्मा पूजा पर समस्तीपुर में युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के घर वाहनों की पूजा। वैभव के बड़े भाई ने कई गाड़ियों की विधि विधान से पूजा की। यूपी में पीआरडी जवानों को सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात। पीआरडी जवानों का दैनिक भत्ता 500 रुपए से बढ़कर 600 रुपए हुआ। पीआरडी जवानों को 5,00,000 तक कैशलेस इलाज आयुष्मान योजना के तहत मिलेगी सुविधा। 3 महीने ड्यूटी करने पर मिलेगा स्वास्थ्य सुविधा का लाभ। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मान सरकार का बड़ा तोहफा। डीए में 8% की बढ़ोतरी। करीब 8,00,000 कर्मचारी और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। त्योहारी सीजन से पहले कर्मचारियों को मिली सौगात। बढ़ा हुआ डीए 1 अक्टूबर से जारी होगा। 4% की 2 किश्तों में लाभ मिलेगा। डूसो चुनाव के आज आएंगे नतीजे। नॉर्थ कैंपस में वोट्स की गिनती। मतगणना के मद्देनजर काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में चीनी फिल्मों की धूम। इस साल 6 फिल्मों की शामिल की गई। पिछले साल 3 फिल्मों को जगह मिली थी। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में चीनी फिल्मों की मौजूदगी बढ़ने के साथ दोनों देशों के रिश्तों में भी दिख रही है मजबूती। चीनी भाषा की फिल्मों का बढ़ रहा है दायरा। फेस्टिवल में मिशेल यो की फिल्म इट्स माय टाइम ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। 70 साल की रूबिक क्यूब चैंपियन के जीवन पर आधारित है ये फिल्म। एशियाई सिनेमा की दुनिया भर में बढ़ी चमक। कोरियाई और जापानी फिल्मों के बाद अब चीनी फिल्में छाई। टीआईएफएफ में एशियाई फिल्मों पर दिया जा रहा है जोर। सिंगापुर, ताइवान और मलेशिया की फिल्मों को भी जगह मिली। चाइना में रोबोटिक क्रांति को लेकर कंपनियों का बड़ा दावा। 2027 तक रोबोट की समझ में आ सकती है बड़ी छलांग। चाइनीज कंपनीज रोबोट्स को दिमागी मजबूती देने पर काम कर रही हैं। जल्द रोबोट बनेंगे और भी समझदार। रोबोट की घरेलू कामों में किया जा रहा है तैयार। 8 सालों में रोबोट को पूरी तरह से तैयार होने के लिए का दावा किया जा रहा है। रोबोट को सिखाने के लिए डेटा जुटाने पर काम किया जा रहा है। फ्रिज खोलने और सब्जी काटने जैसे कामों में एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। चाइना में रोबोट के प्रशिक्षण के लिए बनाया जा रहा है खास सेंटर। सेंसर लगाकर इंसानों की हरकतों से रोबोट को सिखाया जा रहा है काम। चाइना के हांगकांग में भव्य लालटेन उत्सव मिड ऑटम फेस्टिवल को लेकर जगमगा उठा शहर। 20 देशों के 3,000 से ज्यादा लालटेन बने आकर्षण। विक्टोरिया पार्क में लालटेन कार्निवल। हजारों रंग बिरंगे लालटेन लगाए गए। ब्राजील, फ्रांस, भारत और थाईलैंड के लालटेन शामिल। रोशनी के जरिए फूड कल्चर की शानदार प्रस्तुति देखने को मिली। हांगकांग स्टाइल मिल्क टी को लालटेन डिजाइन से दिखाया गया। नानजिंग में 8 मीटर ऊंचा लालटेन ट्री बना आकर्षण। फ्रांस के ओलंपिक चैंपियन लियोन मार्चा ने जापान में प्रशिक्षण दिया। नागोया में स्कूली बच्चों को सिखाए तैराकी के गुण। ब्रिस्बेन ओलंपिक में मगरमच्छों का खतरा टला। तो वहीं फिट्जरॉय नदी को रोइंग और क्रैनो स्प्रिंट के लिए मंजूरी। 2032 में फिट्जरॉय नदी में होंगे ओलंपिक मुकाबले। iPhone 18 की बिक्री शुरू होते ही न्यूयॉर्क में एप्पल स्टोर के बाहर लगी लंबी कतारें। मैनहट्टन के 5th एवेन्यू स्टोर पर iPhone 18 खरीदने के लिए उमड़े लोग। एप्पल के सीईओ जॉन टर्नर्स ने स्टोर के दरवाजे खोलकर ग्राहकों का स्वागत किया। नया आईफोन 18 के कैमरा अपग्रेड ने ग्राहकों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। आईफोन 18 के नए एआई फीचर्स को लेकर ग्राहकों में जबरदस्त उत्साह दिखा। वेरिएबल अपर्चर कैमरा बना आईफोन 18 के सबसे चर्चित फीचर्स में शामिल। एप्पल के नए आईफोन के लिए न्यूयॉर्क में लॉन्च डे पर खास क्रेज देखने को मिला। आईफोन 18 लॉन्च पर निवेशकों और एनालिस्ट की नजर। 53% संभावित खरीदारों ने आईफोन 18 प्रो या प्रो मैक्स में रुचि दिखाई। एप्पल ने आईफोन 18 को 65 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में बिक्री के लिए उतारा है। लंदन फैशन वीक में बोरा अक्सू का स्प्रिंग समर 2027 कलेक्शन पेश। 17वीं सदी की आर्टिस्ट मैरी बेल बनी बोरा अक्सू के नए कलेक्शन की प्रेरणा। सॉफ्ट और स्ट्रक्चर डिजाइन के अनोखे कॉम्बिनेशन ने खींचा ध्यान। हाथ की कढ़ाई और बारीक लेस ने बोरा अक्सू के डिजाइन को खास अंदाज दिया। मार्क्स एंड स्पेंसर ने लंदन फैशन वीक में पहली बार रनवे पर डेब्यू किया। रनवे पर महिलाओं और पुरुषों के लिए आर्काइव प्रेरित डिजाइन दिखे। टक्सीडो से लेकर सफेद शर्ट तक मार्क्स और स्पेंसर के हेरिटेज स्टाइल के ने बटोरी सुर्खियां। ट्विन सेट निटवेयर और टेलरिंग में कलेक्शन में बनाई खास जगह। पुराने फ्लोरल प्रिंट्स और आउटर वेयर ने फैशन शो में बढ़ाया रेट्रो टच। आधे कलेक्शन की कीमत £50 से कम खरीदारों के लिए रखा गया किफायती विकल्प।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर। ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: श्री कृष्ण प्रिय राधा रानी जी की जन्मस्थली बरसाना में आज राधा अष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। राधा रानी जी के प्राकट्य उत्सव के अवसर पर आज तड़के 5 बजे ही उनका विशेष महाभिषेक किया गया। जन्मोत्सव में राधा रानी को पीली पोशाक धारण कराई गई, और इस बार राधा रानी का 5254वां जन्मदिन है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के 15 दिन बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी के बरसाने के ब्रह्मांचल पर्वत पर स्थित मंदिर में प्रमुख आयोजन होता है, और वृंदावन में भी राधा रानी के जन्मोत्सव की धूम रहती है। वही राधा रानी के गाँव बरसाना में इस अवसर पर खास सजावट की गई है। हजारों श्रद्धालु इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बरसाना पहुंचे हैं। बरसाना में स्थित राधा रानी मंदिर में सभी श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो सके, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
7: अभिषेक में दूध दही शर्करा है, घी है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: राधा अष्टमी के मौके पर बरसाने में आस्था और उल्लास का संगम देखने को मिला। गलियों में सुनाई दे रही बधाई और मंगल गीतों की गूंज, भव्य रूप से मनाया जा रहा श्री राधा रानी का जन्मोत्सव। गणेश उत्सव का 6ठा दिन, बप्पा के अनोखे पंडाल बढ़ा रहे हैं उत्सव की रौनक। विघ्नहर्ता के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। पुणे के दगडूशेठ गणपति पंडाल में उमड़ा आस्था का मेला। बप्पा को अर्पित किया गया 251 किलो का मोदक केक। गजानन की उतारी गई आरती। मुंबई के सबसे अमीर जीएसबी गणपति को दी गई भव्य विदाई। किंग सर्कल के गिरगांव चौपाटी तक निकली भव्य शोभा यात्रा। श्रद्धालुओं ने की अगले साल जल्द आने की प्रार्थना। थूथुकुड़ी में पुरातात्विक शनिवार पर श्री वैकुंठपति पेरुमल मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान। भगवान विष्णु और देवियों की उतारी गई विशेष आरती। श्रद्धालुओं ने भी दर्शन पूजन किए। दिल्ली में सजा कला का अनोखा संसार। कला कनेक्ट में देश भर से पहुंचे 150 से ज्यादा कलाकार।

जापान के आईची नागोया में आज 20वें एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी भारतीय शूटर मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत थामेंगे तिरंगा। 4 अक्टूबर तक चलेगा टूर्नामेंट।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव के एक और रंग की करेंगे। आज गणेशोत्सव का छठा दिन है। शहर शहर गजानन की आस्था की लहर है। देश भर में गणपति पंडाल सजे हुए हैं। बाप्पा के एक से बढ़कर एक निराले रूप नजर आ रहे हैं। कहीं गणपति की झांकी में काशी के घाट हैं तो कहीं पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा की झलक देखने को मिल रही है। कहीं गजानन स्वयं भगवान श्रीनाथ के रूप में विराजे हैं तो कहीं गणपति पंडाल में सनातन परंपरा के संतों की कहानियां जीवंत रूप में नजर आ रही हैं। एक पंडाल तो ऐसा भी सजा है जहां बप्पा के धाम में स्वयं श्री राम उतर आए हैं। धनुष बाण और तरकश के साथ गणपति बप्पा राम अवतार में विराजे हैं। एक पंडाल में बप्पा के वाहन जीते जाते सफेद मूषक बप्पा की प्रतिमा के साथ पंडाल की शोभा यात्रा शोभा को बढ़ा रहे हैं। और वही एक पंडाल ऐसा भी है जहां पर बप्पा को दर्जनों किलो सोने और सैकड़ों किलो चांदी के आभूषणों से सजा दिया गया है। बप्पा के इस पंडाल को 700 करोड़ रुपए का बीमा कवर भी दिया गया है। अलग अलग थीम पर सजे बप्पा के ये रूप इस उत्सव की भव्यता को बयां कर रहे हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं देश भर में सजे सबसे भव्य और अनोखे गणपति पंडालों की यात्रा पर।

वैदिक ऋचाओं से लेकर पौराणिक रचनाओं तक भगवान गणेश का वर्णन अलग अलग प्रकृति, प्रकार और विशेषताओं के साथ मिलता है। वैदिक ग्रंथों में गजानन का वर्णन शक्ति के दिव्य नायक के रूप में मिलता है। एक अमूर्त शक्ति जो मंत्र और ब्रह्मांड की व्यवस्था में विद्यमान है, जबकि पुराणों में उनका वर्णन हाथी के सिर वाले ऐसे देवता के रूप में मिलता है जो समस्त विघ्नों को हरते हैं। गजानन के इसी पौराणिक स्वरूप को भक्त अपनी अपनी कल्पना और रचनाशीलता के आधार पर मूर्त रूप में ढालते हैं। खास तौर पर गणेशोत्सव के मौके पर गणपति के एक से एक अद्भुत और अकल्पनीय रूप साकार हो उठते हैं। आज बाप्पा के अनोखे रूपों के अध्याय का श्री गणेश करते हैं, उनके सबसे अनोखे स्वरूप के साथ, जहां स्वयं बाप्पा पर राम नाम का रंग चढ़ा है। हैदराबाद का ये अनोखा पंडाल आपको हैरान कर देगा। गणपति का ये वो धाम है जहाँ पग पग पर रामायण है, राम है। हैदराबाद के टीआरटी यूथ एसोसिएशन ने नव वानर थीम पर ये अद्भुत पंडाल बनाया है। इस पंडाल में गणपति बाप्पा की प्रतिमा से लेकर पंडाल की सजावट तक हर ओर रामायण से जुड़े प्रसंगों और प्रतीकों को शामिल किया गया है।

0: और स्वयं गणपति बाप्पा भी यहाँ राम अवतार में ही नजर आ रहे हैं। पूरा पंडाल रामायण के दृश्यों को जीवंत कर रहा है। यहाँ बाप्पा की पीठ पर तरकश है, हाथ में तीर कमान है। यहाँ राम है, लखन है, राम नाम की शिलाएं हैं, वानरों की सेना है, राम सेतु पार करने का दृश्य है, लंका का युद्ध है, लंका विजय कर अवध लौटते श्री राम है, तप करते हनुमान है। ये अद्भुत स्थान है। करीब 70 कलाकारों ने 2 हफ्तों की अथक मेहनत के बाद इस दिव्य पंडाल को तैयार किया है। इस दिव्यता और भव्यता में कोई कसर सूरत वालों ने भी नहीं छोड़ी है। सूरत के महिधरपुरा में मैसूर पैलेस की थीम पर ये भव्य पंडाल बनाया गया है, जहां विराजे हैं डालिया शेरी के गोल्डन गणेश, कई किलो सोने चांदी और हीरों से लकदक, चमचमाते हुए, जगमगाते हुए। यह बाप्पा के स्वरूप को 25-30 किलो सोना चांदी और 1.5 से 2 लाख अमेरिकन डायमंड से सजाया गया है। बाप्पा का मुकुट, हाथ, पैर सभी सोने चांदी से बनाए गए हैं।
1: आप देखेंगे एक पंडाल में भगवान गणेश यहाँ पर विराजमान है और जो मूर्ति है उस पे आप देखेंगे तो गोल्ड, सिल्वर और डायमंड्स से जड़ी हुई ज्वेलरी यहाँ पर लगाई गई है। भगवान गणेश यहाँ पर विराजमान है, लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, आरती पूजा में शामिल होते हैं। तो ये जो खास इस गणेश पंडाल की खासियत है या भगवान गणेश की मूर्ति की जो खासियत है वो ये है कि ज्वेलरी से पूरे भगवान हैं गढ़ दिए गए कह सकते हैं। कि जो भी आप इनके तन पर देख रहे हैं, सिर मुकुट हो, कान में जो इनका जो ज्वेलरी हो, हाथ का हो, पैर का हो, सभी जगह पर ज्वेलरी से भगवान गणेश को एकदम यहाँ पर मढ़ दिया गया है।
0: बड़ी मात्रा में आभूषणों के इस्तेमाल की वजह से डालिया शेरी के बापा को गुजरात के सबसे धनी गणपति माना जाता है।
2: सब लोग गणपति बापा को एक भगवान की तरह पूछते हैं, मगर डालिया शेरी जो है वो बापा को एक राजा की तरह भी पूछते हैं। और राजा बिना आभूषण के अच्छा नहीं लगते। तो हमने 25 से 30 किलो गोल्ड सिल्वर मिक्स और 1.5 से 2 लाख अमेरिकन डायमंड से भगवान को घरेणा से श्रृंगारित किया है।
0: बापा के सुनहरे रूप को देखने, उन्हें निहारने, अपने बापा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वैसे भक्तों की भीड़ तो पुणे के इस पंडाल में भी कम नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ जूनियर भक्तों की तादाद जरा ज्यादा है। वो भी क्यों ना, पुणे के इस गणपति पंडाल को कैंडी लैंड की थीम पर जो सजाया गया है।
3: मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैंडीज खाऊं, मुझे आनंद आता है बहुत।
4: कौन कौन आए हो आप?
3: बाबा को सारी चीजें दूंगी।
0: पूरे पंडाल की सजावट बच्चों की मनपसंद रंग बिरंगी कैंडीज, चॉकलेट्स, कुकीज, चॉकलेट मोदक और आइसक्रीम जैसे मजेदार डेजर्ट्स की थीम पर की गई है। यहाँ तक कि बाप्पा की प्रतिमा के चारों ओर भी रंग बिरंगी कैंडीज लगाई गई हैं। ऐसा लगता है बाप्पा के स्वागत में मानो पूरा इंद्रधनुष ही पंडाल में उतर आया हो। इस पंडाल को देखने के लिए हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। खास तौर पर बच्चों के लिए तो बाप्पा का ये पंडाल किसी वंडरलैंड से कम नहीं, जहां आस्था के साथ साथ बाप्पा के आशीष की छांव तले मस्ती और रोमांच का मजेदार मेल हो रहा है।
4: क्या क्या देखा आपने?
3: आइसक्रीम, कैंडी और बहुत तोती देखा मैंने।
4: क्या क्या देखा है अब तक आपने?
3: चॉकलेट, आइसक्रीम, चॉकोबार।
4: अच्छा, और बापा जी का दर्शन लिया? भगवान जी का क्या मांगा भगवान से आपने?
3: मोदक।
4: मोदक मांगा? चॉकलेट नहीं मांगा?
3: नहीं।
4: क्यों?
3: नहीं, आवरत नहीं।
0: वैसे बच्चे क्या, ये पंडाल है ही इतना सुंदर और अनोखा कि बच्चों के साथ आए बड़े भी यहाँ आकर बच्चे बन जाते हैं।
5: हम खास इसके लिए इधर आए क्योंकि इसे देखना था चॉकलेट का बंगला क्या है, लेकिन बहुत अच्छा लगा इधर आने के बाद और गणपति बाप्पा के भी दर्शन मिल गए।
6: इधर बहुत भीड़ था, ये बोल रहे थे कि मुझे जाना है जाना है जाना है, इसलिए उसको लेके आया मैं।
4: बचपन में आपने गाना सुना होगा चॉकलेट का बंगला,
5: हाँ,
4: तो ये
5: सावा सुंदर चॉकलेट सा बंगला,
6: अभी वही गाना बोलते बोलते हम लोग आ गए इधर।
4: तो बचपन की यादें जो है वो फिर से ताजा हो,
5: हाँ, ऐसा लग रहा है कि अब हम ही छोटे हो गए।
0: चॉकलेट बंगले वाले बप्पा के बाद अब आपको दिखाते हैं गणपति का धनपति अवतार, मुंबई का वो पंडाल जहां विराजे हैं देश के सबसे अमीर बप्पा, मुंबई के किंग सर्कल के जीएसबी महागणपति, जिनकी गिनती देश के सबसे समृद्ध गणपति मंडलों में होती है। साल जीएसबी पंडल के महागणपति को 66 किलो से ज्यादा सोने, 335 किलो चांदी और कीमति रत्नों से सजाया गया है। इतनी बड़ी मात्रा में सोने चांदी से लदे बाप्पा को देखते हुए जीएसबी पंडाल को अब की बार 703 करोड़ 27 लाख रुपए का रिकॉर्ड इंश्योरेंस कवर दिया गया है।
7: मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई महाराष्ट्र और देश के सबसे महंगे गणेश पंडाल में, जिनकी बातें सुनकर वाकई में आप आश्चर्य हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले आप खुद गणपति बप्पा के दर्शन करें। ये देखिए मैं मौजूद हूँ जीएसबी सेवा मंडल मुंबई के वडाला इलाके में स्थित एक ऐसे पंडाल में जिनकी बीमा ही कम से कम 7 करोड़ रुपए की हुई है। आपको बताएं कि 66 किलो सोना बप्पा को चढ़ाया गया है, इसके अलावा 350 किलो से ज्यादा चांदी से भी बप्पा को सजाया गया है। बहुत बड़ी थीम नहीं होती यहाँ, ना ही कोई चलचित्र होता है, बस बप्पा को यहाँ विराजमान किया जाता है।
0: अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर के गणपति की। चंद्रपुर के राजा के दरबार में इस बार भगवान गणेश के साथ जगन्नाथपुरी धाम की भव्य झांकी श्रद्धालुओं का मन मोह रही है। चंद्रपुर के राजा गणेश मंडल का ये 52वां साल है। हर साल की तरह अब की बार भी यहाँ भगवान गणेश की 21 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। गजानन की प्रतिमा के हाथों और पैरों में करीब 15 किलो चांदी का इस्तेमाल किया गया है, जो प्रतिमा की भव्यता को और बढ़ा रहा है। बाप्पा की प्रतिमा के ठीक पीछे ऊपर की ओर भगवान जगन्नाथ की प्रतिकृति स्थापित की गई है, तो वहीं गणपति के दोनों ओर बलदेव और सुभद्रा जी की मूर्तियां लगाई गई हैं। इस बार बाप्पा के दरबार की भव्यता को भगवान जगन्नाथ के पुरी धाम की विशाल प्रतिकृति ने और खास बनाया है। इस पंडाल में विशाल प्रवेश द्वार के साथ करीब 110 फीट ऊंचे भव्य मंदिर का स्वरूप साकार किया गया है। मंदिर की नक्काशी, सजावट और भव्यता श्रद्धालुओं को मानो ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथ धाम में होने का एहसास करवा रही है। अब आपको दिखाते हैं मुंबई में मौजूद गिरगांव के महाराजा का दरबार, जहां गजानन नाथ द्वारा के श्रीनाथ भगवान के रूप में विराजे। कमल पर विराजे श्रीनाथ रूपी गजानन की विशाल प्रतिमा इतनी शानदार है कि देखने वाले बस देखते रह जाते हैं।
8: देखिए बप्पा का दर्शन, वाकई में मूर्तिकार की बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी जिस किसी ने भी बप्पा की इस प्रतिमा को बनाया है। मुझे लगता है 32-33 फीट ऊंचे हैं गणपति बप्पा और राजस्थान के श्रीनाथ के अवतार में आए हुए हैं। बकायदा देखिए कमल खिला हुआ है और कमल के ऊपर बप्पा विराजमान है।
0: खास बात ये है कि इतनी सुंदर प्रतिमा बनाते समय मूर्तिकारों की टीम ने बाप्पा के 32 फीट ऊंचे स्वरूप को कुदरत के करीब यानी इको फ्रेंडली बनाने का भी पूरा ख्याल रखा है। नख से लेकर शिख तक बाप्पा की पूरी प्रतिमा केवल मिट्टी और दूसरी प्राकृतिक चीजों से बनाई गई है।
9: इस साल हम लोगों ने किया है राजस्थान में नाथद्वारा करके है, वहाँ का श्रीनाथ जी करके है, जो वैष्णव लोग पूछते हैं, वहाँ की मूर्ति हम लोगों ने यहाँ पे साकार की है। और ये पूरी उसकी हमारे मंडल की खासियत है, 95 ईयर से पूरा का पूरा पर्यावरण जो इको फ्रेंडली गणपति है, यानी अब कहाँ से भी मिट्टी को छुएंगे तो मिट्टी मिलेगी, पप्पा के पैर के नाखून से लेके
8: प्लास्टिक कुछ भी नहीं, कुछ भी
9: पूरा 95 ईयर से हम लोग खाली इको फ्रेंडली, हम कंप्लीट इको फ्रेंडली। और अभी आप देखेंगे ना कम से कम 32 ईयर हाइट फिट हाइट हो गई है।
0: पापा की प्रतिमा तो बेमिसाल है ही, लेकिन साथ ही इस पंडाल में नन्हे भक्तों को आकर्षित करने का भी इंतजाम किया गया है।
8: इस तरह से तराफा रखा हुआ है और बच्चे देखिए एंजॉय कर रहे हैं बकायदा यहाँ पर, और एक अजीब सी बड़ी ही प्यारी सी खुशी, बहुत ही अच्छी स्माइल इन बच्चों के फेस पे है। थोड़ा सा कैसा लगा बेटा?
10: बहुत फन है एंड एकदम अमेजिंग।
8: आ जाओ आप लोग आ जाओ। कैसा लगा?
10: अच्छा,
8: मजा आया? आपको कैसा लगा भाई? अच्छा लगा। आप लोग तो मंडल वाले हो, एक्सपीरियंस होगा आपको।
10: बहुत अच्छा लगा।
8: दिन में कितनी बार ऐसे जाते आते हो?
10: तीन चार
8: बार।
0: अब आपको लिए चलते हैं पुणे और दिखाते हैं बाप्पा का वो स्वरूप जो अब से पहले शायद ही आपने कभी देखा हो। यह पानी पूरी से बने बाप्पा, तस्वीरें पुणे के FC रोड की हैं, जहां 21,000 पानी पूरी से 13 फीट ऊंची गणेश मूर्ति बनाई गई है। बाप्पा की इस नाजुक और अनूठी प्रतिमा का निर्माण 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद हुआ और अब इसकी देखभाल के लिए 2400 घंटे कारीगर जुटे हैं। दिलचस्प ये है कि इस पंडाल के जरिए पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देने की कोशिश है। आयोजकों का कहना है कि 21,000 पानी पूरी से बनी इस विशेष प्रतिमा को विसर्जित करने की जगह इससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार किया जाएगा। अब चलिए मुंबई के सबसे पुराने गणेश पंडाल में, गणेश गली में मौजूद मुंबई चा राजा का दरबार अब की बार अपनी अलग थीम के लिए चर्चा में है। मुंबई चा राजा के दरबार को इस बार सनातन परंपरा के महान संतों और भक्तों की कहानियों को केंद्र में रखकर सजाया गया है। पंडाल में एंट्री करते ही पंख हिलाते विशाल काय गरुड़ के दर्शन होते हैं। गरुड़ की ये विशाल प्रतिकृति पंडाल की भव्यता का एहसास करवा रही है।
7: हम पहुंच चुके हैं मुंबई के राजा के दरबार में, यानी के गणेश गली में, और आपको बताएं कि सबसे पुराना पंडाल इसे कहा जा सकता है। इस बार अपना 99 साल मना रहा है। संतों की भूमिका, संतों का योगदान को लेकर के थीम रखी गई है। थोड़ा सा देखें, एक बहुत ही भव्य गरुण यहाँ पर है और गरुण के ऊपर संत तुकाराम विराजमान है। और हमेशा की तरह इस साल भी लाखों की तादाद में मुंबई महाराष्ट्र के कोने कोने से, देश से तमाम श्रद्धालु बप्पा का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और कुछ इस तरह की थीम है, और देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें लगाई गई है। जहाँ भी आप देखें, संतों के जो पोस्टर हैं, बैनर्स हैं, उनकी मूर्तियाँ हैं, वो सारी चीज़ें रखी गई हैं। और अब सीधे चलते हैं बप्पा के पास, यानी कि भीतर की तरफ। लोग सबसे पहले इस तरह से कतार में आते हैं और संतों द्वारा किए गए सारे कामों का दृश्य देखते हुए, उनके बारे में पढ़ते हुए, उनके बारे में जानकारी लेते हुए सीधे बप्पा की तरफ पहुंच जाते हैं। भीतर आने के बाद में कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। बप्पा की ऊंचाई जो है तकरीबन 22 फीट है और बाल रूप के अवतार में यहाँ पर विराजमान है। आम खास, VIP, VVIP सभी यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं।
0: मुंबई चा राजा अब की बार भव्य बाल रूप में विराजे हैं। बाप्पा की बाल रूपी प्रतिमा की ऊंचाई करीब 22 फीट है, जिसे कमल के फूल पर खड़ा किया गया है। बाप्पा के बगल में खड़े मूषक राज को पारंपरिक मराठी पोशाक में सजाया गया है। हाथ में भगवा ध्वज थामे मूषक महाराज का लुक भक्तों को बेहद भा रहा है। अब आपको मुंबई से ले चलते हैं महाराष्ट्र के ही चंद्रपुर में, जहां गणेश उत्सव के दौरान भगवान गणेश का एक अनोखा रूप नजर आ रहा है। लेकिन भक्तों को आशीर्वाद देने वाले रूप में नहीं, बल्कि बाप्पा यहां एक मेहनतकश कोयला खदान कामगार के अलग अलग रूपों में दिख रहे हैं। बड़गांव के श्री छत्रपति गणेश मंडल ने भूमिगत कोयला खदान में होने वाले कोयला उत्पादन का जीवंत और आकर्षक दृश्य साकार किया है। इस अनोखी झांकी में श्री गणेश को कोयला खदान के कामगार स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। कहीं बाप्पा खदान में काम करते दिख रहे हैं, तो कहीं कोयला निकालते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान गणेश के इन विभिन्न रूपों के माध्यम से मंडल ने दिन रात मेहनत करने वाले कोयला कामगारों के परिश्रम और साहस को सलाम किया है। अब चलिए छत्तीसगढ़ के भिलाई, जहाँ के सेक्टर 2 में रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे इस गणपति पंडाल की चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि इसकी भव्यता और खूबसूरती ही नहीं बल्कि इसकी अनोखी थीम लोगों को बेहद पसंद आ रही है। इस गणपति पंडाल की सबसे बड़ी खूबी इसकी सजावट है। पंडाल को इस बार प्रकृति और पक्षियों की थीम से जोड़ा गया है, लिहाजा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से बचते हुए प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल कर इसे सजाया गया है। पंडाल में पेड़ के सूखे पत्ते, पेड़ों की छाल, विशेष तरह के बांस, मिट्टी की मटकियाँ, सूखे ताल पत्र, बेल फल के खोल और सूखे कमल जैसी चीजों से ये शानदार सजावट की गई है। पंडाल के अंदर पहुंचने पर लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे वो किसी खूबसूरत प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा बन गए हो। करीब 140 फीट लंबे और 60 फीट चौड़े इस विशाल पंडाल को तैयार करने के लिए कोलकाता से आए करीब 50 कारीगरों की टीम ने दिन रात काम किया है, तब जाकर ये भव्य और खूबसूरत पंडाल बना है। बाप्पा का एक अद्भुत पंडाल गुजरात के राजकोट में भी सजा है। राजकोट के इस पंडाल को काशी विश्वनाथ धाम की थीम पर सजाया गया है, जहां मंदिर की तस्वीर के साथ काशी के घाटों को भी दर्शाया गया है। इस पंडाल में गजानन की भव्य प्रतिमा के दर्शन कर तो भक्त गदगद हैं ही, लेकिन यहां लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींच रहे हैं बाप्पा की मूर्ति पर बैठाए गए ये सफेद चूहे। ये कोई रोबोटिक मॉडल नहीं, बल्कि बाप्पा के अंगों पर बैठे दिख रहे ये सफेद मूषक बिल्कुल असली हैं, जीवित हैं। यहां आने वाले श्रद्धालु इन मूषकों को बड़ी हैरत से देख रहे हैं।
11: हम सालों से देख सकते हो कि गणेश दादा की मूर्ति के आसपास प्रदक्षिणा जीवित उंदर रखते हैं, और ये धर्म प्रेमी जनता का श्रद्धा और आस्था इस हमारे गणपति में बहुत है। मूषक हम आज से 6-7 साल पहले ले आए थे, हमारे पास भी है। दादा के पास 10-11 दिन रखते हैं और 1 साल हम पूरी उसकी सेवा करते हैं, हमारे पास ही रखते हैं।
0: अपनी स्थापना के 19वें साल में राजकोट का जेके चौक राजा गणेश पंडाल यहां आने वाले लोगों को गणेश उत्सव का बेहद खूबसूरत और यादगार अनुभव दे रहा है। गौरीपुत्र के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के लिए अच्छी खासी संख्या में भीड़ पंडाल पहुंच रही है। राजकोट में काशी की झलक है तो वहीं मुंबई की सड़कों पर दौड़ने वाला ऑटो रिक्शा बाप्पा का दरबार बन गया है। मुंबई चा रिक्शा आणि बाप्पा ची सवारी। गणपति उत्सव में एक परिवार ने ऑटो की तरह दिखने वाला गणपति पंडाल बनाया है और इसमें बाप्पा की प्रतिमा को विराजमान किया गया है। बाप्पा का ये अनोखा दरबार वास्तव में एक पिता की मेहनत, संघर्ष और उनकी यादों को समर्पित एक भावुक कहानी को समेटे है। मुंबई में रहने वाले राहुल ने अपने पिता के पेशे और जीवन में उनके संघर्ष से प्रभावित होकर ऑटो रिक्शा मॉडल बनाया। इसमें भगवान गणपति की स्थापना की, साथ में अपने पिता का कटआउट भी लगाया। बेटे ने अपने ऑटो ड्राइवर पिता के पेशे को सम्मान दिया और गणपति के प्रति अपनी श्रद्धा भी जाहिर की। अब इस बेटे की ये कोशिश खूब सराही जा रही है। मुंबई में गणेश उत्सव के मौके पर एक से एक पंडाल नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई के घाट कोपर में भावेश्वर के राजा का भव्य दरबार सजा है। अखिल ब्रह्मांड में साकार गणपति का ये स्वरूप है। अंतरिक्ष की थीम में बाप्पा नवग्रह के साथ सूर्य नारायण के अवतार में पधारे हैं। गणपति की प्रतिमा के पीछे यहाँ स्वयं भगवान सूर्य की आभा है और सामने नतमस्तक सभी ग्रह नजर आ रहे हैं। बाप्पा की इस अभूतपूर्व कल्पना ने सभी श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया है। 52 साल से ये पंडाल गणपति की ऐसी ही भव्य प्रतिमाओं के लिए मशहूर है। अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें अमरावती के एक पंडाल की। अमरावती शहर के नीलकंठ गणेश उत्सव मंडल ने अपने पंडाल में जगन्नाथपुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव की भव्य झांकी तैयार की है। ये मंडल करीब 85 सालों से अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक झांकियों के जरिए गणेश उत्सव मनाता आ रहा है। इस बार यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा को पंडाल में साकार किया गया है। उत्तर से दक्षिण तक गणेश उत्सव के ऐसे ही रंग बिखरे हैं। केरलम की राजधानी तिरुवनंतपुरम भी इस समय गणपति बाप्पा की भक्ति में सराबोर है। तिरुवनंतपुरम के श्री महागणपति मंदिर परिसर में सैकड़ों घरेलू और सामुदायिक गणेश प्रतिमाएं एक साथ जुटी। गणेश मंदिर से शंखुबुगम बीच तक भगवान गणेश को समर्पित भव्य यात्रा निकाली गई। इसमें भगवान गणेश के 32 विभिन्न रूपों और पारंपरिक स्वरूपों से जुड़ी मूर्तियों को शामिल किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में नाचते गाते कलाकार शामिल हुए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस यात्रा में भाग लिया। विसर्जन से ठीक पहले शंखुमुगम आरट्टू मंडपम में विशेष यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों नारियल अर्पित किए गए। इसके बाद मूर्तियों का समुद्र में विसर्जन कर दिया गया। अब चलिए हैदराबाद, जहां बाप्पा सबसे अलग अंदाज में नजर आए। गणेश उत्सव में बाप्पा के अलग अलग रूप और भव्य पंडाल तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन हैदराबाद में गणपति बाप्पा इस बार धरती से निकलकर अंतरिक्ष की सैर करते नजर आ रहे हैं। 69 साल पुराने गणेश पंडाल में भगवान गणेश को यहां स्पेस थीम के साथ सजाया गया है। रॉकेट से लेकर सैटेलाइट तक पूरा पंडाल भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों की कहानी बयां कर रहा है। अनोखी गणेश प्रतिमाओं की फहरिस्त में अगला नंबर आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले की इस प्रतिमा का है। गणेश जी की इस प्रतिमा को मिट्टी की जगह 2,11,000 पेन से तैयार किया गया है और इसे बनाने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगा है। आयोजकों का कहना है कि कुछ नया करने के मकसद से उन्होंने ये अनोखी प्रतिमा बनाई है। इसका मकसद लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। आयोजकों ने बताया कि पूजा के बाद मूर्ति में लगे सभी पेन गणेश भक्तों में बांट दिए जाएंगे। इस अनोखी गणेश प्रतिमा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति के दरबार को भी हर बार की तरह अब की बार भी एक खास थीम में सजाया गया। पंडाल की ये थीम वृंदावन की प्रसिद्ध प्रेम मंदिर से प्रेरित है, इसलिए मंदिर में चारों ओर राधा कृष्ण की लीलाओं को उकेरा गया है। करीब 120 फीट लंबी, 90 फीट चौड़ी और 100 फीट ऊंची ये विशाल संरचना दूर से ही श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। रोजाना श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति के दरबार में सैकड़ों भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं, जो इस खूबसूरत कारीगरी को देख अभिभूत हैं।
12: और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।

0: इस दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, मंगल का राशि परिवर्तन किस राशि के लिए अनुकूल होगा, क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: राधा अष्टमी के मौके पर बरसाने में आस्था और उल्लास का संगम, गलियों में सुनाई दे रही है बधाई और मंगल गीतों की गूंज। भव्य रूप से मनाया जा रहा है श्री राधा रानी का जन्मोत्सव। गणेशोत्सव का छठा दिन, बापा के अनोखे पंडाल बढ़ा रहे हैं उत्सव की रौनक, विघ्नहर्ता के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। पुणे के दगडू शेड गणपति पंडाल में उमड़ा आस्था का मेला, बप्पा को अर्पित किया गया 251 किलो का मोदक केक, गजानन की उतारी गई आरती। मुंबई के सबसे अमीर जीएसबी गणपति को दी गई भव्य विदाई। किंग सर्कल से गिरगांव चौपाटी तक निकाली गई शोभा यात्रा, श्रद्धालुओं ने की अगले साल जल्द आने की प्रार्थना। रायसेन में अनोखा यज्ञ में 1,51,000 किलो हवन सामग्री की आहुति दी गई, 251 तरह की जड़ी बूटियों के साथ 1.5 किलो सोना और 4 किलो से ज्यादा चांदी अर्पित की गई, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र मिला। तूतुकुड़ी में पुरातात्विक शनिवार प्रश्री वैकुंठपति पेरुमल मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान, भगवान विष्णु और देवियों की उतारी गई विशेष आरती, श्रद्धालुओं ने भी दर्शन पूजन किया। जापान के आईची नागोया में आज 20वें एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी, भारतीय शूटर मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत थामेंगे तिरंगा, 4 अक्टूबर तक चलेगा टूर्नामेंट।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन की और इसके प्रभाव की। इसके अलावा 12 राशियों का राशिफल जानेंगे और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 19 सितंबर 2026 दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर 3:26 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल के राशि परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या है? देखिए, मंगल अभी तक मिथुन राशि में विद्यमान थे, अब मंगल 18 सितंबर को दोपहर बाद कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कर्क राशि मंगल की सबसे कमजोर राशि मानी जाती है, इसीलिए मंगल की ये स्थिति सबसे ज्यादा कमजोर हो गई है। और मंगल की ये कमजोर स्थिति 12 नवंबर तक बनी रहेगी। इस स्थिति में मंगल बहुत सारी समस्याओं को जन्म देंगे। मंगल का ये राशि परिवर्तन ज्यादातर नकारात्मक, ज्यादातर निगेटिव दिखाई दे रहा है। मेष राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में विवादों से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, हालांकि परिवार का सहयोग मिलेगा। शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, करियर की समस्या हल होगी, अतिथि का आगमन होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, पारिवारिक उलझने आपकी इस समय सुलझ जाएंगी, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, मंगल का ये राशि परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है। और मंगल के इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर बड़ा असर पड़ेगा। क्या हो सकता है? देखिए, मंगल जिस समय राशि परिवर्तन किए उसके बाद मंगल गुरु के साथ हो गए हैं। मंगल और बृहस्पति दोनों कर्क राशि में आ गए हैं। जल की तीनों राशियां प्रभावित हो गई हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन जल की तीनों राशियों में ग्रह आ गए हैं। अष्टम भाव में केतु विद्यमान हैं और संघट राशि चक्र में केतु का संबंध मंगल से और चंद्रमा का संबंध शनि से बन रहा है। राशि परिवर्तन के समय जल की तमाम राशियां प्रभावित हो गई हैं, इसीलिए ये समय प्राकृतिक आपदाओं का हो सकता है। प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। दुनिया के अलग अलग जगह पर तनाव बढ़ सकता है, जैसे रशिया यूक्रेन का तनाव है, अमेरिका ईरान का तनाव है, उसके अलावा कुछ और जगहों पर, अन्य जगहों पर भी तनाव बढ़ सकता है। उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट के इलाके और बंगाल के इलाके अशांत हो सकते हैं। यहां पर बेवजह के उपद्रव और अशांति फैल सकती है। भारत में आंतरिक अशांति फैल सकती है। बेवजह के विवाद भारत में दिख सकते हैं। इस समय जो बड़े पदों पर महिलाएं हैं, जो बड़े स्थान पर महिलाएं हैं, उनको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य और अपनी सुरक्षा का ध्यान देना होगा। 12 नवंबर के पहले तक का समय महिलाओं के लिए ज्यादा नकारात्मक हो सकता है। सिंह राशि, करियर में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, समस्याएं बढ़ सकती हैं, धन का नुकसान हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएं। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। खान पान में सावधानी रखें। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव देश दुनिया के लिए बहुत अच्छी सूचना नहीं दे रहा है। देश दुनिया के लिए समस्याओं की संभावना दिखा रहा है। अब ये जानते हैं कि मंगल के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मंगल का राशि परिवर्तन बहुत तेजी से अपना प्रभाव दिखाएगा। वृषभ, कन्या, तुला और कुंभ राशि के लिए ये परिवर्तन अच्छा दिख रहा है। वृष, कन्या, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा है। इनके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे और इनको जीवन में सफलता मिलेगी। लेकिन इन राशि वालों को भी जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए, क्योंकि जल्दी का निर्णय इनको मुश्किल में डाल सकता है। मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के लिए ये परिवर्तन अच्छा नहीं है। इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और करियर में किसी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। इस समय दुर्घटनाओं से और चोट चपेट से आपको बचना चाहिए। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन सबसे ज्यादा निगेटिव है। तो मेष, सिंह और धनु राशि वाले अपने पारिवारिक जीवन और अपने कारोबार का ध्यान रखेंगे। दुर्घटना हो सकती है, कोई सर्जरी हो सकती है, बेवजह की मुकदमेबाजी की नौबत आ सकती है। तो वैसे कुल मिलाकर मंगल का राशि परिवर्तन अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव दिखा रहा है, लेकिन मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए ये परिवर्तन ज्यादा निगेटिव है। धनु राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, परिवार में अशांति से बचें, धन की हानि हो सकती है। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब देखिए, मंगल का राशि परिवर्तन केवल चार राशियों के लिए अच्छा है, बाकी राशियों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है। तो जिनके लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? ये जो राशि परिवर्तन है ये आठ राशियों के लिए अच्छा नहीं है, और उसमें भी मेष, सिंह और धनु राशि के लिए ये परिवर्तन ज्यादा प्रतिकूल है, ज्यादा निगेटिव है। तो जिनके लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है ऐसे लोग इस समय रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करें, सुबह और शाम एक एक बार कार्तिकेय स्तोत्र का पाठ करें या भगवान कार्तिकेय के द्वादश नामों का उच्चारण करें। संभव हो इस समय तो नियमित रूप से गुड़ का दान करें या गाय को गुड़ खिलाएं। लाल रंग के कपड़े, जूते, पर्स, लाल रंग की वस्तुओं से इस समय परहेज करेंगे। अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं, कर्ज लगातार आपके ऊपर बना रहता है, तो गुड़ मिला हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ाइए रोज सुबह और शिव जी से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करिए। साथ में कर्ज मुक्ति के लिए अपना प्रयास भी करिए। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो कर्ज चुका पाना आपके लिए आसान होगा। कि अगर पूजा उपासना करते समय मन में अशुद्ध या बुरे विचार आते हों तो क्या करेंगे? स्नान करके या अच्छी तरह हाथ पैर धोकर पूजा करिएगा। पूजा करने के पहले भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपको शुद्ध मन दें। इसके बाद पूजा आरंभ करें। पूजा आपकी पवित्रता से और अच्छे मन से पूरी हो जाएगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार। क्या घर में सूर्य का प्रकाश घर को शुभ या अशुभ बना सकता है? क्या घर की दिशा की वजह से घर शुभ या अशुभ हो सकता है? घर में रहने वाले लोग घर में शुभता अशुभता कैसे ले आते हैं? क्या आपका घर शुभ है या अशुभ है? क्या है इसके लक्षण? जानिए मेरे साथ गुड लक स्पेशल में।
1: चीनी हथियार के खरीदार बेबस और लाचार। चीन के चमत्कारी हथियार जंग में क्यों हो रहे बेकार? चीन के तिलिस्मी हथियारों की पोल खोल देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें
2: गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
10: मेरे पागलों, हम तो ये भी चाहते हैं दुख आए तो तुम्हारी जिंदगी इतनी प्यारी हो कि दुख भी घबरा जाए कि मैं किसके पास आया हूं। और वो भक्त के जीवन में ही हो सकता, जो आध्यात्मिक होगा उसके जीवन में ही होगा, जो परमात्मा का होगा उसके जीवन में ही होगा। और सुनो मेरे प्रियजनों, यदि तुम ठाकुर जी के हो गए, यदि तुम राम जी के हो गए ना, तो डूबते डूबते भी पार हो जाओगे। वो पार होते होते भी डूब जाते जिन्हें खुद पर गुमान होता है, अब वो डूबते डूबते भी पार हो जाते जिन पर तू मेहरबान होता है। भगवान जिन पर मेहरबान हो वो पार हो जाते, वो बड़े दयालु हैं। राम जी जैसा कौन दयालु ना होगा, ठाकुर जैसा कौन दयालु ना होगा। देखो तो तुम्हें उन्होंने क्या क्या नहीं दिया, बढ़िया तन दिया, बढ़िया मन दिया, जीने को जीवन दिया, भारत जैसा वतन दिया, सनातन जैसा धर्म दिया। देखो तो तुम परमात्मा की कृपा जो तुम्हें मिला है उस पर धन्यवाद तो दो परमात्मा को, तुम्हें कम थोड़ी मिला। जो तुम्हें मिल गया यही पाने के लिए कितने लोग पागल नहीं, जहां तुम बैठे हो यही आने के लिए कितने लोग पागल नहीं है, और तुम यहां आ गए। अब इससे भला क्या कृपा नहीं हो सकती परमात्मा की। तुम लंदन की पीआर पा गए और लाखों लोग लंदन आने को तरस रहे। देखो तो तुम हॉल में बैठकर लेस्टर में लंदन में

चाहिए हर बात पर परमात्मा को थैंक्स कहना। धार्मिक व्यक्ति का मतलब ही यही है। भक्त कौन? जिसके जीवन में तीन चीजें हों। पूछो क्या? अरे पूछो तो, जरा जोर से पूछो। भक्त के तीन लक्षण। पहला, भरोसा। दूसरा, भाव। और तीसरा, भोलापन। ये तीन लक्षण हैं भक्त के। भरोसा हो कि मेरा ठाकुर है, जो होगा देखा जाएगा। है मेरा गोविंद, मेरा गुरु है, रखेगा लाज। आप तो यहां बैठे, ये बात हमें कहनी कहते हुए बहुत गौरव हो रहा, बहुत गर्व हो रहा। यहां कहीं हमारा वो बालक होगा लक्ष्मण, शायद यहां कहीं होगा। यहां विदेशी धरती पर रहकर के लक्ष्मण जैसा व्यक्ति 500 लोगों को हर महीने हनुमान चालीसा के पाठ करवा रहा है। 500 लोगों को, कभी चेसम बुलाता, कभी कहीं, कभी कहीं, कि आप वेजिटेरियन बने रहे, सात्विक बने रहे, सनातन को पकड़े रहे, भारतीय संस्कृति को पकड़े रहे। घर घर घर घर जाकर बिना कोई पैसा लिए, बिना दक्षिणा लिए, बागेश्वर बालाजी का चित्र लगा करके वो 500-500 लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ करवाता। देखो तो तुम कृपा, देखो तुम उस परमात्मा का चमत्कार। और लाखों लोग भारत में ऐसे हैं कि वो भारत में रह के भी नहीं पढ़ पाते। हमने भारत के लिए कहावत निकाली, पूछो क्या? जोर से पूछो। अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते हैं। अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के पास होते हैं। अक्सर ऐसा होता है, और सच भी यही है, होता ही है। तुम तो धन्यवाद दो ठाकुर को। भक्त तो धन्यवाद देता कि प्रभु बड़ी करुणा की तुमने, बड़ी दया की। जो मिला वो कम नहीं मिला, जो हम पा रहे वो कम नहीं पाए। उनके नाम की बड़ी सामर्थ्यता है। हम यहां बैठे उनके नाम के ही कारण तो बैठे। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। उनकी ही तो कृपा हुई, उनके नाम के कारण। अरे हमारी छोड़ो भैया, हम तो छोटे मोटे से दास हैं उनके। रावण भी राम जी के नाम से काम चलाता है। हाँ, अभक्त भी उनके नाम से काम चलाते। बताओ तुम, एक कथा बड़ी प्यारी है, अक्सर हमने बोली, शायद तुम्हारे काम की है, तुम्हें महिमा समझ आए कि नाम में कितनी ताकत होती है। जरा सुनना। रावण को जब खबर लगी कि राम जी लंका आ रहे हैं, और खबर में यह सुनाया गया कि राम जी ने पानी के ऊपर पत्थर तैराए, यह बात रावण को पता लगी। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, लोग बैठ जाएंगे, थोड़ा भीड़ ज्यादा हो गई पीछे की तरफ, थोड़ा थोड़ा बरा आप आगे आ जाइए ताकि सबको कथा सुनने का अवसर मिल जाए। धन्यवाद, धन्यवाद। सुने, रावण को खबर लगी कि राम जी आ रहे हैं, और आ कैसे रहे? पानी के ऊपर उन्होंने पत्थर तैराए। क्या तैराए? बोलो बोलो बोलो बोलो। ये ब्रेकिंग न्यूज चली लंका में रावण के यहां। तो जितनी रावण की प्रजा थी, सेना थी, सबने कहा कि जब राम जी वनवासी होकर इतने बड़ा चमत्कार कर सकते कि पानी पर पत्थर तैरा सकते, तो जरूर ये राम और जो लक्ष्मण हैं दोनों बहुत चमत्कारी हैं, इनसे लड़ना संभव नहीं है। जब ये पानी पर पत्थर तैरा सकते तो पत्थर भरसवा भी सकते, और हम लोग तो मर जाएं। तो पूरी प्रजा रावण के पास गई कि हम लोग पार्टी बदल लें। 2013-14 में जैसे भारत में हाल था कि हम पार्टी चेंज करेंगे, तो रावण की पूरी सेना रावण के पास गई कि हम पार्टी बदल लें। रावण बोले कहां जा रहे? सेना बोली राम जी की तरफ। रावण बोले क्यों? बोले बाप मरना थोड़ी, जान जान के थोड़ी मरना, जब वो लोग इतने चमत्कारी हैं कि पानी में पत्थर तैरा सकते, यहां आएंगे पत्थर बरसवा देंगे, हम निपट जाएंगे, मर जाएंगे, हम लोग तो जा रहे हैं। राम

मुरली छोटी बात, कोई बड़ी बात थोड़ी है, पानी में पत्थर तैरा ना, वो तो हम भी तैरा लेते। सेना बोली हम बातें नहीं मानेंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। तुम तो कह रहे थे कि सब हमारे हाथ में, उनका एक बंदर आया पूरा लंका जला गया, तुमने तो कुछ नहीं कर लिया। अब बताओ वो पूरी लंका उल्टा पलटा करके जला गया, तब तुमने क्यों नहीं बचाया, तब तुम्हारा पेट खराब था क्या? रावण बोला नहीं पेट खराब नहीं था, लेकिन ठीक है वो हो गया, बाकी हम तुम टेंशन ना लो, हम पानी में पत्थर तैरा देते हैं। बोले यदि तैरा के दिखाओ, प्रजा बोली तो मानेंगे। रावण बोला ठीक है कल आ जाना, कल तैरा के दिखा देंगे। अब पूरी सेना तैयार, तो छोटे छोटे बच्चे, राक्षस, उनकी पत्नियां, बड़े बड़े दांत, काला शरीर, छोटे छोटे बच्चे भी बिना कपड़ों के दांत निकाले, सुबह से ही तैयार हो गए कि आज पानी में पत्थर तैरते हुए रावण दिखाए। अब ध्यान से सुनना, बड़ी अद्भुत कथा है। रावण समुद्र के किनारे गया, समुद्र के किनारे जाकर के रावण ने कहा राक्षसों से लाओ पत्थर। अच्छा ऐसा कोई ये मंत्र जानता नहीं था, इसने सोचा हमारे 20 हाथ हैं, एक हाथ नीचे से पानी में डाल लेंगे, उंगली लगा देंगे, लो तैर रहा है। अब वैसे भी हमारा भारी शरीर है, लो लो लो तैर रहा है, बस ऐसा करके और कहानी बना देंगे, ढपोल संकी करेंगे, पाखंडी का काम करेंगे, तो काम बन जाएगा, लोग ताली बजा देंगे, बस सीताराम सीताराम, बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। अब रावण गया समुद्र के किनारे, पहुंचा कि जाओ पत्थर लेकर के आओ, पर राक्षस तो राक्षस, उन्होंने सोचा कि यदि राम जी ने 50 किलो का पत्थर तैराया तो हमारे राजा को कम से कम 500 किलो का तैराना चाहिए, 50 का क्यों, 10 गुना एक्स्ट्रा हो, राक्षस तो राक्षस। तो दो दो लोग बड़े बड़े पत्थर उठा के लेके आए और रावण को पसीना आ गया। उसने सोचा छोटा मोटा तो ऊपर उंगली लगा के कुछ कर ही सकते थे, अब बड़े का क्या करें। और बड़े बड़े पत्थर लेकर के राक्षस आए, राक्षस बोले हालो तैराओ। रावण को जितने मंत्र आते थे, जटा टवी गलत जलप, रावण शिवतांडव स्त्रोतम आदि आदि श्लोकों, भगवती का श्लोक गाया, बड़े बड़े भाव से गाया होगा भगवती का, हे भगवती सुनु देवी प्रवक्षामि कुंजका स्त्रोतम उत्तमम एन मंत्र प्रभावन चंडी जापा शुभ वेतना कपचम नारगला स्त्रोतम किलकम ना रहस्यकम ना सुक्तम नापि ध्यानम चाना सुना चाचा वार्चनम। हे भगवती, हे महादेव, हे कुल देवी, हे देवी देवता, हमारी रक्षा करो, आज हमारी लाज बचाओ, पानी में पत्थर तैराओ। लेकिन जैसे ही रावण ने पत्थर पानी में डाला वो डूब गया, डूब पड़ गया। प्रजा बोली लो वो निकल आया चमत्कार, पूरी प्रजा भागने लगी, जाने लगी। रावण बोले रुको रुको मत जाओ। रावण ने सिर पानी के पास डाला और पता नहीं क्या बुदबुदाया, रावण बाहर निकल आया और सच में ऐसा आश्चर्यमय घटना हुई कि वो पत्थर पानी में ऊपर तैर गया। सब बोले वाह, पूरी सेना ताली बजाने लगी, लंकाधीश रावण की जय होने लगी, दशग्रीव दशानन की जय होने लगी, रावण भी आनंद में भर गया, घर आया, पूरे गांव में अब तो पूरी लंका में शोर मच गया कि हमारा राजा भी कम नहीं है, यदि वो 50 किलो का पत्थर तैराते हैं तो हमारा राजा 500 किलो का पत्थर तैरा देता। और पत्थर तैरता रहा शाम तक। रावण वापस आया अपने घर पर, जैसे ही आया रात हुई, पत्नी मंदोदरी चरण दबाने लगी, चरण दबाते दबाते दबाते मंदोदरी बोली नाथ बुरा ना मानना, मैं एक बात पूछूं। रावण ने कहा पूछो नाथ, मुझे पता है आपके पास कौन कौन सी विद्या है, ऐसी कोई भी विद्या नहीं है कि आप पानी में पत्थर तैरा सको, आप बताओ सच में ये किया कैसे। अच्छा घरवाली को तो सब पता होते ही, बाहर आदमी चाहे जितना महान बन जाए घरवाली को पता होता है कितने गहरे पानी में। एक पहलू को ही पकड़ के मत बैठो, इसलिए तुम्हारे जीवन में सुख आए तो इतराओ मत और दुख आए तो घबराओ मत। तुम्हारे साथ तुम्हारा परमात्मा जो भी करेगा वो बेहतर नहीं करेगा, बेहतरीन करेगा यदि तुम धार्मिक हो तो, यदि तुम आध्यात्मिक हो, परमात्मा के सहारे हो, तो भगवान तुम्हारे साथ जो भी करेगा वो करेगा जिसकी तुम्हारे पास अपेक्षा है, जिसकी चाह है, जरूरी नहीं वो तुम्हारी हां में हां मिलाए, जरूरी नहीं वो तुम्हारे मन का करे, पर हो सकता वो जो करे
वो तुम सोच ना पाओ। और सच भी यही है, हम जो सोचते हैं कई बार परमात्मा वो होने नहीं देता, पर जब जो हो जाता वो कभी सोच भी नहीं पाते। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा की अपनी खुद की लीला है। धार्मिक व्यक्ति को एक बात समझनी पड़ेगी कि आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा वो सब परमात्मा की देन है। धार्मिक होने का मतलब ही यही है। और धार्मिक व्यक्ति के पास इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं मानने के अलावा। और धार्मिक व्यक्ति कहलाता भी वही है जो केवल अपनी चाह को ना चाहे, परमात्मा की चाह को भी अपनी चाह माने। ये धार्मिक व्यक्ति का मतलब भी है। मेरे पागलो, जो सह गया वो बन गया। भगवान के भरोसे यदि तुम रहोगे तो भगवान तुम्हारे साथ अहित ना करेगा। भला संसार का एक साधारण पिता अपने पुत्र के साथ बुरा करना चाहेगा क्या? नहीं। फिर ये तो परम पिता, ये कब तुम्हारा बुरा चाहेगा? ये तो ब्रह्म है, ये तुम्हारा कब बुरा चाहेगा और क्यों बुरा चाहेगा? काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म सुपाय विधाता। कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं है, सब अपने सुख दुख के कारण ही जीते हैं। इसलिए मेरे पागलो, आज की कथा का सूत्र बड़ा प्यारा है, दुख में घबराओ मत, सुख में इतराओ मत। जो भी तुम्हारे जीवन में है उसको भला मानना प्रारंभ करो। अपनी चाह भले ही पूरी ना हो, परमात्मा की चाह हो रही तो उसको भी अपनी चाह बना लिया जाए। किसी जगह एक घटना हुई, शायद लेस्टर में ही घटी होगी। लेस्टर का एक राजा था चंगीलाल, उसका मंत्री था मंगीलाल। बड़ा अद्भुत आदमी था चंगीलाल, तो बड़ा अद्भुत आदमी। एक बार चंगीलाल यानी राजा को शौक चढ़ा सब्जी काटने का। कभी कभी राजाओं को भी ये शौक चढ़ते, आजकल तो ये नॉर्मल बात होगी सब्जी काटने की पतियों की। उस दिन राजा को बड़ा शौक चढ़ा सब्जी काटने का। चाकू धारदार थी क्योंकि इंग्लैंड की थी। सब्जी काटते काटते कब अंगूठा कट गया पता ही नहीं लगा, और कटानी अलग ही हो गया। जैसे टमाटर काटने पर टमाटर दो भाग हो जाते, अंगूठा कट गया बेचारे का। पीछे मंत्री खड़ा था, मंत्री ने अंगूठा कटा देखा, धीरे से बोला, भला हुआ। अब विचार करो, तुम्हारा अंगूठा कट जाए कोई कहे भला हुआ, तुम पे क्या बीतेगी? फिर वो तो राजा है, बड़ा नाराज हुआ, हमारी अंगूठा कट जाने पे ये भला कह रहा है, डाल दो इसको जेल में। मंत्री जेल जाने लगा तो राजा ने पूछा, कहो कैसा लग रहा है? भला हुआ। राजा बोले, ले जाओ फिर, ले जाओ ले जाओ, जब इसे जेल में जाना भी भला है, ले जाओ। था बड़ा प्रिय, बड़ा पसंदीदा मंत्री, लेकिन उसके शब्द बड़े खराब थे, भला हुआ राजा को खराब लग रहे थे। बेचारा चला गया जेल में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है, यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
7: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
8: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
9: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
6: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
10: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
11: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार, इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
6: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
12: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
6: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड कर करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
13: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
6: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
14: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्पररी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
15: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
14: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
16: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
17: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
10: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
18: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
19: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम, शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
6: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
20: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
6: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
21: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
6: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
13: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
22: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
8: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
23: टीवी पे फौजी के बारे में देखा,
3: तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से भाइयों पर निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
4: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ, आराम से इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
5: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है। और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
8: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
9: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
12: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
23: क्या घर में सूर्य का प्रकाश घर को शुभ या अशुभ बना सकता है? क्या घर की दिशा की वजह से घर शुभ या अशुभ हो सकता है? घर में रहने वाले लोग घर में शुभता अशुभता कैसे ले आते हैं? क्या आपका घर शुभ है या अशुभ है? क्या है इसके लक्षण? जानिए मेरे साथ गुड लक स्पेशल में।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
24: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें
11: आपको समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
24: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
24: गुड न्यूज टुडे।

0: चीनी हथियार के खरीदार बेबस और लाचार। चीन के चमत्कारी हथियार जंग में क्यों हो रहे बेकार? चीन के तिलिस्मी हथियारों की पोल खोल देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
4: राधा अष्टमी के मौके पर बरसाने में आस्था और उल्लास का संगम, गलियों में सुनाई दे रही है बधाई और मंगल गीतों की गूंज। भव्य रूप से मनाया जा रहा है श्री राधा रानी का जन्मोत्सव। गणेश उत्सव के छठे दिन पंडालों में बप्पा की जयकार, मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में उमड़ी भक्तों की भीड़, अमरावती में बद्रीनाथ धाम थीम पर बना पंडाल।

51 किलो का मुंह तक खेक गजानन की उतारी गई आरती। मुंबई में 6 दिनों में 32,000 से ज्यादा बप्पा की प्रतिमाओं को विदाई दी गई, जिसमें 31,500 घरेलू और 650 सार्वजनिक गणेश मंडलों की मूर्तियों का हुआ विसर्जन। बीएमसी ने जारी किया आंकड़ा। रायसेन में अनोखा यज्ञ में 1,51,000 किलो हवन सामग्री की आहुति दी गई। 251 तरह की जड़ी बूटियों के साथ 1.5 किलो सोना और 4 किलो से ज्यादा चांदी अर्पित की गई। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मिला। थूथुकुड़ी के पुरातात्विक शनिवार पर श्री वैकुंठपति पेरुमल मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन। भगवान विष्णु और देवियों की उतारी गई विशेष आरती। श्रद्धालुओं ने भी दर्शन पूजन किए। मेरठ में पहली बार एयर शो का आयोजन। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। 9 हॉक MK-132 विमान ने दिखाई रोमांचक करतब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं हर मनोकामना पूरी करने वाले गणपति की। बप्पा के आशीर्वाद से ही खुशियां मिलती हैं, मुश्किलें दूर होती हैं, इसलिए आभार जताने के लिए श्रद्धालु उनके पंडाल पहुंचते हैं। इसमें आम लोगों के साथ बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं। आज आपको बप्पा के दरबार पहुंचे रणवीर सिंह और अंबानी परिवार की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इसके बाद मुंबई के जाने माने पंडालों की भव्यता दिखाएंगे और साथ ही दर्शन कराएंगे देश भर में गणपति के अजब गजब पंडालों की। किसी पंडाल में बप्पा की प्रतिमा के पास जीवित सफेद मूषक प्रसाद खाते नजर आ रहे हैं, तो कहीं बप्पा बिजली बनाने वाले मजदूरों के रूप में मौजूद हैं। खूबसूरती ये है कि श्रद्धालुओं ने जहां बप्पा का पंडाल कैंडी और चॉकलेट से बनाया है, वहीं गोलगप्पे से गणपति की पूरी प्रतिमा बना दी है। आज आपको महाराष्ट्र और गुजरात के ऐसे ही भव्य पंडाल हम दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मुंबई से, जहां पर बप्पा की भक्ति अपने चरम पर है। लालबाग चौराहा से लेकर मुंबई के राजा तक बड़े बड़े पंडालों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। आम भक्त हों या देश के बड़े उद्योगपति और बॉलीवुड के सितारे, बप्पा के दरबार में सभी सिर झुकाने और आभार जताने के लिए पहुंच रहे हैं। लालबाग चौराहा ही नहीं बल्कि गणेश गली में मौजूद मुंबई के राजा के पंडाल में भी जबरदस्त भीड़ है। इसके अलावा GSB गणपति के पंडाल में भी धूम है, जहां 60 किलो से ज्यादा सोने से प्रतिमा की सजावट की गई है। देखिए रिपोर्ट।

बाप्पा के दरबार में न कोई छोटा न कोई बड़ा है, हर आदमी सिर झुकाए हाथ जोड़े दर्शन के लिए कतार में खड़ा है। चाहे वो देश के बड़े उद्योगपति हों या बॉलीवुड के धुरंधर, सब जानते हैं, सब मानते हैं कि गणपति के आशीर्वाद के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। लाल बागचा के राजा में गहरी श्रद्धा है, इसलिए पंडाल में आम लोगों के साथ खास लोगों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। अंबानी परिवार बाप्पा के दर्शन के लिए हर साल यहां आता है। इस साल भी एंटीलिया चाराजा की विदाई के बाद मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत और बहू राधिका के साथ बाप्पा के दरबार पहुंचे। पारंपरिक कपड़े, देसी रंग और असीम मास्क था। परिवार ने पूरे भक्तिभाव से गणपति का आशीर्वाद लिया।

0: इसी तरह एक्टर रणवीर सिंह भी लाल बागचा राजा के दरबार में पहुंचे। फिल्म धुरंधर की शानदार कामयाबी से लेकर पत्नी दीपिका पादुकोण की दूसरी प्रेगनेंसी तक रणवीर सिंह के लिए ये साल बेहद खास गुजरा है। स्वाभाविक है कि इसके लिए रणवीर ने गणपति के सामने आभार जताया। हाँ, इस दौरान फैंस से भी मिले, उनके साथ फोटो भी खिंचवाया। लाल बागचा राजा के बाद रणवीर ने पत्नी दीपिका पादुकोण के साथ सिद्धि विनायक मंदिर में भी दर्शन किया। गणेशोत्सव की धूम में रणवीर और दीपिका को शामिल देख उनके फैंस खुशी से भर गए। असल में मुंबई के बड़े मंदिर हों या बड़े पंडाल, रोज बप्पा को देखने पूजने के लिए लाखों की तादाद में भक्त उमड़ रहे हैं। चलिए लाल बागचा राजा के बाद आपको मुंबई के राजा के दर्शन करवाते हैं। मुंबई के राजा यानी गणेश गली गणेश उत्सव मंडल इस बार अपना 99वां साल मना रहा है और हर साल की तरह इस बार भी पंडाल भव्य बनाया गया है। संतों की थीम पर पंडाल बनाया गया है जिसे देखकर श्रद्धालु गदगद हैं।
1: सबसे पुराना पंडाल इसे कहा जा सकता है, इस बार अपना 99 साल मना रहा है। संतों की भूमिका, संतों का योगदान को लेकर के थीम रखी गई है। थोड़ा सा देखें, एक बहुत ही भव्य गरुण यहाँ पर है और गरुण के ऊपर संत तुकाराम विराजमान है। और हमेशा की तरह इस साल भी लाखों की तादाद में मुंबई महाराष्ट्र के कोने कोने से देश से तमाम श्रद्धालु बप्पा का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और कुछ इस तरह की थीम है। और देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें लगाई गई है, जहाँ भी आप देखें संतों के जो पोस्टर हैं, बैनर्स हैं, उनकी मूर्तियां हैं, वो सारी चीजें रखी गई हैं। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, ये गूंज सिर्फ गणेश गली में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और मुंबई के हर उस गणेश पंडाल में देखने को मिल रहा है जहां पर गणपति बप्पा विराजमान हैं। सीधे भीतर की तरफ चलते हैं, आप देखें कितने सुंदर लग रहे हैं। बाल रूप दिया गया है गणपति बप्पा को और भीतर आने के बाद में कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। बप्पा की ऊंचाई जो है तकरीबन 22 फीट है और बाल रूप के अवतार में यहाँ पर विराजमान है। आम खास VIP VVIP सभी यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं।
0: और जहाँ तक बात है बाप्पा की प्रतिमा की तो वो अद्भुत है। 22 फीट ऊंचे अष्टभुजाधारी बाल गणेश की प्रतिमा अपनी भव्यता और संतुलन के लिहाज से बेजोड़ है, लेकिन बाप्पा की सवारी मूषक महाराज की कल्पना तो हैरान करने वाली है। महाराष्ट्र के अंदाज में धोती कुर्ता और सफेद टोपी, लेकिन उस पर भगवा गमछा और हाथ में सनातन का झंडा। क्या गजब का स्वरूप है, क्या गजब की भावभंगिमा।
1: आप देखें कि लोगों ने अपने मोबाइल चालू कर रखे हैं, लोग वीडियोस बना रहे हैं, लोग तस्वीरें ले रहे हैं और क्वालिटी टाइम जो है वो बिता रहे हैं। देखिए किस प्रकार से हर कोई चाह रहा है कि एक बार बप्पा को निहार लें, एक बार कम से कम बप्पा को देख लें। जैसा कि मैंने बताया संतों की तस्वीर यहाँ पर दिखाई जा रही है, खुद संत बन करके बड़े ही विशाल रूप से यहाँ पर ये खड़े हैं, सभी कार्यकर्ता हैं और लगातार बप्पा के लिए सेवा देते हैं। थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका?
2: मनोज।
1: अच्छा ये बताइए कि बाल रूप है बप्पा का, क्या कहेंगे इनके बारे में? बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं।
2: ये साल का हम लोग का 99 ईयर्स है मंडल का और ये टाइम हम लोग ने महाराष्ट्र की जो संत परंपरा है उसको दिखाने का मंडल का प्रयास है और उसी रूप में हम लोग ने भगवान गणेश का रूप दिया है जो अष्टभुजाधारी बाल रूप गणेश के रूप में हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो कि भगवान की मूर्ति है। तो ये बहुत ही प्यारी मूर्ति हमारे जो मूर्तिकार है आकाश तिरमल उन्होंने बनाई है।
3: नहीं, महाराष्ट्र के संत वारकरी संप्रदाय जो है वैष्णव संप्रदाय उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी है। मतलब ये जितने भी संत है महाराष्ट्र में उनकी जो लीलाएं हैं वो यहाँ दिखाने की कोशिश की जा रही है।
0: मुंबई के राजा का दरबार है तो स्वाभाविक है कि भव्य है, विशाल है। संतों की प्रतिमाओं के अलावा पूरा सेट गरिमा से परिपूर्ण है। इस मंडल को मुंबई के पुराने मंडलों में गिना जाता है और लाल बाग की तरह यहाँ भी रोजाना लाखों श्रद्धालु बप्पा के दर्शन के लिए आते हैं। मुंबई के राजा के बाद आपको देश के सबसे महंगे गणपति के दर्शन करवाते हैं और वो है मुंबई GSP गणपति। जैसी प्रतिष्ठा वैसी ही भव्यता, बप्पा का दरबार यहाँ भी क्या खूब सजा है, लेकिन इसकी असली खूबी आपको बताते हैं। बप्पा को 66 किलोग्राम से अधिक शुद्ध सोने और 335 किलोग्राम चांदी से सजाया गया है, साथ ही 703 करोड़ रुपए का बीमा भी कराया गया है।
1: मैं इस समय मौजूद हूँ मुंबई महाराष्ट्र और देश के सबसे महंगे गणेश पंडाल में जिनकी बातें सुनकर वाकई में आप आश्चर्य हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले आप खुद गणपति बप्पा के दर्शन करें। ये देखिए मैं मौजूद हूँ जीएसबी सेवा मंडल मुंबई के वडाला इलाके में स्थित एक ऐसे पंडाल में जिनकी बीमा ही कम से कम 7 करोड़ रुपए की हुई है। आखिर कैसे वो आप देखें, ऊपर से नीचे बप्पा जो हैं वो गहने में लदे पड़े हैं। आपको बताएं कि 66 किलो सोना बप्पा को चढ़ाया गया है। इसके अलावा 350 किलो से ज्यादा चांदी से भी बप्पा को सजाया गया है। बहुत बड़ी थीम नहीं होती यहाँ, ना ही कोई चलचित्र होता है, बस बप्पा को यहाँ विराजमान किया जाता है। खास बात यह है कि मुंबई महाराष्ट्र के जितने भी पंडालों में गणेश बप्पा को विराजमान किया गया है, उनका विसर्जन इस बार 12 दिनों बाद होने वाला है, लेकिन जीएसबी एकमात्र ऐसा मंडल है जिनका विसर्जन 5 दिन में ही कर दिया जाता है। बड़ी मिन्नतें हैं यहाँ, जो कोई भी आता है लोग मांगते हैं, पूरा हो जाता है। यही वजह है कि एक बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। क्या आम क्या खास, हर कोई बप्पा के दरबार में पहुँच जाता है और सिर्फ एक बार उन्हें निहारना चाहता है।
0: चलिए अब आपको दिखाते हैं गिरगांव के राजा का पंडाल, जो बच्चों को खूब पसंद आ रहा है और उसकी वजह भी है।
1: जीएसबी मंडल जो है ये साउथ इंडियन लोगों द्वारा स्थापित किया जाता है और साउथ स्टाइल में इनकी पूजा होती है। बप्पा का दर्शन लेने के बाद तुरंत ही लोग भंडारे की तरफ निकलते हैं। भंडारा पास में ही होता है, प्रसाद के रूप में खाना खिलाए जाते हैं और थाली में वो पकवान सजाए जाते हैं जो साउथ इंडियन को बहुत ज्यादा पसंद है, जिसमें सांभर, चावल, साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की खीर जैसी चीजें शामिल होती हैं। बड़े ही मजे में खुश होकर के लोग वो खाते हैं और अपने घरों की तरफ निकल जाते हैं। ये देखिए किस तरीके से दिव्यांग भी यहाँ पर आते हैं, बकायदा दर्शन करते हैं। खास बात ये है कि मंडल के जो यहाँ पे सेवाकार हैं वो सभी इनकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं और बकायदा गणपति बप्पा का आकर के यहाँ पर दर्शन करते हैं। मैं मौजूद हूँ इस बड़े मुंबई के जीएसबी सेवा मंडल में, जिसे वाकई में देश का सबसे महंगा गणपति उत्सव पंडाल कहा जाता है।
0: ये पंडाल इस साल 95वां साल मना रहा है और इस साल प्रतिमा भी बेहद खास है, क्योंकि बप्पा को राजस्थान के श्रीनाथ जी का रूप दिया गया है।
1: अगर पॉलिटिशियन यहाँ मौजूद होते हैं, स्पोर्ट्समैन भी यहाँ पर आशीर्वाद लेने आते हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में सेलिब्रिटी भी फिल्मी दुनिया से आते हैं। इस समय हमारे साथ में बॉलीवुड एक्टर युवराज मौजूद हैं अपनी धर्मपत्नी के साथ और सीधे उनसे बातचीत करते हैं। तो फाइनली आप भी जीएसबी बाबा के पंडाल में पहुंच चुके हैं, क्या मनाया, कैसा यहाँ पर क्या कुछ देखा और क्या कहना चाहेंगे?
4: गणपति बप्पा मोरिया,
1: मंगल मूर्ति
4: मोरिया। सौभाग्य है हमारा, हम जीएसबी गणेश मंडल में है, अभी बाबा के दर्शन किए और यहाँ पे इतना अच्छा माहौल है, एक फेस्टिव माहौल है। यहाँ पे दर्शन ही नहीं लेकिन बहुत सारा कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं और जीएसबी मंडल का एक बहुत अच्छा प्रसाद भी हमें मिला, जो एक साउथ इंडियन बहुत ही अच्छा अनोखा प्रसाद, और रौनक है यहाँ पर, बाबा के भक्त है। मैं अपनी वाइफ और फैमिली के साथ यहाँ पर आया हूँ।
0: बप्पा की ऐसी खास प्रतिमाएं और पंडालों के दर्शन के लिए हर उम्र हर तबके के लोग पहुंच रहे हैं और वातावरण में एक ही जय घोष गूंज रहा है, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: महाराष्ट्र में गणपति बप्पा के दरबार इस बार सिर्फ भक्ति का रंग नहीं दिखा रहे, बल्कि अलग अलग संदेश और परंपराओं की झलक भी दे रहे हैं। कहीं खदान में मजदूर बनकर बप्पा सुरक्षा का संदेश दे रहे हैं, तो कहीं गणराय के दरबार में जगन्नाथपुरी की दिव्यता नजर आ रही है। कहीं बप्पा के स्वर्ण चरण भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं, तो कहीं पंडाल में रथ यात्रा का अद्भुत संसार सजा है। तस्वीरें अलग हैं लेकिन हर जगह गूंज रहा है गणपति बप्पा मोरिया। देखिए रिपोर्ट।

0: पप्पा ने थामा है खदान का औजार, सर पर सजा है सुरक्षा हेलमेट। कहीं गणराय के दरबार में जगन्नाथ धाम का दिव्य स्वरूप है तो कहीं स्वर्ण चरणों के दर्शन श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रहे हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में गणेश उत्सव के पंडाल सिर्फ सजावट नहीं बल्कि भक्ति के साथ संदेश, परंपरा के साथ कल्पना और आस्था के साथ सामाजिक सरोकार की अनोखी तस्वीर पेश कर रहे हैं। चंद्रपुर में वटगांव के श्री छत्रपति गणेश मंडल ने अपनी स्थापना के 10वें साल को खास अंदाज में मनाया है। अंधेरी भूमिगत कोयला खदान, सुरंगों के बीच काम करते मजदूर और उन्हीं के बीच अलग अलग रूपों में विराजमान विघ्नहर्ता। कहीं पप्पा खदान के भीतर जाते दिखाई देते हैं तो कहीं काम की जगह यानी वर्किंग फेस पर कोयला निकालते नजर आते हैं।
1: इस वक्त हम चंद्रपुर के शिव छत्रपति सार्वजनिक गणेश मंडल में है। यहाँ पर इस बार बेहद ही खास झांकियां तैयार की गई है। भक्तों को यहाँ पर खान कामगार के तौर पर दिखाया गया है। ये देखिए, इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ बप्पा को एक कामगार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। खास बात यह है कि चंद्रपुर को जो है, चंद्रपुर में कई प्रकार की कोयले की खाने हैं जिसके, इसलिए चंद्रपुर को कोल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। उसी को देखते हुए यहाँ पर बिजली निर्माण भी बड़े पैमाने पर होती है और इस मंडल की तरफ से एक बेहद खास संदेश दिया जा रहा है कि बिजली कैसे बचाई जाती है और बिजली निर्माण के लिए लगने वाला कोयला कैसे निकलता है, यहाँ बप्पा के माध्यम से यहाँ दिखाने का इस मंडल का प्रयास है।
0: ड्रिल मशीन से छेद करने की प्रक्रिया हो, सुरंग में ब्लास्टिंग की तैयारी हो या फिर SDL लोडर से कोयले को कोल टब्स में भरने का काम, पूरी माइनिंग प्रक्रिया को झांकी के जरिए जीवंत किया गया है। सिर पर हेलमेट, पैरों में गम्बूट्स और हाथों में काम के औजार, गणपति का ये रूप उन मजदूरों के समर्पण को सलाम करता है जो जमीन के सैकड़ों मीटर नीचे जाकर देश के लिए ऊर्जा जुटाते हैं।
2: गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति।
3: मैं इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं काम किया हूँ थर्मल पावर स्टेशन में और आज मुझे एक्चुअली पता चला है कि कोयला बाहर कैसे निकलता है, उसमें क्या प्रोसीजर हो सब होती है और उसी माध्यम से मेरे को भगवान के आशीर्वाद भी प्राप्त हुए। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके।
4: अपने चंद्रपुर में इतना सारा माइंस चलता है, लोगों को इतना पता है कि माइंस चलता है लेकिन एक्चुअल में वर्क क्या होता है, कैसे होता है और सेफ्टी के लिए क्या क्या प्राविधान करते हैं, वो सब आज लोगों को या इसके ये गणेश मंडल के माध्यम से मालूम हो रहा है।
0: 3 महीने की मेहनत से तैयार इस प्रस्तुति में सम्मान के साथ एक चेतावनी भी छिपी है, यानी ईंधन हो या बिजली, जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल और बचत दोनों जरूरी है।
5: चंद्रपुर से बिलोंग करते हैं और हमारे चंद्रपुर को एक द ब्लैक गोल्ड सिटी भी कहा जाता है और हमारी चंद्रपुर शहर में काफी सारे भूमिगत खदान और ओपन कास्ट खदान है और उसके ऊपर निर्भर ये हमने थीम रखी हुई है। हमारा थीम का ये उद्देश्य यही है कि जो हम बिजली यूज करते हैं वो किस तरह जनरेट होती है या पैदा होती है, जो कामगार जो भूमिगत खान के नीचे सैकड़ों मीटर के नीचे काम करते हैं वो कैसे मेहनत करते हैं, कैसे कष्ट करते हैं, कैसे परेशानियों से वो गुजरते हैं, वो कैसा कोयला निकालते हैं, फिर कोयला निकल के वो बाहर कैसे आता है, फिर वो थर्मल पावर स्टेशन तक कैसे जाता है और वहाँ से वो बिजली तैयार कैसी होती है, वो हमने इस थीम के अनुसार दिखाया है। हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा बिजली मत खर्च करो, जब यूज है तभी उसका वापर करो, क्योंकि आज अपन अगर हम बिजली का बचत करेंगे तो वो आगे हमको और हमारी पीढ़ियों को काम आएगा।
0: वहीं चंद्रपुर में एक और भव्य दरबार है जो देखते ही बन रहा है। जटपुरा गेट के पास सजे चंद्रपुर के राजा के पंडाल में इस बार गणपति उत्सव के साथ जगन्नाथपुरी की झलक दिखाई दे रही है।
6: हर साल एक बड़ा दर्शन चंद्रपुर के और चंद्रपुर जिले के जो भक्तों को चंद्रपुर के राजा की तरफ से सादर करते हैं। इस साल चंद्रपुर के राजा को 52 वर्ष पूर्ण हो रहे और इस साल की थीम है जय जगन्नाथ। जगन्नाथ मंदिर की 110 फीट की भव्य प्रतिकृति मंदिर की निर्माण की है और जगन्नाथ महाप्रभु का भी दर्शन बप्पा के साथ में चंद्रपुर के राजा के साथ में हो रहा है।
0: 21 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा के ठीक ऊपर भगवान जगन्नाथ का स्वरूप और दोनों तरफ बलभद्र तथा माता सुभद्रा, सामने करीब 110 फीट ऊंचे मंदिर जैसा विशाल प्रवेश द्वार, नक्काशी और सजावट ऐसी कि कुछ पल के लिए ओडिशा के जगन्नाथ धाम का एहसास होने लगता है। बप्पा के हाथों और पैरों में करीब 15 किलो चांदी का इस्तेमाल उनकी भव्यता को और बढ़ा रहा है। 52वें वर्ष में पहुंचा ये आयोजन श्रद्धालुओं को गणेश भक्ति के साथ जगन्नाथ आस्था से जोड़ रहा है।
1: हर साल की तरह इस साल भी चंद्रपुर के राजा का आकर्षण जो है लगातार बना हुआ है। लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ जो है हर साल इसी तरीके से मंडल में पूरी तैयारी के साथ में बाप्पा विराजमान होते हैं और भव्य मूर्ति यहाँ चंद्रपुर के राजा की यहाँ पे स्थापना की जाती है। 21 फुट की मूर्ति है और ये जो यहाँ मंदिर जो साकार आ गया है, ये मंदिर पूरा 110 फीट ऊंचाई का है और बहुत ही सुंदर आकर्षक मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। करीब 3 से 4 महीने का समय इस पूरे यहाँ पर पंडाल को बनाने में लगा हुआ है और खास बात ये है कि इस पंडाल में यहाँ पर जगन्नाथपुरी की झांकी यहाँ पर बनाई गई है, यहाँ जगन्नाथपुरी की प्रतिकृति यहाँ बनाई गई है।
0: लेकिन दूसरी ओर जालना में बजरंग गणेश मंडल ने श्रद्धालुओं के लिए पहली बार स्वर्ण चरण दर्शन की व्यवस्था की है। जालना के राजा के नाम से पहचाने जाने वाले इस दरबार में इस साल बप्पा के चरणों को सोने से सजाया गया है। मुंबई के लालबाग के राजा की तर्ज पर तैयार इस व्यवस्था का मकसद उन भक्तों को यहीं दर्शन का अवसर देना है जो किसी वजह से मुंबई नहीं जा पाते। अमरावती में भी आस्था का रंग कुछ ऐसा ही अनोखा है। नीलकंठ गणेश उत्सव मंडल ने पंडाल के भीतर जगन्नाथपुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा को साकार किया है।
1: गणेश पंडाल जो है अलग अलग तरह की झांकियां करने के लिए जो है प्रसिद्ध है। हम फिलहाल है अमरावती के जो है नीलकंठ गणेश मंडल में, जहां पर जो है यहां पर इस वक्त जो है वो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा का महोत्सव यहां पर उन्होंने बनाया है। आप देख सकते हो कि यहां पर जो है भगवान जगन्नाथ जी है, उनके भाई बलभद्र और सुभद्रा बहन जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है और गणपति की जो इस ओर जो है गणपति बप्पा की प्रतिमा जो है वो यहाँ पर जो है जगन्नाथपुरी जैसे रथ को यहाँ पर तैयार कर यहाँ पर बप्पा की मूर्ति स्थापित की है। और इस वक्त जो है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा महोत्सव होता है उसी तर्ज पर जो है यहाँ पर जो है वो जगन्नाथपुरी जैसा माहौल यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है हर कोई जो है भक्त हाथ जोड़कर अपने मोबाइल में जो है फोटो खिंचवाता नजर आ रहा है।
0: रथ पर भगवान जगन्नाथ, साथ में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा दोनों और मंदिर नुमा संरचनाएं, एक तरफ गणपति बप्पा तो दूसरी ओर बजरंगबली। करीब 85 साल पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मंडल ने इस बार श्रद्धालुओं का ऐसा माहौल देने की कोशिश की है जिससे पूरी गए बिना ही रथ यात्रा की अनुभूति हो सके।
2: 80 से 85 साल पुराना मंडल है और यहाँ पहले अखाड़ा था, पहलवान की करते थे, उससे फिर यह मंडल तैयार हुआ और अभी संस्था बन गई है। संस्था मंडल ने अष्टविनायक धार्मिक परंपरा के अनुसार काम करते हैं। अष्टविनायक दर्शन, जगन्नाथ खाटू श्याम, इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव कर रहे हैं।
0: जिन भक्तों ने अब तक जगन्नाथ धाम की यात्रा नहीं की उनके लिए झांकी श्रद्धा और कल्पना का खूबसूरत संगम बन गई है। महाराष्ट्र के इन गणेश दरबारों में तस्वीरें अलग हैं, रूप अलग है, सजावट के अंदाज अलग हैं, लेकिन भाव एक ही है बप्पा के दर्शन का। चंद्रपुर से विकास राजुरकर, जालना से गौरव साली, अमरावती से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: देश में हर तरफ बप्पा की भक्ति के इंद्रधनुषी रंग बिखरे हुए हैं और इसमें चार चांद लगा रही है गणपति की अनोखी प्रतिमाएं। पंडालों की अद्भुत सजावट भी हैरान कर देने वाली है। ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजकोट के पंडाल में श्रद्धालुओं को गणपति बप्पा की विशेष प्रतिमा के साथ साथ सफेद जीवित मूषकों के भी दर्शन हो रहे हैं। गणपति बप्पा के हाथ में रखे मोदक खाते हुए मूषकों को देखकर भक्त अभिभूत हैं और इस तरह सूरत के एक पंडाल को मैसूर पैलेस की भव्य थीम पर बनाया गया है। इस पंडाल में विराजित प्रतिमा को गुजरात की सबसे महंगी गणेश जी के रूप में जाना जाता है क्योंकि बप्पा के मुकुट, बाजूबंद, हार और आभूषणों को तैयार करने में लगभग 25 से 30 किलोग्राम सोने और चांदी का इस्तेमाल हुआ है। आभूषणों की चमक बढ़ाने के लिए इसमें करीब 2 लाख अमेरिकन डायमंड जड़े गए हैं। अब जरा

0: क्या घर में सूर्य का प्रकाश घर को शुभ या अशुभ बना सकता है? क्या घर की दिशा की वजह से घर शुभ या अशुभ हो सकता है? घर में रहने वाले लोग घर में शुभता अशुभता कैसे ले आते हैं? क्या आपका घर शुभ है या अशुभ है? क्या है इसके लक्षण? जानिए मेरे साथ गुड लक स्पेशल में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

सास बहू और बेटियां में आज देखिए रिश्तों के अनलिमिटेड तमाशे। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: राधाष्टमी के मौके पर बरसाने में आस्था और उल्लास का संगम, गलियों में सुनाई दे रही बधाई और मंगल गीतों की गूंज, भव्य रूप से मनाया जा रहा श्री राधा रानी का जन्मोत्सव। गणेशोत्सव के छठे दिन पंडालों में बप्पा की जयकार, मुंबई में लालबाग चौराहे के दरबार में उमड़ी भक्तों की भीड़, अमरावती में बद्रीनाथ धाम थीम पर बना पंडाल। पुणे के दगडूशेठ गणपति पंडाल में उमड़ा आस्था का मेला, बप्पा को अर्पित किया गया 251 किलो का मोदक केक, गजानन की उतारी गई आरती। मुंबई में 6 दिनों में 32,000 से ज्यादा बप्पा की प्रतिमाओं को दी गई विदाई, जिसमें 31,500 घरेलू और 650 सार्वजनिक गणेश मंडलों की मूर्तियों का विसर्जन हुआ, बीएमसी ने जारी किया आंकड़ा।

0: रायसेन में अनोखा यज्ञ में 1,51,000 किलो हवन सामग्री की आहुति, 251 तरह की जड़ी बूटियों के साथ 1.5 किलो सोना और 4 किलो से ज्यादा चांदी अर्पित, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का मिला प्रमाण पत्र। मेरठ में पहली बार भव्य एयर शो, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, 9 हॉक MK-132 विमान ने दिखाए रोमांचक करतब। दिल्ली में पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन के सत्र का उद्घाटन किया, कहा भारत आज दुनिया को समाधान दे रहा है, सोलर एनर्जी बढ़ाने पर जोर दिया।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़।
0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फैक्ट चेक में और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी को बदल दिया जाता है तो कभी पुरानी तस्वीरों के नए साजिशी रंग में रंग कर उन्हें पेश किया जाता है और लोग इसे बिना जांचे हुए बिना परखे हुए सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है तो कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है और नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे, बिना समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आप देख रहे हैं फैक्ट चेक। तो सबसे पहले फैक्ट चेक में आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उन वायरल वीडियोस की जिसको शेयर कर ये दावा किया जा रहा है कि हाल ही में यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के मक्का शहर पर हमला किया था। ये उसी का वीडियो है, ये बताया जा रहा है। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, आपको आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हालिया ब्रिक्स समिट के दौरान साथ मिलकर खाना बनाया और खाने का आनंद लिया। क्या है इस वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, आपको वो भी आगे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि हाल ही में यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के मक्का शहर पर हमला किया था। ये उसी का वीडियो है। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी इस रिपोर्ट में देखिए।
2: यमन के हूती विद्रोही सऊदी अरब को टारगेट कर रहे हैं। सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम ने मक्का के दक्षिण में एक हूती ड्रोन को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया। इस्लामिक सहयोग संगठन ने मक्का और मदीना क्षेत्र में हूती हमलों की निंदा की है। सऊदी अरब पर हमले यमन में बढ़ते तनाव के बाद शुरू हुए हैं। यमन में हूती विद्रोहियों और सरकारी बलों के बीच लंबे समय से हिंसक संघर्ष चल रहा है। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के मक्का शहर पर हमला कर दिया है। वीडियो में एक जगह पर आग का गोला गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और वहां पास में कई लोग भी खड़े नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को सऊदी अरब में हुए हालिया हमले का बताकर शेयर किया जा रहा है जिसमें लिखा हुआ है निशाने पर मक्का मदीना, निशाना लगाने वाले भी मुसलमान, मक्का समझौते वाले पाकिस्तान की बोलती बंद। माना जा रहा है कि 2 अरब मुसलमानों का पवित्र स्थल मक्का अब आतंकियों के निशाने पे है। हूती आतंकियों द्वारा मक्का को तबाह करने का प्रयास। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। इसे शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि यमन के हूती विद्रोहियों के सऊदी अरब की मक्का शहर पर किए गए हमले का ये वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच झूठ जानना जरूरी हो गया था, क्योंकि अक्सर जो वीडियो के जरिए दावा किया जाता है वो सही हो ऐसा होता नहीं है। तो वीडियो की जांच के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले हर फ्रेम को बेहद गौर से देखा। इस वीडियो में एक जगह पर आग का गोला गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और वहां पास के कई लोग आराम से खड़े भी देखे जा रहे हैं। ऐसे में जहन में ये सवाल आया कि अगर वाकई हमले का ये वीडियो होता तो फिर यहां पर इस तरह आराम से लोग आग के गोले को जाते हुए नहीं देख रहे होते। अफरा तफरी का माहौल होता, लोग इधर उधर भागते हुए देखे जाते, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। इसके अलावा वीडियो में जो आग का गोला दिख रहा है वो मिसाइल का है या फिर ड्रोन का, ये भी साफ नहीं हो पाया। तो वहीं सर्च के दौरान ये जानकारी जरूर सामने आई कि सऊदी अरब ने दावा किया है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने पवित्र शहर मक्का को निशाना बनाकर ड्रोन हमला करने की कोशिश की, जिसे हवा में ही मार गिराया गया, जबकि हूती विद्रोहियों ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। हूती सैन्य प्रवक्ता याया सारी ने इन खबरों को पूरी तरह से झूठा और निराधार बताया है। आपको बता दें, उनका यह कहना है कि उनके निशाने पर सिर्फ सैन्य ठिकाने और तेल बुनियादी ढांचे हैं और पवित्र स्थलों को निशाना नहीं बनाया गया। ऐसे में हमारा सवाल यह है कि अगर दावा सच है तो हमले के वक्त लोग आराम से एक जगह पर खड़े कैसे दिख रहे हैं? लोग जान बचाने के लिए भाग क्यों नहीं रहे? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों के बीच अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और इसी को लेकर जब फैक्ट चेक की टीम ने जांच की तो क्या सामने आया, इस रिपोर्ट में देखिए।
2: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें एक अकाउंट से 12 सितंबर 2025 को पोस्ट किया गया ये वीडियो मिला। इस वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में इसे सऊदी अरब के मदीना में हूती विद्रोहियों के मिसाइल को गिराए जाने का बताया गया था। इसी दौरान हमें यही वीडियो मिडिल ईस्ट के एक अकाउंट से भी 12 सितंबर 2025 को अपलोड किया हुआ मिला। वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में इसे मदीना में पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद के पास धमाका होने और आसमान में अज्ञात वस्तु उड़ते देखे जाने का बताया गया था। इसके अलावा हमें कुछ दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट से भी इस घटना के अलग एंगल से लिए गए वीडियो मिले, जिसे 12 सितंबर 2025 को ही शेयर किया गया था। इसी दौरान हमें सऊदी अरब के मक्का और मदीना में मौजूद दोनों पवित्र मस्जिद से जुड़ी जानकारी देने वाले मीडिया आउटलेट इनसाइड द हरमाइन के एक्स अकाउंट से 12 सितंबर 2025 को किया गया एक्सपोस्ट मिला। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि हम मस्जिद अल नबी के पास कल सुबह लगभग 5:43 बजे हुई एक घटना से अवगत हैं, जिसके दौरान एक तेज धमाके जैसी आवाज सुनी गई और कुछ दृश्य भी कैमरा में कैद हुए। हम सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि कयास लगाने से बचें और आधिकारिक स्रोतों की सत्यापित जानकारी सामने आने तक प्रतीक्षा करें। इसके बाद उन्होंने 16 सितंबर 2025 को फिर से एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा था, एक सूत्र ने हमें बताया कि पवित्र शहर मदीना में पिछले गुरुवार यानी 11 सितंबर 2025 सुबह लगभग 5:40 बजे एक अनाधिकृत ड्रोन को रोका गया और मार गिराया गया। ये मामला बंद कर दिया गया है। हालांकि नेक्स्ट पोस्ट में यह नहीं बताया गया था कि ये ड्रोन कहां से आया था और कहां जा रहा था। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ कि सऊदी अरब के मदीना शहर का करीब एक साल पुराना वीडियो है, जब मदीना में पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद के पास एक अनाधिकृत ड्रोन को नष्ट किया गया था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से घूम रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि हाल ही में भारत में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दोस्ती का खास अंदाज देखने को मिला। दोनों नेताओं ने भारत में साथ खाना पकाने और खाने का आनंद लिया, लेकिन जब वायरल हो रहे वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और झूठ सामने आया, पड़ताल करती हमारी इस रिपोर्ट में देखिए।
2: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। वैश्विक मंच पर कई सम्मेलनों में दोनों काफी दोस्तानी अंदाज में एक दूसरे से मिले हैं। विश्व के दो सबसे शक्तिशाली देशों के अध्यक्षों की दोस्ती की नई झलक दिखाता ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग साथ में खाना पकाते और खाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि दोनों नेताओं का यह अनोखा अंदाज नई दिल्ली में आयोजित हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान देखने को मिला। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत में साथ खाना पकाने और खाने का आनंद लिया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की दोस्ती का खास अंदाज देखने को मिला। बता दें 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स समिट का आयोजन किया गया था। इसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों नेताओं को एक साथ कुकिंग करते हुए देखा जा रहा है और इसे शेयर कर दावा किया जा रहा है कि दोनों नेताओं का यह अनोखा अंदाज हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दिखा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस तस्वीर को लेकर खूब अब अफवाहें बन रही हैं। ऐसे में वीडियो का सच झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम वीडियो की जांच में जुट गई। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को बेहद गौर से देखा। इस दौरान हमें जिनपिंग और पुतिन के एप्रन पर लिखे टेक्स्ट पर हमारा ध्यान गया। जब हमने इसे जूम किया तो इस पर रशियन फिश लिखा हुआ नजर आया। ऐसे में हमें ये इशारा मिला कि यहाँ रशियन सी फूड से जुड़ी कोई डिश इन दोनों नेताओं ने बनाई होगी। इसके बाद हमारा ध्यान वीडियो के बैकग्राउंड पर गया। जब हमने इसे ध्यान से देखा तो भारत मंडपम जैसा नहीं लगा, क्योंकि ब्रिक्स समिट में आए नेताओं का भव्य गाला डिनर नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था। इस शाही भोज की मेजबानी पीएम मोदी ने की थी। तो वहीं अब इसके अलावा ब्रिक्स समिट में रशिया के राष्ट्रपति और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक साथ कुकिंग की होती तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर होती। ऐसे में हमारा पहला सवाल ये है कि अगर दावा सच है तो पुतिन और जिनपिंग की कुकिंग का ये वीडियो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सामने क्यों नहीं आया। दूसरा सवाल, कहीं किसी और कार्यक्रम के पुराने वीडियो को हाल फिलहाल का बताकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है। जब हमारी टीम ने जांच की है तो क्या कुछ सामने आया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
2: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो की तहकीकात में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें ये एक यूट्यूब अकाउंट पर 12 सितंबर 2018 को अपलोड किया गया मिला। इस वीडियो में वायरल वीडियो वाले दृश्य मौजूद थे। इस वीडियो के साथ मौजूद डिस्क्रिप्शन में बताया गया था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने व्लादिवोस्तोक में आयोजित ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के दौरान साथ खाना बनाया। दोनों नेताओं ने रूसी पैनकेक बनाए जिसमें काले और लाल कैवियर भरे गए थे। इससे संबंधित रिपोर्ट हमें एक वेबसाइट पर भी 12 सितंबर 2018 को प्रकाशित मिली। इसमें भी वायरल वीडियो से जुड़े दृश्य मौजूद थे। इस रिपोर्ट में भी बताया गया था कि रूस के व्लादिवोस्तोक में इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलकर पारंपरिक रूसी पैनकेक बनाया। इन पैनकेक्स को ब्लिनी भी कहा जाता है। दोनों नेताओं ने दूसरी बार एक साथ कुकिंग की थी। इससे पहले दोनों ने चीन में एक साथ डंपलिंग्स बनाए थे। मॉस्को टाइम्स की वेबसाइट पर 12 सितंबर 2018 को प्रकाशित रिपोर्ट में भी हमें यही जानकारी मिली। इस रिपोर्ट में वायरल वीडियो वाले दृश्यों को देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, हमें इससे संबंधित जानकारी रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय की वेबसाइट पर भी 11 सितंबर 2018 को प्रकाशित मिली थी। इसमें वायरल वीडियो से जुड़े दृश्यों वाली तस्वीर मौजूद थी। तस्वीर के साथ दी गई जानकारी के अनुसार 11 सितंबर 2018 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में आयोजित प्रदर्शनी का दौरा किया। इस दौरान रूसी सी फूड और रूसी मार्केट पवेलियन में शेफ ने व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग को एप्रन पहनाया और बाद में दोनों नेताओं ने पैनकेक्स बनाए। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा गलत साबित हुआ। असल में ये वीडियो हाल फिलहाल का नहीं बल्कि करीब 8 साल पुराना है। दरअसल साल 2018 में रूस के व्लादिवोस्तोक में हुए ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में दोनों नेताओं ने एक साथ कुकिंग की थी। इसी पुराने वीडियो को अब गलत दावे के साथ हालिया ब्रिक्स समिट का बताकर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: और चलिए अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या क्या हो रहा है। बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
1: और अब वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर की आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।
2: इतने प्यारे बाल गणेश, जिसने भी देखा बप्पा का ये रूप देखता ही रह गया। एक छोटा सा बच्चा लेकिन मेकअप और रूप ऐसा कि मानो खुद बाल गणेश सामने आ गए हो। चेहरे की मासूमियत और बप्पा वाला रूप देखते ही हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस नन्हे से बच्चे का ये अद्भुत रूप लोगों को खूब पसंद आ रहा है। जिसने भी देखा बस यही कहा, गणपति बप्पा मोरिया। उम्र में भले ही बच्चा छोटा हो लेकिन टैलेंट में कोई कमी नहीं है। हाथ में पेन थामे बच्चा जिस बारीकी और सफाई से ओम नमः शिवाय लिख रहा है, उसे देखकर हर कोई हैरान है। एक एक अक्षर को इतनी खूबसूरती से लिखा गया है कि लिखावट में कहीं से भी बच्चे की उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बच्चे के इस हुनर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। आमतौर पर 9 महीने की उम्र में बच्चे चलना सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। वह सहारे के लिए आसपास की चीजों को पकड़ते हैं और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होना सीखते हैं। ऐसे में किसी बच्चे को पत्थरों से बनी पहाड़ी सीढ़ियों पर लगातार ऊपर चढ़ते देखना अपने आप में काफी अलग नजारा है। कि बच्चा सीढ़ियां चढ़ने के लिए अपने हाथों और घुटनों का सहारा लेता है, वह एक एक सीढ़ी पार करते हुए लगातार आगे बढ़ता रहता है। खास बात यह है कि वह बीच में ज्यादा रुकता भी नहीं दिखता, जैसे उसे बस किसी भी तरह ऊपर पहुंचने की जल्दी हो। उसके छोटे छोटे कदम और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश वीडियो को देखने लायक बना देती है। सीढ़ियां पत्थरों से बनी हुई नजर आ रही हैं और रास्ता भी किसी सामान्य घर या पार्क की सीढ़ियों जैसा आसान नहीं है। इसके बावजूद बच्चा बिना घबराए आगे बढ़ता रहता है। वह हर सीढ़ी पर हाथ टिकाता है, घुटनों के सहारे शरीर को ऊपर खींचता है और फिर अगली सीढ़ी की तरफ बढ़ जाता है। चीन के हुबेई प्रांत के वुहान से आए इस वीडियो को देखकर लोग चकित हैं। लद्दाख का ये वीडियो देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। छोटे छोटे बच्चे और उनका इतना प्यारा डांस की नजरें हटाना मुश्किल हो जाए। डांस के हर स्टेप में क्यूटनेस है, चेहरे पर मुस्कान है और आंखों में मासूमियत। इन नन्हे बच्चों की खुशी देखकर वहां मौजूद लोग भी खुश हो रहे हैं। रंग बिरंगे कपड़ों में सजे बच्चे जब साथ में थिरकते हैं तो पूरा माहौल ही खूबसूरत हो जाता है। सच में नन्हे सितारे किसी परी की कहानी से कम नहीं लग रहे।
3: When I was born back in Bahrain. It's been almost like 29 years, I guess. Let's see how she is.
2: 29 साल बाद अपनी नैनी से मिला शख्स तो बचपन की यादें फिर ताजा हो गई। कभी जिनके स्नेह और देखभाल में उसका बचपन बीता था, उनसे मिलते ही भावनाएं उमड़ पड़ी। दोनों की यह भावुक मुलाकात कैमरे में कैद हो गई। दोनों के बीच कोई सीधा खून का रिश्ता नहीं था, फिर भी बचपन में मिला अपनापन किसी पारिवारिक रिश्ते से कम नहीं रहा। बचपन में किसी का प्यार, दुलार और देखभाल इंसान की यादों में इतनी गहराई से बस जाता है कि सालों बाद भी वह रिश्ता उतना ही अपना महसूस होता है। एक इंस्टाग्राम यूजर ने अपने माता पिता को स्टेशन पर विदा करते हुए जो पल कैद किया, उसने हजारों लोगों के दिल छू लिए। खुशी ट्रेन के खिड़की से अपनी माँ और पिता को देख रही है। प्लेटफॉर्म पर खड़े माता पिता मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहे हैं, पिता भी मोबाइल निकालकर बेटी का वीडियो या फोटो ले रहे हैं। दोनों तरफ से यादों को संजोने की कोशिश साफ दिखती है। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती है, दूरी बढ़ती जाती है, लेकिन माता पिता तब तक हाथ हिलाते और मुस्कुराते रहते हैं जब तक बेटी की झलक गायब नहीं हो जाती। यह दृश्य कई लोगों को अपने माता पिता की याद दिला गया। मौसम चाहे जैसा हो बस निकल पड़ो अपने रास्ते पर। अब इन आंटी को ही देख लीजिए, अपने स्कूटर पर सवार होकर बड़े आराम से निकल पड़ी हैं। मौसम भी सुहाना है और रास्ता भी इतना खूबसूरत कि सफर का मजा दोगुना हो जाए। आंटी भी बिना किसी चिंता के अपनी स्कूटर राइड का जमकर आनंद ले रही हैं। चेहरे पर खुशी, रास्ते पर मस्ती और मौसम का साथ, यानी सफर छोटा हो या बड़ा एंजॉयमेंट पूरा होना चाहिए। हनुमानंश फिल्म का सुपरहिट भजन अब जिद पर आ गई पार्वती सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। साधु तिवारी की आवाज में अगाए इस गाने पर अब तक लाखों रील्स बन चुकी हैं। लेकिन इसी बीच कोलकाता से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है। इस वीडियो में शोमिका गुप्ता नाम की महिला ने गाने के बोल पर जो जवाब दिया है, उसे देखकर लोग अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। आप भी इन्हें सुनिए।
4: तो क्या होता अगर इस गाने का रिप्लाई वर्जन माता पार्वती की तरफ से होता? सुनते हैं।

0: दे।
1: वफादारी के साथ साथ समझदारी हो तो फिर क्या कहने। एक कुत्ता अपने मालिक के साथ खेत में पानी पहुंचाने में मदद करता दिखाई दे रहा है। वे नाली से बह रहे पानी को पैरों से सही डायरेक्शन देते हुए खेत में पहुंचाने में मदद करता है। मालिक खेत में सिंचाई का काम कर रहा है और कुत्ता भी उसके साथ लगा हुआ है। वे जिस तरह पानी को खेत की ओर ले जाने में मदद करता दिखाई दे रहा है, उसे देख कर लोग उसकी समझदारी और अपने मालिक के साथ की तारीफ कर रहे हैं। असम के इस फुटबॉलर गजराज का यह अनोखा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। दरअसल गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ स्थित बोगीधला प्लेग्राउंड में कुछ बच्चे हमेशा की तरह फुटबॉल खेलने में मग्न थे। तभी अचानक जंगल से निकलकर एक जंगली हाथी सीधे मैदान के बीचों बीच आ धमका। बच्चों ने खतरा भांपते हुए समझदारी दिखाई और तुरंत सुरक्षित दूरी पर जाकर खड़े हो गए, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। सुरक्षित दूरी से बच्चों ने देखा कि विशालकाय गजराज मैदान में पड़ी फुटबॉल के साथ किसी मजे हुए खिलाड़ी की तरह पेश आ रहा है। हाथी ने बड़े प्यार से अपने पैरों से फुटबॉल को किक मारा और उसके साथ खेलने लगा। खाली मैदान पर हाथी की है मस्ती और उसका अनोखा ड्रिबलिंग स्टाइल वहाँ मौजूद किसी शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: क्या घर में सूर्य का प्रकाश घर को शुभ या अशुभ बना सकता है? क्या घर की दिशा की वजह से घर शुभ या अशुभ हो सकता है? घर में रहने वाले लोग घर में शुभता अशुभता कैसे ले आते हैं? क्या आपका घर शुभ है या अशुभ है? क्या है इसके लक्षण, जानिए मेरे साथ गुड लक स्पेशल में।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: राधाअष्टमी के मौके पर बरसाने में आस्था और उल्लास का संगम, गलियों में सुनाई दे रही बधाई और मंगल गीतों की गूंज, भव्य रूप से मनाया जा रहा श्री राधा रानी का जन्मोत्सव। गणेश उत्सव के छठे दिन पंडालों में बप्पा की जयकार, मुंबई में लालबाग चौराहा के दरबार में उमड़ी भक्तों की भीड़, अमरावती में बद्रीनाथ धाम थीम पर बना पंडाल। पुणे के दगडू शेड गणपति पंडाल में उमड़ा आस्था का मेला, बप्पा को अर्पित किया गया 251 किलो का मोदक केक, गजानन की उतारी गई आरती। मुंबई में 6 दिनों में 32,000 से ज्यादा बप्पा की प्रतिमाओं को दी गई विदाई, जिसमें 31,500 घरेलू और 650 सार्वजनिक गणेश मंडलों की मूर्तियों का विसर्जन हुआ, बीएमसी ने जारी किया आंकड़ा। रायसेन में अनोखा यज्ञ में 151,000 किलो हवन सामग्री की आहूति, 251 तरह की जड़ी बूटियों के साथ 1.5 किलो सोना, 4 किलो से ज्यादा चांदी अर्पित, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र मिला। मेरठ में पहली बार भव्य एयर शो, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, नौहॉक MQ-132 विमान ने दिखाए रोमांचक करतब। दिल्ली में पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन के सत्र का उद्घाटन किया, कहा भारत आज दुनिया को समाधान दे रहा है, सोलर एनर्जी बढ़ाने पर जोर दिया।

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, जिस घर में आप रहते हैं अगर वो घर शुभ हो, उस घर की तरंगे अच्छी हों, तो उस घर में रहने पर आप उन्नति करते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं, आप प्रसन्न रहते हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका घर कितना शुभ है, कितना मंगलकारी है, और आपको लग्न के अनुसार बताएंगे कि आपके घर में कहां कहां पर गड़बड़ियां हो सकती हैं और उनको बेहतर करने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। जीवन में अगर प्रेम बढ़ाना हो, जीवन में किसी टूटते रिश्ते को बचाना हो, किसी संबंध को बेहतर करना हो, तो ये मंत्र बहुत कारगर होता है। नित्य प्रातः 108 बार इस मंत्र का जप तुलसी या चंदन की माला से करिए। जिस रिश्ते को, जिस संबंध को बचाना है, जहां पर मधुरता लानी है, वहां पर इस मंत्र का जप करके प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, रिश्ता क्यों ना टूट रहा हो, अगर इस मंत्र का निरंतर आप रोज प्रातः काल जप करें तो रिश्ते में माधुर्य बढ़ेगा और रिश्ता टूटने से बच जाएगा। देखिए, ज्यादातर हम लोग कहते हैं कि ग्रह शुभ है, ग्रह अशुभ है, या ये कहते हैं कि आपके कर्म शुभ हैं या कर्म अशुभ हैं। क्या घर भी शुभ या अशुभ होते हैं? और अगर घर शुभ या अशुभ होते हैं तो इनका प्रभाव क्या है? देखिए, दुनिया की हर चीज के अंदर तरंगे पाई जाती हैं, ज्यादा या कम मात्रा में हर चीज के अंदर तरंगे होती हैं। मकान, जमीन, यहां तक कि आपके कपड़ों में, आपकी वस्तुओं में भी तरंगे होती हैं। ये तरंगे शुभता भी पैदा करती हैं और अशुभता भी पैदा करती हैं। ये तरंगे शुभ भी होती हैं और अशुभ भी होती हैं। जब कहीं पर नकारात्मक तरंगे ज्यादा हो जाएं, जब अशुभता ज्यादा हो जाती है, तो मकान और जमीन में रहने पर समस्या पैदा होती है। ऐसे अशुभ मकानों में, ऐसे अशुभ जगहों पर रहने पर कुंडली के शुभ योग काम करना बंद कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा समय ठीक चल रहा है, मेरी दशा ठीक चल रही है, लेकिन जीवन में कुछ शुभ नहीं हो रहा है। उसका कारण ये होता है कि जिस मकान में, जिस घर में वो रहते हैं, वो अशुभ होता है, वहां की तरंगे अशुभ होती हैं और वो जीवन में शुभता नहीं लाने देती।
ये जो अशुभता है कि आपका घर शुभ है या अशुभ है, इस बात को कुंडली के माध्यम से जाना जा सकता है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें अपने घर में, अपने रिहाइश में, तो अपने घर की, अपने ऑफिस की, अपने जमीन की अशुभता को, नकारात्मक तरंगों को महसूस कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में अशुभता है, अगर आपके घर में अशुभ तरंगे इकट्ठा हो गई हैं, तो वो मकान, वो जमीन अशुभ हो जाती है और वहां रहने पर कुंडली के शुभ योग भी बहुत काम नहीं कर पाते हैं। अब ये जानते हैं कि जो दिशाएं हैं, जो डायरेक्शंस हैं, उनसे मकान कैसे शुभ या अशुभ हो जाता है। देखिए, आम तौर पर जैसा लोगों का मानना है कि पूरब और उत्तर दिशा के मकान सबसे ज्यादा शुभ होते हैं। सामान्यतः लोग ऐसा मानते हैं कि पूर्व दिशा के मकान और उत्तर दिशा के मकान सबसे ज्यादा शुभ होते हैं। सामान्यतः लोग ऐसा मानते हैं कि पश्चिम और दक्षिण दिशा के मकान शुभ नहीं होते। देखिए, ऐसा है नहीं। हर दिशा अपने आप में पवित्र है और हर दिशा के मकान अपनी अपनी जगह पर शुभ हो जाते हैं। आपको ये समझना होगा कि किस दिशा के मकान में क्या सावधानी रखनी चाहिए। जैसे अगर आपका मकान पूर्व दिशा का है, पूरब मुखी अगर आपका मकान है, तो पूरी तरह से सात्विक रहिएगा। पूर्व दिशा का मकान अत्यंत पवित्र मकान है, ऐसे मकानों में सामान्यतः मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ऐसे मकान में पूरी तरह से सात्विक रहना चाहिए। अगर मकान पश्चिम दिशा का है, वेस्ट साइड का है, तो मकान में, घर में लकड़ी का प्रयोग कम करें, अन्यथा लकड़ी खराब होगी, दीमक लगेगी और घर में नुकसान होगा। तो अगर पश्चिम दिशा का मकान है, तो घर में लकड़ी का प्रयोग कम करना चाहिए। अगर उत्तर दिशा का मकान है, तो आग और बिजली के उपकरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। घर में जहां पर खाना पकाते हैं, फायरप्लेस है, आग वाली चीजें हैं, वहां पर ध्यान रखिए और बिजली के उपकरणों पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर उत्तर दिशा का मकान है तो दक्षिण दिशा का अगर मकान है, तो वहां पर सीलन आने की संभावना सबसे ज्यादा है और दक्षिण दिशा के मकानों में गंदगी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि

उन्नति नहीं होगी। एक बात और समझिए कि घर के जो मुखिया हैं उनकी कुंडली के हिसाब से मकान होना चाहिए। जैसे अगर घर की मुखिया के कुंडली में मंगल अच्छा है तो दक्षिण दिशा का मकान आप ले सकते हैं। घर के मुखिया की कुंडली में अगर शनि अच्छा है तो पश्चिम दिशा का मकान लिया जा सकता है। यानी घर का डायरेक्शन क्या होगा ये घर के मुखिया की कुंडली से देखेंगे तो लाभ ज्यादा होगा और घर का फायदा आप ज्यादा उठा पाएंगे। तो एक चीज हो गई घर की दिशा, वो घर में शुभता और अशुभता पैदा कर सकती है। अब जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश कितना महत्वपूर्ण है और सूर्य के प्रकाश की कमी से किस तरह की अशुभता जीवन में पैदा होती है। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश आता है उन घरों में बीमारी और अशुभता बहुत दिन तक टिक नहीं पाती है। लेकिन जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता वहां पर अकारण बिना वजह के बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता ऐसे घरों में बच्चों के भविष्य और स्वास्थ्य के बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता उन घरों में बीमारियां जरूर आती हैं और छोटे से लेकर बड़े लोग बीमार रहते हैं। सूर्य का प्रकाश अगर घर में नहीं आएगा तो ऐसे घर में रहने पर व्यक्ति नशे का और अवसाद यानी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, इसकी संभावना बनती है। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता उन घरों में निगेटिव एनर्जी अगर इकट्ठा होती है तो वो निकल नहीं पाती, निगेटिव एनर्जी लंबे समय तक बनी रहती है। इसलिए भय का और नकारात्मकता का अनुभव होता है। अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आया और आपने घर में दुनिया भर के उपाय कर रखे हैं, कोई उपाय काम नहीं करेगा। घर में सूर्य का थोड़ा बहुत प्रकाश आना जरूरी है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अगर आपके घर में आएगा तो घर में नकारात्मकता इकट्ठा नहीं होगी। अब अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता तो कौन सा उपाय करना चाहिए? घर में शीशा लगाकर शीशे की सहायता से सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए या घर में ऐसा सुधार करिए जिससे थोड़ा बहुत सूर्य का प्रकाश आने लगे। रोज सवेरे घर में 3 बार शंख जरूर बजाइए ताकि नकारात्मक तरंगें हट जाएं। रोज सवेरे गायत्री मंत्र का 108 बार उच्चारण करिएगा। बोल बोल कर रोज सवेरे
108 बार गायत्री मंत्र पढ़िए और घर में लोहे का सामान कम से कम रखिएगा। अगर इतना करने के बावजूद भी घर की अशुभता नष्ट नहीं हो रही है, घर की अशुभता में कमी नहीं आ रही है, तो घर बदल दीजिएगा। बेहतर होगा एक शीशा ऐसा लगाएं जिससे रिफ्लेक्ट होकर घर में सूर्य का प्रकाश आए, या दीवार में खिड़की बनवाएं, रोशनदान बनवाएं। ऐसा करने से भी घर में सूर्य का प्रकाश आएगा, और जब किसी घर में सूर्य का प्रकाश आता है वहां अशुभता बहुत समय तक नहीं रह पाती है। तो घर की दिशा हो गई, सूर्य का प्रकाश हो गया। अब जो आप अपने घर में कलर का प्रयोग करते हैं, जिन रंगों का प्रयोग करते हैं, उन रंगों से किस तरह से अशुभता पैदा होती है, देखिए। घर में अगर आपने गलत जगह पर गलत रंग का प्रयोग किया है तो इससे आपकी किस्मत खराब हो सकती है, क्योंकि रंग जो हैं वो तरंग तो पैदा करते ही हैं। ये आपके सोच को, दिलो दिमाग को प्रभावित करते हैं। तो घर में गलत रंगों के प्रयोग से आपकी किस्मत खराब हो सकती है। अगर रंगों का संतुलन ठीक ना हो, घर में आपने बैलेंस करके अगर रंग नहीं लगाए हो, तो व्यक्ति की सोच खराब हो जाती है। घर में रहने वाला इंसान निगेटिव सोचता है, उसकी सोच में दिक्कतें आ जाती हैं। गाढ़े रंगों का अगर आप अपने घर में प्रयोग करें, बहुत ज्यादा लाल रंग का प्रयोग करें, या बहुत ज्यादा भूरे रंग का, काले रंग का प्रयोग करें, तो ऐसे घर में रहने पर जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। भूरा रंग, लाल रंग, गाढ़ा हरा रंग नौकरी में समस्याएं बढ़ा देता है। और अगर आपने अपने घर में ब्राउन कलर का, भूरे रंग का ज्यादा इस्तेमाल किया है, तो इसकी वजह से आपके जीवन में दरिद्रता आ सकती है। यानी आपके घर में कौन सा स्थान किस रंग का होना चाहिए, ये समझना आपके लिए जरूरी है। और अगर आप सही रंगों का प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। क्या उपाय करें, घर के रंगों को कैसे बेहतर करें? घर में हल्के और चमकदार रंगों का प्रयोग करें, लाइट और ब्राइट शेड के रंगों का प्रयोग करने से लाभ होगा। घर की छत का रंग हमेशा आपको सफेद रखना चाहिए। घर की छत का रंग अगर सफेद रखेंगे तो अच्छा होगा। घर में ज्यादातर सफेद रंग का और हल्के पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपने घर में गलत रंग लगाए हुए हैं तो उसको बदलिए। पहले वहां सफेद रंग लगाइए और इसके बाद जो रंग चेंज करना है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं।
मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर सफेद या क्रीम रंग का प्रयोग करें, मेन डोर पर काले रंग का दरवाजा, काले रंग का गेट ना लगाएं, व्हाइट या क्रीम कलर का प्रयोग करें। मुख्य गेट को आप हल्का ब्राउन रख सकते हैं, लेकिन मेन डोर का रंग भूल कर भी काला नहीं होना चाहिए। अब ये जानते हैं कि जो लोग घर में रहते हैं या घर में जो घटनाएं घटती हैं उससे किस तरह की अशुभता पैदा होती है। देखिए, अगर घर में बुरे स्वभाव के लोग हों, बुरी आदत वाले लोग हों, तो घर में अशुभता पैदा होगी। घर में चीख चिल्लाहट मचती हो, क्रोध में झगड़े होते हों, घर में मदिरा पान किया जाता हो, यानी बुरी आदतें हों, तो ऐसे घर में अशुभता आएगी। अगर घर में गलत तरीके से अर्जित धन का प्रयोग होता हो तो घर में अशुभता आएगी। घर में गलत तरीके से पैसा आएगा तो वो पैसा बीमारियां और कष्ट अपने साथ ले आएगा और इसमें आपको मुश्किल उठानी पड़ेगी। अगर घर में किसी की अप्राकृतिक मृत्यु हो गई हो, किसी ने सुसाइड किया हो या सडन डेथ हो गई हो, तो घर में इसकी वजह से भी अशुभता पैदा होती है अगर इसका उपाय ना किया जाए। और अगर घर के लोगों की वजह से, लोगों के स्वभाव की वजह से अगर घर में अशुभता पैदा होती है, तो ऐसी दशा में घर में धीरे धीरे दरिद्रता आनी शुरू हो जाती है। घर के लोगों का रोजगार खराब होने लगता है और घर में बच्चे बीमार रहने लगते हैं, उनके अंदर अजीब आदतें आ जाती हैं और घर इतना ज्यादा अशुभ हो जाता है कि घर में अकेले रहने पर डर लगता है या घर में कोई है ऐसा एहसास होता है, ऐसा अनुभव होता है। तो मुख्यतः घर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी आदतों से, उनके खान पान से, उनके स्वभाव से घर में अशुभता पैदा हो सकती है। इसलिए घर में रहने वाले लोगों को अपने आचरण का, अपने जीवन का बहुत ध्यान देना चाहिए। क्या उपाय किया जाए? गलत और बुरे कामों से तौबा करिए। गलत काम, अशुभ काम, बुरे काम मत करिए। घर के लोगों को आपस में षड्यंत्र नहीं करना चाहिए और आपस में एक दूसरे को काटने का या एक दूसरे के खिलाफ राजनीति का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, जहां तक हो सके गलत तरीके से पैसा मत कमाइए। ऐसा पैसा जैसे आएगा वैसे जाएगा। अगर घर में किसी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई है, किसी ने सुसाइड किया है या लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हुई है, तो पूरे घर की सफेदी करवाइए और एक महीने तक दोनों समय घर में
भगवत गीता का पाठ करवाइएगा। घर में भगवान शिव या भगवान कृष्ण की मूर्ति या उनका चित्र स्थापित करिएगा और उसकी नियम पूर्वक रोज पूजा करिएगा, आपको लाभ होगा। एक बात आप समझ लीजिए कि आप बाकी सारी चीजों के उपाय कर सकते हैं, दिशाओं का, घर में रहने वालों का, घर के रंगों का, लेकिन सूर्य के प्रकाश का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसीलिए रोशनदान निकलवा के, खिड़की निकलवा के, शीशा लगाकर ऐसी व्यवस्था जरूर करें जिससे आपके घर में सूर्य का प्रकाश आता रहे। देखिए, अलग अलग लग्न के लोगों की, लग्न की बात कर रहा हूं मैं, राशि की नहीं, अलग अलग लग्न के लोगों की कुंडली में संपत्ति की स्थिति अलग अलग होती है और उसी के हिसाब से उनके घर की समस्याएं होती हैं। तो अब आपको बताते हैं कि किस लग्न के व्यक्ति के जीवन में घर में किस तरह की समस्या होती है और इसको बेहतर करने के लिए क्या उपाय करें। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। इनके घर में आम तौर पर सफाई

उस चक्कर में घर में गड़बड़ियां होती हैं। इसीलिए मेष लग्न वाले अपने घर में सोच समझकर पौधे लगाएं, उल्टे सीधे गलत पौधे ना लगाएं। और घर को अगर साफ सुथरा बनाए रखें तो आपके घर की शुभता बढ़ेगी और उस घर में रहने पर आपको लाभ होगा। वृषभ लग्न। वृषभ लग्न वालों के घर में आम तौर पर सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था होती है, गड़बड़ी होती है उसमें, क्योंकि ये अपना घर बहुत अच्छा तो बना लेते हैं, सजा लेते हैं, रंग पे ध्यान दे लेते हैं, वास्तु पे ध्यान दे लेते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश की समस्या इनके घर में आम तौर पर रहती है। सूर्य के प्रकाश की दिक्कत इनके घर में पाई जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि वृषभ लग्न वालों के घर में ज्यादातर लोग बीमार रहते हैं, क्योंकि घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता। ऐसी स्थिति में अगर आपका लग्न वृषभ लग्न है तो घर में पर्याप्त रोशनी की और सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए, चाहे खिड़की तोड़कर, चाहे रोशनदान तोड़कर, चाहे शीशा लगाकर अपने घर में सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था जरूर करें। अगर आप सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आपके घर की शुभता बढ़ेगी। मिथुन लग्न। इनके घर में बेवजह का सामान भरा रहता है, अनावश्यक कूड़ा कबाड़ क्लटर ये भर करके अपने घर में रखे रहते हैं। जरूरत नहीं है फिर भी जूता नहीं हटाएंगे पुराना, जरूरत नहीं है फिर भी पुराने कपड़े नहीं हटाएंगे, तो इनके घर में अनावश्यक सामान भरा रहता है। देखिए, अगर आपका लग्न मिथुन लग्न है तो घर में व्यर्थ के सामान मत भरिए। वायु का वेंटिलेशन, एयर का वेंटिलेशन ठीक रखिए, घर में हवा पानी ठीक से आती रहे, कूड़ा कबाड़ इकट्ठा मत करिए। क्योंकि अगर आपका मिथुन लग्न है और आप अपने घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करेंगे, आपका ज्यादातर पैसा उधार बांटने में और बीमारी में खर्च होगा। कर्क लग्न। इनके घर में बाथरूम का मामला गड़बड़ होता है, बाथरूम में टाइल टूट जाएगी, बाथरूम में पानी टपकता रहेगा, ये लगातार घर की साफ सफाई करते रहते हैं लेकिन घर में गंदगी बनी रहती है। तो कर्क लग्न वालों के बाथरूम का और सफाई का मामला आम तौर पर गड़बड़ होता है। देखिए, अगर आपकी कुंडली कर्क लग्न की है तो घर में बाथरूम में पानी का ध्यान दें कि बेवजह पानी बर्बाद ना हो, और बाथरूम का फर्श टूट गया, टोटी खराब हो गई, उसको बदलवाइए और अपने घर में सफाई रखिए। बाकी लोगों से भी कहिए कि आपको सफाई रखने में वो सपोर्ट करें, मिल करके घर को साफ सुथरा रखें, बहुत अच्छा होगा। सिंह लग्न। सिंह लग्न वालों के घर में प्रकाश की व्यवस्था अक्सर गड़बड़ रहती है, किसी कोने में बल्ब फ्यूज हो गया, कहीं लाइट नहीं आ रही है, कहीं घर का कोई

पूरी तरह से अंधेरा है, ऐसा भी सिंह लग्न वालों के साथ देखा गया है। देखिए, अगर आपकी कुंडली सिंह लग्न की है तो बिजली का और प्रकाश का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था हो, बिजली बिल्कुल ठीक हो और बिजली की फिजूल खर्ची ना करें। कन्या लग्न, कन्या लग्न वालों के घर का मेन डोर गड़बड़ होगा। 90% मामले में देखिएगा कि कन्या लग्न वालों का घर बड़ा शानदार होता है, बहुत बढ़िया बनाते हैं, लेकिन इनका मेन डोर गड़बड़ होता है। मुख्य द्वार या तो टूटा रहता है या मुख्य द्वार का रंग ये काला करवा देते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो कन्या लग्न वालों के घर के मुख्य द्वार में गड़बड़ी पाई जाती है। जो कन्या लग्न के लोग हैं, इनको अपने घर के मुख्य द्वार का और वाहन की पार्किंग का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से और संपत्तियां बना पाएंगे, जीवन में और धनवान बन पाएंगे। अब जानते हैं तुला लग्न के बारे में। तुला लग्न के जो लोग हैं, इनके घर में क्या दिक्कत होती है? इनके घर में बेवजह के झगड़े बहुत होते हैं। छोटी छोटी बात पर घर में कलेश होता है, विवाद होता है और रसोई इनके घर में गड़बड़ होती है। रसोई की दिशा ठीक नहीं होती, इस वजह से तुला लग्न वालों के जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं। अगर आपका तुला लग्न है तो घर में शांति बनाए रखिए और पूजा उपासना पर विशेष ध्यान दीजिए। पूजा उपासना पूरी करिए। रसोई में खाना बनाते समय बहुत ध्यान दीजिए, आपका चेहरा पूरब या उत्तर की तरफ होना चाहिए। अगर आप ऐसा करें तो आपको लाभ होगा। घर में शांति रखिए, रसोई को साफ सुथरा रखिए, खाना बनाते समय पूरब या उत्तर की तरफ चेहरा रखिए, तो निश्चित रूप से आपके घर की अशुभता दूर हो जाएगी। वृश्चिक लग्न, इनके घर में अक्सर पानी की गड़बड़ी रहती है। पानी बेवजह का बहता है, बेवजह का पानी वेस्ट होता है और घर में सीलन भी रहती है इनके, ऐसा देखा गया है। तो अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो घर में पानी की स्थिति पर और सीलन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने घर में पानी की सिचुएशन ठीक रखें, पानी की बर्बादी ना करें और अपने घर में सीलन से घर को बचाइएगा। धनु लग्न, धनु लग्न वालों के घर में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान अक्सर खराब होते हैं। अक्सर इनके घर में बिजली की समस्या होती है, अक्सर इनके घर में रसोई की समस्या भी पाई जाती है। अगर आपका धनु लग्न है तो घर की वायरिंग पर, बिजली के फिटिंग पर, बिजली के उपकरणों पर और रसोई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धनु लग्न वालों के घर में शॉर्ट सर्किट ज्यादा होता है और धनु लग्न वाले ये भी जान लें कि आपके घर में बिजली के सामान जो खराब होते रहते हैं
उसकी वजह से पैसे की बर्बादी बहुत होती है, तो घर की वायरिंग ठीक रखें और अपने घर की रसोई पर विशेष ध्यान देंगे। मकर लग्न, इनके घर में रंगों की समस्या रहती है, गाढ़ा रंग करवा लेंगे, किचन में गुलाबी करवा लेंगे, बेडरूम में पीला करवा लेंगे, उल्टे सीधे रंग उल्टी सीधी जगह पे लगवा लेते हैं। इसकी वजह से मुश्किल होती है, इनके घर में रंगों की समस्या रहती है और प्रकाश की कमी रहती है, घर में अक्सर अंधकार महसूस होता है। इनको अपने घर में सही रंगों पर ध्यान देना चाहिए, खिड़की दरवाजे ऐसे रखने चाहिए जिससे नेचुरल प्रकाश, सूर्य का प्रकाश घर में आता रहे। अगर आप ऐसा करेंगे तो घर की अशुभता दूर होगी और घर की स्थितियां बेहतर होंगी। कुंभ लग्न, इनके घर में सफाई की समस्या होती है, अक्सर घर में गंदगी इकट्ठा हो जाती है और घर की चीजें अस्त व्यस्त रहती हैं, एक जगह पर नहीं रह पाती, घर में अव्यवस्था रहती है और सफाई की समस्या भी रहती है। इनको घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए। अगर आपका लग्न कुंभ लग्न है तो घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। आपका पैसा बीमारियों में बेवजह बांटने में खर्च नहीं होगा। मीन लग्न, मीन लग्न वालों के घर में एक तो पानी बेवजह टपकता बहुत है, पानी बेवजह बर्बाद बहुत होता है और सूर्य का प्रकाश इनके घर में आम तौर पर नहीं आता, जिसकी वजह से घर में बीमारी भी होती है, पैसे की बर्बादी भी होती है। तो देखिए, सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करें, खिड़की निकलवा के, रोशनदान लगवा के, शीशा लगवा के, जैसे भी संभव हो सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करें और पानी की बर्बादी से बचिए। जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं उन्हें गंभीर बीमारियां होती हैं और पानी की बर्बादी करने वाले के पास पैसा कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं बचेगा, पैसे की बचत को लेकर परेशान रहेंगे। तो गुड लक स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

सास बहु और बेटियां में आज देखिए रिश्तों के अनलिमिटेड तमाशे। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहु और बेटियां में

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत दगडू शेठ पंडाल की तस्वीरें। पुणे के श्रीमंत दगडू शेठ के गणपति में उत्सव में लोगों की अपार श्रद्धा देखने को मिल रही है और इसलिए दूर दूर से लोग यहां पर इनके दर्शन के लिए आते हैं। इस दौरान एक खास तस्वीर सामने आई है, यहां पर श्रद्धालुओं ने 251 किलोग्राम का मोदक के आकार का केक गणपति को अर्पित किया है। गणेशोत्सव के पावन अवसर पर चढ़ाए गए इस अनूठे प्रसाद और भव्य केक की चर्चा हर तरफ रही है। बताया जा रहा है कि 40 से 50 कारीगरों ने मिलकर यहां अनूठा मोदक केक बनाया जिसमें रसमलाई का फ्लेवर डाला गया है। और चलिए अब आपको वाराणसी में बप्पा की विदाई की तस्वीरें दिखाते हैं। वाराणसी में गणेश उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह महाराष्ट्र से कम नहीं है। वाराणसी में भी मुंबई की तर्ज पर लालबाग के राजा की प्रतिमूर्ति भगवान गणेश की प्रतिमा की विदाई के लिए भव्य रूप से शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के बुलानाला में से 6-5 दिवसीय गणेश उत्सव के बाद श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। खास बात यह थी कि मुंबई की ही तर्ज पर यह शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें हजारों श्रद्धालु मराठी वेशभूषा में शामिल हुए। तो वहीं गजपति ढोल ताशा दल के भुसावल से आए 80 कलाकारों ने इस दौरान पूरे रास्ते ढोल ताशे बजाते हुए मिनी महाराष्ट्र जैसा नजारा तैयार किया। शहर के बुलानाला से निकलकर ये लालबाग के राजा की शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए लक्सा लक्ष्मी कुंड पहुंचकर गणपति की विदाई तक चली। शोभा यात्रा के दौरान पूरे रास्ते आम श्रद्धालुओं ने भी लालबाग के राजा भगवान गणेश का दर्शन किया और लोक कलाओं का आनंद लिया।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी GNT पर मनाए जा रहे इस गणेश उत्सव से जुड़िए, और इसके लिए आपको करना बस इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाइए और हमारे साथ शेयर कीजिए। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज भी रहे हैं, दिखाते हैं आपको। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के रहने वाले शिवम नामदेव ने गणपति बप्पा की सुंदर तस्वीरें GNT के साथ शेयर की हैं। वीडियो में बप्पा स्वरूप भव्य और दिव्य लग रहा है। इन्हें अपने घर में इन्होंने गोबर और मिट्टी से निर्मित इको फ्रेंडली गजानन की स्थापना की है। इको फ्रेंडली गणेश की प्रतिमा बनाकर पर्यावरण का संदेश दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर हमें उत्तराखंड से बप्पा के भक्त तुषार कश्यप ने भेजी है। ये भी बेहद खूबसूरत तस्वीर है, जिसमें गजानन के अद्भुत और अलौकिक स्वरूप नजर आ रहा है। बप्पा की ये तस्वीरें भक्तों को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। भक्त ने अपने घर बप्पा के मंदिर को भव्य तरीके से सजाया है। सुरेंद्र सैनी ने बप्पा को फलों का भोग लगाया है। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं अमरावती में गणेश उत्सव की। अमरावती में गणेश उत्सव के दौरान आस्था और धार्मिक स्थलों की थीम पर भव्य झांकियां सजाई गई हैं। यहां की रुक्मिणी गणेश उत्सव मंडल में इस बार उत्तराखंड के प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम की प्रतिकृति बनाई गई है। साई सकोर मैदान में बनाए गए इस भव्य पंडाल में गणपति बप्पा की सुंदर प्रतिमा के साथ बद्रीनाथ मंदिर की प्रतिकृति आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मंडल पिछले 41 सालों से हर साल अलग अलग धार्मिक और आस्था के केंद्रों की थीम पर गणेशोत्सव मनाता आ रहा है। इस बार बद्रीनाथ धाम की प्रतिकृति के जरिए श्रद्धालुओं को अमरावती में ही उत्तराखंड के इस पवित्र धाम के दर्शन का अनुभव देने का प्रयास किया गया है। गणपति बप्पा के दर्शन के साथ श्रद्धालु बद्रीनाथ मंदिर की भव्य सजावट और झांकी भी देखने पहुंच रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें महाराष्ट्र के जालना की। जालना में श्री अनोखा गणेश मंडल का 108 किलो चांदी के गणपति श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, और इस प्रतिमा के निर्माण में 3.5 से 4 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस गणेश मूर्ति पर करीब 40 से 50 तोला सोने की परत चढ़ाई गई है। बुलढाणा जिले के एक खाम गांव के सर्राफा व्यापारी विश्वकर्मा जांगड़ ने इस गणेश प्रतिमा को तैयार किया है। मूर्ति की सुरक्षा में 6 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं और साथ ही सीसीटीवी कैमरा से भी नजर रखी जा रही है। जालना के श्री अनोखा गणेश मंडल की पूरे महाराष्ट्र में अपनी अलग पहचान है। मंडल की ओर से हर साल अलग अलग थीम पर गणेशोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस बार भी यहां पर बप्पा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं सूरत के एक अनोखे गणपति पंडाल की तस्वीरें। सूरत में एक ऐसा गणेश पंडाल तैयार किया गया है जिसकी थीम देखकर लोग हैरान भी हो रहे हैं और रोमांचित भी। दरअसल सूरत के महिधरपुरा इलाके में तैयार किए गए इस गणेश पंडाल की खासियत ये है कि यहाँ भगवान गणेश के दर्शन करने से पहले श्रद्धालुओं को एक हॉरर थीम से होकर गुजरना पड़ता है। पंडाल में प्रवेश करते ही भक्तों को अलग अलग तरह के हॉरर सीन देखने को मिलते हैं, जिन्हें खास तौर पर लोगों के मनोरंजन और रोमांच को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। ये पूरा गणेश पंडाल 3 से 4 अलग अलग लेयर्स में तैयार किया गया है। जैसे ही श्रद्धालु लाइन में लगकर पंडाल के अंदर प्रवेश करते हैं, उनका सामना एक के बाद एक अलग अलग हॉरर सीन से होता है। कहीं भूत प्रेत नजर आते हैं तो कहीं पिशाच और डरावने किरदार लोगों को डराने की कोशिश करते नजर आते हैं। कुछ समय के लिए श्रद्धालुओं को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी हॉरर फिल्म के सेट के अंदर पहुंच गए हों। हालांकि इसका उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना है।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: सास बहू और बेटियां में आज देखिए रिश्तों के अनलिमिटेड तमाशे। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: चीनी हथियार के खरीदार बेबस और लाचार, चीन के चमत्कारी हथियार जंग में क्यों हो रहे बेकार, चीन के तिलिस्मी हथियारों की पोल खोल देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: राधाष्टमी के मौके पर बरसाने में आस्था और उल्लास का संगम, गलियों में सुनाई दे रही बधाई और मंगल गीतों की गूंज, भव्य रूप से मनाया जा रहा है श्री राधा रानी का जन्मोत्सव। गणेशोत्सव के छठे दिन पंडालों में बप्पा की जयकार, मुंबई में लालबाग चौराहे के दरबार में उमड़ी भक्तों की भीड़, अमरावती में बद्रीनाथ धाम थीम पर बना पंडाल। मुंबई में 6 दिनों में 32,000 से अधिक बप्पा की प्रतिमाओं को दी गई विदाई, जिसमें 31,500 घरेलू और 650 सार्वजनिक गणेश मंडलों की मूर्तियों का हुआ विसर्जन, बीएमसी ने जारी किया आंकड़ा। तेलंगाना के पलवंचा में करोड़ों के नोटों से सजे गणपति बप्पा, 2,90,00,000 के नोटों की पंडाल की सजावट, 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोटों का किया गया इस्तेमाल।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: बरसाना में धूमधाम से मनाई जा रही राधाष्टमी, जन्मोत्सव पर मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। राधा रानी का 11 क्विंटल दूध से हुआ अभिषेक, दही दूध घी और शहद से भी कराया गया स्नान। राधा रानी मंदिर में हुई भव्य आतिशबाजी, महाभिषेक के बाद हुई आरती, जयकारों से गूंजा पूरा बरसाना। राधाष्टमी पर बरसाना से पूरे ब्रज में भक्तिमय माहौल आया नजर, दूर दूर से उत्सव में शामिल होने पहुंचे यहां भक्त। राधाष्टमी को लेकर बरसाना में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, भक्तों की सुविधा को भी रखा जा रहा है उनका पूरा ख्याल। नैनीताल के नंदा देवी महोत्सव में उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्तों ने किए मां नंदा सुनंदा के दर्शन। ब्रह्म मुहूर्त में मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शनार्थियों का उमड़ा हुजूम, भक्तों ने मां को अक्षत फूल नारियल चढ़ाकर मां की पूजा अर्चना की। रंग बिरंगी लाइट से सजाया मंदिर परिसर, रोशनी में बिखरी दिव्य छटा। वेद मंत्रों के उच्चारण से नंदा में हुआ मंदिर का माहौल, भक्तों ने जमकर लगाए जयकारे। मां नंदा देवी महोत्सव 23 सितंबर तक रहेगा जारी, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। विघ्नहर्ता गजानन के महाउत्सव का छठा दिन, देशभर में विधि विधान से बप्पा की पूजा अर्चना जारी। विभिन्न स्वरूपों में गजानन दे रहे हैं भक्तों को दर्शन, अलग अलग थीमों पर बनाए गए हैं पंडाल। सूरत के महिदरपुरा इलाके में गणेशोत्सव का अनोखा रंग, हॉरर की थीम पर तैयार किया गया पंडाल। डरावनी फिल्म की तर्ज पर बनाया गया पंडाल का माहौल, गजानन के दर्शन से पहले भक्तों को मिलता है अलग ही रोमांच। सूरत के महिदरपुरा में हर साल अलग अलग थीम पर पंडाल बनाने की परंपरा, उत्सव को अलग स्वरूप देने की होती है कोशिश। हुबली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के घर में विराजे गजानन, विसर्जन से पहले प्रहलाद जोशी ने की पूजा। पुणे के डगड़ूशेठ गणपति पंडाल में उमड़ा आस्था का मेला, बप्पा को अर्पित किया गया 251 किलो का मोदक केक। अमरावती में बद्रीनाथ धाम मंदिर की थीम पर सजाया गया गणेशोत्सव पंडाल, दूर दूर से यहां देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। गणपति बप्पा के साथ भक्तों को बद्रीनाथ धाम के भी हो रहे हैं दर्शन, रंगीन लाइटों से सजाया गया पंडाल। अमरावती में 41 सालों से अलग अलग थीम पर पंडालों को सजाने की है परंपरा, रुक्मणी गणेश उत्सव मंडल की ओर से होता है आयोजन। मुंबई में 6 दिनों में 32,000 से अधिक बप्पा की प्रतिमाओं को दी गई विदाई, बीएमसी ने जारी किया आंकड़ा। मुंबई में अब तक 31,500 घरेलू गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन, सार्वजनिक गणेश मंडल की 650 मूर्तियों का विसर्जन।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: सास बहू और बेटियां में आज देखिए रिश्तों के अनलिमिटेड तमाशे। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: रख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हड़के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद, यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: गणेशोत्सव के छठे दिन पंडालों में बप्पा की जयकार, मुंबई में लालबाग चौराहे के दरबार में उमड़ी भक्तों की भीड़, अमरावती में बद्रीनाथ धाम थीम पर बना पंडाल। तेलंगाना के पलवंचा में करोड़ों के नोटों से सजे गणपति बप्पा, 2,90,00,000 के नोटों की पंडाल की सजावट, 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोटों का किया गया इस्तेमाल। राधाष्टमी के मौके पर बरसाने में आस्था और उल्लास का संगम, गलियों में सुनाई दे रही है बधाई और मंगल गीतों की गूंज, भव्य रूप से मनाया जा रहा है श्री राधा रानी का जन्मोत्सव। नैनीताल के नंदा देवी महोत्सव में उमड़ा आस्था का मेला, मानंदा सुनंदा की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, 23 सितंबर तक चलेगा उत्सव। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को दी सौगात, 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा राष्ट्र निर्माण में जेंजी की भूमिका बेहद अहम। मेरठ में पहली बार भव्य अशो, मोहिउद्दीनपुर में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने किया शानदार प्रदर्शन, नौहॉक MK-132 विमान ने दिखाए रोमांचक करतब। 20वें एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी से पहले आज जापान के नागोया में शानदार एयर शो, फाइटर जेट्स ने पेश किया एरोबेटिक डिस्प्ले, थोड़ी देर में होगा उद्घाटन समारोह।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर।
4: नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिंकी भाभी और लेकर आई हूँ आपके लिए मनोरंजन जगत की मसालादार खबरें। सीरियल्स का सस्पेंस हो, रियलिटी शोज का हंगामा या फिर वेब सीरीज का तड़का, सास बहू और बेटियां के इस शो में आपको मिलेगी मनोरंजन की हर खबर। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले देखते हैं आज की खास खबरें।
5: तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा।
6: एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज से सजे सास बहू और बेटियां के वीकेंड स्पेशल एपिसोड में आज देखिए एकता कपूर के घर पहुंचे सितारे बप्पा का आशीर्वाद लेने,

और साथ ही रचना मिस्त्री के घर आए गणपति बाप्पा, मंगेतर संग रचना ने की आरती सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में राध्या संग हादसा हो गया है और इस हादसे के पीछे अकेली दादी नहीं है बल्कि अंतरा भी दादी के साथ है। लेकिन प्रथम अपनी राध्या को हादसे से बचा लेता है, कैसे चलिए देखते हैं।
1: मुश्किल में राध्या, प्रथम बना रक्षक, दादी और अंतरा की जान, दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में दादी के कहने पर अंतरा राध्या के लिए जाल बिछाने गई थी। अपने हाथों से जमीन पर तेल डाल रही थी ताकि राध्या का पैर फिसले और वो मूर्ति राध्या के ऊपर गिर जाए, लेकिन किस्मत का लिखा कुछ और ही हो गया क्योंकि वहाँ पर मूर्ति अपने आप हिलने लगी जिसके चलते अंतरा शिकार होने वाली थी कि तभी वहाँ पर राध्या रक्षक बनकर आ गई और उसने न सिर्फ अंतरा को हटाया बल्कि मूर्ति का भार खुद अपने ऊपर ले लिया। फिलहाल तो राध्या बाल बाल बच गई और उसने सभी घरवालों को पूरा किस्सा भी बता दिया, लेकिन इस पर दादी ने सवाल खड़े कर दिए और सवाल पर प्रथम ने भी सवाल कर दिया।
2: राध्या, तुम्हारी कमर में इतना दर्द था, मैं तुम्हें इतना भारी बंदा कैसे पकड़ लूं? बात तो वनिता जी की नहीं है बल्कि उनके कोख में पल रहे हमारे बच्चे की भी है। एक माँ अपने बच्चे की भी आग का दरिया पार कर सकती है, ये तो मामूली सा दर्द था।
3: अरे इसी वजह से तो ये स्टोर रूम में रखा हुआ था, लेकिन ये यहाँ आया कैसे?
2: वो हमने बाहर निकाला था, कबाड़ी वाले को बुलाया था कि वो ले जाए, बेकार है इतना भारी सा। कबाड़ी वाले ने कहा कि दो तीन आदमी लगेंगे इसको उठाने के लिए, भारी है ना, तो वो आदमी का अरेंजमेंट करने के लिए चला।
1: भाई दादी ने बचने की कोशिश तो की लेकिन प्रथम को गुस्सा आ गया, ऐसे में उसने उन आदमियों को कॉल लगाने की कोशिश की लेकिन दादी ने संभाल लिया और राध्या का ख्याल रखने को कहा। बस फिर क्या, प्रथम राध्या को लेकर जैसे ही जा रहा था कि तभी उसका पैर जमीन पर पड़ी तेल की बॉटल पर टकरा गया और उसने सभी के सामने फिर से सवाल कर दिए।
4: ये तेल यहाँ कैसे है?
1: भाई आज तो दादी और अंतरा दोनों ने ही अपने आप को झूठ बोलकर बचा लिया है, लेकिन जल्द ही इन दोनों का खुलासा हो ही जाएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
0: नजर डालते हैं सीरियल्स की खबरों पर और देखते हैं कि किस सीरियल में क्या हो रहा है। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और हो जाइए सास बहू और बेटियां कि इस नॉन स्टॉप एयरलाइंस पर सवार। चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर।

0: सी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में सरिता बेचैन हो रही है क्योंकि उसे अम्मू कहीं नजर नहीं आ रही। ऐसे में जीतू सामने आता है और सरिता जीतू से जानने की कोशिश करती है अम्मू के बारे में, लेकिन जीतू भी अनजान है। इसी बीच वहाँ पर संजोग आता है, दोनों को ये बताता है कि कविता दीदी अम्मू को लेकर गई है। बस फिर क्या, ये सुनकर जीतू और सरिता दोनों ही हैरान होते हैं। सरिता को तो डाउट हो जाता है कि कहीं कविता अम्मू की क्लास ना लगाए। ऐसे में देखिए कैसे वो गणपति बप्पा के आगे हाथ जोड़ती है और प्रार्थना करती है कि उसकी अम्मू सही सलामत हो। वहीं दूसरी ओर किचन में जीतू नकली अम्मू के साथ काम कर रहा है और वो नकली अम्मू परेशान हो रही है इस घर में नौकरानी की तरह काम करके। इसी बीच वहाँ पर आ जाती है अम्मू भी, जिसकी आंखों से बह रहे हैं आंसू और ये चीज जीतू ने देख ली है। ऐसे में अम्मू अनजाने में उस नकली अम्मू की मदद करने तो लगती है, लेकिन जीतू अम्मू से ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि वो कविता दीदी के साथ थी। लेकिन अम्मू बिना कुछ कहे सिर्फ आंसू बहा रही है और रसोई का काम कर रही है। इसी बीच उसका हाथ भी जल जाता है। जीतू उसकी मदद करने के लिए आगे तो बढ़ता है, लेकिन अम्मू मना कर देती है। इतना ही नहीं, अपने आंसू पूछते हुए अम्मू वहाँ से चली भी जाती है और जीतू उसके दर्द को भांप लेता है और उसे डाउट हो जाता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब जीतू को क्या पता कि अम्मू को पता चल गया है कि उसका संजय ही स्वाति का संजू है।
1: एक्चुअली बहुत सारी खबरें छुपाई जा रही थी, उसमें से एक खबर अभी सामने आई है। अभी तो बहुत कुछ पता नहीं, पता स्वाति को ये पता नहीं है। मेन खबर तो यही है कि स्वाति को पता चलना कि उसकी प्यारी अम्मू की शादी उसके संजू के साथ हुई है। जब पता चलेगा तो समझेगा कि मम्मी सही बोल रही थी कि ये लड़की गड़बड़ है।
0: अब वृंदा ने तो ये बात अपने दिल में दबा ली है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि नरेंद्र और विपुल दोनों शहर में आ गए हैं उसे ढूंढते हुए। इतना ही नहीं, उन्हें तो संजय के बारे में भी पता चल गया है। तभी तो देखिए कैसे वो माधवी के घर के बाहर कर रहे हैं ताका झांकी, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि संजय का घर है कौन सा। इसी बीच वहाँ पर आ जाती है माधवी और पकड़ लेती है उनकी चोरी। इतना ही नहीं, माधवी तो उन पर नाराज भी होती है। ऐसे में विपुल और नरेंद्र दोनों माधवी को समझाने की कोशिश करते हैं।
2: अच्छी तरह से पहचानती हूँ दोनों, यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर
3: बोलो ना।
4: मैडम
3: वो ना उस बारे में सबको बोलो क्या बताने
2: का ना, उसको फोन कर रुको।
3: हाँ वो जो लड़की है ना, वो मेरी
2: छोटी
3: बहन है,
2: वो जो है ना वो शरा अगर एक वो हलफ कर जिंदगी तुम जो मुझे आगा कर
5: वो उन्होंने हिंट कब दिया है आज तक, तो सीधे क्लास ही लगाती है, तो इस बार भी वही हुआ है, क्लास लगा दी उन्होंने। हम कोशिश कर रहे थे कि वो बाहर निकल के आए सामने से और हम उनको अप्रोच करें, हमें और विपुल, पर हुआ ऐसा है कि वो खुद ही आ गई हैं पीछे से और फिर वही उन्होंने यही किया है कि इस बार उन्होंने भगा दिया हमें फिर से।
1: जैसे कि मैंने अभी नरेंद्र और विपुल को पकड़ा है, मेरी गाड़ी में कुछ ताक झाक कर रहे थे, आए तो सीधा गेट के अंदर से हमारे घर के अंदर आ गए। मेरा गाड़ी पता नहीं क्या कर रहा था, सो रहा था, तो अब मैं उनको पकड़ती हूँ और उनको पूछती हूँ क्या करो यहाँ पे, तो मुझे बोलते हैं कि आपको आगाह करने आए हैं, वो लड़की ऐसे वैसे, तो मैं उनकी बात सुनती नहीं हूँ और उनको बोलती हूँ कि तुम मुझे आगाह करोगे माधवी शाह को, ऐसे करके उनको भगा देती हूँ। लेकिन ना दिमाग में बत्ती तो जल गई है इसके कि आए किस लिए थे ये यहाँ पे, अब ये आगे अनफोल्ड होगा, आगे और इन्वॉल्वमेंट होगी कुछ ना कुछ।
0: फिलहाल तो माधवी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसे तो बस दोनों पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो उसे दोनों बदमाश लग रहे हैं। ऐसे में वो अपने गार्ड को बुलाती है और दोनों को घर के बाहर का रास्ता दिखाती है, लेकिन कहीं ना कहीं माधवी को डाउट तो हो ही गया है। देखना होगा कि माधवी सच का पता लगा पाएगी।

सीरियल मन सुंदर में बढ़ रही है रुचिता और निहाल की नजदीकियां। असल में रुचिता का मोबाइल बेड के नीचे चला जाता है, जिसके चलते वो कोशिश करती है उसे निकालने की और उसकी मदद करता है निहाल, और इसी बीच दोनों की नजरें टकराती हैं।

0: निहाल ने तो रुचिता की मदद कर दी, लेकिन रुचिता वो निहाल से दूरियां बनाने की कोशिश कर रही है, पर ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि निहाल हर चीज में रुचिता को अपने साथ लेकर चल रहा है। असल में उसकी कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है और उस प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर कोई और नहीं बल्कि रुचिता ही है। ये देखकर रुचिता हैरान होगी।
1: लाइन प्लेटफॉर्म पर रियलिटी शो राइज एंड फॉल का सीजन 2 जल्द ही दस्तक देने के लिए तैयार है। शो के नए कंटेस्टेंट्स के नामों से अब पर्दा उठ चुका है, तो इस शो में कौन अपनी साख बचा पाएगा और किसका होगा पत्ता साफ, चलिए देखते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से सितारे इस बार मैदान में उतरने जा रहे हैं।
2: पर यहाँ किस्मत नहीं औकात चलती है। 15 सेलिब्रिटीज का ईगो क्लैश नीचे ट्रैक।
3: बहुत जल्द होगा राइज एंड फॉल के सीजन 2 का आगाज।
4: रणनीति मेरे खून में है।
5: जो अपनों का ना हो सका वो हमारा क्या होगा।
3: होगी धुरंधर सितारों की एंट्री।
2: आखिर एक फूटी कोड़ी क्या कर सकती है इस जमाने में। टीवी के सितारे भी जुड़ जाएं इसे कमाने में। इस गेम में मौके भी बहुत होंगे।
3: रियलिटी शोज के नए पैमाने।
2: इसने तो ले ली लिफ्ट की सवारी, अब ऊपर पड़ेगी सब पे भारी।
6: राजा हो जाए रंग चप्पड़े एक नागिन का डंक।

0: बहुत जल्द आ रहा है राइज एंड फॉल का सीजन 2। ऐसे में सामने आ गए हैं शो से जुड़ने वाले कई सारे नाम। जी हाँ, इस बार आपको इस रियलिटी शोज में देखने को मिलेंगे बॉलीवुड के कलाकार, टेलीविजन के सितारे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और साथ ही साथ नजर आएंगे पॉलिटिशियंस भी। जी हाँ, ये सीजन होगा ढेर सारे धमाकों के साथ, क्योंकि इसमें एक से बढ़कर एक चेहरे हिस्सा जो लेने वाले हैं। राइज एंड फॉल का सीजन 2 होस्ट करने वाले हैं वीरेंद्र सहवाग। वही सीजन 1 को होस्ट किया था अश्नीर ग्रोवर ने, लेकिन उनके बाकी वर्क कमिटमेंट्स के चलते वो इस सीजन को होस्ट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको बता दे हैं, द 50 में हाल ही में नजर आ चुके करण पटेल अब आएंगे राइज एंड फॉल के सीजन 2 में। जी हाँ, करण पटेल टेलीविजन का जाना माना चेहरा है, जिन्हें आप स्टार प्लस के सीरियल कस्तूरी और ये है मोहब्बतें में देख चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी किस्मत रियलिटी शोज में भी आजमाई है, जैसे कि नच बलिए, झलक दिखला जा, खतरों के खिलाड़ी और द 50। ऐसे में वो अब अपने किस्मत का खेल राइज एंड फॉल के सीजन 2 में आजमाने वाले हैं। भाई, करण पटेल की पर्सनालिटी काफी गुस्सेल है, लेकिन इस शो में वो अपने गुस्से पर कितना कंट्रोल और माइंड गेम पर कितना फोकस करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा।
1: राजा हो जाए रंग चप्पड़े एक नागिन का डंक।
0: बात करें प्रियंका चहर चौधरी की, मैं आपको बता दे, प्रियंका चहर चौधरी बिग बॉस जैसे बड़े रियलिटी शो का हिस्सा रह चुकी हैं। जी हाँ, प्रियंका चहर चौधरी बिग बॉस 16 में नजर आई थी, जहाँ उन्हें फर्स्ट रनर अप का खिताब मिला था। भाई, उन्होंने ट्रॉफी तो अपने नाम नहीं की, लेकिन दर्शकों का दिल जरूर जीता। भाई, प्रियंका ने अपने करियर की शुरुआत सीरियल उड़ानिया से की थी, उसके बाद नागिन 7 और बैटल ग्राउंड जैसे रियलिटी शोज में भी वो नजर आ चुकी हैं। ऐसे में अब फिर एक बार रियलिटी शो का हिस्सा बनने जा रही हैं, तो देखना होगा कि भाई बिग बॉस तो नहीं जीत पाई, लेकिन क्या राइज एंड फॉल में उनकी किस्मत उनका साथ देगी। राइज एंड फॉल में नजर आने वाली है दो भाइयों की जोड़ी। जी हाँ, रोहित रॉय और रोनित रॉय, जो टेलीविजन और बॉलीवुड के नामचीन चेहरे हैं, वो भी शो का हिस्सा बनने वाले हैं। वहीं आपने रोनित रॉय को क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जो सीजन 1 था, कसौटी जिंदगी की कसम से ऐसी सीरियल्स में देखा है। इसके अलावा वो कई सारी बॉलीवुड मूवीज और सीरीज में भी काम कर चुके हैं। अब बारी रोनित रॉय की रियलिटी शोज में आने की, और उन्होंने चुना है राइज एंड फॉल को। अब इसके अलावा आपको बता दें कि उनके भाई रोनित रॉय भी टीवी सीरियल का जाना माना नाम रह चुके हैं। देश में निकला होगा चांद, फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला और रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी जैसे शोज में वो नजर आ चुके हैं। भाई, अब ये दोनों भाई जब एक शो में आएंगे, तो इनका भाईचारा या फिर इनका गुस्सा क्या देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
1: जो अपनों का ना हो सका वो हमारा क्या होगा।

बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल क्वीन स्वरा भास्कर भी राइज एंड फॉल का हिस्सा बनने जा रही हैं। वहीं आपने स्वरा भास्कर को फिल्में जैसे कि तनु वेड्स मनु, रांझना, प्रेम रतन धन पायो, वीरे दी वेडिंग जैसी फिल्मों में देखा है और वहां पर दर्शकों ने उन्हें बेहद पसंद किया। इसके अलावा हाल ही में कलर्स टीवी के रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में स्वरा भास्कर अपने हस्बैंड संग नजर आई थी। इसके अलावा स्वरा भास्कर एक पॉपुलर सोशल एक्टिविस्ट भी है। भाई स्वरा के पॉपुलर ट्वीट्स हो या फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट या फिर उनका कोई इंटरव्यू, भाई जब भी वो आती है तब भी वायरल हो जाती है। ऐसे में अब स्वरा राइज एंड फॉल में किस तरीके का गेम खेलती हुई नजर आएंगी, ये देखना दर्शकों के लिए काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होगा। इसके अलावा आपको बता दें, अर्चना गौतम भी राइज एंड फॉल का हिस्सा बनने वाली हैं, जिन्हें आप बिग बॉस 16, मास्टर शेफ और खतरों के खिलाड़ी जैसे रियलिटी शोज में देख चुके हैं। भाई अर्चना गौतम काफी ज्यादा पॉपुलर नेम है जो एंटरटेनर के साथ साथ काफी स्मार्ट भी है और रियलिटी शोज में अपनी जगह बनाना बखूबी जानती है। शो का हिस्सा बनने वाली है गौतमी कपूर, जिन्हें आप सीरियल क्योंकि साज भी कभी बहू थी में देख चुके हैं। इसके अलावा वो कई सारी बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं और साथ ही साथ बॉलीवुड सीरीज में भी। भाई हाल फिलहाल में वो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आई थी। भाई जब राम कपूर लॉकअप का हिस्सा बन गए तो अब बारी उनकी वाइफ की, जो की राइज एंड फॉल का हिस्सा बनने जा रही हैं। भाई हमने राम कपूर की गेम तो देख ली, अब गौतमी किस तरीके से दर्शकों का दिल जीतेगी ये हम इस शो में देखेंगे।

इसके अलावा आपको बता दे, बिग बॉस का एक ऐसा चेहरा राइज एंड फॉल का हिस्सा बनने जा रहा है, जो फिर एक बार दर्शकों को उन दिनों की याद दिलाएगा जिसे देखकर टेलीविजन में तहलका मच गया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रियंका जग्गा की, जो बिग बॉस सीजन 10 का हिस्सा रह चुकी है। जी हाँ, प्रियंका जग्गा एक ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल कलाकार थी जिससे सलमान खान भी परेशान हो गए थे, और उन्होंने तो यहाँ तक का ये स्टेटमेंट दे दिया था कि अगर कलर्स कोई भी शो प्रियंका जग्गा के साथ करेगा तो वो बिग बॉस कभी भी होस्ट नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, वो कलर्स टीवी के किसी शो में हिस्सा नहीं लेंगे, जिसके बाद प्रियंका जग्गा को टेलीविजन इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया। लेकिन अब सोशल मीडिया के दौर में वो फिर एक बार वापसी कर चुकी हैं, और इसी के साथ साथ अब नए रियलिटी शो में भी नजर आएंगी। ऐसे में अब जो हरकतें उन्होंने बिग बॉस में की थी, क्या वो वही दोहराएंगी या फिर उनकी सुधरने वाली पर्सनालिटी सभी को देखने को मिलेगी, ये देखना काफी एंटरटेनिंग होगा। इसके अलावा बीजेपी के एक्स स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला भी राइज एंड फॉल का हिस्सा बनने वाले हैं। भाई, राजनीति में तो उन्होंने कई षड्यंत्र अपनाए हैं, अब इस शो में उनकी कौन सी रणनीति देखने को मिलेगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। भाई, इन सभी कलाकारों के साथ साथ अब नजर आने वाले हैं रजत दलाल भी, जो एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, और इसी के साथ साथ वो बने थे बिग बॉस का हिस्सा। जी हाँ, बिग बॉस 18 में उन्होंने कहर मचाया था और दर्शक उनके दीवाने हो गए। इसके अलावा आपको बता दे कि वो बैटल ग्राउंड में गैंग लीडर के तौर पर भी नजर आए थे, और अब फिर एक बार एक नए रियलिटी शो का हिस्सा बनकर वो दर्शकों का दिल जीतेंगे। अब बात बिग बॉस के कलाकारों की हो ही रही है, तो आपको बता दे कि श्रुतिका अर्जुन और नेहल चुडासमा भी राइज एंड फॉल का हिस्सा बनेंगे। नेहल को आप बिग बॉस 19 और श्रुतिका को आप बिग बॉस 18 में देख चुके हैं। भाई, जहां नेहल मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं, तो वहीं श्रुतिका अर्जुन पॉपुलर एक्ट्रेस है जिन्होंने तमिल और मलयाली फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा श्रुतिका एक बेहद ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी है। राइज एंड फॉल में कौन से जलवे बिखेरेंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। भाई, कलाकार तो हो गए, अब बारी इन्फ्लुएंसर्स की, तो आपको बता दे इन्फ्लुएंसर्स जैसे कि अनम दरबार, दीप्ति चैटरी भी इस शो का हिस्सा रहने वाली है। इसके अलावा सौरभ बेदी, जिन्हें आप दिलवाली दुल्हा ले जाएगी में देख चुके हैं, और स्प्लिट्सविला 16 में इन्होंने तो सोशल मीडिया पर तहलका ही मचा दिया था। भाई, कई सारे लोग इनके दीवाने हो गए, और इसी के साथ साथ उनकी पार्टनर निहारिका तिवारी, जो कि मॉडल और स्प्लिट्सविला 16 की एक्स कंटेस्टेंट है, वो भी राइज एंड फॉल का हिस्सा बनने वाली है। भाई, वैसे आपको बता दे कि निहारिका ने हाल ही में सोशल मीडिया पर सौरभ बेदी के साथ अपना ब्रेकअप अनाउंस किया था। भाई, दर्शकों ने इन दोनों को साथ में तो बेहद पसंद किया, लेकिन अब जब ये जोड़ी टूट गई है तो किस तरीके से ये खेल खेलेगी ये दिलचस्प होगा देखना। इसके अलावा स्प्लिट्सविला 14 की कंटेस्टेंट साक्षी श्रीवास भी राइज एंड फॉल का हिस्सा बनेंगी।

0: कियारा जो कि स्प्लिट्सविला 16 में विनर रह चुकी है। जी हाँ, कुशल तनवर यानी कि गुल्लू के साथ इन्होंने स्प्लिट्सविला 16 की ट्रॉफी शेयर की है। वो भी बनने जा रही है राइज एंड फॉल का हिस्सा। वही कुल मिलाकर 18 कंटेस्टेंट है जो आपको एंटरटेन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये शो आपको बता दे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में रिलीज हो जाएगा, यानी कि एंटरटेनमेंट होगा जोरदार। तो हो जाइए तैयार एक नए रियलिटी शो के लिए जो आपको कर देगा फुल ऑन एंटरटेन। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: सीरियल की खबरों संग हम आपको भक्ति के रंग भी दिखाते हैं। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मुंबई, जहां सितारे बाप्पा की भक्ति में डूबे हुए हैं। कहीं नाच गाकर बाप्पा को खुश करने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं हो रहा है गणपति विसर्जन।
2: गजतंत्र के राजे बाप्पा मोरया, मूसक पे भी राजे बाप्पा मोरया।
3: सितारों के घर बाप्पा के आने की धूम।
2: गजतंत्र के राजे बाप्पा मोरया, मूसक पे भी राजे।
3: जम गई महफिल, बढ़ गई रौनक।
2: सोहे गुलाल करन, तेरी होती है पूजा गौरी के संग। धन्य तेरे चरणों को छूके हुए।
3: जश्न बप्पा के आगमन का।
2: कल भूषण गजानन गजानन गजा बप्पा मोरया, एक दंत दयावंत गजा बप्पा मोरया।
3: चारों तरफ गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। सितारों के घर बप्पा पधारे हैं। ऐसे में सभी सितारे जुटे हुए हैं बप्पा की सेवा खुशामत में। और तो और, जम गई है उनके घर मेहमानों की महफिल भी। ऐसे में आइए देखते हैं कैसे अंकिता लोखंडे के घर पहुंच गए हैं कई सारे सितारे बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए। तो वहीं कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह के घर बप्पा के आने की चमचमाती महफिल जमी हुई है। इसी के साथ सोनू सूद भी पप्पा के आने से खुश तो है, लेकिन जाने से उनकी आंखें नम है। तो आइए सिलसिलेवार चलते हैं सभी सितारों के घर और लेते हैं बप्पा का आशीर्वाद। बात करेंगे अंकिता लोखंडे की, तो हर साल की तरह इस साल भी अंकिता और विकी के घर बप्पा विराजमान हुए हैं। ऐसे में जब भी बप्पा आते हैं तो अंकिता के चेहरे की खुशी चार गुनी बढ़ जाती है, और ये तो उनके अंदाज में नजर आ ही रहा है। जहाँ पर आज अंकिता लोखंडे ने सफेद रंग की नववारी चुनी है बप्पा की सेवा खुशामद के लिए, और तो और उनके घर वाले भी उसी रंग में रंगे हुए हैं। इतना ही नहीं, अंकिता लोखंडे के घर उनके कई करीबी दोस्त यार भी पहुंचे हैं, जिनमें नाम शामिल है एकता कपूर का, जो वक्त निकाल कर पहुंची हैं अंकिता के घर में उनके बप्पा के दर्शन पाने के लिए। इसके अलावा आरती सिंह, जिन्होंने ब्लू कलर का अनारकली पहना है, वो भी पहुंची हैं, और साथ ही नजर आई हैं युविका चौधरी, जिन्होंने चुना है सफेद रंग का अनारकली। और देखिए कैसी ये दोनों हसीनाएं लग रही हैं, गजब की खूबसूरत। इसके अलावा सफेद रंग के अटायर में नजर आ रही हैं रागिनी खन्ना भी। भाई सफेद रंग देखकर तो यही लग रहा है जैसे यहाँ का थीम ही रखा गया है श्वेत बप्पा। इसके अलावा वहाँ पर नजर आई ईशा मालविया, जिन्होंने पहनी है पीले रंग की साड़ी, और देसी अंदाज में ये लग रही हैं खूबसूरत। साथ ही पिंक कलर की सिल्क साड़ी पहने नजर आई अपर्णा दीक्षित। भाई जब भी देसी अंदाज में अपनी अदाएं दिखाने की बारी आती है तो अपर्णा कभी पीछे नहीं रहती। इनके अलावा फराना भट्ट भी देसी अंदाज में पहुंची हैं। इनके अलावा खानजादी, आयशा खान, ये सब भी पहुंची हैं देसी अटायर में, और चमचमाते देसी अटायर में सभी लग रही हैं हसीनाएं। और साथ ही दिखी हैं अशनूर कौर, जिन्होंने पर्पल कलर की साड़ी चुनी है अंकिता लोखंडे के घर आने के लिए। और देखिए जैसे ही सभी एक साथ पहुंचे तो अंकिता के घर बप्पा की आरती के दौरान सभी झूम झूम कर गाने लगे, जिसमें अंकिता का जोश सुपर से भी ऊपर नजर आ रहा है।

अब चलते हैं कश्मीरा और कृष्णा अभिषेक के घर, जहां पर बप्पा के आने का चल रहा है सेलिब्रेशन। और इस सेलिब्रेशन में चार चांद लगाने के लिए पहुंची हैं सुनीता अपने बेटे यशवर्धन के साथ। जरा देखिए कैसे देसी अंदाज में चेहरे पर मुस्कान लिए सुनीता कृष्णा और कश्मीरा के घर तो पहुंची हैं, लेकिन कृष्णा कश्मीरा उनकी सेवा खुशामद कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। भाई इतने सालों से बिगड़ा हुआ रिश्ता अब ठीक हो गया है, तो ऐसे में इस रिश्ते में सिर्फ प्यार ही प्यार नजर आ रहा है। सुनीता के अलावा नजर आई हैं हुनर हाली भी, जिन्होंने साड़ी पहनकर अपनी खूबसूरती से चार चांद लगा दिए और तो और कर रही हैं वो बप्पा के दर्शन भी। इतना ही नहीं, वो तो कश्मीरा के साथ लगा रही हैं जमकर ठुमके भी। भाई बप्पा का स्वागत नाच गाकर किया जाता है, ऐसे में कश्मीरा और हुनर अपने डांस से चार चांद लगा रही हैं। इनके अलावा खास मेहमान बनकर पहुंचे हैं कपिल शर्मा भी, जो बप्पा के आने की खुशी जाहिर कर रहे हैं।

भाई वाकई कृष्णा और कश्मीरा का घर तो सुरों से गूंज उठा है और ये सेलिब्रेशन सबसे स्पेशल रहा है इसीलिए क्योंकि कृष्णा और कश्मीरा के बच्चों ने गाया है स्पेशल गाना भी।

0: एक्ट्रेस रचना मिस्त्री ने अपने घर गणपति स्थापित किए हैं और ऐसे में सास बहू और बेटियां की टीम भी बाप्पा के दर्शन करने के लिए उनके घर पहुंची, जहां हमने कि बाप्पा के दर्शन तो वहीं रचना ने भी अपने मंगेतर संघ की विघ्नहर्ता की पूजा। तो चलते हैं रचना मिस्त्री के घर।
1: रचना की बाप्पा

0: मेरा मन।
1: रचना और अमित की बन गई जोड़ी।
0: आंखें बस तुमको निहारे।
1: रचना ने की फियांसे अमित संग खास पूजा।
0: आंखें बस तुमको निहारे।
1: जी हाँ, आप सबकी प्यारी रचना मिस्त्री जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली है। भाई उनकी सगाई तो हो चुकी है, बस इंतजार है बैंड बाजा बारात का और गणेशोत्सव की धूम चल रही है। ऐसे में खास इस मौके पर आए हैं उनके होने वाले पतिदेव यानी कि अमित मदान। और आज सास बहू और बेटिया में पहली बार रचना अपने होने वाले पति अमित से हमें मिलवाएंगी। करेंगे हम उनसे ढेर सारी बातें, जानेंगे कैसे इन दोनों की जोड़ी बनी। साथ ही होगी गणपति बप्पा की खास पूजा।
2: बोलो गणपति बप्पा।
1: इतना ही नहीं, आज तो रचना अपनी फैमिली से भी मिलवाएंगी। रचना के पापा होंगे इमोशनल क्योंकि बेटी विदा जो होने वाली है। और साथ ही ढेर सारी बातों के साथ ढेर सारी मस्ती और ढेर सारी भक्ति होने वाली है। तो चलिए इस भक्ति भरे डे आउट की शुरुआत करते हैं सीधा चलकर रचना के घर पर। भाई आज देखिए कैसे रचना और अमित साथ साथ पूजा कर रहे हैं और बापा का आशीर्वाद ले रहे हैं। भाई नई नवेली जोड़ी है, जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। ऐसे में गणपति बप्पा का आशीर्वाद तो बनता ही है।

0: तो भाई पूजा तो हो गई, अब मिलते हैं रचना के होने वाले पति अमित से, जहां आज कई राज खुलेंगे, जानेंगे हम दोनों की लव स्टोरी और साथ ही होंगी ढेर सारी बातें दिल से।
1: हाँ, घर पे आज पूजा है एंड हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। ऑब्वियसली बात है, शादी के पहले के फेस्टिवल्स हैं ये, तो इट्स फन एट द सेम टाइम इट्स अ लिटिल इमोशनल। ये बहुत खुश है,
2: ज्यादा खुश हूँ
1: कि अगले फेस्टिवल सारे साथ में मनाएंगे, बट ये घर मतलब यू नो एज डॉटर ऑफ मिस्त्री फैमिली दिस लाइक द काइंड ऑफ द लास्ट फेस्टिवल्स।
2: फियांसे फेस का अपना फेस्टिवल है ना।
1: You know that was one of the very I think strong reason where we because बहुत सारे लोग हमको बोल रहे थे कि आप लोग एक काम करो ना, आप लोग एंगेजमेंट साथ में ही कर लो, बाकी फंक्शंस के शादी के साथ निपटा लेना, रोका तो हो चुका है, why you want to do it separately, but we were like कि नहीं हमको fiance phase enjoy करना है, तो that's the reason हमने रोका किया, फिर सगाई की और अब शादी होने वाली है।
2: वो तो शादी से पहले भी लगता था। नहीं, डर की बात नहीं है, इट्स अ न्यू थिंग, तो थोड़ा नर्वस नहीं तो सबको लगता है, बिकॉज एक नया स्टार्ट है हम लोग के लिए। मैंने भी कभी ऐसा शादी देखी नहीं कैसी होती है क्या होती है, बट आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी। अरे बहुत बहुत ड्रीम से भी ऊपर है यार, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। मैं तो पापा को बोला आई गॉट एवरीथिंग नाउ, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स नाउ।
0: भाई इन दोनों की जोड़ी है लाजवाब, और देखिए कैसे दोनों एक दूसरे को खूब कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और आज तो रचना गणेश उत्सव के साथ साथ अपने होने वाले पति के लिए सजी धजी है, इन्होंने किए हैं 16 श्रृंगार। वैसे इसी के साथ दोनों ने अपनी केमिस्ट्री और बॉन्ड के बारे में बताया, साथ ही अपनी लव स्टोरी भी शेयर की, तो जानते हैं इन दोनों की कहानी इन्हीं की जुबानी।
1: So Amit used to own a cafe in Borivali and I happened to be a customer and so it was a very beautiful filmy kind of a thing where you know he just randomly said someone that she's very pretty, I would love to be my wife to be, you know, like her, like I would not make her my girlfriend, I would make her my wife. He said it to one of his friend, unhone aisa bola. तो देन यू नो ही वॉज लाइक उन्होंने ऐसे बोला, आई थिंक पापा ने कभी तथास्तु बोल दिया था शायद, एंड वो हो गया, तो क्या पता शायद उस वक्त कुछ और मांगा होता तो
2: नहीं।
1: जी छोकरा स्मार्ट है
2: ना, मेरे कैफे में सिटिंग में इतने फ्रेंड्स हम लोग ऐसे ही, वो एज था ऐसे थोड़ा बर्ड वॉचिंग चलता था, तो आई वॉज सिटिंग एट द कैफे, आई वॉज लाइक कि मैंने रचना को देखा है लाइक कि ये आई वॉन्ट दिस गर्ल एज माई वाइफ यार, मतलब गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड आई वॉन्ट हर एज माई वाइफ, और ऐसा बस मैंने बोला और बस ये हो गया।
1: मतलब हमने जब डेट वेट एंड एवरीथिंग वी डिसाइडेड, सो आई वाज वेरी वेरी एडमेंट अबाउट वन फैक्ट कि आई वांट टू कैरी माय कल्चर इन माय लुक। बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि मैं लहंगा पहनूंगी, एंड बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि साड़ी क्यों लहंगा पहनो, साड़ी क्यों लहंगा पहनो, बट देन आई वाज लाइक यार बाकी फंक्शंस है, जैसे शादी वाले दिन तो हर लड़की लहंगा पहनती, मुझे भी लहंगा पहनना है, बट देवर मतलब एवरीबडी वॉज वेरी लाइक कि हाँ तू क्या हो गया, बट ये तो फंक्शन होते हैं जिसमें लहंगा पहनने मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है, बट आई वॉज लाइक नो आई हैव समथिंग इन माई हेड, आई वॉन्ट carry my culture ahead with me. I will always be a Gujarati girl married to a Punjabi boy. So I think हमारे look में वो बहुत evidently दिखा है ना। I told him also, and he was on board the moment I told him ना कि Amit, I wanted to be like this. Like I wanted to be, you know, you wear something close to your culture and I wear something close to my culture. And he was like कि it's a very good idea. And my in-laws and everybody was so much on board with it कि अरे, and they were so happy. एंड जब मैं चीज़ें सोच रही थी कि मुझे क्या पहनना है, तो मुझे ऐसा चाहिए था कि आई वॉन्ट टू कैरी समथिंग ऑफ माई फैमिली के हर एक वुमेन का, आई वॉन्ट कैरी जैसे इन माई एंगेजमेंट आउटफिट द नेकलेस दैट आई वॉज वेयरिंग वॉज माई सिस्टर्स वेडिंग्स नेकलेस, मतलब उसकी शादी का नेकलेस था वो, उसने अपनी शादी के दिन पहना था, मतलब दैट्स लाइक अ 10-year-old ज्वेलरी, बट इट वॉज सो ब्यूटिफुल एंड आई आस्क्ड हर दैट डू यू माइंड, एंड शी इज लाइक नो आई वुड बी सो हैप्पी, इट विल बी लाइक माई स्मॉल ब्लेसिंग टू यू, इट विल बी माई वे ऑफ लेटिंग यू नो दैट हाउ मच यू आई लव यू एंड एवरीथिंग। एंड आगे भी जो लुक्स आप देखोगे मेरी शादी के टूवर्ड्स, जैसे जैसे फंक्शंस होंगे, जैसे आई डिसाइडेड टू वेयर माई नानीज घर चोला इन वन ऑफ द फंक्शन, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल, मतलब 45-50 ईयर्स पुराना है वो जो घर चोला है मेरी नानी का, एंड उस आई थिंक हाँ उससे भी ज़्यादा पुराना है, क्योंकि नानी के पास पहले जो था वो ख़राब हो गया था, तो उन्होंने नया लिया था, तो जो वो नया लिया था आज से कुछ 45-50 ईयर्स बैक, वो है, इट हैज दिस नाइस चांदी का तार का वर्क एंड ऑल, सो यू विल गेट टू सी दैट लुक ऑल्सो. देन शादी के इसमें आई एम गोना कैरी समथिंग ऑफ माई मॉम्स एंड वन ऑफ द फंक्शन में आई एम गोना कैरी समथिंग ऑफ माई एल्डर सिस्टर्स. सो या एवरी लुक इज गोना बी वेरी स्पेशल. ही इज बीइंग सो पॉलिटिकली करेक्ट, यू आंसर इट, क्योंकि मैं बोलूँगा आपकी चलती है तो गलत हो जाएगा, बट हाँ यहाँ थोड़ी मेरी चलती है. ही इज़ अ वेरी ही इज़ अ वेरी शिवरियस मैन, ही इज़ अ जेंटलमैन. इट इज़ ऑलवेज जो वॉट रचना सेज गोज, इट्स ऑलवेज लाइक दैट. ही माइट नॉट से इट फ्रॉम हिज ओन माउथ बिकॉज उनको लगेगा कि ये गलत हो जाएगा, बट बिकॉज ही बिलीव दिस इज इज वेरी फर्स्ट इंटरव्यू विद यू, मतलब ओवरऑल दिस इज अ वेरी फर्स्ट इंटरव्यू. ये आई एम लॉन्चिंग हिम.
2: नहीं ऐसा नहीं.
1: वेरी गुड. झूठ मैंने बोला, झूठ तो बोलना ही नहीं है. चाय
2: तो झूठ नहीं, चाय अच्छी पिलाती है, चाय बहुत अच्छा बनाती है रचना, बट खाना है सच तो नहीं है.
1: रचना को खाना बनाना नहीं आता, ये जग जाहिर है. मुझे सच में खाना बनाना नहीं आता. वन ऑफ द रीजन दैट आई रियली फेल फॉर इमीडिएटली वाज द फैक्ट दैट ही इज अ शेफ बाय द वे गाइस. वो अपने कैफे में उनके जितने भी रेसिपीज थे वो उनके सारे थे, उनके अपने पर्सनल रेसिपीज थे, उनके ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज थे. तो दैट्स द रीजन आई वाज लाइक अरे भूखी तो नहीं मरूंगी.
2: अरे एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी विद रचना. आई विल टेल यू द स्टोरी कि रचना को मुझसे पहले मेरे फादर ने प्रपोज किया है. लाइक माय फादर वाज वेरी हैप्पी. हाँ माय फादर वाज वेरी हैप्पी. उन्होंने देखते पहले बोला था कि रचना इज आवर बहू. पहले फर्स्ट डे वन से ही वाज लाइक वेरी हैप्पी. माय एंटायर फैमिली इज हैप्पी. मतलब ऐसा किसी ने कभी पॉइंट भी नहीं है कि रचना एक्टर या कुछ. एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी.
1: Very sukhi sasural. So apparently I remember when I used to go to cafe and I'd become a regular customer, and also I bonded really well with his father as well. Because uncle वहाँ पे मतलब हमेशा रहते थे, you know, cafe में, and we used to sit chill. And papa भी बहुत चाय पीते, मतलब इनके papa, now he's my papa also. Yeah. तो वो भी बहुत चाय पीते, उनको चाय बहुत पसंद है. तो वी यूज़ टू सिट एंड ड्रिंक टी एंड वी यूज़ टू डिस्कस थिंग्स एंड बातें करते. तो एक बार उन्होंने ऐसे मुझे बोला कि आप मेरे घर की बहू बनोगे, मैं बेटे मेरा बेटा कैसा लगता है आपको. एंड आई वॉज लाइक सेटिंग उसी की तो चल रही है. बट या आई एम वन ऑफ दोज लकी गर्ल्स जिसको उसके फादर इन लॉ ने प्रपोज किया इन अ वे कि यू नो बिकम मेरे घर की बहू लाइक दैट. सो एंड ऑनेस्टली मोर देन बीइंग शॉक्ड, जो मैंने मतलब जो जितना मुझे मेरे इन लॉज बड़े प्यार से बताते हैं कि दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट. दे वर वेरी मतलब बीइंग एन एक्टर तो फॉर देम इट वॉज मोर लाइक कि She's an actress. Like how, where did you guys meet? And you know, how is it that she wants to get married? All of that. And you know, it was more like that than you know thinking, अरे she's an actress, ये वो and all. It was more like wow, she's an actress. वाह. एंड एंड इनकी जो दादी है वो मेरे शोज देखते थे तो उनके लिए ये ऐसे था उनका. तो शी इज ऑल्सो वेरी क्यूट, शी इज वेरी क्यूट. सो या आई एम वेरी लकी, दे आर वेरी हैप्पी एंड दे एक्चुअली सेलिब्रेट मी अ लॉट. दे मतलब मेरे हर छोटे बड़े अचीवमेंट्स को लोग इतना सेलिब्रेट करते हैं. तो आई एम ब्लेस्ड विद बोथ द हैंड्स. आई एम गोना एज आई मीन आप लोगों ने सगाई के लुक में तो देख ही लिया, तो आई एम गोना बी अ वेरी ट्रेडिशनल ब्राइड. दैट्स अ हिंट. एंड जो गुजराती है वो समझ गए होंगे वट आई एम यू नो पॉइंटिंग एट. So I'm going to be a very traditional bride and he's going to be a very traditional groom, and we're going to stick to our roots. We respect our traditions. We love our traditions, you know, and I think that's the beauty. That's going to be something that you will see a lot in our wedding pictures and looks. That is one thing I can definitely give you. And tayari ki baat kare to bhai mujhe mera lehenga nahi mil raha. प्लीज़ यार किसी के पास कोई अच्छे रिकमेंडेशन हो तो बताओ, टैग करो मुझे, बताओ इस वीडियो के नीचे, बोलो कि रचना यहाँ जाके देखो, यहाँ जाके देखो.
2: पापा पहले करवाएंगे, मैं तो फिर भी दूसरा आता हूँ. पापा पहले करवाने वाले वो चीज़.
1: जस्ट इमेजिन ही इज हियर, ही इज ऑल द वे फ्रॉम अहमदाबाद, ही इज हियर फ्रॉम लास्ट 5 days बिकॉज मेरे घर पे पापा है. तो आई थिंक आई गॉट लकी, आई चूज द राइट मैन. ही मेड श्योर व्हेन आई सेड दैट आई डोंट वांट माय फैमिली टू एवर फील दैट डिस्टेंस, यू नो ही मेड श्योर दैट ही इज हियर. एंड अभी भी सुबह से हम यहाँ पे हैं. हालांकि वो खुद बेचारे पता है अपने घर पे महीने में एक बार आते हैं, बट उनके पेरेंट्स रह भी नहीं नहीं नहीं रचना घर पे पापा है, तुम जाओ उधर, तुम जाओ वहाँ पे ही रहना, कुछ चाहिए तो देखना. सो मतलब तू नज़र नहीं लगे. बट या आई एम ब्लेस्ड विद बोथ हैंड्स. सो दे ऑल नॉट जस्ट हिम, मेरे पूरे इन लॉज सब लोग मेक श्योर करते हैं कि मुझे कभी ये फील ना हो कि आई एम दैट फार, यू नो. उल्टा दे मेक श्योर दैट दे फील दैट, यू नो, आई फील दैट दे आर ऑल्सो, मतलब नाउ इट्स लाइक अ बिग फैमिली, बहुत बड़ा फोटो फ्रेम हो गया अभी. सो या दैट्स दे टेक अमेजिंग एफर्ट्स फॉर दैट. लाइफ के हर पड़ाव में, हर जब मैंने कुछ नया ट्राई किया है, जब कुछ, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ से, सबने बहुत ओपन आर्म से एक्सेप्ट किया है हमें. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस बार भी वही होगा. एंड यस, सास बहू एंड बेटिया इज इनवाइटेड टू माय वेडिंग. तो बहुत सारी एक्सक्लूसिव चीज़ें आपको इनके थ्रू ही मिलने वाली है.
0: तो भाई हर साल की तरह इस साल भी रचना के घर गणपति बाप्पा बिराजे हैं और मूर्ति लाल बागचा राजा की है. तो आइए रचना से ही जानते हैं इस बार उन्होंने कैसा डेकोरेशन किया है. वैसे ये साल रचना के लिए और भी ज्यादा खास इसलिए है क्योंकि मायके में इनका ये लास्ट गणपति है, क्योंकि इसके बाद अगले साल इनकी शादी हो जाएगी और फिर ये ससुराल से मायके इस फेस्टिवल को अटेंड करने आएंगी.
1: आई थिंक अब तक तो ये सबको पता चल चुका है क्योंकि मैं इतनी बार बोल चुका हूँ, आई एम फ्रॉम लालबाग, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर. हमारा घर आज भी वहाँ पे है. ये तो काम के सिलसिले में थोड़ा दूर रहना पड़ता है, बट रूट्स लालबाग से है. एज यू कैन सी द लुक ऑल्सो, इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ गुजराती एंड मराठी कल्चर. ग्रीन बैंगल्स, नट्स, द बुगड़ी, तो एंड ऑब्वियसली द बांधनी. इतना यूनिक थी मैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, किसी ने नहीं किया ये डेकोरेशन. तो इस बार का डेकोरेशन इज इंस्पायर्ड बाई द ट्रेंड ऑन इंस्टाग्राम, मौली धागे का या नाड़ा छड़ी जो हम कहते हैं. तो जब हम लोग ने सोचा कि इस बार क्या डेकोरेशन करना है, तो जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, मतलब आई थिंक इसके पहले हमारे में बात हुई थी, मैंने कहा था कि हम सारे सिबलिंग्स मिलके आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांट लेते हैं कि यू नो कोई डेकोरेशन देखेगा, कोई मूर्ति का सब देखेगा, कोई यू नो बाकी चीज़ें घर की सब चीज़ें देखेगा एंड ऑल. तो इस बार डेकोरेशन मेरे हिस्से था एंड एज यू कैन सी आई एम द मोस्ट क्रिएटिव पर्सन इन द होल फैमिली कमांडर. तो हमने डिसाइड किया था कि हम लोग मौली धागे का जो नाड़ा छड़ी कहते हैं उसका डेकोरेशन करेंगे. पर उसमें अब ऐसा था कि बहुत ज़्यादा ही यूनिक है ना इस साल, ट्रेंड से हम लोग चले कि यार इस बार सब कर रहे, कोई बात नहीं फिर भी हम करेंगे. एंड पीछे की तरफ जो है वो ये पूरा बाय द वे डेकोरेशन मैंने अकेली ने शांति से थोड़ी हेल्प के साथ, सिर्फ थोड़ी हेल्प थी, शांति से बैठ के किया है. एंड आई थिंक 1.5 डे में हमने पूरा डेकोरेशन खड़ा किया है. एंड पीछे जो आप देख रहे हो वो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग था, वो जो चेक्स बनाए हैं पीछे वो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग था. एंड उसमें सबसे ज़्यादा नाड़ा छड़ी है जो वो यूज़ हुई है. एंड ये जो डमरू है, ये जो हमने डमरू लगाए यहाँ पे, भाई मार्केट में मिल ही नहीं रहे थे. बेचारा मेरा भाई भुलेश्वर से लेकर आया वो ढूंढ ढूंढ के. हम लोग डेकोरेशन लेने यूजुअली हर साल दादर जाते, इस साल भी दादर गए थे, मोस्टली चीज़ें वहाँ पे मिल गई. घंटियाँ भी बहुत महंगी मिली है मुझे ये. एंड बेसिकली आई थिंक इस बार ऐसा था कि डिमांड के ऊपर प्राइस डिसाइड हुई है चीज़ों की, डेकोरेशन की, बट वी वर वेरी हैप्पी. एंड हर साल हम लोग का यही होता है पूरी फैमिली का कि मिलके एक एक चीज़ करें. वी डोंट मतलब ऐसा नहीं है कि बुला नहीं सकते डेकोरेशन, ऑब्वियसली बात है सब कर सकते हैं, बट जब आप खुद बैठ के भाई बहन 10 बार झगड़ा करके, नहीं यार मैंने बोला था ना ये अच्छा नहीं लगेगा, नहीं यार ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो देख यार ये वो जब तक हो नहीं ना तब तक लगता नहीं है कि घर में यू नो फेस्टिवल है. एंड वही हुआ मेरा जो भाई है, ही वॉज वेरी एडमेंट कि इस बार तो राजा, बिकॉज दिस आर 10th ईयर ऑफ बप्पा घर, इस बार 10वीं बार बप्पा घर आए हैं, तो बहुत स्पेशल था. तो राणा वाज लाइक हाँ लालबाग का राजा लाना है, डेकोरेशन भी उतना ही भव्य होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. एंड व्हेन ही सॉ आधा डेकोरेशन हुआ था वो बोलता है मज़ा नहीं आ रहा. एंड आई वाज लाइक लेट मी कम्प्लीट. एंड जब कम्प्लीट हो गया तो लिटरली वो, मतलब बप्पा के पप्पा ने आशीर्वाद भेजा है हमें. वो जो ऊपर डमरू लगा है आप देख रहे हैं वो उज्जैन से आया है. मेरी जो बड़ी सिस्टर है कृणाली कुन्नू, उसके एक फ्रेंड ने, वो उज्जैन गए थे दर्शन के लिए, तो वो वहाँ से लेकर आए हमारे लिए. एंड दैट वाज रियली स्वीट ऑफ हिम टू गिव इट टू अस. तो स्वयं मतलब बप्पा के पप्पा ने हमारे डेकोरेशन को आशीर्वाद दिया है और अप्रूव किया. एंड देन जब लाइटिंग वगैरह सब हो गया, देन रौनक वाज लाइक क्या डेकोरेशन हुआ है दीदी अपना इस बार का. तो रौनक इज ऑलवेज लाइक दैट, ही इज द मोस्ट लाइक मजा नहीं आउ तो. एंड देन एट द एंड इज सो डेकोरेशन थे यार उन्होंने सुखो. एंड सबसे पॉजिटिव हमारे घर पे कुन्नू है. कुन्नू इज लाइक रचू आई बिलीव यू, तू कर बहुत मजा आ रहा है। तो मतलब वो सब मिला जुला होके हमारे वो मजा आता है, इसके लिए हम लोग हर साल डेकोरेशन खुद से करते हैं घर पे सब मिलके। पर इस बार मैंने बोला था यार मुझे करने दो, अकेले करने दो, तुम लोग मतलब लास्ट में देखना अच्छा ही आएगा। एंड मतलब थोड़ा मान रख लिया मेरे भाई बहनों ने एंड उन्होंने मुझे करने दिया अकेले विदाउट डिस्टर्बिंग मी, एंड दिस इज द आउटकम ऑफ इट। राजा है और राजा हो और आभूषण उनके गहने ना हो कैसे चलेगा। तो स्पेशली ये मूर्ति भी वैसे लालबाग से लाई गई है, लेट मी टेल यू दैट हम लोग हर साल लालबाग से ही मूर्ति लाते हैं, तो इस साल भी लालबाग से मूर्ति आई है। और स्पेशली रौनक ने ढूंढ ढूंढ के उनके ये जो बाजूबंद है ये है, फिर ये जो उनके ट्रंक पे होता है वो जो सब है, उनकी जो ये बिग बाड़ी है, ये सब वहाँ से एकदम ढूंढ ढूंढ के रौनक लेकर आता है। एंड कॉम्बिनेशन भी इस बार हम लोगों ने ऐसे डिसाइड किया था कि इट हैज़ टू बी वेरी यूनिक, इट हैज़ टू बी समथिंग डिफरेंट, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे राजा का फोटो है इफ़ यू कैन जस्ट। तो बापा यूजुअली रेड में बहुत सुंदर दिखते हैं, मतलब रेड बापा का कलर रहा है हमेशा से। तो हमने बोला यार देखो रेड वाले बापा तो है, रेड धोतरा और पीताम्बर में बापा तो हमारे घर पे है, कुछ अलग ट्राई करते हैं। एंड फिर जब हमने हमारे जो मूर्तिकार थे उनसे कहा कि वी वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, तो उन्होंने हमें ये सारे कपड़े दिखाए एंड सब भाई बहनों ने मिलके थोड़ा झगड़ा करके उनके सामने कि नहीं यार आ सारू लागी चार आ कॉम्बिनेशन ला, वी ऑल केम डाउन कि नहीं ये बेस्ट है। और ये रिकमेंडेशन पहले ही था कि ये अच्छा लग रहा है, बट देन वो होता ना कि नहीं ये ट्राई करते, बट एट द एंड वी वेंट विद दिस कॉम्बिनेशन एंड इट इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग द डेकोरेशन इतना ज़्यादा जितना हमने सोचा भी नहीं था। सो या मतलब इस साल की मूर्ति से लेकर डेकोरेशन से लेकर हर चीज़ इतनी स्पेशल है। एंड मतलब यूजुअली यू नो मेरे पापा का अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब हर डॉटर के लिए ऐसा होता है, तो मेरे लिए भी ऐसा है कि मेरे पापा यूजुअली ना बहुत इनपुट देते हैं डेकोरेशन के लिए, बहुत अच्छे इनपुट्स देते हैं। बट दिस टाइम ऐसा हुआ कि पापा ने ये टेबल रेडी किया, उनको कुछ काम था तो पापा चले गए एंड देन द डेकोरेशन वॉज ऑल ऑन मी। एज आई सेड मैंने बोला था कि मुझे अकेला छोड़ दो इस बार, बट देन पापा केम एंड व्हेन ही सॉ द डेकोरेशन ही वाज लाइक मस्त लागे छे एंड आई वाज लाइक नो टिप्पणी नथिंग, पापा इज लाइक परफेक्ट छे एकदम बहुत मस्त लागे छे। हाँ ना उसने मेरे बाबा लेट मी टेल यू इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, वो नहीं बोलते फटाक से ऐसा, उनको कोई ना कोई चीज़ें ऐसे मिल ही जाती है कि नहीं ये ऐसे होना चाहिए। फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे पापा ने अप्रूव किया है कि नहीं परफेक्ट है, इसमें कुछ भी कम ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। सो या डेकोरेशन इस साल मतलब ओवरऑल सब चीज़ बहुत स्पेशल होते जा रही है। इस बार तो भाई उकड़ी के मोदक पे मोदक आए थे, अनफॉर्चुनेटली आई थिंक चोर आकर लेकर गए हैं उकड़ी के मोदक, पर बाकी मोदक है, प्रसाद है, फल है, ये थोड़ा और प्रसाद है एंड उकड़ी के मोदक आई थिंक चोरी हो गए। हाँ हमारे उकड़ी के मोदक चोरी हो चुके हैं। ओह गॉड, एक्चुअली उकड़ी के मोदक बहुत स्पेशल होते हैं, बहुत मेहनत से बनते हैं एंड हम लोग हर साल अपने पापा को उकड़ी के मोदक चढ़ाते हैं एंड हम सबको बहुत पसंद भी है। तो और ऊपर उनकी खासियत होती है, उनको आप ज़्यादा टाइम बाहर नहीं रख सकते, वो ड्राई हो जाते हैं, तो आई थिंक इसलिए वो थोड़े अंदर चले गए हैं। बट इस बार हमारे पापा मतलब जो आया है हमारे घर पर आई थिंक वो उकड़ी के मोदक लेकर आया हमारे घर पर, यू नो दर्शन के लिए जो भी आया, तो हम लोग इतने खुश हैं, पापा के साथ साथ हम भी बहुत खुश हैं।
3: तो भाई खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है, लेकिन आज डबल खुशी है क्योंकि रचना का पूरा परिवार उनके साथ है और आज रचना मिलवाएंगे अपने परिवार वालों से, जहां रचना के मम्मी पापा हो गए हैं काफी इमोशनल, वही बेटी शादी कर घर से जाने जो वाली है। इतना ही नहीं आज तो हम रचना के भाई बहन से भी मिलेंगे जो रचना के बारे में ढेर सारी बातें बताने वाले हैं, क्योंकि यही तो है रचना का हैप्पी फैमिली टाइम।
1: आई कैन स्टिल मेक यू मीट माय बाकी की फैमिली, मम्मा कुन्नु, ओ मम्मा कुन्नू यहाँ पे नहीं है, सब लोग रूम में हैं। ओके गाइस हाय, सब लोग यहाँ पे ऐसे छुपे बैठे हैं क्योंकि मैं इंटरव्यू दे रही थी, इतनी कोऑपरेटिव फैमिली है। तो दैट्स माय फ्रेंड धर्मेश, ये मेरी मम्मा है, वो मेरे फियांसे हैं जिनको आप सब जानते हैं, इतने अच्छे से प्यार से घर में ऐसे घुल मिल के बैठे हैं। ये मेरे पापा है, ये हमारे फैमिली का न्यूएस्ट एडिशन है विधान, जिसको आप लोग मिल चुके हो जी रिश्ते अवार्ड में। ये मेरे जीजू है, ये मेरी सेकंड सिस्टर है एंड अब जिसका नाम मैं बहुत ज्यादा लेते रहती हूँ कुन्नू, दिस इज कुन्नू जिसका नाम मैं बहुत ज्यादा लेती हूँ हर इंटरव्यू में। एंड मेरा भाई रौनक थोड़ा MIA है क्योंकि वो थोड़ा हमारे घर का कार्य करता है, तो वो आई थिंक स्वयं सेवकगिरी कहीं तो कर रहा है वो। तू मैंने कितलू मिस करवानी छे बहुत। So, मम्मा
4: बेटी की विदाई करते हैं तो किसको अच्छा लगता है? आज का जमाना में बेटी बट्टा बराबर है।
3: तो मम्मा इस वही इमोशनल ऐसे दिखाती नहीं, बट बात बात पे मम्मी का थोड़ा थोड़ा हो जाता है बीच बीच में। ऐसे बोलते ना कि मस्ती मस्ती में तो बोलती है बस सब 3 महीने फिर तू जा, फिर हमको थोड़ा रूम खाली मिलेगा। बट द नेक्स्ट मोमेंट, द मोमेंट आई से ना कि मम्मा पैकिंग स्टार्ट करूँ, मम्मा ये, तो मम्मी इज़ लाइक करते कल कल करते कल करते, तो मम्मी वो थोड़ा टालने की कोशिश करते ना, वो स्वीट मोमेंट्स होते रहते हैं घर पे। आए दिन झगड़े में भी कभी कभी ऐसा था ना, मम्मी यार आज ये खाना है, थोड़ा ये हो गया, थोड़ा झगड़ा, बोलते हाँ ससुराल जा फिर पता चलेगा तुझे, तो वो क्यूट नोकझोंक होती है। बट बहुत जल्दी जल्दी मम्मी का रोना शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी।
4: कोई झगड़ा करने वाली नहीं रहेगी घर में, मेरा उठकर जल्दी इसका आंकड़ा है, लेकिन एक दूसरे के बिगर चलता नहीं है। क्या करे, जो बाप बेटी का रिश्ता है वो कभी।
3: अरे मैंने बोला पापा भी बहुत इमोशनल है, पापा फटाक से रोने लग जाते हैं। बट मेरा मेरे पापा का बहुत क्यूट बॉन्ड रहा है, हम लोग हम दोनों एक दूसरे को बहुत ये करते हैं, मतलब प्रोमोटिवेट तो करते ही करते हैं, बट साथ ही साथ बहुत झगड़े किए हम दोनों ने। तो पापा ऑलवेज सेज कि तू चली जाएगी तो झगड़ा किसके साथ करूंगा, या क्या यार आप लोगों ने रुला दिया मेरे क्यूट से पापा को, पूकी पापा को रुला दिया आप लोगों ने। आई थिंक पापा इज वेरी हैप्पी, ही इज वेरी हैप्पी, ही इज वेरी वेरी हैप्पी, बट इमोशनल भी बहुत है पापा, बहुत इमोशनल है।
4: बेटे के जैसा बीच में अपन लोग उड़ी नहीं मार सकते उसके, यही आशीर्वाद देना है कि मजे से रहो सुख शांति से, बस वही कहना है मेरा।
3: बोल चले मेरे पापा एकदम। कुनो कुनो हमारे घर का बैचलर है, हमारे घर का सलमान भाई है, हमारे घर का सलमान भाई है कुन्नू, शीज अ बैचलर, शीज अ स्पिंसर, शीज नॉट मैरिड एंड शी इज इनटू रियल एस्टेट, शी इज डूइंग रियली वेल इन हर करियर। एंड व्हाट टिप्स वुड यू लाइक टू गिव मी, शी वांट्स, दैट्स व्हाट शी वांट्स टू नो
5: अबाउट। आई डोंट नीड टू गिव हर एनी एडवाइस, शी इज द वन आई टेक एडवाइस फ्रॉम, तो बहुत गलत हो जाएगा अगर मैं उसको कोई एडवाइस या टिप्स दूँ। ऑनेस्टली परफेक्ट, आई थिंक ही इज द वन she deserves and he's the best for her, moreover he's also lucky to get her.
3: Hey, team bride.
5: मुझे नहीं लगता I'm gonna miss her honestly because ये मुझे उसको खुद को miss करने ही नहीं देगी, it's like every single second every moment she's gonna keep calling me kunnu tujhe pata hai kya is what she starts with and then I'm like हाँ, and then फिर मुझे समझ जाना है कि ये call 1-2 घंटा चलने वाला है, तो I don't think she's gonna let me miss her at all. Even if not on call, she'll ask me where I am and she'll drop in there to give me that gossip and to talk to me. So I don't think I'm gonna get that chance to miss her at all.
3: Nidhi और मेरा bond ना थोड़ा Tom and Jerry जैसा रहा है हमेशा से। हम दोनों बहुत झगड़ते थे बचपन में, पर एक दूसरे के बिना चलता भी नहीं था। मतलब अगर जैसे मामा के घर पे रुकने जाने की बात होती थी ना, तो मैं हमेशा बोलती अगर नीधि जा रही है तो मैं जाऊंगी, अगर नीधि रुक रही है तो मैं रुकूंगी, वरना मैं नहीं रुकूंगी। तो इट वाज ऑलवेज लाइक कि वो होता ना कि इसके बिना भी नहीं चलता और इसके साथ भी नहीं रहा जा रहा है, तो साथ में रहे तो झगड़ेंगे ऐसा कि भाई देर इज नो टुमारो। बट द मोमेंट टू टेल के अच्छा रचना तू यहाँ चली जा, नीधि वहाँ, नहीं नहीं नहीं मैं नीधि का काम निपटा के फिर उसको अपने साथ अपना काम निपटाने ले जाऊंगी, बट रहेंगे तो हम साथ ही। So we are like Tom and Jerry, literally Tom and Jerry. Oh, and जो रह गया था मैंने बोला कार्यकर्ता हमारे घर का स्वयं सेवक रौनक। तो हम तीनों बहनों पे एक भाई है, बहुत प्यारा है, बहुत मन्नत का है एंड बहुत ही बदमाश है। तो रौनक what would you like to tell her or everybody honestly who's watching this after my marriage, how much are you gonna miss me and what you would like to tell me?
6: obviously say कभी कभी दिमाग में आता है कि भाई अभी इतने महीने बचे हैं तो थोड़ा प्यार आ जाता है, बाकी तो नोकझोंक चलती रहती है हम लोग सब लोग के बीच में, कोई किसी को मतलब हम लोग का प्यार दिखाने का तरीका थोड़ा ऐसे बोलते हैं ना वाइल्ड है, हम लोग झगड़ते रहते हैं बट एट द एंड चारों एक साथ ही रहते हैं। एंड हाँ ऑब्वियसली बात है, मतलब होता है कि भाई भाई बोलता है कि अरे ठीक है तू चली जाएगी तो मेरे को शांति है आंती है, बट एट द एंड ऐसा अंदर तो होता ही है कि भाई चली जाएगी तो झगड़ा किससे करेंगे, तो होता है कभी कभी ऐसे ट्रिगर होता है कि अरे भाई अगले साल गणपति मेरे को अकेले बिठाना पड़ेगा डेकोरेशन करने वाला डेकोरेशन करने वाला
3: ये
6: नहीं नहीं मतलब नहीं बाबा, लालबाग के राजा की दया से मेरी बहन को बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है, और मतलब मेरे को मालूम है हम लोग कैसे पहली बार मिले थे कैफे में। मेरे को अनफॉर्चुनेटली मेरे को मेरी बहन साथ में लेके गई थी, और वहां पे मेरे को बोला था, बोलते होते कि ये मैंने बोला
7: तो ऐसा हुआ कि हम लोगों ने बातें की एंड ही इज लाइक आई एम आल्सो हियर, आई एम आल्सो, आई वाज लाइक ठीक है अब आ जा तू कैफे, दैट्स द गाय आई लाइक हिम, लाइक ही इज नाइस एंड ऑल दैट शिट। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया,
6: लालबागचा राजाचा
7: विजय असो।
3: तो भाई हम तो यही कहेंगे, गणपति बप्पा का आशीर्वाद सब पर यूं ही बना रहे, और सास बहू और बेटियां आपको दिखाएगा रचना और अमित की शादी के सारे नजारे। फिलहाल वक्त हो गया है इन्हें बाय बाय कहने का। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
8: हर साल की तरह इस साल भी प्रोड्यूसर एकता कपूर ने अपने घर गणपति स्थापित किए हैं, जहां बाप्पा के दर्शन के लिए सितारों की भीड़ लगी है। तो चलिए चलते हैं एकता कपूर के घर और करते हैं बाप्पा के दर्शन।
9: तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा।
3: एकता के घर बाप्पा के दर्शन करने के लिए लगी सितारों की भीड़। देसी अंदाज में चमकते नजर आए सितारे,

के घर में गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए। ऐसे में एकता कपूर ने अपने सभी मेहमानों का किया दिल खोलकर स्वागत। अब खुशियों से भरा त्योहार है, सेवा भाव है, तो उसमें संस्कारी अंदाज में आना तो बनता है। ऐसे में आइए नजर डालते हैं कि कौन कौन से सितारे एकता कपूर के घर पहुँचे हैं बप्पा के दर्शन पाने।

बात करेंगे आप सभी की प्यारी अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली की, जिन्होंने इस अवसर के लिए चुनी है क्रीम कलर की सिल्क साड़ी। और देखिए कितने सीधे साधे अंदाज में वो बप्पा का दर्शन पाने पहुंची है। तो वहीं पहुंच गए हैं अनुज यानी कि गौरव खन्ना भी, जिन्होंने लिया है देसी अंदाज। और देखिए कैसे आंखों में चश्मा चढ़ाकर ये लग रहे हैं हैंडसम ड्यूट। साथ ही देखिए अनीता हसनंदानी भी, भाई एकता कपूर से उनकी गहरी दोस्ती है, ऐसे में वहां जाना तो बनता है, इसलिए उन्होंने इस अवसर के लिए चुना है बैंगनी कलर का सूट। इनके अलावा वहाँ पर नजर आई न्यूली मॉम दिव्यांका त्रिपाठी दहिया, जो पहुँची हैं अपने पति विवेक दहिया के साथ।

साथ ही दिखी अंकिता लोखंडे भी, जिन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी है और साथ में नजर आ रहे हैं उनके पतिदेव विक्की जैन। इनके अलावा वहाँ पर देसी अंदाज में नजर आए आयुष्मान खुराना भी, जो आए हैं अपनी बीवी के साथ। वैसे साथ में दिखी है श्रेया कालरा, जो पहुंची है अपने बॉयफ्रेंड ऋषभ के साथ। अब जब बात जोड़ियों की हो रही है तो भला समीर सोनी और नीलम को कैसे भूल सकते हैं। ये दोनों भी एक दूसरे का हाथ थामे पहुंचे एकता कपूर के घर। हम नहीं रुकने वाले। इनके अलावा अमर उपाध्याय और मनीष पॉल भी अपनी अपनी बीवियों के साथ पहुंचे हैं एकता कपूर के घर गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए। इसी के साथ राजन शाही भी एकता कपूर के घर पहुंचे हैं बप्पा का दर्शन पाने के लिए। श्रद्धा आर्या भी देसी अंदाज में साड़ी पहन पहुंच गई हैं एकता कपूर के घर बप्पा के दर्शन पाने के लिए। तो वहीं शिवांगी जोशी भी नीले रंग के देसी कपड़ों में नजर आई हैं और अपनी खूबसूरती के चार चांद लगा रही हैं। वैसे बप्पा का दर्शन पाने पहुंचे हैं गोविंदा भी और साथ में देखे हैं उनके बेटे यशवर्धन आहूजा भी। और देखिए कैसे बप्पा के दर्शन पाने के लिए दोनों के चेहरे की स्माइल बढ़ गई है। इनके अलावा वहां पर नजर आई सुरभि ज्योति भी, जिन्होंने ले लिया है देसी अंदाज। साथ में दिखे ऋत्विक धनजानी भी। और तो और नजर आई प्रियंका चहल चौधरी भी, जिन्होंने पिंक कलर का सूट चुना है। इनके अलावा आकांक्षा चमोला जो पहनकर आई है साड़ी, मौनी रॉय प्रज्ञा कपूर के साथ नजर आई हैं और उन्होंने भी देसी अंदाज लिया है। साथ ही दिखी अवनीत कौर, उर्वशी ढोलकिया, रिधिमा पंडित, अदिति शर्मा और भी कई हसीनाएं जो देसी अंदाज में पहुंची हैं एकता कपूर के घर। बात करेंगे हैंडसम हंक्स की, तो सबसे पहले देखिए जितेंद्र को, जो अपनी बेटी के घर पहुंचे हैं गणपति बप्पा के दर्शन पाने के लिए। साथ ही नजर आए हैं एकता कपूर के भाई तुषार कपूर भी। इनके अलावा वहां पर दिखे हर्षद चोपड़ा, धीरज धूपर, कुशाल टंडन, चंकी पांडे और भी कई कलाकार पहुंचे हैं गणपति।

0: ऑडिशन के लिए। मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट।
1: स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में जल्द ही अनुपमा के घर बाप्पा का आगमन होने वाला है, जिसे लेकर अनुपमा काफी खुश है और इस मौके पर वो अनुज को भी याद कर रही है। तो चलिए चलते हैं सीरियल अनुपमा के सेट पर।

बंकों का सहारा बनी राही। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में अनुपमा के घर गणपति बप्पा का आगमन होने वाला है। ऐसे में आज अनुपमा खुद अपने हाथों से अपने बापा की मूर्ति बना रही है, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी अनुपमा अपने हाथों से ही मूर्ति बनाएगी, लेकिन इस साल वो अकेली है। जरा देखिए कैसे वो अकेली मूर्ति बना तो रही है, लेकिन अपने अनुज को हर पल याद कर रही है।

Arrivederci. आपको भी यहाँ होना चाहिए था ना, फिर हम

वही अनुपमा की आंखों में आंसू है लेकिन हौसले उसके बुलंद है। ऐसे में वो घर की साज सजावट में जुटी हुई है क्योंकि बप्पा की स्थापना जो करनी है। ऐसे में दिग्विजय भी घर को सजाने में लगा हुआ है। इसी बीच अनुपमा के हाथों में है अनुज का चश्मा, जिसे देखकर वो फिर से अनुज की यादों में खो गई है।

0: इससे पहले कि अनुज को याद कर अनुपमा की आंखों में आंसू फिर से आते, वहां पर आ जाती है राही लेकर खुशियों की सौगात। और साथ ही वो अपनी माँ अनुपमा को ये भी बताती है जल्द ही कोई आने वाला है जो उसकी और प्रेम की मदद करेगा।
1: पता नहीं, मतलब वो अहमदाबाद में किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमारे बिजनेस को भी एक्सपेक्ट करने में जरूरी है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है,
2: और सुनना चाहिए प्रेम के लिए किसी से बात,
1: तो बहुत सोच समझ के बात की।
3: और बेटा वैसे भी ये तो गणपति का टाइम है, ऐसे में तो सब लोग आपने उसकी बात कर रहे हैं कि जो भी होगा अच्छा होगा, तो ये शुरुआत अच्छी है।
1: नाम क्या बताया और आप तो पूछिए मत, कितना बिल्डअप दे रही थी, बाप रे। उन्होंने कहा कि कल जब वो आएंगे तो मिल लेना, अच्छा है बुरा है गलत है सही है तो नहीं पता।
0: अब ये मददगार कौन है जो जल्द ही आने वाला है, ये तो कहानी में ट्विस्ट है। फिलहाल तो राही बहुत खुश है इस खबर को लेकर और अनुपमा भी बेहद खुश है। ऐसे में राही अपनी माँ से विदा लेकर चली जाती है और अनुपमा दिग्विजय दोनों फिर से लग जाते हैं घर की साज सजावट में। वहीं दूसरी ओर बंकू बेहद परेशान है और अपनी आँखों से आंसू बहा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ईशानी के बारे में सोच रहा है। उसे लग रहा है कि उसके चलते ईशानी को कदम कदम पर सुनना पड़ रहा है। ऐसे में वो ईशानी की कैसे मदद करे उसे समझ नहीं आ रहा। तभी उसकी मदद करने के लिए ऊपर वाला भेज देता है राही को। जरा देखिए कैसे राही न सिर्फ बंकू के दर्द का सहारा बनती है बल्कि उसे समझाती भी है।
4: मेरा प्यार सच्चा, मेरी नीयत साफ है, लेकिन दुनिया की नजरों में ईशानी के लिए मैं हमेशा गलत ही रहूंगा, और ये बात वो समझना ही नहीं चाहती। आखिर कब तक वो सबसे लड़ेगी मेरे लिए, आखिर कब तक सबके सामने वो खुद बुरी बनेगी। एक ना एक दिन वो थक कर अगर हार मान ही लेगी ना, तो मैं आज ही क्यों नहीं हार मानूं।
1: क्योंकि हार और प्यार कभी एक सेंटेंस में आने ही नहीं चाहिए। प्यार कभी भी हैसियत देकर नहीं होता। आई नो ये बात सुनने में थोड़ी खुशी होती है, लेकिन वही सच है। मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया, मेरे और प्रेम के बीच में भी ऐसे ही खाई थी। मेरे पॉप्स नहीं थे, मैं दुआ तक की सड़कों से आई थी, और प्रेम इतनी बड़ी फैमिली से मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया। एंड ट्रस्ट मी, मेरे और प्रेम के बीच में भी ऐसे ही खाई थी। मेरे पॉप्स नहीं थे, मैं दुआ तक की सड़कों से आई थी, और प्रेम इतनी बड़ी फैमिली से। तो सोचो एक बात, देखिए हमें छोड़, परी और राजा को देखो, उन्हें तो सोशल स्टेटस के साथ साथ इस बात के लिए भी लड़ना पड़ा था कि प्यार मन देखता है तन नहीं देखता।
5: अल्टीमेटम तो नहीं दे रही है राही, बिल्कुल समझा ही रही है, मोटिवेट भी कर रही है। मुझे वो ये बताने की कोशिश, बंकू को ये बताने की कोशिश कर रही है कि भले ही ये डिफरेंस हो, लेकिन इसे अहमियत ना देते हुए तुम्हें फोकस करना चाहिए जो तुम्हारे पास है, जो प्यार तुम्हें मिला हुआ है उसे, उस पर फोकस होना चाहिए। और राही अपनी बात समझाती है कि उसका और प्रेम का भी ऐसे ही था, या वो अनु दीदी का एग्जाम्पल देती है कि जब अनु दीदी की शादी हुई थी दूसरी, तब भी वो माँ थी, लेकिन फिर भी उनकी शादी हुई, उनको भी बहुत तकलीफें आई। तो शी इज़ ट्राइंग टू मोटिवेट बंकू एंड ऑल्सो टेल बंकू दैट आफ्टर अ पॉइंट दिस क्लास डिफरेंस इज नॉट रियली वन शुड बी थिंकिंग ऑफ। और अगर प्यार सच्चा है, अगर तुम एक दूसरे को चाहते हो, अगर सच्चा प्यार तुम्हें मिला है, तो फोकस उस पे होना चाहिए। और ये यही राही अपने एक्सपीरियंसेस से, अनु दीदी के एक्सपीरियंस से बंकू को समझा रही है। एंड इट वाज सच अ इमोशनल ब्यूटीफुल सीन। और मेरा और आदिजा का पहली बार ये सीन हुआ, तो मुझे बहुत मजा आया ये ऐसा इमोशनल सीन उसके साथ करने में।
0: भाई बंकू को ये तो पता चल गया है कि प्यार इतनी आसानी से मिलता नहीं है, उसके लिए जंग लड़नी पड़ती है। अब देखना होगा कि अपने प्यार के लिए बंकू और कितनी मेहनत करेगा और कैसे ईशानी की माँ पाखी को करारा जवाब मिलेगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
6: सीरियल इश्क जुनूनी में देखने को मिला एक मजेदार ड्रामा, जहां रूहानी का दिल लेकर गुरु के घर पहुंची ईशानी। क्या गुरु इस सच को स्वीकार करेगा? क्या ईशानी ले पाएगी रूहानी की जगह? चलिए देखते हैं।
0: बदला रूप लेकर घर लौटी रूहानी। सभी घर वालों को हुई हैरानी। गुरु ने किया ईशानी को रूहानी मानने से इनकार। टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में ईशानी को पता चल गया है कि उसका जो दिल धड़क रहा है वो रूहानी का है। ऐसे में देखिए कैसे वो रूहानी का अवतार लेकर पहुंच गई है कुसुम निवास, वापस अपने गुरु के पास। लेकिन वहां पहुंचते ही बिगड़ जाती है जसलीन की तबीयत, जिसके चलते जसलीन के पति हरमन और सासू मां कुसुम दोनों परेशान हैं। और तभी कुसुम की नजर पड़ती है सामने खड़ी औरत पर, जिसके हाथों में जसलीन का बच्चा है। ऐसे में कुसुम जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो कौन है। रूहानी आरोही का जवाब दिए बिना ही पहुंच जाती है अपनी जसलीन भाभी के पास उन्हें होश में लाने के लिए, क्योंकि उसे हो रही है जसलीन की परवाह। ऐसे में हरमन भी अपने सामने ईशानी बनी आरोही को देखकर हो रहा है हैरान। भाई रूहानी के कहने पर हरमन ने डॉक्टर को फोन लगा दिया, तो वहीं आरोही अब भी रूहानी को रूहानी मानने से इनकार कर रही है। ऐसे में रूहानी आरोही को न सिर्फ टेंशन दिखा रही है बल्कि पहुंच जाती है अपनी कुसुम सासू माँ के पास, जो उसे बहुत मानती है। इतना ही नहीं, वो तो अपनी सासू माँ का हाथ अपने दिल पर भी रखती है, उन्हें अपनी धड़कन सुनाती है और उन्हें एहसास दिलाती है कि वो उनकी रूहानी है। ये देखकर कुसुम को विश्वास होने लगता है कि जो उसकी नजरों के सामने है वो वाकई में उसकी प्यारी बहुरानी है। इतना ही नहीं, कुसुम तो अपने बेटे गुरु को फोन लगाकर घर पर भी बुला लेती है, लेकिन गुरु आते के साथ ही रूहानी पर भड़कने लगता है, क्योंकि वो उसे रूहानी मानने के लिए तैयार जो नहीं है।
7: गुरु,
0: ईशानी तो बार बार कोशिश कर रही है गुरु को ये बताने की कि वही उसकी रूहानी है। इतना ही नहीं, कुसुम भी मान चुकी है और वो अपने बेटे को समझाने की कोशिश भी करती है। इतना ही नहीं, वो तो गुरु का हाथ लेकर ईशानी की धड़कन भी सुनाने की कोशिश करती है, लेकिन गुरु धड़कन सुने बिना ही अपनी नाराजगी जताने लगता है। और तो और वो ईशानी का हाथ पकड़कर उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकालने की कोशिश भी करता है। वो तो शुक्र है कि वहाँ पर आ जाती है रूहानी की माँ, जो ईशानी को गिरने से बचा लेती है, और उन्हें भी पूरा विश्वास है कि ये ही उनकी रूहानी है।
1: और हमें लगता है ये हमारी बेटी, हमारी रूहानी है।
7: अगर आपको लगता है नहीं आपकी बेटी, तो ले जाइए इसे अपने रखिए अपने दिल में। हमारे दिल और हमारे तरबे से जो लड़की की किताब हो गया हमारी कंपाउंड है। कोई भी नाम बदल के अपना चेहरा बदल के हमारे पास आ जाएगा और हमें कहेगा कि वो हमारी कंपाउंड है, तो मान लेंगे कहा। निवेदन है आप सबसे, ले जाइए इसे अपने।
0: भाई गुरु की बातें सुनकर रूहानी की माँ और बहन को यकीन हो गया है कि गुरु कभी नहीं मानेगा। ऐसे में रूहानी की माँ और बहन रूहानी को वापस ले जाने लगती है कि तभी जसलीन का बच्चा जो आरोही की गोद में है वो रोने लगता है और उसकी आवाज़ सुनकर रूहानी के कदम रुक जाते हैं। इसी बीच कुसुम आरोही से वो बच्चा लेने की कोशिश करती है, लेकिन आरोही देने से मना कर देती है। बस फिर क्या, ऐसे में वहाँ पहुँच जाती है रूहानी और देखिए कैसे उसकी आवाज़ सुनते ही बच्चा चुप हो जाता है और सभी हैरान। इतना ही नहीं, जसलीन को भी होश आ जाता है और वो पीछे से रूहानी को देखकर उसे रूहानी ही बुलाती है। ये सुनकर रूहानी सीधा दौड़कर जाकर अपनी जेठानी के गले लग जाती है और ये चीज आरोही को पसंद नहीं आती। जरा देखिए कैसे वो दोनों को अलग कर रही है और ईशानी को जालसाज बता रही है।
1: बस बहुत, सच में ठीक है, तो फिर मैं ऐसी बात बताती हूँ जो सिर्फ रूहानी को बोला, वो भी सबूत के साथ। फिर तो विश्वास करेंगे बातें का बोला सबूत को गुरु तो कुर्ता उतार दो। क्यों क्यों उतारे भाई कुर्ता? माँ देखते हैं कैसे बैठी बैठी बातें करें।
0: माँ के कहने पर गुरु ने अपना कुर्ता उठाकर अपना तिल दिखा दिया, लेकिन गुरु अब भी ये मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में उसने भी रूहानी से सबूत मांगा और तो उसे अपने साथ भी ले गया। ये देखकर कुसुम हैरान हो रही है और गुरु को रोकने की कोशिश कर रही है।
1: Thank you.

0: आरोही के कहने पर हरमन ने भी अपनी बीवी जसलीन को आराम करने को कह दिया। ऐसे में आरोही बच्चे को लेकर चली गई और जसलीन उसके आंसू बह रहे हैं। अब घर वालों को क्या पता कि ये सारा खेल आरोही का ही है। देखना होगा कि घर वाले सच जान पाएंगे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: ग्लैमर, गॉसिप और हाई वोल्टेज ड्रामा मनोरंजन की दुनिया से हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी ही रॉकिंग और शॉकिंग खबरें जो आपके चेहरे पर ले आएंगी एक प्यारी सी मुस्कान। आइए आपको दिखाते हैं आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें एक साथ।
2: जब जब सृष्टि पर संकट आया, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की।
3: मेरा ज्येष्ठ पुत्र
0: सास बहू और बेटियां लेकर हाजिर हैं आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। रॉकिंग खबर आ रही है नीतीश तिवारी की आने वाली फिल्म रामायण से। खबरों की माने तो रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टार फिल्म रामायण का इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन से 30 मिनट कम का होगा क्योंकि उस फिल्म में गाने नहीं होंगे।
3: मैं अपनी सीता को वापस लूंगा।

रॉकिंग न्यूज जुड़ी हुई है वेटरन एक्ट्रेस वाहिदा रहमान से, जो जल्द ही बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं। खबरों की माने तो अनुभव सिन्हा की आने वाली फिल्म, जो कि महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित होगी और इस फिल्म में मनोज वाजपेयी महात्मा गांधी का किरदार निभाएंगे। खबरों की माने तो इस फिल्म में महात्मा गांधी की मां पुतली बाई का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी वाहिदा रहमान। हालांकि अब तक वाहिदा रहमान ने इस बात की कन्फर्मेशन नहीं दी है।

कलर्स पर जल्द ही आने वाला है नया रियलिटी शो धमाल विद पति पत्नी और पंगा सीजन 2। खबरों की माने तो इसमें नजर आ सकती है जोड़ी भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी और उनकी बीवी की और उनकी बीवी सुरभि तिवारी की। हालांकि अब तक इन्होंने कंफर्मेशन नहीं दी है। इसी के साथ बता दें कि धमाल विद पति पत्नी पंगा सीजन 2 में होस्ट करने वाले मुनव्वर फारूकी और सोनाली बेंद्रे दोनों ही स्पॉट हुए हैं बिग बॉस के सेट के बाहर, जो पहुंचे हैं अपने आने वाले इस रियलिटी शो को प्रमोट करने के लिए। इनके अलावा जोड़ी नजर आई है राहुल वैद्य और उनकी बीवी दिशा परमार की, जो धमाल विद पति पत्नी पंगा 2 के एक प्रतियोगी होंगे। इसी के साथ अर्जुन बिजलानी और उनकी बीवी नेहा की जोड़ी भी नजर आई है, यानी ये जोड़ी भी कन्फर्म है। बात कर रहे हैं बिग बॉस के सेट की, तो सेट के बाहर स्पॉट हुए हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया भी, जो पहुंचे हैं अपनी आने वाली फिल्म 1 को प्रमोट करने के लिए। अमेज़न प्राइम पर आने वाले रियलिटी शो राइज एंड फॉल सीजन 2 के दो प्रतियोगियों का चेहरा रिवील हो गया है। देख लीजिए भोजपुरी एक्ट्रेस काजल रघवानी का ये पोस्टर, जो चीख चीख कर बयां कर रहा है इनके होने का।

इनके अलावा राइज एंड फॉल सीजन 2 में नजर आएंगी सारा गुरपाल, जो इससे पहले बिग बॉस सीजन 14 में नजर आ चुकी हैं। देख लीजिए इनका ये पोस्टर।

टेलीविजन की दुनिया की चटपटी खबरों और सीरियल्स के ड्रामे के साथ सास बहू और बेटियां में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और दीजिए हमको इजाजत। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी गुड न्यूज टुडे पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजना है, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक अपने वीडियोस भी भेज रहे हैं। मध्य प्रदेश के हरदा के रहने वाले ऋषभ गुर्जर ने गणपति बप्पा की सुंदर तस्वीरें गुड न्यूज टुडे के साथ शेयर की है। वीडियो में बप्पा स्वरूप भव्य और दिव्य लग रहे हैं, बप्पा को रंग बिरंगी पोशाकों और आभूषणों से सजाया गया है। बप्पा का यह स्वरूप हर किसी का मन मोह रहा है। बप्पा को फलों और उनके प्रिय मोदक का भी भोग लगाया गया है, जिसे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर में हमें यूपी के गाजियाबाद से बप्पा के भक्त शिवम शर्मा ने भेजी है, ये भी बेहद खूबसूरत तस्वीर है जिसमें गजानन के अद्भुत और अलौकिक स्वरूप नजर आ रहा है। बप्पा की ये तस्वीरें भक्तों को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। भक्त अपने घर बप्पा के मंदिर को भव्य तरीके से उन्होंने सजाया है। सुरेंद्र सैनी ने बप्पा को फलों का भोग लगाया है।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
7: चीनी हथियार के खरीदार बेबस और लाचार, चीन के चमत्कारी हथियार जंग में क्यों हो रहे बेकार, चीन के तिलिस्मी हथियारों की पोल खोल देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज चुड़ी पर।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
6: गणेशोत्सव के छठे दिन पंडालों में बप्पा की जयकार, मुंबई में लालबाग चौराहे के दरबार में उमड़ी भक्तों की भीड़, अमरावती में बद्रीनाथ धाम थीम पर बना पंडाल। तेलंगाना पलवंचा में करोड़ों के नोटों से सजे गणपति बप्पा, 2 करोड़ 90 लाख के नोटों की पंडाल की सजावट, 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोटों का किया गया इस्तेमाल। राधाअष्टमी के मौके पर बरसाने में आस्था और उल्लास का संगम, गलियों में सुनाई दे रही है बधाई और मंगल गीतों की गूंज, भव्य रूप से मनाया जा रहा है श्री राधा रानी का जन्मोत्सव। नैनीताल के नंदा देवी महोत्सव में उमड़ा आस्था का मेला, मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, 23 सितंबर तक चलेगा उत्सव। पीएम मोदी ने युवाओं को दी सौगात, 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा राष्ट्र निर्माण में जेंजी की भूमिका बेहद अहम। रूस की यात्रा पर पहुंचे सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ का अनोखा सम्मान, सेंट पीटर्सबर्ग के ऐतिहासिक पीटर एंड पॉल किले में ट्रेडिशनल तोप से दागे गोले। पुलवामा के काकापोरा स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जवानों का मॉक ड्रिल, चाक चौबंद इंतजाम की हुई परख।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
6: बरसाना में धूमधाम से मनाई जा रही राधाअष्टमी, जन्मोत्सव पर मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। राधा रानी का 11 क्विंटल दूध से हुआ अभिषेक, दही घी और शहद से भी कराया गया स्नान। राधा रानी के मंदिर में हुई भव्य आतिशबाजी, महाअभिषेक के बाद हुई आरती, जयकारों से गूंजा पूरा बरसाना। राधाअष्टमी पर बरसाने से पूरे ब्रिज में भक्तिमय माहौल आया नजर, दूर दूर से उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे यहां भक्त। राधाअष्टमी को लेकर बरसाने में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए, भक्तों की सुविधा को लेकर भी रखा जा रहा है पूरा खास ख्याल। नैनीताल के नंदा देवी महोत्सव में उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्तों ने किए मां नंदा सुनंदा के दर्शन। ब्रह्म मुहूर्त में मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शनार्थियों का उमड़ा हुजूम, भक्तों ने मां को अक्षत फूल नारियल चढ़ाकर मां की पूजा की। रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया मंदिर परिसर, रोशनी से बिखरी दिव्य छटा। वेद मंत्रों के उच्चारण से नंदामय हुआ मंदिर का माहौल, भक्तों ने जमकर लगाए जयकारे। मां नंदा देवी महोत्सव 23 सितंबर तक रहेगा जारी, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। विघ्नहर्ता गजानन के महाउत्सव का 6वां दिन, देशभर में विधि विधान से बप्पा की पूजा अर्चना लगातार जारी, विभिन्न स्वरूपों में गजानन दे रहे हैं भक्तों को दर्शन, अलग अलग थीम पर बनाए गए हैं पंडाल। सूरत के महिधरपुरा इलाके में गणेशोत्सव का अनोखा रंग, हॉरर की थीम पर तैयार किया गया पंडाल। डरावनी फिल्म की तर्ज पर बनाया गया पंडाल का माहौल, गजानन के दर्शन से पहले भक्तों को मिलता है अलग ही रोमांच। सूरत के महिधरपुरा में हर साल अलग अलग थीम पर पंडाल बनाने की परंपरा, उत्सव को अलग स्वरूप देने की होती है कोशिश। हुबली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के घर में विराजे गजानन, विसर्जन से पहले प्रहलाद जोशी ने की पूजा अर्चना। पुणे के डगड़ूशेठ गणपति पंडाल में उमड़ा आस्था का मेला, बप्पा को अर्पित किया गया 251 किलो का मोदक केक। अमरावती में बद्रीनाथ धाम मंदिर की थीम पर सजाया गया गणेशोत्सव पंडाल, दूर दूर से देखने के लिए यहां पहुंच रहे हैं भक्त। गणपति बप्पा के साथ भक्तों को बद्रीनाथ धाम के भी हो रहे हैं दर्शन, रंगीन लाइटों से सजाया गया पूरा पंडाल। अमरावती में 41 सालों से अलग अलग थीम पर पंडालों को सजाने की है परंपरा, रुक्मणी गणेश उत्सव मंडल की ओर से होता है ये आयोजन। मुंबई में 6 दिनों में 32,000 से अधिक बप्पा की प्रतिमाओं को दी गई विदाई, बीएमसी ने जारी किया आंकड़ा। मुंबई में अब तक 31,500 घरेलू गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन, सार्वजनिक गणेश मंडल की 650 मूर्तियों का विसर्जन। तेलंगाना के पालवंचा में नोटों से सजे गणपति, कुल 2 करोड़ 90 लाख रुपए से की गई भव्य सजावट। गजानन की एक प्रतिमा पर 1 करोड़ 40 लाख के नोट से सजावट, बापूजी नगर में कपू समाज ने खास पूजा के साथ सजावट की। गजानन की दूसरी प्रतिमा का 1 करोड़ 50 लाख रुपए से हुआ श्रृंगार, अनोखी सजावट देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। रायसेन में अनोखे धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान, दादा धुनी दरबार में 1,51,000 किलो सामग्री की गई अर्पित। यज्ञ में सोना चांदी भी किया गया अर्पित, अब तक करीब 1.5 किलो सोना और 4 किलो से ज्यादा चांदी चढ़ाने का दावा। हवन सामग्री में 251 तरह की जड़ी बूटियां भी शामिल, फल फूल और मिठाई के साथ हवन में डाली गई जड़ी बूटियां। हवन आयोजन ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, आयोजकों को मिला इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र। 51 दिन चलेगा धार्मिक आयोजन, गुरु पूर्णिमा से शुरू हुआ आयोजन, नर्मदा संकीर्तन भी रहेगा जारी। मेरठ में पहली बार भव्य यशो का आयोजन, महीउद्दीनपुर में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने किया प्रदर्शन। एयरशो में नौहक MK-132 विमान ने दिखाया रोमांचक करतब, तिरंगे के रंगों से सजा मेरठ का आसमान। हॉक विमानों से निकली केसरिया, सफेद और हरे रंग की धुएं की लकीरें, दिखा वायु वीरों का शौर्य। सूर्य किरण टीम ने दिखाया लूप और बैरल रोल, उल्टी उड़ान समेत कई रोमांचक करतब। कल भी एरोबेटिक प्रदर्शन, सूर्य किरण के पायलट दिखाएंगे सटीक तालमेल, आसमान में बनेंगे शानदार एरोबेटिक फॉर्मेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले का उद्घाटन किया, 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। देशभर के 45 विभिन्न स्थानों पर हुआ रोजगार मेले का आयोजन, सरकारी विभागों और संगठनों के लिए दिए गए हैं नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के टैलेंट पर जताया भरोसा, कहा दुनिया को हमारी युवा शक्ति से बहुत उम्मीदें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने COP21 समिट में किए वादे को समय से पूरा कर दिखाया। 20वें एशियाई खेलों का रंगारंग उद्घाटन आज, जापान के आइची नागोया में होगा भव्य समारोह। मिजुहो स्टेडियम में होगा आयोजन, 4 अक्टूबर तक प्रतियोगिता का आयोजन। भारतीय शूटर मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत थामेंगे तिरंगा, गेम्स में 45 देश और रीजन 43 खेलों में करेंगे मुकाबला। एशियन गेम्स एशिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता, हर चार साल में एक बार होता है इसका आयोजन। एशिया खेलों में 75 से ज्यादा भारतीय एथलीट शामिल, तजिंदर पाल सिंह तू शॉटपुट में 2 बार के डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर पेश करेंगे दावेदारी। भारतीय अमेरिकी सैनिकों का युद्धाभ्यास औली महाजन में जारी, मल्टी डोमेन वॉरफेयर पर किया गया मंथन। भारत और अमेरिका की सेनाओं ने औली में की कमांड पोस्ट एक्सरसाइज, युद्ध की चुनौतियों से जुड़ी रणनीति पर चर्चा की। युद्ध के दौरान कम्युनिकेशन बनाए रखने की प्रणाली पर भी हुआ मंथन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को लेकर अनुभव किए साझा। AI और ड्रोन रोधी तकनीक पर युद्धाभ्यास के दौरान रहा फोकस, काउंटर UA क्षमताओं के सैन्य इस्तेमाल पर हुई चर्चा। संयुक्त सैन्य अभ्यास 28 सितंबर 2026 तक रहेगा जारी, दोनों सेनाओं के 600-600 जवान ले रहे हैं हिस्सा। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की रूसी यात्रा, सेंट पीटर्सबर्ग में ऐतिहासिक तोप चलाने का मिला विशेष सम्मान। जम्मू कश्मीर के रियासी में 2 दिवसीय खेलो इंडिया अस्मिता विमेन विशु लीग का आयोजन, 300 से अधिक महिला एथलीट ने हिस्सा लिया। लद्दाख में पहले इंटरनेशनल सी बकथॉर्न कॉन्क्लेव का आयोजन, लद्दाख के उपराज्यपाल ने किया शुभारंभ। उधमपुर में ग्रामीण विकास को लेकर प्रशासन अलर्ट, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर किया जा रहा है विकास का काम। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में पुरुतासी शनिवार पर विशेष आयोजन, भगवान पेरुमल की हुई विशेष पूजा।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: भाई और बहनों नमस्कार, मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूँ, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूँ। इस उम्र में जहाँ लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूँ। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो यह है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी दृढ़ पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजनकरी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के

0: अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: घास का धार्मिक महत्व क्या है? दूब घास के प्रयोग से काम की बाधाएं कैसे दूर हो सकती हैं? और दूब घास से गणपति का क्या संबंध है? जानिए दूर्वा यानी दूब घास की महिमा सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: चीनी हथियार के खरीदार बेबस और लाचार। चीन के चमत्कारी हथियार जंग में क्यों हो रहे बेकार? चीन के तिलिस्मी हथियारों की पोल खोल देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: गणेशोत्सव के छठे दिन पंडालों में बप्पा की जयकार। मुंबई में लालबाग चौराहे के दरबार में भक्तों की भीड़। अमरावती में बद्रीनाथ धाम की थीम पर बना पंडाल। तेलंगाना के पलवंचा में करोड़ों के नोटों से सजे गणपति बप्पा। 2,90,00,000 के नोटों की पंडाल की सजावट। 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोटों का किया गया इस्तेमाल। राधाष्टमी के मौके पर बरसाने में आस्था और उल्लास का संगम। गलियों में सुनाई दे रही है बधाई और मंगल गीतों की गूंज। भव्य रूप से मनाया जा रहा है श्री राधा रानी का जन्मोत्सव। नैनीताल के नंदा देवी महोत्सव में उमड़ा आस्था का मेला। मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 23 सितंबर तक चलेगा उत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को दी सौगात। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा राष्ट्र निर्माण में जेंजी की भूमिका बेहद अहम। रूस की यात्रा पर पहुंचे सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ का अनोखा सम्मान। सेंट पीटर्सबर्ग के ऐतिहासिक पीटर एंड पॉल किले में ट्रेडिशनल तोप से दागे गोले। पुलवामा के काकापुरा स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जवानों का मॉक ड्रिल। चाक चौबंद इंतजाम की हुई परख।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। श्री हरि के जितने स्वरूप हैं उन सभी में लीलाधर का नाम श्री कृष्ण यानी बांके बिहारी को मिला है। श्री धाम वृंदावन के हृदय स्थल में विराजमान बांके बिहारी की महिमा अनंत है। माना जाता है कि बांके बिहारी का प्राकट्य 16वीं शताब्दी में वृंदावन के निधिवन में हुआ था। बांके बिहारी की प्राकट्य की कथा आपके मन को भक्ति रस से सराबोर कर देने वाली है। ब्रजवासियों की मान्यता है कि राधा रानी की अष्ट सखियों में एक ललिता के रूप में अवतरित हुए स्वामी हरिदास

0: सुनकर करुण पुकार श्री कृष्ण स्वरूप में बांके बिहारी का हुआ प्रादुर्भाव।
1: गले में बैजंती
0: संगीत साधना से द्रवित हुए मुरलीधर स्वयंभू मूर्ति के नेत्रों से निहार रहे हैं गिरिधर। ये सिर्फ एक कथा नहीं है बल्कि इस घटना को भक्ति की शक्ति का चमत्कार माना जाता है। ईश्वर से साक्षात्कार कर लेने का अलौकिक सच माना जाता है जिसका अनुभव भक्त सदियों से करते चले आ रहे हैं। दावा किया जाता है कि ये चमत्कारी कथा है वृंदावन के निधिवन की, जहां भक्त हरिदास ने अपनी भक्ति से ईश्वर को दर्शन देने पर विवश कर दिया था। वही त्रिभंगी मूर्ति आज मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में विराजमान है, जहां जाकर भक्तों के दुख और संकट छूमंतर हो जाते हैं।
1: कनक मयमोर
2: तो ऐसा माना जाता है कि प्रेम आकर्षण आनंद ऐश्वर्य भोग की प्राप्ति बांके बिहारी के दर्शन से हो जाते हैं। यहां पर जो भी भक्त पूर्ण मनोयोग के साथ युगल जोड़ी का दर्शन करते हैं उनकी मनोकामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि ठाकुर जी यहां अपने भक्तों के सुख दुख दर्द और कष्ट हर लेते हैं, सिर्फ आनंद प्रदान करते हैं।

0: अगर भक्ति में शक्ति ना होती तो रामकृष्ण परमहंस माँ काली की अनुभूति ना कर रहे होते। मीराबाई ने कृष्ण को ही सर्वस्व मानकर उनकी भक्ति की, जिसका सोपान उन्होंने विरह गीत के रूप में किया। माना जाता है कि कुछ इसी तरह 16वीं शताब्दी के एक अनन्य भक्त के निर्मल भाव पर रीझ कर सच्चिदानंद भगवान ने वृंदावन की तपोस्थली निधिवन में एक रूप ग्रहण किया था। निधिवन में त्रिभंगी मुद्रा में प्रकट भगवान के इसी रूप को आज दुनिया बांके बिहारी के नाम से जानती है।
1: चूंकि भगवान त्रिभंग तीन जगह से मुड़े हुए हैं, राधा रानी के पीछे टेढ़े मेढ़े चलते स्वरूप का यह मूर्ति है, बाल स्वरूप की मूर्ति है। स्वामी हरिदास ऐसे सौभाग्यशाली परम भक्त रहे, संगीतकार भी रहे, जिन्होंने निधिवन में भगवान श्री कृष्ण की एवं राधा रानी की संयुक्त पूजा की, जो बांके बिहारी के रूप में प्रकट हुए थे।
0: ब्रज का हृदय माने जाने वाले वृंदावन में विराजमान बांके बिहारी का स्वरूप इतना दिव्य और अलौकिक है कि उसकी एक झलक पाकर इंसान अपने त्रिविध पापों की तासीर भूल जाता है। माना जाता है कि बांके बिहारी के प्राकट्य की कथा इतनी गूढ़ और अलौकिक है कि उसे आत्मसात करने के लिए श्रद्धा और विश्वास की आंखें चाहिए। तर्क शक्तियों को ये कथा मनगढ़ंत लग सकती है, लेकिन जिनके पास श्रद्धा और विश्वास की आंखें हैं, वो इस कथा को सुनकर भाव विभोर हो जाएंगे।
1: इनकी महिमा का वर्णन शब्दों में किया नहीं जा सकता, फिर भी जो सामान्य जानकारी है वह यह है कि बांके बिहारी की जो मूर्ति है वह स्वयं प्रकट हुई थी, जिसे स्वामी हरिदास ने निधिवन में खोजा था। यह मूर्ति निधिवन में प्राप्त हुई थी। बिहारी जी की मूर्ति काले रंग की है और इसमें राधा और श्री कृष्ण का मिला जुला रूप समाहित है।
0: जानकारी दावा करते हैं कि बांके बिहारी के प्राकट्य की ये कथा संगीत सम्राट तानसेन और बैजू बावरा के गुरु स्वामी हरदास से जुड़ी है। निम्बार्क समुदाय कहता है कि संगीत के अप्रतिम साधक स्वामी हरिदास का जन्म सन 1490 ईस्वी में वृंदावन से एक मील दूर राजपुर गांव में हुआ था। ब्रजवासियों की मान्यता है कि स्वामी हरिदास भगवान कृष्ण और राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक ललिता रानी के अवतार थे। मान्यता है कि द्वापर में लीला करते हुए भगवान कृष्ण ने ललिता सखी को कलयुग के प्रथम चरण में हरिदास के रूप में अवतरित होने का वरदान दिया था।
2: तो भगवान की जितने भी अंतरंग लीला होती थी या भगवान का शयन कक्ष में प्रवेश होता था या जो आठ सखियों का वर्णन, अष्ट सखियों का वर्णन होता है, उसमें वो हेड लीड करती थी। तो जब द्वापर काल खत्म हो रहा था, भगवान कृष्ण अपने गोलोक धाम को जाने लगे, तो ललिता सखी ने कहा कि मैं स्त्री रूप में, सखी रूप में आपकी बहुत सेवा की है, मैं चाहती हूँ कि आपको पुरुष के रूप में और भक्ति के रूप में प्राप्त करूँ। तब उन्होंने कहा कि आप इस कलयुग के प्रथम चरण में स्वामी हरदास के रूप में जन्म लेंगी और मुझे वृंदावन में बांके बिहारी के रूप में अवतरित करेंगी।
0: ललिता सखी के स्वामी हरिदास के रूप में अवतरित होने की कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य है कि स्वामी हरिदास जन्म से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। काफी छोटी उम्र में ही वो वृंदावन के निधिवन में आकर संगीत की साधना करने लगे। ब्रजवासियों की माने तो स्वामी हरिदास तानपुरा लेकर निधिवन में जब संगीत की तान छेड़ते थे तो पशु पक्षी भी दाना पानी छोड़कर और सुध बिसराकर भावमग्न हो जाते थे। कहते हैं कि स्वामी हरिदास के अलौकिक तान में इतना सम्मोहन होता था कि स्वयं लीलाधर भी सम्मोहित हो जाते थे और संगीत के उत्कर्ष तक पहुंचते ही निधिवन में प्रकट हो जाया करते थे। लेकिन स्वामी हरिदास को छोड़कर भगवान कृष्ण के दिव्य अलौकिक स्वरूप का दर्शन कोई नहीं कर पाता था। कथा है कि एक दिन हरिदास के शिष्यों ने अपने गुरु से भगवान का दर्शन कराने की याचिका की। स्वामी हरिदास ने शिष्यों की अर्जी जब भगवान कृष्ण के सामने लगाई तो राधा रानी के साथ विग्रह स्वरूप में साक्षात प्रकट हो गए। तब स्वामी हरिदास ने उनसे अनुनय विनय किया कि मैं आपका तो भोग श्रृंगार कर सकता हूँ, लेकिन राधा रानी के लिए वस्त्र आभूषण कहाँ से लाऊंगा। भक्त हरिदास की इस दुविधा को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण और राधा एक ही विग्रह में अंतरलीन हो गए और इसी विग्रह को दुनिया बांके बिहारी के नाम से जानती है।
3: जब निधिवन में बिहारी जी महाराज स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने प्रकट किए थे अपनी भक्ति और संगीत की साधना से, तब राधा रानी और बिहारी जी एक दूसरे में समाहित हो गए थे। क्योंकि हरिदासी का कारण यह है कि ये गोरी गोरी तो राधा रानी है और ये जो आप ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं कृष्ण है, तो उनका समाहित स्वरूप हमारे बांका बिहारी है और हमारे बिहारी जी तीन तरफ से टेढ़े हैं, वो हाथों से भी और कमर से भी और पैरों से।
0: साफ है कि बांके बिहारी मंदिर में भगवान का जो दिव्य अलौकिक विग्रह है वो किसी मूर्तिकार का शिल्प नहीं बल्कि स्वयंभू प्रतिमा है। यही वजह है कि प्राकट्य के 500 साल से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी इस विग्रह में गजब का सम्मोहन है, अद्भुत अलौकिक आकर्षण है।
1: बांके बिहारी जी की प्रतिमा निधिवन में एक मंदिर में थी जिसे बाद में 1860 से लेकर के 1864 के बीच में स्वामी हरिदास के अनुयायी लोग एक मंदिर में स्थापित कर दिए, लेकिन ऊर्जा का स्तर इतना है कि लगता है कि या तो भगवान साक्षात बैठे रहते हैं या अनंत काल से उनका ऊर्जा वृंदावन में गूंज रही है, कणकण में व्याप्त है।
0: बिहारी जी का ये विग्रह हमारी चेतना को झनकृत करता है, तभी तो सामान्य दिनों में या रोजाना 1.5 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, वीकेंड में तो यहाँ 3 लाख से श्रद्धालु उमड़ते हैं, प्रमुख पर्वों पर तो श्रद्धालुओं की तादाद एक दिन में 8 से 10 लाख तक हो जाती है। वृंदावन से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की परम लीला स्थली है। कहा जाता है कि वृंदावन के कण कण में भगवान कृष्ण और राधिका रानी का वास है और यहाँ की हर कुंज गलियों में भगवान कृष्ण और राधा रानी के मंदिर आपको मिल जाएंगे। लेकिन वृंदावन आने वाले श्रद्धालु बांके बिहारी के दर्शन जरूर करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भगवान कृष्ण के बांके बिहारी स्वरूप के हाथ में मुरली नहीं है। इतना ही नहीं, भक्तों को उनके चरण भी नहीं दिखते हैं। मान्यता है कि इस विग्रह में स्वयं राधिका जी भी समाहित हैं।

0: सनातन संस्कृति में ईश्वर को निराकार और सर्व व्यापक माना गया है, लेकिन वही निराकार ईश्वर भक्तों के प्रेम और श्रद्धा के वशीभूत होकर उसके भाव के अनुरूप तरह तरह के रूप ग्रहण कर लेता है। माना जाता है कि आज भी निधि वन के रंग महल में विधाता अपनी लीला दिखाते हैं। राधा रानी संग रास रचाते हैं। बांके बिहारी मंदिर में साल भर ही आस्था भाव विभोर होती है। कहते हैं कि जब आप बांके बिहारी की मूर्ति की आंखों को श्रद्धा और आस्था के साथ निहारेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बिहारी जी आपके हर दुख दर्द क्लेश को शिद्दत से महसूस कर रहे हैं और उसे दूर करने का भरोसा दे रहे हैं।
1: मंदिर में हर दो मिनट पर मूर्ति के सामने पर्दा कर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि बिहारी जी अपने भक्तों के प्रेम में भाव विभोर होकर वशीभूत होकर उनके साथ जा सकते हैं, इसलिए नजर उतारने और दर्शन को थोड़े समय के लिए रोकने के लिए पर्दा लगा दिया जाता है। बहुत देर तक उनकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकते क्योंकि व्यक्ति भाव विभोर हो जाएगा, खो जाएगा और इतनी ऊर्जा इतना आकर्षण एक व्यक्ति एक सामान्य प्राणी सह नहीं सकता, इस कारण से पर्दा लगा।
0: दावा किया जाता है कि स्वयंभू विग्रह की जीवंतता ऐसी है कि कई बार ऐसा लगता है कि विग्रह गर्भगृह से निकलकर आप में ना आ जाए। मंदिर के सेवायत तो मानते हैं कि भरतपुर की एक अनन्य भक्त के साथ ऐसा हो भी चुका है। वो भक्त देवी जब बिहारी जी के मंदिर आई तो प्रबल प्रेम के साथ एक तक अपलक बिहारी जी को निहारने लगी। कोमल चित्त बिहारी जी अपने भक्त के भाव पर इतने रिझ गए कि जब वो लौटने लगी तो प्रतिमा उनके पीछे पीछे जाने लगी। उसी अलौकिक घटना के बाद मंदिर के पुजारी हर दो मिनट में गर्भगृह का पर्दा खींच देते हैं।
2: पहले हमारे बिहार जी मंदिर में पर्दा नहीं होता था, तब एक दिन भरतपुर की एक भक्त आए, वो है दर्शन कर रही थी। दर्शन करते करते पहले इतना रश नहीं हुआ करता था, तब बिहारी जी की आंखों से आंखें उनकी नैना से नैना लड़ गई तो हमारे बिहारी जी मोहित होकर उन्हीं के साथ चल दिए। तभी से ये हमारी एक पद्धति और परंपरा बन गई कि जो भी ठाकुर जो भी भक्त ठाकुर जी को अपनी से उनका लिंक जुड़ता है, आंखों से ठाकुर जी उनको देखते हैं, वो अपने भाव ठाकुर जी से कहता है, तभी हम बीच में वो पर्दा लगा देते हैं जिससे कि भक्त और भगवान के बीच का जो तालमेल है वो टूट जाए।
0: आस्था कहती है कि साधक की करुण पुकार सुनकर ईश्वर पिघल जाते हैं, भक्त की पुकार पर दौड़े चले आते हैं। कथा है कि बांके बिहारी का तो प्राकट्य ही भक्त की भावना और कामना की पूर्ति के लिए हुआ है। सनातन संस्कृति में ईश्वर की आराधना को चरण वंदना के साथ भी जोड़ा जाता है। ईश्वर के चरणों में वैकुंठ की मान्यता छिपी है, पर कमाल ये है कि अक्षय तृतीया की तिथि को छोड़कर पूरे साल बांके बिहारी के चरणों का दर्शन नहीं होता। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि बिहारी जी भक्तों के साथ नयनों से संवाद करने के रसिया हैं। यही वजह है कि भगवान कृष्ण की ये प्रतिमा चरण प्रधान नहीं बल्कि नयन प्रधान है। एक और अद्भुत बात यह है कि मुरलीधर भगवान कृष्ण की अकेली ऐसी प्रतिमा है जिसमें उनके हाथ में वेणु यानी बांसुरी नहीं है। बांके बिहारी साल में सिर्फ एक बार शरद पूर्णिमा के दिन ही बांसुरी धारण करते हैं।
2: बिहारी जी साल में एक बार अपने हाथों में बंसी धारण करते हैं, वह दिन शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। जब बांके बिहारी जी अपनी सखियों के संग बाहर उस चांदनी रात में बाहर निकल के रास करते हैं तभी ठाकुर जी बांसुरी धारण करते हैं। जैसे आपने चित्रों में भी देखा होगा और बहुत ही आपने कहानियां सुनी होंगी, पर हमारे मंदिर में साल में एक बार बिहारी जी जब बाहर निकलते हैं तभी वह बांसुरी धारण करते हैं।
0: भक्त और भगवान का ऐसा दिव्य और मधुर रिश्ता दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिले, जहां आराधना के नियम भी पीछे छूट जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती नहीं होती। इसका कारण तो और हैरान करने वाला है। दरअसल आराधक मानते हैं कि उनके आराध्य बिहारी जी रात में महारास के लिए नित्य निधि वन जाते हैं, और चूंकि उनके लौटने में देर हो जाती है इसलिए देर से शयन करते हैं। ऐसे में मंगला आरती के लिए उन्हें जगाया नहीं जाता।
1: अन्य मान्यता क्या है कि यहाँ मंगला आरती नहीं होती, क्योंकि स्वामी हरिदास ने श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को सुबह जगाना उचित नहीं समझा। बाल स्वरूप में, इसलिए उन्हें लगा कि सुबह सुबह हम कन्हैया को कैसे जगा दें। एक प्रेम है, एक भाव है, यहाँ केवल श्रृंगार होता है, राजभोग चढ़ता है और शयन की सेवा होती है। साल में एक बार अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, चरणों के, उनके चरणों के दर्शन होते हैं। विश्वास भी है क्योंकि अनेकों ऐसे प्रसंग देखने को मिले हैं, ऐसे चमत्कार देखने को मिले हैं कि अविश्वास की तो कोई वस्तु रही नहीं।
0: जन्माष्टमी के पावन अवसर को छोड़कर बांके बिहारी की मंगला आरती पूरे साल नहीं होती। पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण का प्राकट्य उत्सव जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है, पर बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव हर साल मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है, क्योंकि ब्रजवासियों का मानना है कि विक्रम संवत 1562 यानी 1505 ईस्वी में मार्ग शीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही बिहारी जी का प्राकट्य हुआ था।
1: वृंदावन स्थित बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है, जहां पर ठाकुर जी यानी भगवान श्री कृष्ण बिहारी जी के रूप में विराजमान होते हैं। इस मंदिर का जो निर्माण है 1860 से 1864 के मध्य में स्वामी हरिदास जी ने कराया था। यह मूर्ति जो यहां पर स्थापित मूर्ति है वह राधा कृष्ण की युगल जोड़ी के रूप में स्थापित है।
0: मार्ग शीर्ष पंचमी के दिन बांके बिहारी मंदिर की अलग ही रौनक होती है, क्योंकि इस दिन बिहारी जी के मंदिर में जन्माष्टमी की छटा छाई रहती है। वृंदावन से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और इसी के साथ हमारे इस खास शो प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: चीनी हथियार के खरीदार बेबस और लाचार। चीन के चमत्कारी हथियार जंग में क्यों हो रहे बेकार? चीन के तिलिस्मी हथियारों की पोल खोल देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
8: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी गुड न्यूज टुडे पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजना है। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक अपने वीडियोस भेज रहे हैं। यूपी के कानपुर की रहने वाली नीहू नीलाक्षी ने गणपति बप्पा की सुंदर तस्वीरें गुड न्यूज टुडे के साथ शेयर की है। वीडियो में बप्पा स्वरूप भव्य और दिव्य लग रहे हैं। बप्पा को रंग बिरंगी पोशाकों और आभूषणों से सजाया गया है। बप्पा का ये स्वरूप हर किसी का मन मोह रहा है। बप्पा को फलों और उनके प्रिय मोदक का भी भोग लगाया गया है, जिसे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर हमें हरियाणा के महेंद्रगढ़ की रहने वाली बप्पा की भक्त ऋतु ने भेजी है। ये भी बेहद खूबसूरत तस्वीर है, जिसमें गजानन के अद्भुत और अलौकिक स्वरूप नजर आ रहा है। बप्पा की ये तस्वीरें भक्तों को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। भक्त ने अपने घर बप्पा के मंदिर को भव्य तरीके से सजाया है। सुरेंद्र सैनी ने बप्पा को फलों का भोग लगाया है।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
0: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
8: गणेश उत्सव के छठे दिन पंडालों में बप्पा की जयकार, मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में उमड़ी भक्तों की भीड़, अमरावती में बद्रीनाथ धाम थीम पर बना पंडाल। तेलंगाना के पलवंचा में करोड़ों के नोटों से सजे गणपति बप्पा, 2,90,00,000 के नोटों की पंडाल से हुई सजावट, 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोटों का किया गया इस्तेमाल। राधाष्टमी के मौके पर बरसाने में आस्था और उल्लास का संगम, गलियों में सुनाई दे रही बधाई और मंगल गीतों की गूंज, भव्य रूप से मनाया जा रहा श्री राधा रानी का जन्मोत्सव।

0: वो ऐसे खास मेहमान अब हमारे साथ, जिनको पर्दे पर आप जरूर उनसे आप भेंट मुलाकात करते हैं, लेकिन आज उनके अपने बिहार में। ऐश्वर्या बहुत लंबी है इसलिए हम लोग सब बैठ के बात करेंगे उनसे, आइए बैठिए। ऐश्वर्या, सुष्मिता और क्रांति प्रकाश झा के लिए तालियां बजाएं, तालियों के साथ स्वागत करें। देखिए, किरदारों से जब आपका परिचय होता है तो थोड़ा अधूरा परिचय होता है, जो असली व्यक्ति होता है वो अलग होता है। एक पूरी लंबी चौड़ी कहानी होती है, खासकर जब आप क्रांति एक ऐसे राज्य से निकल कर जाएं जहां पर जो आपकी प्राथमिकता होती है वो पहले यूपीएससी होती है, आप भी शायद आईपीएस ही बनना चाहते थे, लेकिन एक क्रांति कर दी और बन गए अभिनेता।
1: जी जी, नमस्कार आप सबको।
0: पर मैथिली से शुरुआत कर लेते हैं।
1: मैं कुछ भी पूछने वाला था आपसे।
0: जरूर।
1: तो नमस्कार, प्रणाम, हाँ, सब गोटा के जे हमरा से पैघ छी उनका गोर लगै छी। अरे अहाँ सब नहीं लागू, हम लाग लै छी। का हाल बार हुआ सबके? भोजपुरी भी हमरा आवेला तो भोजपुरी में भी रहुआ सबके स्वागत बा। बाकी जैसा कहा जाता है, मैम, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो मैंने हिंदू कॉलेज से अपनी पढ़ाई की और उसके बाद हमारे पिताजी ब्यूरोक्रेट थे, उनको यहीं पे थे बिहार में शिक्षा विभाग में, तो उनका बड़ी इच्छा थी हमारे माता पिता की कि हम भी वैसा ही कुछ करें, लेकिन जिंदगी फिर किसी तरह से मुंबई लेके चली गई, बंबई लेके चली गई, और तब से लेके आपके सामने यूपीएससी कर रहा होता तो शायद यहाँ पे नहीं होता।
0: वैसे जिला तो आप दोनों का सेम है।
1: जी ऑलमोस्ट, हाँ, दरभंगा और दरभंगा। जी
0: ऑलमोस्ट,
1: हाँ, मतलब यही अभी मुझे मालूम चला है, ये भी मिथिलांचल है, तो मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ।
0: लेकिन ऐश्वर्या नहीं जानती है मैथिली?
2: जानते हो?
0: जानती है।
2: मैं सोच रही थी कि अब यही उत्तर दे रहे तो मैं उनका इंतजार कर रही थी।
1: हमर भाव के लिए अब आ कहियो
2: आहा खत्म करूं फिर हम अबई।
1: हमर भाव के लिए अब हम चुप।
0: नहीं, ये एक्चुअली जब अभी देखिए पिछला सेशन में कर रही थी, वहां पर डॉक्टर तिशा श्री हमारे साथ थी, अभी नई फिल्म कर रही है वो, और एंटरप्रेन्योर्स के पैनल में वो थोड़ा कह रही थी कि मैं थोड़ा मिसफिट हूं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग का पूरा बचपन बीता शत्रुघ्न सिन्हा को एक सुपरस्टार के तौर पर देखते हुए, और लगा कि मतलब बिहार वहीं से शुरू वहीं पे अंत हो रहा था, बिहारी बाबू। नो डाउट कि वो पायनियर रहे हैं, उन्होंने वो शुरुआत की, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग, मतलब आप बताए ना तो शायद किसी को पता ना चले कि कौन बिहार का, कितने बिहार का मतलब वर्चस्व हो रहा है धीरे धीरे उधर भी।
1: मैं वहां कुछ कही के बाद फिर हम कहे नहीं। मैम, जहां तक वर्चस्व की बात है तो बात वर्चस्व से भी ज्यादा यहाँ की जो कला है, हाँ, समझने में लोगों को टाइम लगता है, चाहे वो किसी भी तरह की कला हो, बिहार की जुगाड़ हो या फिर आदमी कहीं से कुछ भी, हर मतलब जितने भी कह सकते हैं ना कि आपको चैलेंजेस लाइफ में होते हैं उसको पार करके जिंदगी को कैसे जीतना है, यह हर बिहारी जानता है। अपवाद सब जगह होते हैं क्योंकि जिंदगी सबकी अलग होती है, लेकिन जहां तक वर्चस्व की बात है तो बिहार, मुझे आज तक कोई ऐसा बॉम्बे में रह के मुझे मालूम नहीं चला कि कोई मुझे हे दृष्टि से देख रहा है कि मैं बिहार का हूं। अपनी कला है और धीरे धीरे करके लोग उस कला को पहचानेंगे, चाहे बिहार की कला हो चाहे बाहर की कला हो।
0: क्योंकि मनोज वाजपेयी हो, पंकज त्रिपाठी हो, आज संजय मिश्रा हमारे साथ आए थे, तो ये सारा, और ये अभिनय में एक खुशबू सी, मतलब मिट्टी की खुशबू दिखती है थोड़ा, कुछ तो सरलता, कुछ तो सहजता है,
2: डेप्थ है,
0: है ना?
2: इधर बिहार वालों में डेप्थ बहुत ज्यादा है, जो बहुत लोग डर भी जाते हैं मुझे ऐसा लगता है। पर जैसा कि आपने कहा कि आई थिंक पहले एक अलग टाइम था, मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग कम पहचाने जाते थे, स्पेशली अभिनेता में और एक्टिंग करियर में, बट अब मुझे लग रहा है काफी लोग, मतलब अब तो बहुत लोग, लाइक हमें ही देख लीजिए, वी आर लाइक इट्स बिन थ्री इयर्स, तीन चार साल मुझे हुए हैं एक्टिंग करते हुए, और मुझे लग रहा है मेरे आसपास बहुत लोग बिहार से हैं जो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और ना ही सिर्फ अभिनेता और अभिनेत्री पर एंटरप्रेन्योर हो या फिर किसी भी क्षेत्र में हो, वो काफी आगे निकल रहे हैं।
0: क्रिकेट
2: वी हैव सो मेनी,
0: क्रिकेट मतलब फ्रॉम वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, कमी नहीं है, तो कमी नहीं है, इंडियन क्रिकेट टीम में भी जा रहे हैं। पर ये बहुत अच्छी बात है क्रांति की, आप कह रहे हैं कि आपको वो नहीं फेस करना पड़ा, लेकिन क्या एक चीज आप मानेंगे कि पर्दे पर जो कहानियां बिहार से जुड़ी हुई आती हैं उनमें एक स्टीरियोटाइप है?
1: मैम, बिहार को बेचना बहुत आसान है, बिहार को बनाना मुश्किल है। बेचने के लिए हर इंसान जिस भी तरह से चाहे बिहार को बेच सकता है, और ऐसा नहीं है कि बिहार में कहानियां नहीं है। किसी इंसान ने आज तक ये नहीं सोचा कि अच्छा हम वीर कुंवर सिंह पे, बाबू वीर कुंवर सिंह पे कहानी बनाते हैं। मेरे ख्याल से आज के लोगों को, जो आज की जनरेशन में, शायद उनको ढूंढना पड़ेगा वीर कुंवर सिंह कौन थे, लेकिन हम लोगों को बचपन से पता था कौन थे। कहानियां बहुत सारी हैं, अब बिहार के साथ एक त्रासदी रही है, आप कह सकती हैं कि विडंबना है बिहार की, कि उसी के उन्हीं किरदारों को दिखाया जाता है जो वहां पे उस दौर पे चलते थे। इतने सारे लोग हैं, आपकी कहानी किसी ने क्यों नहीं बनाई कि भाई श्वेता सिंह जी एक इतनी बड़ी जो जर्नलिस्ट हैं और किस तरीके से, नहीं मैं बोलूंगा, जो पांच बिहार के लोग वहां बैठे हुए थे उनकी कहानी कोई नहीं दिखाता, कहानी वही दिखाते हैं वहीं पे लाके। तो अब ये मैम सबका अपना अपना टेक है, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि आप क्यों दिखाते हैं, अच्छी अच्छी कहानियां भी हैं, अरे दिखाओ यार बिहार को, मतलब बिहार बहुत सुंदर है, बिहार का स्वाद अलग है, हम लोगों ने सिर्फ एक ही स्वाद को पकड़ा है कि यही दिखाएंगे, पर वो जरूरी नहीं है।
0: एक ही टोन को पकड़ा है, एक ही स्वाद को पकड़ा है, जैसे हमारे सामने दो मैथिल हैं जो मैथिली में बोल रहे हैं, लेकिन इमेज मतलब स्टीरियोटाइप ये है कि सिर्फ भोजपुरी है, जबकि कितने डायलेक्ट्स हैं बिहार के भीतर।
2: बिल्कुल, इस बात में मैं बिल्कुल अग्री करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है पांच रीजन्स हैं जो बिहार में, और लोगों को नहीं पता इस बारे में कि, क्योंकि भोजपुरी बहुत अच्छा लैंग्वेज है, मुझे लगता है उसमें बहुत ही फन वे में उन्हें हमें पोर्ट्रे भी किया गया, पर मुझे लगता है लोगों को पता ही नहीं है कि चार और भी भाषाएं हैं मैथिली के बारे में। अब जाके मुझे लग रहा है कि फिल्में बन रही हैं, बहुत ही फेमस फिल्म आई है अभी जो बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है पार्थ सौरभ ने, वो भी दरभंगा के ही है, पोखर के दुन्नू पार, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, बहुत खूबसूरत फिल्म है वो, पोखर के दुन्नू पार। रिकग्निशन अब मिल रहा है और अब लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, तो वो एक नरेशन जो था एक भोजपुरी, इट्स नॉट जस्ट भोजपुरी नाउ दे हैव एक्सेप्टेड ऑल अदर लैंग्वेज ऑल्सो, तो वो बहुत, आई मीन मुझे तो काफी अच्छा लगता है जब लोगों को सुनने को आता है कि वो अप्रिशिएट कर रहे हैं।
0: आपने तो शुरुआत में कुछ फिल्मों में काम भी किया था क्षेत्रीय।
1: जी मैंने देसवा एक फिल्म की थी, भोजपुरी नाम था देसवा का, जो देसवा, अच्छा बिहार के लोगों में यह भी चीज है, जैसे हमारे लोगों को अगर आप देखेंगे तो, अब मुझे देसवा के बारे में शायद अपने जमाने से पहले की फिल्म थी, अगर इंस्टाग्राम होता तब तो वो फिल्म आज बहुत चलती। मैंने मैथिली फिल्म की है और मुझे पता नहीं कत्ते है मैथिल छथिन, कत्ते लोग मिथिला मखान दिखने छथिन, अब देखिए सबके हाथ नीचे हो गए,
0: एक अभी भी ऊपर है,
1: हाँ एक जे भी देखने आया वो का बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ सबके। मिथिला मखान ऐसी मैथिली फिल्म थी, पहली मैथिली फिल्म थी जिसको नेशनल अवार्ड मिला था, नितिन चंद्रा नीतू चंद्रा जी ने उनको प्रोड्यूस किया डायरेक्ट किया था, पर लोगों को पता नहीं है, तो मैंने अपने हिसाब से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, लोग उनसे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, हम बोले हम तो किए हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे, ये मत पूछे कि आपने क्या किया है, मैंने क्या किया है वो मैं जानता हूँ, मेरा समीर जानता है।
2: ये रेजिलियंस मुझे बहुत पसंद है बिहार के लोगों की, जो रेजिलियंस हम लेके जाते हैं ये हमें अडाप्ट, भले ही मुंबई शहर हमें अडेप्टेबिलिटी सिखा देता है, बट वो जो रेजिलियंस लेके हम बिहार से जाते हैं वो बहुत रेयर देखने को मिलता है,
1: और कोई ऑप्शन नहीं है ना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक
0: नहीं। हाल ही में आपने जो एक आपका बड़ा चला भी कि बिहारी होना कोई मजाक नहीं है, यही कहा था?
1: हाँ, बहुत स्वाभिमान का, बहुत स्वाभिमानी बात है बिहारी होना, बहुत गर्व की बात है, पर हाँ। बिहारी होना उतना ही टफ है। मैं जब यहां से दिल्ली गया, हिंदू कॉलेज में गया, वहां से मैंने अपना स्नातक किया, स्नातकोत्तर किया मैंने, बीए और एमए हिंदी गिराने का मन कर रहा है आज, तो उसके बाद मैं वहां पे, लेकिन जब मैं गया तो वहां पे एक स्टीरियोटिपिकल एक परसेप्शन जो होता है कि बिहारी ऐसे ही होंगे तेल वेल लगा के वगैरह वगैरह, और आज भी एज एन एक्टर
2: मेरे बिहार के नहीं लगते, तुम बिहार के नहीं लगते,
1: मुझे भी इनको भी कहा होगा कि यार यू डोंट लुक लाइक अ बिहारी, तो मेरी समझ में नहीं आता था कि बिहारी
0: कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं
1: है, क्या कॉम्प्लीमेंट नहीं है, क्या बोला गया,
2: बिल्कुल भी नहीं है ये कॉम्प्लीमेंट,
1: बिल्कुल भी नहीं था, तो हमें हैरी कह के बुलाया जाता था, दो चार गालियां जो दिल्ली की आप भी, तो उसके बाद वो हैरी आ गया, तो वहां से होते होते होते जिंदगी, आज मैं अगर यहां पे हूं कुछ मैं कह रहा हूं, और नो मैटर व्हाट जिंदगी में कुछ भी हो जाए छोड़ने का नहीं है, करते रहने का। अब मेरे लिए एज एन एक्टर मेरे लिए एक वो भी चीज एक चैलेंज है कि मैं इतना बिहार बिहार करता हूं कि लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ बिहारी कलाकार ही हूं, मैं पंजाबी भी हो सकता हूं यार, अगर पंजाब का एक्टर कोई भी एक्टर हो मान लीजिए कि अगर वो बिहारी लोगों को पसंद आ सकता है, साउथ का आ सकता है, तो बिहार का कलाकार भी, तो जैसे मनोज भैया ने, मनोज वाजपेयी सर ने एक बहुत अच्छी एक फिल्म की थी भोंसले, इतना अच्छा काम, इतनी अच्छी मराठी एक्टिंग उन्होंने की थी, पर वो दिक्कत वही है कि हम ही लोगों को पता नहीं होती। अब बिहारी को अगर सबसे पहले बिहार आगे नहीं बढ़ाएगा तो कौन बढ़ाएगा, और जो इंसान अपने घर से हार जाता है ना वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता मैम, उसके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। आप पूछेगा क्यों मैं ये कह रहा हूं, जो इंसान घर से हारा हुआ इंसान है, गांव घर में अगर आप जाते हैं, गांव घर में देखेंगे कि घर में बहुत सारी कलह होती है, बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं, और वही घर अगर एक सक्षम घर है, एक सशक्त घर है, उस घर का बच्चा कहीं भी चला जाता है, घर से नहीं हारना है, और हम बिहारियों को तो बिल्कुल घर से नहीं हारना है। मैं एकदम गर्जना के साथ कहना चाहता हूं, बिहारियों को हारना नहीं है, हमें सिखाया ही नहीं, हमारी मिट्टी नहीं हमें नहीं सिखाया है, वो आज से नहीं, अशोका के टाइम से, 6th century BC से। अरे हम ही लोग थे जो यहां से लेके अफगानिस्तान ईरान तक चले गए थे, हारेंगे कैसे यार? और जो हमारा है वो हमारे पास ही आएगा, वो कोई लेके जाने वाला नहीं है, ये भी मैं मानता हूं।
0: पता है, मैं तो इस वजह से ये भी मानती हूं क्रांति, कि जो ये कहा जाता है ना कि वो अंग्रेज जब आए तो उन्होंने कोशिश की कि हौसला तोड़ा जाए सबसे पहले, तो सबसे सशक्त कौन? वो मगध साम्राज्य जो समूचे मतलब यहां की बाउंड्री से लेकर कहां कहां तक फैला हुआ था, तो तोड़ा गया बिहार की भी उस सम्मान को, उस आत्मसम्मान को। अब पीढ़ियों की जिम्मेदारी है कि धीरे धीरे हम उस आत्मसम्मान को एक ईंट दर ईंट जोड़ें, वापस बनाएं। और इसीलिए मुझे लगता है कला और पर्दा बहुत अहम हो जाता है उसमें, क्योंकि जो कहानियां वहां से निकलती हैं, जो किस्से निकलते हैं, वो आगे तक जाती है। दशरथ मांझी की एक कहानी जब आई तो क्षेत्र में सबने देखा कि सरकार का इंतजार नहीं करते हैं, भाई खुद से कर लेते हैं। और यही है बिहार जब हम कहते हैं।
1: बिल्कुल
2: जैसा
0: आपने एक चीज से जो अभी कहा था कि तुम बिहारी नहीं लगते वाली बात,
2: हाँ जी,
0: हम लोग को तो फिर भी कोई कभी कह ले, तो ऐश्वर्या आप तो कभी ही नहीं लगती है। बहुत सारे लोगों को जब आपकी तस्वीर देखते हैं और मैंने कहा कि ये बिहार से, तो कहा नहीं,
2: उन्होंने बिहारियों को देखा नहीं है।
0: एग्जैक्टली
2: मुझे ऐसा लगता है, मतलब आपको तो देखते हुए हम सब यहाँ तक पहुंच गए, तो आई थिंक दे शुड डेफिनेटली टेक इंस्पिरेशन, वी हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम यू मैम, बट
0: सब इंस्पायर हो गए जैसे कपड़े पहन कर आए
2: हम आपके चेले। बिल्कुल, बट मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, रेजिलियंस एंड जहां तक लुक और चेहरे और पर्सनालिटी की बात होती है, मुझे लगता है लोगों को एक्सपोजर ही, और वो उसी छोटे लेंस से दिखाया गया है कि बिहार में सिर्फ लेबर क्लास है वो, जो कि बहुत ही कम प्रतिशत है। और जब मैं लोगों से मिलती हूं, मुझे लगता है इसके बियॉन्ड है बिहार, इसके बहुत दूर दूर तक, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो जिन्होंने पढ़ा है बिहार के बारे में, पीपल हु आर वेल रेड, उनको शायद पता है। जब मैं उनसे इंटरेक्ट करती हूँ, दे रियली शो देयर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज की हाँ ये है, दिस ये बिहार है, यहाँ पे लोग सिर्फ लेबर नहीं है बल्कि यहाँ से काफी लोग बाहर निकल के बहुत कुछ किया है लोगों ने। पर अब नैरेटिव चेंज हो रहा है, वो छोटा सा लेंस अब थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि हाँ अब थोड़ा रिकॉग्निशन मिल रहा है हमें।
0: अच्छा, वैसे ये लेबर वाली बात पे भी मैं ये कहूंगी कि अगर हम न हो ना तो निर्माण न हो, और पहले मुझे केवल देश लगता था। अभी मैं इसराइल में थी, इसराइल में जितने लोग उस बम बारूद के बीच में खड़े होकर मुस्कुराते हुए निर्माण कर रहे थे, वो बिहार के थे।
2: बिल्कुल। और जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, अगर हम यहाँ से, अगर हम ये बिहारी वहां पे नहीं रहेंगे तो आई डोंट थिंक यू विल बी सेफ इन द सिटी।
0: वो लोग, वो विदेशी जो थे, वो शुक्रगुजार थे क्योंकि उनके अपने नहीं उन जगहों पर खड़े हो पा रहे थे, लेकिन बिहार के एक छोटे से गांव का लड़का वहां पर पास में बम गिरा है, आधिक वो बोला बस नियम का पालन करना है, सायरन बजता है, अंदर चले जाते हैं, बाद में निकल आते हैं काम करने।
1: टियर गैस नहीं है इस बार।
0: बताए, ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर
1: बताइए आप, मतलब वहां पानी की बौछार जा रही है कि इंसान के शरीर को भेद दे, लेकिन वहां पे चल रहा है गाना। मतलब बिहार को लोगों ने मैम कान से देखा है, आंख से नहीं देखा है। एक बार बिहार आइए और कान से मत देखिए, कान से बहुत चला रहा। कब तक हम लोग, हम दोनों या कोई भी, आप भी, हम लोग कब तक यही बातें करते रहेंगे, लेबर ये, अब उससे अब बियॉन्ड जाने की जरूरत है हमें। तो बिहार को लोगों ने कान से देखा है, और जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जो जेंजीज भी हैं या फिर जो मिलेनियल, जितने भी लोग हैं, अपने दोस्तों को पकड़ के लाइए।
0: हमारे इस केस में सोशल मीडिया का बड़ा फायदा है,
1: बहुत बहुत फायदा।
0: आप जो वीडियोज बनाते हैं उससे पता चलता है, अच्छा ये बिहार में ऐसी जगह है।
1: मुझसे आज भी लोग पूछते हैं, जब भी मैं कुछ भी मैथिली में कहता हूँ या भोजपुरी में, अरे हमको तो पता ही नहीं था कि आपको मैथिली भी आती है, कि आप बेगूसराय के हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं। और मैं फक्र से कहता हूं, बहुत लोगों को मैं जानता भी हूं कि जो बिहार से निकलते ही अपनी चीजें ही भूल जाते हैं, भाषाएं छोड़ देते हैं, उनको भाषाएं आगे आती नहीं हैं। उसका सबसे बड़ा योगदान है मैम, बिकॉज इफ यू डोंट टेक प्राइड इन योर ओन यू नो वैल्यूज एंड कल्चर विच हैज बीन इनकल्केटेड इन यू बाय योर पेरेंट्स, बाहर वाला कोई क्यों करेगा, किसी को मतलब
2: नहीं। राइट, तो दूर की बात, मुझे लगता है एक्नॉलेजमेंट की भी कमी है, जो मुझे देखने को मिलता है कि आप वो कहना वो कतराते हैं अभी भी, बट आई होप ये थोड़ा बेटर हो जाए।
0: अच्छा, लोकेशंस के मामले में मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर जमुई का पूरा एरिया देख लीजिए, बड़े पहाड़ हैं सुंदर, उसमें गंगा किनारे की तो बात ही, आपसे अगर मैं 3 लोकेशन ऐसे बोलूं जहां पे अगर शूट हो जाए तो वो आज बड़े पर्दे पर हम जहां भी देख रहे हैं उसको टक्कर या उसको भी बीट कर दे तो वो कौन सी जगह हो?
1: मैम सासाराम में एक रोहतासगढ़ फोर्ट है, तो वहां पे अगर आप ऊपर जाएंगे एक चौरासन टेम्पल है। कितने लोग जानते हैं इस बारे में चौरासन टेम्पल? अब देखिए हमारे बिहार में ये चीजें हैं लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है। अब चौरासन क्यों? क्योंकि वहां पे 84 यानी कि 84 स्टेप्स हैं और फिर महादेव का मंदिर है वहां पे। उसके उस तरफ आपको झारखंड दिखता है। आप यकीन माने मैंने इससे पिक्चरेस्क जो कहते हैं ना कि वो मैंने दृश्य देखा नहीं है। फिर आप चले जाएं राजगीर नालंदा और सासाराम महाराष्ट्र से या किसी भी मॉनसून केरला से कम नहीं है अगर आप मॉनसून में यहां पे आते हैं। तो ऐसी तीन जगह क्यों मैम? बहुत सारी जगह हैं। मंदार पर्वत चले जाएं आप, सुल्तानगंज चले जाएं आप, कहीं भी चले जाएं, लेकिन बिहार अभी वैसा दिखा नहीं है जो अब दिखेगा आप लोगों के माध्यम से। और जितने भी लोग हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, आप लोग भी जितने लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, अब जा जाके सबके हाथ में पावर आ गया है। अब किसी का कोई मोहताज नहीं है, हर आदमी अपने आप में हीरो है, हीरोइन है, हर आदमी को जो मन करेगा वैसा दिखाएगा। तो बिहार के बारे में बातें बहुत हुई, अब बिहार को अच्छे से दिखाना जरूरी है, मेरा यही मानना है।
2: दिखाया है खाकी में, बहुत दिखाया है। मुझे काफी तारीफ मिली थी खाकी के बाद कि बिहार इतना सुंदर है हमें पता नहीं था। और मुझे लगता है सिनेमा इज अ वेरी गुड टीचर। सिनेमा के थ्रू बहुत चीजें लोग जानना चाहते हैं क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है, और सिनेमा एक बहुत अच्छा मीडियम है जिससे लोगों को देखने को मिलता है कि हाँ दिस ये है। क्योंकि और हमारे जमाने में क्या किताब में वो हम चीज नहीं दे पाएंगे जो विजुअल्स में मिलता है हमें देखने को, और वो बहुत ही थेरेप्यूटिक भी होता है।
0: तो आपकी फेवरेट जगह ऐसी कौन सी होगी जहां पर आप शोकेस करना चाहें?
2: मतलब मैं तो डाल्टनगंज में शूट भी कर रही थी, तो वो खेत खलिहान, मतलब इतनी जो ग्रीनरी है बिहार की, आई थिंक अब सब लोग कहते हैं कि काफी ग्रीनरी अब हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि अब नैरेटिव चेंज हो रहा है। पहले सिर्फ कुछ और दिखाया जाता था, अब लोग बिहार की खूबसूरती को भी देख रहे हैं और काफी शूट्स हो रहे हैं। मुझे सुनने में भी आया दरभंगा में काफी शूट हुआ है, तो दैट मीन्स एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, तो मुझे इस बात का बहुत फक्र है।
0: सोचिए ना कि हिमालय से लेके गंगा तक सब कुछ है बिहार में, और बस जरूरत है कि उसको शोकेस करना है। और शोकेस भी मुझे लगता है कि अभी जो कंटेंट क्रिएटर्स बिहार के हैं उनकी क्रिएटिविटी दिखती रहती है। मैं तो बहुत सारों को फॉलो करती हूँ।
2: मुझे अभी फिलहाल दो दोस्तों ने भेजा है वो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू ही कि हमें बिहार में ट्रैक करना चाहिए क्योंकि कुछ कंटेंट क्रिएटर्स यहाँ पे वो पहाड़ों की इमेजेस डाल रहे हैं और वो काफी वायरल हो रहा है, तो उसके थ्रू भी आई थिंक डेफिनेटली सोशल मीडिया के जमाने में काफी एक्सपोजर मिल रहा है जो मुझे लगता है काफी पहले मिलना चाहिए था। पर ट्रैक की बात चल रही है बिहार में और मुझे लग रहा है मैं भी जल्दी आऊंगी।
0: ऑफकोर्स कर सकते हैं ट्रैकिंग, ट्रैकिंग ऑफकोर्स करना चाहिए। एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत बड़े पैमाने पर शुरू भी हो गया है बिहार में। गांधी ये बताइए कि कहते हैं ना कि वंस अ बिहारी ऑलवेज अ बिहारी, आप छोड़ भी दें तो भी नहीं छूटता है। कोई एक ऐसी बिहारी आदत है आपकी जो रह गई?
1: भात दाल आलू का भुजिया। अभी मैं ऐसे ही मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज बता रहा हूँ आपको। मेरे घर में जो हमारे साथ में रमेश एक हमारा मित्र है, हाउस हेल्प है, नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उन लोगों के नाम देने बहुत जरूरी हैं जो आपके साथ खड़े रहते हैं। तो रमेश कुमार यादव उनका नाम है। तो वो गांव चले गए थे और गांव जाने के बाद अब भूखे उतना बनाना नहीं सीखा हमने, नहीं आगा पाए, जिसके लिए मुझे बहुत कोई फक्र नहीं है। लेकिन आप यकीन मानिए 2 महीने मैंने सिर्फ भात दाल आलू का भुजिया खाया है,
0: 2 महीने
1: लगातार लंच में, और कुछ नहीं खाया। और उससे अच्छी आत्मिक तृप्ति आपको कहीं नहीं मिलती है मैम।
2: आप चूड़ा दही कैसे भूल सकते हैं?
1: चूड़ा दही तो नाश्ता हो गया, हम भोजन की बात कर रहे हैं। वो जलखई भोगले, जलखई भोगले
0: मैथिल तो पूरा 3 टाइम चूड़ा दही खा लेंगे।
1: चूड़ा दही नहीं खाते हम लोग दही चूड़ा खाते हैं। चूड़ा दही में फर्क है, चूड़े में दही पड़ती है, हम लोग दही में चूड़ा डाल के खाते हैं। और मिथिला की दही इतनी फेमस है मैम, ये बात हम मैथिली में कहब, मटकूरी में वो दही जैसे पोराई छे, आप समझ रही हैं? कते आदमी पूछ रहे यहाँ सब, चलो जितने पूछे छे। तो दही जो है वो मटके में जमाई जाती है और दही में इतना घी और मक्खन होता है मैम, आप बाकी नॉर्मल दही को दीवार पे मारिए दही ऐसे गिरेगी, और वो मटके वाली दही को आप दीवार पे मारिए और देखिए कैसे गिरती है, वो ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे गिरती है, क्योंकि लहराते हुए गिरती है, क्योंकि इतना ज्यादा दिल, इतना ज्यादा प्रेम उसके अंदर होता है, तभी हम लोग दही चूड़ा खाते हैं, चूड़ा दही नहीं खाते।
2: ये बात तो सच है, बहुत प्रेम है इधर।
0: आपकी कोई है बिहारी आदत ऐसी जो रही, कोई एक चीज जो आपको लगता है टिपिकल बिहारी? नहीं
2: भाग साला मतलब हर चाय मेरे मुंह से ही निकला भाग साला, मतलब मेरी दादी कहती थी भाग मुझौसा। मुझे भी नहीं पता मुझौसा का मतलब क्या है, लेकिन मेरी दादी हमेशा कहती थी मुझौसा सब, तो ये काफी फनी होता था। और अभी तक तो मुझे रहा हुआ है, बसा हुआ है।
1: बॉम्बे में अगर मैं चार बैंड्रा कुछ भी ऐसा चले तो वहां पे कुछ जैसा हो जाते हैं। ऐसे बिहारियों की ये बड़ी अच्छी आदत भी है कि उनको आपको जैसा भी आप उनको वेसल पानी का नेचर होता है, जो भी देंगे वैसे शेप में ढल जाते हैं।
2: अडेप्टेबिलिटी
1: तो बैंड्रा में
2: कर दिया है, बॉम्बे शहर ने हमें पॉलिश
1: कर दिया है। तो अगर मैं बैंड्रा जाऊं तो वहां जैसा बन जाऊंगा, कहीं भी चला जाऊं। लेकिन जैसे
2: पिताजी कहते हैं, जैसा देश वैसा भेष, और बस हम पानी बन गए, अब हम जहां जाते हैं वैसे ही बन जाते हैं।
1: लेकिन चार बिहारी अगर आपको इकट्ठा दिख जाए, सब भूल जाते हैं, स श र ड। अरे भाट,
3: मैं हम
1: हाँ मैं तो कभी था ही नहीं। मुझे लगता है कि बिहार के लोगों ने सबसे पहले दुनिया
3: क्या है, अब पूरी पीढ़ी जो है मैं बोलती
1: हूँ, नहीं मतलब जिस पीढ़ी से हम आते हैं।
3: सही बोल रहे हैं कि नहीं?
2: नहीं,
3: पीछे बताओ सब।
2: हम घर जाते हैं तो हम ऐसे ही बात करते हैं, हम में तुरंत बदल जाता है, वो घर होता है। मुझे लगता है
1: आलू का चोखा होता है घर,
2: बैंगन का भरता,
1: बैंगन के तरुआ हुई थी घर, बैंगन के तरुआ हुई थी आ रहा है, बचका होता है घर। और दूसरी चीज ये है कि मैम जैसे ही चार लोग मिलेंगे ना, वो सब भूल जाते हैं, उनको रड़ा से कोई मतलब नहीं होता। पांच साल बता रहे हैं ना तुमको रे, और उन्हीं को आप देखिए बैंड्रा जाते हो, व्हाट ब्रो, वेल या टेल मी ब्रो, ओह माय गॉड, या आई नो।
3: नहीं, जनरली क्या होता है कि उससे निकलने के बाद आप अंग्रेजी ही बोलते हैं ताकि आपकी हिंदी में बिहारी ना सुनाई दे जाए। आप इतना बोलकर आए होते हैं कि आप उसके बाद कुछ दिन अंग्रेजी में रहते हैं, संभल जाते हैं, उसके बाद वापस।
1: और चार अगर आपके बिहार के दोस्त हों तो सबसे पहले लगता है कि अगर आप उनके सामने थोड़ी सी भी अंग्रेजी अगर आप झाड़िए कि साला तुम अंग्रेजी बोलेगा हमसे रे, हमारा PhD है इंग्लिश में। ओके सॉरी ब्रो।
3: अच्छा, लेकिन बिहार में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका ना तो हिंदी में कोई पर्याय मिल सकता है ना अंग्रेजी में मिल सकता है, और एक शब्द में मतलब सागर समा जाता है। ऐसा कोई शब्द है आपका जो आप?
1: नानी से हम बहुत सुनते थे बरहन झट्टा।
3: क्या
1: बरहन झट्टा?
3: क्या होता है?
1: अरे बारहन हुई थी ने मैम झाड़ू, तो वो झाड़ू से झाड़ना मतलब उसको एकदम पूरा उसको ऊपर नीचे नीचे मारिए, हाँ, तो वो बहन झट्टा। और नानी से बहुत सारे ऐसे ऐसे गालियां मैंने मैथिली की सीखी जो बोल नहीं सकते हैं। और नानी हमारी बहुत क्यूट थी, वो दांत मात उनके कम हो गए थे तो गाली भी दिया करती थी, बड़ा अच्छा लगता था।
2: नहीं मुझे लगता बिहारी में बहुत ऐसे शब्द जिसका पर्याय नहीं हो सकता, मतलब अभी मुझे हो सका, मुझे मतलब ही नहीं पता।
3: एक ही इमोशन के लिए कई वर्ड भी होते हैं, सर दर्द को लेकर भी,
1: मात दुखाई है,
2: प्लीज। अभी मेरे साथ मेरी टीम थी और थोड़ा हेयर मेकअप चल रहा था, तो हेयर के लिए मैंने बोला ये क्या कुरकुर कर दिया तुमने मेरे बालों को, उससे भी समझ नहीं आया ये कुरकुर क्या है। तो वो कभी कभी ऑटोमेटिक वो जहन में बसा होता है, कुछ भी निकल जाता है मुंह से, और वी ओन इट, क्या कर सकते हैं।
3: कपार
1: शब्द ही नहीं, कपार
3: माथा भिन भिनाता भी है,
1: भिन भिनाता है माथा, कपार हिलता भी है, अरे कपार में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ। मैम बिहारी शब्द नहीं, बिहारी का ही कोई पर्याय नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। हाँ। मेरा ऐसा मानना है बिहारी होने का कोई पर्याय कहीं अपवाद है ही नहीं। वंस ऑफ बिहारी,
2: ऑलवेज बिहारी,
1: सात जन्मों का बिहारी।
3: जिस चीज से मैंने शुरुआत की थी अंत में पहुंच के मैं उसी चीज पे, कि एक कैरेक्टर को निभाने में इस मिट्टी से निकलना कितना मदद कर जाता है आपको, कितना उसमें ढलने के लिए, क्योंकि हम जो हम कहते हैं ना कि हर एक किरदार अपने जीवन में निभाते चले जाते हैं, कितनी चीजें एक व्यक्ति के अंदर बन जाती हैं यहां पर, क्योंकि आप सर्वाइवर होते हैं
1: जी।
3: क्या ये वाकई मदद करती है जब आप एक इंडस्ट्री में जाते हैं?
1: कुछ चीजें हैं मैम, जैसे यहां से जब मैं निकला दिल्ली गया तो दिल्ली में रोड़ों की चैलेंजेस बहुत जिंदगी में होती है।
3: आपको था?
1: बिल्कुल था, अरे बिल्कुल था, बस आ रही है राम सुनो ना, तो अब इस तरह की चीजें थी। लेकिन फिर धीरे धीरे आदमी, अब जिस क्षेत्र में मैं हूं हाँ। तो उसमें आपको काम करना पड़ेगा,
3: आपने सीखा, आपने अभ्यास सीखा। किया
1: वो नेवर गिव अप वाली जो एक चीज है ना, जो आदत है या फिर उसको आप हिम्मत कह लीजिए, वो इसी मिट्टी से आई है, माँ बाप से आई है, दोस्तों से आई है, आप ऐसे शुभ चिंतकों से आई है। और उसी वजह से मैं आज तक, मैं हमेशा मानता हूं कि जितने लोग मेरे काम को पसंद करते हैं, दो चार गालियां भी देते हैं, सब एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इनके बिना मैं कुछ नहीं हूं वहां पे। मेरे काम से मुझे, अभी मैंने कहा भी था कि काम खत्म इंसान खत्म, तो काम खत्म नाम खत्म पहचान खत्म। इंसान को खत्म तभी नहीं होता है इंसान जब उसका हृदय जिंदा रहता है, हृदय को नहीं मरने देना है। और बिहारियों का हृदय बहुत विशाल है, हिमालय की तरह, हमारा ऐसा बुझाता। अब बाकी तो लोग सबके अपन अपने ओपिनियन हुई,
3: पर एक जो छोटे से गांव में बैठी लड़की सुन रही है आपको, क्या वो सपना देख सकती है वहां बंबई पहुंचने का, उस बड़े पर्दे पर दिखने का, उस ओटीटी सीरीज में दिखने का।
1: और मैं भी एक सवाल पूछना चाहूंगा इनके साथ ही कि ये
2: ऐश्वर्या एक साथ नहीं, पहले मैं उनका
1: उसी में बाद में आप कंटिन्यू कर सकती हैं कि ऐश्वर्या और सुष्मिता, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो तब की जो मेरे ख्याल से बच्चों ने देखा होगा एक एस्पिरेशन
3: कहानी
1: है। एग्जैक्टली इसीलिए मैंने पूछा ये कि लोगों को सीखने को मिलेगा उससे।
3: आपके अंदर की सबसे बिहारी चीज आपका नाम ही है।
2: दो नाम
3: बताइए, कहानी सुनाइए।
2: तो मैं नाम से शुरुआत करती हूँ इनके सवाल से कि दो नाम क्यों पड़ा। मुझे लगता है आप सब यहाँ जानते हैं मेरा नाम दो नाम क्यों पड़ा, पर जो कहानी ये है कि जब ऐश्वर्या और सुष्मिता राय, ऐश्वर्या राय और सुष्मिता से इन दोनों जब मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स के लिए गए थी, उन्हीं उसी साल मेरा जन्म हुआ था। और हमारे बिहार में काफी इसको माना जाता है कि जब इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रही थी तो काफी गर्व की बात थी। तो मेरे माता पिता को बहुत पसंद आया ये नाम और उन्होंने बस नाम रख दिया। और पॉलिटिकल रीजंस जो भी रहे हैं वो उसको मैं अवॉइड करूंगी अभी। वो अब आई थिंक खत्म हो चुका है। तो आई एम स्टिल स्टिकिंग, अब मैं इसी नाम के साथ आगे बढ़ रही हूँ। मेरी बहनों ने अपना नाम चेंज कर लिया है पर मैं आगे बढ़ती हूँ उसी नाम के साथ। और आपके एक सवाल, आपके सवाल पे आती हूँ कि एक छोटे से गांव में अगर एक लड़की बैठी और अगर वो सपना देखना चाहती है, प्लीज मैं तो कहूंगी उन्हें देखना चाहिए। आज हमारे हाथ में एक छोटा सा मोबाइल है जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन है। एक रिसर्च, एक कुछ भी क्वेश्चन डालिए और आपको हर कुछ मिलेगा। आई थिंक स्काई इज द लिमिट। बिल्कुल भी मत, मुझे लगता है बिहार के पेरेंट्स बहुत प्रोत्साहित करते हैं अपने बच्चों को। मेरे खुद माँ बाप ने मेरे बहुत मुझे प्रोत्साहित किया है, भले ही बाहर वालों ने नहीं किया कभी कभी, बट वो पेरेंट सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो नहीं कर पाते प्लीज वो भी करें। और सपना देखना बंद मत करें, अपने आप में हिम्मत रखे और इतना करेज रखे कि हर चीज पूरा होता है। अगर मैं कर सकती हूँ, निकल सकती हूँ दरभंगा से और बॉम्बे तक, तो आई थिंक आप सब कर सकते हैं।
3: बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ हमारे मंच पर आने के लिए।
1: थैंक यू सो मच मैम।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8

0: के किरदार में हम सब बिहार के वो पुट तलाशते हैं, एक आम आदमी कैसे जीता है, कितना किस हद तक क्रोधित हो सकता है, कैसे लड़ सकता है पूरी व्यवस्था से, जब वो मजाक करता है तो किस भाषा में करता है, ये सारी चीजें अनायास हम सब अपने जीवन में साधते जाते हैं और इसीलिए आपकी फिल्मों के जरिए उस किरदार का थोड़ा सा हिस्सा हम आप में देखते हैं जब हम आपसे बातचीत करते हैं संजय जी। अब सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप बिहार से निकले, बनारस गए, बनारस से बंबई गए, लेकिन बिहार कितना जिंदा रहा आप में?
1: नमन बिहार, वंदन बिहार, कैसे भूल सकता हूं बिहार को भाई, कैसे हटा सकता हूं बिहार को। बहुत सारे पेड़ ठंडे में जन्मते हैं, कुछ अलग जन्मते हैं, हम बिहार में जन्मे हैं तो यहाँ की मिट्टी, हवा, पानी। और मेरी एक आदत है, जो पैदा हुए हो वैसे ही मरना, ग्रो करना, ये नहीं कि वहां वहां करते हुए गए, ग्रो करना, लेकिन जो हो, जिस मिट्टी के हो, जहां के हो, जो तुम में है वही पहचान बनेगी तुम्हारी। तो बिहार मुझ में है तो पहचान बनेगी। बड़ा अजब किस्म का औलाद हूं मैं यशोदा जी, मतलब बनारस ने बहुत पाला, जन्म यहाँ दिया, तो लेकिन है पूर्वांचल ही सब। हाँ। तो वो हवा है मुझ में,
0: गंगा किनारे किनारे है सर।
1: जी जी जी जी।
0: तो लेकिन अब आपके पीछे भी जो हम तस्वीरें लगाए हुए हैं, अब
1: अच्छा
0: है ना?
1: हाँ, बता दिया, थैंक यू।
0: आपके पीछे जो तस्वीरें लगाए हैं उसमें सब में भाव अलग है। किसी में जब संजय जी हंसाते हैं तो वो उस डायलॉग पे आज की पीढ़ी से लेकर पुरानी पीढ़ी तक, नई पीढ़ी मीम बनाती है, पुरानी पीढ़ी उस डायलॉग को बोलकर याद करती है। तो फिर हम वध का किरदार भी आपका देख लेते हैं
1: जी,
0: जो एकदम पूरे पूरा स्पेक्ट्रम में पूरा दूसरा ऑपोजिट, दूसरा छोर उसका। लेकिन संजय जी, मैं यहां पर उस बात से शुरू करना चाहती हूं कि आपने जिन कारणों से आगे बढ़े होंगे एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर, क्या आप वो हमसे साझा कर सकते हैं इस हिसाब से कि आज भी बिहार के युवाओं को अगर शिक्षा के लिए, देखिए जब एक बेहतर जीवन के लिए आप जाते हैं तो वो अलग होता है, जब विकल्पों के अभाव में जाते हैं बिहार
1: वो अलग होता है, उसमें खाना भी अच्छा बनता है, खाना भी उसमें अच्छा बनता है, नहीं है डालो देखो, कोशिश करते हैं आदमी, बन भी जाता है। हाँ हाँ हाँ। शिक्षा बड़ी अजीब चीज है, कोई एक आदमी बना देता है कि आप ये पढ़ेंगे ये नहीं पढ़ेंगे। हाँ। लेकिन हमें शुशु करना नहीं सिखाया जाता, ये बहुत बड़ी शिक्षा है भाई, क्योंकि उसको आपने अवॉइड कर दिया। पेशाब, महिलाओं को बारे में सोचिए कितनी दिक्कत होती होगी उनको, प्लेन में या स्टेशन पर या ऐसी जगहों पे जहां पुरुष खड़े होकर पेशाब कर देते हैं कमोड में, समझ रही है? शिक्षा वो देनी चाहिए, इससे बेसिक शुरुआत करो। तुम्हारा कंपटीशन ये नहीं है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, सी फॉर कैट, यहां से शिक्षित करो। मेरी बेटी को छोटी थी, घर में हम लोग आए पाए करते ही रहते हैं, स्कूल से आया कि भाई आपकी बेटी बोलती है मैडम पानी पीना है, तो हम बोले यही बोलेगी मैडम, दीवार चाटना तो बोलेगी नहीं मैडम, दीवार चाटना, पानी पीना बोल, नो शी शुड से इन इंग्लिश ना, हम कहे पहले अपने भाषा पे तो पकड़ हो जाए उसकी, आप उसको सिर्फ शिक्षा के नाम पे इंग्लिश सीखो। आज मेरी, और वो कब पल मेरी बच्ची जो है इंग्लिश बोलने लग गई, अभी वो नैनीताल में है शेरवुड में। अच्छा। वहां के प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि पल की इंग्लिश सबसे बेहतर है पूरे स्कूल में, और मैडम की क्या शिकायत थी, शी शुड से इन इंग्लिश ना, और छोटी बेटी ऐसा फर्राटा इंग्लिश बोलती है उसको अगर कुछ चाहिए तो समझ गए, हमसे भी ऊपर चली गई। शिक्षा बहुत अलग चीज होती है और हम खासकर बिहार में ऐसी शिक्षा की जरूरत है। मैं एक्टर हूं, मैं अपने लोगों को देखता रहता हूं, कितना दबा हुआ, क्यों, वजह क्या है? श्वेता, मैं अभी 3 दिन पहले आ रहा था, बनारस से आ रहा था, वो वहां की भूमि अलग है, वहां बहुत भीड़ होती, बहुत भीड़, तो होनी भी चाहिए।

0: बिहार में एंटर किए 7:30 बजे, सन्नाटा। होटल खोले हैं, खाने वाला कोई नहीं। पेट्रोल पंप मैंने कभी, एक फिल्म थी यू टर्न, उसमें पेट्रोल पंप खाली दिखता था, बड़ा वैसे ही सारे पेट्रोल पंप दिख रहे थे। फिर सोचने लगा वजह क्या है, कुछ डरावना है क्या यहां। हम भी डर गए थे कि भाई इतना सही में कोई नहीं दिख रहे थे। वो देखो स्कूटर वाला दिखा है एक, ऐसा हो गया था। वजह क्या है, वजह कहां गए वो लोग और क्यों गए वो लोग। शिक्षा, कमाने वाले को हमेशा MBBS MA MB नहीं चाहिए। बचपन में हम लोग को लोग दोस्त लोग बोलता था, कभी किसी सरदार को भीख मांगते देखे हो? सही में नहीं देखे यार। कड़ कड़ कड़ कड़ का ठाक, वो शिक्षा चाहिए हमें। आज आपको अब पता नहीं आता होगा काम, किसको आता होगा अल्फा बीटा थीटा
1: AI।
0: हाँ, हमको तो आज तक काम ही नहीं आया वो। 40-40-80 होता है मालूम है भाई, उसमें अल्फा थीटा डीटा, हमारा वक्त क्यों बर्बाद किया आपने। उस समय कुछ और सिखाते, कुछ अच्छी चीज सिखाते कि बेटा हमारे यहां सब चिरकुट ड्राइवर हैं, बुरा मानो भला मानो। रोड की रोड सेंस नहीं सिखाया, ऐसे रोड टर्न हो रहा है यहीं पर सब पैसेंजर को। और हम इंसानों की भी आदत है फल्ला मोड़ पर मिलना, और मोड़े पर सब खड़ा है, पीछे गाड़ियां लगी भी हैं। भाई हम तो खड़ा है, मामा का लड़का आ रहा है, हमारी क्या गलती है। कोई मामा का लड़का मर रहा है गाड़ी में एम्बुलेंस में, वो हमें नहीं सिखाया। ये है शिक्षा, बेसिक बेसिक ह्यूमन शिक्षा। उसके बाद ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट कहोगे, बी फॉर बम बोले ना, जो भी बोलना है बोल लो, लेकिन जो बेसिक शिक्षा नहीं दी दोस्त। तो मैं चाहूंगा कि, और देखो हाँ एक और ख्याल आया था, तो अब तो खाली हो गया बिहार, सारे लोग चले गए, जो बचे हैं आओ उनको मिला करके कुछ बनाते हैं, जो गए वापस आ जाएंगे। अबे यहां तो सब कुछ है, हम काहे को वहां बैठे हुए। और कल से नहीं जा रही है जनरेशन, जा रही है चंडीगढ़ में शूटिंग करते हुए, जी इतने बहुत बिहारी हैं, बिहारी बहुत हैं जी, हाँ जी बहुत। तो बिहार के बिहारी कहां गए? ज्यादा तो नहीं बोल गया?
1: नहीं नहीं, कुछ कुछ चीजें ज्यादा होती हैं तब भी जरूरी होती हैं। तो संजय जी, वैसे ये कहें कि क्योंकि मेरा पूरा पूरी पढ़ाई लिखाई पटना में हुई, और स्कूल से लेके कॉलेज तक।
0: पटना के हो?
1: पटना के हैं।
0: जय
1: हैं वैशाली के, पर पढ़े पटना में।
0: पर
1: सेंट जोसेफ कॉन्वेंट,
0: हम सेंट्रल स्कूल।
1: अच्छा, लेकिन उसमें यह है कि लड़कियों के लिए अच्छे स्कूल कॉलेज थे, लड़कों के लिए थोड़ी कमी होती थी, निकलते थे सब बाहर पढ़ने।
0: अच्छा।
1: अब पटना बहुत बदला हुआ दिखता है, क्योंकि आपके पास सड़क बहुत बन गई है, एक अटल पथ है, मरीन ड्राइव है, बहुत सारी चीजें होंगी। अब यही परिवर्तन थोड़ा सा, हम थोड़ा सा बाहर निकल के आपके एक्टिंग करियर पे भी जाते हैं।
0: नहीं, इसी पे बात करो ना, एक्टिंग करियर
1: दोनों चीज मिला जुला के। संजय जी, दोनों चीज देखिए, वहां पर क्या होता है कि मरीन ड्राइव पर जब जाते हैं तो देखते हैं सब रील बनाते रहते हैं, इनमें से भी सब, सबने बना लिया एक एक बार रील मरीन ड्राइव
0: पर,
1: सब सर हिला रहे हैं। आप नए एक्टर्स को देखते हैं, आप उतना एक्टिव हो पाते हैं इंस्टाग्राम पे या?
0: आजकल ना लोगों को कैद कर लो, कैद मतलब किसी भी चीज को, सुंदर साड़ी क्रैप। एक समय में फुर्सत नहीं होता था यही सब देखने, मेरे बाप ये गंगा जी है। अरे पहले तो गंगा देख लो, या तो अपने को गंगा के साथ देख लो, गंगा जी है, इतना गंगा जी, बाप रे बाप। अब लोग बिकॉज ऑफ मोबाइल कट कट कट कट, वो रील अब है भी रील, और बहुत चंगी चीज है कि 2 मिनट में आपको पॉपुलर कर देती है।
1: हाँ।
0: 2 मिनट में पॉपुलर कर देती है, तो हर कोई चाहेगा पॉपुलर हो। हमारा ये सब नहीं था।
1: नहीं, अच्छा है बुरा है, क्योंकि
0: देखिए आप परिवर्तन की बात, परिवर्तन हाँ। की बात की, परिवर्तन होता है वक्त।
1: हाँ।
0: आप परिवर्तित हो गई जब आप पटना में पढ़ी होंगी फिजिकली, मैं परिवर्तित हो गया फिजिकली, तो पेड़ परिवर्तित हो जाते हैं
1: जी।
0: पौधे से वृक्ष बन जाते हैं, तो बदलाव तो नियम है। लेकिन बदलाव को अगर बेस से आप पकड़ लेना, अगर आप मान रहे हैं कि अभी 30 साल के हैं आप ऐसे हैं, बेटा कभी तो 60 के हो गए तो अभी से प्रयत्न शुरू कर दो कि मैं 60 का हूं। सिर्फ बॉडी परिवर्तन में बदलाव की जो बात कर रहे हैं ना, अभी आते नीचे बिहार में बदलाव कैसा है भैया, हम कहे तू ना बदल नहीं रहे, 10 साल पहले ऐसे थे तुम रे, अभी वो तो हम बदलबे के हैं लेकिन बिहार का हम कैसे नहीं बदलेगा, बदलाव तो है। तो आप बॉडी आप अपनी जान रही कि मुझे बदलाव चाहिए, अब चाहिए अब चाहिए अब चाहिए, अब नहीं होगा तो देर हो जाएगा। फिर आप ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, कोई पानी दे दो, शहर का बदलाव भी ऐसा ही होना चाहिए। क्या आप जैसे अभी हमारे रोड्स हैं पाटलिपुत्रा में गली वली, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे लेकिन सोच ऐसी होनी चाहिए ना कि आज से 20 साल बाद यहाँ क्या होगा। गाड़ी तो हम EMI पे दे रहे हैं, सड़कवा किन्ने है भैया, कहां से मुड़ोगे, कहां से टर्निंग, फिर वही आज आप किसी को रोके हुए हैं कल आप एम्बुलेंस में होंगे, कोई आपको रोका होगा। ये शहर का बदलाव, विजन विजन विजन बहुत जरूरी है कि आज से 20 साल बाद ये सड़क क्या होगी ये मैं नहीं जान रहा हूं, तो आप हमारे नेता नहीं है सर। आपको कोई हक नहीं है कि आप मालूम ही नहीं है, एक एक साइकिल जाएगा चलो दौड़ा दो, शुक्ला जी तो 400 रुपया देकर और जमीन बढ़ा लिए, तुम भी दे दो बढ़ जाएगा, वो जो जमीन बढ़ाए वो तो गए, बढ़ाने वाले भी गए बढ़वाने वाले भी गए, अब झेल कौन रहा है। आज छोट बेटी बचाओ बोलने का मतलब आंसू आ रहे हैं मुझे, ये किसका हक है, बेटी बचाओ ह्यूमन है वो, सिर्फ उसके साथ कुछ बोझ लाद दिया गया है, इसको पढ़ा के क्या करेंगे, दूसरा घर चल जाएगी, संतोष को पढ़ाओ। एक दिन हम ऐसे ही सोच रहे थे बेटी क्यों, क्योंकि क्या होगा कि आज मैं हूं मेरी वाइफ है दो बेटियां हैं, कल को अगर मैं ना रहूं बुढ़ापे में वाइफ को देखेगा कौन, अगर वाइफ ना रहे तो मुझे कौन देखेगा। अपना बेटा के घर होते ना तो बात कुछ और होता, दूसरा के बेटा दमा, अरे वजह उसकी शादी में उस क्यों क्यों उसको बोझ बना रहे हो, दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाएगा, बेसिक चीजें सुधार देंगी मैं इतना जानता हूं, बेसिक चीजें सुधार देंगी वो। मैं अपनी किताब लिख रहा हूं, बताना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करें, उस समय होता था 9 भाई में एक मेरी मां बहन थी अकेली, तो उस चैप्टर में मैंने लिखा है नाना नानी ने बेटी की चाहत में मोहल्ला बसा दिया, तो फिर बेटी बचाओ, कुछ ऐसे भी लोग हैं। और कई लोग 8 बेटियों के बाद एक बेटा, क्या कर लोगे।
1: तो जो शिक्षा में जिस परिवर्तन की बात आप चाह रहे हैं वो स्कूली शिक्षा होगी या घर में जो
0: हरेक की शिक्षा, हरेक की शिक्षा। आज कोई भी लीडर है, कैसे है लीडर, किसी को भी जाके दांत दिखवा दोगे क्या तुम, सर पेट में यहां दर्द हो रहा है, आप क्या करते हैं रिक्शा चलाते हैं, देख लीजिए ना, उसके लिए एक पर्टिकुलर आदमी होता है, इंसान होता है जिसने उसकी पढ़ाई पढ़ी होती। अरे महाराज हम खुद 10th में पढ़ते थे और बर्मा के लिए इम्तिहान दिलवाए थे चोरी से, हम खुद 10th में पढ़ रहे थे 12वीं क्लास के लिए मैं इम्तिहान दे रहा था और इम्तिहान देने वाला लड़का कौन था, अरे लिखो जल्दी लिखो बहुत लिखना है, हाँ हाँ, उसको टी लिखना भी नहीं आ रहा था और वो ऐसे ड्राइंग बना रहा था, ऐसे ऊपर वो लाइन वो नीचे ही, हम कहा तू तो लिख ले ले बेटा, वो तो काहे पढ़ा रहे हैं बेटे को, दहेज तनी 2 लाख
1: ज्यादा,
0: और झेलेगा कौन, बेटी का बाप, वो पढ़ा नहीं सकता, वो नहीं पढ़ा सकता कि उसकी बेटी BA पास है MA पास है, उसको दहेज नहीं मिलेगा, है तो बेटी है ना, ये क्यों है, ये वजह सोचने की वजह है गुरु, और अब सुधर जाना चाहिए।
1: जी एक बात बताइए, क्या केवल यूपी बिहार की हम बात कर रहे हैं या हम समूचे देश की बात,
0: पूरा
1: कर रहे हैं?
0: देश ही बे,
1: क्या बिहार एक स्टीरियोटाइप का भी शिकार हो जाता है,
0: वो होना ही पड़ा, होना ही पड़ा। नौकर कहां का होगा फिल्मों में?
2: बिहार
0: का। कोई चिरकुट पॉलिटिशियन को कहां का होगा? बिहार का। कभी आप नहीं दिखाए, अब बनने लग गई हैं। बड़े आईएएस आईपीएस बनते हैं, बड़े डॉक्टर्स बनते हैं। डॉक्टर कहां का होगा तो वो कहीं और का, लेकिन डॉक्टर के बगल में जो स्टील का उड़ाल का है वो बिहार का। तो ये शुरू से, और बुरा ना मानिएगा, ये हम लोगों की भी गलती है,
1: बहुत
0: हम लोगों की भी गलती है। लगाओगे आम तो कहां से खाओगे, कटहल या क्या बोला पेड़ बबूल का, तो आम कहां से हुए। तो ये हमारी भी गलती है, अब भी सुधर जाना चाहिए हमें, अब भी सुधर जाना चाहिए। पीछे वालों के लिए नहीं, आगे वालों के लिए सुधरना चाहिए। कहते हैं ना, जैसे मैं आर्टिस्ट हूं, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन होगा? मेरा कंट्रीब्यूशन होगा मेरा काम, मुंह नहीं, मेरा कंट्रीब्यूशन होगा मेरा काम। मैं दिखाऊंगा जल आपदा। सोचो ना यार, हम जब इतने बड़े थे, शायद उससे भी छोटे, शायद मेरे पापा भी जब इतने बड़े होंगे, तब से बाढ़ की समस्या जूझ नहीं पा रहे हम लोग। इतने बड़े से आज सुन, गंडक के बाढ़ है, फलना का बाढ़ है। अरे बाढ़ है महाराज, वो आपकी वजह से आ रहा है। आपने सब कुछ सीमेंटेड कर दिया है, सब कुछ कर दिया, जो भी कर दिया वो आपकी वजह से आ रहा है। आपको चाहिए कि उसके पानी को मैं दिशा दे दूं, ताकि फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई किसान भी उससे काम कर सके, सब कुछ का हम दिशा दे दें। हम बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बना चुके हैं, लेकिन एक धारा को मोड़ने का प्रोजेक्ट नहीं बनाए कि वो पानी हमारा राजस्थान कैसे चला जाए। जिसके घर के सामने से जाएगा वो जगह सुंदर भी लगेगी और एक हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। हमारी एक फुआ थी पापा जी की, एगो बेटा तुम हमको बीड़ी पिला दो ना तो तुमको 4 बीघा जमीन देंगे। कि बहुत मान, उम्र हो गई थी उनकी काफी, 85 वगैरह, बीड़ी पीने का शौक होता था बिहार वार हमारी तरफ, हर जगह होता है। वो अब संवैधानिक चेतावनी वो अलग बात है, बीड़ी पिला दोगे ना 5 बीघा दे देंगे, चलो 6 बीघा। एक दिन हम पता किया है कहाँ 6 बीघा, तो वो नदी किनारे 6 महीना डूबल रहता है, वहां नाव चढ़ाइए नाव भी अपनी खरीदिए। तो ऐसी जगह पे जमीन
1: मिला, पिलाया
0: है ही है, कोई लिया ही नहीं, बीड़ी पी गई वो। जमीन कहाँ है तो वो देखे वहां वहां वहां, जब वो पत्थर पे गो मारा ना डुबकी, वो मेरा जमीन। थोड़ा सोचना चाहिए हमें, हमारा क्या है।
1: बाढ़ जैसी आपदाओं को नियति बनाते चले गए सर, ये तो आएगा ही हर साल,
0: आएगा ही,
1: लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है।
0: भैया हाँ। आपका घर ऐसी जगह है जहाँ बारिशें होती रहती हैं दिन भर रात भर, तो आप क्या करेंगे? एक प्लास्टिक का कुछ अपनी तो तैयारी करेंगे, तो देश की तैयारी कौन करेगा? आप तो अपनी तैयारी कर ली, इधर से पानी नहीं आएगा, उधर से बड़ी चूर आएगा, ड्रम लगा दो वहां, ठीक है। इसकी तैयारी को, अब मैं एक फिल्म बना रहा था तब मुझे कैमरामैन की जरूरत थी, तो मैंने एक किताब मानसून के ऊपर पढ़ी थी, किसी इंग्लिश बंदे ने लिखी थी। फोटोग्राफी ज्यादा था, रिटर्न कम था, तो उसके फॉरवर्ड बोलते हैं ना उसको, फॉरवर्ड लिख आगे जो लिख, प्रस्तावना,
1: जी प्रस्तावना, फॉरवर्ड,
0: उसमें उसने लिखा था श्रीलंका का एक राजा था 300 साल पहले, उसने अपने मंत्रिमंडल के हर एक को आदेश देके रखा था कि अगर एक बूंद भी पानी बारिश का सागर में गया बेटा तो बाकी तुम जो किए हो करो। कितनी बड़ी बात सोच के गया वो। इस पानी के लिए हम तरसेंगे, हम देश वाले एक दिन के लिए श्रम दान करें, एक बहुत कोने में बहुत बड़ा गड्ढा खोद दें कि ये पानी चलो आओ भेजो नेपाल, हम इसको समेट लेंगे। उड़ेगा भी थोड़ा तो बारिश भी होगा, नीचे जाएगा तो जमीन में पानी आएगा। आप सोचिए ना, हम मोटरसाइकिल खड़ा करने के लिए सीमेंटेड कर दो, गाड़ी खड़ा करने के लिए सीमेंटेड कर दो, क्या आज से 20 साल पहले नहीं सोचा गया था गाजियाबाद ये सारी जगहों पर गाड़ियां भी पार्किंग होंगी दोनों तरफ, वो उस मकान वाले की, ये इस मकान वाले की, और टमाटर वाला भी घूम रहा है बीच से, अब आप कर लो, क्या कर लोगे? सट पानी आना चाहिए, सट से पता नहीं कहां चल जाना चाहिए, लेकिन हमें गर्व होना चाहिए इस पानी को हमने वेस्ट नहीं किया।
1: पता है संजय जी, दिक्कत ये हो जाती है कि हम लोग भी जब बोलना शुरू करते हैं तो लगता है जैसे कि ये भी समस्या, ये भी समस्या, वो समाधान वोटरों से ही निकलेगा। जब हम लोग चुनेंगे तय करेंगे कि कौन उस कुर्सी पर बैठना चाहिए या फिर कौन वो आईएएस अधिकारी आना चाहिए जो तय करे कि यहाँ का विकास कैसे होना है।
0: हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम टैक्स देते हैं,
1: पर जवाब तो हम ही लोग मांगेंगे।
0: बिल्कुल, और समाधान ये ऐसे नहीं होगा कि एक साथ समाधान, इस समाधान को मतलब सुलझाना होगा। हाँ। आओ इस बार हम पानी की व्यवस्था को ठीक करने का वचन लेते हैं। मणिपुर नहीं, एक स्टेट है उसका गांव, पूरा गांव वाले ही गांव साफ करते हैं। हाँ। उनका कोई चक्कर ही नहीं है कि आपके यहाँ,
1: एक तो मेघालय
0: सॉरी सॉरी, हाँ वो कोई जगह है, वो हाँ। गांव है पूरा। हाँ। हम लोग पान खाकर हिम्मत भी नहीं होती कि ठूक दे।
1: गुजरात में भी एक गांव है
0: ऐसा। जी तो ऐसे ऐसे हम कब बनेंगे? अरे हमारे समोसा में कीड़ा निकला, लड़का मर गया, सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो सरकार अब समोसा संभाले? आप क्या कर रहे हैं? हाँ। उस समोसे वाले को पॉपुलर क्यों किया आपने इतना कि जाकर के लोग उसके यहाँ समोसा खाएं? बताइए, रात में करंट लग गया, सरकार कुछ कब तक थोपोगे सर पाप? तुम दिखा दो सरकार, अबे हमारी जनता ऐसे कर रही तो हमें तो कुछ करना ही पड़ेगा। समाधान है लेकिन हम चाहते नहीं। बेसिकली हम बड़े आलसी टाइप के लोग हैं। दाल बन गया, भात बन गया, चलो हम नहाते हैं, खा लिए, दोपहर में सो जाते हैं। जानते हो योगा गुरु कहें पहला बाएं करवट सो, इससे अन्न पचेगा। फिर इनने कहां जाओगी समाधान के लिए जब हम फंसे ही? बड़ा अच्छा था एक, सुविधा में उगे लोग, सुविधा में फंसे लोग, दुविधा में फंसे लोग, करते हैं बात बरगद की, गमले में उगे लोग।
1: क्या बात,
0: ये चीज ध्यान रखना, बरगद बनना है तो जमीन पकड़ो। बरगद भी बड़ा तेज होता है, गमला के नीचे छेद होता है, उसी में से मार देता है जड़। खाली बड़ी बातें नहीं, वो क्या कर रहा, हम क्या कर रहे हैं? ऑफिस में मेरा एक था, देखे भाई साहब ताए थूक दिए। अरे जिसको उठाना होगा उठाएगा, ये वही वाली बात है। हम आपको काम की बात बता रहे हैं लेकिन बेकाम तरीके से।
1: बड़ी बड़ी बातों का छोटा संदेश, छोटी छोटी बातों का बड़ा संदेश, सब हमने यहाँ पर स्वीकार किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो युवा सुनेंगे, सोचेंगे और ये देखेंगे कि अपने में बदलाव कहाँ से लाना है, तभी बदलेगा बिहार।
0: बड़ी चीजें मिली हुई हमें पुश्तैनी, उनको संभाल के रखना है, उनको संभाल के रखना है। वहां का अगर एक गंदगी भी हटा देते हो ना तो बहुत बड़ी बात, बहुत पुश्तैनी चीजें मिली हुई। रोक लो उसको, वो वक्त है, जो बोलते हैं बदलाव, वो वहां से यहाँ तक के बिल्डिंग का बदलाव है, वो उनको भी। सॉरी मैं ही जाना नहीं चाह रहा।
1: बहुत धन्यवाद संजय जी।
0: जय श्वेता।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
9: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी GNT पर मनाए जा रहे इस उत्सव के साथ जुड़िए। देखिए, इसके लिए करना आपको बस इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाना है और हमें भेजना है। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार जो दर्शक है अपने वीडियोस भी भेज रहे हैं, 2 तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर भेजिए मध्य प्रदेश के जबलपुर से। पूजा कन्नौजिया ने घर पर बप्पा की खूबसूरत प्रतिमा को स्थापित किया गया है। बप्पा के सिर पर शानदार पगड़ी, उसके ऊपर पीले रंग की कलगी लगाई गई है। वहीं दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो दूसरी तस्वीर भी मध्य प्रदेश से है। यहाँ पर छिंदवाड़ा के राजेश निर्मलकर के घर बप्पा विराजमान है। भगवान गजानन ने श्वेत वस्त्र और सिर पर मनमोहक मुकुट धारण किया हुआ है।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
2: डीयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित, अध्यक्ष समेत तीन पदों पर एबीवीपी ने हासिल की जीत, उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन रहे विजयी। तेलंगाना के पलवंचा में करोड़ों के नोटों से सजे गणपति बप्पा, 2,90,00,000 रुपए के नोटों से की गई पंडाल की सजावट, 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोटों का किया गया इस्तेमाल। राधाष्टमी के मौके पर बरसाने में आस्था और उल्लास का संगम, गलियों में सुनाई दे रही है बधाई और मंगल गीतों की गूंज, भव्य रूप से मनाया जा रहा है श्री राधा रानी का जन्मोत्सव। नैनीताल के नंदा देवी महोत्सव में उमड़ा आस्था का मेला, मानंदा सुनंदा की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, 23 सितंबर तक चलेगा उत्सव। पीएम मोदी ने युवाओं को दी सौगात, 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा राष्ट्र निर्माण में जेंजी की भूमिका बेहद अहम। रूस की यात्रा पर पहुंचे सेना प्रमुख जनरल धीरेज सेठ का अनोखा सम्मान, सेंट पीटर्सबर्ग के ऐतिहासिक पीटर एंड पॉल के लिए ट्रेडिशनल तोप से दागे गोले। पुलवामा के काकापुरा स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जवानों का मॉक ड्रिल, चाक चौबंद इंतजाम की हुई परत।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: तोंगजमहा

चीन से। जिसने भी हथियार खरीदा उसके सामने पछताने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। कम कीमत और सस्ती टेक्नोलॉजी के चक्कर में चीन से वेपन तो खरीद लिया गया, लेकिन वो जंग के मैदान में कितना कारगर है इसका पता अब उसके खरीदारों को हो रहा है। यानी कि चीन से डिफेंस डील करने वाले देश के सामने अब सर पीटने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचा। ना तो चीन की मिसाइलें मंजिल तक पहुंच रही हैं, न ही उसके टैंक पराक्रम दिखा रहे हैं। चीन के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी लाइव फायर के दौरान खुद तबाह हो चुके हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में चीन के एयर डिफेंस सिस्टम का फ्लॉप होना दुनिया ने देख ही लिया।

0: चीन की डुप्लीकेसी के बारे में पूरी दुनिया जानती है और अब तो इसके बाकायदा सबूत मिलने शुरू हो गए हैं, यानी अब दुनिया देख भी रही है। दरअसल हाल ही में सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों पर हमला किया जिसमें उसने DF-15A का इस्तेमाल किया जो कि अपने टारगेट पर पहुंचने से पहले ही फट गई। और आपको ये भी बता दें कि ये वही DF-15 है जो सऊदी अरब ने चीन से ली थी।
1: सोशल मीडिया पर DF-15 मिसाइल के कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं। इनमें ये मिसाइल एक रेगिस्तान में पड़ी दिख रही है और कुछ लोग इसे देखते और फिर धकेल कर इधर उधर करते नजर आ रहे हैं। ये लोग हूती लड़ाके और उनके समर्थक बताए गए हैं जो गिरी हुई सऊदी मिसाइल का जायजा ले रहे हैं।
0: दरअसल DF-15 ने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का बूस्ट रेंज है। अब हाल ही में विश्लेषकों ने जो सऊदी अरब की तरफ से यमन में हमला किया गया था वहीं से इसके कुछ अवशेष ढूंढे हैं जिसके अध्ययन से ये पता चलता है कि ये चीनी निर्मित ही है।
1: कई रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि ये मिसाइल सऊदी अरब की रॉयल सऊदी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स ने हूती ठिकानों पर दागी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल लक्ष्य से चूक गई और यमन के रेगिस्तान में जा गिरी।
0: अगर मिसाइल दागने की पुष्टि हो जाती है तो ये प्रमाणिक हो जाएगा कि सऊदी अरब ने पहली बार चीनी मिसाइल का इस्तेमाल किया है। हालांकि अभी तक ना तो यमन और ना ही चीन से इसके बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने आई है। सऊदी अरब भी फिलहाल खामोश है।
1: दावा ये किया जा रहा है कि करीब 3 दशक में ये पहली बार हुआ है जब सऊदी फोर्स ने चीन से खरीदी गई DF-15A शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का युद्ध में इस्तेमाल किया है। विश्लेषक इस निष्कर्ष पर इसलिए पहुंचे क्योंकि हूतियों के पास DF-15A जैसी मिसाइल होने के कोई प्रमाण नहीं है। उनके शास्त्रागार में मुख्य रूप से ईरानी तकनीक वाली मिसाइलें और ड्रोन हैं। सऊदी अरब के पास पहले से चीन से खरीदी गई DF-3A और DF-21 जैसी मिसाइलें होने के रिपोर्ट्स लंबे समय से चल रही हैं। लेकिन सऊदी अरब ने DF-15A शॉर्ट रेंज मिसाइल प्रणाली भी चीन से खरीद रखी है। इसकी कोई आधिकारिक जानकारी पहले कभी सामने नहीं आई, इसीलिए कई विशेषज्ञों ने इसे सऊदी की गुप्त मिसाइल क्षमता का हिस्सा माना है। अगर ये सऊदी की मिसाइल थी तो इसका लक्ष्य चूकना सऊदी की गुप्त मिसाइल क्षमता पर सवाल खड़े करता है। साथ ही चीनी हथियारों की विश्वसनीयता पर भी चर्चा छिड़ गई है।
2: देखिए, सबसे पहले ये बात क्लियर है कि सऊदी अरबिया का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसकी शुरुआत देखिए चाइना ने की थी और इसी के तहत चाइना ने अपने तमाम मिसाइलों की जो सप्लाई है वो सऊदी अरबिया को की थी, जिसमें प्रमुख जो मिसाइल्स हैं वो हैं DF-3A और DF-21। ये दोनों मिसाइलें लगातार सऊदी अरबिया के पास बनी हुई है जिसका वो टाइम टू टाइम इस्तेमाल करता है। जहां तक उसके दूसरी मिसाइल DF-15 अल्फा का सवाल है, जब हूतियों के ऊपर मिसाइल फायर की सऊदी अरब ने तो उसके जो रेमनेंट, उसके जो स्प्रिंटर थे उससे पता लगा कि सऊदी अरबिया के पास DF-15 अल्फा मिसाइल भी है जो कि एक बड़ा ही प्रोमिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इस तरीके के जब आप मिसाइल को फायर करते हैं तो दिखाता है कि आपकी इन्वेंट्री में ये मिसाइल है।
1: सऊदी चीन मिसाइल डील का इतिहास लगभग 40 साल पुराना है और बेहद गोपनीय रहा है। ये रक्षा इतिहास के सबसे दिलचस्प अध्यायों में से एक है क्योंकि सऊदी अरब पारंपरिक रूप से अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार खरीदार रहा है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए उसने हमेशा चीन पर ही भरोसा किया है। 1980 के दशक के मध्य में जब सऊदी अरब को ईरान इराक युद्ध के दौरान अपनी सुरक्षा को खतरा महसूस हुआ तो उसने अमेरिका से बैलिस्टिक मिसाइलें मांगी। अमेरिका ने इसराइल के विरोध और मध्य पूर्व में हथियारों की होड़ बढ़ने के डर से सऊदी को मिसाइलें देने से मना कर दिया। इसके बाद सऊदी अरब के प्रिंस खालिद बिन सुल्तान, जिन्हें सऊदी मिसाइल प्रोग्राम का जनक कहा जाता है, उन्होंने 1985 में गुप्त रूप से चीन से संपर्क किया। दोनों देशों के बीच तब आधिकारिक राजनयिक संबंध भी नहीं थे। साल 1988 में ये खुलासा हुआ कि सऊदी अरब ने चीन से DF-3A इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल खरीदी है। ये चीन की एक परमाणु सक्षम मिसाइल थी, लेकिन सऊदी अरब को देने के लिए चीन ने इसमें बदलाव कर दिए और इसे सिर्फ कन्वेंशनल पेलोड यानी कि पारंपरिक उच्च विस्फोटक ले जाने लायक ही बना दिया। सऊदी अरब ने मिसाइलों को खरीदने के बाद करीब 26 साल तक दुनिया से इसे छिपा कर रखा और पहली बार 2014 की एक सैन्य परेड में इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया।
2: देखिए, सबसे पहले सऊदी अरेबिया अमेरिका का बहुत ही स्ट्रांग एलाई है। सऊदी अरेबिया में अमेरिका के तमाम मिलिट्री बेसिस है, लेकिन जहां तक मिलिट्री मिसाइल्स का सवाल है, उसने चाइना की तरफ रुख किया, क्योंकि चाइना उसको एक सस्ती मिसाइल देता है, एक जो उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है। और साथ में ये देखिए, 1980 के दशक में चाइना के सऊदी अरेबिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन हुए, और वो इतने प्रकार हुए कि तमाम तरीके का इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया। इसी के तहत उसने ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में मध्यस्थता की, सऊदी अरेबिया और सीरिया के बीच में मध्यस्थता की। तो ये शुरुआत उसकी 1980 में हुई थी, जिसके तहत उसने DF-3 अल्फा मिसाइल को सप्लाई किया, और आज की डेट में वो अन्य तरीके की भी मिसाइलें सऊदी अरेबिया को दिया। तो ये ज्यादा हिस्ट्री में ना जाके ये रिसेंटली 80s के दशक का यह डेवलपमेंट।
1: DF-3 मिसाइलें बहुत पुरानी हैं, लिक्विड फ्यूल आधारित थी और उनकी सटीकता बेहद खराब थी, इसीलिए सऊदी अरब को अपनी रणनीतिक क्षमता को आधुनिक बनाने की जरूरत पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने साल 2007 में चीन के साथ एक और गुप्त समझौता किया और अधिक आधुनिक DF-21 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को सऊदी और चीन के बीच DF-21 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सौदे की भनक लग गई थी, लेकिन तब उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया था कि ये मिसाइलें भी परमाणु हथियार ले जाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ पारंपरिक हमलों के लिए ही मॉडिफाई की गई हैं। तो अमेरिका ने इस पर कोई कड़ा विरोध नहीं जताया।
0: हाल ही में यमन के मरी प्रांत में DF-15 ने कमलबा मिलने से इस बात की पुष्टि होती है कि सऊदी अरब चीनी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि सऊदी अरब भले ही अभी तक इस बात से इनकार करता आया हो, लेकिन इससे एक और बात की पुष्टि होती है, और वो ये कि डील का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है।
1: पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि सऊदी अरब अब सिर्फ चीन से मिसाइलें खरीद नहीं रहा है, बल्कि चीन की तकनीकी मदद से अपनी खुद की बैलिस्टिक मिसाइल भी विकसित कर रहा है।
2: देखिए, जहां तक सऊदी अरेबिया के इंडिजिनस डेवलपमेंट का सवाल है मिसाइल के फील्ड में, डेफिनेटली उसकी मदद चाइना कर रहा है, और इसी के तहत सऊदी अरेबिया ने सॉलिड फ्यूल मिसाइल डेवलप कर लिया है। उसके यहाँ जो ये मिसाइल बन रही है, उसका उस जगह का नाम है अल दवदामी। इस जगह पे उसका मिसाइल प्रोग्राम है, और इसकी मदद लगातार चाइना ने की है। और जब से युद्ध की शुरुआत किया है, उसमें जरूर सेटबैक लग सकता है, लेकिन इसके पहले जब युद्ध नहीं हो रहा था, तो चाइना अपने इन्वेस्टमेंट मार्केट और तमाम तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट का मार्केट उसने मिडिल ईस्ट को पकड़ा था। तो इसी के तहत लगातार उसने टेक्नोलॉजिकल नोहाउ और जो उसका रॉ मटेरियल है सऊदी अरेबिया को दिया, जिससे कि सऊदी अरेबिया की जो इंडिजिनस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो आगे बढ़ा, और साथ में उसने सॉलिड फ्यूल का मिसाइल डेवलप किया।
1: सऊदी अरब लंबे समय से यमन में हूतियों के खिलाफ हवाई हमले करता रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल युद्ध की तीव्रता बढ़ाने के संकेत माने जाते हैं। मारीब क्षेत्र में हाल ही में लड़ाई तेज हुई है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले बढ़ा रहे हैं।
0: कम कीमत, मेड इन चाइना, लेकिन शर्तें कड़ी, ये वो तमाम ऐसी चीजें हैं जो चीन हर उस देश पर लगाता है जिसे वो अपने हथियार देता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चीन कभी नहीं करता है, और इसी के साथ साथ चीन मेंटेनेंस का खर्चा भी बिल्कुल नहीं लेता। यानी जो भी देश हथियार खरीदेगा, मेंटेनेंस के लिए उसको वापस चीन का दरवाजा खटखटाना होगा। लेकिन विशेषज्ञ ये कहते हैं कि चीनी हथियार इस वक्त कागजों पर भले ही पुख्ता नजर आ रहे हो, लेकिन रण क्षेत्र में ये पूरी तरह से फिसड्डी साबित हो रहे हैं।
1: ग्लोबल डिफेंस मार्केट में चीन खुद को अमेरिका और रूस के विकल्प के तौर पर पेश करता है। वास्तविक युद्ध में उसकी प्रमुख मिसाइलों का फेल होना चीन के हथियारों की विश्वसनीयता और उनकी तकनीकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मेड इन चाइना के चक्कर में फंसे बांग्लादेश का हाल देख लीजिए। 9 सितंबर 2026 को चटगांव में फील्ड फायर अभ्यास के दौरान टाइप 59 टैंक में विस्फोट हो गया, और जैसे ही टैंक से गोला दागा गया, वो बैरल से बाहर निकलने के बजाय टैंक के भीतर ही ब्लास्ट कर गया। इस भीषण विस्फोट के कारण टैंक के क्रू मेंबर्स में 2 बांग्लादेशी जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक वरिष्ठ अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया।
0: विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही तोप और इलेक्ट्रॉनिक्स नया कर दिया गया हो, लेकिन टैंक का मेटल वही पुराना है, यानी 50 साल पुराना, जिसका असर ये हो रहा है कि टैंक बड़े बड़े गोला बारूद को झेल ही नहीं पा रहा है। एक बार फायर करने के बाद वो वापस टैंक के अंदर ही विस्फोट करता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण हाल फिलहाल में मिला भी है।
2: देखिए टैंक T-59 जो टैंक है वो बहुत ही पुराना टैंक है, चाइनीज ओरिजिन का है। अगर आपने इसको मेंटेन नहीं किया, रिफर्बिश करके आप काम चलाते रहते हैं, तो समय के साथ हर एक इक्विपमेंट की उपयोगिता घटती जाती है, और वो भी ऐसे समय में जब आप उसको ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं, लगातार उसको अपग्रेड कर रहे हैं और जो उसका मेटलर्जी है वो फेल होता है। देखिए जब ब्रीच प्रेमेच्योर होता है तो उसके कई रीजन होते हैं, एमिशन की भी वजह हो सकती है, जो प्रेशर ब्रीच में जनरेट हुआ उसको सस्टेन नहीं कर पाया, इसका मतलब मेटलर्जी उसकी खराब थी, या फिर उसके बैरल में कोई रेमिनेंट रह गया या बैरल क्लीन नहीं हुआ उसकी वजह से प्रीमेच्योर हुआ, तो वजह कुछ भी हो सकती है। जब इस तरीके के लगातार इंसिडेंसेस होते हैं तो बेसिक शक जाता है उसकी मेटलर्जी पे, क्या कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है या इरेटिक बिहेवियर ऑफ एमिशन, तो इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा।
1: हादसे में शामिल टैंक चीन में बना टाइप 59 है, जिसका इस्तेमाल बांग्लादेश की सेना करती है। टैंक 59 चीन में बना एक पुराना मेन बैटल टैंक है। इसे चीन का पहला ऐसा टैंक भी माना जाता है जिसे बड़ी तादाद में बनाया गया था। बांग्लादेशी सेना के बेड़े में शामिल टाइप 59 दुर्जॉय टैंक मूल रूप से करीब 70 साल पुराना सोवियत डिजाइन है, जिसे चीन ने कॉपी करके बनाया था और बाद में बांग्लादेश को इसे अपग्रेड करके दे दिया। टाइप 59 सैन्य टैंक काफी पुराना है, लेकिन समय के साथ इसके कई नए वर्जन और अपग्रेड तैयार किए गए हैं। इनमें ज्यादा बेहतर तोप, फायर कंट्रोल सिस्टम, रात में देखने की सुविधा और टैंक की सुरक्षा बढ़ाने वाले उपकरण जोड़े गए हैं, लेकिन मूल संरचना पुरानी ही रही।
2: जो हादसे हुए T-59 के, आप कितना भी अपग्रेड कर दें लेकिन आप उसकी मेटलर्जी नहीं बदल पाएंगे। जो आयरन है, जो बैरल है 125 mm स्मूथ बोर, उसको आप रिप्लेस नहीं कर पाते। हालांकि जो टैंक है, जब नंबर ऑफ राउंड्स जितने वो फायर कर लेते, उसकी EFC वैल्यू होती है, इक्विवेलेंट फुल चार्ज की वैल्यू होती है, उसमें कितना वियर एंड टियर हुआ, और उसका बैरल भी बदला जाता है, लेकिन उस मेटलर्जी को आप कैसे इंप्रूव करेंगे जो एक पर्टिकुलर तरीके से बनाई गई है, उस कितना प्रेशर जनरेट करा, एमिनिशन जो आप लोड करके फायर कर रहे हैं जब उसका प्रोपेलेंट बर्न होता है तो कितना प्रेशर जनरेट करता है, और क्या वो स्टील या मेटलर्जी उसको सस्टेन कर पा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक आउटडेटेड इक्विपमेंट है, टैंक है।
1: चीनी टैंकों में सेफ्टी फीचर्स और मेटल की क्वालिटी हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। जरा सी ओवरहीटिंग या फिर लो क्वालिटी गन बैरल की वजह से गोला अंदर ही ब्लास्ट हो जाता है।
0: बांग्लादेश में हुए टैंक हादसे ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और साथ ही साथ चीनी हथियारों की विश्वसनीयता पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन यहाँ बांग्लादेश की मजबूरी है, वो चीन के अलावा कहीं और जा नहीं सकता, क्योंकि 70% हथियार उसने चीन से ही लिए हैं।
1: बांग्लादेश की सेना रक्षा उपकरणों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर चीन पर निर्भर है। सिब्रियानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और रक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश दुनिया में चीनी हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। वो अपनी सैन्य जरूरतों का 72-74% हथियार अकेले चीन से आयात करता है। हाल के वर्षों में खासकर 2024-26 के बीच चीनी हथियारों में लगातार आ रही खराबियों, घटिया कलपुर्जों और चीनी कंपनियों की ओर से मरम्मत के लिए मांगी जाने वाली भारी भरकम कीमत के कारण बांग्लादेशी सेना में असंतोष बढ़ा है, और यही वजह है कि बांग्लादेश अब धीरे धीरे अपनी सैन्य निर्भरता को बांटने के लिए तुर्की और कुछ हद तक पश्चिमी देशों के विकल्पों की तरफ भी हाथ बढ़ा रहा है।
0: चीन अपनी सेना के लिए नए और अपग्रेडेड हथियार बना रहा है, लेकिन ऐसे में जो पुराने हथियारों का जखीरा है वो काफी हद तक चीन के पास बचा हुआ है, जैसे कि टाइप 59 टैंक हो या फिर जेट्स हो। अब इन्हें चीनी कंपनियां थोड़ा अपग्रेड करके बांग्लादेश और अफ्रीकी देशों को कम कीमतों में बेच देती हैं, और यहीं से चीन मुनाफा भी कमा रहा है और दूसरे देशों को कर्जदार भी बना रहा है। बाकी उसके सैन्य उपकरणों पर जो विश्वसनीयता है वो तो दुनिया जानती ही।
1: रक्षा विशेषज्ञ और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी हथियारों के नाकाम होने के पीछे कई वजह हैं। बड़े परीक्षणों का अभाव, अमेरिकी और रूसी हथियारों के उलट चीनी हथियार निर्यात करने से पहले मुश्किल और वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों से नहीं गुजरते। दूसरा है गुणवत्ता पर मात्रा को प्राथमिकता। चीन का मेन फोकस हथियारों की विश्वसनीयता और लाइफ साइकिल के बजाय भारी मात्रा में सस्ते हथियार बाजार में उतारने पर है। तीसरा है घटिया पुर्जे और सर्विसिंग। चीनी कंपनियां बिक्री के बाद मेंटेनेंस सपोर्ट देने में नाकाम रहती हैं, जिसे खरीदार देश के पास खराब पुर्जों को बदलने का कोई और विकल्प नहीं बचता। सस्ते होने के कारण जो देश चीनी हथियारों के जाल में फंस रहे हैं, वो अब अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर इन रक्षा सौदों को लेकर पछता रहे हैं और चीन की वैश्विक साख को इससे धक्का भी लगा है।
2: पूरे विश्व जानता है कि चाइनीज इक्विपमेंट या चाइनीज कोई भी प्रोडक्ट है उसकी रिलायबिलिटी नहीं होती, वो वन टाइम यूज होता है। आपने यूज किया यूज एंड थ्रो टेक्नोलॉजी, तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता। बहुत बड़ा आप जो इन्वेस्टमेंट, जो इनपुट का इन्वेस्टमेंट है वो नहीं करते हैं। जब आप इसको डिफेंस के इक्विपमेंट में लागू करते हैं तो आपने मेटलर्जी हो गया, आप सस्ता लोहा, सस्ता मटेरियल, सस्ता एमिनिशन, सस्ते एक्सप्लोसिव, इन सारी चीजों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे सिर्फ इस वजह से कि आपको कॉस्ट कटिंग करना है, सिर्फ इस वजह से कि आपको मास प्रोडक्शन करना है, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग हब है, डिफेंस के फील्ड में आप आत्मनिर्भर हैं, तो इससे होता यह है कि आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज होती है। और जब वो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट में, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में, डिफरेंट डिफरेंट टेरेन में जब उसका इस्तेमाल होता है तो कोई ना कोई हिस्से पुर्जे उसके फेल होते हैं।
1: दिसंबर 2025 में कंबोडिया थाईलैंड में संघर्ष के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दावा ये किया गया था कि चीन का हथियार कैसे युद्ध के मैदान में फ्लॉप साबित हो गया। वीडियो में दावा किया गया कि कंबोडियाई सैनिक जब थाईलैंड पर निशाना लगाने के लिए चीनी रॉकेट लॉन्च कर रहे थे तो उसमें ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में कई कंबोडियाई सैनिक आ गए। 8 सैनिकों की तो जान चली गई।
2: देखिए, जहां तक चाइनीज MLRS और 19B रॉकेट सिस्टम का सवाल है, जब इसको लॉन्च किया गया, फायर किया गया, तो ये वर्टिकली अब जाके स्प्लिट हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब आपने फायरिंग किया तो इसका जो एमिनिशन है, जो मिसाइल का नोज है, जो सेंसर है, वो पहले से ही एक्टिवेट हो गया, या तो इतने तरीके से सस्टेन फायरिंग में वो उस चीज को बियर नहीं कर पाया, या फिर इतना हीट जनरेट हुआ विद इन द बैरल, उसकी वजह से एक्सप्लोजन हुआ। तो चाहे किसी भी वजह से आपका प्रीमेच्योर एक्सप्लोजन हुआ हो, कंबोडियन आर्मी ने इसको सफर किया एट द टाइम ऑफ वॉर। आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें रिडंडेंसी हो, जिसमें आप जो रेट ऑफ फायर डिस्क्राइब करें उसको अगर मेंटेन करें तो किसी भी तरीके के हादसे ना हो।
1: कंबोडिया की सेना में चीन से खरीदी गई MLRS टाइप 90B रॉकेट का इस्तेमाल होता है और इसी हथियार को इस्तेमाल थाईलैंड के खिलाफ किया जा रहा था। दरअसल कंबोडिया के साथ युद्ध में थाईलैंड भी चीन से खरीदे गए टैंकों का इस्तेमाल ही कर रहा था। ये टैंक थे VG-4। युद्ध के समय इसकी परीक्षा हुई तो ये फ्लॉप साबित हुआ। VG-4 टैंक का बैरल फट गया, जिससे इसके क्रू मेंबर्स घायल हो गए। हथियारों की ताकत और भरोसे की असली परीक्षा युद्ध के मैदान में होती है और रणभूमि में चीन के हथियारों की विश्वसनीयता क्या है, वो धीरे धीरे दुनिया देख रही है। कंबोडिया के साथ युद्ध में थाई सेना के VG-4 टैंक का बैरल फटना चीन के लिए शर्मनाक है। मेन गन के अलावा टैंक का फायर कंट्रोल से जुड़ा टारगेटिंग सिस्टम और उसका लेजर वार्निंग सिस्टम भी खराब हो गया। ये सिस्टम आधुनिक बख्तरबंद लड़ाई के लिए बहुत जरूरी है, खासकर टारगेट पहचानने, हमले की सटीकता और दुश्मन के लेजर हमले से चेतावनी के लिए।
2: देखिए, जहां तक टैंक टेक्नोलॉजी का सवाल है, उस जब VT-4 टैंक की हम बात करते हैं तो उसको भी काफी तरीके का सेटबैक लगा। मेरा मानना है कि जो मेंटेनेंस टैंक को चाहिए, जो आपको उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना कि कितने राउंड उसने एपी शॉट फायर किए, कितने उसने हीट एमिशन फायर किया, इन सब का रिकॉर्ड रखेंगे तो बेहतर होगा, जिससे कि आप मेटलर्जी कितना वियर एंड टियर हुआ इसको आप कैलकुलेट कर पाएंगे। और जहां तक उसके लेजर लॉकिंग सिस्टम का सवाल है, उसको भी आपको एक फुल प्रूफ रखना होगा। ये देखिए, टैंक को सर्वाइव करने के लिए ये सारे सिस्टम काम करने चाहिए। अगर लॉकिंग सिस्टम ही खराब हो जाएगा तो आप कैसे टारगेट को लॉक करके उसके ऊपर फायर करेंगे।
1: VG-4 एक मेन बैटल टैंक है, जिसे चीनी कंपनी नॉरिनको ने बनाया है। चीन ने इस टैंक को पाकिस्तान और थाईलैंड समेत कई देशों को एक्सपोर्ट किया। इस टैंक में 125 mm की स्मूथबोर गन, जो पारंपरिक गोला बारूद के साथ साथ गन से लॉन्च होने वाली गाइडेड प्रोजेक्टाइल भी फायर कर सकती है। इसके साथ ही टैंक में एक डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम और लेजर वार्निंग रिसीवर जैसे डिफेंसिव सिस्टम भी है, जो युद्ध के दौरान फेल हो गया था। मौजूदा समय में थाई सेना में 62 BT-4 टैंक ऑपरेशन है। इस टैंक का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना भी करती है।
0: एक एक करके चीन के तमाम हथियार फिसड्डी साबित हो रहे। कागजों पर भले ही ये कितने मजबूत हो, लेकिन रण क्षेत्र में ये बिल्कुल जीरो है। और इसका जीता जागता सबूत है पाकिस्तान द्वारा हाल ही में भारत पर किया गया हमला, जहां पर पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइलें दागी थी, जो पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई है। और ये पूरी दुनिया ने देखा भी है।
1: चीन, जो खुद अपने तैयार किए गए एयर डिफेंस सिस्टम पर भरोसा नहीं करता है, जिसने अपनी सुरक्षा के लिए खुद रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रखा है, उसके यहाँ तैयार एयर डिफेंस सिस्टम पर पाकिस्तान इतरा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के पराक्रम के सामने चीन से खरीदे गए HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की एक नहीं चली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के लाहौर में तैनात चीन में बना HQ-9 एयर डिफेंस तबाह कर दिया।
0: पाकिस्तान ने 5 साल पहले चीन के साथ HQ-9 की डील की थी। अब चीन और पाकिस्तान दोनों इस बात का दावा करते हैं कि HQ-9 सीधे रूस के S-400 को टक्कर देता है। अब ये टक्कर कितनी दी गई है, इसका सिर्फ भारत ने ट्रेलर दिखाया है और पाकिस्तान खुद ब खुद पीछे चला गया।
1: चीन के हथियारों की खोखली ताकत को जानने के बावजूद पाकिस्तान चीन से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। इसके पीछे पाकिस्तान की मजबूरी भी है। वो चीन के कर्ज के जाल में इस कदर फंस चुका है कि उसके पास कोई और विकल्प बचा ही नहीं है। लिहाजा चीन जो भी करता है, पाकिस्तान उसे सर झुकाकर कबूल करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 से 2024 के बीच में चीन ने पाकिस्तान के 81% आयातित हथियारों की आपूर्ति की है। 2020 से 24 से और 2015 से 19 की तुलना में देखा जाए तो पाकिस्तान ने हथियारों के आयात में 61% की बढ़ोतरी की है। आंकड़ों से साफ है कि चीन पाकिस्तान पर मेहरबान नहीं, बल्कि पाकिस्तान को लूटने खसोटने के लिए अपने कबाड़ हथियारों से थोप रहा है।
2: चाइना लगातार पाकिस्तान को एक टेस्ट बेड मानता है। उसने अपने BRI और CPEC के तरह का इन्वेस्टमेंट करके चाइना ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को गुलाम बना रखा है। तमाम तरीके की जो मिलिट्री एड है, तमाम तरीके के एयर डिफेंस, तमाम तरीके के रॉकेट, मिसाइल, टैंक, आज की डेट में वो पाकिस्तान को देता है। इसलिए देता है कि जैसे विश्व में दिखा सके कि पाकिस्तान आर्मी इसका इस्तेमाल कर रही है, इसका बखूबी हिंदुस्तान के बरखिलाफ उसने उसका डिप्लॉयमेंट कर रखा है, उसका ऑपरेशनल रेडीनेस 100% है और इसके तहत वो अन्य देशों को अपना सामान भेज सके।
0: रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है। गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: लड़ाई। बंदे में है दम, शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: पाकिस्तान को चीन से मिलने वाले हथियारों में आधुनिक फाइटर जेट, मिसाइल, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल हैं। पाकिस्तान में बनाए गए कुछ हथियारों में भी चीन की भूमिका है। इन्हें या तो चीन की कंपनियों ने बनाया या फिर इनमें चीन की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। चीन और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शुरू हुआ था, जब अमेरिकी हथियारों के प्रतिबंध ने पाकिस्तान को चीन की तरफ लाकर खड़ा कर दिया। चीन ने फाइटर जेट, टैंक और तोपखानों की आपूर्ति की, जिससे दीर्घकालिक संबंधों की नींव पड़ी। चीन और पाकिस्तान के बीच 1963 का चीन पाकिस्तान समझौता हुआ, जिसके तहत सीमा विवादों का समाधान किया गया और 1966 में सैन्य सहायता शुरू की गई। अब पाकिस्तान में चीनी हथियारों का एक बड़ा हिस्सा है। अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस ने 3 जनवरी 2026 की रात ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स और विमान बिना किसी रोक टोक के कारकास में घुसे। ये सब इसलिए हुआ कि वहां चीन के उपकरण फेल साबित हुए। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान चीन का तथाकथित एंटी स्टेल्थ रडार सिस्टम पूरी तरह से फेल साबित हुआ। चीन का दावा था कि उसके रडार अमेरिकी स्टेल्थ विमानों को पलक झपकते ही पकड़ लेंगे, लेकिन हकीकत में वेनेजुएला का आकाश पूरी तरह से खुला रहा और एक ऑपरेशन के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अरेस्ट करके अमेरिका ले जाया गया। वैसे वेनेजुएला भी एक ऐसा मुल्क है जो चीन पर अंधाधुंध भरोसा करता है और उससे उसने अत्याधुनिक रडार सिस्टम खरीदे थे और दावा ये किया गया था कि ये रडार सिस्टम अमेरिका के फाइटर जेट्स को भी जाम कर सकते हैं। अब इसका उदाहरण भी सुन लीजिए। हाल फिलहाल में अमेरिका ने, आपको याद होगा कि किस तरीके से एब्सोल्यूट रिजॉल्व ऑपरेशन के जरिए वेनेजुएला पर हमला किया, जहां पर उनके रडार सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गए और अमेरिका ने राष्ट्रपति मदुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। वेनेजुएला की हवाई सुरक्षा फेल होना चीन की सैन्य तकनीक पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है। पाकिस्तान के बाद वेनेजुएला दूसरा ऐसा देश है जिसने चीनी हथियारों पर भरोसा कर बड़ी कीमत चुकाई है। खराब गुणवत्ता और सही ढंग से काम नहीं करने की वजह से पिछले कुछ समय में चीन में बने हथियारों को लेकर उसके खरीदार देशों का भरोसा कम हुआ है। ढाका स्थित लेंस एशिया की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के F-22P फ्रिगेट में बार बार समस्याएं आ रही हैं। फ्रिगेट में बार बार सेंसर और रडार की खराबी के साथ इंजन में भी गड़बड़ियां पाई गई हैं और इसके साथ साथ JF-17 लड़ाकू विमानों में भी तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। हाल ही में रेगिस्तानी वातावरण में चीनी स्काई शील्ड लेजर सिस्टम के संचालन में भी कठिनाई आई। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि म्यांमार, नाइजीरिया और JF-17 खरीदने वाले दूसरे देशों की मीडिया ने भी विमानों के जमीन पर उतरने, मिशन कंप्यूटर की खराबी और एयरफ्रेम संबंधी समस्याओं का जिक्र किया। रिपोर्ट में बताया गया कि JF-17 के सटीक नहीं होने और कम हथियार ले जाने की क्षमता के कारण नाइजीरिया इटली के M-346 FA लड़ाकू जेट खरीदने के लिए मजबूर हुआ।
3: JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट चाइना ने बनाया और तमाम देशों को सप्लाई किया, लेकिन ये जो सिस्टम है पूरी तरीके से फेल साबित हुआ है। 40% पाकिस्तान के पास जो JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट है वो ग्राउंडेड है। कितने सारे क्रैशेज हुए, उसका जो एयर फ्रेम है वो तक क्रैक कर गया, जहां तक उसके जो चाहे डॉग फाइट या जो मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी है एयर में वो कॉम्प्रोमाइज है। आपने एक सिस्टम बना दिया लेकिन उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं दिया, स्ट्रक्चर डिफेक्ट है, उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, उसकी कैनोपी नहीं खुलती जिससे कि पायलट सही टाइम पे इजेक्ट कर सके। जब इतनी सारी दिक्कतें हैं और उसका जो रडार सिस्टम आपने माउंट किया, उसके जो ऑल ऑफ वेट में जब वो ऐड किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो अनस्टेबल हो जाता है। तो इतने सारे चैलेंजेस चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, चाहे वो आपके एवियोनिक्स से रिलेटेड हो या रडार से रिलेटेड हो,

0: सारे फील्ड में ये फेल नजर आता है। इसी वजह से इसकी जो ग्राउंड में जो ये इन ऑपरेशन में की जो कैपेबिलिटी है वो 40% ग्राउंडेड है यार एयरक्राफ्ट। तो ये दिखाता है कि ये एक फेल्ड सिस्टम है जिसको तमाम देशों ने जिन्होंने खरीदा वो आज की डेट में सफर कर रहे हैं।
1: चीन के खराब हथियार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जग हसाई करा रहे हैं। चीन से हथियार खरीदने वाले ज्यादातर देश आज परेशान हैं। कोई खराब मेंटेनेंस से जूझ रहा है तो किसी को खराब बिल्ड क्वालिटी के हथियार मिले हैं। सस्ते होने की वजह से चीन के हथियार दुनिया भर में ज्यादा डिमांड में हैं, लेकिन अब चीनी हथियारों की पोल खुलने के बाद से उसके करीबी भी चीनी हथियारों से तौबा करने लगे हैं। अब आपको यहाँ सीप्री की एक ताजा रिपोर्ट बताते हैं जिसमें एक आंकड़ा दिया गया है, और वो आंकड़ा ये है कि हाल फिलहाल में चीनी हथियारों की बिक्री में 5.4% की गिरावट आई है। यानी पूरी दुनिया में जो चीन हथियार देता है उसमें 5.4% की गिरावट आई है। अब इसको आप महज एक गिरावट नहीं देखिए, यानी दुनिया का भरोसा चीन पर कम हुआ है, चीन की विश्वसनीयता कम हुई है, ये आंकड़ा यही बता रहा है। चीन की सेना अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा का सहारा लेती है। लाइट कैमरा और एक्शन के जरिए खुद को सर्वशक्तिमान दिखाने की कोशिश करती है, और इसी चकाचौंध को देखकर कई देश धोखा खा जाते हैं।
0: ये बिल्कुल सच है कि चाइना ने अपने पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए, अपने डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, पूरे विश्व का मार्केट कैप्चर करने के लिए एक तरीके का प्रोपोगंडा कैंपेन चला रखा है। जितने लेवल पे चाइना के डिफेंस इक्विपमेंट फेल हुए हैं, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे रॉकेट हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, ये दिखाता है कि उनके यहाँ क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। मास प्रोडक्शन के साथ आपको क्वालिटी कंट्रोल देखना होगा, स्पेशली डिफेंस इक्विपमेंट में। ऐसा ना हो कि सोल्जर आपके इक्विपमेंट को इस्तेमाल करे और वो खुद ही धराशायी हो जाए या इंजर्ड हो जाए, जिसके कि तमाम विश्व में एग्जाम्पल हैं। जिसने भी चाइनीज इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया वो क्षतिग्रस्त हुआ, वो इंजर्ड हुआ। लिहाजा एक प्रोपोगंडा कैंपेन है, टोटल मार्केटिंग पॉलिसी है। सस्ते इक्विपमेंट बनाओ, वर्ल्ड में मार्केटिंग करो, एडवर्टीजमेंट करो और तमाम तरीके के झूठे वादे करो।
1: चीन की तिलिस्मी ताकत की कई बार पोल खुल चुकी है। 25 अगस्त 2023 का वाकया है जब चीन की 093417 सबमरीन उसके नौ सैनिकों के लिए काल साबित हुई। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने खुलासा करते हुए दावा किया था कि चीन के 55 नौ सैनिकों की पीले सागर में पानी के नीचे दम घुटने की वजह से मौत हो गई। बताया जाता है कि चीन ने हाल फिलहाल में शंघाई में अमेरिका और ब्रिटेन की पनडुब्बियों को निशाना बनाने के लिए उन्हें ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा देखिए, यहाँ पर चीन खुद ही फंस गया। उसकी पनडुब्बी में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से खुद उसके सैनिकों की जान चली गई। चीन ऐसे किसी हादसे से इनकार करता है और दुनिया से छिपाने की कोशिश करता है कि उसकी ताकत और तकनीक में किसी भी तरह की कोई भी खामी है। चीन अपने हथियारों को बेचने के लिए खुद को तकनीक में सबसे आगे बताता रहा है। इसके लिए चीन ने रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ कॉपी का भी सहारा लिया, और इसका जीता जागता उदाहरण उसका फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन J-20 है, जो कि अमेरिका की F-22 की कॉपी है।

0: वैसे चीन ने अपने तमाम हथियार नकल करके या फिर चोरी करके बनाए, ये तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन यहाँ पर चीन एक तकनीक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है रिवर्स इंजीनियरिंग। अब यहाँ ये समझने की जरूरत है कि रिवर्स इंजीनियरिंग होती क्या है। इसको आप यूं समझ सकते हैं कि किसी भी हथियार को जिस तरीके से बनाया जाता है, उसे उल्टे तरीके से देखना शुरू करती है। बस चीन इसी तकनीक का इस्तेमाल करता है। आइए बताते हैं आपको।
1: चीन के पास कागजों पर मॉडर्न हथियार तो हैं, लेकिन जंग में वो कितना कारगर साबित होगा इसके बारे में पक्का नहीं कहा जा सकता। दूसरे देशों की तकनीक चुराने के लिए कुख्यात चीन ने अमेरिका के कई हथियारों की कॉपी कर हथियारों का बड़ा जखीरा तैयार किया, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से लेकर स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 की कॉपी तक शामिल है। चीन ने अमेरिका के F-35 और F-22 की कॉपी करके J-31 को तैयार किया। चीन में बनने वाला J-31 एक स्टेल्थ मल्टीरोल फाइटर जेट है। इसे शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन बनाता है और इसका सबसे पहला मॉडल 2012 में दिखाया गया था। चीन का दावा है कि जो देश अपने लिए अमेरिका में बने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को नहीं खरीद सकते हैं, वो चीन से फाइटर जेट खरीद सकते हैं। चीन J-31 को शेनयांग FC-31 के नाम से भी जाना जाता है और इसे अमेरिकी F-35 और F-22 रैप्टर की एक घटिया कॉपी कहा जा सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि J-31 से चीनी वायुसेना खुद दूरी बनाकर रखती है। अमेरिका के F-16 लड़ाकू जहाज बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने F-22A रैप्टर फाइटर बनाया था, जिसकी गिनती दुनिया के अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों में होती है। जुलाई 2014 के आखिर में चीन की चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन चेंगडू ने J-20 लड़ाकू विमान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस जहाज की डिजाइनिंग F-22 रैप्टर और अमेरिकी नेवी में इस्तेमाल होने वाले F-35 स्ट्राइक फाइटर प्लेन से मिलती जुलती है।
0: जुलाई 2014 में अमेरिका ने एक चीनी बिजनेसमैन को पकड़ा था, जिस पर आरोप ये था कि उसने बहुत सारा डिफेंस डेटा चोरी किया है, जिसमें F-35 और F-22 का डेटा भी शामिल है और इसने चीन को दिया है। उसके बाद ये भी पता चला कि चीनी हैकर्स ने F-35 और F-22 का डेटा चुरा कर अपने यहाँ इसे बनाने की कोशिश की।
1: चीनी फौज LAC से लेकर दक्षिण चीन सागर में अपने हथियारों की नुमाइश के चाहे जितने भी स्वांग रचे, अपनी सेना का चाहे जितना भी झूठा पराक्रम दिखा ले, दुनिया जानती है कि वो अपने फर्जी हथियारों के दम पर जंग नहीं लड़ सकता। और यही वजह है कि वो आर पार या फिर आमने सामने की जंग से बचता है। इसीलिए उसने दुनिया को धमकाने का नया तरीका ईजाद कर लिया है, और वो तरीका था दुनिया भर के हथियारों को चुरा कर उसकी नकल तैयार करना। बीते 30 साल से चीन इसी मिशन में लगा हुआ है। चीन अपने इकलौते स्टेल्थ अटैक हेलीकॉप्टर Z-20 पर बहुत ज्यादा इतराता है, लेकिन सच तो ये है कि हेलीकॉप्टर और कुछ नहीं बल्कि अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की डुप्लीकेट कॉपी है। साल 2011 में अमेरिकी सील का एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान में क्रैश हो गया था। उसी मलबे को हासिल कर चीन ने जुगाड़ कर ये हेलीकॉप्टर बना डाला। ये देखने में भले ही ब्लैक हॉक जैसा हो, लेकिन काम कितना करता है इसे लेकर चीन ने भी कोई गारंटी नहीं दी है।

0: चीन जिस J-10 विमान को अपनी इजाद बताता है, अब उसका भी सच जान लीजिए। यह अमेरिका की F-16 की कार्बन कॉपी है। अमेरिका इस प्लेन को लावी के नाम से इसराइल के लिए बना रहा था। इसराइल से जानकारी, चीन ने हथियाई और हूबहू F-16 जैसा दिखने वाला जेट तैयार कर लिया। लेकिन ये जेट युद्ध भूमि में दम दिखाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
1: जहां तक चाइना के J-10 चेंगडू डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट का सवाल है, ये काफी हद तक उसने F-16 लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया गया डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को कॉपी किया है। चाहे वो बियॉन्ड विजुअल रेंज का एंगेजमेंट हो, चाहे टेक ऑफ हो, चाहे स्पीड हो, तमाम तरीके की एवियोनिक्स को उसने कॉपी किया। इसी वजह से देखिए, चाइना जब भी विश्व के मार्केट में एंटर करता है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे एरोनॉटिक्स हो, किसी भी में, वो ऐसे कंट्री में घुसता जहां की पिच अमेरिकन इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है, जिससे वो उसको कॉपी कर सके। पाकिस्तान में घुसा, सऊदी अरेबिया में घुसा, वहां से उसने इन सारे जो एयरक्राफ्ट हैं F-16 एयरक्राफ्ट, उसको कॉपी किया, उसका प्रोटोटाइप अपने यहां बनाया, और ये प्रोटोटाइप है J-10 एयरक्राफ्ट। ये काफी हद तक F-16 से मिलता हुआ, कुछ बेहतरी है, कुछ उस चीजों को नहीं काबू कर पाया जो उसने इसमें ऐड किया। साथ में उसमें मिसाइल की रेंज, जिसमें PL-15 मिसाइल की लो स्पीड एजिलिटी, यानी लो स्पीड में अगर एयरक्राफ्ट उड़ा तो कितना एजाइल होगा, उसमें उसने महारत हासिल की, और साथ में सेंसर को इंप्रूव किया, और कॉस्ट कटिंग के लिए तो चाइना जाना ही जाता है। इन सारी चीजों को इन्वॉल्व करके उसने J-10 बनाया, जो कि मोर और लेस F-16 का कॉपी है। ये बिल्कुल सही है।
0: जब डिजाइन चोरी की हो और डुप्लीकेट माल बनाने की हो तो चीन किसी को नहीं बख्शता। रूस ने जब चीन को अपने सुखोई 33 विमान के डिजाइन सीक्रेट देने से मना कर दिया, तो चीन ने यूक्रेन से SU-33 का एक विमान ट्रेनिंग के लिए खरीदा और उसकी डुप्लीकेट कॉपी J-15 के नाम से तैयार कर डाली। दिखता भले ही ये सुखोई जैसा है, लेकिन असली सुखोई के सामने कितनी देर तक टिकेगा, ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिकी ट्रेड वॉर के चलते चीन और रूस एक दूसरे के नजदीक आए। बावजूद इसके, रूस अपने कई हथियारों की टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण चीन को नहीं करता है। भारत और चीन ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है, लेकिन रूस ने भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर हस्ताक्षर किए, जबकि चीन के साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया। चीन अपने J-11B को लेकर बहुत ज्यादा इतराता है। अब इसके बनने की कहानी आपको बताते हैं। दरअसल सोवियत संघ के विघटन के बाद जब रूस में नगदी का संकट हुआ, तो रूस ने अपने Su-27 को चीन को बेचने का ऐलान किया, और जिसमें दोनों देशों के बीच में डील हुई कि 200 विमानों का आदान प्रदान होगा। बाद में जाके 100 विमान चीन ने खरीदे और इस डील को तोड़ दिया। अब उसी तकनीक पर चीन ने अपने इस विमान को ईजाद किया। शेनयांग J-11B दिखने में रूस के S-27 जैसा है। चीन ने नकल करके शेनयांग J-11B बना तो लिया, लेकिन ताकत और क्षमता के मामले में रूस के सुखोई 27 के पास तक नहीं फटक पाता। अमेरिका का ये दूसरा सबसे बेहतरीन नंबर का विमान है F-22, जिसे हथियार की दुनिया में रैप्टर के नाम से जाना जाता है। 1999 में युगोस्लाविया में नाटो कार्रवाई के दौरान एक अमेरिकी F-22 जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चीन ने इसका मलबा हासिल कर लिया और इसकी भी डुप्लीकेट कॉपी J-20 के नाम से तैयार कर डाली। चीन की कंपनी स्टार यूवी सिस्टम ने स्टार शेडो के नाम से एक ड्रोन डेवलप किया है, जो अमेरिका के मौजूदा X-47B का क्लोन दिखता है। चीन ने पहले इस ड्रोन के फोटो और डिजाइन हासिल किया और बाद में ईरान में एक दुर्घटनाग्रस्त ड्रोन को हासिल करके इसकी टेक्नोलॉजी बना ली। वहीं अमेरिका में मौजूद एक चीनी जासूस ने X-47B ड्रोन के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और दस्तावेजों को चीन को बेच दिया। माना जाता है कि X-47B ड्रोन की बाकी पेचीदगियां चीन ने साइबर अटैक के जरिए हासिल कर ली।
2: चीनी हथियारों, उनकी कहानी तो बहुत लंबी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चीनी हथियारों पर कितना भरोसा किया जा सकता है। वैसे पूरी दुनिया देख भी चुकी है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, दुनिया जानती है। लेकिन सवाल यह है कि चीन ने अपने इन्हीं हथियारों की बदौलत बहुत सारे देशों को अपने कर्ज के जाल में भी फंसा रखा है। लेकिन भरोसा कितना है वो तमाम देश जानते हैं। चीन पर भरोसा करना मतलब धोखा खाना।
0: चीन की कंपनियों के प्रति कम होते विश्वास का असर उसके हथियार कारोबार पर भी दिखने लगा है। दुनिया भर में चीन की कंपनियों के प्रति पहले ही विश्वास उठ चुका है। अब चीन से हथियार खरीदने वाले देश भी दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं।
2: प्रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिलती है।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी गुड न्यूज टुडे पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजना है। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर सदर बाजार से शिवानी राठौर ने गणेशोत्सव का शानदार वीडियो भेजा है। बप्पा की एक बड़ी प्रतिमा के साथ भगवान गजानन की छोटी छोटी मूर्तियां भी पंडाल में सजाई गई हैं। पूरे पंडाल की थीम को गुलाबी रंग से सजाया है। बप्पा को गुलाबी पगड़ी और गुलाबी वस्त्र के साथ गुलाब की माला पहनाई गई है। तो वहीं दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के सोलापुर से विजय कुमार कुलकर्णी ने हमें गणेशोत्सव की भेजी है। भगवान गजानन को खूबसूरत कमल की माला पहनाई गई है, साथ ही सर पर फूलों से बना मुकुट शोभायमान है। हाथ में दूब घास लिए बप्पा के हाथी और गौ माता निहार रहे हैं। यहाँ बप्पा को नंदी के साथ दर्शाया गया है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: जिसने हिला दिया महाराष्ट्र, जिसे कांप रहे हैं मिलावटखोर, हाईकोर्ट की कैंटीन पर लगा दिया ताला, सब्जी बेचकर पढ़ाई, बेईमानों से लड़ाई, बंदे में है दम, शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
6: दूब घास का धार्मिक महत्व क्या है? दूब घास के प्रयोग से काम की बाधाएं कैसे दूर हो सकती हैं, और दूब घास से गणपति का क्या संबंध है, जानिए दूर्वा यानी दूब घास की महिमा सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
8: डीयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित, अध्यक्ष समेत 3 पदों पर एबीवीपी ने हासिल की जीत, उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन रहे विजय। तेलंगाना के पलवंचा में करोड़ों के नोटों से सजे गणपति बप्पा, 2,90,00,000 रुपए के नोटों के पंडाल की सजावट, 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोटों का किया गया इस्तेमाल। राधा अष्टमी के मौके पर बरसाने में आस्था और उल्लास का संगम, गलियों में सुनाई दे रही बधाई और मंगल गीतों की गूंज, भव्य रूप से मनाया जा रहा श्री राधा रानी का जन्मोत्सव। नैनीताल के नंदा देवी महोत्सव में उमड़ा आस्था का मेला, मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, 23 सितंबर तक चले गए उत्सव। रूस की यात्रा पर पहुंचे सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ का अनोखा सम्मान, सेंट पीटर्सबर्ग के ऐतिहासिक पीटर एंड पॉल किले में ट्रेडिशनल तोप से दागे गोले। पुलवामा के काकापुरा स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जवानों का मॉक ड्रिल, चाक चौबंद इंतजाम के हुए परख।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबर।
9: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। एक बार फिर से लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस निर्भीक शख्सियत का सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने महाराष्ट्र में मिलावटखोरी करने वाली और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाली लॉबी के खिलाफ ऐलानी जंग कर दिया है। महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कमिश्नर बनने के बाद इस शख्स ने अपने ताबड़तोड़ एक्शन से लोगों की सेहत की कीमत पर मुनाफाखोरी करने वाली लॉबी की नींद उड़ा कर रख दी है।

0: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कमिश्नर तुकाराम मुंडे हैं। महाराष्ट्र की जनता जिन्हें अब सिंघम आईएएस कहने लगी है। 25 मई 2026 को एफडीए के कमिश्नर पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही तुकाराम एक्शन मोड में है। इनके कमिश्नर बनने के बाद महाराष्ट्र के होटल्स, रेस्टोरेंट, कैफे और कन्फेक्शनरीज के मालिक और मालकिनों को पहली बार एहसास हुआ कि उनका काम सिर्फ आंखें मूंद कर मुनाफा वसूली करना नहीं है बल्कि लोगों की सेहत और हाइजीन का कायदे से ख्याल रखना भी है। चार महीने से भी कम में इनके कार्यकाल में महाराष्ट्र के होटल्स और रेस्टोरेंट्स की सूरत बदल गई है। आम लोग इनकी कार्यशैली से काफी खुश हैं।
1: अंधेरा कितना ही घनघोर क्यों ना हो, एक दिया काफी होता है उस अंधेरे की कालिमा को चीरने के लिए। और उजाले की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि वो व्यवस्था की वस्तु स्थिति को उजागर कर देता है। महाराष्ट्र के एक आईएएस अधिकारी ने अदम्य इच्छा शक्ति, नेक नियति और कर्तव्य निष्ठा के रथ पर सवार होकर व्यवस्थागत नियमों का दीप प्रज्वलित किया तो कई नामचीन संस्थाओं, कंपनियों और हस्तियों के स्याह चेहरे उजागर हो गए। महाराष्ट्र के इस युगांधर आईएएस अधिकारी का नाम है तुकाराम हरिभाऊ मुंडे। एक ऐसा नौकरशाह जिसने अपनी जिम्मेदारियों के तर्जे अमल की बेहतरीन नजीर पेश कर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश भर के ब्यूरोक्रेट्स को बता दिया है कि अगर वो सच्ची निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें तो करोड़ों हिंदुस्तानियों की बहुत सी दुश्वारियां यूं ही खत्म हो जाएंगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कैडर के आईएएस ऑफिसर के तौर पर साल 2006 में सोलापुर के असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर ज्वाइनिंग के बाद से अब तक तुकाराम मुंडे हर रोज आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सीधे तौर पर सुनते हैं।
2: That's where you pointed out that I meet people during 4 to 5 every day. So that's a connect with the people, and it's a practice I have been doing it since I joined the service, not now. So I believe that if public servant or civil servant is to serve in a public space, so who am I serving? Each and every individual. So if I do not know or do not meet them, do not connect with them, how would I know what are the issues? What are they facing?
1: 21 साल के प्रशासनिक सफर में 25 से ज्यादा तबादलों का दंश झेल चुके तुकाराम मुंडे को 25 मई 2026 को महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई। तुकाराम जब से एफडीए के कमिश्नर बने हैं मिलावटखोर, मुनाफाखोर, धांधलेबाज पनाह मांग रहे हैं। उन्हीं के विभाग के भ्रष्ट, बेईमान और कामचोर मातहत कर्मचारी त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन जनता बहुत प्रसन्न है। सच कहें तो आम लोगों को पहली बार पता चला है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कितने काम का विभाग है। बीते 15 सितंबर को तुकाराम ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट कर कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर चल रही एक ऐसी धांधली उजागर की है जिसे आम जनता पूरी तरह अनजान थी। अस्पतालों के मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोक्योरमेंट को लेकर तुकाराम मुंडे ने जो खुलासा किया है उसने सनसनी मचा दी है। 15 सितंबर को अपनी एक्स पोस्ट में तुकाराम ने लिखा है, महाराष्ट्र में हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों पर किए गए सर्वे में ये पाया गया कि एक आईवी इन्फ्यूजन सेट की एक्चुअल खरीद करीब 11 रुपए होती है जबकि इस पर MRP 325 रुपए लिखी होती है, यानी 2841% का मार्कअप। बढ़ोतरी, एक सिरिंज 6.75 रुपए में खरीदी जाती है जबकि उस पर MRP लिखी होती है 57.20 रुपए। एक कैथेटर 29.41 रुपए में खरीदा जाता है जबकि उस पर MRP लिखी होती है 310 रुपए। कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में भर्ती होने वाले मरीज के डिस्चार्ज से पहले परिजनों को जब बिल दिया जाता है तो उसे देखकर उनकी पेशानियों पर पसीने की बूंदें छलकने लगती हैं। उन्हें क्या पता कि इस भारी भरकम बिल के पीछे नौकरशाहों और हॉस्पिटल्स की दुरभिसंधि का हाथ है। बहरहाल अगर तुकाराम जैसे मसीहा के हाथ में कमान हो तो जनता राहत की उम्मीद कर सकती है। महाराष्ट्र FDA की ओर से सामने रखे गए सर्वे के नतीजों के बाद ट्रेड प्रोक्योरमेंट प्राइस और घोषित MRP के बीच अंतर को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हॉस्पिटल्स के साथ ही मोटे मुनाफे के लिए जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले होटल्स, रेस्तरां कॉन्फेक्शनरीज, डेयरीज, कैफे और फूड एंड एग्रो फैक्ट्रीज पर भी तुकाराम मुंडे कहर बनकर बरस रहे हैं। त्योहारी मौसम में मुनाफाखोरों की चांदी हो जाती है, इसलिए मिलावट का धंधा चरम पर पहुंच जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम के बीच फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मुंबई के मशहूर बार और रेस्तरा कैफे मुंडेगर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। FDA ने अपनी जांच में पाया कि गर्म खाने की चीजों को जरूरी तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर नहीं रखा जा रहा था और कोल्ड स्टोरेज का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम पर नहीं रखा जा रहा था। इसके साथ ही खाना बनाने वाली जगह ड्रेनेज सिस्टम तय मानकों के मुताबिक नहीं था, जिससे क्रॉस कंटामिनेशन का खतरा था। सोचिए, सरकार ने पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखकर कितने अच्छे रेगुलेशंस बनाए हैं, पर इन रेगुलेशंस के कंप्लायंस को लेकर नौकरशाहों में इतनी बेफिक्री बेपरवाही है कि रेस्तरा या कैफे मालिकों को कौन कहे, आम जनता भी उदासीन हो जाती है। नतीजा ये होता है कि पैसे देकर होटल्स में खाना खाओ और तोहफे के तौर पर बीमारी घर ले आओ। पर FDA के कमिश्नर के तौर पर तुकाराम ने पूरे देश को चता भी दिया है और बता भी दिया है कि कानून की किताब ठंडे बस्ते में डालने के लिए नहीं होती। क्या तुकाराम से पहले किसी ने सोचा होगा कि भंडारे, महाप्रसाद, लंगर या सामूहिक भोज के लिए भी गाइडलाइंस जारी की जा सकती है? महाराष्ट्र FDA ने इसके लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके मुताबिक भंडारा, महाप्रसाद, लंगर या किसी सामूहिक भोज के आयोजन से कम 7 दिन पहले ऑनलाइन फॉर्म जमा करना पड़ेगा। ऐसे आयोजनों में सिर्फ लाइसेंस प्राप्त कैटरर्स की ही सेवाएं ली जा सकेंगी। खाना बनाने और पीने के लिए साफ या आरओ वाटर ही इस्तेमाल करना होगा। खाना बनाने और परोसने वाले वॉलेंटियर्स के लिए मास्क, दस्ताने और हेड कैप पहनना जरूरी होगा। भंडारों में आमतौर पर हाइजीन को अनदेखा कर दिया जाता है। इसमें खाना खाने वाले आमतौर पर मुफलिसी के मारे लोग ही होते हैं, इसलिए हाइजीन को लेकर आपत्ति दर्ज कराने का सूरते हाल नहीं होता। पर तुकाराम बचपन में बेबस गुर्बत की कड़वी हकीकत से बाबस्ता हो चुके हैं, इसीलिए गरीबों के दर्द को जानते हैं। वैसे FDA की भंडारे वाली गाइडलाइंस का हर तबके के लोग स्वागत कर रहे हैं।
3: नहीं, ये जो निर्णय लिया है वो अच्छा लिया है, जो भी है वो सबके हित के लिए ही है। अगर जो भी भंडारा या जो भी होता है उसमें अगर क्लीननेस रहेगा तो ये सबके हेल्थ के लिए अच्छा है।
4: इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज फॉर द गुड ऑफ द पीपल, गुड ऑफ द कम्युनिटी, और ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और उनकी जो भी गाइडलाइंस है, ऑफकोर्स वो डिटेल में देखेंगे, जैसे कि हमारा मंडल होता है या ग्रुप्स होते हैं जहां पर ये सारी चीजें होती है, भंडारे एंड ऑल, वो उनको फॉलो करना चाहिए। और ये सभी के लिए है, गवर्नमेंट अगर कुछ पॉलिसीज ला रही है।
1: साफ है कि गरीब या आम जनता की सेहत और स्वास्थ्य को लेकर तुकाराम मुंडे बहुत संवेदनशील हैं। दूसरी ओर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट की अनदेखी करने वाली रसूखदार और पावरफुल लॉबी के खिलाफ एक्शन लेने में वो जरा भी हिचकिचाते नहीं है। अंजाम की परवाह किए बगैर तुकाराम ऐसी लॉबी से सीधा हेड ऑन कर लेते हैं। तुकाराम ने विमल इलायची का विज्ञापन करने पर बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान समेत अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को 14 अगस्त 2026 को नोटिस भेज दिया था। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया कि विज्ञापन में इलायची के नाम पर पान मसाले का प्रमोशन हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र में तंबाकू उत्पादों पर बैन है।
2: जो नोटिस इश्यू किया गया है अबाउट एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन वायलेशन, उनको नोटिस रेगुलेशन 2018 के हिसाब से दिया गया है और सेक्शन 24 ऑफ फसाई एक्ट जो है उसके हिसाब से दिया गया है। क्योंकि ये गुटखा और जो प्रोडक्ट है महाराष्ट्र में बैन है और उसका एडवर्टाइजिंग ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग में आता है, इसलिए हमने उनको नोटिस दिया, उनको टाइम दिया है।
1: साफ है कि निर्भीक तुकाराम रसूखदारों और पावरफुल लॉबीज के खिलाफ एक्शन लेने में जरा भी परहेज नहीं करते, हालांकि उन्हें इस नायकत्व के लिए धमकियां भी मिलती रही हैं। पर जो इंसान कर्तव्य परायणता का दिया अपने हाथों में लेकर लोकहित के अग्निपथ पर निकल जाता है, वो रास्ते में आने वाले सेहरा या बयाबा की परवाह नहीं करता। नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने और नियमों की अनदेखी करने वालों पर घास गिराने की वजह से शुरू से ही इनकी राह में कांटे बिछाए जाते रहे हैं, लेकिन एक सच्चे योद्धा की तरह हर मुश्किलों का ये डट कर मुकाबला करते हैं। आत्मा अगर गवाही दे तो बड़े से बड़ा एक्शन लेने से भी परहेज नहीं करते।
2: Once you do that and if you are a public servant, what is my role? That's the question I ask as a public servant. And if my role is to contribute for the betterment of the society, should I trade that part or should I compromise on that part? That was the question I ruminated upon. And the answer I got is I should trade this part, whatever the cost may be. Maybe sometimes it is less or more, whatever it is. That's a choice, and that's a choice I made. And I don't think I regret anything of that today.
1: कहने की जरूरत नहीं कि साल 2026 में लोक सेवा का व्रत लेने के बाद से ही तुकाराम व्यापक जनहित के पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ रहे हैं। 21 साल के सफर में 25 बार ट्रांसफर की दुश्वारी झेली, लेकिन जहां भी पोस्टिंग हुई, जिस विभाग की भी जिम्मेदारी मिली, पूरी क्रांति ला दी। 25 मई 2026 को FDA कमिश्नर बनने के बाद से ऐसे ऐसे साहसिक काम किए हैं कि नियमों की धजिया उड़ाने वाले पनाह मांग रहे हैं। महाराष्ट्र FDA का कमिश्नर बनने के बाद पहले हफ्ते में ही उन्होंने सब स्टैंडर्ड और मिलावटी सामान बेचने वाले 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे और 100 लोगों को गिरफ्तार किया। उपचार के दावे वाले भ्रामक विज्ञापन दिखाने के आरोप में पतंजलि के आउटलेट पर छापे मारे और 51 लाख रुपए का सामान जब्त कर लिया। ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के 86 वेयर हाउसेज की जांच की और नियमों की अनदेखी की वजह से 14 वेयर हाउसेज के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। मुंबई में डोमिनोज पिज्जा के 4 आउटलेट के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर यानी बिना डेयरी से बने पनीर पर 1 साल तक के लिए बैन लगा दिया। तुकाराम मुंडे के इन ताबड़तोड़ एक्शन से महाराष्ट्र की आम जनता राहत महसूस कर रही है। दूसरी ओर होटल्स, रेस्तरा, कॉन्फेक्शनरीज, डेयरीज, कैफे और फूड एंड एग्रो फैक्ट्रीज के मालिकों को पहली बार यह एहसास हुआ है कि उनका काम सिर्फ मुनाफा ऐंठना नहीं है, बल्कि लोगों की सेहत का, स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखना है।
0: ऐसा नहीं है कि FDA का कमिश्नर बनने के बाद से ही तुकाराम एक्शन मोड में आए हैं। महाराष्ट्र कैडर का IAS अधिकारी बनने के बाद से ही तुकाराम नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर वज्रपात करते रहे हैं और इसके लिए कई बार इन्हें धमकियां भी मिली, राह में रोड़े अटकाए गए, लेकिन तमाम चुनौतियों के बाद भी कभी भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं हुए। एक गरीब किसान परिवार में जन्म लेने वाले तुकाराम ने बचपन में गरीबी का दंश झेला है, जीवन की दुश्वारी देखी हैं, पैदावार के लिए खेतों में पसीना बहाया है और इसलिए इनका व्यक्तित्व फौलादी हो गया। हालात से हार नहीं मानने का जज्बा पैदा हो गया।

0: तुकाराम मुंढे आज महाराष्ट्र में आइडियल ब्यूरोक्रेसी की मिसाल बन चुके हैं। उनकी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता गरीब मजलूम लोगों के स्वास्थ्य और सेहत की उम्मीद की लौ बन चुकी है। जबकि महाराष्ट्र में नियमों की अनदेखी करने वाले फूड और ड्रग बिजनेस से जुड़े प्रतिष्ठानों को हर पल तुकाराम का डर सता रहा है। बतौर एफडीए कमिश्नर 4 महीने से भी कम के इनके कार्यकाल में एफडीए 12,000 से ज्यादा निरीक्षण और छापेमारी कर चुका है। इनमें से 900 से ज्यादा हाई इंपैक्ट रेड्स शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन की वजह से महाराष्ट्र में कुल 603 कॉमर्शियल लाइसेंस सस्पेंड किए जा चुके हैं। मिलावटखोरी, प्रतिबंधित गुटखा या पान मसाला बेचने और नियमों की अनदेखी के मामले में 875 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इतना ही नहीं, एफडीए ने ऐसे मामलों में 650 से ज्यादा FIR भी दर्ज कराई है। तुकाराम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वे नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों या व्यक्तियों के कद या रसूख से बेपरवाह रहते हैं। एफडीए ने नामी गिरामी फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला की पुणे स्थित यूनिट का 26 अगस्त को निरीक्षण किया और पैकेजिंग, स्टोरेज और खरीद बिक्री के रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी और अनियमितता पाने पर इस यूनिट का सेल्स लाइसेंस रद्द कर दिया। तुकाराम के ताबड़तोड़ एक्शंस की जद में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी MCA भी आ चुका है। एफडीए ने MCA के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित 5 फूड आउटलेट्स पर 20 अगस्त को छापा मारकर 5 के FSSAI लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। इतने हाई प्रोफाइल प्रतिष्ठानों के खिलाफ एक्शंस होंगे तो मामला कोर्ट में पहुंचेगा ही। MCA ने FDA के एक्शन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया तो कोर्ट ने तुकाराम मुंडे को कड़ी फटकार लगा दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हम FDA को कितनी बार समझा चुके हैं कि मच्छर को तलवार से मत मारो, क्या आप खुद को लॉर्ड समझते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं? तुकाराम को फटकार लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनसे ये भी पूछ लिया कि FDA सिर्फ निजी संस्थानों पर छापेमारी क्यों कर रहा है, कानून का पालन तो सरकारी परिसरों की कैंटीन्स में भी होना चाहिए। तुकाराम भी कहां मानने वाले थे, उन्होंने अगले ही दिन बॉम्बे हाईकोर्ट कैंपस की 3 कैंटीनों पर रेड कर दी और 2 कैंटीन के लाइसेंस कैंसिल कर दिए।
1: ड्यूरिंग द हियरिंग द क्वेश्चंस वर एज वेदर यू आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट ओनली प्राइवेट और टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट, वी आर टेकिंग, वी हैव द डेटा टू बैक इट अप एंड इन दैट कोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेज हैव यू inspected Mantralaya canteen, so we had already done that. So then have you inspected or visited High Court canteen also, which we had not done. So I said we have not done that, but we have done this one. So High Court expects that it should be visited. Well, fine, next day my team goes and finds it out whatever it is there.
0: बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन पर रेड डालकर तुकाराम ने ये साबित कर दिया कि वो अलग ही मिट्टी के बने हैं। आपको बता दें कि इस तरह की चुनौतियां तुकाराम अपने सर्विस पीरियड में अनेकों बार फेस कर चुके हैं। साल 2006 में सोलापुर में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर अपनी पहली पोस्टिंग में रेत माफियाओं पर एक्शन लिया तो उन पर जानलेवा हमला हो गया। साल 2007 में नांदेड़ में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई की तो 5 महीने में तबादला हो गया। 2012 में मुंबई सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुई तो टैक्स चोरों से 310 करोड़ रुपए वसूल लिए। साल 2014 में कलेक्टर बनकर दोबारा सोलापुर पहुंचे तो टैंकर माफियाओं की नकेल कस दी, जिसके बाद इन्हें महाराष्ट्र का वाटरमैन कहा जाने लगा। मार्च 2017 में पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड के चेयरमैन बने तो ड्यूटी से लंबे समय से गायब चल रहे 158 कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवरों को एक साथ सस्पेंड कर दिया। साल 2022 में महाराष्ट्र के हेल्थ केयर कमिश्नर बने तो सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करवा दी। कहने की जरूरत नहीं कि तुकाराम मुंडे को जो भी जिम्मेदारी मिली उन्होंने कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की नई लीक खींच दी। दरअसल इस इंसान का पालन पोषण चांदी के चम्मच से नहीं हुआ है, इनका बचपन बहुत ज्यादा दुश्वारियों और आर्थिक तंगी के बीच बीता है। महाराष्ट्र के बीड जिले के गुमनाम से गांव ताड़सोना के एक गरीब किसान परिवार में 3 जून 1975 को जन्मे तुकाराम के पिता के पास इनके लिए चप्पल खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, लिहाजा ये बिना चप्पल के नंगे पांव स्कूल जाते थे। दिन में पढ़ाई करते थे और रात में खेतों की सिंचाई का काम भी करते थे। क्या आप यकीन करेंगे कि तुकाराम मासूम उम्र में सिर पर सब्जियां रखकर साप्ताहिक बाजार जाते थे और उन्हें बेचकर पैसे ले आते थे ताकि घर की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकें। इतनी हार्डशिप में रहकर भी ये अपने क्लास में टॉप करते थे। तभी तो साल 2005 में तुकाराम ने यूपीएससी क्रैक किया और ऑल इंडिया 20वीं रैंक हासिल की। आज वही ताड़सोना गांव का गुदड़ी का लाल ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का दिया जलाकर नौकरशाहों को सच्चाई की राह दिखा रहा है।
2: बंदे में है दम में आज आपने महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को देखा। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी गुड न्यूज टुडे पर मनाए जा रहे इस उत्सव के साथ जुड़िए, और इसके लिए आपको करना बस इतना है कि आपके घर पर पधारे गजानन का वीडियो आपको बनाना है और उस वीडियो को हमें भेजना है, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। देखिए हमारे पास लगातार जो दर्शक है वो अपने वीडियोस भी भेज रहे हैं, तो हमारे दर्शकों द्वारा भेजी गई दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो पहली तस्वीर है वो मेघालय से ज्योति सिंह ने भेजी है, उन्होंने गणेशोत्सव के मौके पर बप्पा की मनमोहक प्रतिमा जो है वो स्थापित की है, रंग बिरंगे फूलों के अलावा धूप खास से भगवान गजानन का श्रृंगार किया गया है, मंदिर को सलीके से सजाया भी गया है जो कि काफी प्यारा लग रहा है। वहीं दूसरी वीडियो दिल्ली के मुंडका के हिमालय कामवाल ने भेजी है, शानदार श्वेत पगड़ी के साथ श्वेत वस्त्रों में विराजमान बप्पा को खूबसूरत फूलों से विशेष कर सजाया गया है, भगवान गजानन को फलों का भोग भी लगाया गया है, साथ ही अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं तेलंगाना में गणेशोत्सव की झलक। देखिए तेलंगाना के पलवांचा में करारे करेंसी नोटों से गणपति का श्रृंगार किया गया है, यहाँ दो गणेश प्रतिमाओं को 2,90,00,000 के करेंसी नोटों से विशेष तौर पर सजाया गया है। एक प्रतिमा बापूजी नगर में स्थापित की गई है जहाँ कापू समुदाय ने विशेष पूजा का आयोजन किया और गणेश प्रतिमा को 1,40,00,000 रुपए के नोटों से सजाया। इस अनोखे ढंग से सजाई गई प्रतिमा को देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पे भक्त भी जुट रहे हैं। वही दूसरी ओर एक और जगह पर टीम एक दंत यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने गणेश प्रतिमा को 1,50,000 रुपए के करेंसी नोटों से सजाया है। इस अनोखी सजावट ने लोगों का काफी ध्यान खींचा और बड़ी संख्या में भक्त प्रतिमाओं को देखने के लिए वहां पर पहुंच भी रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें नैनीताल की। नैनीताल के नंदा देवी महोत्सव में आस्था का समंदर उमड़ पड़ा है। यहाँ पर मां नैना देवी मंदिर में नंदा देवी महोत्सव में ब्रह्म मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। नैनीताल के मां नैना देवी मंदिर में मां नंदा सुनंदा की प्रतिमाओं की विधि विधान और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई। तड़के 3 बजे से ही श्रद्धालु मां के दर्शन पूजा अर्चना के लिए वहां पर पहुंचने लगे। भक्तों ने मां से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। 23 सितंबर को यहां पर मां नंदा सुनंदा का भव्य डोला निकाला जाएगा, मां की प्रतिमाओं को नगर भ्रमण कराया जाएगा। नगर भ्रमण के बाद मां नंदा सुनंदा की प्रतिमाओं का नैना झील में विसर्जन भी किया जाएगा। कुमाऊं की लोक मान्यता में ये मां को उनके मायके से ससुराल विदा करने का भावुक क्षण माना जाता है। अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में स्थित श्री देवी भूदेवी समेथा श्री वैकुंठपति पेरुमल मंदिर की। तो मंदिर में प्रथम पुरात्सी शनिवार के पावन अवसर पर भव्य तरीके से विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। पुरात्सी महीने के पहले शनिवार के उपलक्ष्य में भगवान श्री वैकुंठपति पेरुमल यानी भगवान विष्णु और देवी श्रीदेवी और भूदेवी की मूर्तियों का विशेष द्रव्यों से महाअभिषेक किया गया। इस अवसर पर देवी देवताओं को भव्य पारंपरिक रेशमी वस्त्रों, कीमती आभूषणों और सुगंधित फूलों की मालाओं से सजाया गया और इसके साथ ही उनका अलौकिक श्रृंगार भी किया गया। तमिल संस्कृति की अगर हम बात करें तो संस्कृति में पुरात्तासी का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। माना जाता है कि इस महीने के शनिवार के दिन पेरुमल मंदिर में की जाने वाली पूजा से शनि दोष दूर होता है और जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। इस विशेष अवसर पर तड़के सुबह से ही मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। थूथुकुड़ी और आसपास के इलाकों में हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो भगवान पेरुमल और देवियों के दर्शन तथा विशेष दीप जलाने के लिए मंदिर पहुंचते हैं। तो आपको बता दें कि पुरात्तासी शनिवार और इस पूरे पवित्र महीने के दौरान गायों की पूजा का भी बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, इसीलिए इस अवसर पर मंदिर में गायों की पूजा भी की जाती है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: दूब घास का धार्मिक महत्व क्या है? दूब घास के प्रयोग से काम की बाधाएं कैसे दूर हो सकती हैं? और दूब घास से गणपति का क्या संबंध है? जानिए दूर्वा यानी दूब घास की महिमा सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: रख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: दीव छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित, अध्यक्ष समेत 3 पदों पर एबीवीपी ने हासिल की जीत, उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन रहे विजयी। तेलंगाना के पलवंचा में करोड़ों के नोटों से सजे गणपति बप्पा, 2,90,00,000 रुपए के नोटों से पंडाल की हुई सजावट, 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोटों का किया गया इस्तेमाल। राधाअष्टमी के मौके पर बरसाने में आस्था और उल्लास का संगम, गलियों में सुनाई दे रही बधाई और मंगल गीतों की गूंज, भव्य रूप से मनाया जा रहा श्री राधा रानी का जन्मोत्सव। नैनीताल के नंदा देवी महोत्सव में उमड़ा आस्था का मेला, मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, 23 सितंबर तक चलेगा ये उत्सव। रूस की यात्रा पर पहुंचे सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ का अनोखा सम्मान, सेंट पीटर्सबर्ग के ऐतिहासिक पीटर एंड पॉल किले में ट्रेडिशनल तोप से दागे गोली।

तेलंगाना में गणेश चतुर्थी का शानदार जश्न पलवंचा शहर के पंडाल में कुल 9.90 करोड़ रुपए के नोटों से सजाई गई बप्पा की प्रतिमाएं। गजानन की एक प्रतिमा पर 1,40,00,000 के नोट से हुई भव्य सजावट। बापूजी नगर में कपू समाज ने खास पूजा के साथ किया गणपति का अनोखा श्रृंगार। पंडाल के प्रवेश द्वार से लेकर गणपति के दरबार तक रंग बिरंगी मालाओं से सजाया गया पंडाल। अनोखी सजावट देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। भगवान गणेश की दूसरी प्रतिमा का 1,50,00,000 रुपए से हुआ श्रृंगार। टीम एकादंत यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने की खास सजावट। स्थानीय व्यापारियों से चंदा इकट्ठा करके किया गया इस श्रृंगार। आयोजकों के मुताबिक बैंकर्स ने भी सजावट के लिए नए नोट उपलब्ध कराकर मदद की। हुबली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के घर में विराजे गजानन। विसर्जन से पहले प्रहलाद जोशी ने की पूजा अर्चना। पुणे के डगरूशेठ गणपति पंडाल में उमड़ा आस्था का मेला। बप्पा को अर्पित किया गया 251 किलो का मोदक केक। अमरावती में बद्रीनाथ धाम मंदिर की थीम पर सजाया गया गणेशोत्सव पंडाल। दूर दूर से देखने पहुंच रहे हैं। गणपति बप्पा के साथ भक्तों को बद्रीनाथ धाम के भी हो रहे दर्शन। रंगीन लाइटों से सजाया गया पंडाल। अमरावती में 41 सालों से अलग अलग थीम पर पंडालों को सजाने की है परंपरा। रुक्मणी गणेश उत्सव मंडल की ओर से होता है इसका आयोजन। सूरत के महिधरपुरा इलाके में गणेश उत्सव का अनोखा रंग। हॉरर की थीम पर तैयार किया गया है पंडाल। डरावनी फिल्म की तर्ज पर बनाया गया पंडाल का माहौल। गजानन के दर्शन से पहले भक्तों को मिलता है अलग ही रोमांच। सूरत के महिधरपुरा में हर साल अलग अलग थीम पर पंडाल बनाने की परंपरा है। उत्सव को अलग स्वरूप देने की होती है कोशिश। मुंबई में 6 दिनों में 32,000 से अधिक बप्पा की प्रतिमाओं को दी गई विदाई। बीएमसी ने जारी किया आंकड़ा। मुंबई में अब तक 31,500 घरेलू गणपति प्रतिमाओं का हो चुका है विसर्जन। सार्वजनिक गणेश मंडलों के 650 मूर्तियों का विसर्जन। बरसाना में धूमधाम से मनाई जा रही है राधा अष्टमी। जन्मोत्सव पर मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। राधा रानी का 11 क्विंटल दूध से हुआ अभिषेक। दही घी और शहद से भी कराया गया स्नान। राधा रानी मंदिर में हुई भव्य आतिशबाजी। महाअभिषेक के बाद हुई आरती। जयकारों से गूंजा पूरा बरसाना। राधा अष्टमी पर बरसाना से पूरे ब्रज में भक्तिमय माहौल नजर आया। दूर दूर से उत्सव में शामिल होने पहुंचे भक्त। राधा अष्टमी के लिए बरसाना में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भक्तों की सुविधाओं का भी रखा जा रहा है पूरी तरीके से ख्याल। नैनीताल के नंदा देवी महोत्सव में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। भक्तों ने किए मां नंदा सुनंदा के दर्शन। ब्रह्म मुहूर्त में मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शनार्थियों का उमड़ा हुजूम। भक्तों ने मां अक्षत फूल नारियल चढ़ाकर मां की पूजा अर्चना की। रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया मंदिर परिसर। रोशनी में बिखरी दिव्य छटा। वेद मंत्रों के उच्चारण से नंदामय हुआ मंदिर का माहौल। भक्तों ने जमकर लगाए जयकारे। मां नंदा देवी महोत्सव 23 सितंबर तक रहेगा जारी। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। रायसेन में अनोखे धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान। दादा धुनी दरबार में 1,51,000 किलो सामग्री की गई अर्पित। सोना चांदी भी किया जा रहा है अर्पित। अब तक

0: करीब 1.5 किलो सोना और 4 किलो से ज्यादा चांदी चढ़ाने का दावा। हवन सामग्री में 251 तरह की जड़ी बूटियां भी शामिल, फल फूल और मिठाई के साथ हवन में डाली गई जड़ी बूटियां। हवन आयोजन ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, आयोजकों को मिला इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र। इक्यावन दिन चलेगा धार्मिक आयोजन, गुरु पूर्णिमा से शुरू हुआ आयोजन, नर्मदा संकीर्तन भी रहेगा जारी। पंजाब के ऐतिहासिक फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, टेका मत्था, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फतेहगढ़ साहिब से दूसरे नशा मुक्ति यात्रा को हरी झंडी दिखाई, नशे से प्रभावित परिवारों से भी की मुलाकात। पंजाब में 4000 किलोमीटर का सफर तय करेगी ये यात्रा, 30 सितंबर को जालंधर में होगा इसका समापन, गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मान सरकार का बड़ा तोहफा, डीए में 8% की बढ़ोतरी, करीब 8 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा इसका लाभ। त्योहारी सीजन से पहले कर्मचारियों को बड़ी सौगात, बढ़ा हुआ डीए 1 अक्टूबर से जारी होगा, 4% की 2 किस्तों में मिलेगा लाभ। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित हुए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 3 सीटों पर ऐतिहासिक जीत, अध्यक्ष बने यश डवास। सचिव पद पर रिया छाबड़ी ने दर्ज की जीत, सह सचिव पद पर लक्ष्य राज सिंह की शानदार विजय, उपाध्यक्ष बने निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकी। तमिलनाडु के मरीना बीच पर चलाया गया सफाई अभियान, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने भी लिया इसमें हिस्सा। पुलवामा के काकापुरा स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जवानों का मॉक ड्रिल, चाक चौबंद इंतजाम की हुई परख। ड्रिल में पुलिसकर्मियों और दूसरी संबंधित एजेंसियों ने भी हिस्सा लिया, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा और इमरजेंसी रिस्पांस टीमों की तैयारी को परखना और उसे बेहतर बनाना था इसका मकसद। मेरठ में पहली बार भव्य एयर शो का हुआ आयोजन, मोहितुद्दीनपुर में सूर्य किरण एक्रोबैटिक टीम ने किया प्रदर्शन। एयर शो में 9 हॉक MK-132 विमान ने दिखाए रोमांचक करतब, तिरंगे के रंगों से सजा मेरठ का आसमान। हॉक विमानों से निकले केसरिया सफेद और हरे रंग के धुएं की लकीरें, दिखा वायु वीर का शौर्य। सूर्य किरण टीम ने दिखाया लूप, बैरल रोल, उल्टी उड़ान समेत कई रोमांचक करतब दिखाए। कल भी एरोबैटिक प्रदर्शन, सूर्य किरण के पायलट दिखाएंगे सटीक तालमेल, आसमान में बनेंगे शानदार एरोबैटिक फॉर्मेशंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले का किया उद्घाटन, 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। देशभर के 45 विभिन्न स्थानों पर हुआ रोजगार मेले का आयोजन, सरकारी विभागों और संगठनों के लिए दिए गए नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के टैलेंट पर जताया भरोसा, कहा दुनिया को हमारी युवा शक्ति से बहुत उम्मीद है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी को संबोधित किया। पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने COP21 समिट में किए वादे को समय से पूरा करके दिखाया। भारतीय अमेरिकी सैनिकों का युद्धाभ्यास ओली महाजन में जारी, मल्टी डोमेन वॉरफेयर पर किया गया मंथन। भारत और अमेरिका की सेनाओं ने ओली में की कमांड पोस्ट एक्सरसाइज, युद्ध की चुनौतियों से जुड़ी रणनीति पर चर्चा हुई। युद्ध के दौरान कम्युनिकेशन बनाए रखने की प्रणाली पर भी हुआ मंथन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को लेकर अनुभव साझा किए गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन रोधी तकनीक पर युद्धाभ्यास के दौरान रहा फोकस, काउंटर UAS क्षमताओं के सैन्य इस्तेमाल पर हुई चर्चा। संयुक्त सैन्य अभ्यास 28 सितंबर 2026 तक रहेगा जारी, दोनों सेनाओं के 600-600 जवान ले रहे इसमें हिस्सा। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की रूस की यात्रा, सेंट पीटर्सबर्ग में ऐतिहासिक तोप चलाने का मिला विशेष सम्मान। जम्मू कश्मीर के रियासी में दो दिवसीय खेलो इंडिया अस्मिता वुमेन वेशु लीग का आयोजन 300 से अधिक महिला एथलीट्स ने लिया इसमें हिस्सा। लद्दाख में पहले इंटरनेशनल सी बगथॉर्न कॉन्क्लेव का हुआ आयोजन, लद्दाख के उपराज्यपाल ने किया इसका शुभारंभ। उधमपुर में ग्रामीण विकास पर प्रशासन का खास ध्यान, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर किया जा रहा है विकास का कार्य। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में पुरतासी शनिवार पर विशेष आयोजन, भगवान पेरुमल की हुई विशेष पूजा अर्चना। दिल्ली के एनएसआईसी ग्राउंड में सजा कला का अनोखा संसार कला कनेक्ट में देश भर के पहुंचे 150 से ज्यादा कलाकार, 20 सितंबर तक चलेगा ये कला कनेक्ट। 2000 से ज्यादा आर्टवर्क किए गए प्रदर्शित, एक ही छत के नीचे कला के दिखे कई रंग। 23 साल के ऋतिक कोहली पैरों से बनाते पेंटिंग, हाथ नहीं पैरों को ही बनाते। तानिया सेन की कला ने खींचा सभी का ध्यान, कला कनेक्ट में शिव शक्ति के कई रूप, कैनवस पर दिखे शिव शक्ति, शिव पार्वती विवाह का अनोखा दृश्य। रील एंड रिचुअल्स में आध्यात्मिक रंग, शिव पार्वती विवाह का अनोखा दृश्य, पान के पत्ते की आड़ से पार्वती की नजर, लोग पेंटिंग के जमकर कर रहे हैं खरीदारी। कैनवस पर दिखा दुर्गा का शांत स्वरूप, देवी के अलग रूपों की अनोखी प्रस्तुति, चेहरे की दुनिया रचते कलाकार ये रचना, एक पेंटिंग में नजर आते हैं कई चेहरे। जापान में नागोया के पालोमा मुजोहो स्टेडियम में 20वें एशिया खेलों का रंगारंग उद्घाटन, हर 4 साल में एक बार होता है ये टूर्नामेंट। खेलों की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए की गई शानदार आतिशबाजी, रंगारंग रोशनी से जगमगाया आसमान। 20वें एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी को लेकर शानदार एयरशो हुआ, फाइटर जेट्स ने पेश किया एरोबैटिक डिस्प्ले। भारतीय शूटर मनु भास्कर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने थामा तिरंगा गेम्स में 45 देश और रीजन 43 खेलों में करेंगे मुकाबला। एशियाई खेलों में 75 से ज्यादा भारतीय एथलीट्स शामिल, तजिंदर पाल सिंह 2 शॉटपुट में 2 बार के डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर पेश करेंगे दावेदारी। अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म गुलमान 5 का रिलीज डेट आउट हो गई है, 8 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये फिल्म, मेकर्स ने शेयर किया इसका पोस्टर। अल्लू अर्जुन की मेगा फिल्म राका का नया प्रमोशनल टीजर आउट, राका में 4 किरदारों में नजर आ रहे हैं अल्लू अर्जुन। आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म का नया गाना बाबरी यूट्यूब पर हुआ जबरदस्त हिट, गाने में सोनम महापात्रा की आवाज है, फिल्म डोंट बी शाई का है गाना। फिल्म जय हिंद जय सिंध का पहला गाना रूबरू रिलीज हुआ, गाने को जे अनूप सिलियन ने किया है कंपोज। गुरमीत चौधरी और ईशा मालविया पहली बार फिल्म तुम मेरे हो में साथ नजर आने वाले हैं, 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये फिल्म। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में चीनी फिल्मों की धूम, इस साल 6 फिल्मों की लिस्ट में हुए शामिल, पिछले साल 3 फिल्मों को मिली थी इसमें जगह। टोरंटो फेस्टिवल में चीन फिल्मों की मौजूदगी बढ़ने के साथ दोनों देशों के रिश्तों में भी दिख रही है मजबूती, चीनी भाषा की फिल्मों का बढ़ रहा है दायरा। फेस्टिवल में मिशेल यो की फिल्म इट्स माय टाइम ने दर्शकों का ध्यान खींचा, 70 साल की रूबिक क्यूब चैंपियन के जीवन पर आधारित है ये फिल्म। एशिया सिनेमा की दुनिया भर में बड़ी चमक, कोरियाई और जापानी फिल्मों के बाद अब चीनी फिल्में छा गई। TIFF में एशियाई फिल्मों पर दिया जा रहा है जोर, सिंगापुर ताइवान और मलेशिया की फिल्मों को भी मिली जगह। चीन में रोबोटिक क्रांति को लेकर कंपनियों का बड़ा दावा, साल 2027 तक रोबोट की समझ में आ सकती है बड़ी छलांग। चीनी कंपनियां रोबोट्स को दिमागी मजबूती देने पर कर रही हैं काम, जल्द रोबोट बनेंगे और भी ज्यादा समझदार। रोबोट को घरेलू कामों के लिए किया जा रहा है तैयार, 8 सालों में रोबोट के पूरी तरीके से तैयार होने का किया जा रहा है दावा। रोबोट को सिखाने के लिए डेटा जुटाने पर किया जा रहा है काम, फ्रिज खोलने और सब्जी काटने जैसे कामों में भी उन्हें किया जा रहा है एक्सपर्ट। चीन में रोबोट के प्रशिक्षण के लिए बनाया जा रहा खास सेंटर, सेंसर लगा के इंसानों की हरकत से रोबोट को सिखाया जा रहा है। चीन के हांगकांग में भव्य लालटेन उत्सव, मिड ऑटम फेस्टिवल को लेके जगमगा उठा पूरा शहर, 20 देशों से 3,000 से ज्यादा लालटेन बने आकर्षण का मुख्य केंद्र। विक्टोरिया पार्क में लालटेन कार्निवल, हजारों रंग बिरंगे लालटेन लगाए गए, ब्राजील, फ्रांस, भारत और थाईलैंड के लालटेन शामिल। रोशनी के जरिए फूड कल्चर की शानदार प्रस्तुति, हांगकांग स्टाइल मिल्क टी को लालटेन डिजाइन में दिखाया गया, नानजिंग में 8 मीटर ऊंचा लालटेन फ्री बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। फ्रांस के ओलंपिक चैंपियन लियोन मार्शू ने जापान में दिया प्रशिक्षण, नागोया में स्कूली बच्चों को सिखाए तैराकी के गुर। ब्रिस्बेन ओलंपिक में मगरमच्छों का खतरा टला, फिजरॉय नदी को रोइंग और कैनो स्प्रिंट के लिए मंजूरी मिली, साल 2032 में नदी में होंगे ओलंपिक मुकाबले। आईफोन 18 की बिक्री शुरू होते ही न्यूयॉर्क में एप्पल स्टोर के बाहर लगी लंबी कतारें, मैनहैटन के फिड्स एवेन्यू स्टोर पर आईफोन 18 खरीदने के लिए उमड़े लोग। एप्पल के सीईओ जॉन टर्नस ने स्टोर के दरवाजे खोलकर ग्राहकों का स्वागत किया, नया आईफोन 18 के कैमरे अपग्रेड ने ग्राहकों को खींचा सबसे ज्यादा ध्यान। आईफोन 18 के नए AI फीचर्स को लेकर ग्राहकों में दिखा जबरदस्त उत्साह और एक्साइटमेंट, वेरिएबल अपर्चर कैमरा बना आईफोन 18 के सबसे चर्चित फीचर्स में शामिल। एप्पल के नए आईफोन के लिए न्यूयॉर्क में लॉन्च डे पे दिखा खासा क्रेज और एक्साइटमेंट, आईफोन 18 लॉन्च पर निवेशकों और एनालिस्ट की नजर। 53% संभावित खरीदारों ने आईफोन 18 प्रो या प्रो मैक्स में दिखाई अपनी रुचि, एप्पल ने आईफोन 18 को 65 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में बिक्री के लिए उतारा। लंदन फैशन वीक में बोरा अक्सु का स्प्रिंग समर साल 2027 कलेक्शन किया गया पेश, 17वीं सदी की आर्टिस्ट मैरी बील बनी बोरा अक्सु के नए कलेक्शन की प्रेरणा। सॉफ्ट स्ट्रक्चर्ड डिजाइन्स के अनोखे कॉम्बिनेशन से खींचा सभी का ध्यान, हाथ की कढ़ाई और बारीक लेस ने बोरा अक्सु के डिजाइनों को खास अंदाज दिया। मार्क्स एंड स्पेंसर्स ने लंदन फैशन वीक में पहली बार रनवे पर किया अपना डेब्यू, रनवे पर महिलाओं और पुरुषों के लिए काफी नए डिजाइन पेश किए गए। टक्सीडो से लेकर सफेद शर्ट तक और मार्क्स एंड स्पेंसर्स के हेरिटेज स्टाइल ने बटोरी सुर्खियां, निटवेयर टेलरिंग ने कलेक्शन में बनाई अपनी खास जगह। पुराने फ्लोरल प्रिंट्स और आउटरवियर ने फैशन शो में बढ़ाया रेट्रो टच, आधे कलेक्शन की कीमत £50 से कम खरीदारों के लिए रखा गया किफायती विकल्प।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य
2: कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: गुड न्यूज टुडे लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है, और ये अपील ये है कि आप भी जेएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव के साथ जुड़िए। और इसके लिए आपको करना बस इतना है कि आपके घर पधारी गजानन का वीडियो आपको बनाना है और इसे हमें भेजना है, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। देखिए हमारे पास लगातार जो दर्शक हैं वो अपने वीडियोस भी भेज रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर से अनुष्का त्रिपाठी ने गणेश उत्सव की शानदार तस्वीरें जो हैं खासतौर पर हमें भेजी हैं। घर पर स्थापित बप्पा को खूबसूरत फूलों की माला उन्होंने पहनाई है, साथ ही फल और मिष्ठान का भोग भी लगाया है। वहीं देखिए दूसरी तस्वीर, ये भी हमारे एक दर्शक ने ही हमें भेजी है। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के कटनी से अंकुश बैरागी ने हमें भेजी है। शानदार पंडाल में भगवान गजानन की मनमोहक प्रतिमा को विधिवत विराजमान किया गया है। पीले और लाल रंग की थीम पर पूरे मंडप को सजाया गया है। गणपति बप्पा की भी अद्भुत श्रृंगार भी किया गया है, जिससे बप्पा काफी ज्यादा खूबसूरत और मनमोहक लग रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
0: दीव छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित, अध्यक्ष समेत 3 पदों पर एबीवीपी ने हासिल की जीत, उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन रहे विजयी। तेलंगाना के पलवंचा में करोड़ों के नोटों से सजे गणपति बप्पा, 2,90,00,000 रुपए के नोटों से हुई पंडाल की सजावट, 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोटों का किया गया इस्तेमाल। राधाष्टमी के मौके पर बरसाना में आस्था और उल्लास का संगम, गलियों में सुनाई दे रही बधाई और मंगल गीतों की गूंज, भव्य रूप से मनाया जा रहा श्री राधा रानी का जन्मोत्सव। नैनीताल के नंदा देवी महोत्सव में उमड़ा आस्था का मेला, मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, 23 सितंबर तक चले गए उत्सव। रूस की यात्रा पर पहुंचे सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ का अनोखा सम्मान, सेंट पीटर्सबर्ग के ऐतिहासिक पीटर एंड पॉल किले में ट्रेडिशनल तोप से दागी गोली। पुलवामा के काकापुरा स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जवानों का मॉक ड्रिल, चाक चौबंद इंतजाम की हुई परख। हिमाचल प्रदेश के चंबा में वन विभाग ने भालू का किया रेस्क्यू, डलौजे की सड़क पर सिर में कनस्टर फंसाए, भटक रहा था भालू, सूचना के बाद एक्शन में प्रशासन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: नमस्कार, मैं हूं सरगम पंच श्रीवास्तव और आज के हमारे स्पेशल शो में बात होगी फिल्म हनुमान अंश के बॉलीवुड पर पड़ रहे असर की। देखिए, विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी हनुमान अंश को दर्शकों से ऐसा रिस्पांस मिला है जिसकी कल्पना खुद मेकर्स ने भी शायद नहीं की होगी। शुरुआती 2 हफ्तों में कछुए की रफ्तार से चल रही इस फिल्म ने अचानक ऐसी रफ्तार पकड़ी कि देखते ही देखते 300 करोड़ रुपए के क्लब में ये फिल्म शामिल हो गई है। देखिए, फिल्म को रिलीज हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और अब भी दर्शकों में से लेकर जो उत्साह है वो बरकरार है, लेकिन हनुमान अंश की सफलता से आने वाले दिनों में सिनेमाघरों में आस्था और भक्ति भाव से भरी फिल्मों की जो लाइनें हैं वो भी लगने वाली हैं। देखिए, आप टीवी स्क्रीन पर उन फिल्मों के नाम देख सकते हैं जिनके बारे में मैं यहां पर बात कर रही हूं, क्योंकि हनुमान अंश एक तरीके से केस स्टडी हो गई है और इसे फॉलो करते हुए अब बाकी फिल्में भी खास तौर पर इसी थीम पर बन रही फिल्में आने वाली हैं। देखिए, महाकाव्य श्री रामायण कथा श्री राम की ये फिल्म हो या फिर वाल्मीकि रामायण, रामायण पार्ट 1, चिरंजीवी हनुमान द इटर्नल, महाअवतार परशुराम, श्रीमद् भागवत पार्ट 1, विष्णुरथ, कृष्णावतारम पार्ट 2, करण जौहर की फिल्म राधा कृष्णा, इसको लेकर तो बस भी पिछले काफी समय से है, प्रेमानंद जी महाराज पर राधा अंश, छठ पूजा पर द वन, तेरा साई, हारे का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा, महाकाली जैसी फिल्म जो है वक्त वक्त पर रिलीज होंगी। तो देखिए, यूं कहें तो हनुमान अंश ने बॉलीवुड का जो ट्रेंड है वो बदल करके रख दिया है और अब आने वाले समय में हनुमान अंश को फॉलो करते हुए इसी तरीके की कई फिल्में आने वाली हैं।

0: 2 करोड़ का छोटा बजट और कमाई 300 करोड़ के पार। बात हनुमान अंश फिल्म की हो रही है। फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया है। कई बड़े बजट की फिल्मों को पछाड़ते हुए देश की पहली सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्म भी बन गई है। बाबा नीब करौरी पर बनी हनुमान अंश फिल्म रिलीज के बाद शुरुआती 2 हफ्तों में कछुए की रफ्तार से चल रही थी, लेकिन फिल्म ने अचानक ऐसी रफ्तार पकड़ी कि देखते ही देखते 300 करोड़ क्लब में शामिल हो गई। फिल्म को रिलीज हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है और अभी भी दर्शकों में वैसा ही उत्साह बरकरार है। हनुमान अंश फिल्म की सफलता का मुख्य राज मजबूत कंटेंट, दर्शकों का आध्यात्मिक जुड़ाव और सकारात्मक मौखिक प्रचार को बताया जा रहा है। जब फिल्म रिलीज हुई थी तो पहले हफ्ते में ही लगने लगा था कि फिल्म डूब जाएगी। दूसरे हफ्ते में भी फिल्म ने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया। फिल्म मेकर्स भी निराशा के बवंडर में डूबने लगे थे। तभी चमत्कार होना शुरू हुआ और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना करिश्मा दिखाना शुरू कर दिया, जो अभी तक जारी है। बॉलीवुड में अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसी खास विषय पर बनी फिल्म अगर सफलता का परचम लहराती है तो कई फिल्म मेकर्स उसी राह पर चल निकलते हैं। मान लीजिए अगर कोई रोमांटिक या एक्शन फिल्म हिट हो जाती है तो अन्य मेकर्स उसी तरह की फिल्मों को बनाने में लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही अब बॉलीवुड में दिखने लगा है।
1: हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस सफर बिल्कुल आसान नहीं था। 10 लाख से ओपनिंग की शुरुआत के बाद ऐसा वक्त आया कि जब थिएटर्स ने ये फिल्म के शोज को रिड्यूस कर दिया था, घटा दिया था, लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ के बाद ये पिक्चर ऐसी चली कि आज 300 करोड़ कमा चुकी है। बॉक्स ऑफिस पर अब ऑडियंस जा ही रही है और अब ये छोटी सी फिल्म 300 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस करके बॉलीवुड के लिए एक इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा करती है। क्या डिवोशनल और फेथ बेस्ड सिनेमा के लिए ऑडियंस का एपिटाइट बढ़ रहा है? क्या फिल्म मेकर्स अब इस जॉनर को और ज्यादा फोकस देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है?
0: आने वाले दिनों में थिएटर में कई और भक्ति वाली फिल्में रिलीज होने वाली हैं, क्योंकि बॉलीवुड के कई जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भक्ति फिल्मों का ऐलान कर रहे हैं।
2: पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में काफी लो थे इसके कलेक्शंस भी, लेकिन धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से ये फिल्म बढ़ी है और अब तो सब जगह इसकी चर्चा है। इसका वीकेंड का कलेक्शन जो है वो करीब 20-25 करोड़ के ऊपर जा रहा है। हर रोज इसका कलेक्शन बढ़ते जा रहा है और ये मिरेकल ही हम कहेंगे, बहुत बड़ा चमत्कार है। और इस तरीके से जो अब लोगों ने इस भक्ति भाव की फिल्म को देखने का नजरिया बदला है, ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। अब बॉलीवुड को समझ में आने लगा है कि जिस तरीके से पहले राजा हरिश्चंद्र से लेकर रामायण से लेकर हमारे देश में भक्ति पे फिल्में बनती थी, जिसमें जय संतुष्टि माता थी जो 1975 में आई थी शोले के कंपटीशन में और वो इतनी जबरदस्त चली थी। उसके अलावा मनोज कुमार साहब ने साई बाबा पे फिल्म बनाई थी, वो चली थी, उसका म्यूजिक अच्छा था। और अब गुजराती में एक फिल्म है लाड़ो जो पिछले साल चली, जिसने 100 करोड़ का बिजनेस किया। और उसी तरीके से हनुमान हंस जो कि 2 करोड़ की फिल्म है, अगर वो इस वक्त 325 करोड़ कर चुकी और 350 करोड़ के ब्रैकेट में जा रही है और जिस तरीके से उसका वर्ड ऑफ माउथ है, उससे मुझे लगता है कि 400 करोड़ के भी बॉक्स में ये चले जाएगी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि भक्ति भाव और श्रद्धा वाली फिल्में अब चलने लगी है, लोगों को ये पसंद आने लगी है और बॉलीवुड का रुख अब भक्तिभाव की फिल्मों की तरफ बढ़ने लगा है।
0: हनुमान अंश में मेकर्स ने भी फिल्म के दूसरे पार्ट का ऐलान किया है। फिल्म नीव करौरी बाबा के जीवन पर बनी है। देश के सबसे बड़े क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा से लेकर कई विदेशी सेलेब्स भी नीव करौरी बाबा के भक्त हैं। ऐसे में खबरें हैं कि मेकर्स सेलेब्स को इस फिल्म में कैमियो के लिए अप्रोच कर रहे हैं, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हनुमान अंश का पार्ट 2 भी आएगा, ऐसा कंफर्म माना जा रहा है।
2: हनुमान अंश एक्चुअली नीम करौली बाबा की ट्रिलॉजी ही थी ये बेसिकली, जिसका एक ही पार्ट अभी आया है। उसके 2 पार्ट जिसमें आगरा और मथुरा का चैप्टर आएगा वो ऑलरेडी अब बनने वाला है, क्योंकि फिल्म ने अपार सफलता पाई है। इसके अलावा फिर हम देखो तो रामायण आएगी जो कि दिवाली में आएगी, रामायण पार्ट 1, उसको लेकर भी काफी एक्साइटमेंट है क्योंकि उसमें बहुत बड़ी स्टार कास्ट है।
0: फिल्म के डायरेक्टर डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी ने फिल्म हनुमान अंश के पार्ट टू की घोषणा की है। पार्ट टू में कैची धाम की कहानी भी दिखाई जाएगी। नीम करोरी बाबा 1960 के दशक की शुरुआत में कैची पहुंचे थे और 15 जून 1964 को हनुमान मंदिर और आश्रम की स्थापना हुई थी। जीवन के अंतिम वर्षों में कैची उनका प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र रहा। डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी 2006 के आसपास अपनी पोस्टिंग के दौरान कई बार कैची धाम गए थे। यही उनका पहली बार नीम करोली बाबा के शिक्षाओं से परिचय हुआ। इस अनुभव का उन पर गहरा असर पड़ा और करीब दो दशकों बाद यही जुड़ाव हनुमान अंश की कहानी की प्रेरणा बना। नैनीताल में भवाली के पास शिप्रा नदी के किनारे स्थित कैची धाम नीम करौली बाबा से जुड़े प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों में शामिल है। नैनीताल में उनसे जुड़े चार प्रमुख धाम बताए जाते हैं, कैची धाम, काकड़ी घाट, हनुमान गढ़ी और भूमि आधार। एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स से लेकर फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग तक बाबा नीम करौली के कैची धाम में दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स ने एक इंटरव्यू में बताया था कि नीम करौली बाबा की एक तस्वीर देखकर उनकी हिंदू धर्म में रुचि जागी थी। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, मनोज वाजपेयी तक बाबा के आश्रम पहुंच चुके हैं। हनुमान अंश के दूसरे पार्ट में कैची धाम के महत्व और महिमा को विस्तार से दर्शाया जाएगा। हनुमान अंश की कहानी फिल्म के डायरेक्टर डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी की लिखी किताब पर आधारित है। हनुमान अंश के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने एक और फिल्म का ऐलान किया है। फिल्म का नाम भी तय हो गया है, राम बोला। ये हनुमान अंश में साथ काम कर चुके महावीर जैन फिल्म्स के साथ ही विशाल चतुर्वेदी बनाएंगे। इस फिल्म में भारतीय इतिहास के सबसे महान कवियों और आध्यात्मिक पुरुषों में से एक महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन और यात्रा को दिखाया जाएगा। फिल्म में उनके जीवन से जुड़े उन पहलुओं को सामने लाने की कोशिश होगी जिन्होंने उन्हें भारतीय साहित्य और भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण नाम बनाया है। जीवन के कई अनदेखे पहलुओं को भी दिखाने की कोशिश की जाएगी। फिल्म को लेकर फिलहाल कलाकारों और रिलीज डेट से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।
2: हनुमान अंश की अपार सफलता के बाद जो डायरेक्टर थे हनुमान अंश के विशाल चतुर्वेदी, वो अब नई फिल्म बनाने जा रहे राम बोला, जो कि आचार्य तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखा था उनकी जीवनी पर है और इनको महावीर जैन प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। उसके अलावा हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा, ये भी एक बहुत बड़ी फिल्म है जो कि अनाउंस हुई है। तो ये हो गया है कि सफलता जो हनुमान अंश को मिली है उससे बहुत सारी फिल्में अनाउंस हुई है। छोटे मोटे प्रोडक्शन हाउस ने भी बनाए हैं और जो रिप्यूटेड प्रोडक्शन हाउसेस हैं उन्होंने भी अनाउंसमेंट किए, जिसमें तेरा साई करके फिल्म आ रही है जिसमें संजय मिश्रा है। उसके अलावा श्रीमद भागवतम करके फिल्म है जो कि सागर फिल्म्स जिन्होंने पहले महाभारत बनाई थी, रामायण बनाई थी, वो बना रहे हैं। उसके अलावा करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस भी राधा और कृष्ण पे फिल्म बनाने जा रहा है, उसके ऊपर भी काफी चर्चाएं हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बोलबाला चल रहा है हनुमान अंश की सफलता के बाद, ये बड़ा अच्छा है। अब लोग चैतन्य महाप्रभु भी फिल्म बनाने वाले हैं और ऑलरेडी हम कल्कि बना चुके हैं, कल्कि का सीक्वल आने वाला है। तो ऐसे में जब हम देखते हैं कि श्रद्धा और भक्ति की फिल्में बॉलीवुड को पसंद आने लगी और बॉलीवुड का रुख अब उस तरफ होने लगा है, तो ये बड़ी खुशी की बात।
0: आपको बता दें कि गोस्वामी तुलसीदास का नाम राम बोला दुबे था। कहा जाता है कि उन्हें स्वयं प्रभु हनुमान के दर्शन हुए थे और उन्हीं के निर्देश के बाद तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। मुंबई से अनीता ब्रिटो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, हनुमान अंश की कामयाबी ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस के आंकड़े नहीं बदले हैं बल्कि बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स का मूड भी बदल दिया है। देखिए, रामायण से लेकर कृष्ण, हनुमान से लेकर परशुराम और संतों के जीवन तक फिल्म इंडस्ट्री में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर अब इसके बाद काम चल रहा है।

0: ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म हनुमान अंश की सफलता के बाद पौराणिक और धार्मिक फिल्मों को लेकर दर्शकों का रुझान बढ़ रहा है, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर भक्ति से जुड़ी फिल्मों की ऑडियंस बढ़ रही है। इसी साल यानी 2026 में महाकाव्य रामायण पर आधारित एक या दो नहीं बल्कि तीन बड़ी फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही हैं।
1: अब बॉलीवुड जागृत हो गया है कि ऐसी फिल्में बनाई जाएं जो श्रद्धा पे हो, और हनुमान अंश ने सारे के सारे पैरामीटर्स भक्ति की फिल्मों को देखने का नजरिया बदल दिया है, और इसलिए अच्छा म्यूजिक और अच्छी कहानी लेकर अब लोग माइथोलॉजी की फिल्में, रिलीजियस फिल्में, वो फिल्में जहां पर वो अपनी श्रद्धा को दिखा सके, ऐसी फिल्में बनने का फिर से बोलबाला शुरू हो चुका है।
0: सबसे पहले इसी महीने 25 सितंबर को महाकाव्य श्री रामायण कथा श्री राम की सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। अभिषेक सिंह के डायरेक्शन में बनी यह हिंदी फिल्म रामायण की कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश करती दिखाई देगी। फिल्म में देव शर्मा भगवान राम और अंजलि अरोड़ा माता सीता की भूमिका में नजर आएंगी, जबकि रावण का रोल रजनीश दुग्गल निभाते नजर आएंगे। फिल्म के डायलॉग्स और गाने जयदेव जानेवाल ने लिखे हैं, जबकि संगीत देव आशीष ने दिया है। कच्चा बादाम वाली अंजलि अरोड़ा ने रामायण में माता सीता का किरदार निभाया है।

0: इस फिल्म के रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर 2026 को वाल्मीकि रामायण नाम की फिल्म रिलीज होगी। जैसा कि नाम से साफ है, फिल्म का आधार महर्षि वाल्मीकि की रामायण है। इसमें रामायण की कहानी को सिनेमाई अंदाज में पेश किया जाएगा। फिल्म का निर्देशन भावना तलवार ने किया है। मशहूर सिनेमेटोग्राफर विनोद प्रधान ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की है। इसकी कहानी और पटकथा आनंद नीलकंठन ने लिखी है, जबकि डायलॉग्स डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने लिखे हैं।
1: तुम्हारा नया राजा।
0: रामायण पर बनने वाली तीसरी और सबसे बड़ी फिल्मों में नितेश तिवारी की रामायण पार्ट 1 शामिल है। ये फिल्म 6 नवंबर 2026 को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में इस फिल्म को बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है। फिल्म को दो हिस्सों में रिलीज किया जाएगा और इसे भारत के साथ साथ दुनिया भर के दर्शकों तक पहुँचाने की तैयारी है।
1: तीनों लोकों में एक ही

0: जब जब सृष्टि पर संकट आया, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर।
1: फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगी। रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं। साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार यश फिल्म में रावण का किरदार निभाएंगे। इसके अलावा अरुण गोविल, दशरथ, लारा दत्ता, केकई और रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के रोल में नजर आएंगी। फिल्म में और भी कई बड़े कलाकार अलग अलग किरदार में दिखेंगे। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले श्रीधर राघवन और नितेश तिवारी ने तैयार किया है। इसके डायलॉग्स नितेश तिवारी और श्रेयस जैन ने लिखे हैं। फिल्म के गाने कुमार विश्वास ने लिखे हैं और संगीत की जिम्मेदारी ऑस्कर विजेता एआर रहमान और हर्ष जिमर ने संभाली है।
2: एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है।
3: तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। उस वचन का क्या जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था? अब हमारा भाग्य एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है।
1: AI तकनीक से बनाई गई फिल्म चिरंजीवी हनुमान द इटर्नल की पहली झलक सामने आ गई है। भगवान हनुमान की कहानी कहती है फिल्म 2026 में ही सिनेमा घरों में रिलीज होनी है। चिरंजीवी हनुमान द इटर्नल को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली भारत की पहली AI द्वारा निर्मित फिल्म बताया जा रहा है। हालांकि अभी फिल्म के रिलीज डेट सामने नहीं आई है। 1:11 के स्वस्थ ग्लिम्स वीडियो की शुरुआत में झरना और खूबसूरत वादियां दिखती है। इसके बाद पर्वतीय गुफाओं के पार पवन पुत्र हनुमान की छवि दिखती है। जंगलों के बीच से कैमरे की जबरदस्त मूवमेंट के बाद पवन पुत्र हनुमान को हवा में विचरण करते हुए दिखाया जाता है। हाथों में गदा लिए हनुमान जी को अभी सिर्फ पीछे से दिखाया गया है, उनका चेहरा अभी सामने नहीं आया है। बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा की पंक्तियां भी सुनाई देती हैं। पहली झलक दिखाता है ये वीडियो फिल्म को लेकर दर्शकों को उत्साहित जरूर करता दिख रहा है। चिरंजीवी हनुमान को नेशनल अवार्ड जीतने वाले निर्देशक राजेश मापुस्कर ने निर्देशित किया है, जबकि फिल्म का निर्माण आलोक जैन, अजित अंधारे, विजय सुब्रमण्यम और विक्रम मल्होत्रा ने स्टार स्टूडियो 18 के सहयोग से किया है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म को 2026 में हनुमान जयंती के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज किया जा सकता है।

0: सिनेमा प्रेमियों को KGF, सालार और कांतारा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले कोमले फिल्म्स ने परशुराम जयंती के अवसर पर फैंस को तोहफा दिया है। फिल्म महाअवतार परशुराम का पहला पोस्टर और टीजर साझा किया गया है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों पर आधारित 7 भागों वाले एनिमेटेड महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की यह दूसरी फिल्म है। इससे पहले फिल्म महाअवतार नरसिम्हा काफी पसंद की गई थी। ये एक 3D एनिमेटेड फिल्म होगी जिसमें एक्शन और ड्रामा होगा। भारत के सबसे बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स का यह दूसरा हिस्सा अश्विन कुमार के निर्देशन में बन रहा है। फिल्म के दिसंबर 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है। बॉलीवुड में आज तक सैकड़ों धार्मिक और पौराणिक फिल्में बनी हैं, लेकिन आज तक कोई निर्माता निर्देशक श्रीमद भागवत को पहले पर्दे पर साकार नहीं कर सका है, लेकिन अब ये बड़ा कारनामा होना तय हो गया है। श्रीमद भागवतम के पहले पार्ट श्रीमद भागवतम पार्ट 1 विष्णुरथ का पहला टीजर पोस्टर जारी कर दिया गया है। रमानंद सागर के पोते आकाश सागर और अमृत सागर के सह निर्देशित पोस्टर में भगवान श्री कृष्ण के हाथ की एक झलक दिख रही है। फिल्म में भगवान श्री कृष्ण की कहानी बताई जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म भी अगले साल रिलीज होगी।
1: सूत्रों से नहीं जीते जाते, मन जीतना पड़ता है।

इस साल भगवान कृष्ण पर एक फिल्म आई थी, कृष्ण अवतारम। ये फिल्म इसी साल रिलीज हुई थी। फिल्म में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को दिखाया गया था। कृष्ण अवतारम को दर्शकों का खूब प्यार भी मिला था। अब मेकर्स ने इसके सीक्वल यानी दूसरा पार्ट का ऐलान किया है, जो साल 2028 में रिलीज होगी।

0: हार्दिक गज्जर के निर्देशन में बनी कृष्ण अवतारम पार्ट 1 द हार्ट 7 मई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सिद्धार्थ गुप्ता ने कृष्ण, सुष्मिता भट्ट ने राधा, निवाशनी कृष्णन ने रुक्मणी और संस्कृति जयाना ने सत्यभामा की भूमिका निभाई थी। रोमांस, रिश्तों और फैमिली ड्रामों की फिल्में बनाने वाले करण जौहर अब राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम कहानी को बड़े पर्दे पर उतारने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स की माने तो धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनने वाले इस फिल्म का नाम राधा कृष्ण रखा गया है और प्रोजेक्ट फिलहाल डेवलपमेंट के एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। इस बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की कमान फिल्म मेकर सचिन रवि को सौंपी गई है। वे फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ इसे डायरेक्ट भी करेंगे। फिल्म की कहानी में भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर कंस के वध तक का सफर दिखाए जाने की खबर है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि राधा और कृष्ण के किरदार में कौन नजर आएगा। मेकर्स ने फिलहाल स्टारकास्ट को पूरी तरह सीक्रेट रखा है। बाबा नीप करोरी के जीवन पर बनी फिल्म के बाद एक और संत के जीवन को बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी शुरू हो गई है। वैष्णव किन्नर अखाड़े की जगत गुरु शंकराचार्य हिमांगी सखी ने संत प्रेमानंद महाराज के जीवन पर आधारित राधा अंश नाम की फिल्म बनाने की घोषणा की है। खबर है कि फिल्म का नाम राधा अंश होगा और इसका उद्देश्य संत प्रेमानंद महाराज के आध्यात्मिक जीवन, उनके विचारों और राधा रानी के प्रति उनके अटूट भक्ति को लोगों तक पहुंचाना है। खबर है कि फिल्म को लेकर फिल्म मेकर टीम से शुरुआती बातचीत हो चुकी है और टीम ने इस प्रोजेक्ट को लेकर सहमति भी जताई है। अब संत प्रेमानंद महाराज और उनके शिष्यों से आधिकारिक अनुमति लेने के लिए उनसे मुलाकात की जाएगी। फिल्म में कलाकारों का चयन भी उनके शिष्यों की सलाह के आधार पर किए जाने की बात सामने आ रही है।
1: देखिए, भक्ति फिल्मों का असर अब सिर्फ रामायण और कृष्ण की कहानियों तक सीमित नहीं है। छठी मैया से लेकर साईं बाबा, खाटू श्याम से लेकर मां महाकाली तक आस्था के अलग अलग रंग अब बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। आने वाले दिनों में कई ऐसी फिल्में दर्शकों के सामने होंगी जिनकी कहानी सीधे लोगों की आस्था और उनके विश्वास से जुड़ी हुई होगी।
2: भुतक्के, इस वन की काली शक्ति रात के साए से भी काले, तूफान से भी तेज, जिससे देवी भी हमें नहीं बचा सकती, और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती।
3: अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब
4: बॉक्स ऑफिस पर भक्ति फिल्मों का ऐसा असर देखने को मिल रहा है कि आने वाली कई फिल्मों में इसका अलग अलग स्वरूप देखने को मिलेगा। तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा की 25 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्म द वन में विस्तार से छठ पूजा को दिखाया गया है।
3: इसी वजह से मैं इस मनुसका पे नहीं आना चाहता।
4: तमन्ना भाटिया ने हाल में अपना एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्हें छठी मैया की पूजा करते हुए दिखाया गया था। छठी मैया पर बन रही फिल्म द वन को लेकर ऑडियंस का जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है। फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है।
5: आपके पति नास्तिक हैं क्या?

0: साईं बाबा के जीवन पर एक और फिल्म बन रही है। इस फिल्म का नाम है तेरा साईं। खास बात यह है कि फिल्म में मशहूर एक्टर संजय मिश्रा साईं बाबा के किरदार में नजर आएंगे। अविका गौर, सयाजी शिंदे, मनोज जोशी, रोहन मेहरा जैसे एक्टर्स भी दमदार रोल में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 5 फरवरी 2027 को रिलीज होनी है। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम बाबा का मंदिर है। इस मंदिर में लोगों की काफी आस्था है। हर दिन यहाँ पर खाटू श्याम के दर्शन के लिए भारी संख्या में भक्त पहुँचते हैं। ऐसे में हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा नाम से एक भक्ति फिल्म का ऐलान किया गया है। फिल्म बाबा खाटू श्याम की भक्ति पर बेस्ड होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म साल 2027 में दस्तक देगी। हालांकि इस जानकारी की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिल्म महाकाली अगले साल 8 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में अक्षय खन्ना असुरों के महागुरु शुक्राचार्य के अवतार में दिखने वाले हैं। अक्षय खन्ना के फैंस उन्हें इस रूप में देखने को लेकर उत्साहित हैं। हनुमान फेम प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली फिल्म है। फिल्म में धर्म और अधर्म के बीच होने वाले एक ऐसे महायुद्ध की झलक है जो सिर्फ अच्छाई और बुराई की लड़ाई तक सीमित नहीं है। यह असुरों के शक्तिशाली गुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व में शुरू होने वाले उस संघर्ष की कहानी है जो पूरी दुनिया के भविष्य का फैसला करता हुआ दिखाया जाएगा। फिल्म का टीजर आ चुका है। इस फिल्म में मां महाकाली के दिव्य रूप के भी दर्शन होंगे जिनकी वजह से देवताओं को जीत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: वो ऐसे खास मेहमान अब हमारे साथ, जिनको पर्दे पर आप जरूर उनसे आप भेंट मुलाकात करते हैं, लेकिन आज उनके अपने बिहार में, ऐश्वर्या बहुत लंबी है इसलिए हम लोग सब बैठ के बात करेंगे उनसे, आइए बैठिए। ऐश्वर्या सुष्मिता और क्रांति प्रकाश झा के लिए तालियां बजाएं, तालियों के साथ स्वागत करें। देखिए किरदारों से जब आपका परिचय होता है तो थोड़ा अधूरा परिचय होता है, जो असली व्यक्ति होता है वो अलग होता है, एक पूरी लंबी चौड़ी कहानी होती है, खासकर जब आप क्रांति एक ऐसे राज्य से निकलकर जाएं जहां पर जो आपकी प्राथमिकता होती है वो पहले यूपीएससी होती है, आप भी शायद आईपीएस ही बनना चाहते थे लेकिन एक क्रांति कर दी और बन गए अभिनेता।
2: जी जी, नमस्कार आप सबको।
1: पर मैथिली से शुरुआत कर लेते हैं,
2: मैं कुछ भी पूछने वाला था आपसे।
1: जरूर।
2: तो नमस्कार प्रणाम, हाँ सब गोटा के जो हमारे से पैक छी उनका गोर लगी छी, अरे अहाँ सब नहीं लागू हम लाग ले छी, का हाल बार हुआ सबके, भोजपुरी भी हमारा आवेला तो भोजपुरी में भी रहुआ सबके स्वागत बा। बाकी जैसा कहा जाता है मैम, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो मैंने हिंदू कॉलेज से अपनी पढ़ाई की और उसके बाद हमारे पिताजी ब्यूरोक्रेट थे, उनको यहीं पे थे बिहार में शिक्षा विभाग में, तो उनका ये बड़ी इच्छा थी हमारे माता पिता की कि हम भी वैसा ही कुछ करें, लेकिन जिंदगी फिर किसी तरह से मुंबई लेके चली गई, बंबई लेके चली गई और तब से लेके आपके सामने यूपीएससी कर रहा होता तो शायद यहाँ पे नहीं होता।
1: वैसे जिला तो आप दोनों का सेम है।
2: जी ऑलमोस्ट, हाँ दरभंगा और दरभंगा। जी
1: ऑलमोस्ट,
2: हाँ मतलब यही अभी मुझे मालूम चला है कि ये भी मिथिलांचल है तो मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ।
1: लेकिन ऐश्वर्या नहीं जानती है मैथिली?
3: जानती हूँ।
1: जानती है?
3: मैं सोच रही थी कि अब यही उत्तर दे रहे तो मैं उनका इंतजार कर रही थी।
2: हमर भाव के लिए अब आ कहियो
3: आहा खत्म करूं फिर हम अबई।
2: हमर भाव के लिए अब हम चुप।
1: नहीं ये एक्चुअली जब अभी देखिए पिछला सेशन में कर रही थी वहां पर डॉक्टर तिशा श्री हमारे साथ थी, अभी नई फिल्म कर रही है वो, और एंटरप्रेन्योर्स के पैनल में वो थोड़ा कह रही थी कि मैं थोड़ा मिसफिट हूं, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि हम लोग का पूरा बचपन बीता शत्रुघ्न सिन्हा को एक सुपरस्टार के तौर पर देखते हुए, और लगा कि मतलब बिहार वहीं से शुरू वहीं पे अंत हो रहा था, बिहारी बाबू नो डाउट कि वो पायनियर रहे हैं, उन्होंने वो शुरुआत की, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग, मतलब आप बताएं ना तो शायद किसी को पता ना चले कि कौन बिहार का, कितने बिहार का मतलब वर्चस्व हो रहा है धीरे धीरे उधर भी।
2: मैम हाँ कुछ कही बात फिर हम कहे नहीं। मैम जहां तक वर्चस्व की बात है तो बात वर्चस्व से भी ज्यादा यहाँ की जो कला है, हाँ। समझने में लोगों को टाइम लगता है, चाहे वो किसी भी तरह की कला हो, बिहार की जुगाड़ हो या फिर आदमी कहीं से कुछ भी, हर मतलब जितने भी कह सकते हैं ना कि आपको चैलेंजेस लाइफ में होते हैं उसको पार करके जिंदगी को कैसे जीतना है ये हर बिहारी जानता है। अपवाद सब जगह होते हैं जो कि जिंदगी सबकी अलग होती है, लेकिन जहां तक वर्चस्व की बात है तो बिहार मुझे आज तक कोई ऐसा, बॉम्बे में रह के मुझे मालूम नहीं चला कि कोई मुझे हे दृष्टि से देख रहा है कि मैं बिहार का हूं। अपनी कला है और धीरे धीरे करके लोग उस कला को पहचानेंगे, चाहे बिहार की कला हो चाहे बाहर की कला हो, क्योंकि

0: बहुत ज्यादा है जो बहुत लोग डर भी जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। पर जैसा कि आपने कहा कि आई थिंक पहले एक अलग टाइम था, मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग कम पहचाने जाते थे, स्पेशली अभिनेता में और एक्टिंग करियर में। बट अब मुझे लग रहा है काफी लोग, मतलब अब तो बहुत लोग, लाइक हमें ही देख लीजिए, वी आर लाइक इट्स बिन 3 इयर्स, 3-4 साल मुझे हुए हैं एक्टिंग करते हुए, और मुझे लग रहा है मेरे आसपास बहुत लोग बिहार से हैं जो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और ना ही सिर्फ अभिनेता और अभिनेत्री, पर एंटरप्रेन्योर हो या फिर किसी भी क्षेत्र में हो, वो काफी आगे निकल रहे हैं।
1: क्रिकेट
0: वी हैव सो मेनी,
1: क्रिकेट मतलब फ्रॉम वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, कमी नहीं है, तो कमी नहीं है, इंडियन क्रिकेट टीम में भी जा रहे हैं। पर ये बहुत अच्छी बात है क्रांति की, आप कह रहे हैं कि आपको वो नहीं फेस करना पड़ा, लेकिन क्या एक चीज आप मानेंगे कि पर्दे पर जो कहानियां बिहार से जुड़ी हुई आती हैं उनमें एक स्टीरियोटाइप है?
2: मैम, बिहार को बेचना बहुत आसान है, बिहार को बनाना मुश्किल है। बेचने के लिए हर इंसान जिस भी तरह से चाहे बिहार को बेच सकता है, और ऐसा नहीं है कि बिहार में कहानियां नहीं है। किसी इंसान ने आज तक ये नहीं सोचा कि अच्छा हम वीर कुंवर सिंह पे, बाबू वीर कुंवर सिंह पे कहानी बनाते हैं। मेरे ख्याल से आज के लोगों को, जो आज की जनरेशन में, शायद उनको ढूंढना पड़ेगा वीर कुंवर सिंह कौन थे, लेकिन हम लोगों को बचपन से पता था कौन थे। कहानियां बहुत सारी हैं। अब बिहार के साथ एक त्रासदी रही है, आप कह सकती हैं कि विडंबना है बिहार की, कि उसी उन्हीं किरदारों को दिखाया जाता है जो वहां पे उस दौर पे चलते थे। इतने सारे लोग हैं, आपकी कहानी किसी ने क्यों नहीं बनाई कि भाई श्वेता सिंह जी एक इतनी बड़ी जो जर्नलिस्ट हैं और किस तरीके से, नहीं मैं बोलूंगा, जो 5 बिहार के लोग वहां बैठे हुए थे उनकी कहानी कोई नहीं दिखाता, कहानी वही दिखाते हैं वहीं पे लाके। तो अब ये मैम सबका अपना अपना टेक है, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि आप क्यों दिखाते हैं, अच्छी अच्छी कहानियां भी हैं। अरे दिखाओ यार बिहार को, मतलब बिहार बहुत सुंदर है, बिहार का स्वाद अलग है। हम लोगों ने सिर्फ एक ही स्वाद को पकड़ा है कि यही दिखाएंगे, वो जरूरी नहीं है।
1: एक ही टोन को पकड़ा है, एक ही स्वाद को पकड़ा है। जैसे हमारे सामने 2 मैथिल हैं जो मैथिली में बोल रहे हैं, लेकिन इमेज मतलब स्टीरियोटाइप ये है कि सिर्फ भोजपुरी है, जबकि कितने डायलेक्ट्स हैं बिहार के भीतर।
0: बिल्कुल, इस बात में मैं बिल्कुल अग्री करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है 5 रीजन्स हैं जो बिहार में, और लोगों को नहीं पता इस बारे में कि, क्योंकि भोजपुरी बहुत अच्छा लैंग्वेज है, मुझे लगता है उसमें बहुत ही फन वे में उन्हें हमें पोर्ट्रे भी किया गया है, पर मुझे लगता है लोगों को पता ही नहीं है कि 4 और भी भाषाएं हैं मैथिली के बारे में। अब जाके मुझे लग रहा है कि फिल्में बन रही हैं, बहुत ही फेमस फिल्म आई है अभी, जो बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है पार्थ सौरभ ने, वो भी दरभंगा के ही है, पोखर के दुन्नू पार। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, बहुत खूबसूरत फिल्म है वो, पोखर के दुन्नू पार। रिकग्निशन अब मिल रहा है और अब लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। तो वो एक नरेशन जो था, एक भोजपुरी, इट्स नॉट जस्ट भोजपुरी नाउ दे हैव एक्सेप्टेड ऑल अदर लैंग्वेज ऑल्सो। तो वो बहुत, मुझे तो काफी अच्छा लगता है जब लोगों को सुनने को आता है कि वो अप्रिशिएट कर रहे हैं।
1: आपने तो शुरुआत में कुछ फिल्मों में काम भी किया था क्षेत्रीय।
2: जी, मैंने देसवा एक फिल्म की थी, भोजपुरी नाम था देसवा का, जो वो देसवा। अच्छा, बिहार के लोगों में ये भी चीज है, जैसे हमारे लोगों को अगर आप देखेंगे तो, अब मुझे देसवा के बारे में, ये शायद अपने जमाने से पहले की फिल्म थी, अगर इंस्टाग्राम होता तब तो वो फिल्म आज बहुत चलती। मैंने मैथिली फिल्म की है और मुझे पता नहीं कत्ते है तब मैथिल छथिन, कत्ते लोग मिथिला मखान देखने छथिन। अब देखिए सबके हाथ नीचे हो गए,
1: एक अभी भी ऊपर है।
2: हाँ, एक जे भी देखने आया उनका बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ सबके। मिथिला मखान ऐसी मैथिली फिल्म थी, पहली मैथिली फिल्म थी जिसको नेशनल अवार्ड मिला था। नितिन चंद्रा, नीतू चंद्रा जी ने उनको प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया था, पर लोगों को पता नहीं है। तो मैंने अपने हिसाब से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, बोलो उनसे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, हम बोले हम तो किए हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। ये मत पूछे कि आपने क्या किया है, मैंने क्या किया है वो मैं जानता हूँ, मेरा समीर जानता है।
0: ये रेजिलियंस मुझे बहुत पसंद है बिहार के लोगों की, ये जो रेजिलियंस हम लेके जाते हैं, ये हमें अडैप्ट, भले ही मुंबई शहर हमें अडैप्टेबिलिटी सिखा देता है, बट वो जो रेजिलियंस लेके हम बिहार से जाते हैं वो बहुत रेयर देखने को मिलता है।
2: और कोई ऑप्शन नहीं है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक।
1: नहीं, हाल ही में आपने जो एक आपका बड़ा चला भी कि बिहारी होना कोई मजाक नहीं है, यही कहा था?
2: हाँ, बहुत स्वाभिमानी बात है बिहारी होना, बहुत गर्व की बात है। हाँ। और बिहारी होना उतना ही टफ है। मैं जब बिहार से दिल्ली गया, हिंदू कॉलेज में गया, वहां से मैंने अपना स्नातक किया, स्नातकोत्तर किया मैंने, बी और एम ए, हिंदी गिराने का मन कर रहा है आज। तो उसके बाद मैं वहां पे, लेकिन जब मैं गया तो वहां पे एक स्टीरियोटिपिकल एक परसेप्शन जो होता है कि बिहारी ऐसे ही

0: होंगे, तेल वेल लगा के वगैरह वगैरह, और आज भी एज एन एक्टर
1: बिहार के नहीं लगते, तुम बिहार के नहीं लगते,
0: मुझे भी इनको भी कहा होगा कि यार डोंट लुक लाइक अ बिहारी, तो मेरी समझ में नहीं आता था कि बिहारी
2: कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं
0: है, क्या कॉम्प्लीमेंट नहीं है, क्या बोला गया,
1: नहीं है ये कॉम्प्लीमेंट,
0: बिल्कुल भी नहीं था। तो हमें हैरी कह के बुलाया जाता था, दो चार गालियां जो दिल्ली गया भी, तो उसके बाद वो हैरी आ गया, तो वहां से होते होते होते जिंदगी आज मैं अगर यहाँ पे हूँ, कुछ मैं कह रहा हूँ और दो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये माता पिता के दिए संस्कार हैं और बिहार की मिट्टी ने ये सिखाया है, नेवर गिव अप नो मैटर व्हाट, जिंदगी में कुछ भी हो जाए छोड़ने का नहीं, करते रहने का। अब मेरे लिए एज एन एक्टर मेरे लिए एक वो भी चीज एक चैलेंज है कि मैं इतना बिहार बिहार करता हूं कि लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ बिहारी कलाकार ही हूं, मैं पंजाबी भी हो सकता हूं यार। अगर पंजाब का एक्टर, कोई भी एक्टर हो मान लीजिए कि अगर वो बिहारी लोगों को पसंद आ सकता है, साउथ का आ सकता है, तो बिहार का कलाकार भी, तो जैसे मनोज भैया ने, मनोज वाजपेयी सर ने एक बहुत अच्छी एक फिल्म की थी भोंसले, इतना अच्छा काम, इतनी अच्छी मराठी एक्टिंग उन्होंने की थी, पर वो दिक्कत वही है कि हम ही लोगों को पता नहीं होती। अब बिहारी को अगर सबसे पहले बिहार आगे नहीं बढ़ाएगा तो कौन बढ़ाएगा, और जो इंसान अपने घर से हार जाता है ना, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता, मैं उसके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। आप पूछेगा क्यों मैं ये कह रहा हूं, जो इंसान घर से हारा हुआ इंसान है, गांव घर में अगर आप जाते हैं, गांव घर में देखेंगे कि घर में बहुत सारी कलह होती है, बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं, और वही घर अगर एक सक्षम घर है, एक सशक्त घर है, उस घर का बच्चा कहीं भी चला जाता है, घर से नहीं हारना है। और हम बिहारियों को तो बिल्कुल घर से नहीं हारना है, मैं एकदम गर्जना के साथ कहना चाहता हूं, बिहारियों को हारना नहीं है, हमें सिखाया ही नहीं, हमारी मिट्टी ने हमें नहीं सिखाया है, और आज से नहीं, अशोका के टाइम से, 6th century BC से, हम ही लोग थे जो यहां से लेके अफगानिस्तान ईरान तक चले गए थे, हारेंगे कैसे यार, और जो हमारा है वो हमारे पास ही आएगा, वो कोई लेके जाने वाला नहीं है, ये भी मैं मानता हूँ।
2: पता है मैं तो इस वजह से ये भी मानती हूँ क्रांति, कि जो ये कहा जाता है ना कि वो अंग्रेज जब आए तो उन्होंने कोशिश की कि हौसला तोड़ा जाए सबसे पहले, तो सबसे सशक्त कौन, वो मगध साम्राज्य जो समूचे मतलब यहां की बाउंड्री से लेकर कहां कहां तक फैला हुआ था, तो तोड़ा गया बिहार की भी उस सम्मान को, उस आत्मसम्मान को। अब पीढ़ियों की जिम्मेदारी है कि धीरे धीरे हम उस आत्मसम्मान को एक ईंट दर ईंट जोड़ें, वापस बनाएं। और इसीलिए मुझे लगता है कला और पर्दा बहुत अहम हो जाता है उसमें, क्योंकि जो कहानियां वहां से निकलती हैं, जो किस्से निकलते हैं, वो आगे तक जाती है। दशरथ मांझी की एक कहानी जब आई तो क्षेत्र में सबने देखा कि सरकार का इंतजार नहीं करते हैं, भाई खुद से कर लेते हैं, और यही है बिहार जो हम कहते हैं।
1: बिल्कुल जैसा
2: आपने एक चीज से जो अभी कहा था कि तुम बिहारी नहीं लगते वाली बात,
1: हाँ जी,
2: हम लोग को तो फिर भी कोई कभी कह ले, तो ऐश्वर्या आप तो कभी ही नहीं लगती है। बहुत सारे लोगों को जब आपकी तस्वीर देखते हैं, और मैंने कहा कि ये बिहार से है, तो कहा नहीं,
1: उन्होंने बिहारियों को देखा नहीं है।
2: एग्जैक्टली
1: मुझे ऐसा लगता है, मतलब आपको तो देखते हुए हम सब यहां तक पहुंच गए, तो आई थिंक दे शुड डेफिनेटली टेक इंस्पिरेशन, वी हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम यू मैम, बट
2: सब इंस्पायर हो गए जैसे कपड़े पहन कर आए
1: हम आपके चेले। बिल्कुल, बट मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, रेजिलियंस एंड जहां तक लुक और चेहरे और पर्सनालिटी की बात होती है, मुझे लगता है लोगों को एक्सपोजर ही, और वो उसी छोटे लेंस से दिखाया गया है कि बिहार में सिर्फ लेबर क्लास है वो, जो कि बहुत ही कम प्रतिशत है। और जब मैं लोगों से मिलती हूँ, मुझे लगता है इसके बियॉन्ड है बिहार, इसके बहुत दूर दूर तक, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो जिन्होंने पढ़ा है बिहार के बारे में, पीपल हु आर वेल रेड, उनको शायद पता है। जब मैं उनसे इंटरेक्ट करती हूँ, दे रियली शो देयर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज की हाँ ये है, दिस ये बिहार है, यहाँ पे लोग सिर्फ लेबर नहीं है बल्कि यहाँ से काफी लोग बाहर निकल के बहुत कुछ किया है लोगों ने। पर अब नैरेटिव चेंज हो रहा है, वो छोटा सा लेंस अब थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि हाँ अब थोड़ा रिकग्निशन मिल रहा है हमें।
2: अच्छा, वैसे ये लेबर वाली बात पे भी मैं ये कहूंगी कि अगर हम न हो ना तो निर्माण न हो, और पहले मुझे केवल देश लगता था, अभी मैं इसराइल में थी, इसराइल में जितने लोग उस बम बारूद के बीच में खड़े होकर मुस्कुराते हुए निर्माण कर रहे थे वो बिहार के थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और जितने इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर हम यहाँ से, अगर हम ये बिहारी वहां पे नहीं रहेंगे तो आई डोंट नो, आई डोंट थिंक यू विल बी सेफ इन द सिटी।
2: वो लोग, वो विदेशी जो थे, वो शुक्र गुजार थे क्योंकि उनके अपने नहीं उन जगहों पर खड़े हो पा रहे थे, लेकिन बिहार के एक छोटे से गांव का लड़का वहां पर पास में बम गिरा है, आधिक वो बोला बस नियम का पालन करना है, सायरन बजता है, अंदर चले जाते हैं, बाद में निकल आते हैं काम करने।
0: टियर गैस नहीं है इस बार, टियर गैस नहीं है इस बार।
2: बट ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर,
0: बताइए आप, मतलब वहां पानी की बौछार जा रही है कि इंसान के शरीर को भेद दे, लेकिन वहां पे चल रहा है गाना। मतलब बिहार को लोगों ने मैम कान से देखा है, आंख से नहीं देखा है। एक बार बिहार आइए और कान से मत देखिए। कान से बहुत चला रहा, कब तक हम लोग, हम दोनों या कोई भी, आप भी, हम लोग कब तक यही बातें करते रहेंगे, लेबर ये, अब उससे अब बियॉन्ड जाने की जरूरत है हमें। तो बिहार को लोगों ने कान से देखा है, और जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जो जेंजीज भी हैं या फिर जो मिलेनियल, जितने भी लोग हैं, अपने दोस्तों को पकड़ के लाइए।
2: हमारे इस केस में सोशल मीडिया का बड़ा फायदा है,
0: बहुत बहुत फायदा।
2: आप जो वीडियोस बनाते हैं उससे पता चलता है, अच्छा ये बिहार में ऐसी जगह है।
0: मुझसे आज भी लोग पूछते हैं, जब भी मैं कुछ भी मैथिली में कहता हूँ या भोजपुरी में, अरे हमको तो पता ही नहीं था कि आपको मैथिली भी आती है, कि आप बेगूसराय के हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं। और मैं फख्र से कहता हूँ, बहुत लोगों को मैं जानता भी हूँ कि जो बिहार से निकलते ही अपनी चीजें ही भूल जाते हैं, भाषाएं छोड़ देते हैं, उनको भाषाएं आगे आती नहीं है। उसका सबसे बड़ा योगदान है मैं, बिकॉज इफ यू डोंट टेक प्राइड इन योर ओन यू नो वैल्यूज एंड कल्चर विच हैज बीन इनकल्केटेड इन यू बाय योर पेरेंट्स, बाहर वाला कोई क्यों करेगा, किसी को मतलब
1: नहीं। राइट, तो दूर की बात, मुझे लगता है एक्नॉलेजमेंट की भी कमी है, जो मुझे देखने को मिलता है कि आप वो कहना वो कतराते हैं अभी भी। बट आई होप ये थोड़ा बेटर हो जाए।
2: अच्छा, लोकेशंस के मामले में मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर जमुई का पूरा एरिया देख लीजिए, बड़े पहाड़ हैं सुंदर, उसमें गंगा किनारे की तो बात ही। आपसे अगर मैं तीन लोकेशन ऐसे बोलूं जहां पे अगर शूट हो जाए तो वो आज बड़े पर्दे पर हम जहां भी देख रहे हैं उसको टक्कर या उसको भी बीट कर दे, तो वो कौन सी जगह हो?
0: मैम, सासाराम में एक रोहतासगढ़ फोर्ट है, तो वहां पे अगर आप ऊपर जाएंगे, एक चौरासन टेम्पल है। कितने लोग जानते हैं इस बारे में चौरासन टेम्पल? अब देखिए, हमारे बिहार में ये चीजें हैं लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है। अब चौरासन क्यों? क्योंकि वहां पे 84 यानी कि 84 स्टेप्स हैं, और फिर महादेव का मंदिर है वहां पे। उसके उस तरफ आपको झारखंड दिखता है। आप यकीन माने, मैंने इससे पिक्चरेस्क जो कहते हैं ना, कि वो मैंने दृश्य देखा नहीं है। फिर आप चले जाएं राजगीर, नालंदा, और सासाराम महाराष्ट्र से या किसी भी मॉनसून केरला से कम नहीं है, अगर आप मॉनसून में यहां पे आते हैं तो। तो ऐसी तीन जगह क्यों मैम? बहुत सारी जगह हैं। मंदार पर्वत चले जाएं आप, सुल्तानगंज चले जाएं आप, कहीं भी चले जाएं, लेकिन बिहार अभी वैसा दिखा नहीं है जो अब दिखेगा आप लोगों के माध्यम से। और जितने भी लोग हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, आप लोग भी, जितने लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, अब जा जाके सबके हाथ में पावर आ गया है। अब किसी का कोई मोहताज नहीं है, हर आदमी अपने आप में हीरो है, हीरोइन है, हर आदमी को जो मन करेगा वैसा दिखाएगा। तो बिहार के बारे में बातें बहुत हुई, अब बिहार को अच्छे से दिखाना जरूरी है, मेरा यही मानना है।
1: दिखाया है खाकी में, बहुत दिखाया, और मुझे काफी तारीफ मिली थी खाकी के बाद कि बिहार इतना सुंदर है, हमें पता नहीं था। और मुझे लगता है सिनेमा इज अ वेरी गुड टीचर, सिनेमा के थ्रू बहुत चीजें लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है, और सिनेमा एक बहुत अच्छा मीडियम है जिससे लोगों को देखने को मिलता है कि हाँ दिस ये है। क्योंकि और हमारे जमाने में क्या, किताब में वो हम चीज नहीं दे पाएंगे जो विजुअल्स में मिलता है हमें देखने को, और वो बहुत ही थेरेप्यूटिक भी होता है।
2: तो आपकी फेवरेट जगह ऐसी कौन सी होगी जहां पर आप शोकेस करना चाहें?
1: मतलब मैं तो डाल्टनगंज में शूट भी कर रही थी, तो वो खेत खलिहान, मतलब इतनी जो ग्रीनरी है बिहार की, आई थिंक अब सब लोग कहते हैं कि काफी ग्रीनरी अब हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब नैरेटिव चेंज हो रहा है। पहले सिर्फ कुछ और दिखाया जाता था, अब लोग बिहार की खूबसूरती को भी देख रहे हैं, और काफी शूट्स हो रहे हैं। मुझे सुनने में भी आया दरभंगा में काफी शूट हुआ है, तो दैट मीन्स एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, तो मुझे इस बात का बहुत फक्र है।
2: सोचिए ना कि हिमालय से लेके गंगा तक सब कुछ है बिहार में, और बस जरूरत है कि उसको शोकेस करना है। और शोकेस भी मुझे लगता है कि अभी जो कंटेंट क्रिएटर्स बिहार के हैं उनकी क्रिएटिविटी दिखती रहती है, मैं तो बहुत सारों को फॉलो करती हूँ।
1: मुझे अभी फिलहाल दो दोस्तों ने भेजा है, वो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू ही, कि हमें बिहार में ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि कुछ कंटेंट क्रिएटर्स यहाँ पे वो पहाड़ों की इमेजेस डाल रहे हैं और वो काफी वायरल हो रहा है, तो उसके थ्रू भी आई थिंक डेफिनेटली सोशल मीडिया के जमाने में काफी एक्सपोजर मिल रहा है, जो मुझे लगता है काफी पहले मिलना चाहिए था। पर ट्रैक की बात चल रही है बिहार में, और मुझे लग रहा है मैं भी जल्दी आऊंगी।
2: ऑफकोर्स कर सकते हैं ट्रैकिंग, ट्रैकिंग ऑफकोर्स करना चाहिए। एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत बड़े पैमाने पर शुरू भी हो गया है बिहार में। गांधी ये बताइए कि कहते हैं ना कि वंस अ बिहारी ऑलवेज अ बिहारी, आप छोड़ भी दें तो भी नहीं छूटता है। कोई एक ऐसी बिहारी आदत है आपकी जो रह गई?
0: भात दाल आलू का भुजिया। अभी मैं ऐसे ही मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज बता रहा हूँ आपको। मेरे घर में जो हमारे साथ में रमेश एक हमारा मित्र है, हाउस हेल्प है, नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उन लोगों के नाम लेने बहुत जरूरी हैं जो आपके साथ खड़े रहते हैं। तो रमेश कुमार यादव उनका नाम है। तो वो गांव चले गए थे, और गांव जाने के बाद अब भूखे, अब उतना बनाना नहीं सीखा हमने, नहीं आ पाए, जिसके लिए मुझे बहुत कोई फक्र नहीं है, लेकिन आप यकीन मानिए, 2 महीने मैंने सिर्फ भात दाल आलू का भुजिया खाया है।
2: 2 महीने?
0: 2 महीने लगातार लंच में, और कुछ नहीं खाया। और उससे अच्छी आत्मिक तृप्ति आपको कहीं नहीं मिलती है मैम।
1: आप चूड़ा दही कैसे भूल सकते हैं?
0: चूड़ा दही तो नाश्ता हो गया, हम भोजन की बात कर रहे हैं। वो जलखई भोग ले, जलखई भोग ले।
2: मैथिल तो पूरा 3 टाइम चूड़ा दही खा लेंगे।
0: चूड़ा दही नहीं खाते हम लोग दही चूड़ा खाते हैं। चूड़ा दही में फर्क है, चूड़े में दही पड़ती है, हम लोग दही में चूड़ा डाल के खाते हैं। और मिथिला की दही इतनी फेमस है मैम, ये बात हम मैथिली में कहा, मटकूरी में वो दही जैसी से पोराई छे, आप समझ रही हैं? कते आदमी पूछ रहे यहाँ सब, चलो जितने पूछे छे। तो दही जो है वो मटके में जमाई जाती है, और दही में इतना घी और मक्खन होता है मैम, आप बाकी नॉर्मल दही को दीवार पे मारिए, दही ऐसे गिरेगी। और वो मटके वाली दही को आप दीवार पे मारिए और देखिए कैसे गिरती है, वो ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे गिरती है, क्योंकि लहराते हुए गिरती है, क्योंकि इतना ज्यादा दिल, इतना ज्यादा प्रेम उसके अंदर होता है। तभी हम लोग दही चूड़ा खाते हैं, चूड़ा दही नहीं खाते।
1: ये बात तो सच है, बहुत प्रेम है इधर।
2: आपकी कोई है बिहारी आदत ऐसी जो रही, कोई एक चीज जो आपको लगता है टिपिकल बिहारी? नहीं,
1: तो हर चाय मेरे मुंह से ही निकला भक्साला। मतलब मेरी दादी कहती थी भक मुझौसा। मुझे भी नहीं पता मुझौसा का मतलब क्या है, लेकिन मेरी दादी हमेशा कहती थी मुझौसा सब, तो ये काफी फनी होता था। और अभी तक तो मुझे में रहा हुआ है, बसा हुआ है
0: बॉम्बे में। अगर मैं 4 बैंड्रा कुछ भी ऐसा चले तो वहाँ पे कुछ जैसा हो जाते हैं। ऐसे बिहारियों की ये बड़ी अच्छी आदत भी है कि उनको आपको जैसा भी आप उनको वेसल, पानी का नेचर होता है, जो भी देंगे वैसे शेप में ढल जाते हैं।
1: अडेप्टेबिलिटी
0: तो बैंड्रा में
1: कर दिया है, बॉम्बे शहर ने हमें पॉलिश
0: कर दिया है। तो अगर मैं बैंड्रा जाऊँ तो वहाँ जैसा बन जाऊंगा, कहीं भी चला जाऊँ। लेकिन जैसे
1: पिताजी कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, और बस हम पानी बन गए, अब हम जहाँ जाते हैं वैसे ही बन जाते हैं।
0: लेकिन 4 बिहारी अगर आपको इकट्ठा दिख जाए सब भूल जाते हैं, स श र ड। अरे भाट
2: मैं हम
0: मैं तो कभी था ही नहीं। मुझे लगता है कि बिहार के लोगों ने सबसे पहले दुनिया,
2: अब हो गया है, अब पूरी पीढ़ी जो है मैं बोलती
0: हूँ। नहीं मतलब जिस पीढ़ी से हम आते हैं,
2: सही बोल रहे हैं कि नहीं?
1: नहीं नहीं
2: नहीं, नहीं पीछे बताओ सब।
1: हम घर जाते हैं तो हम ऐसे ही बात करते हैं, हम में तुरंत बदल जाता है, वो घर घर होता है। मुझे लगता है
0: आलू का चोखा होता है घर,
1: बैंगन का भरता,
0: बैंगन के तरुआ हो घर, बैंगन के तरुआ हो बचका होता है घर। और दूसरी चीज ये है कि मैम जैसे ही 4 लोग मिलेंगे ना वो सब भूल जाते हैं, उनको रड़ा से कोई मतलब नहीं होता। 5 साल बता रहे हैं ना तुमको रे, और उन्हीं को आप देखिए बैंड्रा जाते हो, व्हाट ब्रो, वेल या टेल मी ब्रो, ओह माय गॉड, या आई नो आई नो।
2: नहीं नहीं, जनरली क्या होता है कि उससे निकलने के बाद आप अंग्रेजी ही बोलते हैं ताकि आपकी हिंदी में बिहारी ना सुनाई दे जाए। आप इतना बोलकर आए होते हैं कि आप उसके बाद कुछ दिन अंग्रेजी में रहते हैं, संभल जाते हैं, उसके बाद वापस।
0: और 4 अगर आपके बिहार के दोस्त हों तो सबसे पहले लगता है कि अगर आप उनके सामने थोड़ी सी भी अंग्रेजी अगर आप झाड़िए कि साला तुम अंग्रेजी बोलेगा हमसे रे, हमारा PhD है इंग्लिश में। ओके सॉरी ब्रो।
2: अच्छा लेकिन बिहार में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका न तो हिंदी में कोई पर्याय मिल सकता है न अंग्रेजी में मिल सकता है, और एक शब्द में मतलब सागर समा जाता है। ऐसा कोई शब्द है आपका जो आप?
0: नानी से हम बहुत सुनते थे बरहन झट्टा।
2: क्या
0: बरहन झट्टा?
2: क्या होता है?
0: अरे बहन हुई थी ने मैम झाड़ू, तो झाड़ू से झाड़ना मतलब उसको एकदम पूरा उसको ऊपर नीचे नीचे मारिए। हाँ तो वो बहन झट्टा। और नानी से बहुत सारे ऐसे ऐसे गालियां मैंने मैथिली की सीखी जो बोल नहीं सकते हैं। और नानी हमारी बहुत क्यूट थी, वो दांत मात उनके कम हो गए थे तो गाली भी दिया करती थी, बड़ा अच्छा लगता था।
1: नहीं मुझे लगता बिहारी में बहुत ऐसे शब्द जिसका पर्याय नहीं हो सकता, मतलब अभी मुझे मतलब ही नहीं पता।
2: एक ही इमोशन के लिए कई वर्ड भी होते हैं, सर दर्द को लेकर भी,
0: माथ दुखाई है।
1: अभी मेरे साथ मेरी टीम थी और थोड़ा हेयर मेकअप चल रहा था, तो हेयर के लिए मैंने बोला ये क्या कुरकुर कर दिया तुमने मेरे बालों को, उससे भी समझ नहीं आया कुरकुर क्या है। तो वो कभी कभी ऑटोमेटिक वो जहन में बसा होता है, कुछ भी निकल जाता है मुंह से, और वी ओन इट, क्या कर सकते हैं।
2: कपार
0: शब्द ही नहीं, कपार
2: माथा भिन भिनाता भी है,
0: भिन भिनाता है माथा, कपार हिलता भी है, अरे कपार में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ। मैम बिहारी शब्द नहीं, बिहारी का ही कोई पर्याय नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। हाँ। मेरा ऐसा मानना है बिहारी होने का कोई पर्याय कहीं अपवाद है ही नहीं। वंस ऑफ बिहारी,
1: ऑलवेज बिहारी,
0: 7 जन्मों का बिहारी।
2: जिस चीज से मैंने शुरुआत की थी अंत में पहुंच के मैं उसी चीज पे, कि एक कैरेक्टर को निभाने में इस मिट्टी से निकलना कितना मदद कर जाता है आपको कितना उसमें ढलने के लिए, क्योंकि हम जो हम कहते हैं ना कि हर एक किरदार अपने जीवन में निभाते चले जाते हैं, कितनी चीजें एक व्यक्ति के अंदर बन जाती हैं यहां पर, क्योंकि आप सर्वाइवर होते हैं
0: जी, जी।
2: क्या ये वाकई मदद करती है जब आप एक इंडस्ट्री में जाते हैं?
0: कुछ चीजें हैं मैम, जैसे यहां से जब मैं निकला दिल्ली गया तो दिल्ली में सहसा रोड़ों की चैलेंजेस बहुत जिंदगी में होती है।
2: आपको था?
0: बिल्कुल था, अरे बिल्कुल था। बस आ रही है राम, सुनो ना, तो इस तरह की चीजें थी, लेकिन फिर धीरे धीरे आदमी अब जिस क्षेत्र में मैं हूं तो उसमें आपको काम करना पड़ेगा।
2: आपने सीखा, आपने अभ्यास किया।
0: वो नेवर गिव अप वाली जो एक चीज है ना, जो आदत है या फिर उसको आप हिम्मत कह लीजिए, वो इसी मिट्टी से आई है, माँ बाप से आई है, दोस्तों से आई है, आप ऐसे शुभ चिंतकों से आई है, और उसी वजह से मैं आज तक मैं हमेशा मानता हूं कि जितने लोग मेरे काम को पसंद करते हैं, दो चार गालियां भी देते हैं, सब एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इनके बिना मैं कुछ नहीं हूं वहां पे। मेरे काम से मुझे, अभी मैंने कहा भी था कि काम खत्म इंसान खत्म, तो काम खत्म नाम खत्म पहचान खत्म। इंसान को खत्म तभी नहीं होता है इंसान जब उसका हृदय जिंदा रहता है। हृदय को नहीं मरने देना है, और बिहारियों का हृदय बहुत विशाल है, हिमालय की तरह। हमारा ऐसा बुझा था, बाकी तो लोग सबके अपन अपने ओपिनियन हुई।
2: पर एक जो छोटे से गांव में बैठी लड़की सुन रही है आपको, क्या वो सपना देख सकती है वहां बंबई पहुंचने का, उस बड़े पर्दे पर दिखने का, उस ओटीटी सीरीज में दिखने का?
0: और मैं भी एक सवाल पूछना चाहूंगा इनके साथ ही कि ये
1: ऐश्वर्या, एक साथ नहीं, पहले मैं उनका
0: नहीं, उसी में बाद में आप कंटिन्यू कर सकती हैं कि ऐश्वर्या और सुष्मिता, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो तब की जो मेरे ख्याल से बच्चों ने देखा होगा, एक एस्पिरेशन
2: कहानी है।
0: एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने पूछा ये कि लोगों को सीखने को मिलेगा उससे।
2: आपके अंदर की सबसे बिहारी चीज आपका नाम ही है।
1: दो नाम
2: बताइए, कहानी सुनाइए।
1: तो मैं नाम से ही शुरुआत करती हूँ इनके सवाल से कि दो नाम क्यों पड़ा। मुझे लगता है आप सब यहाँ जानते हैं मेरा नाम दो नाम क्यों पड़ा, पर जो कहानी ये है कि जब ऐश्वर्या और सुष्मिता राय, ऐश्वर्या राय और सुष्मिता से इन दोनों जब मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स के लिए गए थी, उन्हीं उसी साल मेरा जन्म हुआ था। और हमारे बिहार में काफी इसको माना जाता है कि जब इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रही थी तो काफी गर्व की बात थी, तो मेरे माता पिता को बहुत पसंद आया ये नाम और उन्होंने बस नाम रख दिया। और पॉलिटिकल रीजंस जो भी रहे हैं वो उसको मैं अवॉइड करूंगी अभी वो अब आई थिंक खत्म हो चुका है, तो आई एम स्टिल स्टिकिंग, अब मैं इसी नाम के साथ आगे बढ़ रही हूँ। मेरी बहनों ने अपना नाम चेंज कर लिया है पर मैं आगे बढ़ती हूँ उसी नाम के साथ। और आपके एक सवाल, आपके सवाल पे आती हूँ कि एक छोटे से गांव में अगर एक लड़की बैठी और अगर वो सपना देखना चाहती है, प्लीज मैं तो कहूंगी उन्हें देखना चाहिए। आज हमारे हाथ में एक छोटा सा मोबाइल है जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन है, एक रिसर्च, एक कुछ भी क्वेश्चन डालिए और आपको हर कुछ मिलेगा। आई थिंक स्काई इज द लिमिट। बिल्कुल भी मत, मुझे लगता है बिहार के पेरेंट्स बहुत प्रोत्साहित करते हैं अपने बच्चों को। मेरे खुद माँ बाप ने मेरे बहुत मुझे प्रोत्साहित किया है, भले ही बाहर वालों ने नहीं किया कभी कभी, बट वो पेरेंट सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो नहीं कर पाते प्लीज वो भी करें, और सपना देखना बंद मत करें। अपने आप में हिम्मत रखे और इतना करेज रखे कि हर चीज पूरा होता है। अगर मैं कर सकती हूँ, निकल सकती हूँ दरभंगा से और बॉम्बे तक, तो आई थिंक आप सब कर सकते हैं।
2: बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ हमारे मंच पर आने के लिए।
0: थैंक यू सो मच मैम।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
6: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
7: डीयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे किए गए घोषित, अध्यक्ष समेत 3 पदों पर एबीवीपी ने हासिल की जीत, उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु चौकीन रहे विजय। तेलंगाना की पलवंचा में करोड़ों के नोटों से सजे गणपति बप्पा, 2,90,00,000 रुपए के नोटों से हुई पंडाल की सजावट, 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोटों का किया गया इस्तेमाल। राधाष्टमी के मौके पर बरसाने में आस्था और उल्लास का संगम, गलियों में सुनाई दे रही बधाई और मंगल गीतों की गूंज, भव्य रूप से मनाया जा रहा श्री राधा रानी का जन्मोत्सव।
6: एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, भरोसा तुम हो।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
7: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव, और अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले गणपति बप्पा की बात कर लेते हैं। तो बप्पा का दरबार जो है वो सजा हुआ है और भक्ति के साथ भव्यता की कई रंग नजर आ रहे हैं। कहीं 108 किलो चांदी और सोने से सजा गजराज का दिव्य स्वरूप है, तो कहीं 251 किलो के विशाल मोदक का भोग अर्पित किया गया है। कहीं हीरो से बप्पा का खास अलंकार है, तो कहीं बद्रीनाथ धाम की प्रतिकृति थीम पर विशेष तौर पर पंडाल बनाया गया है। सूरत में गणपति तक पहुंचने के लिए डर और रोमांच भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, तो काशी में ढोल ताशों के बीच महाराष्ट्र वाली भक्ति के रंग ने सभी का मन मोह लिया है।
8: चांदी का वैभव, सोने की चमक, हीरो की जगमगाहट, 251 किलो के मोदक की मिठास और करोड़ों के नोटों से सजा गणराय का दरबार, कहीं बद्रीनाथ धाम की दिव्यता है तो कहीं डर और रोमांच से भरे रास्ते के बाद बप्पा के दर्शन। और जब महाराष्ट्र की भक्ति पहुंचती है काशी की गलियों तक तो ढोल ताशों की गूंज में पूरा शहर बन जाता है मिनी महाराष्ट्र। गणेश उत्सव के नजारे बता रहे हैं कि विघ्नहर्ता के दरबार में भक्ति के रंग जितने अलग हैं, उतनी ही अनोखी है उन्हें सजाने और सवारने की श्रद्धा। महाराष्ट्र की जालना में तो गजानन का स्वरूप देखते ही नजरें ठहर जा रही हैं। श्री अनोखा गणेश मंडल के दरबार में विराजे हैं करीब 5.5 फीट ऊंचे 108 किलो चांदी से बने गणपति। ऊपर से 40 से 50 तोला सोने की परत और कीमत करीब 3.5 से 4 करोड़ रुपए। खामगांव के सराफा व्यापारी विश्वकर्मा जांगड़ ने इस बहुमूल्य प्रतिमा को तैयार किया है।
9: आप देख रहे हैं एक भव्य दिव्य गणेश जी की मूर्ति 108 किलो की हमारे सभी सदस्य द्वारा बनाई गई है और इसमें 40 से 50 तोले के आसपास स्वर्ण भी है। तो यह लोगों को, जालना वासियों को और सभी भक्तजनों को एक सबकी मनोकामनाएं पूरी हो रही है ऐसा सभी जने यहाँ आकर माइक में बोल रहे हैं। और अनोखा गणेश मंडल ऐसा गणेश मंडल है जो छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले पर ही हमारा 11वां वर्ष है और स्वर्ण की और चांदी की मूर्ति का यह 4वां साल है। हम यहाँ पर हर साल यह सभी भक्तगणों के आग्रह पर दर्शन को लाते हैं और इसको बाद में हम यहाँ पर जालना क्रिटिकल हॉस्पिटल है सोनी साहब का वह एक छोटा सा कांच का मंदिर बना के वह स्थापना करते और सभी भक्तजनों की मांगनी के अनुसार हम जल्द से जल्द जालना शहर में एक भव्य दिव्य अनोखा की गणेश जी की मूर्ति का मंदिर हम बनाने जा रहे हैं।
8: कीमती प्रतिमा है तो सुरक्षा भी चाक चौबंद है। 6 सुरक्षा कर्मी 24 घंटे निगरानी में तैनात है। सीसीटीवी कैमरों से आसपास के परिसर पर भी नजर रखी जा रही है। पिछले 3 साल से 108 किलो चांदी और सोने की परत वाली प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इस बार ये सिलसिला लगातार 4 साल से जारी है। पुणे में तो चारों तरफ बप्पा का अद्भुत रूप बना हुआ है लेकिन वहीं गणराय के चरणों में भोग भी ऐसा है कि देखने वालों की आंखें ठहर जाएं। श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई सार्वजनिक गणपति के 134वें उत्सव में 251 किलो का रसमलाई फ्लेवर मोदक केक अर्पित किया गया। इस विशाल नैवेद्य को तैयार करने में 40 से 50 कलाकारों ने मेहनत की है। ट्रॉली से जब ये भव्य केक मंडप तक पहुंचा तो श्रद्धालुओं की भीड़ इसे देखने उमड़ पड़ी। इसके साथ ही मोतीचूर लड्डू का भी विशाल नैवेद्य चढ़ाया गया। लड्डू इतना भारी था कि फोर्कलिफ्ट की मदद लेनी पड़ी। मालानी परिवार 26 साल से इस परंपरा को निभा रहा है। एक दान स्वरूप के लिए सिंबल ऑफ ऑनर नाम का खास अलंकार तैयार किया गया। गणेश भक्त समर शेख की संकल्पना से बने इस आभूषण में 55 हीरे जड़े हैं। कुल वजन 9.69 कैरेट। 5 कारीगरों ने 2 महीने की मेहनत से इसे तैयार किया। अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। अमरावती में भी बप्पा की अलग ही भव्यता देखने को मिल रही है। जहां रुक्मणी गणेश उत्सव मंडल ने इस बार श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की प्रतिकृति तैयार की है। साइंस कोर मैदान में बने पंडाल में गणपति की प्रतिमा के साथ बद्रीनाथ मंदिर की भव्य झांकी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
10: उत्तराखंड में प्रसिद्ध जो मंदिर है बद्रीनाथ मंदिर, उसकी झांकी हमने यहाँ बना के अमरावती के लोगों के दर्शन के लिए यहाँ पे दिखावा सादर किया है और साथ में ही सामाजिक उपक्रम देने के लिए 10 दिन आरोग्य शिविर का यहाँ पे आयोजन किया गया है।
8: 41 सालों से अलग अलग धार्मिक स्थलों को थीम बनाकर उत्सव मनाने वाला यह मंडल इस बार अमरावती में ही बद्रीनाथ धाम जैसा अनुभव देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन गुजरात के सूरत में गणपति दर्शन का रास्ता बिल्कुल अलग है। महिधरपुरा में बना पंडाल श्रद्धालुओं को पहले ले जाता है डर और रहस्य की दुनिया में। 3 से 4 लेयर में तैयार इस हॉरर थीम में कहीं भूत प्रेत, कहीं पिशाच तो कहीं डरावने किरदार। लाइन में आगे बढ़ते ही हर मोड़ पर नया सीन सामने आता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे किसी हॉरर फिल्म के सेट में पहुंच गए हो। आयोजकों ने इस कॉन्सेप्ट की करीब 6 महीने तक प्लानिंग की थी।
11: गणेश उत्सव के दौरान अलग अलग प्रकार की थीम देखने को मिल रही है और हम इस वक्त पहुंचे हैं एक गणेश पंडाल में जहां एक हॉरर थीम पर गणेश पंडाल बनाया गया है। तस्वीरों के जरिए हम आपको पहले बताने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा एक पर्दा लगा हुआ है और इसके अंदर पूरा हॉरर जो सीन है वो क्रिएट होता है और लोग है इसके अंदर से पूरा भूत का एहसास करते हैं, हॉरर सीन का पूरा एहसास करते हैं। आप देखेंगे वाकई में देखने में एकदम से बहुत ही डेंजर लगता है, बच्चे यहाँ से डर भी जाते हैं लेकिन आनंद भी लेते हैं। तो लोग आते हैं, उन्हें यहाँ पर कहीं कहीं एक डराने का भी काम किया जाता है, लोग इंजॉय करते हैं। तो ये गणेश पंडाल में अगर भगवान गणेश के दर्शन करने उससे पहले लोग जो है यहाँ पर हॉरर शो देखते हैं और हॉरर शो के बाद लोग भगवान गणेश के दर्शन करते हैं। तो अपने आप में एक अनोखा गणेश पंडाल सूरत का है ये, जहाँ पर हॉरर थीम पर ये गणेश पंडाल तैयार किया गया है। यहाँ लोग खास करके बच्चे बहुत ही आनंद पूर्वक यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। हॉरर शो है यहाँ पर, एक तरह से जो कलाकार हैं वो अपना इस पे थीम दिखाते हैं और यहाँ उसके बाद लोग भगवान गणेश के दर्शन करने पहुँचते हैं। यहाँ पीछे देखें, गणेश भगवान का ये पंडाल है, यहाँ पर जो है भगवान गणेश विराजमान है, इनकी पूजा पाठ होता है। यानी कि गणेश पंडाल में प्रवेश करने से पहले आपको हॉरर थीम दिखाई जाती है और उसके बाद भगवान गणेश के दर्शन कराए जाते हैं।
8: पिछले 2 महीनों में पंडाल को तैयार किया गया, मकसद था कि सूरत के लोगों को विदेशों में दिखाई देने वाले हेलोवीन और मिस्ट्री थीम का अनुभव यहीं कराया जाए। इसको लेकर बच्चों में खासा उत्साह है। डर का ये रास्ता पार करने के बाद ही सामने आते हैं गणपति बप्पा।
11: ये फॉरेन कंट्री में ऐसा थीम जो आप लोग देखने को मिलने आया, तो ये साल हमने ऐसा सोचा, हम आखिरी 4 साल से ये प्रोग्राम बना रहे हैं लेकिन ये साल हमने बहुत सोच समझ के, आज समझ लो कि 6 महीने से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि अपने सूरत की जनता को, कि बाहर का दुनिया में जो जा नहीं सकते हैं, जो देखने जा नहीं सकते हैं, उन लोगों को यहाँ पे वो दुनिया का एहसास करवाया कि बाहर की दुनिया में हॉलोविन थीम क्या होता है, मिस्ट्री थीम क्या होता है, वो आप लोग सूरत की जनता को दिखाने के लिए अपने ये प्लानिंग किया है।
8: तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडैम में पलवंचा में गणेश चतुर्थी पर 2 प्रतिमाओं का श्रृंगार नोटों से किया गया। बापूजी नगर में 1,40,00,000 रुपए के नोटों से सजावट की। टीम एकदंत यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरी प्रतिमा पर 1,50,00,000 रुपए के नोट लगाए, यानी दोनों जगह मिलाकर 2,90,00,000 रुपए के नोटों से गणराय का दरबार सजाया गया। आयोजकों ने स्थानीय कारोबारियों से चंदा जुटाया, बैंकर्स ने भी नए नोट उपलब्ध कराकर सहयोग दिया। भोले की नगरी काशी में गणपति उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। इन दिनों हर हर महादेव के साथ गणपति बप्पा मोरिया की गूंज भी सुनाई दे रही है। मुंबई के लालबाग के राजा की तर्ज पर यहां गणपति की प्रतिमूर्ति की भव्य शोभा यात्रा निकली। बुलानाला से शुरू हुई इस यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। किसी ने मराठी वेशभूषा पहनी तो भुसावल से आए गजपति ढोलताशा दल के 80 कलाकारों ने अपनी ताल से माहौल में महाराष्ट्र का रंग भर दिया।
12: हर बार आते हैं यहाँ पे, उनको हमारी तरफ से जो हम मान वंदना कहते हैं वो देते हैं। ढोल पतक ये महाराष्ट्र की एक परंपरा है जो हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ हमारा एक ही ऐसा पतक है कि जो जिनका खुद का सार्वजनिक गणेशोत्सव का मंडल भी है।
13: यहाँ पर आप लोग का जो परफॉर्मेंस है बाकी जगहों से कितना ज्यादा अलग हो जाता है, कितनी एनर्जी
12: है? हमारी जो पहली बात तो ये है कि ये महादेव की नगरी है तो ऑलरेडी वाइब्स हाई ऑन रहती है। जैसे महादेव जी का डमरू बजता है वैसे ही हमारे बच्चों के ढोल बजते हैं उतनी ही एनर्जी के साथ। बस हमारी यही कामना है महादेव से कि सब अच्छा हो आगे भी।
8: गणेश उत्सव के नजारे अलग अलग जरूर है लेकिन भावना एक है, पार्वती नंदन को अपने दिल के सबसे करीब रखना। वाराणसी से रोशन जायसवाल, जालना से गौरव साली, सूरत से संजय सिंह, अमरावती से धनंजय साबले, तेलंगाना से अब्दुल बशीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: राधा रानी जी की जन्मस्थली यानी कि बरसाना में आज राधा अष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। जन्मोत्सव में राधा रानी को पीली पोशाक धारण करवाई गई है। बरसाना में राधा रानी जी के मंदिर और उनके गांव में इस अवसर पर खास सजावट भी की गई है। श्रद्धालुओं का उत्साह इस दौरान देखते ही बन रहा है।

0: राधे राधे की गूंज। भक्ति भाव से परिपूर्ण माहौल, ये तस्वीरें बरसाने के ब्रह्मांचल पर्वत पर स्थित श्री लाडली जी महाराज भानु दुलारी राधा रानी जी के मंदिर की है। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग मंदिर की अलौकिक छटा देखते ही बनती है। यहाँ पर किशोरी जी का प्राकट्योत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। कहीं बधाइयाँ गाई जा रही हैं, तो कहीं भजन कीर्तन चल रहा है। श्री जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हर कोई अपने तरीके से लाडली जी के इस उत्सव में शरीक हो रहा है। जिस प्रकार ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है, उसी तरह राधा रानी जी के प्राकट्य उत्सव के अवसर पर भी लोगों के उल्लास में कोई कमी नहीं है।
1: राधा रानी के जन्मोत्सव पर बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो सुकून कहीं नहीं मिलता वो राधा रानी के पास आ करके मिलता है। और कहीं मतलब कितने भी आपके पास दुख हो, आप राधा रानी के मंदिर में जैसे ही आएंगे सारे दुख आप भूल जाते हैं।
2: मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, और इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई कि यहाँ पे जो आके हुई है ना, मैं बता नहीं सकती शब्दों में कि कैसा लग रहा है।
0: सिर्फ ब्रज ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु इस उत्सव में भांग लेने बरसाने पहुंचे। कई लोग अपने लड्डू गोपाल और राधा जी के बाल स्वरूप को साथ लेकर मंदिर परिसर में भक्ति भाव से अभिभूत दिखे।
3: बड़े हर्षोल्लास से है, पूरे देश में बन रही है राधा रानी। बोलो राधा रानी की जय, जग की महारानी। और हमारी आराधना सब चीज इनसे जुड़ी हुई है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
4: बहुत अच्छी सजावट है राधा रानी के मंदिर की, बहुत ही अच्छी सुंदर प्रिय, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। राधे राधे।
5: ये मंगलमय उत्सव हम सब के लिए एक उत्साहवर्धक उत्सव है, जहां सब रसिक जन मिलकर के बरसाने में आते हैं और समाज में इकट्ठे होकर भक्ति में रस की धारा बहाते हैं। आप सबको पुनः एक बार राधाअष्टमी पर्व की बहुत बहुत बधाई। जय जय श्री राधे।
0: इस बार श्री राधा रानी जी का 5254वां प्राकट्य उत्सव मनाया गया है। इस अवसर पर तड़के 4 से 5 बजे के बीच ही ब्रह्म मुहूर्त में लाडली जी का जन्म अभिषेक किया गया। इस बार 27 कुओं का जल लाकर राधा रानी जी का महाअभिषेक किया गया, क्योंकि राधा रानी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। साथ ही दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बने पंचामृत से भी उनका महाअभिषेक किया गया। 11 क्विंटल दूध, इतने ही दही, 21 किलो गाय के शुद्ध घी, 21 किलो शहद, 51 किलो खांड से राधा रानी का अभिषेक हुआ। 1 घंटे तक महाअभिषेक के बाद राधा रानी जी की विशेष आरती की गई, जिसे आरती नहीं आरता कहा जाता है। इसे मंदिर की सेवायत गोस्वामियों के परिवार की महिलाएं संपन्न करती हैं। राधा अष्टमी के दिव्य उत्सव की तैयारी एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है।
6: समस्त गोस्वामी परिकर की लाली के लिए हमारी बधाई गायन हो है, या को हम समाज कहे हैं, तो वो समाज को गायन हो, उसके तत्पश्चात रात्रि मध्य रात्रि में 2 बजे करीब नंदगांव बरसाने के दोनों समस्त गोस्वामी परिकर बैठ के श्री लाली जी की अलौकिक आनंदमयी जो बधाइयों को गायन करें भैया, और वामे हम लाड़ लड़ा में कि मेरी किशोरी जी जब प्रकट भई, किशोरी जी धरातल पे आई तो किस प्रकार से आनंद भयो, किस प्रकार से ब्रिज में आनंद भयो, कितनो उल्लास भयो, या को हम जो है प्रारूप जीवंत उदाहरण द्वापर की तरह करें हैं।
0: लाडली जी का प्राकट्य उत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद मनाया जाता है। माना जाता है कि श्री जी का अवतरण भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को हुआ था। ऐसे में इस अवसर पर परंपरा के अनुसार विधि विधान से राधा रानी जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है और बाल रूप में उनकी पूजा अर्चना की जाती है।
6: भाद्रपद शुक्ला अष्टमी के दिवस मूल नक्षत्र में श्री लाडली जी को प्रादुर्भाव भयो है, तो सुबह 4 बजे 5 बजे के बीच हमारी किशोरी जी को जो है वहाँ पे अभिषेक हुए है। अभिषेक में पंचगम्य से, दूध दही से, बहुत बल कलवस्त्रम में मेरी प्रिया जी को अभिषेक हो। बाल स्वरूप को हम लाली स्वरूप माने, अपनी पुत्री स्वरूप माने मेरी किशोरी जी को। उसके तत्पश्चात 5 बजे के बाद मंगला आरतो हो है, आरती नहीं मंगला आरतो। उसके पश्चात 2 घंटे के बाद में 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक श्री स्वामी जी के श्रृंगार के नव नूतन बड़े और सुनहरे श्रृंगार में पोशाक में प्रिया जी को दर्शन हो है।
0: अष्टमी के दिन शाम को श्रद्धालुओं को लाडली जी के विशेष दर्शन होते हैं। पहले राधा रानी जी शीश महल में विराजमान होकर दर्शन देती हैं, फिर उन्हें सोने की पालकी में विराजमान कर महल के नीचे बनी सफेद छतरी में लाया जाता है, जहां श्रद्धालुओं को उनकी अलौकिक झलक पाने का अवसर मिलता है। साल में केवल 3 बार श्रद्धालुओं को इस प्रकार किशोरी जी के अनुपम दर्शन होते हैं।
6: एक तो हमारे हरियाली थी जिस दिन हिंडोला पड़े हमारो, एक भाद्रपद में ये राधाष्टमी जिस दिन हमारी किशोरी जी बाल स्वरूप में हमारे जो सबको भक्तों को दर्शन दे हैं, और एक तीसरी बार फाल्गुन मास में पूर्ण मासी के जिस दिन फूल डोलो है, बाद में हमारी किशोरी जी समस्त भक्त लोगों को देखते भक्त लोगों को दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं। इस प्रकार से जो है हमारा जो है राधाष्टमी को बड़े उल्लास के साथ में, जैसे कि भैया घर में कोई बेटा बेटी आवे उसे हजार लाखों करोड़ों गुना जो है समस्त ब्रजवासी आओ आनंद उल्लास से मनावे।
0: बरसाना के लोग राधा जी को पुत्री के समान मानते हैं, लिहाजा राधा अष्टमी के अवसर पर उनका उल्लास देखते ही बनता है। माना जाता है कि किशोरी जी के जन्मोत्सव के अवसर पर उनके अभिषेक के दर्शन से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। बरसाने में चारों ओर श्री जी के प्राकट्य उत्सव का उत्साह साफ नजर आ रहा है। खास तौर से राधा रानी जी की मंदिर की छटा देखते ही बनती है।
7: लाडली जी मंदिर जो है वो पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है, और इस तरह चारों तरफ लाइटिंग लगाई गई है, रंग बिरंगी रोशनी है, वो पूरा मंदिर जो राधा रानी के जन्म उत्सव के लिए बड़े भव्यता और दिव्यता के साथ सजाया गया है। जो भी भक्त यहाँ आए वो राधा रानी में खो जाए।
0: इस अवसर पर मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते रंगीली गली में भी भव्य सजावट की गई।
7: इस तरह पूरे बरसाना जो रंगीली गली को भगवान जो राधा रानी का मंदिर है रंगीली महल उसको जो रास्ता जाता है उसे इस तरह बड़े भव्यता और दिव्यता के साथ लाइटिंग लगा के सजाया गया है, संवारा गया है। पूरे रास्ते में लाइटिंग लगी हुई है और तमाम जो श्रद्धालु हैं लाखों की संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं।
0: बरसाने में शुक्रवार की रात से ही हर ओर यहाँ पर श्रद्धालुओं की खास चहल पहल नजर आई, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि आखिर ये अवसर लाडली जी के अवतरण दिवस का जो है। राधे राधे की गूंज के बीच श्रद्धालुओं ने लाडली जी का दिव्य प्राकट्य उत्सव मनाया है और उनसे सुख समृद्धि की कामना की है। बरसाना से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: नैनीताल में मां नंदा देवी महोत्सव के तहत नंदाष्टमी का पर्व पूरे भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मां नंदा सुनंदा के दर्शन के लिए नैना देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। फूलों से सजे भव्य दरबार में मां का मनमोहक श्रृंगार किया गया। सुबह करीब 4 बजे विधि विधान के साथ मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कर उन्हें श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए विराजमान किया गया। इसके बाद मंदिर में भक्तों की कतार लगनी शुरू हो गई। मंदिर परिसर में मां नंदा सुनंदा के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। भक्तों ने मां के दर्शन कर सुख शांति और समृद्धि की कामना की। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं मेरठ, जहां पर इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम के हैरतअंगेज करतब जो हैं सभी को उसने हैरान कर दिया। देखिए 1 लाख से ज्यादा लोगों ने आसमान में हुए शानदार परफॉर्मेंस का लुत्फ उठाया। देश को गौरवान्वित करने वाले योद्धाओं के पराक्रम की जमकर प्रशंसा भी की गई।
9: आसमान में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम की गर्जना। 9 Hawk MK-132 विमानों का रोमांच, मानो मेरठ के लिए शनिवार का दिन मान शान और हिंदुस्तान के पराक्रम की पहचान का रहा। शौर्य, साहस और अदम्य वीरता की प्रतीक सूर्य किरण टीम ने मेरठ के आसमां में हिम्मत, जज्बे और हरतंगेज उड़ान का प्रदर्शन किया तो लोगों ने तारीफ के पुल बांधना शुरू कर दिया।
10: बहुत प्राउड फील हो रहा है, इन्हें लाइव देखते हुए बहुत रोमांचक फील हो रहा है।
11: मैंने इससे पहले तो कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने पहली बार देखा है, लेकिन मेरे को बहुत मजा आया। और मैं यहाँ दिल्ली से आई हूँ, मैं मतलब अपनी फैमिली के थ्रू मेरे को बताया गया, तो मैं पहले ही आ गई थी यहाँ पे, तो बहुत मजा आया मेरे को तो पहली बार मेरा एक्सपीरियंस है।
9: भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने मेरठ के आसमान में अलग अलग फॉर्मेशन बनाकर हैरतअंगेज करतब दिखाए। विमानों ने लूप, बैरल रोल, उल्टी उड़ान और डीएनए मैनवूर समेत कई एरोबेटिक फॉर्मेशन का शानदार प्रदर्शन किया। विमानों के बीच बृहद कम अंतर रखते हुए सटीक टाइमिंग और आपसी तालमेल से की जाने वाली उड़ानों ने दर्शकों का दिल जीत लिया।
12: मेरा यहाँ पे पूरा कोऑर्डिनेशन था कि जो जितने भी जहाज यहाँ पे डिस्प्ले के लिए आए उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, पूरा कोऑर्डिनेशन हवा में और ग्राउंड पे रहे, सब देखा, कोई बर्ड एक्टिविटी ज़्यादा ना रहे, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना रहे, तो उसमें पूरा का पूरा हम कोऑर्डिनेशन करके रखें। सबसे पहले नौ के नौ जहाज आपके सामने आए, अलग अलग आकृतियाँ बना के दिखाई जिसमें गगनयान और वो सब था, उसमें फलक्रम फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन वो सब आपको सामने दिखाया गया। उसके बाद आपने देखा होगा कि एक जहाज उनसे अलग होके इन्वर्टेड रन किया था उसने, सीधे उड़ना तो बहुत आसान है, आपने पहली बार देखा होगा किसी जहाज को उड़ते उड़ते हुए, बहुत बहुत ही रोमांचक था। उसके बाद आपने देखा होगा एक मनूवर जिसमें सारे जहाज स्प्लिट हो गए थे, उसके बाद चार चार पाँच पाँच के ग्रुप में आए थे, जिसमें आपने कई कई मनूवर देखे थे जिसमें तिरंगा की आकृति भी बनाई गई थी, जिसमें हमने तीनों कलर छोड़े थे सेफ्रन वाइट एंड ग्रीन, जो कि प्रतीक है हमारे देश के ध्वज का। और उसके बाद काफ़ी हाई स्पीड क्रॉसेज जो आपके सामने हुए हैरतअंगेज, तो लोगों को अच्छा लगा होगा।
9: इस एयर शो की खास बात ये भी है कि सूर्य किरण एरोबेटिक टीम में मेरठ से जुड़े तीन स्कूबा डाइवर लीडर भी शामिल हैं, जिन्होंने आसमान में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। ऐसे में शहर के लोगों के लिए ये एयर शो गौरवान्वित करने वाला था।
13: मैं इंडियन एयरफोर्स के जवाब पायलट को बहुत ही बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि इसी तरह राष्ट्र की सेवा में सब लोग रहे, और मेरठ जनपद वासी कल भी ये कार्यक्रम होगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, एक साथ साक्षी बने, ये बहुत ही रोमांचकारी अद्भुत है। आपने देखा किस तरह का एयर फॉर्मेशन इन लोगों ने जवाजी से किया है, बहुत ही विस्मयकारी है, रोमांचक है, ये शब्द में बयान नहीं कर सकते।
14: हमारे वायुसेना ने जो एयर शो डिस्प्ले किया है ये नबूतो नभविष्य है, मेरा सीना मतलब गर्व से मतलब महसूस हो रही है, और वायुसेना के लिए कितने भी तारीफ करे उतना कम है।
15: कोशिश है सरकार की कि वो जल्दी तक लेके आए कि कैसे हमारी वायुसेना काम करती है, मोटिवेट करे सभी बच्चों को सेना में भर्ती होने के लिए, और चाहे वो वायुसेना हो चाहे थल सेना हो।
9: एयर शो के दौरान हॉक विमानों ने केसरिया, सफेद और हरे रंग की धुएं की लकीरों से आसमान में तिरंगे की रंगीन छटा भी बनाई, इसका स्वागत लोगों ने ताली बजा कर किया। मेरठ में लाखों लोगों ने 3 किलोमीटर के रेडियस में इस एयर शो को देखा। ये शो कल भी अपना हैरतअंगेज करतब दिखाएगा। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कुलदीप शिरोय।
8: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए जेएनटी के साथ।
16: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
18: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
19: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
20: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
19: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
16: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
19: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
20: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
19: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
16: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
19: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

ज्यादातर लोग भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे दूर्वा यानी दूब की महिमा के बारे में और दूब के यानी दूर्वा के चमत्कारी प्रयोग के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 20 सितंबर 2026 दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि शाम को 5:51 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 20 सितंबर 2026 दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। केतु विद्यमान है सिंह राशि में, सूर्य और बुध कन्या राशि में, शुक्र तुला राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं दूर्वा की यानी दूब की। दूब का धार्मिक महत्व क्या है? देखिए, दूब या दूर्वा एक तरह की घास है और दूब यानी कि दूर्वा हिंदू परंपराओं के पूजा विधान में बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। माना जाता है कि दूब की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से हुई है। समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश को सबसे पहले दूब पर ही रखा गया था, इसीलिए ऐसा मानते हैं कि दूब के अंदर भी अमरत्व के गुण आ गए हैं। सामान्यतः भगवान गणेश को दूब घास अर्पित करना विशेष लाभकारी माना जाता है और भगवान गणेश की पूजा में दूब घास का विशेष प्रयोग होता है। मात्र दूब अर्पित करने से भगवान गणेश की अपार कृपा जीवन में पाई जा सकती है। दूर्वा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष वृषभ

मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, धन खर्च से परेशानी होगी, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में बड़ा अवसर मिलेगा, संतान की समस्या हल होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो हिंदू पूजा में आप देखेंगे सामान्यतः दूर्वा का यानी दूब घास का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। दूर्वा का औषधीय और वैज्ञानिक महत्व क्या है? दूब में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। दूब के पत्तों से जो रस निकलता है वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसको हरा रक्त यानी ग्रीन ब्लड कहा जाता है। दूर्वा के प्रयोग से शरीर विषमुक्त होता है, पेट की समस्याएं और जलन दूर होती है। दूब के रस के नियमित प्रयोग से एनीमिया दूर हो जाता है और त्वचा की कांति, त्वचा की चमक बढ़ जाती है। दूब और हल्दी को मिला करके पीस करके इसका लेप अगर शरीर पर लगाया जाए तो त्वचा संबंधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और दूब की कोंपल के प्रयोग से नशे की समस्या भी दूर हो जाती है। तो दूब का प्रयोग औषधि में और दवाइयों में भी किया जाता है और दूब का प्रयोग करने से शरीर का और त्वचा का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। दूब पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से आपको सहयोग मिलेगा, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, बड़ों की सलाह से लाभ होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा हो सकती है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि डूब के अलग अलग प्रयोग से जीवन की बाधाएं कैसे दूर होंगी। अगर आप नियमित पूजा में भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, डूब अर्पित करें, तो आपकी बाधाओं का नाश होगा। कोई काम लंबे समय से ना हो पा रहा हो तो नियमित दूर्वा अर्पित करने से काम की बाधाएं दूर हो जाएंगी और साथ ही साथ धन संपत्ति की प्राप्ति भी आपको होगी। भगवान गणेश को 3 टुकड़े या 5 टुकड़े या 3 गांठ या 5 गांठ दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। अगर जीवन में कोई बड़ी रुकावट है, अगर जीवन में कोई बड़ी बाधा है तो दूर्वा की माला भगवान गणेश को अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से हर तरह की रुकावट दूर होगी। और ऐसा माना जाता है कि पूजा में दूर्वा का प्रयोग करने से बुध नामक ग्रह की समस्याएं शांत होती हैं। अगर आपके घर में कच्ची जमीन है तो जमीन में दूर्वा लगाएं या गमले में दूर्वा लगाएं। ऐसा करने से शांति और समृद्धि दोनों प्राप्त होगी। नियमित रूप से भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूब अपने पास रख लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। जीवन में कितनी भी बड़ी रुकावट हो, कितनी भी बड़ी बाधा हो, लगातार 21 दिनों तक अगर आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें तो जीवन की बाधा, जीवन की रुकावट दूर होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग हैं, नौकरी में कुछ बदलाव होगा,
स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मानसिक चिंता हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। सूर्य देव को अगर जल अर्पित करें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की समस्याएं दूर होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए क्या है लकी टिप। अगर आप शीघ्र विवाह करना चाहते हैं तो नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा पीले फूलों से करके प्रार्थना करिएगा, आपका विवाह शीघ्र होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 20 सितंबर 2026 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल गणेश जी को लाल फूल अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: तो देखिए, गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव के साथ जुड़िए। इसके लिए आपको बस ये करना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बना करके हमें भेजना है। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। और देखिए, हमारे पास लगातार जो दर्शक हैं वो अपने वीडियोस भी भेज रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख सकते हैं, मुंबई से अभिषेक दुबे ने गणेश उत्सव की हमें भेजी है। देखिए, घर में सजाए गए पंडाल में बप्पा में जो है बहुत ही खूबसूरत छटा देखने को मिल रही है। साथ ही पिता भोलेनाथ और माता पार्वती की गोद में विराजमान मूर्ति को विशेष तौर पर सजाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी से अमित श्रीवास्तव ने मनमोहक वीडियो बनाकर के हमें भेजा है। विशेष तौर पर खूबसूरत पंडाल के बैकग्राउंड में शिव पार्वती के अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। साथ ही शिव पार्वती के हाथों में छोटे से बप्पा का शानदार तरीके से फूलों से सजाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक भी कर जाएंगे।
2: कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। बापा की विदाई के लिए जाते नन्हे बच्चों को देखिए, जिनके चेहरे पर उदासी के बजाय प्यार और अपनापन नजर आ रहा है। बच्चे बापा को प्यार से चूमते और निहारते हुए विदाई दे रहे हैं। उनके मासूम चेहरे और सच्ची भावनाएं हर किसी का दिल छू रही हैं। शायद यही भक्ति की सबसे खूबसूरत तस्वीर है, जहां उम्र छोटी है लेकिन आस्था और प्रेम बेहद गहरा है। पिता का प्यार और जिम्मेदारी कितनी खूबसूरत हो सकती है, ये वीडियो देखकर समझा जा सकता है। पिता ने अपने बच्चे को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा, पीठ पर टोकरी बांध कर उसमें बच्चे को सुरक्षित खड़ा किया और साथ साथ घर के काम भी करते रहे। उनके लिए बच्चे की देखभाल सबसे जरूरी है। पिता का ये अंदाज भले ही साधारण नजर आए, लेकिन इसमें अपने बच्चे के प्रति अपार प्यार, जिम्मेदारी और सुरक्षा की भावना साफ दिखाई देती है। बच्चों की मासूमियत ही उनके हर छोटे से काम को खास बना देती है। इस वीडियो में बच्चा प्लेट में रखी चीज को मोबाइल फोन समझ बैठता है। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ती है, वो तुरंत उसे उठाकर कान से लगा लेता है। बच्चे की ये मासूम हरकत देखकर आसपास मौजूद लोग भी मुस्कुराने लगते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस प्यारे से पल को देखकर लोग खूब खुश हो रहे हैं। बचपन की ऐसी छोटी छोटी शरारतें हमेशा यादों में बस जाती हैं। आखिरी T20I मैच के बाद स्टैंड्स में एक अफगानिस्तान फैन का अलग ही अंदाज देखने को मिला। मैच खत्म होने के बाद जहां ज्यादातर लोग अपने अपने घर लौट गए, वहीं ये फैन दर्शकों द्वारा छोड़े गए कचरे को साफ करता नजर आया। खास बात ये रही कि वहां कोई कैमरा या दिखावे की कोशिश नहीं थी, उसने बस अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सफाई की। इस छोटे से काम ने लोगों का दिल जीत लिया और सोशल मीडिया पर उसकी खूब तारीफ हो रही है। चीन के इस टीचर का बच्चों को डांस सिखाने का अंदाज वाकई देखने लायक है। वो बच्चों को सिर्फ डांस स्टेप्स नहीं सिखा रही, बल्कि हर मूवमेंट के साथ भावनाओं को भी समझा रही है। उनके एक्सप्रेशन, धैर्य और बच्चों के साथ तालमेल ने इस पूरे वीडियो को खास बना दिया है। बच्चों को इतने प्यार और खूबसूरती से डांस सिखाते देख कर लोग भी हैरान है। सच कहा जाए तो डांस सिखाना सिर्फ एक हुनर नहीं, बल्कि बच्चों की भावनाओं को समझने की भी कला है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
4: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
1: डीयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित, अध्यक्ष समेत तीन पदों पर एबीवीपी ने हासिल की जीत। उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन रहे विजय। तेलंगाना के पलवंचा में करोड़ों के नोटों से सजे गणपति बप्पा। 2,90,00,000 रुपए के नोटों से पंडाल की हुई सजावट। 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोटों का किया गया इस्तेमाल। राधा अष्टमी के मौके पर बरसाने में आस्था और उल्लास का संगम। गलियों में सुनाई दे रही बधाई और मंगल गीतों के गूंज। भव्य रूप से मनाया जा रहा श्री राधा रानी का जन्मोत्सव। नैनीताल के नंदा देवी महोत्सव में उमड़ा आस्था का मेला। मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। 23 सितम्बर तक चलेगा ये उत्सव। रूस की यात्रा पर पहुंचे सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ का जोरदार सम्मान। सेंट पीटर्सबर्ग के ऐतिहासिक पीटर एंड पॉल किले में ट्रेडिशनल तोप से दागे गए गोले। पुलवामा के काकापोरा स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जवानों का मॉक ड्रिल, चाक चौबंद इंतजाम की हुई परख। हिमाचल प्रदेश के चंबा में वन विभाग ने भालू का किया रेस्क्यू। डलहौजी की सड़क पर सिर में कनस्टर फंसाए भटक रहा था भालू, सूचना के बाद एक्शन में प्रशासन।
4: एवरेस्ट दिखाला, सही दिखा सही लाल।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: तोंग जमहा

चीन से, जिसने भी हथियार खरीदा उसके सामने पछताने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। कम कीमत और सस्ती टेक्नोलॉजी के चक्कर में चीन से वेपन तो खरीद लिया गया, लेकिन वो जंग के मैदान में कितना कारगर है इसका पता अब उसके खरीदारों को हो रहा है। यानी कि चीन से डिफेंस डील करने वाले देश के सामने अब सर पीटने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचा। ना तो चीन की मिसाइलें मंजिल तक पहुंच रही हैं, न ही उसके टैंक पराक्रम दिखा रहे हैं। चीन के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी लाइव फायर के दौरान खुद तबाह हो चुके हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में चीन के एयर डिफेंस सिस्टम का फ्लॉप होना दुनिया ने देख ही लिया।

0: चीन की डुप्लीकेसी के बारे में पूरी दुनिया जानती है और अब तो इसके बाकायदा सबूत मिलने शुरू हो गए हैं, यानी अब दुनिया देख भी रही है। दरअसल हाल ही में सऊदी अरब ने हुती विद्रोहियों पर हमला किया, जिसमें उसने DF-15A का इस्तेमाल किया, जो कि अपने टारगेट पर पहुंचने से पहले ही फट गई। और आपको ये भी बता दें कि ये वही DF-15 है जो सऊदी अरब ने चीन से ली थी।
1: सोशल मीडिया पर DF-15 मिसाइल के कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं। इनमें ये मिसाइल एक रेगिस्तान में पड़ी दिख रही है और कुछ लोग इसे देखते और फिर धकेल कर इधर उधर करते नजर आ रहे हैं। ये लोग हूती लड़ाके और उनके समर्थक बताए गए हैं, जो गिरी हुई सऊदी मिसाइल का जायजा ले रहे हैं।
0: दरअसल DF-15 ने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का बूस्ट रेंज है। अब हाल ही में विश्लेषकों ने जो सऊदी अरब की तरफ से यमन में हमला किया गया था, वहीं से इसके कुछ अवशेष ढूंढे हैं, जिसके बाद और जिसके अध्ययन से ये पता चलता है कि ये चीनी निर्मित ही है।
1: कई रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि ये मिसाइल सऊदी अरब की रॉयल सऊदी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स ने हूती ठिकानों पर दागी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल लक्ष्य से चूक गई और यमन के रेगिस्तान में जा गिरी।
0: अगर मिसाइल दागने की पुष्टि हो जाती है तो ये प्रमाणिक हो जाएगा कि सऊदी अरब ने पहली बार चीनी मिसाइल का इस्तेमाल किया है। हालांकि अभी तक ना तो यमन और ना ही चीन से इसके बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने आई है। सऊदी अरब भी फिलहाल खामोश है।
1: दावा यह किया जा रहा है कि करीब 3 दशक में ये पहली बार हुआ है जब सऊदी फोर्स ने चीन से खरीदी गई DF-15A शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का युद्ध में इस्तेमाल किया है। विश्लेषक इस निष्कर्ष पर इसलिए पहुंचे क्योंकि हूतियों के पास DF-15A जैसी मिसाइल होने के कोई प्रमाण नहीं है। उनके शास्त्रागार में मुख्य रूप से ईरानी तकनीक वाली मिसाइलें और ड्रोन हैं। सऊदी अरब के पास पहले से चीन से खरीदी गई DF-3A और DF-21 जैसी मिसाइलें होने के रिपोर्ट्स लंबे समय से चल रही हैं। लेकिन सऊदी अरब ने DF-15A शॉर्ट रेंज मिसाइल प्रणाली भी चीन से खरीद रखी है। इसकी कोई आधिकारिक जानकारी पहले कभी सामने नहीं आई, इसीलिए कई विशेषज्ञों ने इसे सऊदी की गुप्त मिसाइल क्षमता का हिस्सा माना है। अगर ये सऊदी की मिसाइल थी तो इसका लक्ष्य चूकना सऊदी की गुप्त मिसाइल क्षमता पर सवाल खड़े करता है। साथ ही चीनी हथियारों की विश्वसनीयता पर भी चर्चा छिड़ गई है।
2: देखिए, सबसे पहले ये बात क्लियर है कि सऊदी अरबिया का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसकी शुरुआत देखिए चाइना ने की थी, और इसी के तहत चाइना ने अपने तमाम मिसाइलों की जो सप्लाई है वो सऊदी अरबिया को की थी, जिसमें प्रमुख जो मिसाइल्स हैं वो हैं DF-3A और DF-21। ये दोनों मिसाइलें लगातार सऊदी अरबिया के पास बनी हुई है, जिसका वो टाइम टू टाइम इस्तेमाल करता है। जहां तक उसके दूसरी मिसाइल DF-15 अल्फा का सवाल है, जब हूतियों के ऊपर मिसाइल फायर की सऊदी अरब ने तो उसके जो रेमनेंट, उसके जो स्प्रिंटर थे, उससे पता लगा कि सऊदी अरबिया के पास DF-15 अल्फा मिसाइल भी है, जो कि एक बड़ा ही प्रोमिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इस तरीके के जब आप मिसाइल को फायर करते हैं तो दिखाता है कि आपकी इन्वेंट्री में ये मिसाइल है।
1: सऊदी चीन मिसाइल डील का इतिहास लगभग 40 साल पुराना है और बेहद गोपनीय रहा है। ये रक्षा इतिहास के सबसे दिलचस्प अध्यायों में से एक है, क्योंकि सऊदी अरब पारंपरिक रूप से अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार खरीदार रहा है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए उसने हमेशा चीन पर ही भरोसा किया है। 1980 के दशक के मध्य में जब सऊदी अरब को ईरान इराक युद्ध के दौरान अपनी सुरक्षा को खतरा महसूस हुआ तो उसने अमेरिका से बैलिस्टिक मिसाइलें मांगी। अमेरिका ने इसराइल के विरोध और मध्य पूर्व में हथियारों की होड़ बढ़ने के डर से सऊदी को मिसाइलें देने से मना कर दिया। इसके बाद सऊदी अरब के प्रिंस खालिद बिन सुल्तान, जिन्हें सऊदी मिसाइल प्रोग्राम का जनक कहा जाता है, उन्होंने 1985 में गुप्त रूप से चीन से संपर्क किया। दोनों देशों के बीच तब आधिकारिक राजनयिक संबंध भी नहीं थे। साल 1988 में ये खुलासा हुआ कि सऊदी अरब ने चीन से DF-3A इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल खरीदी है। ये चीन की एक परमाणु सक्षम मिसाइल थी, लेकिन सऊदी अरब को देने के लिए चीन ने इसमें बदलाव कर दिए और इसे सिर्फ कन्वेंशनल पेलोड यानी कि पारंपरिक उच्च विस्फोटक ले जाने लायक ही बना दिया। सऊदी अरब ने मिसाइलों को खरीदने के बाद करीब 26 साल तक दुनिया से इसे छिपा कर रखा और पहली बार 2014 की एक सैन्य परेड में इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया।
2: देखिए, सबसे पहले सऊदी अरेबिया अमेरिका का बहुत ही स्ट्रांग एलाई है। सऊदी अरेबिया में अमेरिका के तमाम मिलिट्री बेसिस हैं, लेकिन जहां तक मिलिट्री मिसाइल्स का सवाल है, उसने चाइना की तरफ रुख किया क्योंकि चाइना उसको एक सस्ती मिसाइल देता है, एक जो उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है। और साथ में ये देखिए, 1980 के दशक में चाइना के सऊदी अरेबिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन हुए और वो इतने प्रगाढ़ हुए कि तमाम तरीके का इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया। इसी के तहत उसने ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में मध्यस्थता की, सऊदी अरेबिया और सीरिया के बीच में मध्यस्थता की। तो ये शुरुआत उसकी 1980 में हुई थी, जिसके तहत उसने DF-3 अल्फा मिसाइल को सप्लाई किया और आज की डेट में वो अन्य तरीके की भी मिसाइलें सऊदी अरेबिया को दिया। तो ये ज्यादा हिस्ट्री में ना जाके ये रिसेंटली 80s के दशक का यह डेवलपमेंट।
1: DF-3 मिसाइलें बहुत पुरानी हैं, लिक्विड फ्यूल आधारित थी और उनकी सटीकता बेहद खराब थी, इसीलिए सऊदी अरब को अपनी रणनीतिक क्षमता को आधुनिक बनाने की जरूरत पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने साल 2007 में चीन के साथ एक और गुप्त समझौता किया और अधिक आधुनिक DF-21 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को सऊदी और चीन के बीच DF-21 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सौदे की भनक लग गई थी, लेकिन तब उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया था कि ये मिसाइलें भी परमाणु हथियार ले जाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ पारंपरिक हमलों के लिए ही मॉडिफाई की गई हैं। तो अमेरिका ने इस पर कोई कड़ा विरोध नहीं जताया।
0: हाल ही में यमन के मरी प्रांत में DF-15 का मलबा मिलने से इस बात की पुष्टि होती है कि सऊदी अरब चीनी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि सऊदी अरब भले ही अभी तक इस बात से इनकार करता आया हो, लेकिन इससे एक और बात की पुष्टि होती है और वो ये कि डील का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है।
1: पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि सऊदी अरब अब सिर्फ चीन से मिसाइलें खरीद नहीं रहा है बल्कि चीन की तकनीकी मदद से अपनी खुद की बैलिस्टिक मिसाइल भी विकसित कर रहा है।
2: देखिए, जहां तक सऊदी अरेबिया के इंडिजिनस डेवलपमेंट का सवाल है मिसाइल के फील्ड में, डेफिनेटली उसकी मदद चाइना कर रहा है और इसी के तहत सऊदी अरेबिया ने सॉलिड फ्यूल मिसाइल डेवलप कर लिया है। उसके यहाँ जो ये मिसाइल बन रही है उसका उस जगह का नाम है अल दवदामी, इस जगह पे उसका मिसाइल प्रोग्राम है और इसकी मदद लगातार चाइना ने की है। और जब से युद्ध की शुरुआत किया है उसमें जरूर सेटबैक लग सकता है, लेकिन इसके पहले जब युद्ध नहीं हो रहा था तो चाइना अपने इन्वेस्टमेंट मार्केट और तमाम तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट का मार्केट उसने मिडिल ईस्ट को पकड़ा था। तो इसी के तहत लगातार उसने टेक्नोलॉजिकल नो हाउ और जो उसका रॉ मटेरियल है सऊदी अरेबिया को दिया, जिससे कि सऊदी अरेबिया की जो इंडिजिनस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो आगे बढ़ा और साथ में उसने सॉलिड फ्यूल का मिसाइल डेवलप किया।
1: सऊदी अरब लंबे समय से यमन में हूतियों के खिलाफ हवाई हमले करता रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल युद्ध की तीव्रता बढ़ाने के संकेत माने जाते हैं। मारीब क्षेत्र में हाल ही में लड़ाई तेज हुई है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले बढ़ा रहे हैं।
0: कम कीमत, मेड इन चाइना, लेकिन शर्तें कड़ी, ये वो तमाम ऐसी चीजें हैं जो चीन हर उस देश पर लगाता है जिसे वो अपने हथियार देता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चीन कभी नहीं करता है और इसी के साथ साथ चीन मेंटेनेंस का खर्चा भी बिल्कुल नहीं लेता, यानी जो भी देश हथियार खरीदेगा मेंटेनेंस के लिए उसको वापस चीन का दरवाजा खटखटाना होगा। लेकिन विशेषज्ञ ये कहते हैं कि चीनी हथियार इस वक्त कागजों पर भले ही पुख्ता नजर आ रहे हो, लेकिन रण क्षेत्र में ये पूरी तरह से फिसड्डी साबित हो रहे हैं।
1: ग्लोबल डिफेंस मार्केट में चीन खुद को अमेरिका और रूस के विकल्प के तौर पर पेश करता है। वास्तविक युद्ध में उसकी प्रमुख मिसाइलों का फेल होना चीन के हथियारों की विश्वसनीयता और उनकी तकनीकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मेड इन चाइना के चक्कर में फंसे बांग्लादेश का हाल देख लीजिए। 9 सितंबर 2026 को चटगांव में फील्ड फायर अभ्यास के दौरान टाइप 59 टैंक में विस्फोट हो गया और जैसे ही टैंक से गोला दागा गया वो बैरल से बाहर निकलने के बजाय टैंक के भीतर ही ब्लास्ट कर गया। इस भीषण विस्फोट के कारण टैंक के क्रू मेंबर्स में 2 बांग्लादेशी जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक वरिष्ठ अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया।
0: विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही तोप और इलेक्ट्रॉनिक्स नया कर दिया गया हो, लेकिन टैंक का मेटल वही पुराना है, यानी 50 साल पुराना, जिसका असर ये हो रहा है कि टैंक बड़े बड़े गोला बारूद को झेल ही नहीं पा रहा। एक बार फायर करने के बाद वो वापस टैंक के अंदर ही विस्फोट करता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण हाल फिलहाल में मिला भी है।
2: देखिए टैंक T-59 जो टैंक है वो बहुत ही पुराना टैंक है, चाइनीज ओरिजिन का है। अगर आपने इसको मेंटेन नहीं किया, रिफर्बिश करके आप काम चलाते रहते हैं, तो समय के साथ हर एक इक्विपमेंट की उपयोगिता घटती जाती है, और वो भी ऐसे समय में जब आप उसको ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं, लगातार उसको अपग्रेड कर रहे हैं, और जो उसका मेटलर्जी है वो फेल होता है। देखिए जब ब्रीच प्रेमेच्योर होता है तो उसके कई रीजन होते हैं। एमिशन की भी वजह हो सकती है, जो प्रेशर ब्रीच में जनरेट हुआ उसको सस्टेन नहीं कर पाया, इसका मतलब मेटलर्जी उसकी खराब थी, या फिर उसके बैरल में कोई रेमनेंट रह गया, या बैरल क्लीन नहीं हुआ उसकी वजह से प्रीमेच्योर हुआ। तो वजह कुछ भी हो सकती है। जब इस तरीके के लगातार इंसिडेंसेस होते हैं तो बेसिक शक जाता है उसकी मेटलर्जी पे, क्या कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है, या इरेटिक बिहेवियर ऑफ एमिशन, तो इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा।
1: हादसे में शामिल टैंक चीन में बना टाइप 59 है, जिसका इस्तेमाल बांग्लादेश की सेना करती है। टैंक 59 चीन में बना एक पुराना मेन बैटल टैंक है। इसे चीन का पहला ऐसा टैंक भी माना जाता है जिसे बड़ी तादाद में बनाया गया था। बांग्लादेशी सेना के बेड़े में शामिल टाइप 59 दुर्जॉय टैंक मूल रूप से करीब 70 साल पुराना सोवियत डिजाइन है, जिसे चीन ने कॉपी करके बनाया था और बाद में बांग्लादेश को इसे अपग्रेड करके दे दिया। टाई 59 सैन्य टैंक काफी पुराना है, लेकिन समय के साथ इसके कई नए वर्जन और अपग्रेड तैयार किए गए हैं। इनमें ज्यादा बेहतर तोप, फायर कंट्रोल सिस्टम, रात में देखने की सुविधा और टैंक की सुरक्षा बढ़ाने वाले उपकरण जोड़े गए हैं, लेकिन मूल संरचना पुरानी ही रही।
2: जो हादसे हुए T-59 के, आप कितना भी अपग्रेड कर दें लेकिन आप उसकी मेटलर्जी नहीं बदल पाएंगे। जो आयरन है, जो बैरल है 125 mm स्मूथ बोर, उसको आप रिप्लेस नहीं कर पाते। हालांकि जो टैंक है, जब नंबर ऑफ राउंड्स जितने वो फायर कर लेते हैं, उसकी EFC वैल्यू होती है, इक्विवेलेंट फुल चार्ज की वैल्यू होती है, उसमें कितना वियर एंड टियर हुआ, और उसका बैरल भी बदला जाता है, लेकिन उस मेटलर्जी को आप कैसे इंप्रूव करेंगे जो एक पर्टिकुलर तरीके से बनाई गई है, उस कितना प्रेशर जनरेट करा, एमिनिशन जो आप लोड करके फायर कर रहे हैं जब उसका प्रोपेलेंट बर्न होता है तो कितना प्रेशर जनरेट करता है, और क्या वो स्टील या मेटलर्जी उसको सस्टेन कर पा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक आउटडेटेड इक्विपमेंट है, टैंक है।
1: चीनी टैंकों में सेफ्टी फीचर्स और मेटल की क्वालिटी हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। जरा सी ओवरहीटिंग या फिर लो क्वालिटी गन बैरल की वजह से गोला अंदर ही ब्लास्ट हो जाता है।
0: बांग्लादेश में हुए टैंक हादसे ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और साथ ही साथ चीनी हथियारों की विश्वसनीयता पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन यहाँ बांग्लादेश की मजबूरी है, वो चीन के अलावा कहीं और जा नहीं सकता, क्योंकि 70% हथियार उसने चीन से ही लिए हैं।
1: बांग्लादेश की सेना रक्षा उपकरणों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर चीन पर निर्भर है। सिब्रियानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और रक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश दुनिया में चीनी हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। वो अपनी सैन्य जरूरतों का 72-74% हथियार अकेले चीन से आयात करता है। हाल के वर्षों में खासकर 2024-26 के बीच चीनी हथियारों में लगातार आ रही खराबियों, घटिया कलपुर्जों और चीनी कंपनियों की ओर से मरम्मत के लिए मांगी जाने वाली भारी भरकम कीमत के कारण बांग्लादेशी सेना में असंतोष बढ़ा है, और यही वजह है कि बांग्लादेश अब धीरे धीरे अपनी सैन्य निर्भरता को बांटने के लिए तुर्की और कुछ हद तक पश्चिमी देशों के विकल्पों की तरफ भी हाथ बढ़ा रहा है।
0: चीन अपनी सेना के लिए नए और अपग्रेडेड हथियार बना रहा है, लेकिन ऐसे में जो पुराने हथियारों का जखीरा है वो काफी हद तक चीन के पास बचा हुआ है, जैसे कि टाइप 59 टैंक हो या फिर जेट्स हो। अब इन्हें चीनी कंपनियां थोड़ा अपग्रेड करके बांग्लादेश और अफ्रीकी देशों को कम कीमतों में बेच देती हैं, और यहीं से चीन मुनाफा भी कमा रहा है और दूसरे देशों को कर्जदार भी बना रहा है। बाकी उसके सैन्य उपकरणों पर जो विश्वसनीयता है वो तो दुनिया जानती ही।
1: रक्षा विशेषज्ञ और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी हथियारों के नाकाम होने के पीछे कई वजह हैं। बड़े परीक्षणों का अभाव, अमेरिकी और रूसी हथियारों के उलट चीनी हथियार निर्यात करने से पहले मुश्किल और वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों से नहीं गुजरते। दूसरा है गुणवत्ता पर मात्रा को प्राथमिकता। चीन का मेन फोकस हथियारों की विश्वसनीयता और लाइफ साइकिल के बजाय भारी मात्रा में सस्ते हथियार बाजार में उतारने पर है। तीसरा है घटिया पुर्जे और सर्विसिंग। चीनी कंपनियां बिक्री के बाद मेंटेनेंस सपोर्ट देने में नाकाम रहती हैं, जिसे खरीदार देश के पास खराब पुर्जों को बदलने का कोई और विकल्प नहीं बचता। सस्ते होने के कारण जो देश चीनी हथियारों के जाल में फंस रहे हैं, वो अब अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर इन रक्षा सौदों को लेकर पछता रहे हैं और चीन की वैश्विक साख को इससे धक्का भी लगा है।
2: पूरे विश्व जानता है कि चाइनीज इक्विपमेंट या चाइनीज कोई भी प्रोडक्ट है उसकी रिलायबिलिटी नहीं होती, वो वन टाइम यूज होता है। आपने यूज किया यूज एंड थ्रो टेक्नोलॉजी, तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता। बहुत बड़ा आप जो इन्वेस्टमेंट, जो इनपुट का इन्वेस्टमेंट है वो नहीं करते हैं। जब आप इसको डिफेंस के इक्विपमेंट में लागू करते हैं तो आपने मेटलर्जी हो गया, आप सस्ता लोहा, सस्ता मटेरियल, सस्ता एमिनिशन, सस्ते एक्सप्लोसिव, इन सारी चीजों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे सिर्फ इस वजह से कि आपको कॉस्ट कटिंग करना है, सिर्फ इस वजह से कि आपको मास प्रोडक्शन करना है, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग हब है, डिफेंस के फील्ड में आप आत्मनिर्भर हैं, तो इससे होता यह है कि आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज होती है। और जब वो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट में, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में, डिफरेंट डिफरेंट टेरेन में जब उसका इस्तेमाल होता है तो कोई ना कोई हिस्से पुर्जे उसके फेल होते हैं।
1: दिसंबर 2025 में कंबोडिया थाईलैंड में संघर्ष के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दावा यह किया गया था कि चीन का हथियार कैसे युद्ध के मैदान में फ्लॉप साबित हो गया। वीडियो में दावा किया गया कि कंबोडियाई सैनिक जब थाईलैंड पर निशाना लगाने के लिए चीनी रॉकेट लॉन्च कर रहे थे तो उसमें ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में कई कंबोडियाई सैनिक आ गए। 8 सैनिकों की तो जान चली गई।
2: देखिए, जहां तक चाइनीज MLRS और 19B रॉकेट सिस्टम का सवाल है, जब इसको लॉन्च किया गया, फायर किया गया, तो ये वर्टिकली अब जाके स्प्लिट हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब आपने फायरिंग किया तो इसका जो एमिनिशन है, जो मिसाइल का नोज है, जो सेंसर है, वो पहले से ही एक्टिवेट हो गया, या तो इतने तरीके से सस्टेन फायरिंग में वो इस चीज को बियर नहीं कर पाया, या फिर इतना हीट जनरेट हुआ विद इन द बैरल उसकी वजह से एक्सप्लोशन हुआ। तो चाहे किसी भी वजह से आपका प्रीमेच्योर एक्सप्लोशन हुआ हो, कंबोडियन आर्मी ने इसको सफर किया एट द टाइम ऑफ वॉर। आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें रिडंडेंसी हो, जिसमें आप जो रेट ऑफ फायर डिस्क्राइब करें उसको अगर मेंटेन करें तो किसी भी तरीके के हाथ से ना हो।
1: कंबोडिया की सेना में चीन से खरीदी गई MLRS टाइप 90B रॉकेट का इस्तेमाल होता है और इसी हथियार को इस्तेमाल थाईलैंड के खिलाफ किया जा रहा था। दरअसल कंबोडिया के साथ युद्ध में थाईलैंड भी चीन से खरीदे गए टैंकों का इस्तेमाल ही कर रहा था। ये टैंक थे VT-4। युद्ध के समय इसकी परीक्षा हुई तो ये फ्लॉप साबित हुआ। VT-4 टैंक का बैरल फट गया, जिससे इसके क्रू मेंबर्स घायल हो गए। हथियारों की ताकत और भरोसे की असली परीक्षा युद्ध के मैदान में होती है और रणभूमि में चीन के हथियारों की विश्वसनीयता क्या है, वो धीरे धीरे दुनिया देख रही है। कंबोडिया के साथ युद्ध में थाई सेना के VT-4 टैंक का बैरल फटना चीन के लिए शर्मनाक है। मेन गन के अलावा टैंक का फायर कंट्रोल से जुड़ा टारगेटिंग सिस्टम और उसका लेजर वार्निंग सिस्टम भी खराब हो गया। ये सिस्टम आधुनिक बख्तरबंद लड़ाई के लिए बहुत जरूरी है, खासकर टारगेट पहचानने, हमले की सटीकता और दुश्मन के लेजर हमले से चेतावनी के लिए।
2: देखिए, जहां तक टैंक टेक्नोलॉजी का सवाल है, उस जब VT-4 टैंक की हम बात करते हैं तो उसको भी काफी तरीके का सेटबैक लगा। मेरा मानना है कि जो मेंटेनेंस टैंक को चाहिए, जो आपको उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि कितने राउंड उसने AP शॉट फायर किए, कितने उसने हीट एमिशन फायर किया, इन सब का रिकॉर्ड रखेंगे तो बेहतर होगा, जिससे कि आप मेटलर्जी कितना वियर एंड टीयर हुआ इसको आप कैलकुलेट कर पाएंगे। और जहां तक उसके लेजर लॉकिंग सिस्टम का सवाल है, जहां तक उसके लॉकिंग सिस्टम का सवाल है, उसको भी आपको एक फुल प्रूफ रखना होगा। ये देखिए, टैंक को सर्वाइव करने के लिए ये सारे सिस्टम काम करने चाहिए। अगर लॉकिंग सिस्टम ही खराब हो जाएगा तो आप कैसे टारगेट को लॉक करके उसके ऊपर फायर करेंगे।
1: VT-4 एक मेन बैटल टैंक है, जिसे चीनी कंपनी नॉरिनको ने बनाया है। चीन ने इस टैंक को पाकिस्तान और थाईलैंड समेत कई देशों को एक्सपोर्ट किया। इस टैंक में 125 mm की स्मूथबोर गन, जो पारंपरिक गोला बारूद के साथ साथ गन से लॉन्च होने वाली गाइडेड प्रोजेक्टाइल भी फायर कर सकती है। इसके साथ ही टैंक में एक डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम और लेजर वार्निंग रिसीवर जैसे डिफेंसिव सिस्टम भी है, जो युद्ध के दौरान फेल हो गया था। मौजूदा समय में थाई सेना में 62 BT-4 टैंक ऑपरेशन है। इस टैंक का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना भी करती है।
0: एक एक करके चीन के तमाम हथियार फिसड्डी साबित हो रहे। कागजों पर भले ही ये कितने मजबूत हो, लेकिन रण क्षेत्र में ये बिल्कुल जीरो है। और इसका जीता जागता सबूत है पाकिस्तान द्वारा हाल ही में भारत पर किया गया हमला, जहां पर पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइलें दागी थी, जो पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई है और ये पूरी दुनिया ने देखा भी है।
1: चीन जो खुद अपने तैयार किए गए एयर डिफेंस सिस्टम पर भरोसा नहीं करता है, जिसने अपनी सुरक्षा के लिए खुद रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रखा है, उसके यहाँ तैयार एयर डिफेंस सिस्टम पर पाकिस्तान इतरा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के पराक्रम के सामने चीन से खरीदे गए HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की एक नहीं चली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के लाहौर में तैनात चीन में बना HQ-9 एयर डिफेंस तबाह कर दिया।
0: पाकिस्तान ने 5 साल पहले चीन के साथ HQ-9 की डील की थी। अब चीन और पाकिस्तान दोनों इस बात का दावा करते हैं कि HQ-9 सीधे रूस के S-400 को टक्कर देता है। अब ये टक्कर कितनी दी गई है, इसका सिर्फ भारत ने ट्रेलर दिखाया है और पाकिस्तान खुद ब खुद पीछे चला गया।
1: चीन के हथियारों की खोखली ताकत को जानने के बावजूद पाकिस्तान चीन से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। इसके पीछे पाकिस्तान की मजबूरी भी है। वो चीन के कर्ज के जाल में इस कदर फंस चुका है कि उसके पास कोई और विकल्प बचा ही नहीं है। लिहाजा चीन जो भी करता है, पाकिस्तान उसे सर झुकाकर कबूल करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 से 2024 के बीच में चीन ने पाकिस्तान के 81% आयातित हथियारों की आपूर्ति की है। 2020 से 24 से और 2015 से 19 की तुलना में देखा जाए तो पाकिस्तान ने हथियारों के आयात में 61% की बढ़ोतरी की है। आंकड़ों से साफ है कि चीन पाकिस्तान पर मेहरबान नहीं, बल्कि पाकिस्तान को लूटने खसोटने के लिए अपने कबाड़ हथियारों से थोप रहा है।
2: चाइना लगातार पाकिस्तान को एक टेस्ट बेड मानता है। उसने अपने BRI और CPEC के तरह का इन्वेस्टमेंट करके चाइना ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को गुलाम बना रखा है। तमाम तरीके की जो मिलिट्री एड है, तमाम तरीके के एयर डिफेंस, तमाम तरीके के रॉकेट, मिसाइल, टैंक आज की डेट में वो पाकिस्तान को देता है। इसलिए देता है कि जैसे विश्व में दिखा सके कि पाकिस्तान आर्मी इसका इस्तेमाल कर रही है, इसका बखूबी हिंदुस्तान के बरखिलाफ उसने उसका डिप्लॉयमेंट कर रखा है, उसका ऑपरेशनल रेडीनेस 100% है और इसके तहत वो अन्य देशों को अपना सामान बेच सके।
0: रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर
5: जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: पाकिस्तान को चीन से मिलने वाले हथियारों में आधुनिक फाइटर जेट, मिसाइल, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल हैं। पाकिस्तान में बनाए गए कुछ हथियारों में भी चीन की भूमिका है। इन्हें या तो चीन की कंपनियों ने बनाए या फिर इनमें चीन की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। चीन और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शुरू हुआ था, जब अमेरिकी हथियारों के प्रतिबंध ने पाकिस्तान को चीन की तरफ लाकर खड़ा कर दिया। चीन ने फाइटर जेट, टैंक और तोपखानों की आपूर्ति की, जिससे दीर्घकालिक संबंधों की नींव पड़ी। चीन और पाकिस्तान के बीच 1963 का चीन पाकिस्तान समझौता हुआ, जिसके तहत सीमा विवादों का समाधान किया गया और 1966 में सैन्य सहायता शुरू की गई। अब पाकिस्तान में चीनी हथियारों का एक बड़ा हिस्सा है। अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस ने 3 जनवरी 2026 की रात ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स और विमान बिना किसी रोक टोक के कराकास में घुसे। ये सब इसलिए हुआ कि वहां चीन के उपकरण फेल साबित हुए। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान चीन का तथाकथित एंटी स्टेल्थ रडार सिस्टम पूरी तरह से फेल साबित हुआ। चीन का दावा था कि उसके रडार अमेरिकी स्टेल्थ विमानों को पलक झपकते ही पकड़ लेंगे, लेकिन हकीकत में वेनेजुएला का आकाश पूरी तरह से खुला रहा और एक ऑपरेशन के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अरेस्ट करके अमेरिका ले जाया गया। वैसे वेनेजुएला भी एक ऐसा मुल्क है जो चीन पर अंधाधुंध भरोसा करता है और उससे उसने अत्याधुनिक रडार सिस्टम खरीदे थे और दावा ये किया गया था कि ये रडार सिस्टम अमेरिका के फाइटर जेट्स को भी जाम कर सकते हैं। अब इसका उदाहरण भी सुन लीजिए। हाल फिलहाल में अमेरिका ने, आपको याद होगा कि किस तरीके से एब्सोल्यूट रिजॉल्व ऑपरेशन के जरिए वेनेजुएला पर हमला किया, जहां पर उनके रडार सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गए और अमेरिका ने राष्ट्रपति मदुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। वेनेजुएला की हवाई सुरक्षा फेल होना चीन की सैन्य तकनीक पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है। पाकिस्तान के बाद वेनेजुएला दूसरा ऐसा देश है जिसने चीनी हथियारों पर भरोसा कर बड़ी कीमत चुकाई है। खराब गुणवत्ता और सही ढंग से काम नहीं करने की वजह से पिछले कुछ समय में चीन में बने हथियारों को लेकर उसके खरीदार देशों का भरोसा कम हुआ है। ढाका स्थित लेंस एशिया की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के F-22P फ्रिगेट में बार बार समस्याएं आ रही हैं। फ्रिगेट में बार बार सेंसर और रडार की खराबी के साथ इंजन में भी गड़बड़ियां पाई गई हैं और इसके साथ साथ JF-17 लड़ाकू विमानों में भी तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। हाल ही में रेगिस्तानी वातावरण में चीनी स्काई शील्ड लेजर सिस्टम के संचालन में भी कठिनाई आई।

0: ने और कम हथियार ले जाने की क्षमता के कारण नाइजीरिया इटली के M346FA लड़ाकू जेट खरीदने के लिए मजबूर हुआ।
1: J-17 फाइटर एयरक्राफ्ट चाइना ने बनाया और तमाम देशों को सप्लाई किया, लेकिन ये जो सिस्टम है पूरी तरीके से फेल साबित हुआ है। 40% पाकिस्तान के पास जो J-17 फाइटर एयरक्राफ्ट है वो ग्राउंडेड है। कितने सारे क्रैशेज हुए, उसका जो एयर फ्रेम है वो तक क्रैक कर गया, जहां तक उसके जो डॉग फाइट या जो मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी है एयर में वो कॉम्प्रोमाइज है। आपने एक सिस्टम बना दिया लेकिन उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं दिया, स्ट्रक्चर डिफेक्ट है, उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, उसकी कैनोपी नहीं खुलती जिससे कि पायलट सही टाइम पे इजेक्ट कर सके। जब इतनी सारी दिक्कतें हैं और उसका जो रडार सिस्टम आपने माउंट किया, उसके जो ऑल ऑफ वेट में जब वो ऐड किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो अनस्टेबल हो जाता है। तो इतने सारे चैलेंजेस, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, चाहे वो आपके एवियोनिक्स से रिलेटेड हो या रडार से रिलेटेड हो, सारे फील्ड में ये फेल नजर आता है। इसी वजह से इसकी जो ग्राउंड में जो इन ऑपरेशन में की जो कैपेबिलिटी है वो 40% ग्राउंडेड है एयरक्राफ्ट। तो ये दिखाता है कि ये एक फेल्ड सिस्टम है जिसको तमाम देशों ने जिन्होंने खरीदा वो आज की डेट में सफर कर रहे हैं।
0: चीन के खराब हथियार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जग हसाई करा रहे हैं। चीन से हथियार खरीदने वाले ज्यादातर देश आज परेशान हैं। कोई खराब मेंटेनेंस से जूझ रहा है तो किसी को खराब बिल्ड क्वालिटी के हथियार मिले हैं। सस्ते होने की वजह से चीन के हथियार दुनिया भर में ज्यादा डिमांड में हैं, लेकिन अब चीनी हथियारों की पोल खुलने के बाद से उसके करीबी भी चीनी हथियारों से तौबा करने लगे हैं।
2: अब आपको यहाँ सीप्री की एक ताजा रिपोर्ट बताते हैं जिसमें एक आंकड़ा दिया गया है और वो आंकड़ा ये है कि हाल फिलहाल में चीनी हथियारों की बिक्री में 5.4% की गिरावट आई है, यानी पूरी दुनिया में जो चीन हथियार देता है उसमें 5.4% की गिरावट आई है। अब इसको आप महज एक गिरावट नहीं देखिए, यानी दुनिया का भरोसा चीन पर कम हुआ है, चीन की विश्वसनीयता कम हुई है, ये आंकड़ा यही बता रहा है।
0: चीन की सेना अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा का सहारा लेती है, लाइट कैमरा और एक्शन के जरिए खुद को सर्वशक्तिमान दिखाने की कोशिश करती है और इसी चकाचौंध को देखकर कई देश धोखा खा जाते हैं।
1: ये बिल्कुल सच है कि चाइना ने अपने पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए, अपने डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, पूरे विश्व का मार्केट कैप्चर करने के लिए एक तरीके का प्रोपोगंडा कैंपेन चला रखा है। जितने लेवल पे चाइना के डिफेंस इक्विपमेंट फेल हुए हैं, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे रॉकेट हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, ये दिखाता है कि उनके यहाँ क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। मास प्रोडक्शन के साथ आपको क्वालिटी कंट्रोल देखना होगा, स्पेशली डिफेंस इक्विपमेंट में। ऐसा ना हो कि सोल्जर आपके इक्विपमेंट को इस्तेमाल करे और वो खुद ही धाराशाही हो जाए या इंजर्ड हो जाए, जिसके कि तमाम विश्व में एग्जाम्पल हैं। जिसने भी चाइनीज इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया वो क्षतिग्रस्त हुआ, वो इंजर्ड हुआ। लिहाजा एक प्रोपोगंडा कैंपेन है, टोटल मार्केटिंग पॉलिसी है, सस्ते इक्विपमेंट बनाओ, वर्ल्ड में मार्केटिंग करो, एडवर्टीजमेंट करो और तमाम तरीके के झूठे वादे करो।
0: चीन की तिलिस्मी ताकत की कई बार पोल खुल चुकी है। 25 अगस्त 2023 का वाकया है जब चीन की 093417 सबमरीन उसके नौ सैनिकों के लिए काल साबित हुई। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने खुलासा करते हुए दावा किया था कि चीन के 55 नौ सैनिकों की पीले सागर में पानी के नीचे दम घुटने की वजह से मौत हो गई।
2: बताया जाता है कि चीन ने हाल फिलहाल में शंघाई में अमेरिका और ब्रिटेन की पनडुब्बियों को निशाना बनाने के लिए उन्हें ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा देखिए, यहाँ पर चीन खुद ही फंस गया। उसकी पनडुब्बी में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से खुद उसके सैनिकों की जान चली गई।
0: चीन ऐसे किसी हादसे से इनकार करता है और दुनिया से छिपाने की कोशिश करता है कि उसकी ताकत और तकनीक में किसी भी तरह की कोई भी खामी है। चीन अब अपने हथियारों को बेचने के लिए खुद को तकनीक में सबसे आगे बताता रहा है। इसके लिए चीन ने रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ कॉपी का भी सहारा लिया और इसका जीता जागता उदाहरण उसका फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन

J20 है, जो कि अमेरिका की F-22 की कॉपी है। वैसे चीन ने अपने तमाम हथियार नकल करके या फिर चोरी करके बनाए, ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन यहाँ पर चीन एक तकनीक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है रिवर्स इंजीनियरिंग। अब यहाँ ये समझने की जरूरत है कि रिवर्स इंजीनियरिंग होती क्या है। इसको आप यूं समझ सकते हैं कि किसी भी हथियार को जिस तरीके से बनाया जाता है, अब उसे उल्टे तरीके से देखना शुरू करती है। बस चीन इसी तकनीक का इस्तेमाल करता है। आइए बताते हैं आपको। चीन के पास कागजों पर मॉडर्न हथियार तो हैं, लेकिन जंग में वो कितना कारगर साबित होगा इसके बारे में पक्का नहीं कहा जा सकता। दूसरे देशों की तकनीक चुराने के लिए कुख्यात चीन ने अमेरिका के कई हथियारों की कॉपी कर हथियारों का बड़ा जखीरा तैयार किया, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से लेकर स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 की कॉपी तक शामिल है। चीन ने अमेरिका के F-35 और F-22 की कॉपी करके J-31 को तैयार किया। चीन में बनने वाला J-31 एक स्टेल्थ मल्टीरोल फाइटर जेट है। इसे शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन बनाता है और इसका सबसे पहला मॉडल 2012 में दिखाया गया था। चीन का दावा है कि जो देश अपने लिए अमेरिका में बने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को नहीं खरीद सकते हैं, वो चीन से फाइटर जेट खरीद सकते हैं। चीन J-31 को शेनयांग FC-31 के नाम से भी जाना जाता है और इसे अमेरिकी F-35 और F-22 रैप्टर की एक घटिया कॉपी कहा जा सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि J-31 से चीनी वायुसेना खुद दूरी बनाकर रखती है। अमेरिका के F-16 लड़ाकू जहाज बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने F-22A रैप्टर फाइटर बनाया था, जिसकी गिनती दुनिया के अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों में होती है। जुलाई 2014 के आखिर में चीन की चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन चेंगडू ने J-20 लड़ाकू विमान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस जहाज की डिजाइनिंग F-22 रैप्टर और अमेरिकी नेवी में इस्तेमाल होने वाले F-35 स्ट्राइक फाइटर प्लेन से मिलती जुलती है। जुलाई 2014 में अमेरिका ने एक चीनी बिजनेसमैन को पकड़ा था, जिस पर आरोप ये था कि उसने बहुत सारा डिफेंस डेटा चोरी किया है, जिसमें F-35 और F-22 का डेटा भी शामिल है, और इसने चीन को दिया है। उसके बाद ये भी पता चला कि चीनी हैकर्स ने F-35 और F-22 का डेटा चुरा कर अपने यहाँ इसे बनाने की कोशिश की। चीनी फौज LAC से लेकर दक्षिण चीन सागर में अपने हथियारों की नुमाइश के चाहे जितने भी स्वांग रचे, अपनी सेना का चाहे जितना भी झूठा पराक्रम दिखा ले, दुनिया जानती है कि वो अपने फर्जी हथियारों के दम पर जंग नहीं लड़ सकता। और यही वजह है कि वो आर पार या फिर आमने सामने की जंग से बचता है, इसीलिए उसने दुनिया को धमकाने का नया तरीका इजाद कर लिया है। और वो तरीका था दुनिया भर के हथियारों को चुरा कर उसकी नकल तैयार करना। बीते 30 साल से चीन इसी मिशन में लगा हुआ है। चीन अपने इकलौते स्टेल्थ अटैक हेलीकॉप्टर Z-20 पर बहुत ज्यादा इतराता है, लेकिन सच तो ये है कि हेलीकॉप्टर और कुछ नहीं बल्कि अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की डुप्लीकेट कॉपी है। साल 2011 में अमेरिकी सील का एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान में क्रैश हो गया था। उसी मलबे को हासिल कर चीन ने जुगाड़ कर ये हेलीकॉप्टर बना डाला। ये देखने में भले ही ब्लैक हॉक जैसा हो, लेकिन काम कितना करता है इसे लेकर चीन ने भी कोई गारंटी नहीं दी है।

0: चीन जिस J-10 विमान को अपनी इजाद बताता है, अब उसका भी सच जान लीजिए। यह अमेरिका की F-16 की कार्बन कॉपी है। अमेरिका इस प्लेन को लावी के नाम से इसराइल के लिए बना रहा था। इसराइल से जानकारी, चीन ने हथियाई और हूबहू F-16 जैसा दिखने वाला जेट तैयार कर लिया। लेकिन ये जेट युद्ध भूमि में दम दिखाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
1: जहां तक चाइना के J-10 चेंगडू डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट का सवाल है, ये काफी हद तक उसने F-16 लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाए गए डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को कॉपी किया है। चाहे वो बियॉन्ड विजुअल रेंज का एंगेजमेंट हो, चाहे टेक ऑफ हो, चाहे स्पीड हो, तमाम तरीके की एवियोनिक्स को उसने कॉपी किया। इसी वजह से देखिए, चाइना जब भी विश्व के मार्केट में इंटर करता, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे एरोनॉटिक्स हो, किसी भी में, वो ऐसे कंट्री में घुसता जहां की पिच अमेरिकन इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहे, जिससे वो उसको कॉपी कर सके। पाकिस्तान में घुसा, सऊदी अरेबिया में घुसा, वहां से उसने इन सारे जो एयरक्राफ्ट हैं F-16 एयरक्राफ्ट, उसको कॉपी किया, उसका प्रोटोटाइप अपने यहां बनाया। और ये प्रोटोटाइप है J-10 एयरक्राफ्ट। ये काफी हद तक F-16 से मिलता हुआ, कुछ बेहतरी है, कुछ उस चीजों को नहीं काबू कर पाया जो उसने इसमें ऐड किया। साथ में उसमें मिसाइल की रेंज, जिसमें TL-15 मिसाइल की लो स्पीड एजिलिटी, यानी लो स्पीड में अगर एयरक्राफ्ट होता तो कितना एजाइल होगा, उसमें उसने महारत हासिल की। और साथ में सेंसर को इंप्रूव किया, और कॉस्ट कटिंग के लिए तो चाइना जाना ही जाता है। इन सारी चीजों को इन्वॉल्व करके उसने J-10 बनाया, जो कि मोर और लेस F-16 का कॉपी है। ये बिल्कुल सही है।
0: जब डिजाइन चोरी की हो और डुप्लीकेट माल बनाने की हो तो चीन किसी को नहीं बख्शता। रूस ने जब चीन को अपने सुखोई 33 विमान के डिजाइन सीक्रेट देने से मना कर दिया, तो चीन ने यूक्रेन से SU-33 का एक विमान ट्रेनिंग के लिए खरीदा और उसकी डुप्लीकेट कॉपी J-15 के नाम से तैयार कर डाली। दिखता भले ही ये सुखोई जैसा है, लेकिन असली सुखोई के सामने कितनी देर तक टिकेगा, ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिकी ट्रेड वॉर के चलते चीन और रूस एक दूसरे के नजदीक आए। बावजूद इसके, रूस अपने कई हथियारों की टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण चीन को नहीं करता है। भारत और चीन ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है, लेकिन रूस ने भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर हस्ताक्षर किए, जबकि चीन के साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया। चीन अपने J-11B को लेकर बहुत ज्यादा इतराता। अब इसके बनने की कहानी आपको बताते हैं। दरअसल सोवियत संघ के विघटन के बाद जब रूस में नगदी का संकट हुआ, तो रूस ने अपने Su-27 को चीन को बेचने का ऐलान किया, और जिसमें दोनों देशों के बीच में डील हुई कि 200 विमानों का आदान प्रदान होगा। बाद में जाके 100 विमान चीन ने खरीदे और इस डील को तोड़ दिया। अब उसी तकनीक पर चीन ने अपने इस विमान को ईजाद किया। शेनयांग J-11B दिखने में रूस के S-27 जैसा है। चीन ने नकल करके शेनयांग J-11B बना तो लिया, लेकिन ताकत और क्षमता के मामले में रूस के सुखोई 27 के पास तक नहीं फटक पाता। अमेरिका का ये दूसरा सबसे बेहतरीन नंबर का विमान है F-22, जिसे हथियार की दुनिया में रैप्टर के नाम से जाना जाता है। 1999 में यूगोस्लाविया में नाटो कार्रवाई के दौरान एक अमेरिकी F-22 जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चीन ने इसका मलबा हासिल कर लिया और इसकी भी डुप्लीकेट कॉपी J-20 के नाम से तैयार कर डाली। चीन की कंपनी स्टार यूवी सिस्टम ने स्टार शेडो के नाम से एक ड्रोन डेवलप किया है, जो अमेरिका के मौजूदा X-47B का क्लोन दिखता है। चीन ने पहले इस ड्रोन के फोटो और डिजाइन हासिल किया और बाद में ईरान में एक दुर्घटनाग्रस्त ड्रोन को हासिल करके इसकी टेक्नोलॉजी बना ली। वहीं अमेरिका में मौजूद एक चीनी जासूस ने X-47B ड्रोन के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और दस्तावेजों को चीन को बेच दिया। माना जाता है कि X-47B ड्रोन की बाकी पेचीदगियां चीन ने साइबर अटैक के जरिए हासिल कर ली। चीनी हथियारों, उनकी कहानी तो बहुत लंबी है।
2: अब सवाल ये उठता है कि आखिर चीनी हथियारों पर कितना भरोसा किया जा सकता है। वैसे पूरी दुनिया देख भी चुकी है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, दुनिया जानती है। लेकिन सवाल यह है कि चीन ने अपने इन्हीं हथियारों की बदौलत बहुत सारे देशों को अपने कर्ज के जाल में भी फंसा रखा है। लेकिन भरोसा कितना है वो तमाम देश जानते हैं। चीन पर भरोसा करना मतलब धोखा खाना।
0: चीन की कंपनियों के प्रति कम होते विश्वास का असर उसके हथियार कारोबार पर भी दिखने लगा है। दुनिया भर में चीन की कंपनियों के प्रति पहले ही विश्वास उठ चुका है। अब चीन से हथियार खरीदने वाले देश भी दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं।
2: प्रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: तो चलिए आस्था और भक्ति के बाद बात मौसम की। तो देखिए मौसम बदल रहा है, मॉनसून अब वापसी कर रहा है, राजस्थान के रास्ते उसकी विदाई शुरू हो गई है। हालांकि मॉनसून की विदाई ऐसे समय हो रही है जब अब तक देश भर में बारिश सामान्य से 15% कम रही है। ऐसा माना जाता है कि 15 अक्टूबर तक मॉनसून की विदाई देश से हो जाती है, फिर जाड़े का मौसम का शुरुआत इसकी हो जाती है।
2: हवाओं में ठंडक का एहसास, तापमान में कमी, कम होता उमस का असर, ये पहचान है मॉनसून की विदाई की। देश भर में मॉनसून का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के पश्चिमी हिस्से से मॉनसून की वापसी शुरू हो गई है। इसके बाद ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश से सीधे सीधे पीछे हटेगा। फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों से मॉनसून कमजोर होते हुए पूरे देश से विदा हो जाएगा। भारत में मॉनसून की वापसी हमेशा देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से से शुरू होती है। कच्छ के साथ साथ सबसे पहले मॉनसून राजस्थान के इलाके से विदा होता है। अब तक के सभी अनुमान के मुताबिक किसी भी हालत में भारत के किसी भी राज्य से मॉनसून की वापसी 1 सितंबर से पहले नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि अगर 5 दिनों तक लगातार बारिश नहीं होती और हवा का रुख भी बदलता रहता है तो हवा में नमी भी कम होने लगती है, तो ये मान लिया जाता है कि उस हिस्से से मॉनसून की विदाई होने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक आमतौर पर प्रायद्वीपीय भारत में सर्दियों की शुरुआत से कुछ दिन पहले मॉनसून के वापस लौटने की प्रक्रिया 15 अक्टूबर को समाप्त हो जाती है। हालांकि दिल्ली से मॉनसून की विदाई 25 सितंबर से शुरू होती है। मॉनसून की विदाई ऐसे समय हो रही है जब अब तक देश भर में बारिश सामान्य से 15% कम रही है, यानी मॉनसून सीजन के आखिरी चरण में बारिश का आंकड़ा अभी भी सामान्य से नीचे है। इससे कई राज्यों में मॉनसून के दौरान हुई बारिश के वितरण में असमानता दिख रही है। जून में मॉनसून की शुरुआत कमजोर रही थी और देश में बारिश सामान्य से काफी कम दर्ज की गई थी। जुलाई में बारिश ने कुछ हद तक इसकी भरपाई की, लेकिन अगस्त और सितंबर में फिर कमी दर्ज की गई। अब जब मॉनसून की वापसी शुरू हो गई है तो बंगाल की खाड़ी लो प्रेशर सिस्टम बन गया है, जिससे ओडिशा, पूर्वी यूपी, बिहार और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बारिश के हालात बन रहे हैं। इस सिस्टम के बाद उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के ज्यादातर हिस्सों से मॉनसून के तेजी से लौटने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव के साथ जुड़िए, और इसके लिए आपको बस ये करना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजना है। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। और देखिए हमारे पास लगातार जो दर्शक हैं वो वीडियोस भी भेज रहे हैं। इसी कड़ी में अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो कि हमारे दर्शकों ने हमें भेजी है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से गोपाल जोगदंड ने हमें गणेशोत्सव का ये शानदार वीडियो बना करके भेजा है। घर में बप्पा की मनमोहक प्रतिमा की उन्होंने स्थापना की है, तमाम सुगंधित फूलों से भगवान गजानन का श्रृंगार किया है, पंडाल में शानदार लाइटिंग भी की गई है। वहीं दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो दूसरी तस्वीर राजस्थान के कोटा से ज्योति सिसोदिया ने हमें भेजी है। परिवार ने बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ घर में बप्पा की स्थापना की है। पीले रंग की विशाल पगड़ी के साथ ही पीले रंग के वस्त्र में भगवान गजानन शोभायमान नजर आ रहे हैं। साथ ही शानदार ज्वेलरी भी उन्हें पहनाई गई है जो अपने भक्तों को निर्भय का वरदान दे रही है। तो देखिए हमारे जो दर्शक हैं वो लगातार हमें अपनी घर की वीडियोस भेज रहे हैं जहां उन्होंने गणपति बप्पा की स्थापना की है। तो देखिए इसी कड़ी में अब हम आपको 2 और तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा से प्रकाश मीणा ने हमें ये तस्वीर भेजी है। यहां ग्रामीण परिवेश की शानदार थीम के साथ पूरे पंडाल को विशेष तौर पर सजाया गया है, जिसमें बप्पा को बैलगाड़ी पर विराजमान किया गया है। मंडप में कुआं और झोपड़ी सहित पूरा गांव का इकोसिस्टम नजर आ रहा है। आकर्षक पगड़ी धारण किए बप्पा के अलौकिक दर्शन हो रहे हैं। वहीं देखिए दूसरी तस्वीर जो हमारे एक दर्शक ने हमें भेजा है, वो है महाराष्ट्र के बुलढाणा से पूर्वेश देशभुक ने गणेशोत्सव का जो वीडियो है वो शेयर किया है हमारे साथ। घर में सजाए गए पंडाल को नीले रंग की थीम दी गई है। बैकग्राउंड और शिखर पर भगवान शंकर के दर्शन हो रहे हैं, जबकि आगे गणपति बप्पा अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
3: क्या पीपल के पौधे की पूजा करने से शनि की पीड़ा कम हो जाती है? क्या पीपल के पौधे से संतान की प्राप्ति सरल हो जाती है? क्या पीपल की पत्तियां आपको रेगुलर धन दे सकती हैं? क्या है पीपल और शनि का कनेक्शन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
9: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
1: गुजरात के अंबाजी में कल से भाद्रवी पूनम महामेला का शुभारंभ, 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान, शक्तिपीठ में सुरक्षा सुविधा के पुख्ता इंतजाम। बिहार के मोतिहारी में भी गणेश उत्सव की धूम है, ऐतिहासिक पंच मंदिर में 10 दिवसीय समारोह का भव्य आयोजन, श्रद्धा भक्ति और उल्लास के गणपति बप्पा मोरिया की जयकार। तेलंगाना के पलवंचा में करोड़ों के नोटों से सजे गणपति बप्पा, 2,90,00,000 रुपए के नोटों से हुए पंडाल की सजावट, 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोटों का किया गया इस्तेमाल। डीयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे किए गए घोषित, अध्यक्ष समेत 3 पदों पर एबीवीपी ने हासिल की जीत, उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन रह विजय। हिमाचल प्रदेश के चंबा में वन विभाग ने भालू का किया रेस्क्यू, डलहौजी की सड़क पर सिर में कनस्तर फंसाए भटक रहा था भालू, सूचना के बाद एक्शन में प्रशासन।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना,
10: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। एक बार फिर से लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस निर्भीक शख्सियत का सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने महाराष्ट्र में मिलावटखोरी करने वाली और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाली लॉबी के खिलाफ ऐलानी जंग कर दिया है। महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कमिश्नर बनने के बाद इस शख्स ने अपने ताबड़तोड़ एक्शन से लोगों की सेहत की कीमत पर मुनाफाखोरी करने वाली लॉबी की नींद उड़ा कर रख दी है।

0: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कमिश्नर तुकाराम मुंडे हैं। महाराष्ट्र की जनता जिन्हें अब सिंघम आईएएस कहने लगी है। 25 मई 2026 को एफडीए के कमिश्नर पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही तुकाराम एक्शन मोड में है। इनके कमिश्नर बनने के बाद महाराष्ट्र के होटल्स, रेस्टोरेंट, कैफे और कन्फेक्शनरीज के मालिक और मालकिनों को पहली बार एहसास हुआ कि उनका काम सिर्फ आंखें मूंद कर मुनाफा वसूली करना नहीं है बल्कि लोगों की सेहत और हाइजीन का कायदे से ख्याल रखना भी है। 4 महीने से भी कम में इनके कार्यकाल में महाराष्ट्र के होटल्स और रेस्टोरेंट्स की सूरत बदल गई है। आम लोग इनकी कार्यशैली से काफी खुश हैं।
1: अंधेरा कितना ही घनघोर क्यों ना हो, एक दिया काफी होता है उस अंधेरे की कालिमा को चीरने के लिए। और उजाले की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि वो व्यवस्था की वस्तु स्थिति को उजागर कर देता है। महाराष्ट्र के एक आईएएस अधिकारी ने अदम्य इच्छा शक्ति, नेक नियति और कर्तव्य निष्ठा के रथ पर सवार होकर व्यवस्थागत नियमों का दीप प्रज्वलित किया तो कई नामचीन संस्थाओं, कंपनियों और हस्तियों के स्याह चेहरे उजागर हो गए। महाराष्ट्र के इस युगांधर आईएएस अधिकारी का नाम है तुकाराम हरिभाऊ मुंडे, एक ऐसा नौकरशाह जिसने अपनी जिम्मेदारियों के तर्जे अमल की बेहतरीन नजीर पेश कर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश भर के ब्यूरोक्रेट्स को बता दिया है कि अगर वो सच्ची निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें तो करोड़ों हिंदुस्तानियों की बहुत सी दुश्वारियां यूं ही खत्म हो जाएंगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कैडर के आईएएस ऑफिसर के तौर पर साल 2006 में सोलापुर के असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर ज्वाइनिंग के बाद से अब तक तुकाराम मुंडे हर रोज आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सीधे तौर पर सुनते हैं।
2: That's where you pointed out that I meet people during 4 to 5 every day. So that's a connect with the people, and it's a practice I have been doing it since I joined the service, not now. So I believe that if public servant or civil servant is to serve in a public space, so who am I serving? Each and every individual. See, if I do not know or do not meet them, do not connect with them, how would I know what are the issues? What are they facing?
1: 21 साल के प्रशासनिक सफर में 25 से ज्यादा तबादलों का दंश झेल चुके तुकाराम मुंडे को 25 मई 2026 को महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई। तुकाराम जब से एफडीए के कमिश्नर बने हैं मिलावटखोर, मुनाफाखोर, धांधलेबाज पनाह मांग रहे हैं। उन्हीं के विभाग के भ्रष्ट, बेईमान और कामचोर मातहत कर्मचारी त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन जनता बहुत प्रसन्न है। सच कहें तो आम लोगों को पहली बार पता चला है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कितने काम का विभाग है। बीते 15 सितंबर को तुकाराम ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट कर कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर चल रही एक ऐसी धांधली उजागर की है जिसे आम जनता पूरी तरह अनजान थी। अस्पतालों के मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोक्योरमेंट को लेकर तुकाराम मुंडे ने जो खुलासा किया है उसने सनसनी मचा दी है। 15 सितंबर को अपनी एक्स पोस्ट में तुकाराम ने लिखा है, महाराष्ट्र में हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों पर किए गए सर्वे में ये पाया गया कि एक आईवी इन्फ्यूजन सेट की एक्चुअल खरीद करीब 11 रुपए होती है जबकि इस पर MRP 325 रुपए लिखी होती है, यानी 2841% का मार्कअप। बढ़ोतरी, एक सिरिंज 6.75 रुपए में खरीदी जाती है जबकि उस पर MRP लिखी होती है 57.20 रुपए। एक कैथेटर 29.41 रुपए में खरीदा जाता है जबकि उस पर MRP लिखी होती है 310 रुपए। कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में भर्ती होने वाले मरीज के डिस्चार्ज से पहले परिजनों को जब बिल दिया जाता है तो उसे देखकर उनकी पेशानियों पर पसीने की बूंदें छलकने लगती हैं। उन्हें क्या पता कि इस भारी भरकम बिल के पीछे नौकरशाहों और हॉस्पिटल्स की दुराभिसंधि का हाथ है। बहरहाल अगर तुकाराम जैसे मसीहा के हाथ में कमान हो तो जनता राहत की उम्मीद कर सकती है। महाराष्ट्र FDA की ओर से सामने रखे गए सर्वे के नतीजों के बाद ट्रेड प्रोक्योरमेंट प्राइस और घोषित MRP के बीच अंतर को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हॉस्पिटल्स के साथ ही मोटे मुनाफे के लिए जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले होटल्स, रेस्तरां, कॉन्फेक्शनरीज, डेयरीज, कैफे और फूड एंड एग्रो फैक्ट्रीज पर भी तुकाराम मुंडे कहर बनकर बरस रहे हैं। त्योहारी मौसम में मुनाफाखोरों की चांदी हो जाती है, इसलिए मिलावट का धंधा चरम पर पहुंच जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम के बीच फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मुंबई के मशहूर बार और रेस्तरां कैफे मुंडेगर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। FDA ने अपनी जांच में पाया कि गर्म खाने की चीजों को जरूरी तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर नहीं रखा जा रहा था और कोल्ड स्टोरेज का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम पर नहीं रखा जा रहा था। इसके साथ ही खाना बनाने वाली जगह ड्रेनेज सिस्टम तय मानकों के मुताबिक नहीं था, जिससे क्रॉस कंटामिनेशन का खतरा था। सोचिए, सरकार ने पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखकर कितने अच्छे रेगुलेशंस बनाए हैं, पर इन रेगुलेशंस के कंप्लायंस को लेकर नौकरशाहों में इतनी बेफिक्री बेपरवाही है कि रेस्तरां या कैफे मालिकों को कौन कहे, आम जनता भी उदासीन हो जाती है। नतीजा ये होता है कि पैसे देकर होटल्स में खाना खाओ और तोहफे के तौर पर बीमारी घर ले आओ। पर FDA के कमिश्नर के तौर पर तुकाराम ने पूरे देश को चता भी दिया है और बता भी दिया है कि कानून की किताब ठंडे बस्ते में डालने के लिए नहीं होती। क्या तुकाराम से पहले किसी ने सोचा होगा कि भंडारे, महाप्रसाद, लंगर या सामूहिक भोज के लिए भी गाइडलाइंस जारी की जा सकती है? महाराष्ट्र FDA ने इसके लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके मुताबिक भंडारा, महाप्रसाद, लंगर या किसी सामूहिक भोज के आयोजन से कम 7 दिन पहले ऑनलाइन फॉर्म जमा करना पड़ेगा। ऐसे आयोजनों में सिर्फ लाइसेंस प्राप्त कैटरर्स की ही सेवाएं ली जा सकेंगी। खाना बनाने और पीने के लिए साफ या RO वाटर ही इस्तेमाल करना होगा। खाना बनाने और परोसने वाले वॉलेंटियर्स के लिए मास्क, दस्ताने और हेड कैप पहनना जरूरी होगा। भंडारों में आमतौर पर हाइजीन को अनदेखा कर दिया जाता है। इसमें खाना खाने वाले आमतौर पर मुफलिसी के मारे लोग ही होते हैं, इसलिए हाइजीन को लेकर आपत्ति दर्ज कराने का सूरत हाल नहीं होता। पर तुकाराम बचपन में बेबस गुर्बत की कड़वी हकीकत से वाबस्ता हो चुके हैं, इसीलिए गरीबों के दर्द को जानते हैं। वैसे FDA की भंडारे वाली गाइडलाइंस का हर तबके के लोग स्वागत कर रहे हैं।
3: नहीं, ये जो निर्णय लिया है वो अच्छा लिया है, जो भी है वो सबके हित के लिए है। अगर जो भी है वो, जो भी भंडारा या जो भी होता है उसमें अगर क्लीननेस रहेगा तो ये सबके हेल्थ के लिए अच्छा है।
4: इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज फॉर द गुड ऑफ द पीपल, गुड ऑफ द कम्युनिटी, और ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और उनकी जो भी गाइडलाइंस है, ऑफकोर्स वो डिटेल में देखेंगे, जैसे कि हमारा मंडल होता है या ग्रुप्स होते हैं जहां पर ये सारी चीजें होती है, भंडारे एंड ऑल, वो उनको फॉलो करना चाहिए। और ये सभी के लिए है, गवर्नमेंट अगर कुछ पॉलिसीज ला रही है।
1: साफ है कि गरीब या आम जनता की सेहत और स्वास्थ्य को लेकर तुकाराम मुंडे बहुत संवेदनशील हैं। दूसरी ओर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट की अनदेखी करने वाली रसूखदार और पावरफुल लॉबी के खिलाफ एक्शन लेने में वो जरा भी हिचकिचाते नहीं है। अंजाम की परवाह किए बगैर तुकाराम ऐसी लॉबी से सीधा हेड ऑन कर लेते हैं। तुकाराम ने बिमल इलायची का विज्ञापन करने पर बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान समेत अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को 14 अगस्त 2026 को नोटिस भेज दिया था। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया कि विज्ञापन में इलायची के नाम पर पान मसाले का प्रमोशन हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र में तंबाकू उत्पादों पर बैन है।
2: जो नोटिस इश्यू किया गया है अबाउट एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन वायलेशन, उनको नोटिस रेगुलेशन 2018 के हिसाब से दिया गया है और सेक्शन 24 ऑफ फसाई एक्ट जो है उसके हिसाब से दिया गया है, क्योंकि ये गुटखा और जो प्रोडक्ट है महाराष्ट्र में बैन है और उसका एडवर्टाइजिंग ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग में आता है, इसलिए हमने उनको नोटिस दिया, उनको टाइम दिया है।
1: साफ है कि निर्भीक तुकाराम रसूखदारों और पावरफुल लॉबीज के खिलाफ एक्शन लेने में जरा भी परहेज नहीं करते, हालांकि उन्हें इस नायकत्व के लिए धमकियां भी मिलती रही हैं। पर जो इंसान कर्तव्य परायणता का दिया अपने हाथों में लेकर लोकहित के अग्निपथ पर निकल जाता है, वो रास्ते में आने वाले सेहरा या बयाबा की परवाह नहीं करता। नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने और नियमों की अनदेखी करने वालों पर घास गिराने की वजह से शुरू से ही इनकी राह में कांटे बिछाए जाते रहे हैं, लेकिन एक सच्चे योद्धा की तरह हर मुश्किलों का ये डट कर मुकाबला करते हैं। आत्मा अगर गवाही दे तो बड़े से बड़ा एक्शन लेने से भी परहेज नहीं करते।
2: Once you do that and if you are a public servant, what is my role? That's the question I ask as a public servant. And if my role is to contribute for the betterment of the society, should I trade that part or should I compromise on that part? That was the question I ruminated upon. And the answer I got is I should trade this part, whatever the cost may be. Maybe sometimes it is less or more, whatever it is. That's a choice, and that's a choice I made. And I don't think I regret anything of that today.
1: कहने की जरूरत नहीं कि साल 2026 में लोक सेवा का व्रत लेने के बाद से ही तुकाराम व्यापक जनहित के पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ रहे हैं। 21 साल के सफर में 25 बार ट्रांसफर की दुश्वारी झेली, लेकिन जहां भी पोस्टिंग हुई, जिस विभाग की भी जिम्मेदारी मिली, पूरी क्रांति ला दी। 25 मई 2026 को FDA कमिश्नर बनने के बाद से ऐसे ऐसे साहसिक काम किए हैं कि नियमों की धजिया उड़ाने वाले पनाह मांग रहे हैं। महाराष्ट्र FDA का कमिश्नर बनने के बाद पहले हफ्ते में ही उन्होंने सब स्टैंडर्ड और मिलावटी सामान बेचने वाले 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे और 100 लोगों को गिरफ्तार किया। उपचार के दावे वाले भ्रामक विज्ञापन दिखाने के आरोप में पतंजलि के आउटलेट पर छापे मारे और 51 लाख रुपए का सामान जब्त कर लिया। ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के 86 वेयर हाउसेज की जांच की और नियमों की अनदेखी की वजह से 14 वेयर हाउसेज के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। मुंबई में डोमिनोज पिज्जा के 4 आउटलेट के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर यानी बिना डेयरी से बने पनीर पर 1 साल तक के लिए बैन लगा दिया। तुकाराम मुंडे के इन ताबड़तोड़ एक्शन से महाराष्ट्र की आम जनता राहत महसूस कर रही है। दूसरी ओर होटल्स, रेस्तरा, कॉन्फेक्शनरीज, डेयरीज, कैफे और फूड एंड एग्रो फैक्ट्रीज के मालिकों को पहली बार यह एहसास हुआ है कि उनका काम सिर्फ मुनाफा ऐंठना नहीं है, बल्कि लोगों की सेहत का, स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखना है।
0: ऐसा नहीं है कि FDA का कमिश्नर बनने के बाद से ही तुकाराम एक्शन मोड में आए हैं। महाराष्ट्र कैडर का IAS अधिकारी बनने के बाद से ही तुकाराम नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर वज्रपात करते रहे हैं और इसके लिए कई बार इन्हें धमकियां भी मिली, राह में रोड़े अटकाए गए, लेकिन तमाम चुनौतियों के बाद भी कभी भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं हुए। एक गरीब किसान परिवार में जन्म लेने वाले तुकाराम ने बचपन में गरीबी का दंश झेला है, जीवन की दुश्वार देखी हैं, पैदावार के लिए खेतों में पसीना बहाया है और इसलिए इनका व्यक्तित्व फौलादी हो गया, हालात से हार नहीं मानने का जज्बा पैदा हो गया।

0: तुकाराम मुंढे आज महाराष्ट्र में आइडियल ब्यूरोक्रेसी की मिसाल बन चुके हैं। उनकी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता गरीब मजलूम लोगों के स्वास्थ्य और सेहत की उम्मीद की लौ बन चुकी है। जबकि महाराष्ट्र में नियमों की अनदेखी करने वाले फूड और ड्रग बिजनेस से जुड़े प्रतिष्ठानों को हर पल तुकाराम का डर सता रहा है। बतौर एफडीए कमिश्नर 4 महीने से भी कम के इनके कार्यकाल में एफडीए 12,000 से ज्यादा निरीक्षण और छापेमारी कर चुका है। इनमें से 900 से ज्यादा हाई इंपैक्ट रेट्स शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन की वजह से महाराष्ट्र में कुल 603 कमर्शियल लाइसेंस सस्पेंड किए जा चुके हैं। मिलावटखोरी, प्रतिबंधित गुटखा या पान मसाला बेचने और नियमों की अनदेखी के मामले में 875 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इतना ही नहीं, एफडीए ने ऐसे मामलों में 650 से ज्यादा एफआईआर भी दर्ज कराई है। तुकाराम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वे नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों या व्यक्तियों के कद या रसूख से बेपरवाह रहते हैं। एफडीए ने नामी गिरामी फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला की पुणे स्थित यूनिट का 26 अगस्त को निरीक्षण किया और पैकेजिंग, स्टोरेज और खरीद बिक्री के रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी और अनियमितता पाने पर इस यूनिट का सेल्स लाइसेंस रद्द कर दिया। तुकाराम के ताबड़तोड़ एक्शंस की जद में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी एमसीए भी आ चुका है। एफडीए ने एमसीए के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित 5 फूड आउटलेट्स पर 20 अगस्त को छापा मारकर 5 के एफएसएसएआई लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। इतने हाई प्रोफाइल प्रतिष्ठानों के खिलाफ एक्शंस होंगे तो मामला कोर्ट में पहुंचेगा ही। एमसीए ने एफडीए के एक्शन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया तो कोर्ट ने तुकाराम मुंडे को कड़ी फटकार लगा दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हम एफडीए को कितनी बार समझा चुके हैं कि मच्छर को तलवार से मत मारो, क्या आप खुद को लॉर्ड समझते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं? तुकाराम को फटकार लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनसे ये भी पूछ लिया कि एफडीए सिर्फ निजी संस्थानों पर छापेमारी क्यों कर रहा है, कानून का पालन तो सरकारी परिसरों की कैंटीन्स में भी होना चाहिए। तुकाराम भी कहां मानने वाले थे, उन्होंने अगले ही दिन बॉम्बे हाईकोर्ट कैंपस की 3 कैंटीनों पर रेड कर दी और 2 कैंटीन के लाइसेंस कैंसिल कर दिए।
1: ड्यूरिंग द हियरिंग द क्वेश्चंस वर एज वेदर यू आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट ओनली प्राइवेट और टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द एस्टैब्लिशड गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट, वी आर टेकिंग, वी हैव द डेटा टू बैक इट अप, एंड इन दैट कोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेज दैट हैव यू inspected Mantralaya canteen, so we had already done that, so then have you inspected or visited High Court canteen also, which we had not done, so I said we have not done that but we have done this one, so High Court expects that it should be visited. Well, fine, next day my team goes and finds it out whatever it is there.
0: बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन पर रेड डालकर तुकाराम ने ये साबित कर दिया कि वो अलग ही मिट्टी के बने हैं। आपको बता दें कि इस तरह की चुनौतियां तुकाराम अपने सर्विस पीरियड में अनेकों बार फेस कर चुके हैं। साल 2006 में सोलापुर में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर अपनी पहली पोस्टिंग में रेत माफियाओं पर एक्शन लिया तो उन पर जानलेवा हमला हो गया। साल 2007 में नांदेड़ में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई की तो 5 महीने में तबादला हो गया। 2012 में मुंबई सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुई तो टैक्स चोरों से 310 करोड़ रुपए वसूल लिए। साल 2014 में कलेक्टर बनकर दोबारा सोलापुर पहुंचे तो टैंकर माफियाओं की नकेल कस दी, जिसके बाद इन्हें महाराष्ट्र का वाटरमैन कहा जाने लगा। मार्च 2017 में पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड के चेयरमैन बने तो ड्यूटी से लंबे समय से गायब चल रहे 158 कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवरों को एक साथ सस्पेंड कर दिया। साल 2022 में महाराष्ट्र के हेल्थ केयर कमिश्नर बने तो सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करवा दी। कहने की जरूरत नहीं कि तुकाराम मुंडे को जो भी जिम्मेदारी मिली उन्होंने कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की नई लीक खींच दी। दरअसल इस इंसान का पालन पोषण चांदी के चम्मच से नहीं हुआ है, इनका बचपन बहुत ज्यादा दुश्वारियों और आर्थिक तंगी के बीच बीता है। महाराष्ट्र के बीड जिले के गुमनाम से गांव ताड़सोना के एक गरीब किसान परिवार में 3 जून 1975 को जन्मे तुकाराम के पिता के पास इनके लिए चप्पल खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, लिहाजा ये बिना चप्पल के नंगे पांव स्कूल जाते थे। दिन में पढ़ाई करते थे और रात में खेतों की सिंचाई का काम भी करते थे। क्या आप यकीन करेंगे कि तुकाराम मासूम उम्र में सिर पर सब्जियां रखकर साप्ताहिक बाजार जाते थे और उन्हें बेचकर पैसे ले आते थे ताकि घर की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकें। इतनी हार्डशिप में रहकर भी ये अपने क्लास में टॉप करते थे। तभी तो साल 2005 में तुकाराम ने यूपीएससी क्रैक किया और ऑल इंडिया 20वीं रैंक हासिल की। आज वही ताड़सोना गांव का गुदड़ी का लाल ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का दिया जलाकर नौकरशाहों को सच्चाई की राह दिखा रहा है।
2: बंदे में है दम में आज आपने महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को देखा। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: तो चलिए बात एंटरटेनमेंट की हो जाए, तो अल्लू अर्जुन, दीपिका पादुकोण, रश्मिका मंदाना की अपकमिंग और मोस्ट अवेटेड फिल्म राका की हर एक अपडेट फैंस के लिए एक्साइटमेंट है। देखिए, फिल्म के मेकर्स ने जब इसका प्रमोशनल टीजर जारी किया तो फिल्म को लेकर जो एक्साइटमेंट थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि फिल्म साल 2027 में रिलीज होगी।
2: राका की हर एक अपडेट के लिए फैंस एक्साइटेड है। अब हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने इसका प्रमोशनल टीजर जारी किया है, जिससे फिल्म को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई है। राका के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें लिखा, एक ग्लोबल जीत देखने के लिए तैयार हो जाइए, जो मुमकिन लगता था उससे कहीं आगे। हमने कल्पना करने की हिम्मत की, हमने उसे हासिल करने की हिम्मत की, राका एक ग्लोबल जीत। टीजर के आने से ठीक एक दिन पहले सामने आए एक दिलचस्प खुलासे के बाद हुआ है, जिसमें एक पोस्टर में सिर्फ लिखा था 37। अब तक राका के बारे में बहुत कम जानकारी सामने आई है, चाहे वो इसकी शूटिंग की जगह हो या प्रोडक्शन का पैमाना, जिससे फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। अल्लू अर्जुन, दीपिका पादुकोण और रश्मिका मंदाना की अपकमिंग और मोस्ट अवॉइडेड फिल्म को लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ है और फैंस की बताबी भी बढ़ गई है। खबरों के मुताबिक अल्लू अर्जुन राका के चार अलग अलग किरदार निभाएंगे, वो दादा, पिता और दो बेटों की भूमिका में नजर आएंगे। ऐसी भी चर्चा है कि फिल्म में दो पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट दिखाया जा सकता है, हालांकि मेकर्स ने अभी तक किसी भी जानकारी पर मुहर नहीं लगाई है। अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक पोस्टर पहले ही रिलीज किया जा चुका है, जिसे देखने के बाद इटली के इस अपकमिंग मूवी को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर बनी हुई है। संभावना जताई जा रही है कि अल्लू अर्जुन का ऐसा अवतार देखने को मिलेगा जो शायद पहले कभी बड़े पर्दे पर देखने को नहीं मिला है। फिल्म में जाह्नवी कपूर और मृणाल ठाकुर भी अहम किरदारों में नजर आएंगी। इस साइंस फिक्शन एक्शन ड्रामा को सन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म अल्लू अर्जुन और इटली के बीच पहला कोलैबोरेशन भी है। फिलहाल फिल्म अल्लू अर्जुन स्टारर राका की रिलीज डेट को लेकर मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2027 के अंत तक इस बहुचर्चित फिल्म को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी गणपति पधारे हैं और हम लोग श्योर हैं कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा का जरूर आना हुआ होगा। ऐसे में हम चाहते हैं कि आप भी गुड न्यूज टुडे के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोज को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303409922। आपको बता दें कि ये जो नंबर मैंने अभी आपको बताया है ये कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर से वीडियो या फिर तस्वीरें भेजने के लिए ही है। और इसके साथ ही जब भी आप अपना वीडियो या फिर फोटो हमें भेज रहे तो साथ में अपना नाम, अपने शहर का नाम, गांव या कस्बे का नाम जरूर साथ में मेंशन कर दें।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: गुजरात के अंबाजी में कल से भाद्रवी पूनम महामेले का शुभारंभ, 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान, शक्तिपीठ में सुरक्षा सुविधा के पुख्ता इंतजाम। बिहार के मोतिहारी में भी गणेश उत्सव की धूम, ऐतिहासिक पंच मंदिर में 10 दिवसीय समारोह का भव्य आयोजन, श्रद्धा भक्ति और उल्लास के गणपति बप्पा मोरिया की जयकार। तेलंगाना के पलवंचा में करोड़ों के नोटों से सजे गणपति बप्पा, 2,90,00,000 रुपए के नोटों से हुई पंडाल की सजावट, 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोटों का किया गया इस्तेमाल। सूरत में गणपति बप्पा के दरबार से अंगदान का संदेश, ऑर्गन डोनेशन की थीम पे सजा पंडाल, धार्मिक आयोजन के साथ फैलाई जा रही जन जागरूकता। डीयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित, अध्यक्ष समेत 3 पदों पर एबीवीपी ने हासिल की जीत, उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन रहे विजय। हिमाचल प्रदेश के चंबा में वन विभाग ने भालू का किया रेस्क्यू, डलहौजी की सड़क पर सिर में कनस्तर फंसाए भटक रहा था भालू, सूचना के बाद एक्शन में प्रशासन।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।
1: बरसाना में राधा अष्टमी पर्व की नजर आई रौनक, जन्मोत्सव मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। राधा रानी का 11 क्विंटल दूध से हुआ अभिषेक, दही घी और शहद से भी कराया गया उन्हें स्नान। राधा रानी मंदिर में हुई भव्य आतिशबाजी, महाभिषेक के बाद हुई आरती, जयकारों से गूंजा पूरा बरसाना। राधा अष्टमी पर बरसाना से पूरे ब्रज में भक्तिमय माहौल नजर आया, दूर दूर से उत्सव में शामिल होने भक्त पहुंचे। राधा अष्टमी को लेकर बरसाना में सुरक्षा के कड़े इंतजाम और भक्तों की सुविधाओं का भी रखा जा रहा है पूरा ख्याल। दिल्ली के द्वारका श्री रुक्मणी द्वारकाधीश मंदिर में धूमधाम से मनाया गया राधा अष्टमी का पर्व, बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हुए।

होता आ रहा है ये गणपति उत्सव, रोज अलग अलग रूपों में किया जाता है बप्पा का श्रृंगार। तेलंगाना में गणेश चतुर्थी का शानदार जश्न, पलवंचा शहर के पंडाल में कुल 2.90 करोड़ रुपए के नोटों से सजाई गई बप्पा की प्रतिमाएं। गजानन की एक प्रतिमा पे 1.40 करोड़ के नोट से हुई भव्य सजावट, बापूजी नगर में कपू समाज ने खास पूजा के साथ किया गणपति का अनोखा श्रृंगार। पंडाल के प्रवेश द्वार से लेकर गणपति के दरबार तक रंग बिरंगी मालाओं से सजाया गया पंडाल, अनोखी सजावट देखने के लिए बड़ी संख्या में बहुत श्रद्धालु। भगवान गणेश की दूसरी प्रतिमा का 1.50 करोड़ रुपए से हुआ श्रृंगार, टीम एकादंत यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने की खास सजावट। स्थानीय व्यापारियों से चंदा इकट्ठा करके किया गया यह श्रृंगार, आयोजकों के मुताबिक बैंकर्स ने भी सजावट के लिए नए नोट उपलब्ध कराकर की मदद। हुबली में केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी के घर विराजे गजानन, विसर्जन से पहले प्रहलाद जोशी ने की पूजा अर्चना। पुणे के डगरूशेठ गणपति पंडाल में उमड़ा आस्था का मेला, बप्पा को अर्पित किया गया 251 किलो का मोदक केक। अमरावती में बद्रीनाथ धाम मंदिर की थीम पर सजाया गया गणेशोत्सव पंडाल, दूर दूर से देखने पहुंच रहे लोग। गणपति बप्पा के साथ भक्तों को बद्रीनाथ थीम के भी हो रहे दर्शन, रंगीन लाइटों से सजाया गया पंडाल। अमरावती में 31 सालों से अलग अलग थीम पर पंडालों को सजाने की है परंपरा, रुक्मणी गणेश उत्सव मंडल की ओर से होता है इसका आयोजन। सूरत के महिधरपुरा इलाके में गणेश उत्सव का अनोखा रंग हॉरर की थीम पर तैयार किया गया है ये पंडाल। डरावनी फिल्म की तर्ज पर बनाया गया पंडाल का माहौल, गजानन के दर्शन से पहले भक्तों को मिलता है अलग ही रोमांच। सूरत के महिधरपुरा में हर साल अलग अलग थीम पर पंडाल बनाने की है परंपरा, उत्सव को अलग स्वरूप देने की होती है कोशिश। मुंबई में 6 दिनों में 32,000 से अधिक बप्पा की प्रतिमाओं को दी गई विदाई, बीएमसी ने जारी किया आंकड़ा। मुंबई में अब तक 31,500 घरेलू गणपति प्रतिमाओं का हो चुका है विसर्जन, सार्वजनिक गणेश मंडलों की 650 मूर्तियों का भी हो चुका विसर्जन। नैनीताल के नंदा देवी महोत्सव में उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्तों ने किए मां नंदा सुनंदा के दर्शन। ब्रह्म मुहूर्त में मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शनार्थियों का उमड़ा हुजूम, भक्तों ने मां अक्षत फूल नारियल चढ़ाकर मां की पूजा अर्चना की। रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया मंदिर परिसर, रोशनी में बिखरी दिव्य छटा। वेद मंत्रों के उच्चारण से नंदा में हुआ मंदिर का माहौल, भक्तों ने जमकर लगाए जयकारे। मां नंदा देवी महोत्सव 23 सितंबर तक रहेगा जारी, सुरक्षा यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। रायसेन में अनोखे धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान, दादा धूनी दरबार में 1,51,000 किलो सामग्री की गई अर्पित। यज्ञ में सोना चांदी भी किया जा रहा अर्पित, अब तक करीब 1.5 किलो सोना और 4 किलो से ज्यादा चांदी चढ़ाने का दावा। हवन सामग्री में 251 तरह की जड़ी बूटियां भी शामिल, फल फूल और मिठाई के साथ हवन में डाली गई जड़ी बूटियां। हवन आयोजन ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, आयोजकों को मिला इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र। 51 दिन चलेगा धार्मिक आयोजन, गुरु पूर्णिमा से शुरू हुआ आयोजन, नर्मदा संकीर्तन भी रहेगा जारी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे किए गए घोषित, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 3 सीटों पर ऐतिहासिक जीत। नए डीयूएसयू अध्यक्ष बने यश डबास, सचिव पद पर रिया छाबड़ी ने दर्ज की जीत, सह सचिव पद पे लक्ष्यराज सिंह की शानदार विजय। उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन की हुई जीत, उन्हें मिले 30,000 से ज्यादा वोट। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी के शानदार विजय पर सभी युवा साथियों को दी हार्दिक बधाई, पोस्ट में ज्ञानशील और एकता की जीत करार दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने भी एबीवीपी के विजयी उम्मीदवारों को दी शुभकामनाएं, पोस्ट में लिखा ये जनादेश पूरे भारत के युवाओं के मन का प्रतिबिंब। उत्तर प्रदेश में आज से 1,00,000 सरकारी नौकरी भर्ती का महाअभियान शुरू, पहले दिन सीएम योगी ने 818 अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त उम्मीदवारों के साथ सीएम योगी ने ली सेल्फी, फोटो सेशन में अपने नियुक्ति पत्र दिखाते नजर आए।

0: चयनित अभ्यर्थी। जूनियर महिला हॉकी एशिया कप जीतकर लौटी भारतीय टीम की सदस्य मधु पटेल का भव्य स्वागत हुआ, फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार वेलकम। बेटी की उपलब्धि से परिवार और गांव में खुशी की लहर, मधु की उपलब्धि पर मां की आंखों में गर्व के आंसू। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की रूस यात्रा, सेंट पीटर्सबर्ग में ऐतिहासिक तोप चलाने का मिला विशेष सम्मान। तमिलनाडु के मरीना बीच में चला गया सफाई अभियान, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने भी लिया इसमें हिस्सा। भारतीय नौसेना के आईएनएस त्रिशूल ने मिस्र के अलेक्जेंड्रा बंदरगाह का किया दौरा, मिस्र के नौसैनिक जहाज अल कदीर ने गर्मजोशी से किया स्वागत। आईएनएस त्रिशूल के क्रू ने चैडवी वॉर मेमोरियल में दोनों विश्व युद्धों के बहादुर सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। भारत के राजदूत ने आईएनएस त्रिशूल का किया दौरा और क्रू से की मुलाकात। पुलवामा के काकापुरा स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जवानों का मॉक ड्रिल, चाक चौबंद इंतजाम की हुई परख। ड्रिल में पुलिसकर्मियों और दूसरी संबंधित एजेंसियों ने लिया हिस्सा, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा और इमरजेंसी रिस्पांस टीमों की तैयारी को परखना और उसे बेहतर बनाना था इसका मकसद। मेरठ में पहली बार भव्य एयर शो का हुआ आयोजन, मुहिद्दीनपुर में सूर्य किरण एक्रोबैटिक टीम ने किया प्रदर्शन। एयर शो में 9 हॉक एमके 132 विमान ने दिखाए रोमांचक करतब, तिरंगे के रंगों से सजा मेरठ का आसमान। हॉक विमानों से निकली केसरिया सफेद और हरे रंग के धुएं की लकीरें, दिखा वायु वीरों का शौर्य। सूर्य किरण टीम ने दिखाया लूप और बैरल रोल, उल्टी उड़ान समेत कई रोमांचक करतब। कल भी एरोबैटिक प्रदर्शन, सूर्य किरण के पायलट दिखाएंगे सटीक तालमेल, आसमान में बनेंगे शानदार एरोबैटिक फॉर्मेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20वें रोजगार मेले का किया गया उद्घाटन, 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। देशभर के 45 विभिन्न स्थानों पर हुआ रोजगार मेले का आयोजन, सरकारी विभागों और संगठनों के लिए दिए गए नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के टैलेंट पर जताया भरोसा, कहा दुनिया को हमारी युवा शक्ति से बहुत उम्मीद है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, बोले भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने COP21 समिट में किए वादे को समय से पूरा करके दिखाया। पंजाब के ऐतिहासिक फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, टेका मत्था, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फतेहगढ़ साहिब से दूसरी नशा मुक्ति यात्रा को हरी झंडी दिखाई, नशे से प्रभावित परिवारों से भी की खास मुलाकात। पंजाब में 4,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी ये यात्रा, 30 सितंबर को जालंधर में होगा इसका समापन, गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। पंजाब के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को मान सरकार का बड़ा तोहफा, डीए में 8% की बढ़ोतरी, करीब 8,00,000 कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा इससे फायदा। त्योहारी सीजन से पहले कर्मचारियों को मिलेगी ये सौगात, बड़ा हुआ डीए 1 अक्टूबर से होगा जारी, 4% की 2 किस्तों में मिलेगा लाभ। भारतीय अमेरिकी सैनिकों का युद्धाभ्यास ओली महाजन में जारी, मल्टी डोमेन वॉरफेयर पे किया गया मंथन। भारत और अमेरिका की सेनाओं ने ओली में की कमांड पोस्ट एक्सरसाइज, युद्ध की चुनौतियों से जुड़ी रणनीति पर हुई चर्चा। युद्ध के दौरान कम्युनिकेशन बनाए रखने की प्रणाली पर भी हुआ मंथन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को लेकर अनुभव साझा किए गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन रोधी तकनीक पर युद्धाभ्यास के दौरान रहा फोकस, काउंटर यूएएस क्षमताओं के सैन्य इस्तेमाल पर हुई चर्चा। संयुक्त सेना अभ्यास 28 सितंबर 2026 तक रहेगा जारी, दोनों सेनाओं के 600-600 जवान ले रहे हिस्सा। जापान में नागोया के पालोमा मिजोहो स्टेडियम में 20वें एशिया खेलों का रंगारंग उद्घाटन, हर 4 साल में एक बार होता है ये टूर्नामेंट। खेलों की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए की गई शानदार आतिशबाजी, रंगारंग रोशनी से जगमगाया आसमान। 20 एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी को लेकर शानदार एयर शो फाइटर जेट्स ने पेश किया एरोबैटिक डिस्प्ले। भारतीय शूटर मनु भास्कर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने थामा तिरंगा। गेम्स में 45 देश और रीजन 43 खेलों में करेंगे मुकाबला। एशियाई खेलों में 75 से ज्यादा भारतीय एथलीट्स होंगे शामिल। तजिंदर पाल सिंह शॉटपुट में 2 बार के डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर पेश करेंगे अपनी दावेदारी। पटना के महावीर मंदिर पहुंचे एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा, एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया और प्रोड्यूसर एकता कपूर। आने वाली फिल्म दीवान की कामयाबी की कामना की। दीपिका पादुकोण और रणवीर से एक बार फिर पेरेंट्स बने। दीपिका ने बेटी को जन्म दिया। अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म गोलमाल 5 की रिलीज डेट आउट हुई। 8 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है फिल्म। अल्लू अर्जुन की मेगा फिल्म राका का नया प्रमोशनल टीजर आउट। राका में 4 किरदारों में नजर आएंगे अल्लू अर्जुन। आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म का नया गाना बावरी यूट्यूब पर जबरदस्त हिट हुआ। गाने में सोनम महापात्रा की आवाज है। फिल्म डोंट बी शाय का गाना है। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में चीनी फिल्मों की धूम। इस साल 6 फिल्मों की गई है शामिल। पिछले साल 3 फिल्मों को मिली थी जगह। टोरंटो फेस्टिवल में चीन फिल्मों की मौजूदगी बढ़ने के साथ दोनों देशों के रिश्तों में भी दिख रही है मजबूती। चीनी भाषा की फिल्मों का बढ़ रहा है दायरा। फेस्टिवल में मिशेल योहो की फिल्म इट्स माय टाइम ने दर्शकों का खींचा ध्यान। 70 साल की रूबिक क्यूब चैंपियन के जीवन पर आधारित है ये फिल्म। एशियाई सिनेमा की दुनिया भर में बड़ी चमक। कोरियाई और जापानी फिल्मों के बाद अब चीनी फिल्में छाई। टिफ में एशियाई फिल्मों पर दिया जा रहा है जोर। सिंगापुर, ताइवान और मलेशिया की फिल्मों को भी मिली जगह। चीन में रोबोटिक क्रांति को लेकर कंपनियों का बड़ा दावा। साल 2027 तक रोबोटिक की समझ में आ सकती है बड़ी छलांग। चीनी कंपनियां रोबोट्स को दिमागी मजबूती देने पर कर रही हैं काम। जल्द रोबोट बनेंगे और भी ज्यादा समझदार। रोबोट को घरेलू कामों के लिए किया जा रहा है तैयार। 8 सालों में रोबोट के पूरी तरीके से तैयार होने का किया जा रहा है दावा। रोबोट को सिखाने के लिए डेटा जुटाने पर किया जा रहा है काम। फ्रिज खोलने और सब्जी काटने जैसे कामों में उसे किया जा रहा है एक्सपर्ट। चीन में रोबोट के प्रशिक्षण के लिए बनाया जा रहा है खास ट्रेनिंग सेंटर। सेंसर लगाकर इंसानों की हरकतों से रोबोट को सिखाया जा रहा है। चीन के हांगकांग में भव्य लालटेन उत्सव मिड ऑटम फेस्टिवल को लेकर जगमगा उठा पूरा शहर। 20 देशों के 3,000 से ज्यादा लालटेन बने आकर्षण का केंद्र। विक्टोरिया पार्क में लालटेन कार्निवल। हजारों रंग बिरंगे लालटेन लगाए गए। ब्राजील, फ्रांस, भारत और थाईलैंड के लालटेन इसमें शामिल। रोशनी के जरिए फूड कल्चर की शानदार प्रस्तुति। हांगकांग स्टाइल मिल्क टी को लालटेन डिजाइन में दिखाया गया। नानजिंग में 8 मीटर ऊंचा लालटेन ट्री बना आकर्षण का केंद्र। फ्रांस के ओलंपिक चैंपियन लियोन ने जापान में दिया प्रशिक्षण। नागोया में स्कूली बच्चों को सिखाई तैराकी के गुर। ब्रिस्बेन ओलंपिक में मगरमच्छों का खतरा टला। फ्रिजरॉय नदी को रोइंग और क्रैनस्ट्रेंट के लिए मंजूरी। साल 2032 में इस नदी में होंगे ओलंपिक मुकाबले। लंदन फैशन वीक में बोरा अक्सू का स्प्रिंग समर साल 2027 कलेक्शन किया गया पेश। 17वीं सदी की आर्टिस्ट मैरी बील बनी बोरा अक्सू के नए कलेक्शन की प्रेरणा। सॉफ्ट और स्ट्रक्चर डिजाइन के अनोखे कॉम्बिनेशन से खींचा सभी का ध्यान। हाथ की कढ़ाई और बारीक लेस से बोरा अक्सू ने डिजाइनों को दिया खास अंदाज। मार्क्स एंड स्पेंसर्स ने लंदन फैशन वीक में पहली बार रनवे पे किया अपना डेब्यू। रनवे पे महिलाओं और पुरुषों के लिए कई नए डिजाइन पेश किए गए। टक्सीडो से लेकर सफेद शर्ट तक और मार्क्स एंड स्पेंसर्स के हेरिटेज स्टाइल ने बटोरी सुर्खियां। लोगों को खूब पसंद आए कलेक्शन में शोकेस किए गए डिजाइन्स। पुराने फ्लोरल प्रिंट्स और आउटर वियर ने फैशन शो में बढ़ाया रेट्रो टच। आधे कलेक्शन की कीमत £50 से कम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें।
2: अखबार परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: तो देखिए गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव के साथ जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना यह है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजना है, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। और हमारे पास लगातार दर्शक अपने वीडियोस भेज भी रहे हैं, और इसी कड़ी में अभी हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, और ये दोनों ही तस्वीरें हमारे दर्शकों ने हमें भेजी है। महाराष्ट्र के नासिक से राजू पवार ने हमें ये वीडियो भेजा है। जो पहली तस्वीर है वो गणेश उत्सव के मौके पर घर में खूबसूरत पंडाल सजाकर मनमोहक बप्पा की प्रतिमा जो है उन्होंने स्थापित की है। भगवान गजानन के गले में सुगंधित पुष्पों की माला है और सूंड पे दबे घास लिए हुए हैं। पंडाल में फूलों की माला के साथ रंग बिरंगी लाइट से खास तौर पर इसकी सजावट की गई है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, वो जो दूसरा वीडियो है हमें मध्य प्रदेश के आगर मालवा से शीतल राठौर ने भेजा है। हस्त निर्मित इको फ्रेंडली बप्पा को बेहद आकर्षक स्वरूप दिया गया है। बप्पा के आसन को विशेष तौर पर फूलों से सजाया गया है और लड्डुओं का भोग उन्हें लगाया गया है। हाथ में बांसुरी लिए भगवान गजानन के स्वरूप अत्यंत प्रिय नजर आ रहा है।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: क्या पीपल के पौधे की पूजा करने से शनि की पीड़ा कम हो जाती है? क्या पीपल के पौधे से संतान की प्राप्ति सरल हो जाती है? क्या पीपल की पत्तियां आपको रेगुलर धन दे सकती हैं? क्या है पीपल और शनि का कनेक्शन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: जिसने हिला दिया महाराष्ट्र, जिसे कांप रहे हैं मिलावटखोर, हाई कोर्ट की कैंटीन पर लगा दिया ताला, सब्जी बेचकर पढ़ाई, बेईमानों से लड़ाई, बंदे में है दम, सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
9: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
0: गुजरात के अंबाजी में कल से भाद्रवी पूनम महामेले का शुभारंभ, 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान, शक्तिपीठ में सुरक्षा सुविधा के पुख्ता इंतजाम। बिहार के मोतिहारी में भी गणेश उत्सव की धूम, ऐतिहासिक पंच मंदिर में 10 दिवसीय समारोह का भव्य आयोजन, श्रद्धा भक्ति और उल्लास के गणपति बप्पा मोरया की जयकार। तेलंगाना के पलवंचा में करोड़ों के नोटों से सजे गणपति बप्पा, 2,90,00,000 रुपए के नोटों से पंडाल की सजावट, 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोटों का किया गया इस्तेमाल। सूरत में गणपति बप्पा के दरबार से अंगदान का संदेश, ऑर्गन डोनेशन की थीम पे सजा पंडाल, धार्मिक आयोजन के साथ फैलाई जा रही जन जागरूकता। डीयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित, अध्यक्ष समेत 3 पदों पर एबीवीपी ने हासिल की जीत, उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन रहे विजयी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में वन विभाग ने भालू का किया रेस्क्यू, डलहौजी की सड़क पर सिर में कनस्तर फंसाए भटक रहा था भालू, सूचना के बाद एक्शन में प्रशासन।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: आपने बहुत से एस्ट्रोलॉजर से ये बात सुनी होगी कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा उपासना करें। यहाँ तक कि मैंने बचपन से ही अपने घर में ये सुना था कि शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ पर चलाना चाहिए। तो आखिरकार पीपल और शनि का आपस में क्या कनेक्शन है, इसके बारे में आज के कार्यक्रम में हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आज का गुड लक मंत्र क्या है वो जान लेते हैं।
1: अगर आप लगातार बीमारियों से परेशान रहते हैं, अगर लगातार आपके साथ बीमारियां रहती हैं, तो एक नियम बना लीजिए, किसी अस्पताल में धन का या दवाइयों का दान करिए या किसी गरीब व्यक्ति का इलाज करवाइए, उसकी दवाइयां करवाइए। आप इलाज किसी और का करवाएंगे, बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं 20 सितंबर 2026 यानी कि दिन रविवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 20 सितंबर 2026 दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 5:51 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आज हम पंडित जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भगवान शनिदेव और पीपल के पेड़, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है। लेकिन उससे पहले पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, और अक्सर ये सवाल मेरे जहन में भी आता रहा है कि पीपल के पेड़ को बहुत ज्यादा पूजनीय माना गया है, अक्सर लोग खंडित मूर्तियां भी रख देते हैं पीपल के पेड़ के नीचे, दीपक जलाने के लिए कहा जाता है, क्यों इतना महत्व है पीपल के पेड़ का?
1: जी देखिए, हिंदू परंपरा में हम केवल देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, हम प्रकृति की पूजा भी करते हैं, नदी की, पर्वतों की, वृक्षों की, भूमि की, सबकी पूजा करते हैं। और वृक्षों में पीपल का वृक्ष हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। वैसे पीपल, बरगद, बेलपत्र, नीम, इनको बहुत पवित्र मानते हैं, लेकिन पीपल को सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। मुख्य रूप से इसको भगवान विष्णु का स्वरूप या भगवान कृष्ण का स्वरूप मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके पत्तों में का वास होता है। कहा जाता है कि पीपल के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और शीर्ष में शिव जी निवास करते हैं, और शाखाओं में, पत्तों में, फलों में सभी देवताओं का निवास माना जाता है। पीपल का वृक्ष प्राकृतिक और आध्यात्मिक रूप से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, वृक्षों में मैं पीपल हूं। यानी पीपल के वृक्ष को ईश्वरीय दर्जा प्राप्त है, भगवान का स्वयं का स्वरूप पीपल के वृक्ष को माना जाता है।
0: तो चलिए बातचीत का ये जो सिलसिला है इसे यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल।
1: मेष राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, धन खर्च से परेशानी होगी, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और एक ऐसा सवाल पंडित जी से पूछते हैं जो अमूमन सभी के जहन में है, वो है कि पीपल के वृक्ष से आखिरकार शनि का संबंध है क्या?
1: सामान्यतः जैसा सरगम ने कहा कि पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं, पीपल के वृक्ष में जल डालते हैं, बहुत सारे काम, बहुत सारे प्रयोग शनिवार के दिन किए जाते हैं, तो पीपल के वृक्ष से शनि का क्या संबंध है? देखिए, पीपल के वृक्ष के गुण शनि से काफी मिलते जुलते हैं। सबका कल्याण करना, सबकी सहायता करना, सबको ऊर्जा और जीवन प्रदान करना। इसके अलावा पीपल को शनि के ईष्ट देव श्री कृष्ण का स्वरूप भी माना जाता है। पीपल से संबंध रखने वाले पिपलाद मुनि ने शनि को दंड दिया था, तब से माना जाता है कि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से शनि की पीड़ा शांत होती है और पीपल के वृक्ष की उपासना किसी भी रूप में करने से शनि कृपा करते हैं। देखिए, इसके पीछे का विज्ञान ये है कि अगर आप पीपल के वृक्ष की पूजा करेंगे, पीपल के वृक्ष की श्रद्धा करेंगे, तो दरअसल आप पीपल काटेंगे नहीं, पीपल लगाएंगे। पीपल बहुत सारा ऑक्सीजन देता है, मानव के जीवन के लिए जरूरी है, इसीलिए उसके वैज्ञानिक महत्व को समझते हुए उसे धर्म से और ग्रह से जोड़ दिया गया है।
0: तो पीपल के पेड़ पर हमारी जो चर्चा है यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल।
1: कर्क राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर में बड़ा अवसर मिलेगा, संतान की समस्या हल होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, बड़ों की सलाह से लाभ होगा, गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब कार्यक्रम में समय हो गया है आपका सवाल का, तो पंडित जी से ही जान लेते हैं आज का पहला सवाल वो किसका ले रही है।
1: जी, आज का पहला प्रश्न विश्वमोहन जी ने हमें लिखा है और विश्वमोहन जी हमें भुवनेश्वर उड़ीसा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 मार्च 1975, जन्म का समय शाम के 7 बजे, जन्म का स्थान है कोलकाता। विश्वमोहन जी कह रहे हैं कि मैं नौकरी बदलना चाहता हूं, काफी समय से मेरी नौकरी नहीं बदल पा रही है, तो कब तक मेरी नौकरी बदलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। विश्वमोहन जी, अभी नौकरी बदलने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आपकी नौकरी बिल्कुल ठीक चल रही है और आने वाले समय में आपका नौकरी में प्रमोशन भी होगा, तो कृपा करके नौकरी बदलने का प्रयास अभी ना करें। जून 2027 के बाद अगर आवश्यकता लगेगी तो नौकरी बदलिएगा, अन्यथा इसी नौकरी में आपकी बेहतर उन्नति दिखाई दे रही है। आपका करियर और स्वास्थ्य बेहतर रहे इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी अगला सवाल किसका ले रहे हैं उसके बारे में उनसे जानकारी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप हमारे ये कार्यक्रम रोज देखते हैं, इसे काफी पसंद करते हैं और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं, साथ में अपनी बर्थ डिटेल्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं अगला सवाल, पंडित जी आप किसका ले रहे हैं उसके बारे में बताएं।
1: अगला प्रश्न सोनिया जी ने हमें लिखा है, प्रयागराज से लिखती हैं। 14 अप्रैल 1993 का जन्म है, दोपहर में 1:55 प्रयागराज उत्तर प्रदेश। सोनिया कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। सोनिया आपकी कुंडली के हिसाब से अभी भी विवाह होने में थोड़ा समय है आपके। 2027 के सेकेंड हाफ में, मई 2027 से दिसंबर 2027 के समय में आपका विवाह होगा और प्रयागराज के आसपास या प्रयागराज में ही होने की संभावना आपकी कुंडली में बनती है। आपका विवाह शीघ्र हो, बेहतर हो, इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें, रोज सुबह 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा।
0: तो पीपल की पूजा करने से शनि की कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसमें लाभ हो सकता है, ये पंडित जी से जानते हैं।
1: देखिए, आपको बता दिया कि पीपल के वृक्ष को शनि कृपा के लिए पूजते हैं और शनि की समस्याओं को दूर करने के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो अगर आप नियमित रूप से पीपल के वृक्ष की पूजा करें तो शनि की किन किन समस्याओं में लाभ होगा। अगर अल्प आयु का योग है तो वो योग कमजोर होता है पीपल का वृक्ष लगाने से और उसकी पूजा करने से आयु लंबी होती है। अगर रोग और लंबी बीमारी का योग है तो ये भी दूर हो जाता है, निश्चित रूप से व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होता है। पीपल के पौधे लगाने से, पीपल के वृक्ष की पूजा करने से वंश वृद्धि होती है और संतान की समस्याओं का निवारण होता है। पीपल का पौधा अगर आप लगाएं और इसका संरक्षण करें, इसका देखभाल करें, तो शनि की दशाओं का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। पीपल के वृक्ष की पूजा करने के दो तरीके हैं। प्रातः काल सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है और संध्या काल सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। अगर आप दोनों में से किसी तरीके से या दोनों तरीके से पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो शनि की अनुकूलता मिलेगी, शनि की दशाओं का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर असर नहीं डालेगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं तुला वृषभ और धनु राशि का राशिफल क्या है।
1: तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा हो सकती है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग हैं, नौकरी में कुछ बदलाव होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो अगर संतान नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति के लिए पीपल और शनि का आखिरकार क्या प्रयोग करने से आपको लाभ होगा, इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं।
1: अगर आप काफी प्रयास कर रहे हैं, काफी समय बीत गया है और संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो पीपल के साथ शनिदेव के लिए क्या प्रयोग करेंगे? एक पीपल का पौधा किसी सार्वजनिक स्थान पर लगवाइएगा, उसमें जल डालिएगा और नियमित रूप से उसकी रक्षा करिएगा। हर शनिवार को उसी पीपल के पौधे के पास या किसी पीपल के वृक्ष के पास कम से कम 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो संतान की प्राप्ति आपके लिए आसान होगी।
0: तो शनि पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए आखिरकार पीपल के पेड़ की किस तरीके से पूजा उपासना की जा सकती है, किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, आइए उसके बारे में जानते हैं।
1: अगर शनि की महादशा है, अंतरदशा है, साढ़े साती है, ढैया है और उसकी वजह से शनि से आपको पीड़ा मिल रही है तो क्या करेंगे? पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक हर शनिवार की शाम को जलाएं। इसके बाद वृक्ष की 9 बार या 3 बार परिक्रमा करें और परिक्रमा के बाद ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का वहीं पर या घर पर आकर के कम से कम 1, 3 या 11 माला जप करिएगा। अगर ऐसा आप निरंतर करते जाएं तो शनि की पीड़ा से आपको जल्दी से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा।
0: तो अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ऐसे में नियमित धन लाभ के लिए पीपल के पेड़ से जुड़े क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, ये पंडित जी से जानते हैं।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके पास रेगुलर पैसा आए, धन का अभाव ना हो, धन की मुश्किल ना हो, तो क्या करेंगे? शनिवार को किसी भी समय दिन में सूर्यास्त के पहले पीपल के पेड़ के नीचे से उसका एक पत्ता उठा लाइएगा, तोड़िएगा नहीं, जो गिरा हुआ पत्ता होगा वो उठाइएगा, उस पर सुगंध लगा लीजिएगा दोनों तरफ, कोई भी सुगंध लगा लें, और पत्ते को अपने पर्स में रख लीजिएगा। एक महीने तक इस पत्ते को अपने पर्स में रखे रहें और हर महीने पत्ते को बदल दें। और ज्यादा लाभ चाहते हैं तो हर सप्ताह में पुराने पत्ते को बदलकर नया पत्ता सुगंध लगाकर रख लीजिएगा। ऐसा करने से आपके पास निरंतर धन आता रहेगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल।
1: मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, मानसिक चिंता हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, धन की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की समस्याएं दूर होंगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए अब समय हो गया है पंडित जी से जानने का कि आज का अगला यानी कि तीसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, अगला प्रश्न विशाखा जी ने हमें लिखा है और विशाखा जी इंदौर मध्य प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 फरवरी 1982। जन्म का समय दोपहर के 2:50। जन्म स्थान है इंदौर। विशाखा जी कह रही हैं कि काफी समय से अपने पति के साथ मिल करके एक प्रॉपर्टी लेना चाहती हैं, लेकिन उसमें बार बार अड़चने आ रही हैं, तो क्या उपाय करें और प्रॉपर्टी कब तक मिल सकेगी। विशाखा जी, अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, अप्रैल 2027 से दिसंबर 2027 का जो समय है, इस समय में आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगी। जमीन खरीद कर मकान बनवाने का प्रयास मत करिए, बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को गुड़ का या लाल फल का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का अंतिम सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस पर आप हमें अपना प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो पंडित जी, आज का अंतिम सवाल आप किसका ले रहे हैं उसके बारे में बताएं।
1: आज का अंतिम प्रश्न सुनील कुमार जी ने हमें लिखा है, और सुनील कुमार जी हमें मेल लिखते हैं नागपुर महाराष्ट्र से। इनकी जन्म की तारीख है 1 मई 1970, जन्म का समय सुबह के 8:35 और जन्म का स्थान है नागपुर। ये कह रहे हैं कि मैं अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेच करके किसी और जगह शिफ्ट होना चाहता हूं, तो क्या ऐसा करना मेरे लिए बेहतर होगा और भविष्य मेरा आने वाले समय में कैसा रहेगा। सुनील जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अप्रैल 2027 के बाद आपका स्थान परिवर्तन दिख रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेच करके नागपुर से पूरी तरह अपना स्थान परिवर्तन अगले साल कर लें, और स्थान परिवर्तन करना आपके लिए कुल मिला जुला के अच्छा रहेगा, उसमें किसी तरह के चिंता की आवश्यकता दिखाई नहीं दे रही है। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहने, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो पंडित जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। बहुत सी बार ऐसा हुआ है, और ये मेरा निजी अनुभव भी रहा है, कि घर में अचानक एकाएक ना दीवार में से पीपल का पौधा निकलने लगता है, तो अब लोगों को ये समझ में नहीं आता शुभ है अशुभ है, उसे काटे या ना काटे, क्योंकि देवताओं का वास होता है पीपल के पेड़ में, तो बड़ा डर लगता है। ऐसे में हमारे दर्शकों को बताएं कि इस परिस्थिति में क्या कुछ किया जा सकता है।
1: जी देखिए, पीपल का पौधा सामान्यतः लगाया नहीं जाता, बेसिकली चिड़ियों के माध्यम से, कौवे के माध्यम से उसके बीच जगह जगह घूमते हैं, दीवार के किनारे, पिलर के नीचे, सड़क के किनारे, अपने आप पीपल का पौधा उग आता है। अब अगर घर की दीवार पर पीपल का पौधा निकल गया, घर की छत में क्रैक था, वहां पीपल का पौधा निकल आया, तो लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि तोड़ेंगे तो है नहीं, काटेंगे भी नहीं, लोग डरते हैं, और अगर नहीं काटेंगे नहीं हटाएंगे तो दीवार गिरेगी, छत टूटेगी, तो क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसी स्थिति में पीपल का पौधा जब छोटा रहे उस पर निगाह बनाए रखिए, और जैसे ही कोई छोटा पीपल का पौधा छोटे रूप में उग जाता है, निकल आता है, तो जब वो छोटा है उसी समय उसे सावधानी से दीवार से या छत पर से या किनारे से निकाल लीजिए, और उसको निकाल कर ले जाकर पार्क में या सड़क के किनारे सार्वजनिक स्थान पर सावधानी पूर्वक लगा दीजिए। ऐसा करने से उसका दोष नहीं लगेगा, और अगर आप पार्क में या सार्वजनिक स्थान पर लगा देंगे तो आपको फायदा भी होगा। लेकिन एक सिचुएशन ये होती है कि पीपल का पौधा निकला, आपने ध्यान नहीं दिया, वो बड़ा हो गया, मोटा हो गया, अब उसको निकाल तो सकते नहीं, क्योंकि निकालेंगे तो दीवार टूटेगी और उतना बड़ा पौधा या पेड़ कहीं लगेगा नहीं। ऐसे में शास्त्र का नियम ये है कि पहले आपको पीपल के वृक्ष से अनुमति लेनी होगी, बाकायदा उसके लिए पूजा करनी होगी, तब आप उस मोटे पीपल को वहां से हटा सकते हैं जो आपके दीवार में या छत पर निकल आया है, तो उसको अनुमति लेके पूजा और अनुष्ठान के साथ हटाइए, और उसके बदले में कम से कम 4-5 पीपल के पौधे सार्वजनिक स्थान पर लगवा दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो पीपल का पौधा या पेड़ हटाने का दोष आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन मान लिया आप प्लॉट बनवा रहे, मकान बनवा रहे, प्लॉट के किनारे एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है, मजबूरी ना हो तो पीपल का पेड़ केवल अपने स्वार्थ के लिए मत कटवाइएगा, मजबूरी की बात दूसरी है, लेकिन अगर केवल स्वार्थ के लिए, केवल डिजाइन और डेकोरेशन के लिए अगर आप पीपल का पेड़ कटवाएंगे तो इसका दुष्प्रभाव आपके परिवार को, आपके संतान को झेलना पड़ेगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनका जन्मदिन यानी कि बर्थडे 20 सितंबर 2026 को है, पहले तो आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, हैप्पी बर्थडे। अब जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं कि आप लोगों का आने वाला जो साल है वो कैसा रहने वाला है।
1: जिन लोगों का जन्मदिन 20 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आर्थिक स्थिति के लिए उत्तम रहेगा, करियर और स्थान में परिवर्तन हो सकता है, अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। इस साल के खास तौर से अंतिम समय में स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सूर्य देव की उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
1: बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि शनि देव के मंत्र का, शनि चालीसा का पाठ घर में नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, शनि देव के मंत्र का जप आप कहीं भी कर सकते हैं, घर हो या बाहर हो। सिर्फ पवित्रता और श्रद्धा के साथ मंत्र का जप करना चाहिए। घर में भी मंत्र पढ़ सकते हैं, घर में भी चालीसा कर सकते हैं, लेकिन घर में शनि देव का चित्र या मूर्ति आपको स्थापित नहीं करनी चाहिए।

0: रविवार, शुभ पहर का समय है, शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में एक बार सुंदर कांड का पाठ करिएगा। ऐसा करने से करियर की तमाम बाधाएं दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 20 सितंबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और अब समय हो गया है पंडित जी से जानने का कि आखिरकार आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को पूजा में किस चीज का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आज की गुडलक राशि है मिथुन। इनको पूजा में सुगंधित धूप बत्ती का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके मन और आपके दिमाग की चिंताएं दूर होंगी।
1: तो चलिए कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है पंडित जी से जानने का कि आखिरकार आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, अगर आप सरदर्द से परेशान रहते हों तो क्या करेंगे, अपने हाथों की अंगुलियों के बीच की जगह को हल्के हल्के दबाना चाहिए। सुबह शाम 5-5 ऐसा करिए। धीरे धीरे लगभग 1 सप्ताह के अंदर आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा।
1: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: राधा रानी जी की जन्मस्थली यानी कि बरसाना में आज राधा अष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। जन्मोत्सव में राधा रानी को पीली पोशाक धारण करवाई गई है। बरसाना में राधा रानी जी के मंदिर और उनके गांव में इस अवसर पर खास सजावट भी की गई है। श्रद्धालुओं का उत्साह इस दौरान देखते ही बन रहा है।

0: राधे राधे की गूंज। भक्ति भाव से परिपूर्ण माहौल, ये तस्वीरें बरसाने के ब्रह्मांचल पर्वत पर स्थित श्री लाडली जी महाराज भानु दुलारी राधा रानी जी के मंदिर की है। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग मंदिर की अलौकिक छटा देखते ही बनती है। यहाँ पर किशोरी जी का प्राकट्य उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। कहीं बधाइयाँ गाई जा रही हैं, तो कहीं भजन कीर्तन चल रहा है। श्री जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हर कोई अपने तरीके से लाडली जी के इस उत्सव में शरीक हो रहा है। जिस प्रकार ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है, उसी तरह राधा रानी जी के प्राकट्य उत्सव के अवसर पर भी लोगों के उल्लास में कोई कमी नहीं है।
1: राधा रानी के जन्मोत्सव पर बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो सुकून कहीं नहीं मिलता वो राधा रानी के पास आकर के मिलता है। और

0: कहीं मतलब कितने भी आपके पास दुख हो, आप राधा रानी के मंदिर में जैसे ही आएंगे सारे दुख आप भूल जाते हैं।
1: मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, और इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई कि यहाँ पे जो आके हुई है ना, मैं बता नहीं सकती शब्दों में कि कैसा लग रहा है।
2: सिर्फ ब्रज ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु इस उत्सव में भांग लेने बरसाने पहुंचे। कई लोग अपने लड्डू गोपाल और राधा जी के बाल स्वरूप को साथ लेकर मंदिर परिसर में भक्ति भाव से अभिभूत दिखे।
3: बड़े हर्षोल्लास से है, पूरे देश में बन रही है राधा रानी। बोलो राधा रानी की जय, जग की महारानी, और हमारी आराधना सब चीज इनसे जुड़ी हुई है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
4: बहुत अच्छी सजावट है राधा रानी के मंदिर की, बहुत ही अच्छी सुंदर, प्रिय बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, राधे राधे।
5: ये मंगलमय उत्सव हम सब के लिए एक उत्साहवर्धक उत्सव है, जहां सब रसिक जन मिलकर के बरसाने में आते हैं और समाज में इकट्ठे होकर भक्ति में रस की धारा बहाते हैं। आप सबको पुनः एक बार राधा अष्टमी पर्व की बहुत बहुत बधाई। जय जय श्री राधे।
2: इस बार श्री राधा रानी जी का 5254वां प्राकट्य उत्सव मनाया गया है। इस अवसर पर तड़के 4 से 5 बजे के बीच ही ब्रह्म मुहूर्त में लाडली जी का जन्म अभिषेक किया गया। इस बार 27 कुओं का जल लाकर राधा रानी जी का महाअभिषेक किया गया, क्योंकि राधा रानी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। साथ ही दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बने पंचामृत से भी उनका महाअभिषेक किया गया। 11 क्विंटल दूध, इतने ही दही, 21 किलो गाय के शुद्ध घी, 21 किलो शहद, 51 किलो खांड से राधा रानी का अभिषेक हुआ। 1 घंटे तक महाअभिषेक के बाद राधा रानी जी की विशेष आरती की गई, जिसे आरती नहीं आरता कहा जाता है। इसे मंदिर की सेवायत गोस्वामियों के परिवार की महिलाएं संपन्न करती हैं। राधा अष्टमी के दिव्य उत्सव की तैयारी एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है।
6: समस्त गोस्वामी परिकर की लाली के लिए हमारी बधाई गायन हो है, या को हम समाज कहे हैं तो वो समाज को गायन हो। उसके तत्पश्चात रात्रि मध्य रात्रि में 2 बजे करीब नंदगांव बरसाने के दोनों समस्त गोस्वामी परिकर बैठ के श्री लाली जी की अलौकिक आनंदमयी जो बधाइयों को गायन करें भैया, और वहाँ में हम लाड़ लड़ामे कि मेरी किशोरी जी जब प्रकट भई, किशोरी जी धरातल पे आई तो किस प्रकार से आनंद भयो, किस प्रकार से ब्रिज में आनंद भयो, कितनो उल्लास भयो, या को हम जो है प्रारूप जीवंत उदाहरण द्वापर की तरह करें हैं।
2: लाडली जी का प्राकट्य उत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद मनाया जाता है। माना जाता है कि श्री जी का अवतरण भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को हुआ था। ऐसे में इस अवसर पर परंपरा के अनुसार विधि विधान से राधा रानी जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है और बाल रूप में उनकी पूजा अर्चना की जाती है।
6: भाद्रपद शुक्ला अष्टमी के दिवस मूल नक्षत्र में श्री लाडली जी को प्रादुर्भाव भयो है, तो सुबह 4 बजे 5 बजे के बीच हमारी किशोरी जी को जो है वहाँ पे अभिषेक हुए है। अभिषेक में पंचगम्य से दूध दही से बहुत बल कलवस्त्र में मेरी प्रिया जी को अभिषेक हुए। बाल स्वरूप को हम लाली स्वरूप माने, अपनी पुत्री स्वरूप माने मेरी किशोरी जी को। उसके तत्पश्चात 5 बजे के बाद मंगला आरतो हुए है, आरती नहीं मंगला आरतो। उसके पश्चात 2 घंटे के बाद में 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक श्री स्वामी जी के श्रृंगार के नव नूतन बड़े और सुनहरे श्रृंगार में पोशाक में प्रिया जी को दर्शन हुए है।
2: अष्टमी के दिन शाम को श्रद्धालुओं को लाडली जी के विशेष दर्शन होते हैं। पहले राधा रानी जी शीश महल में विराजमान होकर दर्शन देती हैं, फिर उन्हें सोने की पालकी में विराजमान कर महल के नीचे बनी सफेद छतरी में लाया जाता है, जहां श्रद्धालुओं को उनकी अलौकिक झलक पाने का अवसर मिलता है। साल में केवल 3 बार श्रद्धालुओं को इस प्रकार किशोरी जी के अनुपम दर्शन होते हैं।
6: एक तो हमारे हरियाली थी जिस दिन हिंडोला पड़े हमारो, एक भाद्रपद में ये राधाष्टमी जिस दिन हमारी किशोरी जी बाल स्वरूप में हमारे जो सबको भक्तों को दर्शन दे हैं, और एक तीसरी बार फाल्गुन मास में पूर्ण मासी के जिस दिन फूल डोलो है बाद में हमारी किशोरी जी समस्त भक्त लोगों को देखते भक्त लोगों को दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं। इस प्रकार से जो है हमारा जो है राधाष्टमी को बड़े उल्लास के साथ में, जैसे कि भैया घर में कोई बेटा बेटी आवे उसे हजार लाखों करोड़ों गुना जो है समस्त ब्रजवासी आओ आनंद उल्लास से मनावे।
2: बरसाना के लोग राधा जी को पुत्री के समान मानते हैं, लिहाजा राधा अष्टमी के अवसर पर उनका उल्लास देखते ही बनता है। माना जाता है कि किशोरी जी के जन्मोत्सव के अवसर पर उनके अभिषेक के दर्शन से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। बरसाने में चारों ओर श्री जी के प्राकट्य उत्सव का उत्साह साफ नजर आ रहा है। खास तौर से राधा रानी जी की मंदिर की छटा देखते ही बनती है।
7: लाडली जी मंदिर जो है वो पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है और इस तरह चारों तरफ लाइटिंग लगाई गई है, रंग बिरंगी रोशनी है। वो पूरा मंदिर जो राधा रानी के जन्म उत्सव को लिए बड़े भव्यता और दिव्यता के साथ सजाया गया है। जो भी भक्त यहाँ आए वो राधा रानी में खो जाए।
2: इस अवसर पर मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते रंगीली गली में भी भव्य सजावट की गई।
7: इस तरह पूरे बरसाना जो रंगीली गली को भगवान जो राधा रानी का मंदिर है रंगीली महल उसको जो रास्ता जाता है उसे इस तरह बड़े भव्यता और दिव्यता के साथ लाइटिंग लगा के सजाया गया है, संवारा गया है। पूरे रास्ते में लाइटिंग लगी हुई है और तमाम जो श्रद्धालु हैं लाखों की संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं।
2: बरसाने में शुक्रवार की रात से ही हर ओर यहाँ पर श्रद्धालुओं की खास चहल पहल नजर आई। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि आखिर ये अवसर लाडली जी के अवतरण दिवस का जो है। राधे राधे की गूंज के बीच श्रद्धालुओं ने लाडली जी का दिव्य प्राकट्य उत्सव मनाया है और उनसे सुख समृद्धि की कामना की है। बरसाना से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: तो चलिए आस्था और भक्ति के बाद बात मौसम की। तो देखिए मौसम बदल रहा है, मॉनसून अब वापसी कर रहा है। राजस्थान के रास्ते उसकी विदाई शुरू हो गई है। हालांकि मॉनसून की विदाई ऐसे समय हो रही है जब अब तक देश भर में बारिश सामान्य से 15% कम रही है। ऐसा माना जाता है कि 15 अक्टूबर तक मॉनसून की विदाई देश से हो जाती है, फिर जाड़े का मौसम का शुरुआत इसकी हो जाती है।
9: हवाओं में ठंडक का एहसास, तापमान में कमी, कम होता उमस का असर, ये पहचान है मॉनसून की विदाई की। देश भर में मॉनसून का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के पश्चिमी हिस्से से मॉनसून की वापसी शुरू हो गई है। इसके बाद ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश से सीधे सीधे पीछे हटेगा। फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों से मॉनसून कमजोर होते हुए पूरे देश से विदा हो जाएगा। भारत में मॉनसून की वापसी हमेशा देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से से शुरू होती है। कच्छ के साथ साथ सबसे पहले मॉनसून राजस्थान के इलाके से विदा होता है। अब तक के सभी अनुमान के मुताबिक किसी भी हालत में भारत के किसी भी राज्य से मॉनसून की वापसी 1 सितंबर से पहले नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि अगर 5 दिनों तक लगातार बारिश नहीं होती और हवा का रुख भी बदलता रहता है तो हवा में नमी भी कम होने लगती है, तो ये मान लिया जाता है कि उस हिस्से से मॉनसून की विदाई होने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक आमतौर पर प्रायद्वीपीय भारत में सर्दियों की शुरुआत से कुछ दिन पहले मॉनसून के वापस लौटने की प्रक्रिया 15 अक्टूबर को समाप्त हो जाती है। हालांकि दिल्ली से मॉनसून की विदाई 25 सितंबर से शुरू होती है। मॉनसून की विदाई ऐसे समय हो रही है जब अब तक देश भर में बारिश सामान्य से 15% कम रही है, यानी मॉनसून सीजन के आखिरी चरण में बारिश का आंकड़ा अभी भी सामान्य से नीचे है। इससे कई राज्यों में मॉनसून के दौरान हुई बारिश के वितरण में असमानता दिख रही है। जून में मॉनसून की शुरुआत कमजोर रही थी और देश में बारिश सामान्य से काफी कम दर्ज की गई थी। जुलाई में बारिश ने कुछ हद तक इसकी भरपाई की, लेकिन अगस्त और सितंबर में फिर कमी दर्ज की गई। अब जब मॉनसून की वापसी शुरू हो गई है तो बंगाल की खाड़ी लो प्रेशर सिस्टम बन गया है, जिससे उड़ीसा, पूर्वी यूपी, बिहार और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बारिश के हालात बन रहे हैं। इस सिस्टम के बाद उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के ज्यादातर हिस्सों से मॉनसून के तेजी से लौटने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: गोलमाल 5 की रिलीज डेट का भी ऐलान हो गया है। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म अगले साल यानी कि साल 2027 के पहले महीने के पहले हफ्ते में बड़े बढ़ते पर दस्तक दे सकती है। देखिए इस बार अजय देवगन की गैंग के साथ अक्षय कुमार और प्रिया मणि भी नजर आने वाली हैं। शर्मन जोशी की भी इस फिल्म के साथ वापसी हो रही है।

0: अजय देवगन इस साल और अगले साल यानी 2027 में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करने वाले हैं। उनकी फिल्म दृश्यम 3 को लेकर अभी फैंस की बितावी कम भी नहीं हुई थी कि उससे पहले ही अजय अक्षय की मोस्ट अवेटेड फिल्म गोलमाल 5 का नया पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट भी आउट कर दी। अजय देवगन अर्षद वारसी स्टारर फिल्म गोलमाल 5 का नया पोस्टर डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें गोपाल की मंडली बाइक पर सवार होकर घूम रही है। मजेदार पोस्ट के साथ निर्देशक ने सबसे बड़ी कॉमेडी फ्रेंचाइजी फिल्म की रिलीज डेट पर से पर्दा उठाते हुए कैप्शन में लिखा कि हंसी मस्ती जॉय खुशियां और परिवार, बस कुछ और नहीं। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि गोलमाल 5 8 जनवरी 2027 को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। इसके बाद अजय देवगन ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि गोलमाल 5 अगले साल 8 जनवरी 2027 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। उन्होंने इसकी घोषणा करते हुए लिखा है कि पुरानी आदत है गोलमाल करने की। गोलमाल 5 में रोहित शेट्टी बतौर डायरेक्टर वापसी कर रही हैं, तो अजय देवगन फिर से गोपाल बनकर लौटेंगे। उनके साथ अर्षद वारसी, तुषार कपूर, कुणाल खेमू और श्रेयस तलपड़े भी वापसी कर रहे हैं। शर्मन जोशी भी इस फ्रेंचाइजी में लौट रहे हैं। 20 साल पहले 2006 में रिलीज हुई पहली फिल्म गोलमाल फन अनलिमिटेड के बाद इस फ्रेंचाइजी में शर्मन की वापसी होगी। इस बार अजय देवगन की गैंग के साथ अक्षय कुमार और प्रिया मणि भी नजर आएंगी। हालांकि अक्षय का किरदार क्या होगा इसको लेकर कोई ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये जरूर है कि अक्षय कुमार एक अलग ही अंदाज और बोल्ड बियर्ड लुक में दिखाई दे सकते हैं। चर्चा ये भी है कि वह फिल्म में विलेन की भूमिका निभा सकते हैं। इस फिल्म की शूटिंग 2026 में ही शुरू हुई थी। नई कास्ट प्रिया मणि फिल्म में नेगेटिव किरदार में नजर आ सकती है। गोलमाल फ्रेंचाइजी ने दर्शकों को सिर्फ हंसाया ही नहीं है बल्कि कमाई के मामले में भी जबरदस्त रही है। साल 2017 में गोलमाल अगेन इसकी अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है, जिसने अकेले भारत में 205 करोड़ नेट की कमाई की थी। इसने उस समय 13 अलग अलग बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए थे। गोलमाल फन अनलिमिटेड 86.70 करोड़, गोलमाल रिटर्न 82.04 करोड़, गोलमाल 3 162.30 करोड़, गोलमाल अगेन 308.62 करोड़। रोहित शेट्टी चारों फ्रेंचाइजी में से पहली जहां सुपर डुपर हिट रही, तो दूसरी में करीना कपूर का सीरियल ड्रामा लोगों ने बेहद पसंद किया। तीसरी फ्रेंचाइजी में गोपाल का उंगली तोड़ना और माधव और गोपू की नोकझोंक ने लोगों को खूब हंसाया। चौथी फ्रेंचाइजी में रोहित शेट्टी ने कॉमेडी के साथ साथ हॉरर का तड़का लगाया था। अब पांचवी में वो दर्शकों के लिए क्या नया लेकर आएंगे, इसका इंतजार सभी को बेसब्री से है। ये रिपोर्ट कॉर्निंग टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव के साथ जुड़िए। इसके लिए आपको बस ये करना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाना है और उस वीडियो को बनाकर हमें भेजना है। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक जो है वो वीडियोस भेज रहे हैं, ऐसे में हमारे दर्शकों द्वारा भेजे गए वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की लता मोरवाल और शिवम कुमार ने हमें भेजी है। गणेश उत्सव का जो वीडियो है वो बना करके इन्होंने हमें भेजा है, जहां घर में बप्पा की मनमोहक प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई है। भगवान गजानन को सुगंधित फूलों की माला के साथ प्रिय धूप घास अर्पित की गई है। शानदार पोशाक के साथ बेहद खूबसूरत पगड़ी जो है उन्हें पहनाई गई है। और वहीं दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो राजस्थान के झुंझुनू से नम्रता अजय जांगिड़ ने ये वीडियो हमें भेजी है, जिसमें भक्ति के भाव से जो भरी ये वीडियो है, इसमें इको फ्रेंडली बप्पा का अद्भुत श्रृंगार किया गया है। गणेश उत्सव के मौके पर भगवान गजानन का बेहद आकर्षक पंडाल सजाया गया है, जिसमें फूलों के साथ रंग बिरंगी लाइटिंग से सजावट की गई है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज़ टुडे।

नमस्कार, मैं हूँ सरगम पंच श्रीवास्तव और आज के हमारे स्पेशल शो में बात होगी फिल्म हनुमान अंश के बॉलीवुड पर पड़ रहे असर की। देखिए, विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी हनुमान अंश को दर्शकों से ऐसा रिस्पांस मिला है जिसकी कल्पना खुद मेकर्स ने भी शायद नहीं की होगी। शुरुआती दो हफ्तों में कछुए की रफ्तार से चल रही इस फिल्म ने अचानक ऐसी रफ्तार पकड़ी कि देखते ही देखते 300 करोड़ रुपए के क्लब में ये फिल्म शामिल हो गई है। देखिए, फिल्म को रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा का समय हो गया है और अब भी दर्शकों में से लेकर जो उत्साह है वो बरकरार है। लेकिन हनुमान अंश की सफलता से आने वाले दिनों में सिनेमाघरों में आस्था और भक्ति भाव से भरी फिल्मों की जो लाइनें हैं वो भी लगने वाली हैं। देखिए, आप टीवी स्क्रीन पर उन फिल्मों के नाम देख सकते हैं जिनके बारे में मैं यहां पर बात कर रही हूं, क्योंकि हनुमान अंश एक तरीके से केस स्टडी हो गई है और इसे फॉलो करते हुए अब बाकी फिल्में भी खास तौर पर इसी थीम पर बन रही फिल्में आने वाली हैं। देखिए, महाकाव्य श्री रामायण कथा श्री राम की ये फिल्म हो या फिर वाल्मीकि रामायण, रामायण पार्ट वन, चिरंजीवी हनुमान द इटर्नल, महाअवतार परशुराम, श्रीमद् भागवत पार्ट वन, विष्णुरथ, कृष्ण अवतारम पार्ट टू, करण जौहर की फिल्म राधा कृष्ण, इसको लेकर तो बस भी पिछले काफी समय से है, प्रेमानंद जी महाराज पर राधा अंश, छठ पूजा पर द वन, तेरा साई, हारे का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा, महाकाली जैसी फिल्म जो है वक्त वक्त पर रिलीज होंगी। तो देखिए, यूं कहें तो हनुमान अंश ने बॉलीवुड का जो ट्रेंड है वो बदल करके रख दिया है और अब आने वाले समय में हनुमान अंश को फॉलो करते हुए इसी तरीके की कई फिल्में आने वाली हैं।

0: 2 करोड़ का छोटा बजट और कमाई 300 करोड़ के पार। बात हनुमान अंश फिल्म की हो रही है। फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है। कई बड़े बजट की फिल्मों को पछाड़ते हुए देश की पहली सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्म भी बन गई है। बाबा नीब करौरी पर बनी हनुमान अंश फिल्म रिलीज के बाद शुरुआती 2 हफ्तों में कछुए की रफ्तार से चल रही थी, लेकिन फिल्म ने अचानक ऐसी रफ्तार पकड़ी कि देखते ही देखते 300 करोड़ क्लब में शामिल हो गई। फिल्म को रिलीज हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है और अभी भी दर्शकों में वैसा ही उत्साह बरकरार है। हनुमान अंश फिल्म की सफलता का मुख्य राज मजबूत कंटेंट, दर्शकों का आध्यात्मिक जुड़ाव और सकारात्मक मौखिक प्रचार को बताया जा रहा है। जब फिल्म रिलीज हुई थी तो पहले हफ्ते में ही लगने लगा था कि फिल्म डूब जाएगी। दूसरे हफ्ते में भी फिल्म ने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया। फिल्म मेकर्स भी निराशा के बवंडर में डूबने लगे थे। तभी चमत्कार होना शुरू हुआ और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना करिश्मा दिखाना शुरू कर दिया, जो अभी तक जारी है। बॉलीवुड में अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसी खास विषय पर बनी फिल्म अगर सफलता का परचम लहराती है तो कई फिल्म मेकर्स उसी राह पर चल निकलते हैं। मान लीजिए अगर कोई रोमांटिक या एक्शन फिल्म हिट हो जाती है तो अन्य मेकर्स उसी तरह की फिल्मों को बनाने में लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही अब बॉलीवुड में दिखने लगा है।
1: हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस सफर बिल्कुल आसान नहीं था। 10 लाख से ओपनिंग की शुरुआत के बाद ऐसा वक्त आया कि जब थिएटर्स ने ये फिल्म के शोज को रिड्यूस कर दिया था, घटा दिया था, लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ के बाद ये पिक्चर ऐसी चली कि आज 300 करोड़ कमा चुकी है। बॉक्स ऑफिस पर अब ऑडियंस जा ही रही है और अब ये छोटी सी फिल्म 300 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस करके बॉलीवुड के लिए एक इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा करती है। क्या डिवोशनल और फेथ बेस्ड सिनेमा के लिए ऑडियंस का एपिटाइट बढ़ रहा है? क्या फिल्म मेकर्स अब इस जॉनर को और ज्यादा फोकस देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है?
0: आने वाले दिनों में थिएटर में कई और भक्ति वाली फिल्में रिलीज होने वाली हैं, क्योंकि बॉलीवुड के कई जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भक्ति फिल्मों का ऐलान कर रहे हैं।
2: पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में काफी लो थे इसके कलेक्शंस भी, लेकिन धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से ये फिल्म बढ़ी है और अब तो सब जगह इसकी चर्चा है। इसका वीकेंड का कलेक्शन जो है वो करीब 20-25 करोड़ के ऊपर जा रहा है। हर रोज इसका कलेक्शन बढ़ते जा रहा है और ये मिरेकल ही हम कहेंगे, बहुत बड़ा चमत्कार है। और इस तरीके से जो अब लोगों ने इस भक्तिभाव की फिल्म को देखने का नजरिया बदला है, ये बहुत बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। अब बॉलीवुड को समझ में आने लगा है कि जिस तरीके से पहले राजा हरिश्चंद्र से लेकर, रामायण से लेकर, हमारे देश में भक्ति पे फिल्में बनती थी, जिसमें जय संतुष्टि माता थी जो 1975 में आई थी शोले के कंपटीशन में और वो इतनी जबरदस्त चली थी। उसके अलावा मनोज कुमार साहब ने साई बाबा पे फिल्म बनाई थी, वो चली थी, उसका म्यूजिक अच्छा था। और अब गुजराती में एक फिल्म है लाड़ो जो पिछले साल चली, जिसने 100 करोड़ का बिजनेस किया। और उसी तरीके से हनुमान अंश जो कि 2 करोड़ की फिल्म है, अगर वो इस वक्त 325 करोड़ कर चुकी है और 350 करोड़ के ब्रैकेट में जा रही है और जिस तरीके से उसका वर्ड ऑफ माउथ है उससे मुझे लगता है कि 400 करोड़ के भी बॉक्स में ये चले जाएगी, तो इसका सीधा सा मतलब है कि भक्ति भाव और श्रद्धा वाली फिल्में अब चलने लगी है, लोगों को ये पसंद आने लगी है और बॉलीवुड का रुख अब भक्तिभाव की फिल्मों की तरफ बढ़ने लगा है।
0: हनुमान अंश में मेकर्स ने भी फिल्म के दूसरे पार्ट का ऐलान किया है। फिल्म नीव करौरी बाबा के जीवन पर बनी है। देश के सबसे बड़े क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा से लेकर कई विदेशी सेलेब्स भी नीव करौरी बाबा के भक्त हैं। ऐसे में खबरें हैं कि मेकर्स सेलेब्स को इस फिल्म में कैमियो के लिए अप्रोच कर रहे हैं, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हनुमान अंश का पार्ट 2 भी आएगा ऐसा कन्फर्म माना जा रहा है।
2: हनुमान अंश एक्चुअली नीम करौली बाबा की ट्रिलॉजी ही थी ये बेसिकली, जिसका एक ही पार्ट अभी आया है। उसके 2 पार्ट जिसमें आगरा और मथुरा का चैप्टर आएगा वो ऑलरेडी अब बनने वाला है क्योंकि फिल्म ने अपार सफलता पाई है। उसके अलावा फिर हम देखो तो रामायण आएगी जो कि दिवाली में आएगी, रामायण पार्ट 1, उसको लेकर भी काफी एक्साइटमेंट है क्योंकि उसमें बहुत बड़ी स्टार कास्ट है।
0: फिल्म के डायरेक्टर डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी ने फिल्म हनुमान अंश के पार्ट टू की घोषणा की है। पार्ट टू में कैची धाम की कहानी भी दिखाई जाएगी। नीव करोली बाबा 1960 के दशक की शुरुआत में कैची पहुंचे थे और 15 जून 1964 को हनुमान मंदिर और आश्रम की स्थापना हुई थी। जीवन के अंतिम वर्षों में कैची उनका प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र रहा। डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी 2006 के आसपास अपनी पोस्टिंग के दौरान कई बार कैची धाम गए थे। यही उनका पहली बार नीव करोली बाबा के शिक्षाओं से परिचय हुआ। इस अनुभव का उन पर गहरा असर पड़ा और करीब 2 दशकों बाद यही जुड़ाव हनुमान अंश की कहानी की प्रेरणा बना। नैनीताल में भवाली के पास शिप्रा नदी के किनारे स्थित कैची धाम नीव करौली बाबा से जुड़े प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों में शामिल है। नैनीताल में उनसे जुड़े 4 प्रमुख धाम बताए जाते हैं, कैची धाम, काकड़ी घाट, हनुमान गढ़ी और भूमि आधार। एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स से लेकर फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग तक बाबा नीव करौली के कैची धाम में दर्शन के लिए पहुँच चुके हैं। हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स ने एक इंटरव्यू में बताया था कि नीव करौली बाबा की एक तस्वीर देखकर उनकी हिंदू धर्म में रुचि जागी थी। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, मनोज वाजपेयी तक बाबा के आश्रम पहुंच चुके हैं। हनुमान अंश के दूसरे पाठ में कैची धाम के महत्व और महिमा को विस्तार से दर्शाया जाएगा। हनुमान अंश की कहानी फिल्म के डायरेक्टर डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी की लिखी किताब पर आधारित है। हनुमान अंश के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने एक और फिल्म का ऐलान किया है। फिल्म का नाम भी तय हो गया है, राम बोला। ये हनुमान अंश में 7 काम कर चुके महावीर जैन फिल्म्स के साथ ही विशाल चतुर्वेदी बनाएंगे। इस फिल्म में भारतीय इतिहास के सबसे महान कवियों और आध्यात्मिक पुरुषों में से एक महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन और यात्रा को दिखाया जाएगा। फिल्म में उनके जीवन से जुड़े उन पहलुओं को सामने लाने की कोशिश होगी जिन्होंने उन्हें भारतीय साहित्य और भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण नाम बनाया है। जीवन के कई अनदेखे पहलुओं को भी दिखाने की कोशिश की जाएगी। फिल्म को लेकर फिलहाल कलाकारों और रिलीज डेट से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।
2: हनुमान अंश की अपार सफलता के बाद जो डायरेक्टर थे हनुमान अंश के विशाल चतुर्वेदी, वो अब नई फिल्म बनाने जा रहे राम बोला, जो कि आचार्य तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखा था उनकी जीवनी पर है और इनको महावीर जैन प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। उसके अलावा हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा, ये भी एक बहुत बड़ी फिल्म है जो कि अनाउंस हुई है। तो ये हो गया है कि सफलता जो हनुमान अंश को मिली है उससे बहुत सारी फिल्में अनाउंस हुई है। छोटे मोटे प्रोडक्शन हाउस ने भी बनाए हैं और जो रेप्यूटेड प्रोडक्शन हाउसेज हैं उन्होंने भी अनाउंसमेंट किए, जिसमें 13 साई करके फिल्म आ रही है जिसमें संजय मिश्रा है। उसके अलावा श्रीमद भागवतम करके फिल्म है जो कि सागर फिल्म्स, जिन्होंने पहले महाभारत बनाई थी, रामायण बनाई थी, वो बना रहे हैं। उसके अलावा करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस भी राधा और कृष्ण पे फिल्म बनाने जा रहा है, उसके ऊपर भी काफी चर्चाएं हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बोलबाला चल रहा है हनुमान अंश की सफलता के बाद, ये बड़ा अच्छा है। अब लोग चैतन्य महाप्रभु भी फिल्म बनाने वाले हैं और ऑलरेडी हम कल्कि बना चुके हैं, कल्कि का सीक्वल आने वाला है। तो ऐसे में जब हम देखते हैं कि श्रद्धा और भक्ति की फिल्में बॉलीवुड को पसंद आने लगी और बॉलीवुड का रुख अब उस तरफ होने लगा है, तो ये बड़ी खुशी की बात है।
0: आपको बता दें कि गोस्वामी तुलसीदास का नाम राम बोला दुबे था। कहा जाता है कि उन्हें स्वयं प्रभु हनुमान के दर्शन हुए थे और उन्हीं के निर्देश के बाद तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। मुंबई से अनीता ब्रिटो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, हनुमान अंश की कामयाबी ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस के आंकड़े नहीं बदले हैं बल्कि बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स का मूड भी बदल दिया है। देखिए, रामायण से लेकर कृष्ण, हनुमान से लेकर परशुराम और संतों के जीवन तक फिल्म इंडस्ट्री में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर अब इसके बाद काम चल रहा है।

0: ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म हनुमान अंश की सफलता के बाद पौराणिक और धार्मिक फिल्मों को लेकर दर्शकों का रुझान बढ़ रहा है, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर भक्ति से जुड़ी फिल्मों की ऑडियंस बढ़ रही है। इसी साल यानी 2026 में महाकाव्य रामायण पर आधारित एक या दो नहीं बल्कि तीन बड़ी फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही हैं।
1: अब बॉलीवुड जागृत हो गया है कि ऐसी फिल्में बनाई जाएं जो श्रद्धा पे हो, और हनुमान अंश ने सारे के सारे पैरामीटर्स भक्ति की फिल्मों को देखने का नजरिया बदल दिया है, और इसलिए अच्छा म्यूजिक और अच्छी कहानी लेकर अब लोग माइथोलॉजी की फिल्में, रिलीजियस फिल्में, वो फिल्में जहां पर वो अपनी श्रद्धा को दिखा सके, ऐसी फिल्में बनने का फिर से बोलबाला शुरू हो चुका है।
0: सबसे पहले इसी महीने 25 सितंबर को महाकाव्य श्री रामायण कथा श्री राम की सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। अभिषेक सिंह के डायरेक्शन में बनी यह हिंदी फिल्म रामायण की कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश करती दिखाई देगी। फिल्म में देव शर्मा भगवान राम और अंजलि अरोड़ा माता सीता की भूमिका में नजर आएंगी, जबकि रावण का रोल रजनीश दुग्गल निभाते नजर आएंगे। फिल्म के डायलॉग्स और गाने जयदेव जानेवाल ने लिखे हैं, जबकि संगीत देव आशीष ने दिया है। कच्चा बादाम वाली अंजलि अरोड़ा ने रामायण में माता सीता का किरदार निभाया है।

0: इस फिल्म के रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर 2026 को वाल्मीकि रामायण नाम की फिल्म रिलीज होगी। जैसा कि नाम से साफ है, फिल्म का आधार महर्षि वाल्मीकि की रामायण है। इसमें रामायण की कहानी को सिनेमाई अंदाज में पेश किया जाएगा। फिल्म का निर्देशन भावना तलवार ने किया है। मशहूर सिनेमेटोग्राफर विनोद प्रधान ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की है। इसकी कहानी और पटकथा आनंद नीलकंठन ने लिखी है, जबकि डायलॉग्स डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने लिखे हैं।
1: तुम्हारा नया राजा।
0: रामायण पर बनने वाली तीसरी और सबसे बड़ी फिल्मों में नितेश तिवारी की रामायण पार्ट 1 शामिल है। ये फिल्म 6 नवंबर 2026 को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में इस फिल्म को बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है। फिल्म को दो हिस्सों में रिलीज किया जाएगा और इसे भारत के साथ साथ दुनिया भर के दर्शकों तक पहुँचाने की तैयारी है।
2: तीनों लोकों में एक ही राज होगा।

0: जब जब सृष्टि पर संकट आया भगवान विष्णु ने अवतार लेकर
1: फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और साईं पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगी। रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं। साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार यश फिल्म में रावण का किरदार निभाएंगे। इसके अलावा अरुण गोविल दशरथ लारा दत्ता केकई और रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के रोल में नजर आएंगी। फिल्म में और भी कई बड़े कलाकार अलग अलग किरदार में दिखेंगे। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले श्रीधर राघवन और नितेश तिवारी ने तैयार किया है। इसके डायलॉग्स नितेश तिवारी और श्रेयस जैन ने लिखे हैं। फिल्म के गाने कुमार विश्वास ने लिखे हैं और संगीत की जिम्मेदारी ऑस्कर विजेता एआर रहमान और हर्ष जिमर ने संभाली है।
2: एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है।
3: तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। उस वचन का क्या जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था? अब हमारा भाग्य एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है।

एआई तकनीक से बनाई गई फिल्म चिरंजीवी हनुमान द इटरनल की पहली झलक सामने आ गई है। भगवान हनुमान की कहानी कहती है फिल्म 2026 में ही सिनेमा घरों में रिलीज होनी है। चिरंजीवी हनुमान द इटरनल को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली भारत की पहली एआई द्वारा निर्मित फिल्म बताया जा रहा है। हालांकि अभी फिल्म के रिलीज डेट सामने नहीं आई है। 1:11 के स्वस्थ ग्लिम्स वीडियो की शुरुआत में झरना और खूबसूरत वादियां दिखती हैं। इसके बाद पर्वतीय गुफाओं के पार पवन पुत्र हनुमान की छवि दिखती है। जंगलों के बीच से कैमरे की जबरदस्त मूवमेंट के बाद पवन पुत्र हनुमान को हवा में विचरण करते हुए दिखाया जाता है। हाथों में गदा लिए हनुमान जी को अभी सिर्फ पीछे से दिखाया गया है, उनका चेहरा अभी सामने नहीं आया है। बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा की पंक्तियां भी सुनाई देती हैं। पहली झलक दिखाता है ये वीडियो फिल्म को लेकर दर्शकों को उत्साहित जरूर करता दिख रहा है। चिरंजीवी हनुमान नेशनल अवार्ड जीतने वाले निर्देशक राजेश मापुस्कर ने निर्देशित किया है, जबकि फिल्म का निर्माण आलोक जैन, अजित अंधारे, विजय सुब्रमण्यम और विक्रम मल्होत्रा ने स्टार स्टूडियो 18 के सहयोग से किया है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म को 2026 में हनुमान जयंती के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज किया जा सकता है।

0: सिनेमा प्रेमियों को KGF, सालार और कांतारा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले कोमले फिल्म्स ने परशुराम जयंती के अवसर पर फैंस को तोहफा दिया है। फिल्म महाअवतार परशुराम का पहला पोस्टर और टीजर साझा किया गया है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों पर आधारित 7 भागों वाले एनिमेटेड महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की यह दूसरी फिल्म है। इससे पहले फिल्म महाअवतार नरसिम्हा काफी पसंद की गई थी। ये एक 3D एनिमेटेड फिल्म होगी जिसमें एक्शन और ड्रामा होगा। भारत के सबसे बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स का यह दूसरा हिस्सा अश्विन कुमार के निर्देशन में बन रहा है। फिल्म के दिसंबर 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है। बॉलीवुड में आज तक सैकड़ों धार्मिक और पौराणिक फिल्में बनी हैं, लेकिन आज तक कोई निर्माता निर्देशक श्रीमद भागवत को पहले पर्दे पर साकार नहीं कर सका है, लेकिन अब ये बड़ा कारनामा होना तय हो गया है। श्रीमद भागवतम के पहले पार्ट श्रीमद भागवतम पार्ट 1 विष्णुरथ का पहला टीजर पोस्टर जारी कर दिया गया है। रमानंद सागर के पोते आकाश सागर और अमृत सागर के सह निर्देशित पोस्टर में भगवान श्री कृष्ण के हाथ की एक झलक दिख रही है। फिल्म में भगवान श्री कृष्ण की कहानी बताई जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म भी अगले साल रिलीज होगी।
1: पुत्रों से नहीं जीते जाते, मन जीतना पड़ता है।

इस साल भगवान कृष्ण पर एक फिल्म आई थी, कृष्ण अवतार। ये फिल्म इसी साल रिलीज हुई थी। फिल्म में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को दिखाया गया था। कृष्ण अवतारम को दर्शकों का खूब प्यार भी मिला था। अब मेकर्स ने इसके सीक्वल यानी दूसरा पार्ट का ऐलान किया है, जो साल 2028 में

0: छुपी थी। हार्दिक गज्जर के निर्देशन में बनी कृष्ण अवतारम पार्ट वन द हार्ट 7 मई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सिद्धार्थ गुप्ता ने कृष्ण, सुष्मिता भट्ट ने राधा, निवाशनी कृष्णन ने रुक्मणी और संस्कृति जयाना ने सत्यभामा की भूमिका निभाई थी। रोमांस, रिश्तों और फैमिली ड्रामों की फिल्में बनाने वाले करण जौहर अब राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम कहानी को बड़े पर्दे पर उतारने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स की माने तो धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनने वाले इस फिल्म का नाम राधा कृष्ण रखा गया है और प्रोजेक्ट फिलहाल डेवलपमेंट के एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। इस बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की कमान फिल्म मेकर सचिन रवि को सौंपी गई है। वे फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ इसे डायरेक्ट भी करेंगे। फिल्म की कहानी में भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर कंस के वध तक का सफर दिखाए जाने की खबर है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि राधा और कृष्ण के किरदार में कौन नजर आएगा। मेकर्स ने फिलहाल स्टारकास्ट को पूरी तरह सीक्रेट रखा है। बाबा नीप करोरी के जीवन पर बनी फिल्म के बाद एक और संत के जीवन को बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी शुरू हो गई है। वैष्णव किन्नर अखाड़े की जगत गुरु शंकराचार्य हिमांगी सखी ने संत प्रेमानंद महाराज के जीवन पर आधारित राधा अंश नाम की फिल्म बनाने की घोषणा की है। खबर है कि फिल्म का नाम राधा अंश होगा और इसका उद्देश्य संत प्रेमानंद महाराज के आध्यात्मिक जीवन, उनके विचारों और राधा रानी के प्रति उनके अटूट भक्ति को लोगों तक पहुंचाना है। खबर है कि फिल्म को लेकर फिल्म मेकर टीम से शुरुआती बातचीत हो चुकी है और टीम ने इस प्रोजेक्ट को लेकर सहमति भी जताई है। अब संत प्रेमानंद महाराज और उनके शिष्यों से आधिकारिक अनुमति लेने के लिए उनसे मुलाकात की जाएगी। फिल्म में कलाकारों का चयन भी उनके शिष्यों की सलाह के आधार पर किए जाने की बात सामने आ रही है।
1: देखिए, भक्ति फिल्मों का असर अब सिर्फ रामायण और कृष्ण की कहानियों तक सीमित नहीं है। छठी मैया से लेकर साईं बाबा, खाटू श्याम से लेकर मां महाकाली तक आस्था के अलग अलग रंग अब बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। आने वाले दिनों में कई ऐसी फिल्में दर्शकों के सामने होंगी जिनकी कहानी सीधे लोगों की आस्था और उनके विश्वास से जुड़ी हुई होगी।
2: भुतक्के, इस वन की काली शक्ति रात के साए से भी काले, तूफान से भी तेज, जिससे देवी भी हमें नहीं बचा सकती, और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती।
3: अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब
4: बॉक्स ऑफिस पर भक्ति फिल्मों का ऐसा असर देखने को मिल रहा है कि आने वाली कई फिल्मों में इसका अलग अलग स्वरूप देखने को मिलेगा। तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा की 25 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्म द वन में विस्तार से छठ पूजा को दिखाया गया है।
3: इसी वजह से मैं इस बनू सका पे नहीं आना चाहता।
4: तमन्ना भाटिया ने हाल में अपना एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्हें छठी मैया की पूजा करते हुए दिखाया गया था। छठी मैया पर बन रही फिल्म द वन को लेकर ऑडियंस का जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है। फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है।
5: आपके पति नास्तिक हैं क्या?

0: साईं बाबा के जीवन पर एक और फिल्म बन रही है। इस फिल्म का नाम है तेरा साईं। खास बात यह है कि फिल्म में मशहूर एक्टर संजय मिश्रा साईं बाबा के किरदार में नजर आएंगे। अविका गौर, सयाजी शिंदे, मनोज जोशी, रोहन मेहरा जैसे एक्टर्स भी दमदार रोल में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 5 फरवरी 2027 को रिलीज होनी है। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम बाबा का मंदिर है। इस मंदिर में लोगों की काफी आस्था है। हर दिन यहाँ पर खाटू श्याम के दर्शन के लिए भारी संख्या में भक्त पहुँचते हैं। ऐसे में हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा नाम से एक भक्ति फिल्म का ऐलान किया गया है। फिल्म बाबा खाटू श्याम की भक्ति पर बेस्ड होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म साल 2027 में दस्तक देगी। हालांकि इस जानकारी की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिल्म महाकाली अगले साल 8 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में अक्षय खन्ना असुरों के महागुरु शुक्राचार्य के अवतार में दिखने वाले हैं। अक्षय खन्ना के फैंस उन्हें इस रूप में देखने को लेकर उत्साहित हैं। हनुमान फेम प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली फिल्म है। फिल्म में धर्म और अधर्म के बीच होने वाले एक ऐसे महायुद्ध की झलक है जो सिर्फ अच्छाई और बुराई की लड़ाई तक सीमित नहीं है। यह असुरों के शक्तिशाली गुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व में शुरू होने वाले उस संघर्ष की कहानी है जो पूरी दुनिया के भविष्य का फैसला करता हुआ दिखाया जाएगा। फिल्म का टीजर आ चुका है। इस फिल्म में मां महाकाली के दिव्य रूप के भी दर्शन होंगे जिनकी वजह से देवताओं को जीत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: पौधे की पूजा करने से शनि की पीड़ा कम हो जाती है? क्या पीपल के पौधे से संतान की प्राप्ति सरल हो जाती है? क्या पीपल की पत्तियां आपको रेगुलर धन दे सकती हैं? क्या है पीपल और शनि का कनेक्शन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: गुजरात के अंबाजी में आज से भाद्रवी पूनम महामेला का शुभारंभ, 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु के पहुंचने का अनुमान। शक्तिपीठ में सुरक्षा सुविधा के पुख्ता इंतजाम। बिहार के मोतिहारी में भी गणेश उत्सव की धूम, ऐतिहासिक पंच मंदिर में 10 दिवसीय समारोह का भव्य आयोजन, श्रद्धा भक्ति और उल्लास के गणपति बप्पा मोरिया की जयकार। तेलंगाना के पलवंचा में करोड़ों के नोटों से सजे गणपति बप्पा, 2,90,00,000 रुपए के नोटों से पंडाल की हुई सजावट, 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोटों का किया गया इस्तेमाल। सूरत में गणपति बप्पा के दरबार से अंगदान का संदेश, ऑर्गन डोनेशन के थीम पे सजा पंडाल, धार्मिक आयोजन के साथ फैलाई जा रही जन जागरूकता। डीयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित, अध्यक्ष समेत 3 पदों पर एबीवीपी ने हासिल की जीत, उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन रहे विजयी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में वन विभाग ने भालू का किया रेस्क्यू, डलहौजी की सड़क पर सिर में कनस्तर फंसाए भटक रहा था भालू, सूचना के बाद एक्शन में प्रशासन।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। एक बार फिर से लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस निर्भीक शख्सियत का सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने महाराष्ट्र में मिलावटखोरी करने वाली और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाली लॉबी के खिलाफ ऐलानी जंग कर दिया है। महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कमिश्नर बनने के बाद इस शख्स ने अपने ताबड़तोड़ एक्शन से लोगों की सेहत की कीमत पर मुनाफाखोरी करने वाली लॉबी की नींद उड़ा कर रख दी है।

0: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कमिश्नर तुकाराम मुंडे हैं। महाराष्ट्र की जनता जिन्हें अब सिंघम आईएएस कहने लगी है। 25 मई 2026 को एफडीए के कमिश्नर पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही तुकाराम एक्शन मोड में है। इनके कमिश्नर बनने के बाद महाराष्ट्र के होटल्स, रेस्टोरेंट, कैफे और कन्फेक्शनरीज के मालिक और मालकिनों को पहली बार एहसास हुआ कि उनका काम सिर्फ आंखें मूंद कर मुनाफा वसूली करना नहीं है बल्कि लोगों की सेहत और हाइजीन का कायदे से ख्याल रखना भी है। 4 महीने से भी कम में इनके कार्यकाल में महाराष्ट्र के होटल्स और रेस्टोरेंट्स की सूरत बदल गई है। आम लोग इनकी कार्यशैली से काफी खुश हैं।
1: अंधेरा कितना ही घनघोर क्यों ना हो, एक दिया काफी होता है उस अंधेरे की कालिमा को चीरने के लिए। और उजाले की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि वो व्यवस्था की वस्तु स्थिति को उजागर कर देता है। महाराष्ट्र के एक आईएएस अधिकारी ने अदम्य इच्छा शक्ति, नेक नियति और कर्तव्य निष्ठा के रथ पर सवार होकर व्यवस्थागत नियमों का दीप प्रज्वलित किया तो कई नामचीन संस्थाओं, कंपनियों और हस्तियों के स्याह चेहरे उजागर हो गए। महाराष्ट्र के इस युगांधर आईएएस अधिकारी का नाम है तुकाराम हरिभाऊ मुंडे। एक ऐसा नौकरशाह जिसने अपने जिम्मेदारियों के तर्जे अमल की बेहतरीन नजीर पेश कर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश भर के ब्यूरोक्रेट्स को बता दिया है कि अगर वो सच्ची निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें तो करोड़ों हिंदुस्तानियों की बहुत सी दुश्वारियां यूं ही खत्म हो जाएंगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कैडर के आईएएस ऑफिसर के तौर पर साल 2006 में सोलापुर के असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर ज्वाइनिंग के बाद से अब तक तुकाराम मुंडे हर रोज आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सीधे तौर पर सुनते हैं।
2: That's where you pointed out that I meet people during 4 to 5 every day. So that's a connect with the people, and it's a practice I have been doing it since I joined the service, not now. So I believe that if public servant or civil servant is to serve in a public space, so who am I serving? Each and every individual. So if I do not know or do not meet them, do not connect with them, how would I know what are the issues? What are they facing?
1: 21 साल के प्रशासनिक सफर में 25 से ज्यादा तबादलों का दंश झेल चुके तुकाराम मुंडे को 25 मई 2026 को महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई। तुकाराम जब से एफडीए के कमिश्नर बने हैं मिलावटखोर, मुनाफाखोर, धांधलेबाज पनाह मांग रहे हैं। उन्हीं के विभाग के भ्रष्ट, बेईमान और कामचोर मातहत कर्मचारी त्राहीमाम कर रहे हैं, लेकिन जनता बहुत प्रसन्न है। सच कहें तो आम लोगों को पहली बार पता चला है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कितने काम का विभाग है। बीते 15 सितंबर को तुकाराम ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट कर कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर चल रही एक ऐसी धांधली उजागर की है जिसे आम जनता पूरी तरह अनजान थी। अस्पतालों के मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोक्योरमेंट को लेकर तुकाराम मुंडे ने जो खुलासा किया है उसने सनसनी मचा दी है। 15 सितंबर को अपनी एक्स पोस्ट में तुकाराम ने लिखा है, महाराष्ट्र में हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों पर किए गए सर्वे में ये पाया गया कि एक आईवी इन्फ्यूजन सेट की एक्चुअल खरीद करीब 11 रुपए होती है जबकि इस पर MRP 325 रुपए लिखी होती है, यानी 2,841% का मार्कअप। बढ़ोतरी, एक सिरिंज 6.75 रुपए में खरीदी जाती है जबकि उस पर MRP लिखी होती है 57.20 रुपए। एक कैथेटर 29.41 रुपए में खरीदा जाता है जबकि उस पर MRP लिखी होती है 310 रुपए। कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में भर्ती होने वाले मरीज के डिस्चार्ज से पहले परिजनों को जब बिल दिया जाता है तो उसे देखकर उनकी पेशानियों पर पसीने की बूंदें छलकने लगती हैं। उन्हें क्या पता कि इस भारी भरकम बिल के पीछे नौकरशाहों और हॉस्पिटल्स की दुराभिसंधि का हाथ है। बहरहाल अगर तुकाराम जैसे मसीहा के हाथ में कमान हो तो जनता राहत की उम्मीद कर सकती है। महाराष्ट्र FDA की ओर से सामने रखे गए सर्वे के नतीजों के बाद ट्रेड प्रोक्योरमेंट प्राइस और घोषित MRP के बीच अंतर को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हॉस्पिटल्स के साथ ही मोटे मुनाफे के लिए जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले होटल्स, रेस्तरां कॉन्फेक्शनरीज, डेयरीज, कैफे और फूड एंड एग्रो फैक्ट्रीज पर भी तुकाराम मुंडे कहर बनकर बरस रहे हैं। त्योहारी मौसम में मुनाफाखोरों की चांदी हो जाती है, इसलिए मिलावट का धंधा चरम पर पहुंच जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम के बीच फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मुंबई के मशहूर बार और रेस्तरा कैफे मुंडेगर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। FDA ने अपनी जांच में पाया कि गर्म खाने की चीजों को जरूरी तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर नहीं रखा जा रहा था और कोल्ड स्टोरेज का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम पर नहीं रखा जा रहा था। इसके साथ ही खाना बनाने वाली जगह ड्रेनेज सिस्टम तय मानकों के मुताबिक नहीं था, जिससे क्रॉस कंटामिनेशन का खतरा था। सोचिए, सरकार ने पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखकर कितने अच्छे रेगुलेशंस बनाए हैं, पर इन रेगुलेशंस के कंप्लायंस को लेकर नौकरशाहों में इतनी बेफिक्री बेपरवाही है कि रेस्तरा या कैफे मालिकों को कौन कहे, आम जनता भी उदासीन हो जाती है। नतीजा ये होता है कि पैसे देकर होटल्स में खाना खाओ

0: गाइडलाइंस जारी की जा सकती है। महाराष्ट्र FDA ने इसके लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके मुताबिक भंडारा, महाप्रसाद, लंगर या किसी सामूहिक भोज के आयोजन से कम 7 दिन पहले ऑनलाइन फॉर्म जमा करना पड़ेगा। ऐसे आयोजनों में सिर्फ लाइसेंस प्राप्त कैटरर्स की ही सेवाएं ली जा सकेंगी। खाना बनाने और पीने के लिए साफ या RO वाटर ही इस्तेमाल करना होगा। खाना बनाने और परोसने वाले वॉलेंटियर्स के लिए मास्क, दस्ताने और हेड कैप पहनना जरूरी होगा। भंडारों में आमतौर पर हाइजीन को अनदेखा कर दिया जाता है। इसमें खाना खाने वाले आमतौर पर मुफलिसी के मारे लोग ही होते हैं, इसलिए हाइजीन को लेकर आपत्ति दर्ज कराने का सूरत हाल नहीं होता। पर तुकाराम बचपन में बेबस गुर्बत की कड़वी हकीकत से वाबस्ता हो चुके हैं, इसीलिए गरीबों के दर्द को जानते हैं। वैसे FDA की भंडारे वाली गाइडलाइंस का हर तबके के लोग स्वागत कर रहे हैं।
1: नहीं, ये जो निर्णय लिया है वो अच्छा लिया है, जो भी है वो सबके हित के लिए है। अगर जो भी भंडारा या जो भी होता है उसमें अगर क्लीननेस रहेगा तो ये सबके हेल्थ के लिए अच्छा है।
2: इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज फॉर द गुड ऑफ द पीपल, गुड ऑफ द कम्युनिटी, और ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और उनकी जो भी गाइडलाइंस है, ऑफकोर्स वो डिटेल में देखेंगे, जैसे कि हमारा मंडल होता है या ग्रुप्स होते हैं जहां पर ये सारी चीजें होती है, भंडारे एंड ऑल, वो उनको फॉलो करना चाहिए। और ये सभी के लिए है, गवर्नमेंट अगर कुछ पॉलिसीज ला रही है।
0: साफ है कि गरीब या आम जनता की सेहत और स्वास्थ्य को लेकर तुकाराम मुंडे बहुत संवेदनशील हैं। दूसरी ओर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट की अनदेखी करने वाली रसूखदार और पावरफुल लॉबी के खिलाफ एक्शन लेने में वो जरा भी हिचकिचाते नहीं हैं। अंजाम की परवाह किए बगैर तुकाराम ऐसी लॉबी से सीधा हेड ऑन कर लेते हैं। तुकाराम ने विमल इलायची का विज्ञापन करने पर बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान समेत अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को 14 अगस्त 2026 को नोटिस भेज दिया था। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया कि विज्ञापन में इलायची के नाम पर पान मसाले का प्रमोशन हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र में तंबाकू उत्पादों पर बैन है।
3: जो नोटिस इश्यू किया गया है अबाउट एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन वायलेशन, उनको नोटिस रेगुलेशन 2018 के हिसाब से दिया गया है और सेक्शन 24 ऑफ फसाई एक्ट जो है उसके हिसाब से दिया गया है। क्योंकि ये गुटखा और जो प्रोडक्ट है महाराष्ट्र में बैन है और उसका एडवर्टाइजिंग ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग में आता है, इसलिए हमने उनको नोटिस दिया, उनको टाइम दिया है।
0: साफ है कि निर्भीक तुकाराम रसूखदारों और पावरफुल लॉबीज के खिलाफ एक्शन लेने में जरा भी परहेज नहीं करते। हालांकि उन्हें इस नायकत्व के लिए धमकियां भी मिलती रही हैं। पर जो इंसान कर्तव्य परायणता का दिया अपने हाथों में लेकर लोकहित के अग्निपथ पर निकल जाता है, वो रास्ते में आने वाले सेहरा या बयाबा की परवाह नहीं करता। नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने और नियमों की अनदेखी करने वालों पर घास गिराने की वजह से शुरू से ही इनकी राह में कांटे बिछाए जाते रहे हैं, लेकिन एक सच्चे योद्धा की तरह हर मुश्किलों का ये डट कर मुकाबला करते हैं। आत्मा अगर गवाही दे तो बड़े से बड़ा एक्शन लेने से भी परहेज नहीं करते।
4: Once you do that and if you are a public servant, what is my role? That's the question I ask as a public servant. And if my role is to contribute for the betterment of the society, should I trade that part or should I compromise on that part? That was the question I ruminated upon. And the answer I got is I should trade this part, whatever the cost may be. Maybe some trade is less or more, whatever it is. That's a choice, and that's a choice I made. And I don't think I regret anything of that today.
0: कहने की जरूरत नहीं कि साल 2026 में लोक सेवा का व्रत लेने के बाद से ही तुकाराम व्यापक जनहित के पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ रहे हैं। 21 साल के सफर में 25 बार ट्रांसफर की दुश्वारी झेली, लेकिन जहां भी पोस्टिंग हुई, जिस विभाग की भी जिम्मेदारी मिली, पूरी क्रांति ला दी। 25 मई 2026 को FDA कमिश्नर बनने के बाद से ऐसे ऐसे साहसिक काम किए हैं कि नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले पनाह मांग रहे हैं। महाराष्ट्र FDA का कमिश्नर बनने के बाद पहले हफ्ते में ही उन्होंने सब स्टैंडर्ड और मिलावटी सामान बेचने वाले 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे और 100 लोगों को गिरफ्तार किया। उपचार के दावे वाले भ्रामक विज्ञापन दिखाने के आरोप में पतंजलि के आउटलेट पर छापे मारे और 51 लाख रुपए का सामान जब्त कर लिया।

0: ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के 86 वेयर हाउसेज की जांच की और नियमों की अनदेखी की वजह से 14 वेयर हाउसेज के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। मुंबई में डोमिनोज पिज्जा के 4 आउटलेट के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर यानी बिना डेयरी से बने पनीर पर 1 साल तक के लिए बैन लगा दिया। तुकाराम मुंढे के इन ताबड़तोड़ एक्शन से महाराष्ट्र की आम जनता राहत महसूस कर रही है। दूसरी ओर होटल्स, रेस्तरा, कॉन्फेक्शनरीज, डेयरीज, कैफे और फूड एंड एग्रो फैक्ट्रीज के मालिकों को पहली बार यह एहसास हुआ है कि उनका काम सिर्फ मुनाफा ऐठना नहीं है बल्कि लोगों की सेहत का, स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखना है।
1: ऐसा नहीं है कि एफडीए का कमिश्नर बनने के बाद से ही तुकाराम एक्शन मोड में आए हैं। महाराष्ट्र कैडर का आईएएस अधिकारी बनने के बाद से ही तुकाराम नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर वज्रपात करते रहे हैं और इसके लिए कई बार इन्हें धमकियां भी मिली, राह में रोड़े अटकाए गए, लेकिन तमाम चुनौतियों के बाद भी कभी भी अपने कर्तव्य पद से विचलित नहीं हुए। एक गरीब किसान परिवार में जन्म लेने वाले तुकाराम ने बचपन में गरीबी का दंश झेला है, जीवन की दुश्वार देखी हैं, पैदावार के लिए खेतों में पसीना बहाया है और इसलिए इनका व्यक्तित्व फौलादी हो गया, हालात से हार नहीं मानने का जज्बा पैदा हो गया।

0: तुकाराम मुंढे आज महाराष्ट्र में आइडियल ब्यूरोक्रेसी की मिसाल बन चुके हैं। उनकी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता गरीब मजलूम लोगों के स्वास्थ्य और सेहत की उम्मीद की लौ बन चुकी है। जबकि महाराष्ट्र में नियमों की अनदेखी करने वाले फूड और ड्रग बिजनेस से जुड़े प्रतिष्ठानों को हर पल तुकाराम का डर सता रहा है। बतौर एफडीए कमिश्नर 4 महीने से भी कम के इनके कार्यकाल में एफडीए 12,000 से ज्यादा निरीक्षण और छापेमारी कर चुका है। इनमें से 900 से ज्यादा हाई इंपैक्ट रेट्स शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन की वजह से महाराष्ट्र में कुल 603 कॉमर्शियल लाइसेंस सस्पेंड किए जा चुके हैं। मिलावटखोरी, प्रतिबंधित गुटखा या पान मसाला बेचने और नियमों की अनदेखी के मामले में 875 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इतना ही नहीं, एफडीए ने ऐसे मामलों में 650 से ज्यादा एफआईआर भी दर्ज कराई है। तुकाराम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वे नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों या व्यक्तियों के कद या रसूख से बेपरवाह रहते हैं। एफडीए ने नामी गिरामी फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला की पुणे स्थित यूनिट का 26 अगस्त को निरीक्षण किया और पैकेजिंग, स्टोरेज और खरीद बिक्री के रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी और अनियमितता पाने पर इस यूनिट का सेल्स लाइसेंस रद्द कर दिया। तुकाराम के ताबड़तोड़ एक्शंस की जद में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी एमसीए भी आ चुका है। एफडीए ने एमसीए के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित 5 फूड आउटलेट्स पर 20 अगस्त को छापा मारकर 5 के एफएसएसएआई लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। इतने हाई प्रोफाइल प्रतिष्ठानों के खिलाफ एक्शंस होंगे तो मामला कोर्ट में पहुंचेगा ही। एमसीए ने एफडीए के एक्शन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया तो कोर्ट ने तुकाराम मुंडे को कड़ी फटकार लगा दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हम एफडीए को कितनी बार समझा चुके हैं कि मच्छर को तलवार से मत मारो, क्या आप खुद को लॉर्ड समझते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं? तुकाराम को फटकार लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनसे ये भी पूछ लिया कि एफडीए सिर्फ निजी संस्थानों पर छापेमारी क्यों कर रहा है, कानून का पालन तो सरकारी परिसरों की कैंटीन्स में भी होना चाहिए। तुकाराम भी कहां मानने वाले थे, उन्होंने अगले ही दिन बॉम्बे हाईकोर्ट कैंपस की 3 कैंटीनों पर रेड कर दी और 2 कैंटीन के लाइसेंस कैंसिल कर दिए।
1: ड्यूरिंग द हियरिंग द क्वेश्चंस वर एज वेदर यू आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट ओनली प्राइवेट और टेकिंग एक्शन अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट, वी आर टेकिंग, वी हैव द डेटा टू बैक इट अप, एंड इन दैट कोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेज दैट हैव यू inspected Mantralaya canteen, so we had already done that. So then have you inspected or visited High Court canteen also, which we had not done. So I said we have not done that, but we have done this one. So High Court expects that it should be visited. Well, fine, next day my team goes and finds it out whatever it is there.
0: बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन पर रेड डालकर तुकाराम ने ये साबित कर दिया कि वो अलग ही मिट्टी के बने हैं। आपको बता दें कि इस तरह की चुनौतियां तुकाराम अपने सर्विस पीरियड में अनेकों बार फेस कर चुके हैं। साल 2006 में सोलापुर में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर अपनी पहली पोस्टिंग में रेत माफियाओं पर एक्शन लिया तो उन पर जानलेवा हमला हो गया। साल 2007 में नांदेड़ में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई की तो 5 महीने में तबादला हो गया। 2012 में मुंबई सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुई तो टैक्स चोरों से 310 करोड़ रुपए वसूल लिए। साल 2014 में कलेक्टर बनकर दोबारा सोलापुर पहुंचे तो टैंकर माफियाओं की नकेल कस दी, जिसके बाद इन्हें महाराष्ट्र का वाटरमैन कहा जाने लगा। मार्च 2017 में पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड के चेयरमैन बने तो ड्यूटी से लंबे समय से गायब चल रहे 158 कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवरों को एक साथ सस्पेंड कर दिया। साल 2022 में महाराष्ट्र के हेल्थ केयर कमिश्नर बने तो सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करवा दी। कहने की जरूरत नहीं कि तुकाराम मुंडे को जो भी जिम्मेदारी मिली उन्होंने कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की नई लीक खींच दी। दरअसल इस इंसान का पालन पोषण चांदी के चम्मच से नहीं हुआ है, इनका बचपन बहुत ज्यादा दुश्वारियों और आर्थिक तंगी के बीच बीता है। महाराष्ट्र के बीड जिले के गुमनाम से गांव ताड़सोना के एक गरीब किसान परिवार में 3 जून 1975 को जन्मे तुकाराम के पिता के पास इनके लिए चप्पल खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, लिहाजा ये बिना चप्पल के नंगे पांव स्कूल जाते थे। दिन में पढ़ाई करते थे और रात में खेतों की सिंचाई का काम भी करते थे। क्या आप यकीन करेंगे कि तुकाराम मासूम उम्र में सिर पर सब्जियां रखकर साप्ताहिक बाजार जाते थे और उन्हें बेचकर पैसे ले आते थे ताकि घर की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकें। इतनी हार्डशिप में रहकर भी ये अपने क्लास में टॉप करते थे। तभी तो साल 2005 में तुकाराम ने यूपीएससी क्रैक किया और ऑल इंडिया 20वीं रैंक हासिल की। आज वही ताड़सोना गांव का गुदड़ी का लाल ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का दिया जलाकर नौकरशाहों को सच्चाई की राह दिखा रहा है।
2: बंदे में है दम में आज आपने महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को देखा। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
5: तो चलिए आस्था और भक्ति के बाद बात मौसम की। तो देखिए मौसम बदल रहा है, मॉनसून अब वापसी कर रहा है। राजस्थान के रास्ते उसकी विदाई शुरू हो गई है। हालांकि मॉनसून की विदाई ऐसे समय हो रही है जब अब तक देश भर में बारिश सामान्य से 15% कम रही है। ऐसा माना जाता है कि 15 अक्टूबर तक मॉनसून की विदाई देश से हो जाती है, फिर जाड़े का मौसम का शुरुआत इसकी हो जाती है।
6: हवाओं में ठंडक का एहसास, तापमान में कमी, कम होता उमस का असर, ये पहचान है मॉनसून की विदाई की। देश भर में मॉनसून का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के पश्चिमी हिस्से से मॉनसून की वापसी शुरू हो गई है। इसके बाद ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश से सीधे सीधे पीछे हटेगा। फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों से मॉनसून कमजोर होते हुए पूरे देश से विदा हो जाएगा। भारत में मॉनसून की वापसी हमेशा देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से से शुरू होती है। कच्छ के साथ साथ सबसे पहले मॉनसून राजस्थान के इलाके से विदा होता है। अब तक के सभी अनुमान के मुताबिक किसी भी हालत में भारत के किसी भी राज्य से मॉनसून की वापसी 1 सितंबर से पहले नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि अगर 5 दिनों तक लगातार बारिश नहीं होती और हवा का रुख भी बदलता रहता है तो हवा में नमी भी कम होने लगती है, तो ये मान लिया जाता है कि उस हिस्से से मॉनसून की विदाई होने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक आमतौर पर प्रायद्वीपीय भारत में सर्दियों की शुरुआत से कुछ दिन पहले मॉनसून के वापस लौटने की प्रक्रिया 15 अक्टूबर को समाप्त हो जाती है। हालांकि दिल्ली से मॉनसून की विदाई 25 सितंबर से शुरू होती है। मॉनसून की विदाई ऐसे समय हो रही है जब अब तक देश भर में बारिश सामान्य से 15% कम रही है, यानी मॉनसून सीजन के आखिरी चरण में बारिश का आंकड़ा अभी भी सामान्य से नीचे है। इससे कई राज्यों में मॉनसून के दौरान हुई बारिश के वितरण में असमानता दिख रही है। जून में मॉनसून की शुरुआत कमजोर रही थी और देश में बारिश सामान्य से काफी कम दर्ज की गई थी। जुलाई में बारिश ने कुछ हद तक इसकी भरपाई की, लेकिन अगस्त और सितंबर में फिर कमी दर्ज की गई। अब जब मॉनसून की वापसी शुरू हो गई है तो बंगाल की खाड़ी लो प्रेशर सिस्टम बन गया है, जिससे ओडिशा, पूर्वी यूपी, बिहार और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बारिश के हालात बन रहे हैं। इस सिस्टम के बाद उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के ज्यादातर हिस्सों से मॉनसून के तेजी से लौटने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: तो चलिए बात एंटरटेनमेंट की हो जाए तो अल्लू अर्जुन, दीपिका पादुकोण और रश्मिका मंदाना की अपकमिंग और मोस्ट अवेटेड फिल्म राका की हर एक अपडेट फैंस के लिए एक्साइटमेंट है। देखिए फिल्म के मेकर्स ने जब इसका प्रमोशनल टीजर जारी किया तो फिल्म को लेकर जो एक्साइटमेंट थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि फिल्म 2027 में रिलीज होगी।
7: राका की हर एक अपडेट के लिए फैंस एक्साइटेड है। अब हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने इसका प्रमोशनल टीजर जारी किया है जिससे फिल्म को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई है। राका के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें लिखा, एक ग्लोबल जीत देखने के लिए तैयार हो जाइए, जो मुमकिन लगता था उससे कहीं आगे। हमने कल्पना करने की हिम्मत की, हमने उसे हासिल करने की हिम्मत की, राका एक ग्लोबल जीत। टीजर के आने से ठीक एक दिन पहले सामने आए एक दिलचस्प खुलासे के बाद हुआ है। इसमें पोस्टर में सिर्फ लिखा था 37। अब तक राका के बारे में बहुत कम जानकारी सामने आई है, चाहे वो इसकी शूटिंग की जगह हो या प्रोडक्शन का पैमाना, जिससे फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। अल्लू अर्जुन, दीपिका पादुकोण और रश्मिका मंदाना की अपकमिंग और मोस्ट अवॉइडेड फिल्म को लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ है और फैंस की बेताबी भी बढ़ गई है। खबरों के मुताबिक अल्लू अर्जुन राका के 4 अलग अलग किरदार निभाएंगे। वो दादा, पिता और 2 बेटों की भूमिका में नजर आएंगे। ऐसी भी चर्चा है कि फिल्म में 2 पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट दिखाया जा सकता है। हालांकि मेकर्स ने अभी तक किसी भी जानकारी पर मुहर नहीं लगाई है। अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक पोस्टर पहले ही रिलीज किया जा चुका है, जिसे देखने के बाद इटली के इस अपकमिंग मूवी को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर बनी हुई है। संभावना जताई जा रही है कि अल्लू अर्जुन का ऐसा अवतार देखने को मिलेगा जो शायद पहले कभी बड़े पर्दे पर देखने को नहीं मिला है। फिल्म में जान्हवी कपूर और मृणाल ठाकुर भी अहम किरदारों में नजर आएंगी। इस साइंस फिक्शन एक्शन ड्रामा को सन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म अल्लू अर्जुन और इटली के बीच पहला कोलैबोरेशन भी है। फिलहाल फिल्म अल्लू अर्जुन स्टारर राका की रिलीज डेट को लेकर मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2027 के अंत तक इस बहुचर्चित फिल्म को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: की पूजा करने से शनि की पीड़ा कम हो जाती है? क्या पीपल के पौधे से संतान की प्राप्ति सरल हो जाती है? क्या पीपल की पत्तियां आपको रेगुलर धन दे सकती हैं? क्या है पीपल और शनि का कनेक्शन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुडनीज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: गुजरात के अंबाजी में आज से भाद्रवी पूनम महामेला का शुभारंभ, 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु के पहुंचने का अनुमान। शक्तिपीठ में सुरक्षा सुविधा के पुख्ता इंतजाम। बिहार के मोतिहारी में भी गणेश उत्सव की धूम, ऐतिहासिक पंच मंदिर में 10 दिवसीय समारोह का भव्य आयोजन। श्रद्धा भक्ति और उल्लास के गणपति बप्पा मोरिया की जयकार। तेलंगाना के पलवंचा में करोड़ों के नोटों से सजे गणपति बप्पा, 2,90,00,000 रुपए के नोटों से पंडाल की हुई सजावट। 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोटों का किया गया इस्तेमाल। सूरत में गणपति बप्पा के दरबार से अंगदान का संदेश, ऑर्गन डोनेशन की थीम पे सजा पंडाल। धार्मिक आयोजन के साथ फैलाई जा रही जन जागरूकता। डीयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित, अध्यक्ष समेत 3 पदों पर एबीवीपी ने हासिल की जीत। उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन रहे विजयी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में वन विभाग ने भालू का किया रेस्क्यू। डलहौजी की सड़क पर सिर में कनस्तर फंसाए भटक रहा था भालू, सूचना के बाद एक्शन में प्रशासन।

नमस्कार, मैं हूं सरगम पंच श्रीवास्तव और आज के हमारे स्पेशल शो में बात होगी फिल्म हनुमान अंश के बॉलीवुड पर पड़ रहे असर की। देखिए, विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी हनुमान अंश को दर्शकों से ऐसा रिस्पांस मिला है जिसकी कल्पना खुद मेकर्स ने भी शायद नहीं की होगी। शुरुआती दो हफ्तों में कछुए की रफ्तार से चल रही इस फिल्म ने अचानक ऐसी रफ्तार पकड़ी कि देखते ही देखते 300 करोड़ रुपए के क्लब में ये फिल्म शामिल हो गई है। देखिए, फिल्म को रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा का समय हो गया है और अब भी दर्शकों में से लेकर जो उत्साह है वो बरकरार है। लेकिन हनुमान अंश की सफलता से आने वाले दिनों में सिनेमाघरों में आस्था और भक्ति भाव से भरी फिल्मों की जो लाइनें हैं वो भी लगने वाली हैं। देखिए, आप टीवी स्क्रीन पर उन फिल्मों के नाम देख सकते हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, क्योंकि हनुमान अंश एक तरीके से केस स्टडी हो गई है और इसे फॉलो करते हुए अब बाकी फिल्में भी खास तौर पर इसी थीम पर बन रही फिल्में आने वाली हैं। देखिए, महाकाव्य श्री रामायण कथा श्री राम की ये फिल्म हो या फिर वाल्मीकि रामायण, रामायण पार्ट वन, चिरंजीवी हनुमान द इटर्नल, महाअवतार परशुराम, श्रीमद् भागवत पार्ट वन, विष्णुरथ, कृष्ण अवतारम पार्ट टू, करण जौहर की फिल्म राधा कृष्ण, इसको लेकर तो बस भी पिछले काफी समय से है, प्रेमानंद जी महाराज पर राधा अंश, छठ पूजा पर द वन, तेरा साई, हारे का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा, महाकाली जैसी फिल्म जो है वक्त वक्त पर रिलीज होंगी। तो देखिए, यूं कहें तो हनुमान अंश ने बॉलीवुड का जो ट्रेंड है वो बदल करके रख दिया है और अब आने वाले समय में हनुमान अंश को फॉलो करते हुए इसी तरीके की कई फिल्में आने वाली हैं।

0: दो करोड़ का छोटा बजट और कमाई 300 करोड़ के पार। बात हनुमान अंश फिल्म की हो रही है। फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है। कई बड़े बजट की फिल्मों को पछाड़ते हुए देश की पहली सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्म भी बन गई है। बाबा नीब करौरी पर बनी हनुमान अंश फिल्म रिलीज के बाद शुरुआती दो हफ्तों में कछुए की रफ्तार से चल रही थी, लेकिन फिल्म ने अचानक ऐसी रफ्तार पकड़ी कि देखते ही देखते 300 करोड़ क्लब में शामिल हो गई। फिल्म को रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा हो गया है और अभी भी दर्शकों में वैसा ही उत्साह बरकरार है। हनुमान अंश फिल्म की सफलता का मुख्य राज मजबूत कंटेंट, दर्शकों का आध्यात्मिक जुड़ाव और सकारात्मक मौखिक प्रचार को बताया जा रहा है। जब फिल्म रिलीज हुई थी तो पहले हफ्ते में ही लगने लगा था कि फिल्म डूब जाएगी। दूसरे हफ्ते में भी फिल्म ने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया। फिल्म मेकर्स भी निराशा के बवंडर में डूबने लगे थे। तभी चमत्कार होना शुरू हुआ और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना करिश्मा दिखाना शुरू कर दिया, जो अभी तक जारी है। बॉलीवुड में अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसी खास विषय पर बनी फिल्म अगर सफलता का परचम लहराती है तो कई फिल्म मेकर्स उसी राह पर चल निकलते हैं। मान लीजिए अगर कोई रोमांटिक या एक्शन फिल्म हिट हो जाती है तो अन्य मेकर्स उसी तरह की फिल्मों को बनाने में लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही अब बॉलीवुड में दिखने लगा है।
1: हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस सफर बिल्कुल आसान नहीं था। 10 लाख से ओपनिंग की शुरुआत के बाद ऐसा वक्त आया कि जब थिएटर्स ने ये फिल्म के शोज को रिड्यूस कर दिया था, घटा दिया था, लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ के बाद ये पिक्चर ऐसी चली कि आज 300 करोड़ कमा चुकी है। बॉक्स ऑफिस पर अब ऑडियंस जा ही रही है और अब ये छोटी सी फिल्म 300 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस करके बॉलीवुड के लिए एक इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा करती है। क्या डिवोशनल और फेथ बेस्ड सिनेमा के लिए ऑडियंस का एपिटाइट बढ़ रहा है? क्या फिल्म मेकर्स अब इस जॉनर को और ज्यादा फोकस देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है?
0: आने वाले दिनों में थिएटर में कई और भक्ति वाली फिल्में रिलीज होने वाली हैं, क्योंकि बॉलीवुड के कई जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भक्ति फिल्मों का ऐलान कर रहे हैं।
2: पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में काफी लो थे इसके कलेक्शंस भी, लेकिन धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से ये फिल्म बढ़ी है और अब तो सब जगह इसकी चर्चा है। इसका वीकेंड का कलेक्शन जो है वो करीब 20-25 करोड़ के ऊपर जा रहा है। हर रोज इसका कलेक्शन बढ़ते जा रहा है और ये मिरेकल ही हम कहेंगे, बहुत बड़ा चमत्कार है। और इस तरीके से जो अब लोगों ने इस भक्ति भाव की फिल्म को देखने का नजरिया बदला है, ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। अब बॉलीवुड को समझ में आने लगा है कि जिस तरीके से पहले राजा हरिश्चंद्र से लेकर रामायण से लेकर हमारे देश में भक्ति पे फिल्में बनती थी, जिसमें जय संतुष्टि माता थी जो 1975 में आई थी शोले के कंपटीशन में और वो इतनी जबरदस्त चली थी, उसके अलावा मनोज कुमार साहब ने साई बाबा पे फिल्म बनाई थी वो चली थी, उसका म्यूजिक अच्छा था। और अब गुजराती में एक फिल्म है लाड़ो जो पिछले साल चली, जिसने 100 करोड़ का बिजनेस किया। और उसी तरीके से हनुमान हंस जो कि 2 करोड़ की फिल्म है, अगर वो इस वक्त 325 करोड़ कर चुकी है और 350 करोड़ के ब्रैकेट में जा रही है और जिस तरीके से उसका वर्ड ऑफ माउथ है उससे मुझे लगता है कि 400 करोड़ के भी बॉक्स में ये चले जाएगी, तो इसका सीधा सा मतलब है कि भक्ति भाव और श्रद्धा वाली फिल्में अब चलने लगी है, लोगों को ये पसंद आने लगी है और बॉलीवुड का रुख अब भक्तिभाव की फिल्मों की तरफ बढ़ने लगा है।
0: हनुमान अंश में मेकर्स ने भी फिल्म के दूसरे पार्ट का ऐलान किया है। फिल्म नीब करौरी बाबा के जीवन पर बनी है। देश के सबसे बड़े क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा से लेकर कई विदेशी सेलेब्स भी नीब करौरी बाबा के भक्त हैं। ऐसे में खबरें हैं कि मेकर्स सेलेब्स को इस फिल्म में कैमियो के लिए अप्रोच कर रहे हैं, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हनुमान अंश का पार्ट 2 भी आएगा ऐसा कंफर्म माना जा रहा है।
2: हनुमान अंश एक्चुअली नीम करौली बाबा की ट्रिलॉजी ही थी ये बेसिकली, जिसका एक ही पार्ट अभी आया है। उसके 2 पार्ट जिसमें आगरा और मथुरा का चैप्टर आएगा वो ऑलरेडी अब बनने वाला है क्योंकि फिल्म ने अपार सफलता पाई है। इसके अलावा फिर हम देखो तो रामायण आएगी जो कि दिवाली में आएगी, रामायण पार्ट 1, उसको लेकर भी काफी एक्साइटमेंट है क्योंकि उसमें बहुत बड़ी स्टार कास्ट है।
0: फिल्म के डायरेक्टर डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी ने फिल्म हनुमान अंश के पार्ट टू की घोषणा की है। पार्ट टू में कैची धाम की कहानी भी दिखाई जाएगी। नीम करोली बाबा 1960 के दशक की शुरुआत में कैची पहुंचे थे और 15 जून 1964 को हनुमान मंदिर और आश्रम की स्थापना हुई थी। जीवन के अंतिम वर्षों में कैची उनका प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र रहा। डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी 2006 के आसपास अपनी पोस्टिंग के दौरान कई बार कैची धाम गए थे। यही उनका पहली बार नीम करोली बाबा के शिक्षाओं से परिचय हुआ। इस अनुभव का उन पर गहरा असर पड़ा और करीब दो दशकों बाद यही जुड़ाव हनुमान अंश की कहानी की प्रेरणा बना। नैनीताल में भवाली के पास शिप्रा नदी के किनारे स्थित कैची धाम नीम करौली बाबा से जुड़े प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों में शामिल है। नैनीताल में उनसे जुड़े चार प्रमुख धाम बताए जाते हैं, कैची धाम, काकड़ी घाट, हनुमान गढ़ी और भूमि आधार। एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स से लेकर फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग तक बाबा नीम करौली के कैची धाम में दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स ने एक इंटरव्यू में बताया था कि नीम करौली बाबा की एक तस्वीर देखकर उनकी हिंदू धर्म में रुचि जागी थी। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, मनोज वाजपेयी तक बाबा के आश्रम पहुंच चुके हैं। हनुमान अंश के दूसरे पार्ट में कैची धाम के महत्व और महिमा को विस्तार से दर्शाया जाएगा। हनुमान अंश की कहानी फिल्म के डायरेक्टर डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी की लिखी किताब पर आधारित है। हनुमान अंश के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने एक और फिल्म का ऐलान किया है। फिल्म का नाम भी तय हो गया है, राम बोला। ये हनुमान अंश में साथ काम कर चुके महावीर जैन फिल्म्स के साथ ही विशाल चतुर्वेदी बनाएंगे। इस फिल्म में भारतीय इतिहास के सबसे महान कवियों और आध्यात्मिक पुरुषों में से एक महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन और यात्रा को दिखाया जाएगा। फिल्म में उनके जीवन से जुड़े उन पहलुओं को सामने लाने की कोशिश होगी जिन्होंने उन्हें भारतीय साहित्य और भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण नाम बनाया है। जीवन के कई अनदेखे पहलुओं को भी दिखाने की कोशिश की जाएगी। फिल्म को लेकर फिलहाल कलाकारों और रिलीज डेट से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।
2: हनुमान अंश की अपार सफलता के बाद जो डायरेक्टर थे हनुमान अंश के विशाल चतुर्वेदी, वो अब नई फिल्म बनाने जा रहे राम बोला, जो कि आचार्य तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखा था उनकी जीवनी पर है और इनको महावीर जैन प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। उसके अलावा हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा, ये भी एक बहुत बड़ी फिल्म है जो कि अनाउंस हुई है। तो ये हो गया है कि सफलता जो हनुमान अंश को मिली है उससे बहुत सारी फिल्में अनाउंस हुई है। छोटे मोटे प्रोडक्शन हाउस ने भी बनाए हैं और जो रेप्यूटेड प्रोडक्शन हाउसेस हैं उन्होंने भी अनाउंसमेंट किए, जिसमें तेरा साई करके फिल्म आ रही है जिसमें संजय मिश्रा है। उसके अलावा श्रीमद भागवतम करके फिल्म है जो कि सागर फिल्म्स जिन्होंने पहले महाभारत बनाई थी, रामायण बनाई थी, वो बना रहे हैं। उसके अलावा करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस भी राधा और कृष्ण पे फिल्म बनाने जा रहा है, उसके ऊपर भी काफी चर्चाएं हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बोलबाला चल रहा है हनुमान अंश की सफलता के बाद, ये बड़ा अच्छा है। अब लोग चैतन्य महाप्रभु भी फिल्म बनाने वाले हैं और ऑलरेडी हम कल्कि बना चुके हैं, कल्कि का सीक्वल आने वाला है। तो ऐसे में जब हम देखते हैं कि श्रद्धा और भक्ति की फिल्में बॉलीवुड को पसंद आने लगी और बॉलीवुड का रुख अब उस तरफ होने लगा है, तो ये बड़ी खुशी की बात।
0: आपको बता दें कि गोस्वामी तुलसीदास का नाम राम बोला दुबे था। कहा जाता है कि उन्हें स्वयं प्रभु हनुमान के दर्शन हुए थे और उन्हीं के निर्देश के बाद तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। मुंबई से अनीता ब्रिटो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, हनुमान अंश की कामयाबी ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस के आंकड़े नहीं बदले हैं बल्कि बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स का मूड भी बदल दिया है। देखिए, रामायण से लेकर कृष्ण, हनुमान से लेकर परशुराम और संतों के जीवन तक फिल्म इंडस्ट्री में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर अब इसके बाद काम चल रहा है।

0: ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म हनुमान अंश की सफलता के बाद पौराणिक और धार्मिक फिल्मों को लेकर दर्शकों का रुझान बढ़ रहा है, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर भक्ति से जुड़ी फिल्मों की ऑडियंस बढ़ रही है। इसी साल यानी 2026 में महाकाव्य रामायण पर आधारित एक या दो नहीं बल्कि तीन बड़ी फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही हैं।
1: अब बॉलीवुड जागृत हो गया है कि ऐसी फिल्में बनाई जाएं जो श्रद्धा पे हो, और हनुमान अंश ने सारे के सारे पैरामीटर्स भक्ति की फिल्मों को देखने का नजरिया बदल दिया है, और इसलिए अच्छा म्यूजिक और अच्छी कहानी लेकर अब लोग माइथोलॉजी की फिल्में, रिलीजियस फिल्में, वो फिल्में जहां पर वो अपनी श्रद्धा को दिखा सके, ऐसी फिल्में बनने का फिर से बोलबाला शुरू हो चुका है।
0: सबसे पहले इसी महीने 25 सितंबर को महाकाव्य श्री रामायण कथा श्री राम की सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। अभिषेक सिंह के डायरेक्शन में बनी यह हिंदी फिल्म रामायण की कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश करती दिखाई देगी। फिल्म में देव शर्मा भगवान राम और अंजलि अरोड़ा माता सीता की भूमिका में नजर आएंगी, जबकि रावण का रोल रजनीश दुग्गल निभाते नजर आएंगे। फिल्म के डायलॉग्स और गाने जयदेव जानेवाल ने लिखे हैं, जबकि संगीत देव आशीष ने दिया है। कच्चा बादाम वाली अंजलि अरोड़ा ने रामायण में माता सीता का किरदार निभाया है।

0: इस फिल्म के रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर 2026 को वाल्मीकि रामायण नाम की फिल्म रिलीज होगी। जैसा कि नाम से साफ है, फिल्म का आधार महर्षि वाल्मीकि की रामायण है। इसमें रामायण की कहानी को सिनेमाई अंदाज में पेश किया जाएगा। फिल्म का निर्देशन भावना तलवार ने किया है। मशहूर सिनेमेटोग्राफर विनोद प्रधान ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की है। इसकी कहानी और पटकथा आनंद नीलकंठन ने लिखी है, जबकि डायलॉग्स डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने लिखे हैं।
1: तुम्हारा नया राजा।
0: रामायण पर बनने वाली तीसरी और सबसे बड़ी फिल्मों में नितेश तिवारी की रामायण पार्ट 1 शामिल है। ये फिल्म 6 नवंबर 2026 को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में इस फिल्म को बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है। फिल्म को दो हिस्सों में रिलीज किया जाएगा और इसे भारत के साथ साथ दुनिया भर के दर्शकों तक पहुँचाने की तैयारी है।
2: तीनों लोकों में एक ही राज होगा।

0: जब जब सृष्टि पर संकट आया, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर।
1: फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगी। रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं। साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार यश फिल्म में रावण का किरदार निभाएंगे। इसके अलावा अरुण गोविल, दशरथ, लारा दत्ता, केकई और रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के रोल में नजर आएंगी। फिल्म में और भी कई बड़े कलाकार अलग अलग किरदार में दिखेंगे। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले श्रीधर राघवन और नितेश तिवारी ने तैयार किया है। इसके डायलॉग्स नितेश तिवारी और श्रेयस जैन ने लिखे हैं। फिल्म के गाने कुमार विश्वास ने लिखे हैं और संगीत की जिम्मेदारी ऑस्कर विजेता एआर रहमान और हर्ष जिमर ने संभाली है।
2: एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है।
3: तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। वचन का क्या जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था? अब हमारा भाग्य एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है।

एआई तकनीक से बनाई गई फिल्म चिरंजीवी हनुमान द इटरनल की पहली झलक सामने आ गई है। भगवान हनुमान की कहानी कहती है फिल्म 2026 में ही सिनेमा घरों में रिलीज होनी है। चिरंजीवी हनुमान द इटरनल को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली भारत की पहली एआई द्वारा निर्मित फिल्म बताया जा रहा है। हालांकि अभी फिल्म के रिलीज डेट सामने नहीं आई है। 1:11 के स्वस्थ ग्लिम्स वीडियो की शुरुआत में झरना और खूबसूरत वादियां दिखती हैं। इसके बाद पर्वतीय गुफाओं के पार पवन पुत्र हनुमान की छवि दिखती है। जंगलों के बीच से कैमरे की जबरदस्त मूवमेंट के बाद पवन पुत्र हनुमान को हवा में विचरण करते हुए दिखाया जाता है। हाथों में गदा लिए हनुमान जी को अभी सिर्फ पीछे से दिखाया गया है, उनका चेहरा अभी सामने नहीं आया है। बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा की पंक्तियां भी सुनाई देती हैं। पहली झलक दिखाता है ये वीडियो फिल्म को लेकर दर्शकों को उत्साहित जरूर करता दिख रहा है। चिरंजीवी हनुमान को नेशनल अवार्ड जीतने वाले निर्देशक राजेश मापुस्कर ने निर्देशित किया है, जबकि फिल्म का निर्माण आलोक जैन, अजित अंधारे, विजय सुब्रमण्यम और विक्रम मल्होत्रा ने स्टार स्टूडियो 18 के सहयोग से किया है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म को 2026 में हनुमान जयंती के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज किया जा सकता है।

0: सिनेमा प्रेमियों को KGF, सालार और कांतारा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले कोमले फिल्म्स ने परशुराम जयंती के अवसर पर फैंस को तोहफा दिया है। फिल्म महाअवतार परशुराम का पहला पोस्टर और टीजर साझा किया गया है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों पर आधारित 7 भागों वाले एनिमेटेड महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की यह दूसरी फिल्म है। इससे पहले फिल्म महाअवतार नरसिम्हा काफी पसंद की गई थी। ये एक 3D एनिमेटेड फिल्म होगी जिसमें एक्शन और ड्रामा होगा। भारत के सबसे बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स का यह दूसरा हिस्सा अश्विन कुमार के निर्देशन में बन रहा है। फिल्म के दिसंबर 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है। बॉलीवुड में आज तक सैकड़ों धार्मिक और पौराणिक फिल्में बनी हैं, लेकिन आज तक कोई निर्माता निर्देशक श्रीमद भागवत को पहले पर्दे पर साकार नहीं कर सका है, लेकिन अब ये बड़ा कारनामा होना तय हो गया है। श्रीमद भागवतम के पहले पार्ट श्रीमद भागवतम पार्ट 1 विष्णु रथ का पहला टीजर पोस्टर जारी कर दिया गया है। रमानंद सागर के पोते आकाश सागर और अमृत सागर के सह निर्देशित पोस्टर में भगवान श्री कृष्ण के हाथ की एक झलक दिख रही है। फिल्म में भगवान श्री कृष्ण की कहानी बताई जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म भी अगले साल रिलीज होगी।
1: पुत्रों से नहीं जीते जाते, मन जीतना पड़ता।

इस साल भगवान कृष्ण पर एक फिल्म आई थी, कृष्ण अवतारम। ये फिल्म इसी साल रिलीज हुई थी। फिल्म में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को दिखाया गया था। कृष्ण अवतारम को दर्शकों का खूब प्यार भी मिला था। अब मेकर्स ने इसके सीक्वल यानी दूसरा पार्ट का ऐलान किया है, जो साल 2028 में रिलीज होगी।

0: हार्दिक गज्जर के निर्देशन में बनी कृष्ण अवतारम पार्ट 1 द हार्ट 7 मई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सिद्धार्थ गुप्ता ने कृष्ण, सुष्मिता भट्ट ने राधा, निवाशनी कृष्णन ने रुक्मणी और संस्कृति जयाना ने सत्यभामा की भूमिका निभाई थी। रोमांस, रिश्तों और फैमिली ड्रामों की फिल्में बनाने वाले करण जौहर अब राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम कहानी को बड़े पर्दे पर उतारने की तैयारी में हैं। रिपोर्ट्स की माने तो धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनने वाले इस फिल्म का नाम राधा कृष्ण रखा गया है और प्रोजेक्ट फिलहाल डेवलपमेंट के एडवांस स्टेज में पहुँच चुका है। इस बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की कमान फिल्म मेकर सचिन रवि को सौंपी गई है। वह फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ इसे डायरेक्ट भी करेंगे। फिल्म की कहानी में भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर कंस के वध तक का सफर दिखाए जाने की खबर है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि राधा और कृष्ण के किरदार में कौन नजर आएगा। मेकर्स ने फिलहाल स्टारकास्ट को पूरी तरह सीक्रेट रखा है। बाबा नीप करोरी के जीवन पर बनी फिल्म के बाद एक और संत के जीवन को बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी शुरू हो गई है। वैष्णव किन्नर अखाड़े की जगत गुरु शंकराचार्य हिमांगी सखी ने संत प्रेमानंद महाराज के जीवन पर आधारित राधा अंश नाम की फिल्म बनाने की घोषणा की है। खबर है कि फिल्म का नाम राधा अंश होगा और इसका उद्देश्य संत प्रेमानंद महाराज के आध्यात्मिक जीवन, उनके विचारों और राधा रानी के प्रति उनके अटूट भक्ति को लोगों तक पहुँचाना है। खबर है कि फिल्म को लेकर फिल्म मेकर टीम से शुरुआती बातचीत हो चुकी है और टीम ने इस प्रोजेक्ट को लेकर सहमति भी जताई है। अब संत प्रेमानंद महाराज और उनके शिष्यों से आधिकारिक अनुमति लेने के लिए उनसे मुलाकात की जाएगी। फिल्म में कलाकारों का चयन भी उनके शिष्यों की सलाह के आधार पर किए जाने की बात सामने आ रही है।
1: देखिए, भक्ति फिल्मों का असर अब सिर्फ रामायण और कृष्ण की कहानियों तक सीमित नहीं है। छठी मैया से लेकर साई बाबा, खाटू श्याम से लेकर मां महाकाली तक आस्था के अलग अलग रंग अब बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। आने वाले दिनों में कई ऐसी फिल्में दर्शकों के सामने होंगी जिनकी कहानी सीधे लोगों की आस्था और उनके विश्वास से जुड़ी हुई होगी।
2: रात के साये से भी काले, तूफान से भी तेज, जिससे देवी भी हमें नहीं बचा सकती, और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती।
3: अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब
1: बॉक्स ऑफिस पर भक्ति फिल्मों का ऐसा असर देखने को मिल रहा है कि आने वाली कई फिल्मों में इसका अलग अलग स्वरूप देखने को मिलेगा। तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा की 25 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्म द वन में विस्तार से छठ पूजा को दिखाया गया है।
3: इसी वजह से इस मनुष्य का पे नहीं आना चाहता।
1: तमन्ना भाटिया ने हाल में अपना एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्हें छठी मैया की पूजा करते हुए दिखाया गया।

0: साईं बाबा के जीवन पर एक और फिल्म बन रही है। इस फिल्म का नाम है तेरा साईं। खास बात यह है कि फिल्म में मशहूर एक्टर संजय मिश्रा साईं बाबा के किरदार में नजर आएंगे। अविका गौर, सयाजी शिंदे, मनोज जोशी, रोहन मेहरा जैसे एक्टर्स भी दमदार रोल में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 5 फरवरी 2027 को रिलीज होनी है। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम बाबा का मंदिर है। इस मंदिर में लोगों की काफी आस्था है। हर दिन यहाँ पर खाटू श्याम के दर्शन के लिए भारी संख्या में भक्त पहुँचते हैं। ऐसे में हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा नाम से एक भक्ति फिल्म का ऐलान किया गया है। फिल्म बाबा खाटू श्याम की भक्ति पर बेस्ड होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म साल 2027 में दस्तक देगी। हालांकि इस जानकारी की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिल्म महाकाली अगले साल 8 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में अक्षय खन्ना असुरों के महागुरु शुक्राचार्य के अवतार में दिखने वाले हैं। अक्षय खन्ना के फैंस उन्हें इस रूप में देखने को लेकर उत्साहित हैं। हनुमान फेम प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली फिल्म है। फिल्म में धर्म और अधर्म के बीच होने वाले एक ऐसे महायुद्ध की झलक है जो सिर्फ अच्छाई और बुराई की लड़ाई तक सीमित नहीं है। यह असुरों के शक्तिशाली गुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व में शुरू होने वाले उस संघर्ष की कहानी है जो पूरी दुनिया के भविष्य का फैसला करता हुआ दिखाया जाएगा। फिल्म का टीजर आ चुका है। इस फिल्म में मां महाकाली के दिव्य रूप के भी दर्शन होंगे जिनकी वजह से देवताओं को जीत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: क्या पीपल के पौधे की पूजा करने से शनि की पीड़ा कम हो जाती है? क्या पीपल के पौधे से संतान की प्राप्ति सरल हो जाती है? क्या पीपल की पत्तियां आपको रेगुलर धन दे सकती हैं? क्या है पीपल और शनि का कनेक्शन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: पौधे की पूजा करने से शनि की पीड़ा कम हो जाती है? क्या पीपल के पौधे से संतान की प्राप्ति सरल हो जाती है? क्या पीपल की पत्तियां आपको रेगुलर धन दे सकती हैं? क्या है पीपल और शनि का कनेक्शन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: गुजरात के अंबाजी में आज से भाद्रवी पूनम महामेला का शुभारंभ, 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु के पहुंचने का अनुमान। शक्तिपीठ में सुरक्षा सुविधा के पुख्ता इंतजाम। बिहार के मोतिहारी में भी गणेश उत्सव की धूम, में ऐतिहासिक पंच मंदिर में 10 दिवसीय समारोह का भव्य आयोजन। श्रद्धा भक्ति और उल्लास के गणपति बप्पा मोरिया की जयकार। तेलंगाना के पलवंचा में करोड़ों के नोटों से सजे गणपति बप्पा, 2,90,00,000 रुपए के नोटों से पंडाल की हुई सजावट। 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोटों का किया गया इस्तेमाल। सूरत में गणपति बप्पा के दरबार से अंगदान का संदेश, ऑर्गन डोनेशन के थीम पे सजा पंडाल। धार्मिक आयोजन के साथ फैलाई जा रही जन जागरूकता। डीयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित, अध्यक्ष समेत 3 पदों पर एबीवीपी ने हासिल की जीत। उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन रहे विजयी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में वन विभाग ने भालू का किया रेस्क्यू। डलहौजी की सड़क पर सिर में कनस्तर फंसाए भटक रहा था भालू, सूचना के बाद एक्शन में प्रशासन।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। एक बार फिर से लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस निर्भीक शख्सियत का सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने महाराष्ट्र में मिलावटखोरी करने वाली और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाली लॉबी के खिलाफ ऐलानी जंग कर दिया है। महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कमिश्नर बनने के बाद इस शख्स ने अपने ताबड़तोड़ एक्शन से लोगों की सेहत की कीमत पर मुनाफाखोरी करने वाली लॉबी की नींद उड़ा कर रख दी है।

0: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कमिश्नर तुकाराम मुंडे हैं। महाराष्ट्र की जनता जिन्हें अब सिंघम आईएएस कहने लगी है। 25 मई 2026 को एफडीए के कमिश्नर पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही तुकाराम एक्शन मोड में है। इनके कमिश्नर बनने के बाद महाराष्ट्र के होटल्स, रेस्टोरेंट, कैफे और कन्फेक्शनरीज के मालिक और मालकिनों को पहली बार एहसास हुआ कि उनका काम सिर्फ आंखें मूंद कर मुनाफा वसूली करना नहीं है बल्कि लोगों की सेहत और हाइजीन का कायदे से ख्याल रखना भी है। 4 महीने से भी कम में इनके कार्यकाल में महाराष्ट्र के होटल्स और रेस्टोरेंट्स की सूरत बदल गई है। आम लोग इनकी कार्यशैली से काफी खुश हैं।
1: अंधेरा कितना ही घनघोर क्यों ना हो, एक दिया काफी होता है उस अंधेरे की कालिमा को चीरने के लिए। और उजाले की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि वो व्यवस्था की वस्तु स्थिति को उजागर कर देता है। महाराष्ट्र के एक आईएएस अधिकारी ने अदम्य इच्छा शक्ति, नेक नियति और कर्तव्य निष्ठा के रथ पर सवार होकर व्यवस्थागत नियमों का दीप प्रज्वलित किया तो कई नामचीन संस्थाओं, कंपनियों और हस्तियों के स्याह चेहरे उजागर हो गए। महाराष्ट्र के इस युगांधर आईएएस अधिकारी का नाम है तुकाराम हरिभाऊ मुंडे। एक ऐसा नौकरशाह जिसने अपनी जिम्मेदारियों के तर्जे अमल की बेहतरीन नजीर पेश कर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश भर के ब्यूरोक्रेट्स को बता दिया है कि अगर वो सच्ची निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें तो करोड़ों हिंदुस्तानियों की बहुत सी दुश्वारियां यूं ही खत्म हो जाएंगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कैडर के आईएएस ऑफिसर के तौर पर साल 2006 में सोलापुर के असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर ज्वाइनिंग के बाद से अब तक तुकाराम मुंडे हर रोज आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सीधे तौर पर सुनते हैं।
2: That's where you pointed out that I meet people during 4 to 5 every day. So that's a connect with the people. And it's the practice I have been doing it since I joined the service, not now. So I believe that if public servant or civil servant is to serve in a public space, so who am I serving? Each and every individual? See, if I do not know or do not meet them, do not connect with them, how would I know what are the issues? What are they facing?
1: 21 साल के प्रशासनिक सफर में 25 से ज्यादा तबादलों का दंश झेल चुके तुकाराम मुंडे को 25 मई 2026 को महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई। तुकाराम जब से एफडीए के कमिश्नर बने हैं मिलावटखोर, मुनाफाखोर, धांधलेबाज पनाह मांग रहे हैं। उन्हीं के विभाग के भ्रष्ट, बेईमान और कामचोर मातहत कर्मचारी त्राहीमाम कर रहे हैं लेकिन जनता बहुत प्रसन्न है। सच कहें तो आम लोगों को पहली बार पता चला है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कितने काम का विभाग है। बीते 15 सितंबर को तुकाराम ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट कर कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर चल रही एक ऐसी धांधली उजागर की है जिसे आम जनता पूरी तरह अनजान थी। अस्पतालों के मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोक्योरमेंट को लेकर तुकाराम मुंडे ने जो खुलासा किया है उसने सनसनी मचा दी है। 15 सितंबर को अपनी एक्स पोस्ट में तुकाराम ने लिखा है, महाराष्ट्र में हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों पर किए गए सर्वे में ये पाया गया कि एक आईवी इन्फ्यूजन सेट की एक्चुअल खरीद करीब 11 रुपए होती है जबकि इस पर MRP 325 रुपए लिखी होती है, यानी 2,841% का मार्कअप। बढ़ोतरी, एक सिरिंज 6.75 रुपए में खरीदी जाती है जबकि उस पर MRP लिखी होती है 57.20 रुपए। एक कैथेटर 29.41 रुपए में खरीदा जाता है जबकि उस पर MRP लिखी होती है 310 रुपए। कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में भर्ती होने वाले मरीज के डिस्चार्ज से पहले परिजनों को जब बिल दिया जाता है तो उसे देखकर उनकी पेशानियों पर पसीने की बूंदें छलकने लगती हैं। उन्हें क्या पता कि इस भारी भरकम बिल के पीछे नौकरशाहों और हॉस्पिटल्स की दुराभिसंधि का हाथ है। बहरहाल अगर तुकाराम जैसे मसीहा के हाथ में कमान हो तो जनता राहत की उम्मीद कर सकती है। महाराष्ट्र FDA की ओर से सामने रखे गए सर्वे के नतीजों के बाद ट्रेड प्रोक्योरमेंट प्राइस और घोषित MRP के बीच अंतर को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हॉस्पिटल्स के साथ ही मोटे मुनाफे के लिए जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले होटल्स, रेस्तरां कॉन्फेक्शनरीज, डेयरीज, कैफे और फूड एंड एग्रो फैक्ट्रीज पर भी तुकाराम मुंडे कहर बनकर बरस रहे हैं। त्योहारी मौसम में मुनाफाखोरों की चांदी हो जाती है, इसलिए मिलावट का धंधा चरम पर पहुंच जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम के बीच फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मुंबई के मशहूर बार और रेस्तरा कैफे मुंडेगर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। FDA ने अपनी जांच में पाया कि गर्म खाने की चीजों को जरूरी तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर नहीं रखा जा रहा था और कोल्ड स्टोरेज का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम पर नहीं रखा जा रहा था। इसके साथ ही खाना बनाने वाली जगह ड्रेनेज सिस्टम तय मानकों के मुताबिक नहीं था, जिससे क्रॉस कंटामिनेशन का खतरा था। सोचिए, सरकार ने पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखकर कितने अच्छे रेगुलेशंस बनाए हैं, पर इन रेगुलेशंस के कंप्लायंस को लेकर नौकरशाहों में इतनी बेफिक्री बेपरवाही है कि रेस्तरा या कैफे मालिकों को कौन कहे, आम जनता भी उदासीन हो जाती है। नतीजा ये होता है कि पैसे देकर होटल्स में खाना खाओ और तोहफे के तौर पर बीमारी घर ले आओ। पर FDA के कमिश्नर के तौर पर तुकाराम ने पूरे देश को चता भी दिया है और बता भी दिया है कि कानून की किताब ठंडे बस्ते में डालने के लिए नहीं होती। क्या तुकाराम से पहले किसी ने सोचा होगा कि भंडारे, महाप्रसाद, लंगर या सामूहिक भोज के लिए भी गाइडलाइंस जारी की जा सकती है? महाराष्ट्र FDA ने इसके लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके मुताबिक भंडारा, महाप्रसाद, लंगर या किसी सामूहिक भोज के आयोजन से कम 7 दिन पहले ऑनलाइन फॉर्म जमा करना पड़ेगा। ऐसे आयोजनों में सिर्फ लाइसेंस प्राप्त कैटरर्स की

0: मास्क, दस्ताने और हेड कैप पहनना जरूरी होगा। भंडारों में आमतौर पर हाइजीन को अनदेखा कर दिया जाता है। इसमें खाना खाने वाले आमतौर पर मुफलिसी के मारे लोग ही होते हैं, इसलिए हाइजीन को लेकर आपत्ति दर्ज कराने का सूरत हाल नहीं होता। पर तुकाराम बचपन में बेबस गुर्बत की कड़वी हकीकत से वाबस्ता हो चुके हैं, इसीलिए गरीबों के दर्द को जानते हैं। वैसे FDA की भंडारे वाली गाइडलाइंस का हर तबके के लोग स्वागत कर रहे हैं।
1: नहीं, ये जो निर्णय लिया है वो अच्छा लिया है, जो भी है वो सबके हित के लिए ही है। अगर जो भी है, जो भी भंडारा या जो भी होता है उसमें अगर क्लीननेस रहेगा तो ये सबके हेल्थ के लिए अच्छा है।
2: इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज फॉर द गुड ऑफ द पीपल, गुड ऑफ द कम्युनिटी, और ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और उनकी जो भी गाइडलाइंस है, ऑफकोर्स वो डिटेल में देखेंगे, जैसे कि हमारा मंडल होता है या ग्रुप्स होते हैं जहां पर ये सारी चीजें होती है, भंडारे एंड ऑल, वो उनको फॉलो करना चाहिए। और ये सभी के लिए है, गवर्नमेंट अगर कुछ पॉलिसीज ला रही है।
0: साफ है कि गरीब या आम जनता की सेहत और स्वास्थ्य को लेकर तुकाराम मुंडे बहुत संवेदनशील हैं। दूसरी ओर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट की अनदेखी करने वाली रसूखदार और पावरफुल लॉबी के खिलाफ एक्शन लेने में वो जरा भी हिचकिचाते नहीं हैं। अंजाम की परवाह किए बगैर तुकाराम ऐसी लॉबी से सीधा हेड ऑन कर लेते हैं। तुकाराम ने विमल इलायची का विज्ञापन करने पर बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान समेत अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को 14 अगस्त 2026 को नोटिस भेज दिया था। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया कि विज्ञापन में इलायची के नाम पर पान मसाले का प्रमोशन हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र में तंबाकू उत्पादों पर बैन है।
3: जो नोटिस इश्यू किया गया है अबाउट एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन वायलेशन, उनको नोटिस रेगुलेशन 2018 के हिसाब से दिया गया है और सेक्शन 24 ऑफ फसाई एक्ट जो है उसके हिसाब से दिया गया है। क्योंकि ये गुटखा और जो प्रोडक्ट है महाराष्ट्र में बैन है और उसका एडवर्टाइजिंग ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग में आता है, इसलिए हमने उनको नोटिस दिया, उनको टाइम दिया है।
0: साफ है कि निर्भीक तुकाराम रसूखदारों और पावरफुल लॉबीज के खिलाफ एक्शन लेने में जरा भी परहेज नहीं करते, हालांकि उन्हें इस नायकत्व के लिए धमकियां भी मिलती रही हैं। पर जो इंसान कर्तव्य परायणता का दिया अपने हाथों में लेकर लोकहित के अग्निपथ पर निकल जाता है, वो रास्ते में आने वाले सेहरा या बयाबा की परवाह नहीं करता। नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने और नियमों की अनदेखी करने वालों पर घास गिराने की वजह से शुरू से ही इनकी राह में कांटे बिछाए जाते रहे हैं, लेकिन एक सच्चे योद्धा की तरह हर मुश्किलों का ये डट कर मुकाबला करते हैं। आत्मा अगर गवाही दे तो बड़े से बड़ा एक्शन लेने से भी परहेज नहीं करते।
3: Once you do that and if you are a public servant, what is my role? That's the question I ask as a public servant. And if my role is to contribute for the betterment of the society, should I trade that part or should I compromise on that part? That was the question I ruminated upon. And the answer I got is I should trade this part, whatever the cost may be. Maybe sometimes it is less or more, whatever it is. That's a choice, and that's a choice I made. And I don't think I regret anything of that today.
0: कहने की जरूरत नहीं कि साल 2026 में लोक सेवा का व्रत लेने के बाद से ही तुकाराम व्यापक जनहित के पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ रहे हैं। 21 साल के सफर में 25 बार ट्रांसफर की दुश्वारी झेली, लेकिन जहां भी पोस्टिंग हुई, जिस विभाग की भी जिम्मेदारी मिली, पूरी क्रांति ला दी। 25 मई 2026 को FDA कमिश्नर बनने के बाद से ऐसे ऐसे साहसिक काम किए हैं कि नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले पनाह मांग रहे हैं। महाराष्ट्र FDA का कमिश्नर बनने के बाद पहले हफ्ते में ही उन्होंने सब स्टैंडर्ड और मिलावटी सामान बेचने वाले 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे और 100 लोगों को गिरफ्तार किया। उपचार के दावे वाले भ्रामक विज्ञापन दिखाने के आरोप में पतंजलि के आउटलेट पर छापे मारे और 51 लाख रुपए का सामान जब्त कर लिया। ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के 86 वेयर हाउसेज की जांच की और नियमों की अनदेखी की वजह से 14 वेयर हाउसेज के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। मुंबई में डोमिनोज पिज्जा के 4 आउटलेट के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर यानी बिना डेयरी से बने पनीर पर 1 साल तक के लिए बैन लगा दिया। तुकाराम मुंढे के इन ताबड़तोड़ एक्शन से महाराष्ट्र की आम जनता राहत महसूस कर रही है।

0: दूसरी ओर होटल्स, रेस्तरा, कॉन्फेक्शनरीज, डेरीज, कैफे और फूड एंड एग्रो फैक्ट्रीज के मालिकों को पहली बार यह एहसास हुआ है कि उनका काम सिर्फ मुनाफा ऐंठना नहीं है, बल्कि लोगों की सेहत का, स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखना है।
1: ऐसा नहीं है कि एफडीए का कमिश्नर बनने के बाद से ही तुकाराम एक्शन मोड में आए हैं। महाराष्ट्र कैडर का आईएएस अधिकारी बनने के बाद से ही तुकाराम नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर वज्रपात करते रहे हैं और इसके लिए कई बार इन्हें धमकियां भी मिली, राह में रोड़े अटकाए गए, लेकिन तमाम चुनौतियों के बाद भी कभी भी अपने कर्तव्य पद से विचलित नहीं हुए। एक गरीब किसान परिवार में जन्म लेने वाले तुकाराम ने बचपन में गरीबी का दंश झेला है, जीवन की दुश्वार देखी हैं, पैदावार के लिए खेतों में पसीना बहाया है और इसलिए इनका व्यक्तित्व फौलादी हो गया, हालात से हार नहीं मानने का जज्बा पैदा हो गया।

0: तुकाराम मुंढे आज महाराष्ट्र में आइडियल ब्यूरोक्रेसी की मिसाल बन चुके हैं। उनकी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता गरीब मजलूम लोगों के स्वास्थ्य और सेहत की उम्मीद की लौ बन चुकी है। जबकि महाराष्ट्र में नियमों की अनदेखी करने वाले फूड और ड्रग बिजनेस से जुड़े प्रतिष्ठानों को हर पल तुकाराम का डर सता रहा है। बतौर एफडीए कमिश्नर 4 महीने से भी कम के इनके कार्यकाल में एफडीए 12,000 से ज्यादा निरीक्षण और छापेमारी कर चुका है। इनमें से 900 से ज्यादा हाई इंपैक्ट रेड्स शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन की वजह से महाराष्ट्र में कुल 603 कमर्शियल लाइसेंस सस्पेंड किए जा चुके हैं। मिलावटखोरी, प्रतिबंधित गुटखा या पान मसाला बेचने और नियमों की अनदेखी के मामले में 875 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इतना ही नहीं, एफडीए ने ऐसे मामलों में 650 से ज्यादा एफआईआर भी दर्ज कराई है। तुकाराम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वे नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों या व्यक्तियों के कद या रसूख से बेपरवाह रहते हैं। एफडीए ने नामी गिरामी फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला की पुणे स्थित यूनिट का 26 अगस्त को निरीक्षण किया और पैकेजिंग, स्टोरेज और खरीद बिक्री के रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी और अनियमितता पाने पर इस यूनिट का सेल्स लाइसेंस रद्द कर दिया। तुकाराम के ताबड़तोड़ एक्शंस की जद में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी एमसीए भी आ चुका है। एफडीए ने एमसीए के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित 5 फूड आउटलेट्स पर 20 अगस्त को छापा मारकर 5 के एफएसएसएआई लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। इतने हाई प्रोफाइल प्रतिष्ठानों के खिलाफ एक्शंस होंगे तो मामला कोर्ट में पहुंचेगा ही। एमसीए ने एफडीए के एक्शन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया तो कोर्ट ने तुकाराम मुंडे को कड़ी फटकार लगा दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हम एफडीए को कितनी बार समझा चुके हैं कि मच्छर को तलवार से मत मारो, क्या आप खुद को लॉर्ड समझते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं? तुकाराम को फटकार लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनसे ये भी पूछ लिया कि एफडीए सिर्फ निजी संस्थानों पर छापेमारी क्यों कर रहा है, कानून का पालन तो सरकारी परिसरों की कैंटीन्स में भी होना चाहिए। तुकाराम भी कहां मानने वाले थे, उन्होंने अगले ही दिन बॉम्बे हाईकोर्ट कैंपस की 3 कैंटीनों पर रेड कर दी और 2 कैंटीन के लाइसेंस कैंसिल कर दिए।
1: ड्यूरिंग द हियरिंग द क्वेश्चंस वर एज वेदर यू आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट ओनली प्राइवेट और टेकिंग एक्शन अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट, वी आर टेकिंग, वी हैव द डेटा टू बैक इट अप एंड इन दैट कोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेज दैट हैव यू inspected Mantralaya canteen, so we had already done that. So then have you inspected or visited High Court canteen also, which we had not done. So I said we have not done that, but we have done this one. So High Court expects that it should be visited. Well, fine, next day my team goes and finds it out whatever it is there.
0: बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन पर रेड डालकर तुकाराम ने ये साबित कर दिया कि वो अलग ही मिट्टी के बने हैं। आपको बता दें कि इस तरह की चुनौतियां तुकाराम अपने सर्विस पीरियड में अनेकों बार फेस कर चुके हैं। साल 2006 में सोलापुर में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर अपनी पहली पोस्टिंग में रेत माफियाओं पर एक्शन लिया तो उन पर जानलेवा हमला हो गया। साल 2007 में नांदेड़ में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई की तो 5 महीने में तबादला हो गया। 2012 में मुंबई सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुई तो टैक्स चोरों से 310 करोड़ रुपए वसूल लिए। साल 2014 में कलेक्टर बनकर दोबारा सोलापुर पहुंचे तो टैंकर माफियाओं की नकेल कस दी, जिसके बाद इन्हें महाराष्ट्र का वाटरमैन कहा जाने लगा। मार्च 2017 में पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड के चेयरमैन बने तो ड्यूटी से लंबे समय से गायब चल रहे 158 कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवरों को एक साथ सस्पेंड कर दिया। साल 2022 में महाराष्ट्र के हेल्थ केयर कमिश्नर बने तो सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करवा दी। कहने की जरूरत नहीं कि तुकाराम मुंडे को जो भी जिम्मेदारी मिली उन्होंने कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की नई लीक खींच दी। दरअसल इस इंसान का पालन पोषण चांदी के चम्मच से नहीं हुआ है, इनका बचपन बहुत ज्यादा दुश्वारियों और आर्थिक तंगी के बीच बीता है। महाराष्ट्र के बीड जिले के गुमनाम से गांव ताड़सोना के एक गरीब किसान परिवार में 3 जून 1975 को जन्मे तुकाराम के पिता के पास इनके लिए चप्पल खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, लिहाजा ये बिना चप्पल के नंगे पांव स्कूल जाते थे। दिन में पढ़ाई करते थे और रात में खेतों की सिंचाई का काम भी करते थे। क्या आप यकीन करेंगे कि तुकाराम मासूम उम्र में सिर पर सब्जियां रखकर साप्ताहिक बाजार जाते थे और उन्हें बेचकर पैसे ले आते थे ताकि घर की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकें। इतनी हार्डशिप में रहकर भी ये अपने क्लास में टॉप करते थे। तभी तो साल 2005 में तुकाराम ने यूपीएससी क्रैक किया और ऑल इंडिया 20वीं रैंक हासिल की। आज वही ताड़सोना गांव का गुदड़ी का लाल ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का दिया जलाकर नौकरशाहों को सच्चाई की राह दिखा रहा है।
2: बंदे में है दम में आज आपने महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को देखा। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: तो चलिए आस्था और भक्ति के बाद बात मौसम की। तो देखिए मौसम बदल रहा है, मॉनसून अब वापसी कर रहा है। राजस्थान के रास्ते उसकी विदाई शुरू हो गई है। हालांकि मॉनसून की विदाई ऐसे समय हो रही है जब अब तक देश भर में बारिश सामान्य से 15% कम रही है। ऐसा माना जाता है कि 15 अक्टूबर तक मॉनसून की विदाई देश से हो जाती है, फिर जाड़े का मौसम का शुरुआत इसकी हो जाती है।
7: हवाओं में ठंडक का एहसास, तापमान में कमी, कम होता उमस का असर, ये पहचान है मॉनसून की विदाई की। देश भर में मॉनसून का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के पश्चिमी हिस्से से मॉनसून की वापसी शुरू हो गई है। इसके बाद ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश से सीधे सीधे पीछे हटेगा। फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों से मॉनसून कमजोर होते हुए पूरे देश से विदा हो जाएगा। भारत में मॉनसून की वापसी हमेशा देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से से शुरू होती है। कच्छ के साथ साथ सबसे पहले मॉनसून राजस्थान के इलाके से विदा होता है। अब तक के सभी अनुमान के मुताबिक किसी भी हालत में भारत के किसी भी राज्य से मॉनसून की वापसी 1 सितंबर से पहले नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि अगर 5 दिनों तक लगातार बारिश नहीं होती और हवा का रुख भी बदलता रहता है तो हवा में नमी भी कम होने लगती है, तो ये मान लिया जाता है कि उस हिस्से से मॉनसून की विदाई होने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक आमतौर पर प्रायद्वीपीय भारत में सर्दियों की शुरुआत से कुछ दिन पहले मॉनसून के वापस लौटने की प्रक्रिया 15 अक्टूबर को समाप्त हो जाती है। हालांकि दिल्ली से मॉनसून की विदाई 25 सितंबर से शुरू होती है। मॉनसून की विदाई ऐसे समय हो रही है जब अब तक देश भर में बारिश सामान्य से 15% कम रही है, यानी मॉनसून सीजन के आखिरी चरण में बारिश का आंकड़ा अभी भी सामान्य से नीचे है। इससे कई राज्यों में मॉनसून के दौरान हुई बारिश के वितरण में असमानता दिख रही है। जून में मॉनसून की शुरुआत कमजोर रही थी और देश में बारिश सामान्य से काफी कम दर्ज की गई थी। जुलाई में बारिश ने कुछ हद तक इसकी भरपाई की, लेकिन अगस्त और सितंबर में फिर कमी दर्ज की गई। अब जब मॉनसून की वापसी शुरू हो गई है तो बंगाल की खाड़ी लो प्रेशर सिस्टम बन गया है, जिससे ओडिशा, पूर्वी यूपी, बिहार और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बारिश के हालात बन रहे हैं। इस सिस्टम के बाद उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के ज्यादातर हिस्सों से मॉनसून के तेजी से लौटने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: तो चलिए बात एंटरटेनमेंट की हो जाए तो अल्लू अर्जुन, दीपिका पादुकोण और रश्मिका मंदाना की अपकमिंग और मोस्ट अवेटेड फिल्म राका की हर एक अपडेट फैंस के लिए एक्साइटमेंट है। देखिए, फिल्म के मेकर्स ने जब इसका प्रमोशनल टीजर जारी किया तो फिल्म को लेकर जो एक्साइटमेंट थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि फिल्म 2027 में रिलीज होगी।
8: राका की हर एक अपडेट के लिए फैंस एक्साइटेड है। अब हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने इसका प्रमोशनल टीजर जारी किया है जिससे फिल्म को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई है। राका के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें लिखा, एक ग्लोबल जीत देखने के लिए तैयार हो जाइए, जो मुमकिन लगता था उससे कहीं आगे। हमने कल्पना करने की हिम्मत की, हमने उसे हासिल करने की हिम्मत की। राका, एक ग्लोबल जीत। टीजर के आने से ठीक एक दिन पहले सामने आए एक दिलचस्प खुलासे के बाद हुआ है, जिसमें एक पोस्टर में सिर्फ लिखा था 37। अब तक राका के बारे में बहुत कम जानकारी सामने आई है, चाहे वो इसकी शूटिंग की जगह हो या प्रोडक्शन का पैमाना, जिससे फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। अल्लू अर्जुन, दीपिका पादुकोण और रश्मिका मंदाना की अपकमिंग और मोस्ट अवॉइडेड फिल्म को लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ है और फैंस की बेताबी भी बढ़ गई है। खबरों के मुताबिक अल्लू अर्जुन राका के चार अलग अलग किरदार निभाएंगे। वो दादा, पिता और दो बेटों की भूमिका में नजर आएंगे। ऐसी भी चर्चा है कि फिल्म में दो पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट दिखाया जा सकता है। हालांकि मेकर्स ने अभी तक किसी भी जानकारी पर मुहर नहीं लगाई है। अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक पोस्टर पहले ही रिलीज किया जा चुका है, जिसे देखने के बाद इटली के इस अपकमिंग मूवी को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर बनी हुई है। संभावना जताई जा रही है कि अल्लू अर्जुन का ऐसा अवतार देखने को मिलेगा जो शायद पहले कभी बड़े पर्दे पर देखने को नहीं मिला है। फिल्म में जान्हवी कपूर और मृणाल ठाकुर भी अहम किरदारों में नजर आएंगी। इस साइंस फिक्शन एक्शन ड्रामा को सन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म अल्लू अर्जुन और इटली के बीच पहला कोलैबोरेशन भी है। फिलहाल फिल्म अल्लू अर्जुन स्टारर राका की रिलीज डेट को लेकर मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2027 के अंत तक इस बहुचर्चित फिल्म को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज़ टुडे।

0: की पूजा करने से शनि की पीड़ा कम हो जाती है? क्या पीपल के पौधे से संतान की प्राप्ति सरल हो जाती है? पीपल और शनि
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: गुजरात के अंबाजी में आज से भाद्रवी पूनम महामेला का शुभारंभ, 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु के पहुंचने का अनुमान। शक्तिपीठ में सुरक्षा सुविधा के पुख्ता इंतजाम। बिहार के मोतिहारी में भी गणेश उत्सव की धूम, ऐतिहासिक पंच मंदिर में 10 दिवसीय समारोह का भव्य आयोजन, श्रद्धा भक्ति और उल्लास के गणपति बप्पा मोरया की जयकार। तेलंगाना के पलवंचा में करोड़ों के नोटों से सजे गणपति बप्पा, 2,90,00,000 रुपए के नोटों से पंडाल की हुई सजावट, 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोटों का किया गया इस्तेमाल। सूरत में गणपति बप्पा के दरबार से अंगदान का संदेश, ऑर्गन डोनेशन के थीम पे सजा पंडाल, धार्मिक आयोजन के साथ फैलाई जा रही जन जागरूकता। डीयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित, अध्यक्ष समेत 3 पदों पर एबीवीपी ने हासिल की जीत, उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन रहे विजयी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में वन विभाग ने भालू का किया रेस्क्यू, डलहौजी की सड़क पर सिर में कनस्तर फंसाए भटक रहा था भालू, सूचना के बाद एक्शन में प्रशासन।

नमस्कार, मैं हूं सरगम पंच श्रीवास्तव और आज के हमारे स्पेशल शो में बात होगी फिल्म हनुमान अंश के बॉलीवुड पर पड़ रहे असर की। देखिए, विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी हनुमान अंश को दर्शकों से ऐसा रिस्पांस मिला है जिसकी कल्पना खुद मेकर्स ने भी शायद नहीं की होगी। शुरुआती दो हफ्तों में कछुए की रफ्तार से चल रही इस फिल्म ने अचानक ऐसी रफ्तार पकड़ी कि देखते ही देखते 300 करोड़ रुपए के क्लब में ये फिल्म शामिल हो गई है। देखिए, फिल्म को रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा का समय हो गया है और अब भी दर्शकों में से लेकर जो उत्साह है वो बरकरार है। लेकिन हनुमान अंश की सफलता से आने वाले दिनों में सिनेमाघरों में आस्था और भक्ति भाव से भरी फिल्मों की जो लाइनें हैं वो भी लगने वाली हैं। देखिए, आप टीवी स्क्रीन पर उन फिल्मों के नाम देख सकते हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, क्योंकि हनुमान अंश एक तरीके से केस स्टडी हो गई है और इसे फॉलो करते हुए अब बाकी फिल्में भी खास तौर पर इसी थीम पर बन रही फिल्में आने वाली हैं। देखिए, महाकाव्य श्री रामायण कथा श्री राम की ये फिल्म हो या फिर वाल्मीकि रामायण, रामायण पार्ट वन, चिरंजीवी हनुमान द इटर्नल, महाअवतार परशुराम, श्रीमद् भागवत पार्ट वन, विष्णुरथ, कृष्ण अवतारम पार्ट टू, करण जौहर की फिल्म राधा कृष्ण, इसको लेकर तो बस भी पिछले काफी समय से है, प्रेमानंद जी महाराज पर राधा अंश, छठ पूजा पर द वन, तेरा साई, हारे का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा, महाकाली जैसी फिल्म जो है वक्त वक्त पर रिलीज होंगी। तो देखिए, यूं कहें तो हनुमान अंश ने बॉलीवुड का जो ट्रेंड है वो बदल करके रख दिया है और अब आने वाले समय में हनुमान अंश को फॉलो करते हुए इसी तरीके की कई फिल्में आने वाली हैं।

0: दो करोड़ का छोटा बजट और कमाई 300 करोड़ के पार। बात हनुमान अंश फिल्म की हो रही है। फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया है। कई बड़े बजट की फिल्मों को पछाड़ते हुए देश की पहली सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्म भी बन गई है। बाबा नीब करौरी पर बनी हनुमान अंश फिल्म रिलीज के बाद शुरुआती दो हफ्तों में कछुए की रफ्तार से चल रही थी, लेकिन फिल्म ने अचानक ऐसी रफ्तार पकड़ी कि देखते ही देखते 300 करोड़ क्लब में शामिल हो गई। फिल्म को रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा हो गया है और अभी भी दर्शकों में वैसा ही उत्साह बरकरार है। हनुमान अंश फिल्म की सफलता का मुख्य राज मजबूत कंटेंट, दर्शकों का आध्यात्मिक जुड़ाव और सकारात्मक मौखिक प्रचार को बताया जा रहा है। जब फिल्म रिलीज हुई थी तो पहले हफ्ते में ही लगने लगा था कि फिल्म डूब जाएगी। दूसरे हफ्ते में भी फिल्म ने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया। फिल्म मेकर्स भी निराशा के बवंडर में डूबने लगे थे। तभी चमत्कार होना शुरू हुआ और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना करिश्मा दिखाना शुरू कर दिया, जो अभी तक जारी है। बॉलीवुड में अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसी खास विषय पर बनी फिल्म अगर सफलता का परचम लहराती है तो कई फिल्म मेकर्स उसी राह पर चल निकलते हैं। मान लीजिए अगर कोई रोमांटिक या एक्शन फिल्म हिट हो जाती है तो अन्य मेकर्स उसी तरह की फिल्मों को बनाने में लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही अब बॉलीवुड में दिखने लगा है।
1: हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस सफर बिल्कुल आसान नहीं था। 10 लाख से ओपनिंग की शुरुआत के बाद ऐसा वक्त आया कि जब थिएटर्स ने ये फिल्म के शोज को रिड्यूस कर दिया था, घटा दिया था, लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ के बाद ये पिक्चर ऐसी चली कि आज 300 करोड़ कमा चुकी है। बॉक्स ऑफिस पर अब ऑडियंस जा ही रही है और अब ये छोटी सी फिल्म 300 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस करके बॉलीवुड के लिए एक इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा करती है। क्या डिवोशनल और फेथ बेस्ड सिनेमा के लिए ऑडियंस का एपिटाइट बढ़ रहा है? क्या फिल्म मेकर्स अब इस जॉनर को और ज्यादा फोकस देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है?
0: आने वाले दिनों में थिएटर में कई और भक्ति वाली फिल्में रिलीज होने वाली हैं, क्योंकि बॉलीवुड के कई जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भक्ति फिल्मों का ऐलान कर रहे हैं।
2: पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में काफी लो थे इसके कलेक्शंस भी, लेकिन धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म बढ़ी है और अब तो सब जगह इसकी चर्चा है। इसका वीकेंड का कलेक्शन जो है वो करीब 20-25 करोड़ के ऊपर जा रहा है। हर रोज इसका कलेक्शन बढ़ते जा रहा है और ये मिरेकल ही हम कहेंगे, बहुत बड़ा चमत्कार है। और इस तरीके से जो अब लोगों ने इस भक्ति भाव की फिल्म को देखने का नजरिया बदला है, ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। अब बॉलीवुड को समझ में आने लगा है कि जिस तरीके से पहले राजा हरिश्चंद्र से लेकर रामायण से लेकर हमारे देश में भक्ति पे फिल्में बनती थी, जिसमें जय संतुष्टि माता थी जो 1975 में आई थी शोले के कंपटीशन में और वो इतनी जबरदस्त चली थी, उसके अलावा मनोज कुमार साहब ने साई बाबा पे फिल्म बनाई थी वो चली थी, उसका म्यूजिक अच्छा था। और अब गुजराती में एक फिल्म है लाड़ो जो पिछले साल चली, जिसने 100 करोड़ का बिजनेस किया। और उसी तरीके से हनुमान हंस जो कि 2 करोड़ की फिल्म है, अगर वो इस वक्त 325 करोड़ कर चुकी है और 350 करोड़ के ब्रैकेट में जा रही है और जिस तरीके से उसका वर्ड ऑफ माउथ है उससे मुझे लगता है कि 400 करोड़ के भी बॉक्स में ये चले जाएगी, तो इसका सीधा सा मतलब है कि भक्ति भाव और श्रद्धा वाली फिल्में अब चलने लगी है, लोगों को ये पसंद आने लगी है और बॉलीवुड का रुख अब भक्तिभाव की फिल्मों की तरफ बढ़ने लगा है।
0: हनुमान अंश में मेकर्स ने भी फिल्म के दूसरे पार्ट का ऐलान किया है। फिल्म नीव करौरी बाबा के जीवन पर बनी है। देश के सबसे बड़े क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा से लेकर कई विदेशी सेलेब्स भी नीव करौरी बाबा के भक्त हैं। ऐसे में खबरें हैं कि मेकर्स सेलेब्स को इस फिल्म में कैमियो के लिए अप्रोच कर रहे हैं, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हनुमान अंश का पार्ट 2 भी आएगा ऐसा कंफर्म माना जा रहा है।
2: हनुमान अंश एक्चुअली नीम करौली बाबा की ट्रिलॉजी ही थी ये बेसिकली, जिसका एक ही पार्ट अभी आया है। उसके 2 पार्ट जिसमें आगरा और मथुरा का चैप्टर आएगा वो ऑलरेडी अब बनने वाला है क्योंकि फिल्म ने अपार सफलता पाई है। इसके अलावा फिर हम देखो तो रामायण आएगी जो कि दिवाली में आएगी, रामायण पार्ट 1, उसको लेकर भी काफी एक्साइटमेंट है क्योंकि उसमें बहुत बड़ी स्टार कास्ट है।
0: फिल्म के डायरेक्टर डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी ने फिल्म हनुमान अंश के पार्ट टू की घोषणा की है। पार्ट टू में कैची धाम की कहानी भी दिखाई जाएगी। नीम करोली बाबा 1960 के दशक की शुरुआत में कैची पहुंचे थे और 15 जून 1964 को हनुमान मंदिर और आश्रम की स्थापना हुई थी। जीवन के अंतिम वर्षों में कैची उनका प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र रहा। डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी 2006 के आसपास अपनी पोस्टिंग के दौरान कई बार कैची धाम गए थे। यही उनका पहली बार नीम करोली बाबा के शिक्षाओं से परिचय हुआ। इस अनुभव का उन पर गहरा असर पड़ा और करीब दो दशकों बाद यही जुड़ाव हनुमान अंश की कहानी की प्रेरणा बना। नैनीताल में भवाली के पास शिप्रा नदी के किनारे स्थित कैची धाम नीम करौली बाबा से जुड़े प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों में शामिल है। नैनीताल में उनसे जुड़े चार प्रमुख धाम बताए जाते हैं, कैची धाम, काकड़ी घाट, हनुमान गढ़ी और भूमि आधार। एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स से लेकर फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग तक बाबा नीम करौली के कैची धाम में दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स ने एक इंटरव्यू में बताया था कि नीम करौली बाबा की एक तस्वीर देखकर उनकी हिंदू धर्म में रुचि जागी थी। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, मनोज वाजपेयी तक बाबा के आश्रम पहुंच चुके हैं। हनुमान अंश के दूसरे पार्ट में कैची धाम के महत्व और महिमा को विस्तार से दर्शाया जाएगा। हनुमान अंश की कहानी फिल्म के डायरेक्टर डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी की लिखी किताब पर आधारित है। हनुमान अंश के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने एक और फिल्म का ऐलान किया है। फिल्म का नाम भी तय हो गया है, राम बोला। ये हनुमान अंश में साथ काम कर चुके महावीर जैन फिल्म्स के साथ ही विशाल चतुर्वेदी बनाएंगे। इस फिल्म में भारतीय इतिहास के सबसे महान कवियों और आध्यात्मिक पुरुषों में से एक महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन और यात्रा को दिखाया जाएगा। फिल्म में उनके जीवन से जुड़े उन पहलुओं को सामने लाने की कोशिश होगी जिन्होंने उन्हें भारतीय साहित्य और भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण नाम बनाया है। जीवन के कई अनदेखे पहलुओं को भी दिखाने की कोशिश की जाएगी। फिल्म को लेकर फिलहाल कलाकारों और रिलीज डेट से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।
2: हनुमान अंश की अपार सफलता के बाद जो डायरेक्टर थे हनुमान अंश के विशाल चतुर्वेदी, वो अब नई फिल्म बनाने जा रहे राम बोला, जो कि आचार्य तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखा था उनकी जीवनी पर है और इनको महावीर जैन प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। उसके अलावा हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा, ये भी एक बहुत बड़ी फिल्म है जो कि अनाउंस हुई है। तो ये हो गया है कि सफलता जो हनुमान अंश को मिली है उससे बहुत सारी फिल्में अनाउंस हुई है। छोटे मोटे प्रोडक्शन हाउस ने भी बनाए हैं और जो रिप्यूटेड प्रोडक्शन हाउसेस हैं उन्होंने भी अनाउंसमेंट किए, जिसमें तेरा साई करके फिल्म आ रही है जिसमें संजय मिश्रा है। उसके अलावा श्रीमद भागवतम करके फिल्म है जो कि सागर फिल्म्स, जिन्होंने पहले महाभारत बनाई थी, रामायण बनाई थी, वो बना रहे हैं। उसके अलावा करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस भी राधा और कृष्ण पे फिल्म बनाने जा रहा है, उसके ऊपर भी काफी चर्चाएं हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बोलबाला चल रहा है हनुमान अंश की सफलता के बाद, ये बड़ा अच्छा है। अब लोग चैतन्य महाप्रभु भी फिल्म बनाने वाले हैं और ऑलरेडी हम कल्कि बना चुके हैं, कल्कि का सीक्वल आने वाला है। तो ऐसे में जब हम देखते हैं कि श्रद्धा और भक्ति की फिल्में बॉलीवुड को पसंद आने लगी और बॉलीवुड का रुख अब उस तरफ होने लगा है, तो ये बड़ी खुशी की बात है।
0: आपको बता दें कि गोस्वामी तुलसीदास का नाम राम बोला दुबे था। कहा जाता है कि उन्हें स्वयं प्रभु हनुमान के दर्शन हुए थे और उन्हीं के निर्देश के बाद तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। मुंबई से अनीता ब्रिटो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, हनुमान अंश की कामयाबी ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस के आंकड़े नहीं बदले हैं बल्कि बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स का मूड भी बदल दिया है। देखिए, रामायण से लेकर कृष्ण, हनुमान से लेकर परशुराम और संतों के जीवन तक फिल्म इंडस्ट्री में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर अब इसके बाद काम चल रहा है।

0: ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म हनुमान अंश की सफलता के बाद पौराणिक और धार्मिक फिल्मों को लेकर दर्शकों का रुझान बढ़ रहा है, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर भक्ति से जुड़ी फिल्मों की ऑडियंस बढ़ रही है। इसी साल यानी 2026 में महाकाव्य रामायण पर आधारित एक या दो नहीं बल्कि तीन बड़ी फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही हैं।
1: अब बॉलीवुड जागृत हो गया है कि ऐसी फिल्में बनाई जाएं जो श्रद्धा पे हो, और हनुमान अंश ने सारे के सारे पैरामीटर्स भक्ति की फिल्मों को देखने का नजरिया बदल दिया है, और इसलिए अच्छा म्यूजिक और अच्छी कहानी लेकर अब लोग माइथोलॉजी की फिल्में, रिलीजियस फिल्में, वो फिल्में जहां पर वो अपनी श्रद्धा को दिखा सके, ऐसी फिल्में बनने का फिर से बोलबाला शुरू हो चुका है।
0: सबसे पहले इसी महीने 25 सितंबर को महाकाव्य श्री रामायण कथा श्री राम की सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। अभिषेक सिंह के डायरेक्शन में बनी यह हिंदी फिल्म रामायण की कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश करती दिखाई देगी। फिल्म में देव शर्मा भगवान राम और अंजलि अरोड़ा माता सीता की भूमिका में नजर आएंगी, जबकि रावण का रोल रजनीश दुग्गल निभाते नजर आएंगे। फिल्म के डायलॉग्स और गाने जयदेव जानेवाल ने लिखे हैं, जबकि संगीत देव आशीष ने दिया है। कच्चा बादाम वाली अंजलि अरोड़ा ने रामायण में माता सीता का किरदार निभाया है।

0: इस फिल्म के रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर 2026 को वाल्मीकि रामायण नाम की फिल्म रिलीज होगी। जैसा कि नाम से साफ है, फिल्म का आधार महर्षि वाल्मीकि की रामायण है। इसमें रामायण की कहानी को सिनेमाई अंदाज में पेश किया जाएगा। फिल्म का निर्देशन भावना तलवार ने किया है। मशहूर सिनेमेटोग्राफर विनोद प्रधान ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की है। इसकी कहानी और पटकथा आनंद नीलकंठन ने लिखी है, जबकि डायलॉग्स डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने लिखे हैं।
1: तुम्हारा नया राजा।
0: रामायण पर बनने वाली तीसरी और सबसे बड़ी फिल्मों में नितेश तिवारी की रामायण पार्ट 1 शामिल है। ये फिल्म 6 नवंबर 2026 को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में इस फिल्म को बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है। फिल्म को 2 हिस्सों में रिलीज किया जाएगा और इसे भारत के साथ साथ दुनिया भर के दर्शकों तक पहुँचाने की तैयारी है।
2: तीनों लोकों में एक ही राज होगा।

0: जब जब सृष्टि पर संकट आया, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर।
1: फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगी। रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं। साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार यश फिल्म में रावण का किरदार निभाएंगे। इसके अलावा अरुण गोविल, दशरथ, लारा दत्ता, केकई और रकुलप्रीत सिंह शूर्पणखा के रोल में नजर आएंगी। फिल्म में और भी कई बड़े कलाकार अलग अलग किरदार में दिखेंगे। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले श्रीधर राघवन और नितेश तिवारी ने तैयार किया है। इसके डायलॉग्स नितेश तिवारी और श्रेयस जैन ने लिखे हैं। फिल्म के गाने कुमार विश्वास ने लिखे हैं और संगीत की जिम्मेदारी ऑस्कर विजेता एआर रहमान और हर्ष जिमर ने संभाली है।
2: एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है।
3: तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। उस वचन का क्या जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था? अब हमारा भाग्य एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है।
1: AI तकनीक से बनाई गई फिल्म चिरंजीवी हनुमान द इटरनल की पहली झलक सामने आ गई है। भगवान हनुमान की कहानी कहती है फिल्म 2026 में ही सिनेमा घरों में रिलीज होनी है। चिरंजीवी हनुमान द इटरनल को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली भारत की पहली AI द्वारा निर्मित फिल्म बताया जा रहा है। हालांकि अभी फिल्म के रिलीज डेट सामने नहीं आई है। 1:11 के स्वस्थ ग्लिम्स वीडियो की शुरुआत में झरना और खूबसूरत वादियां दिखती है। इसके बाद पर्वतीय गुफाओं के पार पवन पुत्र हनुमान की छवि दिखती है। जंगलों के बीच से कैमरे की जबरदस्त मूवमेंट के बाद पवन पुत्र हनुमान को हवा में विचरण करते हुए दिखाया जाता है। हाथों में गदा लिए हनुमान जी को अभी सिर्फ पीछे से दिखाया गया है, उनका चेहरा अभी सामने नहीं आया है। बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा की पंक्तियां भी सुनाई देती हैं। पहली झलक दिखाता है ये वीडियो फिल्म को लेकर दर्शकों को उत्साहित जरूर करता दिख रहा है। चिरंजीवी हनुमान को नेशनल अवार्ड जीतने वाले निर्देशक राजेश मापुस्कर ने निर्देशित किया है, जबकि फिल्म का निर्माण आलोक जैन, अजित अंधारे, विजय सुब्रमण्यम और विक्रम मल्होत्रा ने स्टार स्टूडियो 18 के सहयोग से किया है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म को 2026 में हनुमान जयंती के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज किया जा सकता है। जय द

0: सिनेमा प्रेमियों को KGF, सालार और कांतारा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले कोमले फिल्म्स ने परशुराम जयंती के अवसर पर फैंस को तोहफा दिया है। फिल्म महाअवतार परशुराम का पहला पोस्टर और टीजर साझा किया गया है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों पर आधारित 7 भागों वाले एनिमेटेड महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की यह दूसरी फिल्म है। इससे पहले फिल्म महाअवतार नरसिम्हा काफी पसंद की गई थी। ये एक 3D एनिमेटेड फिल्म होगी जिसमें एक्शन और ड्रामा होगा। भारत के सबसे बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स का यह दूसरा हिस्सा अश्विन कुमार के निर्देशन में बन रहा है। फिल्म के दिसंबर 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है। बॉलीवुड में आज तक सैकड़ों धार्मिक और पौराणिक फिल्में बनी हैं, लेकिन आज तक कोई निर्माता निर्देशक श्रीमद भागवत को पहले पर्दे पर साकार नहीं कर सका है, लेकिन अब ये बड़ा कारनामा होना तय हो गया है। श्रीमद भागवतम के पहले पार्ट श्रीमद भागवतम पार्ट 1 विष्णु रथ का पहला टीजर पोस्टर जारी कर दिया गया है। रमानंद सागर के पोते आकाश सागर और अमृत सागर के सह निर्देशित पोस्टर में भगवान श्री कृष्ण के हाथ की एक झलक दिख रही है। फिल्म में भगवान श्री कृष्ण की कहानी बताई जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म भी अगले साल रिलीज होगी।
1: सूत्रों से नहीं जीते जाते, मन जीतना पड़ता है।

इस साल भगवान कृष्ण पर एक फिल्म आई थी, कृष्ण अवतारम। ये फिल्म इसी साल रिलीज हुई थी। फिल्म में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को दिखाया गया था। कृष्ण अवतारम को दर्शकों का खूब प्यार भी मिला था। अब मेकर्स ने इसके सीक्वल यानी दूसरा पार्ट का ऐलान किया है, जो साल 2028 में रिलीज

0: हार्दिक गज्जर के निर्देशन में बनी कृष्ण अवतारम पार्ट वन द हार्ट 7 मई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सिद्धार्थ गुप्ता ने कृष्ण, सुष्मिता भट्ट ने राधा, निवाशनी कृष्णन ने रुक्मणी और संस्कृति जयाना ने सत्यभामा की भूमिका निभाई थी। रोमांस, रिश्तों और फैमिली ड्रामों की फिल्में बनाने वाले करण जौहर अब राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम कहानी को बड़े पर्दे पर उतारने की तैयारी में हैं। रिपोर्ट्स की माने तो धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनने वाले इस फिल्म का नाम राधा कृष्ण रखा गया है और प्रोजेक्ट फिलहाल डेवलपमेंट के एडवांस स्टेज में पहुँच चुका है। इस बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की कमान फिल्म मेकर सचिन रवि को सौंपी गई है। वह फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ इसे डायरेक्ट भी करेंगे। फिल्म की कहानी में भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर कंस के वध तक का सफर दिखाए जाने की खबर है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि राधा और कृष्ण के किरदार में कौन नजर आएगा। मेकर्स ने फिलहाल स्टारकास्ट को पूरी तरह सीक्रेट रखा है। बाबा नीप करोरी के जीवन पर बनी फिल्म के बाद एक और संत के जीवन को बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी शुरू हो गई है। वैष्णव किन्नर अखाड़े की जगत गुरु शंकराचार्य हिमांगी सखी ने संत प्रेमानंद महाराज के जीवन पर आधारित राधा अंश नाम की फिल्म बनाने की घोषणा की है। खबर है कि फिल्म का नाम राधा अंश होगा और इसका उद्देश्य संत प्रेमानंद महाराज के आध्यात्मिक जीवन, उनके विचारों और राधा रानी के प्रति उनके अटूट भक्ति को लोगों तक पहुँचाना है। खबर है कि फिल्म को लेकर फिल्म मेकर टीम से शुरुआती बातचीत हो चुकी है और टीम ने इस प्रोजेक्ट को लेकर सहमति भी जताई है। अब संत प्रेमानंद महाराज और उनके शिष्यों से आधिकारिक अनुमति लेने के लिए उनसे मुलाकात की जाएगी। फिल्म में कलाकारों का चयन भी उनके शिष्यों की सलाह के आधार पर किए जाने की बात सामने आ रही है।
1: देखिए, भक्ति फिल्मों का असर अब सिर्फ रामायण और कृष्ण की कहानियों तक सीमित नहीं है। छठी मैया से लेकर साईं बाबा, खाटू श्याम से लेकर मां महाकाली तक आस्था के अलग अलग रंग अब बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। आने वाले दिनों में कई ऐसी फिल्में दर्शकों के सामने होंगी जिनकी कहानी सीधे लोगों की आस्था और उनके विश्वास से जुड़ी हुई होगी।
2: भुतक्के इस वन की काली शक्ति रात के साए से भी काले, तूफान से भी तेज, जिससे देवी भी हमें नहीं बचा सकती, और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती।
3: अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब
4: बॉक्स ऑफिस पर भक्ति फिल्मों का ऐसा असर देखने को मिल रहा है कि आने वाली कई फिल्मों में इसका अलग अलग स्वरूप देखने को मिलेगा। तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा की 25 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्म द वन में विस्तार से छठ पूजा को दिखाया गया है।
3: इसी वजह से इस मनुष्य का पे नहीं आना चाहता।
4: तमन्ना भाटिया ने हाल में अपना एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्हें छठी मैया की पूजा करते हुए दिखाया गया था। छठी मैया पर बन रही फिल्म द वन को लेकर ऑडियंस का जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है। फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है।
5: आपके पति नास्तिक है क्या?

0: साईं बाबा के जीवन पर एक और फिल्म बन रही है। इस फिल्म का नाम है तेरा साईं। खास बात यह है कि फिल्म में मशहूर एक्टर संजय मिश्रा साईं बाबा के किरदार में नजर आएंगे। अविका गौर, सयाजी शिंदे, मनोज जोशी, रोहन मेहरा जैसे एक्टर्स भी दमदार रोल में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 5 फरवरी 2027 को रिलीज होनी है। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम बाबा का मंदिर है। इस मंदिर में लोगों की काफी आस्था है। हर दिन यहाँ पर खाटू श्याम के दर्शन के लिए भारी संख्या में भक्त पहुँचते हैं। ऐसे में हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा नाम से एक भक्ति फिल्म का ऐलान किया गया है। फिल्म बाबा खाटू श्याम की भक्ति पर बेस्ड होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म साल 2027 में दस्तक देगी। हालांकि इस जानकारी की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिल्म महाकाली अगले साल 8 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में अक्षय खन्ना असुरों के महागुरु शुक्राचार्य के अवतार में दिखने वाले हैं। अक्षय खन्ना के फैंस उन्हें इस रूप में देखने को लेकर उत्साहित हैं। हनुमान फेम प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली फिल्म है। फिल्म में धर्म और अधर्म के बीच होने वाले एक ऐसे महायुद्ध की झलक है जो सिर्फ अच्छाई और बुराई की लड़ाई तक सीमित नहीं है। ये असुरों के शक्तिशाली गुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व में शुरू होने वाले उस संघर्ष की कहानी है जो पूरी दुनिया के भविष्य का फैसला करता हुआ दिखाया जाएगा। फिल्म का टीजर आ चुका है। इस फिल्म में मां महाकाली के दिव्य रूप के भी दर्शन होंगे जिनकी वजह से देवताओं को जीत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: बूढ़े की पूजा करने से शनि की पीड़ा कम हो जाती है? क्या पीपल के पौधे से संतान की प्राप्ति सरल हो जाती है? क्या पीपल की पत्तियां आपको रेगुलर धन दे सकती हैं? क्या है पीपल और शनि का कनेक्शन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
4: गुजरात के अंबाजी में आज से भाद्रवी पूनम महामेला का शुभारंभ, 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु के पहुंचने का अनुमान, शक्तिपीठ में सुरक्षा सुविधा के पुख्ता इंतजाम। बिहार के मोतिहारी में भी गणेश उत्सव की धूम, ऐतिहासिक पंच मंदिर में 10 दिवसीय समारोह का भव्य आयोजन, श्रद्धा भक्ति और उल्लास के गणपति बप्पा मोरिया की जयकार। तेलंगाना के पलवंचा में करोड़ों के नोटों से सजे गणपति बप्पा, 2,90,00,000 रुपए के नोटों से पंडाल की हुई सजावट, 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोटों का किया गया इस्तेमाल। सूरत में गणपति बप्पा के दरबार से अंगदान का संदेश, ऑर्गन डोनेशन के थीम पे सजा पंडाल, धार्मिक आयोजन के साथ फैलाई जा रही जन जागरूकता। डीयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित, अध्यक्ष समेत 3 पदों पर एबीवीपी ने हासिल की जीत, उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन रहे विजयी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में वन विभाग ने भालू का किया रेस्क्यू, डलहौजी की सड़क पर सिर में कनस्तर फंसाए भटक रहा था भालू, सूचना के बाद एक्शन में प्रशासन।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। एक बार फिर से लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस निर्भीक शख्सियत का सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने महाराष्ट्र में मिलावटखोरी करने वाली और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाली लॉबी के खिलाफ ऐलानी जंग कर दिया है। महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कमिश्नर बनने के बाद इस शख्स ने अपने ताबड़तोड़ एक्शन से लोगों की सेहत की कीमत पर मुनाफाखोरी करने वाली लॉबी की नींद उड़ा कर रख दी है।

0: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कमिश्नर तुकाराम मुंडे हैं। महाराष्ट्र की जनता जिन्हें अब सिंघम आईएएस कहने लगी है। 25 मई 2026 को एफडीए के कमिश्नर पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही तुकाराम एक्शन मोड में है। इनके कमिश्नर बनने के बाद महाराष्ट्र के होटल्स, रेस्टोरेंट, कैफे और कन्फेक्शनरीज के मालिक और मालकिनों को पहली बार एहसास हुआ कि उनका काम सिर्फ आंखें मूंद कर मुनाफा वसूली करना नहीं है बल्कि लोगों की सेहत और हाइजीन का कायदे से ख्याल रखना भी है। 4 महीने से भी कम में इनके कार्यकाल में महाराष्ट्र के होटल्स और रेस्टोरेंट्स की सूरत बदल गई है। आम लोग इनकी कार्यशैली से काफी खुश हैं।
1: अंधेरा कितना ही घनघोर क्यों ना हो, एक दिया काफी होता है उस अंधेरे की कालिमा को चीरने के लिए। और उजाले की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि वो व्यवस्था की वस्तु स्थिति को उजागर कर देता है। महाराष्ट्र के एक आईएएस अधिकारी ने अदम्य इच्छा शक्ति, नेक नियति और कर्तव्य निष्ठा के रथ पर सवार होकर व्यवस्थागत नियमों का दीप प्रज्वलित किया तो कई नामचीन संस्थाओं, कंपनियों और हस्तियों के स्याह चेहरे उजागर हो गए। महाराष्ट्र के इस युगांधर आईएएस अधिकारी का नाम है तुकाराम हरिभाऊ मुंडे। एक ऐसा नौकरशाह जिसने अपनी जिम्मेदारियों के तर्जे अमल की बेहतरीन नजीर पेश कर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश भर के ब्यूरोक्रेट्स को बता दिया है कि अगर वो सच्ची निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें तो करोड़ों हिंदुस्तानियों की बहुत सी दुश्वारियां यूं ही खत्म हो जाएंगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कैडर के आईएएस ऑफिसर के तौर पर साल 2006 में सोलापुर के असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर ज्वाइनिंग के बाद से अब तक तुकाराम मुंडे हर रोज आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सीधे तौर पर सुनते हैं।
2: That's where you pointed out that I meet people during 4 to 5 every day. So that's a connect with the people, and it's a practice I have been doing it since I joined the service, not now. So I believe that if public servant or civil servant is to serve in a public space, so who am I serving? Each and every individual. See, if I do not know or do not meet them, do not connect with them, how would I know what are the issues? What are they facing?
1: 21 साल के प्रशासनिक सफर में 25 से ज्यादा तबादलों का दंश झेल चुके तुकाराम मुंडे को 25 मई 2026 को महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई। तुकाराम जब से एफडीए के कमिश्नर बने हैं मिलावटखोर, मुनाफाखोर, धांधलेबाज पनाह मांग रहे हैं। उन्हीं के विभाग के भ्रष्ट, बेईमान और कामचोर मातहत कर्मचारी त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन जनता बहुत प्रसन्न है। सच कहें तो आम लोगों को पहली बार पता चला है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कितने काम का विभाग है। बीते 15 सितंबर को तुकाराम ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट कर कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर चल रही एक ऐसी धांधली उजागर की है जिसे आम जनता पूरी तरह अनजान थी। अस्पतालों के मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोक्योरमेंट को लेकर तुकाराम मुंडे ने जो खुलासा किया है उसने सनसनी मचा दी है। 15 सितंबर को अपनी एक्स पोस्ट में तुकाराम ने लिखा है, महाराष्ट्र में हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों पर किए गए सर्वे में ये पाया गया कि एक आईवी इन्फ्यूजन सेट की एक्चुअल खरीद करीब 11 रुपए होती है जबकि इस पर MRP 325 रुपए लिखी होती है, यानी 2841% का मार्कअप। बढ़ोतरी, एक सिरिंज 6.75 रुपए में खरीदी जाती है जबकि उस पर MRP लिखी होती है 57.20 रुपए। एक कैथेटर 29.41 रुपए में खरीदा जाता है जबकि उस पर MRP लिखी होती है 310 रुपए। कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में भर्ती होने वाले मरीज के डिस्चार्ज से पहले परिजनों को जब बिल दिया जाता है तो उसे देखकर उनकी पेशानियों पर पसीने की बूंदें छलकने लगती हैं। उन्हें क्या पता कि इस भारी भरकम बिल के पीछे नौकरशाहों और हॉस्पिटल्स की दुराभिसंधि का हाथ है। बहरहाल अगर तुकाराम जैसे मसीहा के हाथ में कमान हो तो जनता राहत की उम्मीद कर सकती है। महाराष्ट्र FDA की ओर से सामने रखे गए सर्वे के नतीजों के बाद ट्रेड प्रोक्योरमेंट प्राइस और घोषित MRP के बीच अंतर को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हॉस्पिटल्स के साथ ही मोटे मुनाफे के लिए जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले होटल्स, रेस्तरां, कॉन्फेक्शनरीज, डेयरीज, कैफे और फूड एंड एग्रो फैक्ट्रीज पर भी तुकाराम मुंडे कहर बनकर बरस रहे हैं। त्योहारी मौसम में मुनाफाखोरों की चांदी हो जाती है, इसलिए मिलावट का धंधा चरम पर पहुंच जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम के बीच फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मुंबई के मशहूर बार और रेस्तरा कैफे मुंडेगर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। FDA ने अपनी जांच में पाया कि गर्म खाने की चीजों को जरूरी तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर नहीं रखा जा रहा था और कोल्ड स्टोरेज का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम पर नहीं रखा जा रहा था। इसके साथ ही खाना बनाने वाली जगह ड्रेनेज सिस्टम तय मानकों के मुताबिक नहीं था, जिससे क्रॉस कंटामिनेशन का खतरा था। सोचिए, सरकार ने पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखकर कितने अच्छे रेगुलेशंस बनाए हैं, पर इन रेगुलेशंस के कंप्लायंस को लेकर नौकरशाहों में इतनी बेफिक्री बेपरवाही है कि रेस्तरा या कैफे मालिकों को कौन कहे, आम जनता भी उदासीन हो जाती है। नतीजा ये होता है कि पैसे देकर होटल्स में खाना खाओ और तोहफे के तौर पर बीमारी घर ले आओ। पर FDA के कमिश्नर के तौर पर तुकाराम ने पूरे देश को चता भी दिया है और बता भी दिया है कि कानून की किताब ठंडे बस्ते में डालने के लिए नहीं होती। क्या तुकाराम से पहले किसी ने सोचा होगा कि भंडारे, महाप्रसाद, लंगर या सामूहिक भोज के लिए भी गाइडलाइंस जारी की जा सकती है? महाराष्ट्र FDA ने इसके लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके मुताबिक भंडारा, महाप्रसाद, लंगर या किसी सामूहिक भोज के आयोजन से कम 7 दिन पहले ऑनलाइन फॉर्म जमा करना पड़ेगा। ऐसे आयोजनों में सिर्फ लाइसेंस प्राप्त कैटरर्स की ही सेवाएं ली जा सकेंगी। खाना बनाने और पीने के लिए साफ या RO वाटर ही इस्तेमाल करना होगा। खाना बनाने और परोसने वाले वॉलेंटियर्स के लिए मास्क, दस्ताने और हेड कैप पहनना जरूरी होगा। भंडारों में आमतौर पर हाइजीन को अनदेखा कर दिया जाता है। इसमें खाना खाने वाले आमतौर पर मुफलिसी के मारे लोग ही होते हैं, इसलिए हाइजीन को लेकर आपत्ति दर्ज कराने का सूरत हाल नहीं होता। पर तुकाराम बचपन में बेबस गुर्बत की कड़वी हकीकत से वाबस्ता हो चुके हैं, इसीलिए गरीबों के दर्द को जानते हैं। वैसे FDA की भंडारे वाली गाइडलाइंस का हर तबके के लोग स्वागत कर रहे हैं।
3: नहीं, ये जो निर्णय लिया है वो अच्छा लिया है, जो भी है वो सबके हित के लिए है।

0: ऑफ कोर्स वो डिटेल में देखेंगे, जैसे कि हमारा मंडल होता है या ग्रुप्स होते हैं जहां पर ये सारी चीजें होती है, भंडारे एंड ऑल दैट, वो उनको फॉलो करना चाहिए और ये सभी के लिए है। गवर्नमेंट अगर कुछ पॉलिसीज ला रही है।
1: साफ है कि गरीब या आम जनता की सेहत और स्वास्थ्य को लेकर तुकाराम मुंडे बहुत संवेदनशील हैं। दूसरी ओर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट की अनदेखी करने वाली रसूखदार और पावरफुल लॉबी के खिलाफ एक्शन लेने में वो जरा भी हिचकिचाते नहीं हैं। अंजाम की परवाह किए बगैर तुकाराम ऐसी लॉबी से सीधा हेड ऑन कर लेते हैं। तुकाराम ने विमल इलायची का विज्ञापन करने पर बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान समेत अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को 14 अगस्त 2026 को नोटिस भेज दिया था। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया कि विज्ञापन में इलायची के नाम पर पान मसाले का प्रमोशन हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र में तंबाकू उत्पादों पर बैन है।
2: जो नोटिस इश्यू किया गया है अबाउट एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन वायलेशन, उनको नोटिस रेगुलेशन 2018 के हिसाब से दिया गया है और सेक्शन 24 ऑफ फसाई एक्ट जो है उसके हिसाब से दिया गया है, क्योंकि ये गुटखा और जो प्रोडक्ट है महाराष्ट्र में बैन है और उसका एडवर्टाइजिंग ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग में आता है, इसलिए हमने उनको नोटिस दिया, उनको टाइम दिया है।
1: साफ है कि निर्भीक तुकाराम रसूखदारों और पावरफुल लॉबीज के खिलाफ एक्शन लेने में जरा भी परहेज नहीं करते, हालांकि उन्हें इस नायकत्व के लिए धमकियां भी मिलती रही हैं। पर जो इंसान कर्तव्य परायणता का दिया अपने हाथों में लेकर लोकहित के अग्निपथ पर निकल जाता है, वो रास्ते में आने वाले सेहरा या बयाबा की परवाह नहीं करता। नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने और नियमों की अनदेखी करने वालों पर घास गिराने की वजह से शुरू से ही इनकी राह में कांटे बिछाए जाते रहे हैं, लेकिन एक सच्चे योद्धा की तरह हर मुश्किलों का ये डट कर मुकाबला करते हैं। आत्मा अगर गवाही दे तो बड़े से बड़ा एक्शन लेने से भी परहेज नहीं करते।
2: Once you do that and if you are a public servant, what is my role? That's the question I ask as a public servant. And if my role is to contribute for the betterment of the society, should I trade that part or should I compromise on that part? That was the question I ruminated upon. And the answer I got is I should trade this part, whatever the cost may be. Maybe some trade is less or more, whatever it is. That's a choice, and that's a choice I made. And I don't think I regret anything of that today.
1: कहने की जरूरत नहीं कि साल 2026 में लोक सेवा का व्रत लेने के बाद से ही तुकाराम व्यापक जनहित के पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ रहे हैं। 21 साल के सफर में 25 बार ट्रांसफर की दुश्वारी झेली, लेकिन जहां भी पोस्टिंग हुई, जिस विभाग की भी जिम्मेदारी मिली, पूरी क्रांति ला दी। 25 मई 2026 को FDA कमिश्नर बनने के बाद से ऐसे ऐसे साहसिक काम किए हैं कि नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले पनाह मांग रहे हैं। महाराष्ट्र FDA का कमिश्नर बनने के बाद पहले हफ्ते में ही उन्होंने सब स्टैंडर्ड और मिलावटी सामान बेचने वाले 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे और 100 लोगों को गिरफ्तार किया। उपचार के दावे वाले भ्रामक विज्ञापन दिखाने के आरोप में पतंजलि के आउटलेट पर छापे मारे और 51 लाख रुपए का सामान जब्त कर लिया। ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के 86 वेयर हाउसेज की जांच की और नियमों की अनदेखी की वजह से 14 वेयर हाउसेज के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। मुंबई में डोमिनोज पिज्जा के 4 आउटलेट के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर यानी बिना डेयरी से बने पनीर पर 1 साल तक के लिए बैन लगा दिया। तुकाराम मुंडे के इन ताबड़तोड़ एक्शन से महाराष्ट्र की आम जनता राहत महसूस कर रही है। दूसरी ओर होटल्स, रेस्तरा, कॉन्फेक्शनरीज, डेयरीज, कैफे और फूड एंड एग्रो फैक्ट्रीज के मालिकों को पहली बार यह एहसास हुआ है कि उनका काम सिर्फ मुनाफा ऐंठना नहीं है, बल्कि लोगों की सेहत का, स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखना है।
3: ऐसा नहीं है कि FDA का कमिश्नर बनने के बाद से ही तुकाराम एक्शन मोड में आए हैं। महाराष्ट्र कैडर का IAS अधिकारी बनने के बाद से ही तुकाराम नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर वज्रपात करते रहे हैं और इसके लिए कई बार इन्हें धमकियां भी मिली, राह में रोड़े अटकाए गए, लेकिन तमाम चुनौतियों के बाद भी कभी भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं हुए। एक गरीब किसान परिवार में जन्म लेने वाले तुकाराम ने बचपन में गरीबी का दंश झेला है, जीवन की दुश्वारी कहानियां देखी हैं, पैदावार के लिए खेतों में पसीना बहाया है और इसलिए इनका व्यक्तित्व फौलाद।

0: तुकाराम मुंढे आज महाराष्ट्र में आइडियल ब्यूरोक्रेसी की मिसाल बन चुके हैं। उनकी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता गरीब मजलूम लोगों के स्वास्थ्य और सेहत की उम्मीद की लौ बन चुकी है। जबकि महाराष्ट्र में नियमों की अनदेखी करने वाले फूड और ड्रग बिजनेस से जुड़े प्रतिष्ठानों को हर पल तुकाराम का डर सता रहा है। बतौर एफडीए कमिश्नर 4 महीने से भी कम के इनके कार्यकाल में एफडीए 12,000 से ज्यादा निरीक्षण और छापेमारी कर चुका है। इनमें से 900 से ज्यादा हाई इंपैक्ट रेड्स शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन की वजह से महाराष्ट्र में कुल 603 कमर्शियल लाइसेंस सस्पेंड किए जा चुके हैं। मिलावटखोरी, प्रतिबंधित गुटखा या पान मसाला बेचने और नियमों की अनदेखी के मामले में 875 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इतना ही नहीं, एफडीए ने ऐसे मामलों में 650 से ज्यादा एफआईआर भी दर्ज कराई है। तुकाराम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वे नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों या व्यक्तियों के कद या रसूख से बेपरवाह रहते हैं। एफडीए ने नामी गिरामी फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला की पुणे स्थित यूनिट का 26 अगस्त को निरीक्षण किया और पैकेजिंग, स्टोरेज और खरीद बिक्री के रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी और अनियमितता पाने पर इस यूनिट का सेल्स लाइसेंस रद्द कर दिया। तुकाराम के ताबड़तोड़ एक्शंस की जद में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी एमसीए भी आ चुका है। एफडीए ने एमसीए के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित 5 फूड आउटलेट्स पर 20 अगस्त को छापा मारकर 5 के एफएसएसएआई लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। इतने हाई प्रोफाइल प्रतिष्ठानों के खिलाफ एक्शंस होंगे तो मामला कोर्ट में पहुंचेगा ही। एमसीए ने एफडीए के एक्शन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया तो कोर्ट ने तुकाराम मुंडे को कड़ी फटकार लगा दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हम एफडीए को कितनी बार समझा चुके हैं कि मच्छर को तलवार से मत मारो, क्या आप खुद को लॉर्ड समझते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं? तुकाराम को फटकार लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनसे ये भी पूछ लिया कि एफडीए सिर्फ निजी संस्थानों पर छापेमारी क्यों कर रहा है, कानून का पालन तो सरकारी परिसरों की कैंटीन्स में भी होना चाहिए। तुकाराम भी कहां मानने वाले थे, उन्होंने अगले ही दिन बॉम्बे हाईकोर्ट कैंपस की 3 कैंटीनों पर रेड कर दी और 2 कैंटीन के लाइसेंस कैंसिल कर दिए।
1: ड्यूरिंग द हियरिंग द क्वेश्चंस वर एज वेदर यू आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट ओनली प्राइवेट और यू आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द एस्टैब्लिश गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट, वी आर टेकिंग, वी हैव द डेटा टू बैक इट अप एंड इन दैट कोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेज दैट हैव यू inspected Mantralaya canteen, so we had already done that. So then have you inspected or visited High Court canteen also, which we had not done. So I said we have not done that, but we have done this one. So High Court expects that it should be visited. Well, fine, next day my team goes and finds it out whatever it is there.
0: बॉम्बे हाईकोर्ट की कैंटीन पर रेड डालकर तुकाराम ने ये साबित कर दिया कि वो अलग ही मिट्टी के बने हैं। आपको बता दें कि इस तरह की चुनौतियां तुकाराम अपने सर्विस पीरियड में अनेकों बार फेस कर चुके हैं। साल 2006 में सोलापुर में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर अपनी पहली पोस्टिंग में रेत माफियाओं पर एक्शन लिया तो उन पर जानलेवा हमला हो गया। साल 2007 में नांदेड़ में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई की तो 5 महीने में तबादला हो गया। 2012 में मुंबई सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुई तो टैक्स चोरों से 310 करोड़ रुपए वसूल लिए। साल 2014 में कलेक्टर बनकर दोबारा सोलापुर पहुंचे तो टैंकर माफियाओं की नकेल कस दी, जिसके बाद इन्हें महाराष्ट्र का वाटरमैन कहा जाने लगा। मार्च 2017 में पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड के चेयरमैन बने तो ड्यूटी से लंबे समय से गायब चल रहे 158 कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवरों को एक साथ सस्पेंड कर दिया। साल 2022 में महाराष्ट्र के हेल्थ केयर कमिश्नर बने तो सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करवा दी। कहने की जरूरत नहीं कि तुकाराम मुंडे को जो भी जिम्मेदारी मिली उन्होंने कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की नई लीक खींच दी। दरअसल इस इंसान का पालन पोषण चांदी के चम्मच से नहीं हुआ है, इनका बचपन बहुत ज्यादा दुश्वारियों और आर्थिक तंगी के बीच बीता है। महाराष्ट्र के बीड जिले के गुमनाम से गांव ताड़सोना के एक गरीब किसान परिवार में 3 जून 1975 को जन्मे तुकाराम के पिता के पास इनके लिए चप्पल खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, लिहाजा ये बिना चप्पल के नंगे पांव स्कूल जाते थे। दिन में पढ़ाई करते थे और रात में खेतों की सिंचाई का काम भी करते थे। क्या आप यकीन करेंगे कि तुकाराम मासूम उम्र में सिर पर सब्जियां रखकर साप्ताहिक बाजार जाते थे और उन्हें बेचकर पैसे ले आते थे ताकि घर की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकें। इतनी हार्डशिप में रहकर भी ये अपने क्लास में टॉप करते थे। तभी तो साल 2005 में तुकाराम ने यूपीएससी क्रैक किया और ऑल इंडिया 20वीं रैंक हासिल की। आज वही ताड़सोना गांव का गुदड़ी का लाल ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का दिया जलाकर नौकरशाहों को सच्चाई की राह दिखा रहा है।
2: बंदे में है दम में आज आपने महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को देखा। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
2: तो चलिए आस्था और भक्ति के बाद बात मौसम की। तो देखिए मौसम बदल रहा है, मॉनसून अब वापसी कर रहा है। राजस्थान के रास्ते उसकी विदाई शुरू हो गई है। हालांकि मॉनसून की विदाई ऐसे समय हो रही है जब अब तक देश भर में बारिश सामान्य से 15% कम रही है। ऐसा माना जाता है कि 15 अक्टूबर तक मॉनसून की विदाई देश से हो जाती है, फिर जाड़े का मौसम का शुरुआत इसकी हो जाती है।
3: हवाओं में ठंडक का एहसास, तापमान में कमी, कम होता उमस का असर, ये पहचान है मॉनसून की विदाई की। देश भर में मॉनसून का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के पश्चिमी हिस्से से मॉनसून की वापसी शुरू हो गई है। इसके बाद ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश से सीधे सीधे पीछे हटेगा। फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों से मॉनसून कमजोर होते हुए पूरे देश से विदा हो जाएगा। भारत में मॉनसून की वापसी हमेशा देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से से शुरू होती है। कच्छ के साथ साथ सबसे पहले मॉनसून राजस्थान के इलाके से विदा होता है। अब तक के सभी अनुमान के मुताबिक किसी भी हालत में भारत के किसी भी राज्य से मॉनसून की वापसी 1 सितंबर से पहले नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि अगर 5 दिनों तक लगातार बारिश नहीं होती और हवा का रुख भी बदलता रहता है, तो हवा में नमी भी कम होने लगती है, तो ये मान लिया जाता है कि उस हिस्से से मॉनसून की विदाई होने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक आमतौर पर प्रायद्वीपीय भारत में सर्दियों की शुरुआत से कुछ दिन पहले मॉनसून के वापस लौटने की प्रक्रिया 15 अक्टूबर को समाप्त हो जाती है। हालांकि दिल्ली से मॉनसून की विदाई 25 सितंबर से शुरू होती है। मॉनसून की विदाई ऐसे समय हो रही है जब अब तक देश भर में बारिश सामान्य से 15% कम रही है। यानी मॉनसून सीजन के आखिरी चरण में बारिश का आंकड़ा अभी भी सामान्य से नीचे है। इससे कई राज्यों में मॉनसून के दौरान हुई बारिश के वितरण में असमानता दिख रही है। जून में मॉनसून की शुरुआत कमजोर रही थी और देश में बारिश सामान्य से काफी कम दर्ज की गई थी। जुलाई में बारिश ने कुछ हद तक इसकी भरपाई की, लेकिन अगस्त और सितंबर में फिर कमी दर्ज की गई। अब जब मॉनसून की वापसी शुरू हो गई है, तो बंगाल की खाड़ी लो प्रेशर सिस्टम बन गया है, जिससे ओडिशा, पूर्वी यूपी, बिहार और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बारिश के हालात बन रहे हैं। इस सिस्टम के बाद उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के ज्यादातर हिस्सों से मॉनसून के तेजी से लौटने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए बात एंटरटेनमेंट की हो जाए। तो अल्लू अर्जुन, दीपिका पादुकोण और रश्मिका मंदाना की अपकमिंग और मोस्ट अवेटेड फिल्म राका की हर एक अपडेट फैंस के लिए एक्साइटमेंट है। देखिए फिल्म के मेकर्स ने जब इसका प्रमोशनल टीजर जारी किया, तो फिल्म को लेकर जो एक्साइटमेंट थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि फिल्म 2027 में रिलीज होगी।
4: राका की हर एक अपडेट के लिए फैंस एक्साइटेड है। अब हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने इसका प्रमोशनल टीजर जारी किया है, जिससे फिल्म को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई है। राका के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें लिखा, एक ग्लोबल जीत देखने के लिए तैयार हो जाइए, जो मुमकिन लगता था उससे कहीं आगे। हमने कल्पना करने की हिम्मत की, हमने उसे हासिल करने की हिम्मत की। राका, एक ग्लोबल जीत। टीजर के आने से ठीक एक दिन पहले सामने आए एक दिलचस्प खुलासे के बाद हुआ है, जिसमें पोस्टर में सिर्फ लिखा था 37। अब तक राका के बारे में बहुत कम जानकारी सामने आई है, चाहे वो इसकी शूटिंग की जगह हो या प्रोडक्शन का पैमाना, जिससे फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। अल्लू अर्जुन, दीपिका पादुकोण और रश्मिका मंदाना की अपकमिंग और मोस्ट अवॉइडेड फिल्म को लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ है और फैंस की बेताबी भी बढ़ गई है। खबरों के मुताबिक अल्लू अर्जुन राका के 4 अलग अलग किरदार निभाएंगे। वो दादा, पिता और 2 बेटों की भूमिका में नजर आएंगे। ऐसी भी चर्चा है कि फिल्म में 2 पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट दिखाया जा सकता है। हालांकि मेकर्स ने अभी तक किसी भी जानकारी पर मुहर नहीं लगाई है। अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक पोस्टर पहले ही रिलीज किया जा चुका है, जिसे देखने के बाद इटली के इस अपकमिंग मूवी को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर बनी हुई है। संभावना जताई जा रही है कि अल्लू अर्जुन का ऐसा अवतार देखने को मिलेगा जो शायद पहले कभी बड़े पर्दे पर देखने को नहीं मिला है। फिल्म में जानवी कपूर और मृणाल ठाकुर भी अहम किरदारों में नजर आएंगी। इस साइंस फिक्शन एक्शन ड्रामा को सन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म अल्लू अर्जुन और इटली के बीच पहला कोलैबोरेशन भी है। फिलहाल फिल्म अल्लू अर्जुन स्टारर राका की रिलीज डेट को लेकर मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2027 के अंत तक इस बहुचर्चित फिल्म को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।

0: की पूजा करने से शनि की पीड़ा कम हो जाती है? क्या पीपल के पौधे से संतान की प्राप्ति सरल हो जाती है? क्या पीपल की पत्तियां आपको रेगुलर धन दे सकती हैं? क्या है पीपल और शनि का कनेक्शन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: गुजरात के अंबाजी में आज से भाद्रवी पूनम महामेला का शुभारंभ, 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु के पहुंचने का अनुमान। शक्तिपीठ में सुरक्षा सुविधा के पुख्ता इंतजाम। बिहार के मोतिहारी में भी गणेश उत्सव की धूम, ऐतिहासिक पंच मंदिर में 10 दिवसीय समारोह का भव्य आयोजन, श्रद्धा भक्ति और उल्लास के गणपति बप्पा मोरिया की जयकार। तेलंगाना के पलवंचा में करोड़ों के नोटों से सजे गणपति बप्पा, 2,90,00,000 रुपए के नोटों से पंडाल की हुई सजावट, 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोटों का किया गया इस्तेमाल। सूरत में गणपति बप्पा के दरबार से अंगदान का संदेश, ऑर्गन डोनेशन की थीम पे सजा पंडाल, धार्मिक आयोजन के साथ फैलाई जा रही जन जागरूकता। डीयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित, अध्यक्ष समेत 3 पदों पर एबीवीपी ने हासिल की जीत, उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन रहे विजयी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में वन विभाग ने भालू का किया रेस्क्यू, डलहौजी की सड़क पर सिर में कनस्तर फंसाए भटक रहा था भालू, सूचना के बाद एक्शन में प्रशासन।

सरगम पंच श्रीवास्तव और आज के हमारे स्पेशल शो में बात होगी फिल्म हनुमान अंश के बॉलीवुड पर पड़ रहे असर की। देखिए विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी हनुमान अंश को दर्शकों से ऐसा रिस्पांस मिला है जिसकी कल्पना खुद मेकर्स ने भी शायद नहीं की होगी। शुरुआती दो हफ्तों में कछुए की रफ्तार से चल रही इस फिल्म ने अचानक ऐसी रफ्तार पकड़ी कि देखते ही देखते 300 करोड़ रुपए के क्लब में ये फिल्म शामिल हो गई है। देखिए फिल्म को रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा का समय हो गया है और अब भी दर्शकों में से लेकर जो उत्साह है वो बरकरार है। लेकिन हनुमान अंश की सफलता से आने वाले दिनों में सिनेमाघरों में आस्था और भक्ति भाव से भरी फिल्मों की जो लाइनें हैं वो भी लगने वाली हैं। देखिए आप टीवी स्क्रीन पर उन फिल्मों के नाम देख सकते हैं जिनके बारे में मैं यहां पर बात कर रही हूं, क्योंकि हनुमान अंश एक तरीके से केस स्टडी हो गई है और इसे फॉलो करते हुए अब बाकी फिल्में भी खास तौर पर इसी थीम पर बन रही फिल्में आने वाली हैं। देखिए महाकाव्य श्री रामायण कथा श्री राम की ये फिल्म हो या फिर वाल्मीकि रामायण रामायण पार्ट वन, चिरंजीवी हनुमान द इटर्नल, महाअवतार परशुराम, श्रीमद् भागवत पार्ट वन, विष्णुरथ, कृष्णावतारम पार्ट टू, करण जौहर की फिल्म राधा कृष्णा, इसको लेकर तो बस भी पिछले काफी समय से है, प्रेमानंद जी महाराज पर राधा अंश, छठ पूजा पर द वन, तेरा साई, हारे का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा, महाकाली जैसी फिल्म जो है वक्त वक्त पर रिलीज होंगी। तो देखिए यूं कहें तो हनुमान अंश ने बॉलीवुड का जो ट्रेंड है वो बदल करके रख दिया है और अब आने वाले समय में हनुमान अंश को फॉलो करते हुए इसी तरीके की कई फिल्में आने वाली हैं।

0: 2 करोड़ का छोटा बजट और कमाई 300 करोड़ के पार। बात हनुमान अंश फिल्म की हो रही है। फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है। कई बड़े बजट की फिल्मों को पछाड़ते हुए देश की पहली सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्म भी बन गई है। बाबा नीब करौरी पर बनी हनुमान अंश फिल्म रिलीज के बाद शुरुआती 2 हफ्तों में कछुए की रफ्तार से चल रही थी, लेकिन फिल्म ने अचानक ऐसी रफ्तार पकड़ी कि देखते ही देखते 300 करोड़ क्लब में शामिल हो गई। फिल्म को रिलीज हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है और अभी भी दर्शकों में वैसा ही उत्साह बरकरार है। हनुमान अंश फिल्म की सफलता का मुख्य राज मजबूत कंटेंट, दर्शकों का आध्यात्मिक जुड़ाव और सकारात्मक मौखिक प्रचार को बताया जा रहा है। जब फिल्म रिलीज हुई थी तो पहले हफ्ते में ही लगने लगा था कि फिल्म डूब जाएगी। दूसरे हफ्ते में भी फिल्म ने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया। फिल्म मेकर्स भी निराशा के बवंडर में डूबने लगे थे। तभी चमत्कार होना शुरू हुआ और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना करिश्मा दिखाना शुरू कर दिया, जो अभी तक जारी है। बॉलीवुड में अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसी खास विषय पर बनी फिल्म अगर सफलता का परचम लहराती है तो कई फिल्म मेकर्स उसी राह पर चल निकलते हैं। मान लीजिए अगर कोई रोमांटिक या एक्शन फिल्म हिट हो जाती है तो अन्य मेकर्स उसी तरह की फिल्मों को बनाने में लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही अब बॉलीवुड में दिखने लगा है।
1: हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस सफर बिल्कुल आसान नहीं था। 10 लाख से ओपनिंग की शुरुआत के बाद ऐसा वक्त आया कि जब थिएटर्स ने ये फिल्म के शोज को रिड्यूस कर दिया था, घटा दिया था, लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ के बाद ये पिक्चर ऐसी चली कि आज 300 करोड़ कमा चुकी है। बॉक्स ऑफिस पर अब ऑडियंस जा ही रही है और अब ये छोटी सी फिल्म 300 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस करके बॉलीवुड के लिए एक इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा करती है। क्या डिवोशनल और फेथ बेस्ड सिनेमा के लिए ऑडियंस का एपिटाइट बढ़ रहा है? क्या फिल्म मेकर्स अब इस जॉनर को और ज्यादा फोकस देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है?
0: आने वाले दिनों में थिएटर में कई और भक्ति वाली फिल्में रिलीज होने वाली हैं, क्योंकि बॉलीवुड के कई जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भक्ति फिल्मों का ऐलान कर रहे हैं।
2: पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में काफी लो थे इसके कलेक्शंस भी, लेकिन धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से ये फिल्म बढ़ी है और अब तो सब जगह इसकी चर्चा है। इसका वीकेंड का कलेक्शन जो है वो करीब 20-25 करोड़ के ऊपर जा रहा है। हर रोज इसका कलेक्शन बढ़ते जा रहा है और ये मिरेकल ही हम कहेंगे, बहुत बड़ा चमत्कार है। और इस तरीके से जो अब लोगों ने इस भक्तिभाव की फिल्म को देखने का नजरिया बदला है, ये बहुत बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। अब बॉलीवुड को समझ में आने लगा है कि जिस तरीके से पहले राजा हरिश्चंद्र से लेकर, रामायण से लेकर, हमारे देश में भक्ति पे फिल्में बनती थी, जिसमें जय संतुष्टि माता थी जो 1975 में आई थी शोले के कंपटीशन में और वो इतनी जबरदस्त चली थी। उसके अलावा मनोज कुमार साहब ने साई बाबा पे फिल्म बनाई थी, वो चली थी, उसका म्यूजिक अच्छा था। और अब गुजराती में एक फिल्म है लाड़ो जो पिछले साल चली, जिसने 100 करोड़ का बिजनेस किया। और उसी तरीके से हनुमान अंश जो कि 2 करोड़ की फिल्म है, अगर वो इस वक्त 325 करोड़ कर चुकी है और 350 करोड़ के ब्रैकेट में जा रही है और जिस तरीके से उसका वर्ड ऑफ माउथ है उससे मुझे लगता है कि 400 करोड़ के भी बॉक्स में ये चले जाएगी, तो इसका सीधा सा मतलब है कि भक्ति भाव और श्रद्धा वाली फिल्में अब चलने लगी है, लोगों को ये पसंद आने लगी है और बॉलीवुड का रुख अब भक्तिभाव की फिल्मों की तरफ बढ़ने लगा है।
0: हनुमान अंश में मेकर्स ने भी फिल्म के दूसरे पार्ट का ऐलान किया है। फिल्म नीव करौरी बाबा के जीवन पर बनी है। देश के सबसे बड़े क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा से लेकर कई विदेशी सेलेब्स भी नीव करौरी बाबा के भक्त हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि मेकर्स सेलेब्स को इस फिल्म में कैमियो के लिए अप्रोच कर रहे हैं, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हनुमान अंश का पार्ट 2 भी आएगा ऐसा कंफर्म माना जा रहा है।
2: हनुमान अंश एक्चुअली नीम करौली बाबा की ट्रिलॉजी ही थी ये बेसिकली, जिसका एक ही पार्ट अभी आया है। उसके 2 पार्ट जिसमें आगरा और मथुरा का चैप्टर आएगा वो ऑलरेडी अब बनने वाला है क्योंकि फिल्म ने अपार सफलता पाई है। इसके अलावा फिर हम देखो तो रामायण आएगी जो कि दिवाली में आएगी, रामायण पार्ट 1, उसको लेकर भी काफी एक्साइटमेंट है क्योंकि उसमें बहुत बड़ी स्टार कास्ट है।
0: फिल्म के डायरेक्टर डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी ने फिल्म हनुमान अंश के पार्ट टू की घोषणा की है। पार्ट टू में कैची धाम की कहानी भी दिखाई जाएगी। नीव करोरी बाबा 1960 के दशक की शुरुआत में कैची पहुंचे थे और 15 जून 1964 को हनुमान मंदिर और आश्रम की स्थापना हुई थी। जीवन के अंतिम वर्षों में कैची उनका प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र रहा। डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी 2006 के आसपास अपनी पोस्टिंग के दौरान कई बार कैची धाम गए थे। यही उनका पहली बार नीव करोली बाबा के शिक्षाओं से परिचय हुआ। इस अनुभव का उन पर गहरा असर पड़ा और करीब 2 दशकों बाद यही जुड़ाव हनुमान अंश की कहानी की प्रेरणा बना। नैनीताल में भवाली के पास शिप्रा नदी के किनारे स्थित कैची धाम नीव करौली बाबा से जुड़े प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों में शामिल है। नैनीताल में उनसे जुड़े 4 प्रमुख धाम बताए जाते हैं, कैची धाम, काकड़ी घाट, हनुमान गढ़ी और भूमि आधार। एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स से लेकर फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग तक बाबा नीव करौली के कैची धाम में दर्शन के लिए पहुँच चुके हैं। हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स ने एक इंटरव्यू में बताया था कि नीव करौली बाबा की एक तस्वीर देखकर उनकी हिंदू धर्म में रुचि जागी थी। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, मनोज वाजपेयी तक बाबा के आश्रम पहुंच चुके हैं। हनुमान अंश के दूसरे पाठ में कैची धाम के महत्व और महिमा को विस्तार से दर्शाया जाएगा। हनुमान अंश की कहानी फिल्म के डायरेक्टर डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी की लिखी किताब पर आधारित है। हनुमान अंश के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने एक और फिल्म का ऐलान किया है। फिल्म का नाम भी तय हो गया है, राम बोला। ये हनुमान अंश में 7 काम कर चुके महावीर जैन फिल्म्स के साथ ही विशाल चतुर्वेदी बनाएंगे। इस फिल्म में भारतीय इतिहास के सबसे महान कवियों और आध्यात्मिक पुरुषों में से एक महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन और यात्रा को दिखाया जाएगा। फिल्म में उनके जीवन से जुड़े उन पहलुओं को सामने लाने की कोशिश होगी जिन्होंने उन्हें भारतीय साहित्य और भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण नाम बनाया है। जीवन के कई अनदेखे पहलुओं को भी दिखाने की कोशिश की जाएगी। फिल्म को लेकर फिलहाल कलाकारों और रिलीज डेट से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।
2: हनुमान अंश की अपार सफलता के बाद जो डायरेक्टर थे हनुमान अंश के विशाल चतुर्वेदी, वो अब नई फिल्म बनाने जा रहे राम बोला, जो कि आचार्य तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखा था उनकी जीवनी पर है और इनको महावीर जैन प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। उसके अलावा हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा, ये भी एक बहुत बड़ी फिल्म है जो कि अनाउंस हुई है। तो ये हो गया है कि सफलता जो हनुमान अंश को मिली है उससे बहुत सारी फिल्में अनाउंस हुई है। छोटे मोटे प्रोडक्शन हाउस ने भी बनाए हैं और जो रेप्यूटेड प्रोडक्शन हाउसेज हैं उन्होंने भी अनाउंसमेंट किए, जिसमें 13 साई करके फिल्म आ रही है जिसमें संजय मिश्रा है। उसके अलावा श्रीमद भागवतम करके फिल्म है जो कि सागर फिल्म्स जिन्होंने पहले महाभारत बनाई थी, रामायण बनाई थी, वो बना रहे हैं। उसके अलावा करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस भी राधा और कृष्ण पे फिल्म बनाने जा रहा है, उसके ऊपर भी काफी चर्चाएं हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बोलबाला चल रहा है हनुमान अंश की सफलता के बाद, ये बड़ा अच्छा है। अब लोग चैतन्य महाप्रभु भी फिल्म बनाने वाले हैं और ऑलरेडी हम कल्कि बना चुके हैं, कल्कि का सीक्वल आने वाला है। तो ऐसे में जब हम देखते हैं कि श्रद्धा और भक्ति की फिल्में बॉलीवुड को पसंद आने लगी और बॉलीवुड का रुख अब उस तरफ होने लगा है, तो ये बड़ी खुशी की बात है।
0: आपको बता दें कि गोस्वामी तुलसीदास का नाम राम बोला दुबे था। कहा जाता है कि उन्हें स्वयं प्रभु हनुमान के दर्शन हुए थे और उन्हीं के निर्देश के बाद तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। मुंबई से अनीता ब्रिटो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, हनुमान अंश की कामयाबी ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस के आंकड़े नहीं बदले हैं बल्कि बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स का मूड भी बदल दिया है। देखिए, रामायण से लेकर कृष्ण, हनुमान से लेकर परशुराम और संतों के जीवन तक फिल्म इंडस्ट्री में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर अब इसके बाद काम चल रहा है।

0: ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म हनुमान अंश की सफलता के बाद पौराणिक और धार्मिक फिल्मों को लेकर दर्शकों का रुझान बढ़ रहा है, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर भक्ति से जुड़ी फिल्मों की ऑडियंस बढ़ रही है। इसी साल यानी 2026 में महाकाव्य रामायण पर आधारित एक या दो नहीं बल्कि तीन बड़ी फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही हैं।
1: अब बॉलीवुड जागृत हो गया है कि ऐसी फिल्में बनाई जाएं जो श्रद्धा पे हो, और हनुमान अंश ने सारे के सारे पैरामीटर्स भक्ति की फिल्मों को देखने का नजरिया बदल दिया है, और इसलिए अच्छा म्यूजिक और अच्छी कहानी लेकर अब लोग माइथोलॉजी की फिल्में, रिलीजियस फिल्में, वो फिल्में जहां पर वो अपनी श्रद्धा को दिखा सके, ऐसी फिल्में बनने का फिर से बोलबाला शुरू हो चुका है।
0: सबसे पहले इसी महीने 25 सितंबर को महाकाव्य श्री रामायण कथा श्री राम की सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। अभिषेक सिंह के डायरेक्शन में बनी यह हिंदी फिल्म रामायण की कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश करती दिखाई देगी। फिल्म में देव शर्मा भगवान राम और अंजलि अरोड़ा माता सीता की भूमिका में नजर आएंगी, जबकि रावण का रोल रजनीश दुग्गल निभाते नजर आएंगे। फिल्म के डायलॉग्स और गाने जयदेव जानेवाल ने लिखे हैं, जबकि संगीत देव आशीष ने दिया है। कच्चा बादाम वाली अंजलि अरोड़ा ने रामायण में माता सीता का किरदार निभाया है। इस फिल्म के रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर 2026 को वाल्मीकि रामायण नाम की फिल्म रिलीज होगी। जैसा कि नाम से साफ है, फिल्म का आधार महर्षि वाल्मीकि की रामायण है। इसमें रामायण की कहानी को सिनेमाई अंदाज में पेश किया जाएगा। फिल्म का निर्देशन भावना तलवार ने किया है। मशहूर सिनेमेटोग्राफर विनोद प्रधान ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की है। इसकी कहानी और पटकथा आनंद नीलकंठन ने लिखी है, जबकि डायलॉग्स डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने लिखे हैं। रामायण पर बनने वाली तीसरी और सबसे बड़ी फिल्मों में नितेश तिवारी की रामायण पार्ट 1 शामिल है। ये फिल्म 6 नवंबर 2026 को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में इस फिल्म को बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है। फिल्म को दो हिस्सों में रिलीज किया जाएगा और इसे भारत के साथ साथ दुनिया भर के दर्शकों तक पहुँचाने की तैयारी है।
2: तीनों लोकों में एक ही राज होगा।

0: जब जब सृष्टि पर संकट आया, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर।
1: फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और साईं पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगी। रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं। साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार यश फिल्म में रावण का किरदार निभाएंगे। इसके अलावा अरुण गोविल, दशरथ, लारा दत्ता, केकई और रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के रोल में नजर आएंगी। फिल्म में और भी कई बड़े कलाकार अलग अलग किरदार में दिखेंगे। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले श्रीधर राघवन और नितेश तिवारी ने तैयार किया है। इसके डायलॉग्स नितेश तिवारी और श्रेयस जैन ने लिखे हैं। फिल्म के गाने कुमार विश्वास ने लिखे हैं और संगीत की जिम्मेदारी ऑस्कर विजेता एआर रहमान और हर्ष जिमर ने संभाली है।
2: एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है।
3: तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। उस वचन का क्या जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था? अब हमारा भाग्य एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है।

एआई तकनीक से बनाई गई फिल्म चिरंजीवी हनुमान द इटर्नल की पहली झलक सामने आ गई है। भगवान हनुमान की कहानी कहती है फिल्म 2026 में ही सिनेमा घरों में रिलीज होनी है। चिरंजीवी हनुमान द इटर्नल को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली भारत की पहली एआई द्वारा निर्मित फिल्म बताया जा रहा है। हालांकि अभी फिल्म के रिलीज डेट सामने नहीं आई है। 1:11 के स्वस्थ ग्लिम्स वीडियो की शुरुआत में झरना और खूबसूरत वादियां दिखती हैं। इसके बाद पर्वतीय गुफाओं के पार पवन पुत्र हनुमान की छवि दिखती है। जंगलों के बीच से कैमरे की जबरदस्त मूवमेंट के बाद पवन पुत्र हनुमान को हवा में विचरण करते हुए दिखाया जाता है। हाथों में गदा लिए हनुमान जी को अभी सिर्फ पीछे से दिखाया गया है, उनका चेहरा अभी सामने नहीं आया है। बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा की पंक्तियां भी सुनाई देती हैं। पहली झलक दिखाता है ये वीडियो फिल्म को लेकर दर्शकों को उत्साहित जरूर करता दिख रहा है। चिरंजीवी हनुमान को नेशनल अवार्ड जीतने वाले निर्देशक राजेश मापुस्कर ने निर्देशित किया है, जबकि फिल्म का निर्माण आलोक जैन, अजित अंधारे, विजय सुब्रमण्यम और विक्रम मल्होत्रा ने स्टार स्टूडियो 18 के सहयोग से किया है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म को 2026 में हनुमान जयंती के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज किया जा सकता है।

0: सिनेमा प्रेमियों को केजीएफ, सालार और कांतारा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले कोमले फिल्म्स ने परशुराम जयंती के अवसर पर फैंस को तोहफा दिया है। फिल्म महाअवतार परशुराम का पहला पोस्टर और टीजर साझा किया गया है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों पर आधारित 7 भागों वाले एनिमेटेड महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की यह दूसरी फिल्म है। इससे पहले फिल्म महाअवतार नरसिम्हा काफी पसंद की गई थी। ये एक 3D एनिमेटेड फिल्म होगी जिसमें एक्शन और ड्रामा होगा। भारत के सबसे बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स का यह दूसरा हिस्सा अश्विन कुमार के निर्देशन में बन रहा है। फिल्म के दिसंबर 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है। बॉलीवुड में आज तक सैकड़ों धार्मिक और पौराणिक फिल्में बनी हैं, लेकिन आज तक कोई निर्माता निर्देशक श्रीमद भागवत को पहले पर्दे पर साकार नहीं कर सका है, लेकिन अब ये बड़ा कारनामा होना तय हो गया है। श्रीमद भागवतम के पहले पार्ट श्रीमद भागवतम पार्ट 1 विष्णुरथ का पहला टीजर पोस्टर जारी कर दिया गया है। रमानंद सागर के पोते आकाश सागर और अमृत सागर के सह निर्देशित पोस्टर में भगवान श्री कृष्ण के हाथ की एक झलक दिख रही है। फिल्म में भगवान श्री कृष्ण की कहानी बताई जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि यह फिल्म भी अगले साल रिलीज होगी।
1: सूत्रों से नहीं जीते जाते, मन जीतना पड़ता है।

इस साल भगवान कृष्ण पर एक फिल्म आई थी, कृष्ण अवतार। ये फिल्म इसी साल रिलीज हुई थी। फिल्म में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को दिखाया गया था। कृष्ण अवतारम को दर्शकों का खूब प्यार भी मिला था। अब मेकर्स ने इसके सीक्वल यानी दूसरा पार्ट का ऐलान किया है, जो साल 2028 में

0: छुपी थी। हार्दिक गज्जर के निर्देशन में बनी कृष्ण अवतारम पार्ट वन द हार्ट 7 मई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सिद्धार्थ गुप्ता ने कृष्ण, सुष्मिता भट्ट ने राधा, निवाशनी कृष्णन ने रुक्मणी और संस्कृति जयाना ने सत्यभामा की भूमिका निभाई थी। रोमांस, रिश्तों और फैमिली ड्रामों की फिल्में बनाने वाले करण जौहर अब राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम कहानी को बड़े पर्दे पर उतारने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स की माने तो धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनने वाले इस फिल्म का नाम राधा कृष्ण रखा गया है और प्रोजेक्ट फिलहाल डेवलपमेंट के एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। इस बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की कमान फिल्म मेकर सचिन रवि को सौंपी गई है। वे फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ इसे डायरेक्ट भी करेंगे। फिल्म की कहानी में भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर कंस के वध तक का सफर दिखाए जाने की खबर है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि राधा और कृष्ण के किरदार में कौन नजर आएगा। मेकर्स ने फिलहाल स्टारकास्ट को पूरी तरह सीक्रेट रखा है। बाबा नीप करोरी के जीवन पर बनी फिल्म के बाद एक और संत के जीवन को बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी शुरू हो गई है। वैष्णव किन्नर अखाड़े की जगत गुरु शंकराचार्य हिमांगी सखी ने संत प्रेमानंद महाराज के जीवन पर आधारित राधा अंश नाम की फिल्म बनाने की घोषणा की है। खबर है कि फिल्म का नाम राधा अंश होगा और इसका उद्देश्य संत प्रेमानंद महाराज के आध्यात्मिक जीवन, उनके विचारों और राधा रानी के प्रति उनके अटूट भक्ति को लोगों तक पहुंचाना है। खबर है कि फिल्म को लेकर फिल्म मेकर टीम से शुरुआती बातचीत हो चुकी है और टीम ने इस प्रोजेक्ट को लेकर सहमति भी जताई है। अब संत प्रेमानंद महाराज और उनके शिष्यों से आधिकारिक अनुमति लेने के लिए उनसे मुलाकात की जाएगी। फिल्म में कलाकारों का चयन भी उनके शिष्यों की सलाह के आधार पर किए जाने की बात सामने आ रही है।
1: देखिए, भक्ति फिल्मों का असर अब सिर्फ रामायण और कृष्ण की कहानियों तक सीमित नहीं है। छठी मैया से लेकर साईं बाबा, खाटू श्याम से लेकर मां महाकाली तक आस्था के अलग अलग रंग अब बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। आने वाले दिनों में कई ऐसी फिल्में दर्शकों के सामने होंगी जिनकी कहानी सीधे लोगों की आस्था और उनके विश्वास से जुड़ी हुई होगी।
2: भुतक्के इस वन की काली शक्ति रात के साए से भी काले, तूफान से भी तेज, जिससे देवी भी हमें नहीं बचा सकती, और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती।
3: अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब
4: बॉक्स ऑफिस पर भक्ति फिल्मों का ऐसा असर देखने को मिल रहा है कि आने वाली कई फिल्मों में इसका अलग अलग स्वरूप देखने को मिलेगा। तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा की 25 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्म द वन में विस्तार से छठ पूजा को दिखाया गया है।
5: इसी वजह से मैं इस मनुसका पे नहीं आना चाहता।
4: तमन्ना भाटिया ने हाल में अपना एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्हें छठी मैया की पूजा करते हुए दिखाया गया था। छठी मैया पर बन रही फिल्म द वन को लेकर ऑडियंस का जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है। फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है।
6: आपके पति नास्तिक है क्या?

0: साई बाबा के जीवन पर एक और फिल्म बन रही है। इस फिल्म का नाम है तेरा साई। खास बात यह है कि फिल्म में मशहूर एक्टर संजय मिश्रा साई बाबा के किरदार में नजर आएंगे। अविका गौर, सयाजी शिंदे, मनोज जोशी, रोहन मेहरा जैसे एक्टर्स भी दमदार रोल में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 5 फरवरी 2027 को रिलीज होनी है। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम बाबा का मंदिर है। इस मंदिर में लोगों की काफी आस्था है। हर दिन यहाँ पर खाटू श्याम के दर्शन के लिए भारी संख्या में भक्त पहुँचते हैं। ऐसे में हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा नाम से एक भक्ति फिल्म का ऐलान किया गया है। फिल्म बाबा खाटू श्याम की भक्ति पर बेस्ड होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म साल 2027 में दस्तक देगी। हालांकि इस जानकारी की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिल्म महाकाली अगले साल 8 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में अक्षय खन्ना असुरों के महागुरु शुक्राचार्य के अवतार में दिखने वाले हैं। अक्षय खन्ना के फैंस उन्हें इस रूप में देखने को लेकर उत्साहित हैं। हनुमान फेम प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली फिल्म है। फिल्म में धर्म और अधर्म के बीच होने वाले एक ऐसे महायुद्ध की झलक है जो सिर्फ अच्छाई और बुराई की लड़ाई तक सीमित नहीं है। यह असुरों के शक्तिशाली गुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व में शुरू होने वाले उस संघर्ष की कहानी है जो पूरी दुनिया के भविष्य का फैसला करता हुआ दिखाया जाएगा। फिल्म का टीजर आ चुका है। इस फिल्म में मां महाकाली के दिव्य रूप के भी दर्शन होंगे जिनकी वजह से देवताओं को जीत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: की पूजा करने से शनि की पीड़ा कम हो जाती है? क्या पीपल के पौधे से संतान की प्राप्ति सरल हो जाती है? क्या पीपल की पत्तियां आपको रेगुलर धन दे सकती हैं? क्या है पीपल और शनि का कनेक्शन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर।
0: क्या पीपल के पौधे की पूजा करने से शनि की पीड़ा कम हो जाती है? क्या पीपल के पौधे से संतान की प्राप्ति सरल हो जाती है? क्या पीपल की पत्तियां आपको रेगुलर धन दे सकती हैं? क्या है पीपल और शनि का कनेक्शन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: गुजरात के अंबाजी में आज से भाद्रवी पूनम महामेला का शुभारंभ, 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु के पहुंचने का अनुमान। शक्तिपीठ में सुरक्षा सुविधा के पुख्ता इंतजाम। बिहार के मोतिहारी में भी गणेश उत्सव की धूम, ऐतिहासिक पंच मंदिर में 10 दिवसीय समारोह का भव्य आयोजन। श्रद्धा भक्ति और उल्लास के गणपति बप्पा मोरिया की जयकार। तेलंगाना के पलवंचा में करोड़ों के नोटों से सजे गणपति बप्पा, 2,90,00,000 रुपए के नोटों से पंडाल की हुई सजावट। 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोटों का किया गया इस्तेमाल। सूरत में गणपति बप्पा के दरबार से अंगदान का संदेश, ऑर्गन डोनेशन के थीम पे सजा पंडाल। धार्मिक आयोजन के साथ फैलाई जा रही जन जागरूकता। डीयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित, अध्यक्ष समेत 3 पदों पर एबीवीपी ने हासिल की जीत। उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन रहे विजयी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में वन विभाग ने भालू का किया रेस्क्यू। डलहौजी की सड़क पर सिर में कनस्तर फंसाए भटक रहा था भालू, सूचना के बाद एक्शन में प्रशासन।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। एक बार फिर से लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस निर्भीक शख्सियत का सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने महाराष्ट्र में मिलावटखोरी करने वाली और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाली लॉबी के खिलाफ ऐलानी जंग कर दिया है। महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कमिश्नर बनने के बाद इस शख्स ने अपने ताबड़तोड़ एक्शन से लोगों की सेहत की कीमत पर मुनाफाखोरी करने वाली लॉबी की नींद उड़ा कर रख दी है।

0: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कमिश्नर तुकाराम मुंडे हैं। महाराष्ट्र की जनता जिन्हें अब सिंघम आईएएस कहने लगी है। 25 मई 2026 को एफडीए के कमिश्नर पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही तुकाराम एक्शन मोड में है। इनके कमिश्नर बनने के बाद महाराष्ट्र के होटल्स, रेस्टोरेंट, कैफे और कन्फेक्शनरीज के मालिक और मालकिनों को पहली बार एहसास हुआ कि उनका काम सिर्फ आंखें मूंद कर मुनाफा वसूली करना नहीं है बल्कि लोगों की सेहत और हाइजीन का कायदे से ख्याल रखना भी है। 4 महीने से भी कम में इनके कार्यकाल में महाराष्ट्र के होटल्स और रेस्टोरेंट्स की सूरत बदल गई है। आम लोग इनकी कार्यशैली से काफी खुश हैं।
1: अंधेरा कितना ही घनघोर क्यों ना हो, एक दिया काफी होता है उस अंधेरे की कालिमा को चीरने के लिए। और उजाले की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि वो व्यवस्था की वस्तु स्थिति को उजागर कर देता है। महाराष्ट्र के एक आईएएस अधिकारी ने अदम्य इच्छा शक्ति, नेक नियति और कर्तव्य निष्ठा के रथ पर सवार होकर व्यवस्थागत नियमों का दीप प्रज्वलित किया तो कई नामचीन संस्थाओं, कंपनियों और हस्तियों के स्याह चेहरे उजागर हो गए। महाराष्ट्र के इस युगांधर आईएएस अधिकारी का नाम है तुकाराम हरिभाऊ मुंडे, एक ऐसा नौकरशाह जिसने अपनी जिम्मेदारियों के तर्जे अमल की बेहतरीन नजीर पेश कर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश भर के ब्यूरोक्रेट्स को बता दिया है कि अगर वो सच्ची निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें तो करोड़ों हिंदुस्तानियों की बहुत सी दुश्वारियां यूं ही खत्म हो जाएंगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कैडर के आईएएस ऑफिसर के तौर पर साल 2006 में सोलापुर के असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर ज्वाइनिंग के बाद से अब तक तुकाराम मुंडे हर रोज आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सीधे तौर पर सुनते हैं।
2: That's where you pointed out that I meet people during 4 to 5 every day. So that's a connect with the people, and it's a practice I have been doing it since I joined the service, not now. So I believe that if public servant or civil servant is to serve in a public space, so who am I serving? Each and every individual. So if I do not know or do not meet them, do not connect with them, how would I know what are the issues? What are they facing?
1: 21 साल के प्रशासनिक सफर में 25 से ज्यादा तबादलों का दंश झेल चुके तुकाराम मुंडे को 25 मई 2026 को महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई। तुकाराम जब से एफडीए के कमिश्नर बने हैं मिलावटखोर, मुनाफाखोर, धांधलेबाज पनाह मांग रहे हैं। उन्हीं के विभाग के भ्रष्ट, बेईमान और कामचोर मातहत कर्मचारी त्राहीमाम कर रहे हैं, लेकिन जनता बहुत प्रसन्न है। सच कहें तो आम लोगों को पहली बार पता चला है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कितने काम का विभाग है। बीते 15 सितंबर को तुकाराम ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट कर कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर चल रही एक ऐसी धांधली उजागर की है जिसे आम जनता पूरी तरह अनजान थी। अस्पतालों के मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोक्योरमेंट को लेकर तुकाराम मुंडे ने जो खुलासा किया है उसने सनसनी मचा दी है। 15 सितंबर को अपनी एक्स पोस्ट में तुकाराम ने लिखा है, महाराष्ट्र में हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों पर किए गए सर्वे में ये पाया गया कि एक आईवी इन्फ्यूजन सेट की एक्चुअल खरीद करीब 11 रुपए होती है जबकि इस पर MRP 325 रुपए लिखी होती है, यानी 2,841% का मार्कअप। बढ़ोतरी, एक सिरिंज 6.75 रुपए में खरीदी जाती है जबकि उस पर MRP लिखी होती है 57.20 रुपए। एक कैथेटर 29.41 रुपए में खरीदा जाता है जबकि उस पर MRP लिखी होती है 310 रुपए। कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में भर्ती होने वाले मरीज के डिस्चार्ज से पहले परिजनों को जब बिल दिया जाता है तो उसे देखकर उनकी पेशानियों पर पसीने की बूंदें छलकने लगती हैं। उन्हें क्या पता कि इस भारी भरकम बिल के पीछे नौकरशाहों और हॉस्पिटल्स की दुराभिसंधि का हाथ है। बहरहाल अगर तुकाराम जैसे मसीहा के हाथ में कमान हो तो जनता राहत की उम्मीद कर सकती है। महाराष्ट्र FDA की ओर से सामने रखे गए सर्वे के नतीजों के बाद ट्रेड प्रोक्योरमेंट प्राइस और घोषित MRP के बीच अंतर को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हॉस्पिटल्स के साथ ही मोटे मुनाफे के लिए जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले होटल्स, रेस्तरां, कॉन्फेक्शनरीज, डेयरीज, कैफे और फूड एंड एग्रो फैक्ट्रीज पर भी तुकाराम मुंडे कहर बनकर बरस रहे हैं। त्योहारी मौसम में मुनाफाखोरों की चांदी हो जाती है, इसलिए मिलावट का धंधा चरम पर पहुंच जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम के बीच फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मुंबई के मशहूर बार और रेस्तरा कैफे मुंडेगर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। FDA ने अपनी जांच में पाया कि गर्म खाने की चीजों को जरूरी तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर नहीं रखा जा रहा था और कोल्ड स्टोरेज का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम पर नहीं रखा जा रहा था। इसके साथ ही खाना बनाने वाली जगह ड्रेनेज सिस्टम तय मानकों के मुताबिक नहीं था, जिससे क्रॉस कंटामिनेशन का खतरा था। सोचिए, सरकार ने पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखकर कितने अच्छे रेगुलेशंस बनाए हैं, पर इन रेगुलेशंस के कंप्लायंस को लेकर नौकरशाहों में इतनी बेफिक्री बेपरवाही है कि रेस्तरां या कैफे मालिकों को कौन कहे, आम जनता भी उदासीन हो जाती है। नतीजा ये होता है कि पैसे देकर होटल्स में खाना खाओ और तोहफे के तौर पर बीमारी घर ले आओ। पर FDA के कमिश्नर के तौर पर तुकाराम ने पूरे देश को चता भी दिया है और बता भी दिया है कि कानून की किताब ठंडे बस्ते में डालने के लिए नहीं होती। क्या तुकाराम से पहले किसी ने सोचा होगा कि भंडारे, महाप्रसाद, लंगर या सामूहिक भोज के लिए भी गाइडलाइंस जारी की जा सकती है? महाराष्ट्र FDA ने इसके लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके मुताबिक भंडारा, महाप्रसाद, लंगर या किसी सामूहिक भोज के आयोजन से कम 7 दिन पहले ऑनलाइन फॉर्म जमा करना पड़ेगा। ऐसे आयोजनों में सिर्फ लाइसेंस प्राप्त कैटरर्स की ही सेवाएं ली जा सकेंगी। खाना बनाने और पीने के लिए साफ या RO वाटर ही इस्तेमाल करना होगा। खाना बनाने और परोसने वाले वॉलेंटियर्स के लिए मास्क, दस्ताने और हेड कैप पहनना जरूरी होगा। भंडारों में आमतौर पर हाइजीन को अनदेखा कर दिया जाता है। इसमें खाना खाने वाले आमतौर पर मुफलिसी के मारे लोग ही होते हैं, इसलिए हाइजीन को लेकर आपत्ति दर्ज कराने का सूरत हाल नहीं होता। पर तुकाराम बचपन में बेबस गुर्बत की कड़वी हकीकत से वाबस्ता हो चुके हैं, इसीलिए गरीबों के दर्द को जानते हैं। वैसे FDA की भंडारे वाली गाइडलाइंस का हर तबके के लोग स्वागत कर रहे हैं।
3: नहीं, ये जो निर्णय लिया है वो अच्छा लिया है, जो भी है वो सबके हित के लिए है। अगर जो भी है, जो भी भंडारा या जो भी होता है उसमें अगर क्लीननेस रहेगा तो ये सबके हेल्थ के लिए अच्छा है।
4: इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज फॉर द गुड ऑफ द पीपल, गुड ऑफ द कम्युनिटी, और ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और उनकी जो भी गाइडलाइंस है, ऑफकोर्स वो डिटेल में देखेंगे, जैसे कि हमारा मंडल होता है या ग्रुप्स होते हैं जहां पर ये सारी चीजें होती है, भंडारे एंड ऑल दैट, वो उनको फॉलो करना चाहिए। और ये सभी के लिए है, गवर्नमेंट अगर कुछ पॉलिसीज ला रही है।
1: साफ है कि गरीब या आम जनता की सेहत और स्वास्थ्य को लेकर तुकाराम मुंडे बहुत संवेदनशील हैं। दूसरी ओर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट की अनदेखी करने वाली रसूखदार और पावरफुल लॉबी के खिलाफ एक्शन लेने में वो जरा भी हिचकिचाते नहीं है।

0: इसको नोटिस भेज दिया था। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया कि विज्ञापन में इलायची के नाम पर पान मसाले का प्रमोशन हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र में तंबाकू उत्पादों पर बैन है।
1: जो नोटिस इश्यू किया गया है अबाउट एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन वायलेशन, उनको नोटिस रेगुलेशन 2018 के हिसाब से दिया गया है और सेक्शन 24 ऑफ फसाई एक्ट जो है उसके हिसाब से दिया गया है, क्योंकि ये गुटखा और जो प्रोडक्ट है महाराष्ट्र में बैन है और उसका एडवर्टाइजिंग ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग में आता है, इसलिए हमने उनको नोटिस दिया, उनको टाइम दिया है।
0: साफ है कि निर्भीक तुकाराम रसूखदारों और पावरफुल लॉबीज के खिलाफ एक्शन लेने में जरा भी परहेज नहीं करते, हालांकि उन्हें इस नायकत्व के लिए धमकियां भी मिलती रही हैं। पर जो इंसान कर्तव्य परायणता का दिया अपने हाथों में लेकर लोकहित के अग्निपथ पर निकल जाता है, वो रास्ते में आने वाले सेहरा या बयाबा की परवाह नहीं करता। नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने और नियमों की अनदेखी करने वालों पर घास गिराने की वजह से शुरू से ही इनकी राह में कांटे बिछाए जाते रहे हैं, लेकिन एक सच्चे योद्धा की तरह हर मुश्किलों का ये डट कर मुकाबला करते हैं। आत्मा अगर गवाही दे तो बड़े से बड़ा एक्शन लेने से भी परहेज नहीं करते।
1: Once you do that and if you are a public servant, what is my role? That's the question I ask as a public servant. And if my role is to contribute for the betterment of the society, should I trade that part or should I compromise on that part? That was the question I ruminated upon. And the answer I got is I should trade this part, whatever the cost may be. Maybe some trade is less or more, whatever it is. That's a choice, and that's a choice I made. And I don't think I regret anything of that today.
0: कहने की जरूरत नहीं कि साल 2026 में लोक सेवा का व्रत लेने के बाद से ही तुकाराम व्यापक जनहित के पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ रहे हैं। 21 साल के सफर में 25 बार ट्रांसफर की दुश्वारी झेली, लेकिन जहां भी पोस्टिंग हुई, जिस विभाग की भी जिम्मेदारी मिली, पूरी क्रांति ला दी। 25 मई 2026 को FDA कमिश्नर बनने के बाद से ऐसे ऐसे साहसिक काम किए हैं कि नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले पनाह मांग रहे हैं। महाराष्ट्र FDA का कमिश्नर बनने के बाद पहले हफ्ते में ही उन्होंने सब स्टैंडर्ड और मिलावटी सामान बेचने वाले 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे और 100 लोगों को गिरफ्तार किया। उपचार के दावे वाले भ्रामक विज्ञापन दिखाने के आरोप में पतंजलि के आउटलेट पर छापे मारे और 51 लाख रुपए का सामान जब्त कर लिया। ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के 86 वेयर हाउसेज की जांच की और नियमों की अनदेखी की वजह से 14 वेयर हाउसेज के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। मुंबई में डोमिनोज पिज्जा के 4 आउटलेट के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर यानी बिना डेयरी से बने पनीर पर 1 साल तक के लिए बैन लगा दिया। तुकाराम मुंडे के इन ताबड़तोड़ एक्शन से महाराष्ट्र की आम जनता राहत महसूस कर रही है। दूसरी ओर होटल्स, रेस्तरा, कॉन्फेक्शनरीज, डेयरीज, कैफे और फूड एंड एग्रो फैक्ट्रीज के मालिकों को पहली बार यह एहसास हुआ है कि उनका काम सिर्फ मुनाफा ऐठना नहीं है, बल्कि लोगों की सेहत का, स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखना है।
2: ऐसा नहीं है कि FDA का कमिश्नर बनने के बाद से ही तुकाराम एक्शन मोड में आए हैं। महाराष्ट्र कैडर का IAS अधिकारी बनने के बाद से ही तुकाराम नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर वज्रपात करते रहे हैं और इसके लिए कई बार इन्हें धमकियां भी मिली, राह में रोड़े अटकाए गए, लेकिन तमाम चुनौतियों के बाद भी कभी भी अपने कर्तव्य पद से विचलित नहीं हुए। एक गरीब किसान परिवार में जन्म लेने वाले तुकाराम ने बचपन में गरीबी का दंश झेला है, जीवन की दुश्वार देखी हैं, पैदावार के लिए खेतों में पसीना बहाया है और इसलिए इनका व्यक्तित्व फौलादी हो गया, हालात से हार नहीं मानने का जज्बा पैदा हो गया।

0: रहा है। बतौर एफडीए कमिश्नर 4 महीने से भी कम के इनके कार्यकाल में एफडीए 12,000 से ज्यादा निरीक्षण और छापेमारी कर चुका है। इनमें से 900 से ज्यादा हाई इंपैक्ट रेड्स शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन की वजह से महाराष्ट्र में कुल 603 कमर्शियल लाइसेंस सस्पेंड किए जा चुके हैं। मिलावटखोरी, प्रतिबंधित गुटखा या पान मसाला बेचने और नियमों की अनदेखी के मामले में 875 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इतना ही नहीं, एफडीए ने ऐसे मामलों में 650 से ज्यादा FIR भी दर्ज कराई है। तुकाराम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वे नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों या व्यक्तियों के कद या रसूख से बेपरवाह रहते हैं। एफडीए ने नामी गिरामी फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला की पुणे स्थित यूनिट का 26 अगस्त को निरीक्षण किया और पैकेजिंग, स्टोरेज और खरीद बिक्री के रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी और अनियमितता पाने पर इस यूनिट का सेल्स लाइसेंस रद्द कर दिया। तुकाराम के ताबड़तोड़ एक्शंस की जद में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी MCA भी आ चुका है। एफडीए ने MCA के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित 5 फूड आउटलेट्स पर 20 अगस्त को छापा मारकर 5 के FSSAI लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। इतने हाई प्रोफाइल प्रतिष्ठानों के खिलाफ एक्शंस होंगे तो मामला कोर्ट में पहुंचेगा ही। MCA ने FDA के एक्शन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया तो कोर्ट ने तुकाराम मुंडे को कड़ी फटकार लगा दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हम FDA को कितनी बार समझा चुके हैं कि मच्छर को तलवार से मत मारो, क्या आप खुद को लॉर्ड समझते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं? तुकाराम को फटकार लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनसे ये भी पूछ लिया कि FDA सिर्फ निजी संस्थानों पर छापेमारी क्यों कर रहा है, कानून का पालन तो सरकारी परिसरों की कैंटीन्स में भी होना चाहिए। तुकाराम भी कहां मानने वाले थे, उन्होंने अगले ही दिन बॉम्बे हाईकोर्ट कैंपस की 3 कैंटीनों पर रेड कर दी और 2 कैंटीन के लाइसेंस कैंसिल कर दिए।
1: ड्यूरिंग द हियरिंग द क्वेश्चंस वर एज वेदर यू आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट ओनली प्राइवेट और टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द एस्टैब्लिशड गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट, वी आर टेकिंग, वी हैव द डेटा टू बैक इट अप एंड इन दैट कोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेज दैट हैव यू inspected Mantralaya canteen, so we had already done that. So then have you inspected or visited High Court canteen also, which we had not done. So I said we have not done that, but we have done this one. So High Court expects that it should be visited. Well, fine, next day my team goes and finds it out whatever it is there.
0: बॉम्बे हाईकोर्ट की कैंटीन पर रेड डालकर तुकाराम ने ये साबित कर दिया कि वो अलग ही मिट्टी के बने हैं। आपको बता दें कि इस तरह की चुनौतियां तुकाराम अपने सर्विस पीरियड में अनेकों बार फेस कर चुके हैं। साल 2006 में सोलापुर में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर अपनी पहली पोस्टिंग में रेत माफियाओं पर एक्शन लिया तो उन पर जानलेवा हमला हो गया। साल 2007 में नांदेड़ में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई की तो 5 महीने में तबादला हो गया। 2012 में मुंबई सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुई तो टैक्स चोरों से 310 करोड़ रुपए वसूल लिए। साल 2014 में कलेक्टर बनकर दोबारा सोलापुर पहुंचे तो टैंकर माफियाओं की नकेल कस दी, जिसके बाद इन्हें महाराष्ट्र का वाटरमैन कहा जाने लगा। मार्च 2017 में पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड के चेयरमैन बने तो ड्यूटी से लंबे समय से गायब चल रहे 158 कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवरों को एक साथ सस्पेंड कर दिया। साल 2022 में महाराष्ट्र के हेल्थ केयर कमिश्नर बने तो सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करवा दी। कहने की जरूरत नहीं कि तुकाराम मुंडे को जो भी जिम्मेदारी मिली उन्होंने कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की नई लीक खींच दी। दरअसल इस इंसान का पालन पोषण चांदी के चम्मच से नहीं हुआ है, इनका बचपन बहुत ज्यादा दुश्वारियों और आर्थिक तंगी के बीच बीता है। महाराष्ट्र के बीड जिले के गुमनाम से गांव ताड़सोना के एक गरीब किसान परिवार में 3 जून 1975 को जन्मे तुकाराम के पिता के पास इनके लिए चप्पल खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, लिहाजा ये बिना चप्पल के नंगे पांव स्कूल जाते थे। दिन में पढ़ाई करते थे और रात में खेतों की सिंचाई का काम भी करते थे। क्या आप यकीन करेंगे कि तुकाराम मासूम उम्र में सिर पर सब्जियां रखकर साप्ताहिक बाजार जाते थे और उन्हें बेचकर पैसे ले आते थे ताकि घर की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकें। इतनी हार्डशिप में रहकर भी ये अपने क्लास में टॉप करते थे। तभी तो साल 2005 में तुकाराम ने यूपीएससी क्रैक किया और ऑल इंडिया 20वीं रैंक हासिल की। आज वही ताटसोना गांव का गुदड़ी का लाल ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का दिया जलाकर नौकरशाहों को सच्चाई की राह दिखा रहा है।
2: बंदे में है दम में आज आपने महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को देखा। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

तुकाराम मुंढे आज महाराष्ट्र में आइडियल ब्यूरोक्रेसी की मिसाल बन चुके हैं। उनकी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता गरीब मजलूम लोगों के स्वास्थ्य और सेहत की उम्मीद की लौ बन चुकी है। जबकि महाराष्ट्र में नियमों की अनदेखी करने वाले फूड और ड्रग बिजनेस से जुड़े प्रतिष्ठानों को हर पल तुकाराम का डर सता

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: तो चलिए आस्था और भक्ति के बाद बात मौसम की। तो देखिए, मौसम बदल रहा है, मॉनसून अब वापसी कर रहा है। राजस्थान के रास्ते उसकी विदाई शुरू हो गई है। हालांकि मॉनसून की विदाई ऐसे समय हो रही है जब अब तक देश भर में बारिश सामान्य से 15% कम रही है। ऐसा माना जाता है कि 15 अक्टूबर तक मॉनसून की विदाई देश से हो जाती है, फिर जाड़े का मौसम का शुरुआत इसकी हो जाती है।
7: हवाओं में ठंडक का एहसास, तापमान में कमी, कम होता उमस का असर, ये पहचान है मॉनसून की विदाई की। देश भर में मॉनसून का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के पश्चिमी हिस्से से मॉनसून की वापसी शुरू हो गई है। इसके बाद ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश से सीधे सीधे पीछे हटेगा। फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों से मॉनसून कमजोर होते हुए पूरे देश से विदा हो जाएगा। भारत में मॉनसून की वापसी हमेशा देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से से शुरू होती है। कच्छ के साथ साथ सबसे पहले मॉनसून राजस्थान के इलाके से विदा होता है। अब तक के सभी अनुमान के मुताबिक किसी भी हालत में भारत के किसी भी राज्य से मॉनसून की वापसी 1 सितंबर से पहले नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि अगर 5 दिनों तक लगातार बारिश नहीं होती और हवा का रुख भी बदलता रहता है तो हवा में नमी भी कम होने लगती है, तो ये मान लिया जाता है कि उस हिस्से से मॉनसून की विदाई होने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक आमतौर पर प्रायद्वीपीय भारत में सर्दियों की शुरुआत से कुछ दिन पहले मॉनसून के वापस लौटने की प्रक्रिया 15 अक्टूबर को समाप्त हो जाती है। हालांकि दिल्ली से मॉनसून की विदाई 25 सितंबर से शुरू होती है। मॉनसून की विदाई ऐसे समय हो रही है जब अब तक देश भर में बारिश सामान्य से 15% कम रही है। यानी मॉनसून सीजन के आखिरी चरण में बारिश का आंकड़ा अभी भी सामान्य से नीचे है। इससे कई राज्यों में मॉनसून के दौरान हुई बारिश के वितरण में असमानता दिख रही है। जून में मॉनसून की शुरुआत कमजोर रही थी और देश में बारिश सामान्य से काफी कम दर्ज की गई थी। जुलाई में बारिश ने कुछ हद तक इसकी भरपाई की, लेकिन अगस्त और सितंबर में फिर कमी दर्ज की गई। अब जब मॉनसून की वापसी शुरू हो गई है तो बंगाल की खाड़ी लो प्रेशर सिस्टम बन गया है, जिससे ओडिशा, पूर्वी यूपी, बिहार और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बारिश के हालात बन रहे हैं। इस सिस्टम के बाद उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के ज्यादातर हिस्सों से मॉनसून के तेजी से लौटने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: तो चलिए बात एंटरटेनमेंट की हो जाए। तो अल्लू अर्जुन, दीपिका पादुकोण और रश्मिका मंदाना की अपकमिंग और मोस्ट अवेटेड फिल्म राका की हर एक अपडेट फैंस के लिए एक्साइटमेंट है। देखिए, फिल्म के मेकर्स ने जब इसका प्रमोशनल टीजर जारी किया तो फिल्म को लेकर जो एक्साइटमेंट थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि फिल्म 2027 में रिलीज होगी।
8: राका की हर एक अपडेट के लिए फैंस एक्साइटेड है। अब हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने इसका प्रमोशनल टीजर जारी किया है, जिससे फिल्म को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई है। राका के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें लिखा, एक ग्लोबल जीत देखने के लिए तैयार हो जाइए, जो मुमकिन लगता था उससे कहीं आगे। हमने कल्पना करने की हिम्मत की, हमने उसे हासिल करने की हिम्मत की। राका, एक ग्लोबल जीत। टीजर के आने से ठीक एक दिन पहले सामने आए एक दिलचस्प खुलासे के बाद हुआ है, जिसमें एक पोस्टर में सिर्फ लिखा था 37। अब तक राका के बारे में बहुत कम जानकारी सामने आई है, चाहे वो इसकी शूटिंग की जगह हो या प्रोडक्शन का पैमाना, जिससे फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। अल्लू अर्जुन, दीपिका पादुकोण और रश्मिका मंदाना की अपकमिंग और मोस्ट अवॉइडेड फिल्म को लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ है और फैंस की बताबी भी बढ़ गई है। खबरों के मुताबिक अल्लू अर्जुन राका के 4 अलग अलग किरदार निभाएंगे। वो दादा, पिता और 2 बेटों की भूमिका में नजर आएंगे। ऐसी भी चर्चा है कि फिल्म में 2 पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट दिखाया जा सकता है। हालांकि मेकर्स ने अभी तक किसी भी जानकारी पर मुहर नहीं लगाई है। अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक पोस्टर पहले ही रिलीज किया जा चुका है, जिसे देखने के बाद इटली के इस अपकमिंग मूवी को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर बनी हुई है। संभावना जताई जा रही है कि अल्लू अर्जुन का ऐसा अवतार देखने को मिलेगा जो शायद पहले कभी बड़े पर्दे पर देखने को नहीं मिला है। फिल्म में जाह्नवी कपूर और मृणाल ठाकुर भी अहम किरदारों में नजर आएंगी। इस साइंस फिक्शन एक्शन ड्रामा को सन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म अल्लू अर्जुन और इटली के बीच पहला कोलैबोरेशन भी है। फिलहाल फिल्म अल्लू अर्जुन स्टारर राका की रिलीज डेट को लेकर मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2027 के अंत तक इस बहुचर्चित फिल्म को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।